0: डॉक्टर अनिल मिश्रा का। नैतिकता के नाम पर इन्होंने भी इस्तीफा दिया। एसआईटी की जांच में इन्हें बड़ा लापरवाह और चढ़ावा चोरी गबन कराने के हालात पैदा करने वाला जिम्मेदार शख्स बताया गया। चंपत राय तक अनिल मिश्रा पर एक बयान में सवाल उठा चुके हैं। बस सवाल है कि क्या केवल अनिल मिश्रा पर आगे एफआईआर हो सकती है या फिर आगे इन्हें भी बचा लिया जाएगा।
1: जो प्रमाण मिले केवल 6 लोग इसमें चोरी करते हुए पाए गए, कुल 6 लोग, 2 लोग उसमें साजिश का पार्ट थे, यानी कुल 8 लोग। एसआईटी ने अपनी सिफारिश ट्रस्ट को भेज दी, ट्रस्ट ने उसके अनुसार एफआईआर दर्ज करवाई, कार्रवाई हो गई।
0: कार्रवाई जारी है, ये सच है। जैसे बुधवार को ही देखिए, 3 आरोपियों अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, करुणेश पांडे को रिमांड में लेकर पुलिस उस जगह पहुंचती है जहां दावा होता है कि ये लोग चढ़ावा चुराने के बाद आकर बंदरबाट करते थे।
2: ये वो जगह है जहां पर बंदरबाट हुआ करता था और आरोपी जो पैसा गणना लेते थे करते थे, उसके बाद जो चुराया हुआ पैसा होता था उसको वहीं पर बांट लिया जाता था।
0: 6 आरोपी पैसा चुराते थे, 2 आरोपी साजिश रचते थे, लेकिन इनको काम पर रखवाने के आरोप जिन चंपत राय और अनिल मिश्रा पर लगते हैं वो क्या करते थे? जिन अनिल मिश्रा के नाम पर सीधे एसआईटी रिपोर्ट में लिखा गया कि अनिल मिश्रा की वजह से चोरी और गबन के हालात बने, क्या केवल उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज आगे होगी या फिर चंपत राय और गोपाल राव की तरह वो भी बचे रहेंगे? सवाल है कि क्या अनिल मिश्रा, चंपत राय और गोपाल राव ऐसे धुरंधर हैं जिनके खिलाफ जांच आगे या तो सुस्त हो जाएगी या फिर इन तक आगे पहुंचेगी ही नहीं? सवाल की वजह कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी और चंपत राय के बीच बुधवार को अयोध्या में 2 घंटे चली बैठक है जहां बाहर आकर कोई कुछ नहीं बताता, लेकिन सवाल आता है क्या इस मुलाकात का रिश्ता मंगलवार को आई चंपत राय की चिट्ठी से है जिसमें वो कहते हैं कि पूरी जांच होने के बाद खुलकर हर आरोप पर बोलेंगे। क्या चंपत राय कुछ और लोगों का नाम ले सकते हैं? जैसे एसआईटी के अंतरिम रिपोर्ट को लेकर चंपत राय का मंगलवार का जो जवाब आया उसके मुताबिक चंपत राय ने अनिल मिश्रा पर गंभीर आरोप लगाए, अनिल मिश्रा पर सवाल उठाया, कहा कि 6 फरवरी 2025 को ट्रस्ट और एसबीआई के बीच जो एमओयू साइन हुआ जिसमें अनिल मिश्रा के ट्रस्ट की तरफ से दस्तखत हैं और जिस एमओयू में चढ़ावे की गिनती को लेकर नियमों को शिथिल किया गया था, उसको लेकर चंपत राय का कहना है कि उनकी जानकारी के बिना ये एमओयू बैंक से किया गया। यानी चंपत राय का ये जवाब बताता है कि वो नहीं लेकिन दूसरे लोग जिम्मेदार हैं। अब इसी तरह देखिए ट्रस्ट की बैठक के बाद जो प्रेस नोट जारी हुआ था सोमवार को, इसमें साफ साफ लिखा गया कि ट्रस्ट ने गोपाल नगर कोटे को ट्रस्ट के विशेष आमंत्रित सदस्य सूची से हटाने का फैसला किया, लेकिन फिर बुधवार को कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी से मिलकर निकले गोपाल राव कहते हैं कि वो कहीं बाहर नहीं हुए।
3: नहीं, किसी को बाहर नहीं किया है। नहीं नहीं, गलत है, गलत संदेश है, गलत।
0: इसीलिए ये सवाल आता है क्या चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव पर कार्रवाई से बचने की कोशिश हो रही है? क्या इसकी वजह ये कि चंपत राय का गुट डट कर खड़ा हो गया है जिन्हें लगता है कि भले उनसे लापरवाही हुई लेकिन चोरी उन्होंने नहीं की, तो क्या इससे चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव बच जाएंगे? समर्थ श्रीवास्तव, अयोध्या आज तक।
4: बद्रीनाथ धाम में भक्त जो गर्भगृह के पास दान पात्र में अपनी थाली में लेकर गई भेंट को, यानी कि जो भी कैश चढ़ावे या सोने चांदी रखे रहते हैं वो दान पात्र में डाल देते हैं, उसी थाली भेंट की काउंटिंग के दौरान आरोपी है कि कैश चढ़ावा चोरी हुआ करता था। मुख्यमंत्री ने उच्च स्तरीय कमेटी बना दी है, आरोपी जो मंदिर कमेटी के अध्यक्ष का निजी सचिव है उसे निलंबित कर दिया गया है।
0: सनातन हिंदू धर्म के 4 धामों में से एक सृष्टि का 8वां वैकुंठ जिसे माना गया, क्योंकि यहाँ भगवान विष्णु की पूजा करने और दर्शन करने से सभी पापों का नाश होता है। मान्यता है यहाँ दर्शन पूजन से जन्म मरण के चक्र से मुक्ति यानी मोक्ष मिलता है, लेकिन बद्रीनाथ धाम में भी चढ़ावा चोरी का महापाप हो जाता है।
5: कितने प्रतिष्ठित हमारे सनातनियों के धाम पर और आप चोरी चकारी कर रहे हैं।
6: प्रथम दृष्टा उन्होंने पाया कि कहीं कोई संदेह उसमें प्रकट हो रहा है।
7: ये तो गौ हत्या जैसा पाप है जो ऐसे स्थानों पर इस प्रकार की चीजों को करे।
0: बद्रीनाथ धाम में चढ़ावा चोरी की खबर मिलने के बाद से मुख्यमंत्री सख्त हो गए। गढ़वाल आयुक्त की अगुवाई में 3 सदस्यों की हाई लेवल कमेटी बना दी जो 15 दिन में जांच रिपोर्ट देगी।
7: जो भी दोषी होगा वो छोड़ा नहीं जाएगा, कठोर कार्रवाई होगी। कमेटी बना दी गई है और पुलिस ने अपनी प्रारंभिक जो कार्रवाई है प्रारंभ कर दी है, रिपोर्ट दर्ज हो गई है। ये तो गौ हत्या जैसा पाप है जो ऐसे स्थानों पर इस प्रकार की चीजों को करे, जैसे माँ बाप की कोई हत्या कर देता है उस प्रकार का महापाप है। इसमें ये क्षमा योग्य नहीं है और जो भी होगा उसको पूरा कानून अपना काम करेगा।
0: आपके मन में सवाल होगा कि आखिर इतनी पवित्र जगह जहाँ भगवान का वास माना जाता है, जहाँ दर्शन करने के लिए करोड़ों लोग इच्छा रख कर भी नहीं पहुँच पाते, वहीं भगवान के मंदिर में कर्मचारी क्या चढ़ावा चुरा लेते हैं? अगर हाँ तो कैसे? 3 जुलाई को भैरव सेना नाम के संगठन ने सबसे पहले बद्रीनाथ धाम के चढ़ावे में कैश चोरी का मामला उठाया। आरोप BKTC यानी बद्री केदार टेंपल कमेटी के अध्यक्ष के निजी सचिव प्रमोद नौटियाल पर लगा। इसके बाद BKTC के CEO सोहन सिंह रांगड़ ने आरोपी प्रमोद नौटियाल से सफाई मांगी। 4 जुलाई को मामले की जांच के लिए BKTC ने एक आंतरिक समिति गठित कर दी। 7 जुलाई को आरोपी प्रमोद नौटियाल को सस्पेंड कर दिया गया।
6: तत्कालीन शाम तक 3 तारीख को एक जांच समिति गठित कर दी गई थी जो बद्री केदार मंदिर समिति के वरिष्ठ अधिकारी इसमें सम्मिलित किए गए थे और उसके बाद कल जैसे ही ये टीम वहां पर पहुंची है, वो टीम पहुंचने के बाद भी प्रथम दृष्टया उन्होंने पाया कि कहीं कोई संदेह उसमें प्रकट हो रहा है। तत्काल हमने इसका संज्ञान लेते हुए मंदिर समिति ने उस कर्मचारी के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की और देर रात्रि उसके खिलाफ FIR भी लॉन्च कर दी गई।
0: आरोप है कि बद्रीनाथ धाम में ये चोरी थाली भेंट गणना में हुई है। असल में भगवान बद्री विशाल के गर्भगृह के ठीक सामने एक हुंडी चांदी का दान पात्र है। इस हुंडी में थाली दान मतलब यात्रियों की थाली में जो 100, 50, 200, 500 जितने भी रुपए हो या फिर सोना चांदी या चढ़ावे के लिए जो कुछ भी हो वो इसी थाली दान पात्र में डाला जाता है। यहाँ आरोप है कि 2 जुलाई की सुबह 9 से 9:30 बजे के बीच आरोपी प्रमोद नौटियाल थाली भेंट कर नकद चढ़ावा अपने मोबाइल फोन के साथ जेब में रखते हुए दिखाई दिया। समिति की प्रारंभिक जांच में इस बात की पुष्टि भी हुई कि थाली भेंट से चढ़ावा कैश चुराया गया।
8: 11 रुपए, 21 रुपए, 100 रुपए या हजारों रुपए लोग थाल में प्रसाद के साथ लाते हैं और सामने एक बॉक्सेस के ऊपर चांदी का कमल है, इस कमल में रखते हैं, सामने मंदिर के कर्मी उसका प्रसाद चढ़ाते हैं, उसका पैसा सोना चांदी जो भी है उस बॉक्स में डालते हैं या जिसने थाल में नहीं भी रखा है अपनी जेब से निकाल के यात्री चढ़ाता है तो भगवान के ठीक सामने वो बॉक्स है, इसे थाली भेंट बॉक्स कहते हैं।
0: इस बीच जांच पूरी होने तक आरोपी को तो पद से हटाया गया, लेकिन विसल ब्लोअर यानी भैरव सेना के अध्यक्ष संदीप खत्री जिन्होंने इस पूरे विवाद को सामने लाया, वो आरोप लगाते हैं कि मंगलवार को उन्हें 1 घंटे तक उनके घर पर नजरबंद रखा गया, बुधवार सुबह भी 10 से 12 बजे तक उनके दफ्तर में नजरबंद किया गया।
9: घोषणा की थी कि हम मुख्यमंत्री आवास जाएंगे और SIT की जांच की मांग करेंगे, तो कल जो है मेरे घर पे 10 बजे सुबह पुलिस पहुंच गई थी। जब पुलिस पहुंची तो मुझे आगे से कोई जवाब मिला तो पुलिस ने काफी देर तक मेरे घर पे रही और उसके बाद आज दोबारा जो है पुलिस करीबन मेरे कार्यालय पहुंच गई थी 10 बजे और मुझे काफी देर तक यहाँ पे मतलब तरह से कहा जाए तो हाउस अरेस्ट रखा। हमारा सिर्फ यही है कि हम चाहते हैं कि जो ये प्रकरण जो हुआ है श्री बद्रीनाथ धाम वाला, ये प्रकरण जो है इसमें निष्पक्ष जांच हो और इसकी SIT जांच की हम लोग माननीय मुख्यमंत्री से मांग कर रहे हैं।
0: अब सवाल है कि जब सरकार एक तरफ बद्रीनाथ धाम में चढ़ावा चोरी की जांच का भरोसा दे रही है तो पूरा विवाद सामने लाने वाले को क्या वाकई कानून व्यवस्था के नाम पर नजरबंद किया गया या फिर चढ़ावा कांड को लेकर ज्यादा सवाल न उठे इसलिए रोका जा रहा है। अंकित शर्मा, देहरादून, आज तक।
4: अब भक्तों से भगवान के नाम पर चढ़ावा लेकर अपनी जेब गर्म करने वाली खबर मध्य प्रदेश से भी आई है, जहां आगर मालवा जिले के नलखेड़ा स्थित मां बगलामुखी मंदिर में पता चला है वो संस्था फर्जी तरीके से चंदा और दान लोगों से मंदिर के नाम पर लेने लगी, जिसका मंदिर से कोई लेना देना ही नहीं था। इस मामले की जांच भी शुरू कर दी गई है।
0: माँ बगलामुखी का मंदिर मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले में जो नलखेड़ा में स्थित है, वो मंदिर जहाँ देश विदेश से आकर भक्त और श्रद्धालु शत्रुनाश पूजन करते हैं, जहाँ विशेष यज्ञ करके माना जाता है कि शत्रुओं को दूर कर लिया जाता है। देश के उसी विश्व प्रसिद्ध माँ बगलामुखी मंदिर में चढ़ावा चोरी का कांड सामने आ गया। पता चला कि मंदिर में गैर सरकारी कमेटी की तरफ से ये चढ़ावा चोरी की गई, यानी एक फर्जी कमेटी ने श्रद्धालुओं से नकद और सोना चांदी दान के रूप में ले लिया है।
10: आगर मालवा जिले के नलखेड़ा के प्रसिद्ध माँ बगलामुखी मंदिर में एक गैर सरकारी संस्था द्वारा भक्तों से नगद राशि, रजत और स्वर्ण दान के रूप में लिए जाने का मामला सामने आया है। शिकायत होने पर आगर कलेक्टर ने एक जांच समिति गठित की है, जो कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करने के लिए जुट गई है।
11: ये जो मामला आया है प्रबंध समिति संबंधित नहीं है, कोई बाहरी लोग हैं जो कट्टे इत्यादि छपवा कर अवैध वसूली करने का काम कर रहे थे, तो मुझे लगता है इसके लिए हमने कठोर से कठोर कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया है। और ये कालनेमी टाइप के लोग हैं जो कहीं ना कहीं भगवान के नाम पर अवैध वसूली करने का काम कर रहे हैं, तो एक तो उन पर कमेटी भी गठित कर दी है और कठोर से कठोर कार्रवाई करने के मैंने निर्देश भी दिए हैं। और इस प्रकार की किसी अनियमितता को हम मध्य प्रदेश की धरती पर होने नहीं देंगे, इस बात को लेकर हम संकल्पित हैं।
12: सोना चांदी सब आ रहे हैं, पैसे आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, तो बाहर से श्रद्धालु भी आ रहे हैं बहुत सारे, तो देखना चाहिए उनको कि ये सब कहाँ पे जा रहे हैं।
13: जांच होनी चाहिए और उनको सबको बताना चाहिए कि ये होना चाहिए, और राम मंदिर में भी चोरी हुई तो अच्छा नहीं हुआ है, सबकी जांच करना चाहिए।
14: चंदे की उगाही में जो पारदर्शिता है वो बनी रहनी चाहिए और सबकी नज़र में आनी चाहिए। एक ऐसी समिति या काम करनी चाहिए जिसमें सबको ये इन्वॉल्व होना चाहिए कि हाँ पर डे या पर मंथ या पर मतलब सालाना ये कितनी इनकम हो रही है, ये सरकार को भी मालूम होना चाहिए और वहाँ की जो लोकल व्यवस्था है या लोकल लोग हैं उनको भी मालूम होना चाहिए।
15: श्रद्धालु पूरे देश से आते हैं, लाखों आते हैं, लेकिन क्या इस आस्था के प्रतीक मंदिरों में इस प्रकार की चोरी अगर भारतीय जनता पार्टी के राज में हो रही है तो मैं इनसे जानना चाहता हूं, क्या आप हिंदू धर्म में इतनी आस्था रखते हैं? ये बताएं, क्या हिंदू धर्म के एक मंदिर की रक्षा नहीं कर सकते?
11: जो श्रद्धालु हैं, मैं उनसे यही कहना चाहता हूं कि कोई भी व्यक्ति आपके पास चंदा इत्यादि मांगने आता है तो पहले उसकी बाकायदा तस्दीक कर लें कि ये व्यक्ति ठीक है कि नहीं, तभी इस प्रकार चंदा देने का या दान देने का काम करें। और आपका दान सुरक्षित जगह पर जाए इस सुनिश्चित करने के बाद ही दान दें, किसी के भी मांगने पर दान ना दें। आपका दिया हुआ दान सही जगह पर जाए इसके लिए अभी डिजिटल पेमेंट की भी बात चल रही है, उसकी ओर भी हम बढ़ रहे हैं और QR कोड के माध्यम से भी दान देने की ओर श्रद्धालुओं को हम आकर्षित करने का काम करेंगे।
0: कलेक्टर की तरफ से बनाई गई कमेटी 7 दिन में रिपोर्ट देगी, जिसके बाद साफ होगा दूसरी कमेटी जो मंदिर के नाम पर चढ़ावा लेती रही वो मंदिर के लिए ही है या अपने लिए। आगर मालवा से प्रमोद कारपेंटर के साथ रवीश पाल सिंह, भोपाल आज तक।
4: इस बार मानसून लेट आया है, फिर भी देश का सिस्टम बारिश के कहर से बचने का कोई इंतजाम नहीं कर पाया और यही वजह है कि शहर शहर ड्रेनेज सिस्टम फेल हो रहा है और मानसून तबाही बनकर आधे हिंदुस्तान पर बरस रहा है। महाराष्ट्र से लेकर गुजरात तक और दिल्ली से लेकर पूरे NCR तक कैसे बारिश ने जिंदगी पर धावा बोला है देखिए।
16: आधे हिंदुस्तान में जल तांडव, लोग करने लगे त्राही त्राही। बारिश मूसलाधार, सिस्टम में भ्रष्टाचार, जिंदगी पर आफतकार। बारिश ने शहरों की दुर्गति बना दी, ड्रेनेज सिस्टम की पोल खोल दी। महाराष्ट्र से गुजरात तक बारिश का कहर, दिल्ली NCR में मुश्किल डगर। जब तक सिस्टम में भ्रष्टाचार नहीं रुकेगा, मॉनसून का प्रहार जारी रहेगा। इस साल देश में मॉनसून अपनी टेढ़ी चाल चल रहा है, अब एक समान और धीमी बारिश के बजाय असंतुलित और अचानक मूसलाधार बारिश हो रही है जो लोगों पर कहर बनकर टूट रही है। लेकिन सवाल ये है कि अगर वक्त रहते इंतजाम पुख्ता कर लिए गए होते और विकास के नाम पर होने वाले भ्रष्टाचार के लीकेज को रोक लिया होता तो शायद शहर शहर मानसून में ऐसी दुर्गति ना देखने को मिलती। आधुनिक विकास के नाम पर पक्की सड़कें और इमारतें तो तान दी गईं, लेकिन ड्रेनेज सिस्टम के नाम पर भ्रष्टाचार का खेल खुल्लम खुल्ला खेला गया। तभी तो महानगरों में थोड़ी सी बारिश भी भीषण रूप लेने लगती है। दिल्ली हो या मुंबई, पुणे हो या पालघर, सूरत हो या गुरुग्राम, विकास के नाम पर होने वाले दावे बारिश ने धो डाले हैं। पहले हम

0: मुंबई और उससे सटे जिलों में एक हफ्ते की बारिश ने न सिर्फ सिस्टम के दावों को धो डाला है, बल्कि जिस मुंबई में बारिश से बचने के लिए 25,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है, वो साफ बताता है कि सिस्टम में भ्रष्टाचार का लीकेज इस दुर्गति के लिए जिम्मेदार है और इसकी जिम्मेदारी तो लेनी ही पड़ेगी। मानसून की बारिश में मुंबई के अंदर सड़कों और सब्वे का डूबना तो आम बात हो गई है।
1: अंधेरी सब्वे के बगल में ही एक नाला भी है जहां से पानी दरअसल निकलना चाहिए, लेकिन निकलने की बजाय देखिए वही नाले से ही सारा पानी जो है वो अंधेरी सब्वे के अंदर जा रहा है और यही वजह है कि अंधेरी सब्वे इस वक्त जलमग्न हो चुका है।
0: लेकिन मुंबई की बारिश में कैसे पेड़ मौत बनकर टूट रहे हैं, जरा इसके बारे में जान लीजिए। अंधेरी सब्वे के पास ऑफिस के लिए निकले एक शख्स पर ऐसा पेड़ कहर बनकर टूटा कि वो वहीं लहूलुहान होकर गिर पड़ता है।
2: दो लोग साथ में थे बट एक कलीग के ऊपर झाड़ गिरा तो उसको अभी हॉस्पिटल लेके गए।
1: ये है कौन, क्या नाम है?
2: से आ रहे आदेश गायक का नाम है।
0: आपको बता दें कि मुंबई में पेड़ कहर बनकर टूट रहे हैं। पिछले 6 दिनों में मानसून की बारिश से मुंबई में 1100 पेड़ गिर चुके हैं, जिसमें 4 की मौत और कई घायल हो गए हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में 500 से ज्यादा पेड़ गिर चुके हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि भारी बारिश के अलावा अंधाधुंध निर्माण, सड़कों के चौड़ीकरण और कंक्रीट के इस्तेमाल से पेड़ों की जड़ों को नुकसान पहुंचा है और किसी ने कमजोर पेड़ों की सुध नहीं ली, ऐसे में ये जानलेवा बन गए हैं।
3: आज जो मुंबई में हो रहा है ये बीजेपी का भ्रष्टाचार, दलाली और पूरी मुंबई बिल्डरों के हाथ में देने का नतीजा है। उसके लिए देवेंद्र फडणवीस, मंगल रवात लोढ़ा, मुंबई बीजेपी का अध्यक्ष, ये सब जिम्मेदार है।
0: मानसून की बारिश से सबसे बुरा हाल मुंबई से सटे जिलों का है, जहां पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जी हां, पालघर जिले में पिछले 7 दिनों से बारिश हो रही है। हालात ऐसे हैं कि अब तक 10 लोगों की दर्दनाक मौत हो चुकी है। प्रशासन ने रेड अलर्ट जारी कर रखा है। पालघर के वसई में भारी बारिश के कारण एक बड़ा हादसा हो गया। यहां बाढ़ के तेज बहाव में बह रही 2 कारों से 3 लोगों को बचाया गया। वसई विरार के हालात आप देख सकते हैं, सड़कें डूबी हैं, मार्केट डूबी हैं और लोग सिस्टम को कोस रहे हैं।
4: इस वक्त मैं खड़ा हूँ वसई वेस्ट के मानिकपुर रोड पे। आप देख सकते हैं किस तालाब का स्वरूप इस रोड पे आ चुका है। ये जो बस है पिछले 2 दिन से पानी में बंद पड़ चुकी है।
5: पब्लिक परेशान है, आने जाने का दिक्कत है। मीरा रोड में जॉब करता हूँ, स्टेशन से जा रहा था, पर देख सकते हैं कितना पानी भरा है। क्या करें, मैं सोच रहा हूँ चल के जाओ या कैसे जाओ।
6: 3 दिन से हम काम पर नहीं जा रहे हैं।
0: और खासकर पालघर की बात करें तो यहाँ अंडरपास डूबे हैं। यहाँ के रमाई नगर अंडरपास में पानी भरने से 800 की आबादी वाले इलाके का संपर्क दुनिया से कट गया है। लोग आक्रोश में हैं।
7: यही एक रास्ता है जहाँ से MIDC में जाता है, वहाँ से ही उन लोग का मजदूरी मतलब कमाई होती है, तो वहाँ ये रास्ता ही बंद हो गया तो कहाँ से जाएंगे उन लोग।
8: हम लोग ना पूरा 4-4 दिन अब काम पे नहीं गए। हम लोग काम पे नहीं जाएगा तो हम लोग को कौन रखने वाला है उधर।
9: हम 4 दिन से बोल रहे हैं कि अधिकारी लोग कोई भी नहीं आ रहे।
0: पुणे में मूसलाधार बारिश के चलते शहर को पानी सप्लाई करने वाले खड़कवासला डैम से 27,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया तो बाढ़ आ गई। यहां मुठा नदी उफान पर है और शहर का प्रसिद्ध भिडे ब्रिज पूरी तरह पानी में डूब गया है। और ये तस्वीरें पुणे के पिंपरी चिंचवड़ में मोशी इलाके की हैं, जहां वेस्ट टू एनर्जी प्लांट की इमारत का एक हिस्सा ढह गया है। हादसे में कई लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि लगातार हो रही बारिश की वजह से कचरे का बड़ा ढेर खिसक गया। यहां कचरे का ढेर करीब 30 मीटर दूर से खिसक कर इस इमारत पर गिर गया। ये लैंडस्लाइड जैसा ही हादसा है, जिसकी वजह से इमारत का एक हिस्सा पूरी तरह ढह गया और इसमें कई लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। बारिश की वजह से नासिक शहर में बहने वाली नंदिनी नदी में बाढ़ आ गई है। पानी का लेवल लगातार बढ़ रहा है। नासिक की नंदिनी नदी पर बने कई पुल बाढ़ के पानी में डूबे हैं। कई पुलों से बाढ़ का पानी ओवरफ्लो होने की वजह से ट्रैफिक पर असर पड़ा है। बारिश की वजह से नासिक में करीब 300 से ज्यादा छात्र आज परीक्षा नहीं दे पाए। अलग अलग कॉलेजों के स्टूडेंट्स हैं जो परीक्षा के लिए जा रहे थे। सुबह 10

0: बजे पेपर था, लेकिन बारिश की वजह से रास्ते में जमीन धंस गई। नासिक और त्र्यंबकेश्वर का संपर्क टूट गया और एग्जाम छूट गया।
1: पांच और छह बस यहाँ पे हमारे रुकी हुई है पुल पे, और आज स्टूडेंट्स की एग्जाम है, हमारी यूनिवर्सिटी की एग्जाम है, तो वो कैसे मैनेज कर रहे हैं उसी का अभी चालू है।
2: महाराष्ट्र में मॉनसून की बारिश कहर बनकर बरस रही है, तो गुजरात में भी जल तांडव की तस्वीरें सामने आ रही हैं। गुजरात के सूरत में 36 घंटे के भीतर 19 इंच तक बारिश हुई है, जिससे 85 साल पुराना रिकॉर्ड टूट गया है। जुलाई 1941 में 18 इंच बारिश हुई थी, जबकि देश की राजधानी दिल्ली में भी बारिश की वजह से एक इमारत गिर गई।

0: गुजरात में मानसून की बारिश ने ऐसा गदर मचाया कि पूरा सूरत त्राही त्राही करने लगा है। सूरत में हुई 19 इंच बारिश के चलते लिम्बायत इलाका पूरी तरह से डूब गया है। रेस्क्यू टीमें फंसे लोगों को निकाल रही हैं। गाड़ियां डूबी हुई हैं। ये शहर की मेन रोड है। दो पहिया वाहन चार पहिया वाहन डूबे हुए हैं। पूरा का पूरा इलाका तालाब नजर आ रहा है। देखिए कितना ज्यादा पानी भरा हुआ है। ये ट्रक देखिए कैसे आधा पानी में डूबा हुआ है। बगल में एक ट्रैक्टर भी डूबा है। सड़क पर बहुत से खराब वाहन भी दिखाई दे रहे हैं। जो लोग इस पानी में फंसे हुए थे उन्हें सुरक्षित निकाला जा रहा है। सोसाइटीज में फंसे लोग बिल्डिंगों की छतों पर पहुंच गए हैं और पिछले दो दिनों से खाने पीने के सामान के लिए तरस रहे हैं।
1: सूरत में जलभराव की परिस्थिति क्या है इसकी पड़ताल की आज तक की टीम फायर ब्रिगेड की बोट पर सवार है और तस्वीरों के जरिए हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। देखिए पूरा BRTS बस स्टैंड है और जो पूरा पानी में डूब चुका है। इसके अलावा जितनी भी आप देखेंगे यहाँ पे व्हीकल्स खड़े हुए वो भी पानी में पूरे डूब चुके हैं। ये सामान्य दिनों की हम बात कर लें तो यहाँ पर BRTS बसें चलती हैं लेकिन फिलहाल यहाँ पर पानी चल रहा है और ये टेक्सटाइल मार्केट का एरिया है वो भी आप देखेंगे तो यहाँ पर सब कुछ पानी में डूब चुका है।
0: ये भी सूरत का इलाका है। आज जैसे ही दूध की वैन आई तुरंत दूध लेने के लिए मार बच गई। हद्दर जैसे हालात थे। चीना छप्पी की नौबत थी। पीछे लाइन लगी है दूध लेने के लिए लेकिन लोगों ने लाइन की परवाह ही नहीं की और जिसको जैसे मौका मिला वो दूध पर झपट पड़ा। सूरत में करंट लगने पेड़ और बिजली गिरने से 9 लोगों की मौत हो चुकी है। 3400 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों को खाने पीने की परेशानी झेलनी पड़ रही है। दिल्ली में बारिश के चलते गिरी इमारत। दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 16 स्थित G4 पॉकेट में सोमवार को एक निर्माणाधीन इमारत अचानक भरभराकर गिर गई। हादसे के समय भवन में कई मजदूर काम कर रहे थे। कई मजदूरों के मलबे में दबे होने की आशंका है। घटना के बाद इलाके में चीख पुकार मच गई और आसपास के लोग मौके की ओर दौड़ पड़े। जब बचाव दल के कर्मचारी यहां राहत में लगे थे तभी अंदर से एक व्यक्ति उनके साथ बात भी कर रहा था। उस शख्स ने मलबे के अंदर से अपना हाथ बचाव दल को दिखाया। वो खुद को बचाने की गुहार लगा रहा था।
2: हाँ जी सर, दिख रहा है आपका हाथ, दिख रहा है हमें। हाँ बचा लेंगे सर, बचा लेंगे आपको, चिंता मत करो।
0: सवाल यही है कि कैसे एक बारिश में पूरा सिस्टम बैठ जाता है और बारिश ऐसा तांडव मचाती है कि लोगों के सिरों पर मौत मंडराने लगती है। आज तक ब्यूरो।
3: और इसी के साथ हम यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
5: This is the sound of Claire cooking dinner at home. And that's the sound of a fraud alert from Wells Fargo flagging a charge for a pricey restaurant in Paris. Considering Claire isn't in Paris right now, that seemed odd to the bank and to Claire. Two taps later, Claire says nope to the charge and Wells Fargo is on the case. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
6: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
7: पति की कौन सी राशि सेना और साहस की राशि मानी जाती है? बृहस्पति के कौन सी राशि के लोग बड़े ज्ञानी और बहुत शानदार व्यक्तित्व वाले होते हैं? क्या है बृहस्पति की राशियों की विशेषता और क्या है जीवन को बेहतर बनाने के उपाय? जानिए मेरे साथ सिर्फ
8: When your business grows, communication can get messy fast. Calls come in, texts stack up, and suddenly your team is working in different places without the full picture. That's where Quo comes in. Quo gives your business one shared number, so every call and text lives in one place. Your whole team can see the entire history. Everything stays connected, and nothing falls through the cracks. Money is on the line. Always say hello with Quo. Get started free, plus get 20% off your first 6 months at quo.com/tunein. That's quo.com/tunein.
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
5: This is the sound of Lucy staying on top of her spending. You see, even though she's buying a new pair of jeans, she knows that it fits within her monthly budget. Because Wells Fargo will send an alert if her balance drops below her set amount. Yep, nothing gets past Lucy, or Wells Fargo for that matter. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
6: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
9: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach.

नाटो समिट के बाद ईरान को लेकर ट्रंप का बड़ा दावा, ईरान की किल लिस्ट में जो नंबर वन कहा होगा बहुत जल्द खात्मा। ईरान का पलटवार, अभद्रता का जवाब कार्रवाई से देते हैं। ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी, पीएम एंथनी अल्बनीज के साथ द्विपक्षीय वार्ता, सीईओ फोरम में लेंगे हिस्सा, भारतीय समुदाय के लोगों को भी करेंगे संबोधित। योगी ने फिर बोला अखिलेश पर धावा, कहा इन्हें न राम न कृष्ण में आस्था, परिवारवाद वंशवाद के नाम पर समाज में फैलाई नफरत, 10 जुलाई को अयोध्या जाएंगे सीएम योगी। महाराष्ट्र गुजरात में बेकाबू मॉनसून, रायगढ़ के सैलाब में बह गए हजारों सिलेंडर, तो सूरत के रिहायशी इलाकों में घुसा पानी, दिल्ली के रोहिणी में गिरी इमारत, एक की मौत।

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं आशुतोष मिश्रा। सुबह के 6 बज चुके हैं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। लेकिन सुबह 6 बजे 6 बड़ी खबरें कौन सी, हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले बताएंगे ट्रंप की धमकी के बाद ईरान में कहां कहां हमले हुए हैं। दूसरी बड़ी खबर, आखिर ट्रंप ने क्यों कहा कि ईरान की किल लिस्ट में जो अब नंबर वन की पोजिशन पर है उसका खात्मा होगा। तीसरी बड़ी खबर ये कि अमेरिकी हमलों के बीच आज ईरान में आयतुल्ला खामेनी को सुपुर्दे खाक किया जाएगा। चौथी खबर, इंडोनेशिया के सफल दौरे के बाद प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर है और उनका क्या क्या प्लान, हम आपको ये भी बताएंगे। अगली खबर ये भी है कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर के जांच कहां तक पहुंची है उसके बारे में जानकारी देंगे और ये भी बताएंगे कि आरोपियों से पुलिस ने कितने घंटों तक पूछताछ की। साथ ही आपको ये भी बताएंगे महाराष्ट्र से लेकर गुजरात तक आखिर कैसे बेकाबू मानसून ने कहर मचाया है। तो सबसे पहले बात करते हैं मिडिल ईस्ट में फिर से शुरू हुई जंग की। खाड़ी एक बार फिर जंग के मुहाने पर पहुंच गई है। तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बाद अमेरिकी सेनाओं ने एक बार फिर ईरान पर हमला शुरू कर दिया है। ईरान के कई शहरों द्वीपों पर अमेरिकी सेना ने ताबड़तोड़ स्ट्राइक की है। ईरान के बंदर अब्बास, सिरिक, चाबहार, कोनार्क, अबू मूसा द्वीप, जास द्वीप और बुशहर पर हमला किया गया है। ये देखिए, एक दो नहीं बल्कि 8-8 शहरों पर हमला। प्रेस टीवी के मुताबिक बंदर अब्बास में 8 धमाके सुने गए जबकि सिरिक इलाके में 3 धमाके हुए हैं। कोनार्क और चाबहार के पास 10 धमाके सुनाई दिए हैं। वहीं अबू मूसा द्वीप, जास का आइलैंड में भी 10 धमाके सुने गए हैं। और ईरानियन एजेंसीज के मुताबिक, जो ईरानियन मीडिया की रिपोर्ट है उसके मुताबिक, बुधवार को ईरान पर अमेरिकी हमले में 2 मछुआरों की मौत हुई थी और ईरान पर अमेरिकी हमले की नई तस्वीरें भी अब सामने आ रही हैं। और आपको बता दें, कल ही भारतीय समय अनुसार रात में ही अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था कि सीज फायर खत्म हो चुका है। पाकिस्तान MOU ईरान के साथ जो दस्तखत हुआ था वो अब खत्म हो चुका है और आज रात फिर से स्ट्राइक होगी। हमारे सहयोगी अशरफ वानी हमारे साथ जुड़े हुए। अशरफ, कल एक हमले का हमने ट्रेलर देखा था। ट्रंप कह रहे हैं कि अब लगता है ये युद्ध विराम खत्म हो चुका है और उसके बाद ये जो स्ट्राइक है वो बुशहर से लेकर के चाबहार कोई इलाका छोड़ा नहीं है। क्या ये नए युद्ध का आगाज है या सिर्फ दबाव की टैक्टिक्स की हम थोड़ा सा ट्रेलर दिखा रहे हैं लेकिन अभी पर्दे के पीछे चर्चा चलती रहेगी, क्योंकि जो भी इस कहते ना कि इसका जो जवाब होगा इस हमले का, ये दरअसल पूरे वैश्विक पटल को बदल के रख देगा।
1: बिल्कुल आशुतोष, हम युद्ध की शुरुआत तो नहीं कहेंगे क्योंकि ना ही अमेरिका और युद्ध चाहता है और ना ही ईरान चाहता है, लेकिन कहीं ना कहीं दबाव बनाने की बड़ी कोशिश। और इसका जो पूरी तरह से जो इसका आकलन दिया था वो कल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दिया था कि अब MOU उनके लिए कोई माने नहीं रखता है। और जाहिर है कि ये जो सिलसिला एक दूसरे पर हमलों का है ये आने वाले दिनों तक और भीषण हो सकता है, क्योंकि हमने कल देखा 80 जगहों पर अमेरिका की तरफ से ईरान के दक्षिणी इलाकों पर और द्वीपों पर हमले हुए थे। उसके जवाब में ईरानी सेना और IRGC का कहना था कि उन्होंने 85 जगहों पर 3 खाड़ी के देशों में जिनमें बहरीन, कुवैत और जॉर्डन शामिल था, वहां पर हमले किए हैं और अमरीकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। उसके बाद दूसरी धमकी जो ईरान की तरफ से आई वो ये आई कि अब जो है इसका दायरा बढ़ जाएगा और भी देशों को, जहां पर आकलन नहीं किया जाता है अमरीका या उसकी सहयोगी तरफ से, वहां पर हमले किए जाएंगे। दूसरी तरफ जो इसमें सबसे बड़ी बात सामने आ रही है वो ये है कि इसराइल जो है वो बहुत तेजी से तैयारी कर रहा है एक और हमले की ईरान पर। अगर इसराइल की तरफ से बड़ा हमला, जिसका अभी भी जो है अंदाजा लगाया जाता है करता है ईरान पर, क्योंकि अब तो उसके पास खुली छूट है, अब ईरान की तरफ से, अमेरिका की तरफ से इसराइल के हाथ बंधे हुए नहीं है, तो वो बहुत भीषण हो सकता है, वो बड़ी तबाही मचा सकता है ईरान में और कहीं ना कहीं उसके बाद जो है ये युद्ध दोबारा शुरू हो जाएगा। अभी तक कोशिशें चल रही है खासतौर से खाड़ी के देशों की तरफ से, क्योंकि सबसे ज्यादा खमियाजा इस युद्ध का अभी तक खाड़ी के सभी देशों ने झेला भी है, आर्थिक तौर पर भी और हमलों के लिहाज से भी। तो इस बीच अब ये देखना जरूरी है कि टर्की और सऊदी अरब कि क्या किसी हद तक अमेरिका को मना सकते हैं कि वो दोबारा बातचीत की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं।
0: दरअसल बातचीत की एक प्रक्रिया अशरफ हम देख चुके हैं दोहा में भी हुई थी, लेकिन उस दोहा की बातचीत के बाद भी कुछ हुआ नहीं। उसके बाद तीन हमले हो चुके हैं और ये तीसरा हमला हुआ। अगली बड़ी खबर यह है कि ईरान पर अमेरिकी सेना के हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर चाबहार में हमले के बाद उसकी आग की लपटों की तस्वीर साझा की है। उन्होंने तस्वीर साझा करते हुए लिखा है कि कल ईरान की ओर से जहाजों पर हमले करने का ये जवाब है। धमकी भरे अंदाज में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि ऐसी कार्रवाई अगर दोबारा हुई तो जवाब इससे भी कहीं अधिक गंभीर होगा। ये देखिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये ट्रूथ सोशल पोस्ट है, जिसमें चाबहार के हमले के बाद जब लपटे और धुएं का गुबार उठ रहा है ये तस्वीरें उन्होंने साझा की हैं। अंदाज बेहद धमकी भरा अशरफ, धमकी भरा अंदाज, हमले की तस्वीरें और जिस तरह अभी जो जानकारी आई है कि शहर दर्जहल बॉम्बिंग हुई है, राष्ट्रपति ट्रंप तो मंशा कहीं ऐसी दिखा नहीं रहे हैं कि वो अभी भी बातचीत चाहते हैं। धमकी भरा यह अंदाज और यह आक्रामकता तो इस बात का प्रतीक है कि लगता है कि वो अब हर मुमकिन हर परिस्थिति के लिए तैयार हो चुके हैं।
1: आशुतोष, अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बातचीत चाहते हैं लेकिन अपनी शर्तों के साथ, जिन शर्तों को ईरान बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं है, जबकि उल्टा ईरान ही अपनी शर्तों को, चाहे एमयू हो या बातचीत की प्रक्रिया हो, उनको मनवाने पर जो है बहुत ज्यादा जोर लगा रहा है। अभी भी अगर हम देखें तो ताजा विवाद स्टेट ऑफ हॉर्मुज से शुरू हुआ। स्टेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान की तरफ से जो तय रास्ते थे वो सिर्फ सभी समंद्री जहाजों को, वेसल्स को, तेल टैंकरों को उसी रास्ते से निकलने का जो आदेश दे रहा था, उसमें से जब अमेरिका ने ओमान के साथ मिलकर एक दूसरा रास्ता, पैरेलल रास्ता खड़ा करने की कोशिश की, वही रास्ता जो है कहीं ना कहीं इस एस्केलेशन का मुख्य वजह बना। और जैसे आपको पता है कि परसों तीन जहाजों पर हमले के बाद ही अमेरिका ने जो है स्ट्राइक्स की है, तो जाहिर है कि दबाव बनाने की ज्यादा कोशिश है, क्योंकि अभी भी ना ही अमेरिका और ना ही ईरान एक नए युद्ध में जा सकते हैं। हमने 100 दिन के दौरान जो भी युद्ध हुआ, 40 दिन के दौरान पहले शुरुआती दौर में किस अंदाज से तबाही और हाहाकार मचा, और इसका असर न सिर्फ दो देशों पर, अमेरिका और ईरान पर, बल्कि साथ ही साथ दुनिया पर साफ तौर से दिखाया। और वो
0: एक युद्ध सिर्फ एक इलाके का नहीं अशरफ, बल्कि पूरा एक वैश्विक संकट खड़ा कर देगा। बने रहे हमारे साथ। एक और बड़ी खबर यह है कि ईरान पर एक हमले के बाद अमेरिकी सेना के सेंट्रल कमांड ने बयान जारी किया है, पोस्ट जारी करके कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश पर अमेरिका ने हॉर्मुज में ईरान की क्षमता को और कम करने के लिए उस पर हमले शुरू कर दिए हैं। सेंट्रल कमांड ने बयान जारी करके कहा है कि ये हमले ईरान की सैन्य काबिलियत को कम की गई है ताकि वो हॉर्मुज को, जो फ्री नेविगेशन का दुनिया का अधिकार है, उसको प्रभावित ना कर सके, उसको बाधा ना पहुंचा सके, इसलिए कार्रवाई की गई है। संयुक्त राज्य अमेरिका महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग पर स्वतंत्र रूप से आवागमन कर रहे वाणिज्यिक जहाजों और नागरिक दल के खिलाफ हाल ही में किए गए अनुचित आक्रमण के लिए ईरान को जवाबदेह ठहरा रहा है। ये बयान सेंट्रल कमांड की ओर से आया है। सेंट्रल कमांड वो यूनिफाइड कमांड है जो लगातार खाड़ी के देशों में हर हमलों को अंजाम दे रही है, ईरान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही है और जो पूरे मिडल ईस्ट पर नजर बनाए हुए है। तो सेंटकॉम ने अब से 1.5 घंटे पहले ये पोस्ट करके जानकारी दी है कि हाँ, ये हमले हुए हैं, राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश के बाद हुए हैं, ईरान की सैन्य क्षमताओं को निशाना बनाया गया है और इसलिए बनाया गया है कि वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज में दोबारा जो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन है उसको प्रभावित न कर सके। लेकिन क्या ये यहीं रुक जाएगा? तो राष्ट्रपति ट्रंप के आदेशों के बाद अब जो कुछ तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, तो सेंट्रल कमांड का वो बयान भी हम आपको दिखाते हैं जो पोस्ट किया गया है। ये वो पोस्ट है जिसमें लिखा है, राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश पर अमेरिका ने हॉर्मुज में ईरान की क्षमता को और कम करने के लिए फिर से हमले शुरू कर दिए हैं। अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय जल मार्ग पर स्वतंत्र रूप से आवागमन कर रहे जहाजों और नागरिक दल के खिलाफ हाल ही में किए गए हमलों के जवाब में ईरान को जिम्मेदार ठहरा रहा है, जवाबदेह ठहरा रहा है और उसी के बदले ये कार्रवाई की गई है। तो एक तरफ आप उन हमलों की तस्वीरें देख रहे हैं, दूसरी तरफ सेंट्रल कमांड का वो बयान। और अगली खबर दरअसल ये है कि अंकारा में नाटो शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को लेकर बड़ा दावा भी किया है। तो एक तरफ जहां हमले हो रहे हैं वहीं ट्रंप जवाब लगातार दे रहे हैं। ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान का सबसे बड़ा निशाना है और वो ईरान की किल लिस्ट में नंबर एक पर हैं। ट्रंप ने कहा कि हम वहां जो बड़े दिग्गज हैं, खतरनाक, अगर उनको निपटाएंगे, तो उसी के साथ साथ ये कहा कि उनका नंबर वन एनिमी तो मैं भी हूं, लेकिन ईरान में कहां कहां हमले हुए आपको ये भी दिखा देते हैं। ये वो इलाके हैं जो मार्क किए गए जहां पर ईरान की नौसैनिक, और इनमें खास बात अगर आप देखेंगे कि ये सारे शहर दरअसल वो इलाके हैं जो ईरान की कोस्टल लाइन पे हैं, या तो उसकी ताकत है या फिर उसकी कोस्टल लाइन पर है, ताकि वहां पर उसकी जो नौसेना है, उन्होंने पहले ही कहा कि हमने तो उनके 135 जहाज डुबा दी, तो कहां कहां हमले हुए, बंदर अब्बास सबसे क्रिटिकल पोर्ट, उसका ऊर्जा का संसाधन यहां से है, बंदर अब्बास से लोडेड शिप जो है वो क्रूड ऑयल लेकर के दुनिया भर में जाती है। इसी के साथ जास्का आइलैंड भी ईरान की एनर्जी की रीढ़ की हड्डी है, कमर की हड्डी है, उस पर हमला किया गया। उसी के साथ चाबहार पोर्ट अगर आपको याद हो, वो जगह जहां भारत का अपना भी इंटरेस्ट था, भारत भी इस पोर्ट को विकसित कर रहा था, लेकिन उसके बाद जब सैंक्शन प्रतिबंध अमेरिका ने लगा दिया तो भारत ने हाथ यहां से खींच लिया। उसके बाद कोणार्क, अब कोणार्क के साथ साथ ये जो चाबहार है, ये दोनों बेहद नजदीक है। अब कोणार्क के पास दरअसल उसकी नेवल फ्लीट थी, उसकी सबमरीन भी थी। अगर आपको 28 फरवरी को तारीख याद हो तो मार्च के पहले सप्ताह में जो हमले हुए थे, सबसे ज्यादा नुकसान कोणार्क और चाबहार के पास हुए थे। इसी के साथ अब आते हैं पश्चिम में, अबू मूसा द्वीप, स्ट्रेटेजिक आइलैंड माना जाता है ईरान का, जहां से वो पूरे हॉर्मुज, अब ये इलाका अगर आप देखें ये हॉर्मुज है, लेकिन इसके आगे जैसे आप जाते हैं तो यहां पर यूएई और फिर ऊपर इस इलाके पर नियंत्रण के लिए अबू मूसा द्वीप पर उसका बड़ा नौसैनिक अड्डा है। उसी के साथ बुशहर और सिरिक, ये उसके दो शहर हैं, लेकिन ये भी तटीय शहर हैं। तो इन हमलों के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने जब ईरान को लेकर के डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा दावा भी किया कि ईरान की किल लिस्ट में मैं नंबर वन हूं। दरअसल अंकारा में नाटो की समिट चल रही थी, उस नाटो की समिट में जब ये जवाब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुझे इसकी परवाह नहीं है, अगर हम उनके हमारी किल लिस्ट में उनके बड़े वो चेहरे हैं तो ईरान का नंबर वन दुश्मन मैं हूं, उनकी नंबर वन किल लिस्ट में मैं हूं। और उन्होंने कहा कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होने देंगे। अशरफ वानी हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। अशरफ, हम जो नक्शे पर ज्यादातर शहर देख रहे हैं, ये वो शहर हैं जो बिल्कुल तटीय इलाके हैं, कहीं पर ईरान की ऊर्जा की ताकत है, उसका एनर्जी पावर सेंटर है, तो कहीं वो जगह हैं जहां पर उसके स्ट्रेटेजिक आइलैंड है, स्ट्रेटेजिक ठिकाने जहां से वो मिलिट्री ऑपरेशंस करता है। ट्रंप कह रहे हैं कि किल लिस्ट में मैं नंबर वन हूं, लेकिन हमले तो ईरान पर हो रहे हैं। अब कई सारे ऐसे सवाल हैं कि आखिर क्या खाड़ी के देश में जो इतने दिनों की शांति वार्ता सब कुछ हुई है वो सब बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, अशरफ वानी का रुख हम दोबारा कर लेंगे। फिर आपको बता दें कि राष्ट्रपति ट्रंप ने अंकारा में नाटो समिट के दौरान ये कहा कि मुझे परवाह नहीं है कि मैं ईरान की नंबर वन की लिस्ट में हूं, लेकिन ईरान को न्यूक्लियर पावर नहीं बनने देंगे और इसके लिए जो करना होगा वो करेंगे। उन्होंने कहा कि जो भी होगा वो बहुत जल्दी खत्म होगा। जहां एक तरफ अमेरिका ने ईरान पर फिर हमला बोला, वहीं दूसरी तरफ शोक और गम पूरा ईरान डूबा नजर आ रहा है। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनी की अंतिम विदाई की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, उन्हें आज सुपुर्दे खाक किया जाएगा। आयतुल्लाह अली खामेनी को उनके गृहनगर मशहद में इमाम रजा दरगाह में सुपुर्दे खाक किया जा रहा है। इसके साथ ही तेहरान और अन्य शिया केंद्रों में 4 जुलाई से चल रहे उनके सप्ताह भर के भव्य अंतिम संस्कार का समापन हो जाएगा। भारी लम्हे पर न सिर्फ ईरान बल्कि इराक तक ने गहरा शोक व्यक्त किया है। सड़कों पर लाखों लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है और पूरे पश्चिम एशिया में माहौल तनावपूर्ण है, गमगीन है। खामेनी की मौत 3 महीने पहले 28 फरवरी को अमेरिका के हमले में हुई थी, जिसके बाद 4 जुलाई से ईरान में खामेनी को अंतिम विदाई दी जा रही है। और तस्वीरें ईरानी मीडिया की रिपोर्ट्स की माने तो इस आखिरी विदाई में कई बार ऐसे लम्हे आए जिसमें लाख दो लाख नहीं बल्कि कई मिलियन लोग शामिल हुए, जो संभवतः दुनिया का सबसे बड़ा वो जनाजा था जो आखिरी विदाई थी जो इससे पहले कभी नहीं देखी थी। तो गृहनगर जो उनका मशहद उनका अपना शहर है, वहां अली खामेनी सुपुर्दे खाक किए जाएंगे। और अब आखिरी विदाई का वो लम्हा है, ये देखिए स्पेशल जो उनकी IRGC की टीम के साथ साथ तमाम वो व्यवस्थाएं हैं जो खामेनी को आखिरी विदाई के लिए, और सड़कों पर हद लाखों की भीड़ उन्हें विदाई दे रही। चलिए रुक करेंगे अगली खबर का और बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी के ऑस्ट्रेलिया दौरे की। इंडोनेशिया के दौरे के बाद प्रधानमंत्री मोदी मेलबर्न पहुंच गए हैं, जहां ऑस्ट्रेलिया सरकार के अधिकारियों ने पीएम मोदी का स्वागत किया, उन्हें औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के दौरान ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के साथ तीसरे वार्षिक शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता करेंगे। दोनों नेताओं के बीच रक्षा और सुरक्षा, व्यापार, निवेश, शिक्षा, कौशल, छात्र गतिशीलता तथा दोनों देशों के लोगों के बीच संबंधों को मजबूत करने सहित कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। भारत ऑस्ट्रेलिया CEO फोरम को भी वो संबोधित करेंगे और कार्यक्रम में दोनों देशों के प्रमुख उद्योग जगत के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। ये वो तस्वीरें हैं जब प्रधानमंत्री मोदी मेलबर्न पहुंचे, गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। कई बड़े अधिकारी प्रधानमंत्री के स्वागत में रहे और उसी के साथ नजर अब होगी मुलाकातों के दौर पर, जिसमें गवर्नर सीईओ फोरम में प्रधानमंत्री हिस्सा लेंगे, भारतीय समुदाय को भी वहां पर संबोधित करेंगे, सीईसीए समझौते पर भी बातचीत आगे बढ़ने की उम्मीद है और इसी के साथ साथ डिफेंस और ट्रेड डील पर भी ऑस्ट्रेलिया और भारत के रिश्तों में बेहतरी लाने की कोशिश होगी। और सबसे ज्यादा जरूरी है क्वाड सहयोग को नई मजबूती मिले ताकि एशिया पैसिफिक इलाके में भारत वर्ल्ड पावर का हिस्सा बन सके। व्यापार, क्लीन एनर्जी, इंडो पैसिफिक इलाके में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा और ऐसे में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि क्वाड डायलॉग्स को लेकर के आखिर कहां तक प्रगति पहुंचती है। सीएसीए समझौते पर भी बातचीत होगी और उससे भी महत्वपूर्ण है ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच डिफेंस रक्षा सहयोग भी आगे बढ़े। साथ ही प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ प्रधानमंत्री मोदी की द्विपक्षीय वार्ता होगी और बायलैटरल टॉक्स बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं और साथ ही ऑस्ट्रेलिया के गवर्नर जनरल से भी मुलाकात होगी। इन मुलाकातों के साथ भारत ऑस्ट्रेलिया का सीईओ फोरम भी मेलबर्न में आयोजित किया गया है, उसमें भी प्रधानमंत्री हिस्सा लेंगे, भारत का विजन देंगे कि क्यों मेक इन इंडिया और इन्वेस्टमेंट के लिए ये सही मौका है भारत और भारत क्यों वो सही जगह है। उसी के साथ भारतीय समुदाय के लोगों को भी प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। तो बुलेटिन में तीसरी बड़ी खबर है राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में यूपी पुलिस और एसआईटी की जांच को लेकर कि जांच तो तेज हो गई है। गिरफ्तार 8 आरोपियों में से 3 को पुलिस ने रिमांड में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। आरोपी करुणेश पांडे, लवकुश मिश्रा, अनुकल्प मिश्रा से पुलिस कस्टडी रिमांड के दौरान पूछताछ की जा रही है। कोर्ट ने तीनों को 40 घंटे के पुलिस कस्टडी रिमांड मंजूर की है। पूछताछ में चोरी की गई रकम, उसके बंटवारे, वारदात से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में भी सवाल किए गए। अब माना जा रहा है कि आरोपियों की निशानदेही पर रात तक मामले से जुड़ी अहम बरामद भी हो सकती है। चढ़ावा चोरी मामले में पुलिस की जो जांच तेज हुई है उसमें अनुकल्प, लवकुश, करुणेश से लगातार पूछताछ हो रही है। इन पूछताछ में मोडस ऑपरेंडी, षड्यंत्र कैसे किया गया, बरामद चीजें कहां पर हैं, कितना पैसा गायब हुआ, पैसे कहां रखे गए, उनका कहां इस्तेमाल हुआ, हर वो सवाल जवाब किया जा रहा है। लेकिन 40 घंटे की पुलिस कस्टडी जब खत्म हो जाएगी तो पुलिस क्या दोबारा रिमांड लेने की कोशिश करेगी या जांच की दिशा क्या होगी, यहां से आगे तय किया जाएगा। उसी के साथ अब अगली खबर यह है कि हिंदू धर्म में अयोध्या को मोक्षदायिनी सप्तपुरियों में से एक माना गया है। उसी अयोध्या में ट्रस्ट के बड़े चेहरों के बाद बैंक के लोग भी अब सवालों के घेरे में हैं। सवाल यह है कि क्या चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राय जैसे चेहरों पर कार्रवाई से पहले माहौल भापा जा रहा है?
2: क्या अनिल मिश्रा पर चढ़ावा चोरी कांड के सबसे बड़े चेहरे के तौर पर एफआईआर दर्ज होगी?
3: अनिल मिश्रा दोषी है आपको लगता है?
4: दोषी है कि नहीं ये एसआईटी निश्चित करेगी, ये मुझे नहीं बतलाना है। एसआईटी जिसको दोषी करार करेगी वो दोषी है।
2: क्या एसआईटी की रिपोर्ट देखकर चंपत राय ने भी अनिल मिश्रा को जिम्मेदार माना है?
5: अनिल मिश्रा को किस तरीके से देखते हैं आप? बहुत आरोप लग रहे हैं, जो मुख्यमंत्री ने बनाई है एसआईटी उसमें ही अब आ गया है सब कुछ सामने।
6: उसमें आ गया तो सब सदर तैयार हो गए, उसमें शासन से दंड दिया जाएगा, हमारे सदस्य लोग तैयार है।
2: क्या चंपत राय के इस्तीफे के बाद उनके रोल को लेकर आगे जांच कुछ भी नहीं होने वाली है?
4: उन्होंने इसके लिए अपना पूरा जीवन समर्पण किया है, उनके निर्दोष होने का हम लोगों को विश्वास है।
2: क्या गोपाल राव को ट्रस्ट से बाहर निकाले जाने के बावजूद वो हट नहीं रहे?
7: नहीं, किसी को बाहर नहीं किया है। नहीं नहीं, गलत है, गलत संदेश है, गलत
8: तरीके से आप
9: मंदिर में हम
7: रहेंगे, हाँ रहेंगे,
9: रहेंगे।
2: तो क्या केवल मुद्दे की गर्माहट देखकर बड़े चेहरों पर फैसला राम मंदिर चढ़ावा विवाद में हो रहा है? इस सवाल की वजह समझिए। चंपत राय ने इस्तीफा दिया, एसआईटी के अंतरिम जांच रिपोर्ट में उनका कहीं कोई नाम नहीं, ट्रस्ट वाले सभी सदस्य चंपत राय को क्लीन चिट देते हैं। चंपत राय खुद कहते हैं एसआईटी की पूरी जांच रिपोर्ट आने के बाद वो बोलेंगे क्योंकि वो निर्दोष है। गोपाल राव जांच के दायरे में रहे, इन पर अयोध्या के संत और ट्रस्ट के कई सदस्य अपनी नाराजगी जताकर कहते आए कि सब कुछ गोपाल राव का किया धरा है, जांच रिपोर्ट में इनका भी कोई नाम नहीं, ट्रस्ट से हटाया गया, लेकिन गोपाल राव कहते हैं नहीं, कोई बाहर नहीं हुआ। तीसरा बड़ा नाम डॉक्टर अनिल मिश्रा का, नैतिकता के नाम पर इन्होंने भी इस्तीफा दिया, एसआईटी की जांच में इन्हें बड़ा लापरवाह और चढ़ावा चोरी गबन कराने के हालात पैदा करने वाला जिम्मेदार शख्स बताया गया। चंपत राय तक अनिल मिश्रा पर एक बयान में सवाल उठा चुके हैं। बस सवाल है कि क्या केवल अनिल मिश्रा पर आगे FIR हो सकती है या फिर आगे इन्हें भी बचा लिया जाएगा।
9: जो प्रमाण मिले केवल 6 लोग इसमें चोरी करते हुए पाए गए, कुल 6 लोग, 2 लोग उसमें साजिश का पार्ट थे, यानी कुल 8 लोग। SIT ने अपनी सिफारिश ट्रस्ट को भेज दी, ट्रस्ट ने उसके अनुसार FIR दर्ज करवाई, कार्रवाई हो गई।
2: कार्रवाई जारी है ये सच है। जैसे बुधवार को ही देखिए, 3 आरोपियों अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, करुणेश पांडे को रिमांड में लेकर पुलिस उस जगह पहुंचती है जहां दावा होता है कि ये लोग चढ़ावा चुराने के बाद आकर बंदरबाट करते थे।
3: ये वो जगह है जहां पर बंदरबाट हुआ करता था और आरोपी जो पैसा गणना लेते थे करते थे, उसके बाद जो चुराया हुआ पैसा होता था उसको वहीं पर बांट लिया जाता था।
2: 6 आरोपी पैसा चुराते थे, 2 आरोपी साजिश रचते थे, लेकिन इनको काम पर रखवाने के आरोप जिन चंपत राय और अनिल मिश्रा पर लगते हैं वो क्या करते थे? जिन अनिल मिश्रा के नाम पर सीधे SIT रिपोर्ट में लिखा गया कि अनिल मिश्रा की वजह से चोरी और गबन के हालात बने, क्या केवल उनके खिलाफ FIR दर्ज आगे होगी या फिर चंपत राय और गोपाल राव की तरह वो भी बचे रहेंगे? सवाल है कि क्या अनिल मिश्रा, चंपत राय और गोपाल राव ऐसे धुरंधर हैं जिनके खिलाफ जांच आगे या तो सुस्त हो जाएगी या फिर इन तक आगे पहुंचेगी ही नहीं? सवाल की वजह कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी और चंपत राय के बीच बुधवार को अयोध्या में 2 घंटे चली बैठक है जहां बाहर आकर कोई कुछ नहीं बताता, लेकिन सवाल आता है क्या इस मुलाकात का रिश्ता मंगलवार को आई चंपत राय की चिट्ठी से है जिसमें वो कहते हैं कि पूरी जांच होने के बाद खुलकर हर आरोप पर बोलेंगे। क्या चंपत राय कुछ और लोगों का नाम ले सकते हैं? जैसे SIT के अंतरिम रिपोर्ट को लेकर चंपत राय का मंगलवार का जो जवाब आया उसके मुताबिक चंपत राय ने अनिल मिश्रा पर गंभीर आरोप लगाए, अनिल मिश्रा पर सवाल उठाया, कहा कि 6 फरवरी 2025 को ट्रस्ट और SBI के बीच जो MOU साइन हुआ जिसमें अनिल मिश्रा के ट्रस्ट की तरफ से दस्तखत हैं और जिस MOU में चढ़ावे की गिनती को लेकर नियमों को शिथिल किया गया था, उसको लेकर चंपत राय का कहना है कि उनकी जानकारी के बिना ये MOU बैंक से किया गया। यानी चंपत राय का ये जवाब बताता है कि वो नहीं लेकिन दूसरे लोग जिम्मेदार हैं। अब इसी तरह देखिए ट्रस्ट की बैठक के बाद जो प्रेस नोट जारी हुआ था सोमवार को, इसमें साफ साफ लिखा गया कि ट्रस्ट ने गोपाल नगर कोटे को ट्रस्ट के विशेष आमंत्रित सदस्य सूची से हटाने का फैसला किया, लेकिन फिर बुधवार को कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी से मिलकर निकले गोपाल राव कहते हैं कि वो कहीं बाहर नहीं हुए।
7: नहीं, किसी को बाहर नहीं किया है। नहीं नहीं, गलत है, गलत संदेश है, गलत।
2: इसीलिए ये सवाल आता है क्या चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव पर कार्रवाई से बचने की कोशिश हो रही है? क्या इसकी वजह ये कि चंपत राय का गुट डट कर खड़ा हो गया है जिन्हें लगता है कि भले उनसे लापरवाही हुई लेकिन चोरी उन्होंने नहीं की, तो क्या इससे चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव बच जाएंगे? समर्थ श्रीवास्तव, अयोध्या आज तक।
0: अब सोचिए जरा, जिस ट्रस्ट के लोगों पर ही ट्रस्ट डेफिसिट का मामला आया कि यहीं पर गड़बड़ी हुई, SIT रिपोर्ट ही उस ट्रस्ट को सौंपती है, सोचिए जांच कैसी होगी, किस दिशा में होगी। दावा है कि चंपत राय ने चढ़ावा चोरी 5 जून को पकड़ ली थी, पुलिस के पास जाकर सीधे FIR कराने की जगह खुद ही जांच अधिकारी बनकर जांच करने लगे। दावा यह भी है कि फर्जी रसीद पर श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का लोगो छपवाया गया, ये रसीद हूबहू असली रसीद जैसी दिखाई देती थी जिससे श्रद्धालुओं को धोखे का पता चलता ही नहीं था। बाद में जब ऑनलाइन रसीद व्यवस्था लागू हो गई तो ये लोग फर्जी रसीद देना बंद कर चुके थे, आगे अब चढ़ावा भी कोई चुरा ना सके, लेकिन ट्रस्ट का ट्रस्ट वापस लौटे इसलिए कुछ फैसले जरूर लिए गए हैं।

0: गलती किसकी थी, दोषी कौन, जिम्मेदारी किसकी, लापरवाह कौन कि राम के धाम में चोरी का कलंक लग गया। ट्रस्ट कहता है कि 6 जुलाई की बैठक के बाद व्यवस्था में तेजी से सुधार किया जा रहा है। कृष्ण मोहन अंतरिम महासचिव बन गए। अब बैंक खातों का संचालन कृष्ण मोहन, जगदीश और चंदन राय के संयुक्त हस्ताक्षर से होगा। जहां दान की गिनती होगी वहां 43 लोग रहेंगे। 13 एक्स्ट्रा सीसीटीवी कैमरे लग गए। दान पेटी को कक्ष तक पहुंचाने के लिए 27 निजी सुरक्षा कर्मी रखे गए। दान पेटियों के पास अतिरिक्त पुलिस कर्मी तैनात कर दिए गए। बाकी आगे का काम संभालने के लिए ट्रस्ट ने सीईओ की तलाश तेज कर दी है। इसके लिए सर्च कमेटी बन चुकी है। सीईओ आते ही सारा मामला पटरी पर आ जाएगा, वरना सरकार से लेकर अदालत तक तमाम रास्ते खुले हुए हैं।
1: रुक रहे ब्रेक के लिए, खबरें जारी है, आप देखते रहिए आज तक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से।
3: बृहस्पति की कौन सी राशि सेना और साहस की राशि मानी जाती है? बृहस्पति के कौन सी राशि के लोग बड़े ज्ञानी और बहुत शानदार व्यक्तित्व वाले होते हैं? क्या है बृहस्पति की राशियों की विशेषता और क्या है जीवन को बेहतर बनाने के उपाय? जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्य चक्र में।
4: From the biggest names in sports talk to the biggest moments in sports, this is NBC Sports Radio. Get your daily football fix with Mike Florio. Spend your mornings with Dan Patrick and the Danettes, and dive deep with Dan Le Batard. Live, unfiltered, and always on Monday through Friday. Then when the games are on, we've got you covered with live events from NBC Sports. Search NBC Sports Radio or tell your device to play NBC Sports Radio on TuneIn to listen.
5: आज तक ला रहा है वीडियो वाला पेपर हर सुबह आपके मोबाइल में, और वो भी आपके पुराने न्यूज़पेपर से पहले। पढ़ने के लिए अपने डिवाइस पर टाइप करें epaper.aajtak.in या स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को अभी स्कैन करें।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।

0: इथेनॉल से नुकसान हो रहा है सर गाड़ियों।
1: मारुति सुजुकी के पास एक भी कंप्लेंट नहीं है, टोयोटो के पास एक भी कंप्लेंट नहीं है। मुझे बदनाम करने के लिए और इथेनॉल को बदनाम करने के लिए प्रयास है।
0: नए नए एक्सप्रेस वे जो बन रहे हैं उनमें गड्ढे,
1: ये हमारे हाईवे में जितने गड्ढे हैं उसके ऊपर आप कार्यक्रम करिए और दिखा दीजिए।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसें।

ट्रंप की धमकी के बाद हमलों से दहला ईरान। कई शहरों पर अमेरिकी सेना के एयर स्ट्राइक। बंदर अब्बास में तेज धमाके। ट्रंप ने कहा दोबारा हमला हुआ तो देंगे गंभीर जवाब। नाटो समिट के बाद ईरान को लेकर ट्रंप का बड़ा दावा। ईरान की किल लिस्ट में मैं नंबर वन। कहा जो होगा बहुत जल्द खत्म होगा। ईरान का पलटवार। अभद्रता का जवाब कार्रवाई से देते हैं। ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी। पीएम एंथनी अल्बनीज के साथ द्विपक्षीय वार्ता। सीईओ फोरम में लेंगे हिस्सा। भारतीय समुदाय के लोगों को करेंगे संबोधित। योगी ने फिर बोला अखिलेश पर धावा। कहा इन्हें न राम न कृष्ण में आस्था। परिवारवाद वंशवाद के नाम पर समाज में फैलाई नफरत। 10 जुलाई को अयोध्या जाएंगे सीएम। महाराष्ट्र गुजरात में बेकाबू मानसून। रायगढ़ के सैलाब में बह गए हजारों सिलेंडर। सूरत के रिहायशी इलाकों में घुसा पानी। दिल्ली के रोहिणी में भी गिरी इमारत। एक की मौत।

0: एशिया एक बार फिर तनाव के मुहाने पर पहुंच गया है। आप देख रहे हैं आज तक आपके साथ, मैं हूं आशुतोष मिश्रा। बड़ी खबर इस वक्त की कि मिडिल ईस्ट में फिर से जंग की आहट दिखने लगी है, शुरुआत फिर हो गई है। ये वो तमाम जगह हैं जहां पर अमेरिका ने एयर स्ट्राइक की है। बड़ी खबर ये कि ईरान के कई शहरों में अमेरिका ने हमले किए हैं, ईरान पर फिर बड़ा हमला किया है। बीती रात ही भारतीय समयानुसार राष्ट्रपति ट्रंप ने अंकारा में यह कहा था कि अब ईरान पर हमले किए जाएंगे। इसके पहले यानी 24 घंटे में अगर आप देखेंगे तो दो बार ऐसे हमले हो चुके हैं और फिर सेंट्रल कमांड ने यह जानकारी दी है कि हाँ ये हमले किए गए हैं। कहां कहां हमले हम आपको भी बताएंगे। कोनार चाबहार में धमाकों की आवाज सुनी गई, बंदर अब्बास में धमाकों की आवाज सुनी गई, यानी ईरान के हर उस तटीय इलाकों में, रबी मूसा, जास्क आइलैंड, हर उन जगहों पर अमेरिका ने हमला किया है। ये हमले जवाबी कार्रवाई है ईरान के खिलाफ। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में 3 वाणिज्य जो कमर्शियल शिप थे उस पर हमले किए गए थे। ईरान ने कहा यहां हमारा नियंत्रण है। कहां कहां हमले किए हम आपको ये बता देते हैं। बंदर अब्बास, कोनारक, चाबहार, जास्क आइलैंड, अबू मूसा द्वीप, बुशहर सिरिक, यानी नक्शे पर अगर आप देखें तो ये ईरान का नक्शा है। यहां से ये जो खाड़ी का इलाका शुरू होता है, ये यूएई, इसके आगे मिडिल ईस्ट के तमाम सारे देश, ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, यानी यहां से गुजरने वाले, इसके आगे यहां पर आप आते हैं तो ओमान की शुरुआत। तो कहां पर हमले, सबसे पहले बंदर अब्बास। बंदर अब्बास जो कि ईरान के सबसे बड़ी न सिर्फ सैन्य ताकत है बल्कि इसी के साथ उसका एनर्जी स्टोरेज भी है। यहां से शिप कार्गो जो लोड होते हैं वो दुनिया भर को ऊर्जा चाहते हैं। उसी के साथ साथ कोनारक में हमले किए गए। कोनारक के साथ चाबहार, ये दोनों वो इलाके हैं जहां पर उसका मरीन बेस है और यहीं पर उसके सबसे ज्यादा शिप थे, वॉरशिप थे, जिनको नुकसान पहुंचा गया। जास्क आइलैंड स्ट्रेटेजिक रूप से ईरान की सबसे बड़ी ताकत है। जास्क आइलैंड, अबू मूसा द्वीप, सिरिक, बुशहर, जहां से वो कई सारे न सिर्फ अपनी कमर्शियल एक्टिविटीज को अंजाम देता बल्कि हमलों को भी अंजाम देता है। दूसरी बड़ी खबर यह है कि ईरान पर अमेरिकी सेना के हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर चाबहार में हमले के बाद उठती आग की लपटों की तस्वीरें भी साझा की हैं। चेतावनी के साथ धमकी भरे अंदाज में उन्होंने जब यह तस्वीर शेयर की तो ये लिखा है कि ये कल ईरान की ओर से जहाजों पर किए गए हमले का जवाब है। धमकी भरे अंदाज में राष्ट्रपति ट्रंप ने आगे लिखा कि ऐसी कार्यवाही अगर दोबारा हुई तो जवाब इससे भी कहीं अधिक गंभीर होगा। ये देखिए ट्रूथ सोशल की वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अगली बड़ी खबर यह है कि ईरान पर एक बार फिर हमले के बाद अमेरिकी सेना के सेंट्रल कमांड ने बयान जारी किया है, पोस्ट करके कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश के बाद अमेरिका ने हॉर्मुज में ईरान की क्षमता को कम करने के लिए उस पर फिर से हमले शुरू कर दिए हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग पर स्वतंत्र रूप से आवागमन कर रहे कमर्शियल जहाजों, नागरिक दल के खिलाफ हमलों को अनुचित ठहराता है। इसके लिए ईरान को जवाबदेह ठहरा रहा है। तो हमले कहां कहां हुए हैं वो इलाके भी हम आपको दिखा रहे हैं, ताजा जानकारी भी दे रहे हैं। अशरफ वानी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अशरफ, हॉर्मुज में जो ईरान की कार्रवाई थी उसके बदले में कार्रवाई अब अमेरिका ने की है, और उस कार्रवाई के बाद क्या यहां से एक नए एस्केलेशन लैडर पर एक स्टेप आगे बढ़ रहा है खाड़ी का इलाका, या फिर सब कुछ बस एक चेतावनी मॉड्यूल के तहत है कि तुम जब अगर ऐसा कुछ करोगे हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन बातचीत जारी है?
1: नहीं, एस्केलेशन तो है आशुतोष, और इस हमले का, क्योंकि ये काफी भीषण हमले थे, कल से जो कल हमले हमने देखे थे वो सीमित थे दक्षिणी ईरान के उन तटीय इलाकों के जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, जो आप अभी दिखा रहे थे और बता रहे थे, लेकिन इस ये हमले कुछ आगे बढ़े हैं कल के हमलों के मुकाबले में। यहाँ तक कि जो उत्तरी ईरान है वहां पर गुलिस्तान प्रोविंस में ईरान की एजेंसी का कहना है कि एक रेलवे ब्रिज को भी निशाना बनाया गया है, वो ध्वस्त हुआ है, और साथ ही साथ रेलवे लाइन को भी। और ईरान से ये भी खबरें आ रही हैं कि कई इलाकों में बिजली संकट पैदा हो गया है, क्योंकि कुछ पावर हाउसेस को भी जो दक्षिणी ईरान है वहां पर निशाना बनाया गया है। उसका जो अनुमान है कल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही दिया था, लेकिन आप अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कभी नहीं जानते हैं, और इन हमलों के बाद उन्होंने अब ये भी एक फीलर डाल दिया है कि ईरान उनको डील के लिए जो है गुहार लगा रहा है, हाथ जोड़ रहा है, तो वो फिलहाल देखेंगे कि ईरान कितना सच्चा है। तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं ये दोनों हमले, चाहे कल का हमला हो या आज का हमला हो, प्रेशर बढ़ाने की एक टैक्टिक है अमेरिका की तरफ से, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, ताकि ईरान जो है एक तरह से डील पर आमादा हो, क्योंकि हमने देखा जब से MOU साइन हुआ है ईरान अपनी शर्तों और अपनी जिद पर कायम है। वो MOU के सभी पॉइंट्स के पालन को लेकर अमेरिका पर दबाव बना रहा है, चाहे वो लेबनान का फ्रंट हो, चाहे फिर वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज में उनके तय किए गए रास्ते हो। तो जो अमेरिका और अमेरिका के सहयोगी मानने के लिए तयार नहीं है, चाहे इसराइल हो या फिर खाड़ी के कुछ देश हो, यूएई और कुवैत और बहरीन, तो लेकिन अब जो है यहाँ पर क्योंकि अगर हम देखें तो अंतिम संस्कार हो रहा है, जिनाजा निकल रहा है, एक तरफ लेट सुप्रीम लीडर का जो कि इराक में है, आज करबला उनके पार्थिव शरीर को लिया जाएगा, वहां से फिर उनको दफनाने के लिए वापस ईरान लाना है, क्या वो रसूमात जो आखिरी रसूमात हैं सुप्रीम लीडर के, उसके बाद कोई बड़ी कार्रवाई ईरान की तरफ से पड़ोसी देशों पर या खाड़ी के देशों के साथ साथ इसराइल पे होगी, या फिर क्या अमेरिका के जहाजों को निशाना बनाया जाएगा तब या अभी बनाया जाएगा?
0: बहुत सारे सवाल अशरफ बिल्कुल इस बात की ओर भी इशारा कर रहे हैं कि क्या ईरान अगर आगे कार्रवाई करता है तो कार्रवाई क्या होगी, क्या एक बार फिर पश्चिम एशिया के साथ पूरी दुनिया मुश्किल में होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। रुक करते हैं अगली खबर का। मानसून ने दस्तक दे दी, मानसून देरी से आया लेकिन उस देरी के बाद भी देश का सिस्टम, सरकार, व्यवस्था बारिश के कहर से हमें, आपको, शहरों को, इस मुल्क को, इस अलग अलग राज्यों को बचाने का कोई इंतजाम नहीं कर पाए। यही वजह है शहर ड्रेनेज सिस्टम फेल हो रहे हैं, व्यवस्था फेल हो रही है, मानसून तबाही बनकर आधे हिंदुस्तान पर बरस रहा है, महाराष्ट्र से लेकर गुजरात तक, दिल्ली, पूरे एनसीआर तक, कैसे बारिश ने जिंदगी पर धावा बोल दिया है, देखिए रिपोर्ट।
2: आधे हिंदुस्तान में जल तांडव, लोग करने लगे त्राही त्राही। बारिश मूसलाधार, सिस्टम में भ्रष्टाचार, जिंदगी पर आफतकार। बारिश ने शहरों की दुर्गति बना दी, ड्रेनेज सिस्टम की पोल खोल दी। महाराष्ट्र से गुजरात तक बारिश का कहर, दिल्ली एनसीआर में मुश्किल डगर। जब तक सिस्टम में भ्रष्टाचार नहीं रुकेगा, मॉनसून का प्रहार जारी रहेगा। इस साल देश में मॉनसून अपनी टेढ़ी चाल चल रहा है, अब एक समान और धीमी बारिश के बजाय असंतुलित और अचानक मूसलाधार बारिश हो रही है जो लोगों पर कहर बनकर टूट रही है। लेकिन सवाल ये है कि अगर वक्त रहते इंतजाम पुख्ता कर लिए गए होते और विकास के नाम पर होने वाले भ्रष्टाचार के लीकेज को रोक लिया होता तो शायद शहर शहर मानसून में ऐसी दुर्गति न देखने को मिलती। आधुनिक विकास के नाम पर पक्की सड़कें और इमारतें तो तान दी गईं, लेकिन ड्रेनेज सिस्टम के नाम पर भ्रष्टाचार का खेल खुल्लम खुल्ला खेला गया। तभी तो महानगरों में थोड़ी सी बारिश भी भीषण रूप लेने लगती है। दिल्ली हो या मुंबई, पुणे हो या पालघर, सूरत हो या गुरुग्राम, विकास के नाम पर होने वाले दावे बारिश ने धो डाले हैं। पहले हम बात महाराष्ट्र की करेंगे क्योंकि इस वक्त देश में सबसे बड़ी त्रासदी यही राज्य झेल रहा है। आपको बता दें कि मुंबई और उससे सटे जिलों में एक हफ्ते की बारिश ने न सिर्फ सिस्टम के दावों को धो डाला है बल्कि जिस मुंबई में बारिश से बचने के लिए 25,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है वो साफ बताता है कि सिस्टम में भ्रष्टाचार का लीकेज इस दुर्गति के लिए जिम्मेदार है और इसकी जिम्मेदारी तो लेनी ही पड़ेगी। मानसून की बारिश में मुंबई के अंदर सड़कों और सब्वे का डूबना तो आम बात हो गई है।
3: अंधेरी सबे के बगल में ही एक नाला भी है जहां से पानी दरअसल निकलना चाहिए लेकिन निकलने की बजाय देखिए वही नाले से ही सारा पानी जो है वो अंधेरी सबे के अंदर जा रहा है और यही वजह है कि अंधेरी सबे इस वक्त जलमग्न हो चुका है।
2: लेकिन मुंबई की बारिश में कैसे पेड़ मौत बनकर टूट रहे हैं जरा इसके बारे में जान लीजिए। अंधेरी सबे के पास ऑफिस के लिए निकले एक शख्स पर ऐसा पेड़ कहर बनकर टूटा कि वो वहीं लहूलुहान होकर गिर पड़ता है।
4: दो लोग साथ में थे बट एक गले के ऊपर झाड़ गिरा तो उसको अभी हॉस्पिटल लेके गए।
3: ये है कौन, क्या नाम है?
4: से आ रहे आदेश गायकर नाम है।
2: आपको बता दें कि मुंबई में पेड़ कहर बनकर टूट रहे हैं। पिछले 6 दिनों में मानसून की बारिश से मुंबई में 1100 पेड़ गिर चुके हैं, जिसमें 4 की मौत और कई घायल हो गए हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में 500 से ज्यादा पेड़ गिर चुके हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि भारी बारिश के अलावा अंधाधुंध निर्माण, सड़कों के चौड़ीकरण और कंक्रीट के इस्तेमाल से पेड़ों की जड़ों को नुकसान पहुंचा है और किसी ने कमजोर पेड़ों की सुध नहीं ली, ऐसे में ये जानलेवा बन गए हैं।
5: आज जो मुंबई में हो रहा है, ये बीजेपी का भ्रष्टाचार, दलाली और पूरी मुंबई बिल्डरों के हाथ में देने का नतीजा है। उसके लिए देवेंद्र फडणवीस, मंगल रवात लोढ़ा, मुंबई बीजेपी का अध्यक्ष, ये सब जिम्मेदार है।
2: मानसून की बारिश से सबसे बुरा हाल मुंबई से सटे जिलों का है, जहां पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जी हां, पालघर जिले में पिछले 7 दिनों से बारिश हो रही है। हालात ऐसे हैं कि अब तक 10 लोगों की दर्दनाक मौत हो चुकी है। प्रशासन ने रेड अलर्ट जारी कर रखा है। पालघर के वसई में भारी बारिश के कारण एक बड़ा हादसा हो गया। यहां बाढ़ के तेज बहाव में बह रही 2 कारों से 3 लोगों को बचाया गया। वसई विरार के हालात आप देख सकते हैं, सड़कें डूबी हैं, मार्केट डूबी हैं और लोग सिस्टम को कोस रहे हैं।
6: इस वक्त मैं खड़ा हूँ वसई वेस्ट के मानिकपुर रोड पे। आप देख सकते हैं किस तालाब का स्वरूप इस रोड पे आ चुका है। ये जो बस है पीछे 2 दिन से पानी में बंद पड़ चुकी है।
7: पब्लिक परेशान है, आने जाने का दिक्कत है। मीरा रोड में जॉब करता हूँ, स्टेशन से जा रहा था, पर देख सकते हैं कितना पानी भरा है। क्या करें, मैं सोच रहा हूँ चल के जाओ या कैसे जाओ।
8: 3 दिन से हम काम पर नहीं जा रहे हैं।
2: और खासकर पालघर की बात करें तो यहाँ अंडरपास डूबे हैं। यहाँ के रमाई नगर अंडरपास में पानी भरने से 800 की आबादी वाले इलाके का संपर्क दुनिया से कट गया है। लोग आक्रोश में हैं।
9: यही एक रास्ता है जहाँ से MIDC में जाता है, वहाँ से ही उन लोग का मजदूरी मतलब कमाई होती है, तो वहाँ ये रास्ता ही बंद हो गया तो कहाँ से जाएंगे उन लोग।
10: हम लोग ना पूरा 4-4 दिन अब काम पे नहीं गए। हम लोग काम पे नहीं जाएगा तो हम लोग को कौन रखने वाला है उधर।
11: हम 4 दिन से बोल रहे हैं कि अधिकारी लोग कोई भी नहीं आ रहे।
2: पुणे में मूसलाधार बारिश के चलते शहर को पानी सप्लाई करने वाले खड़कवासला डैम से 27,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया तो बाह आ गई। यहां मुठा नदी उफान पर है और शहर का प्रसिद्ध भिडे ब्रिज पूरी तरह पानी में डूब गया है। और ये तस्वीरें पुणे के पिंपरी चिंचवड़ में मोशी इलाके की हैं, जहां वेस्ट टू एनर्जी प्लांट की इमारत का एक हिस्सा ढह गया है। हादसे में कई लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि लगातार हो रही बारिश की वजह से कचरे का बड़ा ढेर खिसक गया। यहां कचरे का ढेर करीब 30 मीटर दूर से खिसक कर इस इमारत पर गिर गया। ये लैंडस्लाइड जैसा ही हादसा है, जिसकी वजह से इमारत का एक हिस्सा पूरी तरह ढह गया और इसमें कई लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। बारिश की वजह से नासिक शहर में बहने वाली नंदिनी नदी में बाढ़ आ गई है। पानी का लेवल लगातार बढ़ रहा है। नासिक की नंदिनी नदी पर बने कई पुल बाढ़ के पानी में डूबे हैं। कई पुलों से बाढ़ का पानी ओवरफ्लो होने की वजह से ट्रैफिक पर असर पड़ा है। बारिश की वजह से नासिक में करीब 300 से ज्यादा छात्र आज परीक्षा नहीं दे पाए। अलग अलग कॉलेजों के स्टूडेंट्स हैं जो परीक्षा के लिए जा रहे थे। सुबह 10 बजे पेपर था, लेकिन बारिश की वजह से रास्ते में जमीन धंस गई। नासिक और त्र्यंबकेश्वर का संपर्क टूट गया और एग्जाम छूट गया।
12: 5 और 6 बस यहाँ पे हमारे रुकी हुई है पुल पे, और आज स्टूडेंट्स की एग्जाम है, हमारी यूनिवर्सिटी की एग्जाम है, तो वो कैसे मैनेज कर रहे हैं उसी का अभी चालू है।
0: तो मानसून की देरी से ही सही, लेकिन मौसम का मिजाज कहीं बिगड़ा हुआ है तो कहीं पर तापमान में गिरावट है। लेकिन इस बीच दिल्ली NCR के लिए मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। बारिश का रेड अलर्ट दिल्ली और हरियाणा के लिए, यानी दिल्ली NCR के साथ साथ हरियाणा के जो तमाम इलाके और इसी के साथ साथ उत्तराखंड में भी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड में कई जगहों पर स्कूल बंद कर दिए गए हैं, खासकर देहरादून, नैनीताल, उधम सिंह नगर, अल्मोड़ा, टिहरी में स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। और सुबह के लिए जो ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है उनमें तमाम ऐसे इलाके हैं जहां पर अलर्ट जारी किया गया है बारिश, और उसी के साथ साथ दिल्ली और हरियाणा के लिए भी रेड अलर्ट जारी किया गया है। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का और बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी की।

और एनर्जी क्राइसिस के दौर से गुजर रही है। ऐसे समय में भारत और ऑस्ट्रेलिया का नेचुरल और ट्रस्टेड पार्टनर के रूप में आगे बढ़ना स्वाभाविक भी है और आवश्यक भी है। बीते वर्षों में हमने दोनों देशों की क्षमताओं के साथ भावी साझेदारी का एक मजबूत फ्रेमवर्क तैयार किया है। साल 2022 में रिकॉर्ड समय में किए गए एक्टा समझौते से हमारी आर्थिक साझेदारी और सशक्त हुई है। इसके लागू होने के बाद भारत से ऑस्ट्रेलिया को एक्सपोर्ट डबल हुआ है और दोनों देशों के बिजनेसेस को नए मार्केट एक्सेस इसका लाभ मिला है। लेकिन हम यही नहीं रुके रहे, अब हम व्यापक सीका समझौता करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इन प्रयासों से दोनों देशों की सरकारों ने एक नया रनवे तैयार किया है। अब इस पर इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन का विमान उड़ान भरने के लिए तैयार है और आप सभी को इसे नई ऊंचाई पर ले जाना है। फ्रेंड्स, यहां क्लीन एनर्जी से जुड़ी कई कंपनियां उपस्थित है। हम भारत में हाइड्रो प्रोजेक्ट्स, ग्रीन हाइड्रोजन, सोलर मॉड्यूल्स और विंड मिल्स के लिए मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम तैयार कर रहे हैं। भारत ने 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी और 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य रखा है। ऑस्ट्रेलिया के टेक्नोलॉजी, कैपिटल और रिसोर्सेस इस ट्रांजिशन को गति दे सकते हैं। कुछ महीनों पहले भारत ने शांति एक्ट से न्यूक्लियर सेक्टर को प्राइवेट कंपनीज के लिए खोल दिया। हमने 2047 तक 100 गीगावाट न्यूक्लियर एनर्जी का लक्ष्य रखा है। ऑस्ट्रेलिया के विशाल यूरेनियम रिजर्व्स भारत की न्यूक्लियर यात्रा से सीधे रूप से जुड़ते हैं। हमारे लिए इस क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटीज हैं। भारत में पोर्ट, एयरपोर्ट, रोड, रेलवे और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में ऑस्ट्रेलिया के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए अनेक अनेक संभावनाएं हैं। आज भारत में नेशनल हाईवेज लगभग 34 किलोमीटर प्रतिदिन की गति से बन रहे हैं। हर दिन 8 किलोमीटर से अधिक रेलवे ट्रैक्स लगाए जा रहे हैं। यह स्केल, स्पीड और स्टेबिलिटी तीनों का संगम है। स्टील सेक्टर में हम पहले से मजबूत सहयोगी रहे हैं। भारत आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा क्रूड स्टील प्रोड्यूसर है। हम मिलकर लो कार्बन एल्यूमिनियम, ग्रीन आयरन और क्लीन मैन्युफैक्चरिंग पर काम कर सकते हैं। एआई मिशन, क्वांटम मिशन और सेमीकंडक्टर प्रोग्राम के अंतर्गत

0: भारत सरकार ने 10 बिलियन डॉलर से ज्यादा का सपोर्ट दिया है। हम डेटा सेंटर, एआई, क्वांटम, सेमीकंडक्टर और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में मिलकर ग्लोबल सॉल्यूशंस तैयार कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया के पेंशन फंड्स आज 4 ट्रिलियन डॉलर से अधिक एसेट्स मैनेज करते हैं। भारत में पेंशन की बचत को एक पवित्र अमानत माना जाता है। हम इसे केवल कैपिटल नहीं, करोड़ों करोड़ों परिवारों का ट्रस्ट मानते हैं। भारत आपके फंड्स को सेफ, स्टेबल और सस्टेनेबल ग्रोथ का अवसर देता है। हमारा प्रयास रहेगा कि आपका ट्रस्ट भी बढ़े और आपका कैपिटल भी बढ़े। एजुकेशन और स्किल्स में दोनों देशों के बीच नेचुरल सिनर्जी है। डिकिन यूनिवर्सिटी और वुलोंगोंग यूनिवर्सिटी ने गिफ्ट सिटी में कैंपस खोलकर एक नया अध्याय शुरू किया है। यह भारत के प्रति उनके कॉन्फिडेंस का प्रतिबिंब है। हमारा साझा लक्ष्य होना चाहिए कि हम स्टूडेंट मोबिलिटी को टैलेंट पार्टनरशिप में बदले। फ्रेंड, इन सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए हमें एक और महत्वपूर्ण आयाम पर ध्यान देना होगा। हमारी पार्टनरशिप केवल दोनों राजधानियों या कुछ शहरों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। हमें हमारे राज्यों, छोटे बड़े शहरों, विश्वविद्यालयों, उद्योगों, सभी के स्टेक होल्डर्स बनाना होगा। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की क्रिटिकल मिनरल स्ट्रेंथ, उसको हम उड़ीसा और गुजरात की मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी के साथ जोड़ सकते हैं।
1: वक्त एक ब्रेक का है, खबरें जारी, आप देखते रहिए आज तक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
3: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In 1 second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
4: राष्ट्रपति की कौन सी राशि सेना और साहस की राशि मानी जाती है? बृहस्पति के कौन सी राशि के लोग बड़े ज्ञानी और बहुत शानदार व्यक्तित्व वाले होते हैं? क्या है बृहस्पति की राशियों की विशेषता और क्या है जीवन को बेहतर बनाने के उपाय? जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्य चक्र में।

ट्रंप की धमकी के बाद हमलों से दहला ईरान, कई शहरों पर अमेरिकी सेना के स्ट्राइक, बंदर अब्बास में तेज धमाके। ट्रंप ने कहा दोबारा हमला हुआ तो देंगे गंभीर जवाब। नाटो समिट के बाद ईरान को लेकर ट्रंप का बड़ा दावा, ईरान की किल लिस्ट में कहा नंबर वन जो होगा बहुत जल्द खत्म होगा। ईरान का पलटवार, अभद्रता का जवाब कार्रवाई से देते हैं। ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी, पीएम एंथनी अल्बनीज़ के साथ द्विपक्षीय वार्ता, बिजनेस फोरम समिट में संबोधन, कहा ऊर्जा संकट बड़ी चुनौती, साझा लक्ष्य निर्धारित करना जरूरी है। योगी ने फिर बोला अखिलेश पर धावा, कहा इन्हें न राम न कृष्ण में आस्था, परिवारवाद वंशवाद के नाम पर समाज में फैलाई नफरत, 10 जुलाई को अयोध्या जाएंगे सीएम।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति की राशियों के बारे में। कौन सी हैं बृहस्पति की राशियां, इनकी विशेषता क्या है, इनका प्रभाव क्या है और ये अपने जीवन को कैसे बेहतर बना सकते हैं। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि सफलता मिले, और आज का दिन कितना विशेष है, आज कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 9 जुलाई 2026 दिन बृहस्पतिवार, तिथि है आषाढ़ कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि, प्रातः 10:37 तक। नक्षत्र है अश्विनी नक्षत्र, दोपहर 2:56 तक। चंद्रमा मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। हम आज बात कर रहे हैं बृहस्पति देव की राशियों के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं कि बृहस्पति की राशियां कौन सी हैं और इनकी विशेषता क्या है। देखिए, बृहस्पति आकाश तत्व का ग्रह माना जाता है, लेकिन अलग से आकाश तत्व की कोई राशि नहीं है। बृहस्पति के पास 2 राशियां हैं, धनु राशि और मीन राशि। बृहस्पति 2 राशियों के स्वामी हैं। धनु राशि अग्नि तत्व की राशि है, यानी धनु राशि के अंदर अग्नि के गुण हैं, और मीन राशि जल तत्व की राशि है, उसके अंदर जल के गुण पाए जाते हैं। धनु और मीन दोनों राशियां बृहस्पति की ही राशियां हैं, लेकिन दोनों के गुण, प्रभाव, स्वभाव बिल्कुल अलग अलग हैं। बृहस्पति धनु राशि में ज्यादा मजबूत माने जाते हैं। बृहस्पति की निकटता धनु राशि के साथ ज्यादा होती है। शक्ति के लिहाज से धनु ऊर्जावान राशि है, तेज राशि है, ताकतवर राशि है, और मीन राशि सौम्य राशि और शांत राशि मानी जाती है। बृहस्पति की राशियों पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को आज बहुत सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल।
मेष राशि, सेहत की स्थिति ठीक रहेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा धानी। वृषभ राशि।

बचाव करें, केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। मिथुन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में सुधार होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। तो बृहस्पति की दो राशियां हैं, धनु राशि और मीन राशि। पहले बृहस्पति की पहली राशि के बारे में जानते हैं जो है धनु राशि। धनु राशि के स्वामी हैं बृहस्पति और धनु राशि वालों के लिए सूर्य सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और सूर्य धनु वालों को जीवन में भाग्यवान बनाता है। धनु राशि के जो लोग होते हैं उनके पास साहस का, ज्ञान का, गणना का और नेतृत्व का गुण होता है। धनु राशि का जो प्रतीक है, जो सिंबल है कि आदमी अपने हाथ में धनुष लिया हुआ है, यानी वो वैरियर की या योद्धा की सूचना देता है। इसीलिए धनु राशि के लोग अक्सर सेना में या पुलिस में देखे जाते हैं। धनु राशि वालों के अंदर नेतृत्व करने की, लीड करने की, प्रशासन करने की जबरदस्त क्षमता पाई जाती है और अगर सही गाइडलाइन मिले तो राजकीय सेवा में या प्रशासन में ऊंचाई तक जाते हैं। धनु वालों की सबसे बड़ी कमजोरी है वाणी पर नियंत्रण न रखना। क्रोध में आकर वाणी अनकंट्रोल्ड हो जाती है, कुछ भी और कैसे भी बोल सकते हैं और वाणी की वजह से इनके बहुत सारे शत्रु भी पैदा हो जाते हैं। इस राशि के लोगों को सलाह लेकर एक माणिक्य धारण करना चाहिए और धनु वालों को नियमित रूप से भगवान सूर्य की उपासना करने से लाभ होता है। आपके शरीर में जो घुटनों का स्थान है, जो पैरों के संधि का स्थान है, वो धनु राशि के साथ जुड़ा हुआ है। बृहस्पति की दूसरी राशि पर भी चर्चा करेंगे लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है, इसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल।

अच्छी रहेगी, चिंताएं समाप्त होंगी, यात्रा के योग बन रहे हैं। भगवान को पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। सिंह राशि, करियर की स्थिति में सुधार होगा, स्वास्थ्य ठीक बना रहेगा, काम की अधिकता रहेगी। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम।

राशि, स्वास्थ्य कमजोर हो सकता है, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी, परिवार में विवादों से बचाव करें, केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं भाग्यचक्र@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न सुपर्णा ने हमें लिखा है और सुपर्णा हमें पश्चिम बंगाल से लिखती हैं। अपने बेटे के बारे में जानना चाहती हैं। बेटे की जन्म की तारीख है 27 फरवरी सन 2000। जन्म का समय शाम के 6:30। जन्म स्थान है कोलकाता। ये कह रही हैं कि मेरा बेटा गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है, क्या मेरे बेटे को गवर्नमेंट जॉब मिलेगी? सुपर्णा जी, आपके पुत्र की कुंडली के हिसाब से अगर वो बैंक, फाइनेंस, अकाउंट्स ऐसे क्षेत्रों में नौकरी की कोशिश करें तो अवश्य नौकरी मिलेगी। साल 2027 का समय इनके लिए बेहतर दिखाई दे रहा है। एक इनको पन्ना बनवा करके पहना दीजिए, 6-8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना बनवा करके इनको पहनाएं और इनको बोलिए कि रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो बृहस्पति की पहली राशि धनु के बारे में आपने जान लिया। अब आपको बताते हैं बृहस्पति की दूसरी राशि मीन के बारे में। मीन राशि के स्वामी भी बृहस्पति देव ही हैं और चूंकि ये जल तत्व की राशि है इसीलिए चंद्रमा मीन राशि वालों को बैलेंस करता है, मीन राशि में संतुलन पैदा करता है। मीन राशि के जो लोग होते हैं उनके पास ज्ञान का, ग्लैमर का, कला का और शिक्षा का गुण पाया जाता है। मीन राशि के लोग बड़े अच्छे डॉक्टर या बड़े अच्छे हीलर होते हैं, दूसरे की समस्याओं को बहुत जल्दी हल कर देते हैं। मीन वालों को अगर सही दिशा ना मिले तो अक्सर युवावस्था में, यंग एज में भटक जाते हैं, लेकिन बाद में जब इनको सही दिशा मिलती है आम तौर पर उम्र के 40 वर्ष के बाद, तो सही दिशा पाकर जीवन में बहुत तरक्की करते हैं। मीन राशि ज्ञान की राशि है, ध्यान की राशि है और मीन वालों को सही दिशा मिले तो ये समाज में अध्यात्म और ज्ञान पैदा करते हैं। आपके शरीर में आपके पैर का, पैर के पंजों का संबंध मीन राशि से माना जाता है। इनकी सबसे बड़ी समस्या है कि ये हर चीज को परफेक्ट करना चाहते हैं और इस चक्कर में सब कुछ परफेक्ट नहीं होता जिस वजह से ये परेशान होते हैं। मीन वालों को सलाह लेकर एक मोती या एक पन्ना पहनना चाहिए
और अगर ये भगवान शिव की उपासना करें, भगवान शिव की शरण में रहें, तो इनको लाभ अवश्य होगा। बृहस्पति की राशियों पर चर्चा हमारी जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल।

दूर होगी, स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं, अतिथि का आगमन होगा, भगवान को पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल।

ठीक बनी रहेगी, करियर की स्थिति में सुधार होगा, काम की अधिकता रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। अब ये जानते हैं कि अगर आपकी राशि धनु है और जीवन में करियर को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, विवाह को लेकर या किसी भी तरह की समस्या आ रही है तो क्या उपाय करेंगे? धनु राशि थोड़े उतार चढ़ाव और दुर्घटना की राशि मानी जाती है, इसलिए धनु वालों को हमेशा उतार चढ़ाव और दुर्घटना से बचना चाहिए। धनु राशि आकस्मिकता वाली, सडन चीजों के जीवन में होने वाली राशि मानी जाती है। जीवन में अचानक अच्छा और बुरा दोनों होता है, तो इनको उतार चढ़ाव से बचना है। इनको नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल अर्पित करना चाहिए, जरूर जल चढ़ाएं। चांदी का छल्ला, चांदी की अंगूठी या चांदी की चेन जरूर धारण करें। अधिक से अधिक शिव जी की उपासना करें। जीवन के उतार चढ़ाव से बचना है तो सुबह शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का जप करने से आपको लाभ होगा। अब अगर आपकी राशि मीन है तो आपके जीवन में सेहत की, मानसिक परेशानियां और वैवाहिक परेशानियां ज्यादा हो सकती हैं। तो अगर आपकी राशि मीन राशि है और जीवन में कोई समस्या आ रही है तो क्या उपाय करेंगे? देखिए, मीन राशि वालों को भावनात्मक समस्या से, इमोशनल प्रॉब्लम से बचना चाहिए। भावनात्मक समस्याएं ना हो इसका ध्यान देना चाहिए। अक्सर इनको मानसिक दिक्कतें या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती है, जिस वजह से ये कई बीमारियों के शिकार हो जाते हैं या इनको बहुत सारी बीमारियां पकड़ लेती हैं। अगर आपकी राशि मीन राशि है और आपके लिए मुश्किल समय चल रहा है तो नियमित रूप से रोज सुबह बृहस्पति देव के मंत्र का जप करें। ओम ब्रिम बृहस्पतये नमः, ओम ब्रिम बृहस्पतये नमः, इस मंत्र का रोज सुबह जप करें। और मीन वालों को सलाह लेकर एक पीला पुखराज भी पहनना चाहिए, वो इनके लिए काफी अच्छा होगा। और मीन वालों को अधिक से अधिक सात्विक रहने का प्रयास करना चाहिए, मांस मदिरा का प्रयोग करने से बचना चाहिए। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज के दिन कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, मानसिक समस्या हो सकती है,
परिवार में विवाद हो सकता है, धन खर्च पर ध्यान दें, केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। कुंभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, करियर की स्थिति अच्छी रहेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा

ठीक रहेगी, परिवार में व्यस्तता रहेगी, धन के लेन देन में सावधानी रखें। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा फिरोजी। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का सरल समाधान करने का प्रयास करते हैं। बहुत सारे लोगों का ऐसा कहना है कि बृहस्पतिवार के दिन केला नहीं खाना चाहिए, क्या ऐसा है? देखिए, केले का जो फल है वो बृहस्पति ग्रह से संबंध रखता है, लेकिन बृहस्पतिवार को केला नहीं खाना चाहिए ऐसा कोई नियम नहीं है। जो लोग बृहस्पतिवार को केले का दान करते हैं उनके लिए कहा जाता है कि उनको बृहस्पतिवार को चूंकि दान कर रहे हैं तो उनको बृहस्पतिवार को केला नहीं खाना चाहिए, बाकी दिन वो केला खा सकते हैं। और एक सामान्य आदमी जो बृहस्पतिवार को दान नहीं करता है वो बड़े आराम से बृहस्पतिवार को केला खा सकता है। वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेके नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है आइए जानते हैं। नंबर 1, यात्रा के योग बन रहे हैं। नंबर 2, चिंताएं समाप्त होंगी। नंबर 3, स्वास्थ्य में सुधार होगा। नंबर 4, काम की अधिकता रहेगी। नंबर 5, वाद विवाद से बचाव करें। नंबर 6, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 7, ऑफिस में समस्या हो सकती है। नंबर 8, स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। नंबर 9, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का, तो आइए जानते हैं कि आज भाग्य पहर का शुभ समय क्या है और इसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में भगवान कृष्ण को पीले फूल अर्पित करेंगे। ऐसा करने से संतान संबंधी समस्याएं आपकी दूर होंगी। अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है, कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है, तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो पीली सरसों खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज कोई इंटरव्यू है, जीरा खाकर घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो अपने साथ एक पीला फूल रखकर जाइएगा, काम बन जाएगा। अगर डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल जाना है इलाज के लिए,
तो हल्दी का तिलक लगाकर जाइएगा, स्वस्थ होंगे। अगर वाहन, भूमि, भवन, आभूषण, वस्त्र खरीदने हैं तो पीला रुमाल साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का, तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किसको बहुत सावधान रहना होगा।

लाभ होगा। और आज सावधान रहना होगा, कन्या राशि वालों को चोट चपेट लग सकती है, तनाव बढ़ सकता है। अब जान लेते हैं कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज के दिन क्या करें क्या ना करें। आज नवमी तिथि है, गुरुवार की बृहस्पतिवार की नवमी विशेष अशुभ होती है, इसलिए आज कोई नया और शुभ कार्य ना करें। नवमी तिथि की स्वामिनी है माता दुर्गा, इसलिए आज माता दुर्गा की आरती करें, आपको लाभ होगा। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बाद अमेरिकी सेनाओं ने ईरान पर हमले शुरू किए। ईरान के कई शहरों द्वीपों पर ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक। ईरान के सिरिक और बंदर अब्बास में जोरदार धमाके हुए। फिलहाल धमाकों के कारणों और नुकसान की आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। मेहर की रिपोर्ट के मुताबिक बंदर अब्बास में 8 धमाके, सिरिक में 3, चाबहार के पास 10 धमाके सुनाई दिए। हमले में 2 मछुआरों की मौत की खबर। ईरान के विदेश मंत्री अराक्षी का सख्त संदेश, कहा शिष्टता जवाब शब्दों से नहीं बल्कि कार्यवाही से देंगे। ईरान की महानता अपमान से कम नहीं होगी, अराक्षी ने कहा, हम जवाब बहादुरी और कार्यवाही से देते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा, कार्यवाही जहाजों पर हुए हमले का जवाब है, अगर ऐसी घटना दोबारा हुई तो इससे भी ज्यादा सख्त कार्यवाही होगी। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने घोषणा की कि ट्रंप के निर्देश पर ईरान पर नए हवाई हमले शुरू किए गए। कार्यवाही हॉर्मुज में जहाजों पर हालिया हमलों के जवाब में किए गए हैं। ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध विराम पर विस्फोटक बयान देते हुए कहा, मेरे लिए खत्म हो चुका है युद्ध विराम। साथ ही कहा, नेटो देश हॉर्मुज में भेजेंगे समुद्री सुरंगों को हटाने वाले जहाज। ईरान ने खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइलें दागी। साथ ही ईरान पर किए गए अमेरिकी हमले की नई तस्वीर भी सामने आई। फ्रांस के राष्ट्रपति मैनुअल मैक्रों ने ईरान द्वारा युद्ध विराम तोड़ने को गलत ठहराया, कहा खाड़ी देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ईरान के हमले अंतरिम समझौते का उल्लंघन है। ऑस्ट्रेलिया के 2 दिनों के दौरे पर है प्रधानमंत्री मोदी। एंथनी अल्बनीज के साथ द्विपक्षीय वार्ता होनी है। एयरपोर्ट पर ऑस्ट्रेलियाई सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने प्रधानमंत्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया, गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। मेलबर्न के भारतीय समुदाय ने भी प्रधानमंत्री का स्वागत किया। होटल पहुंचने पर बड़ी संख्या में मौजूद भारतीय प्रवासियों ने नारे लगाए, वंदे मातरम के। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। पीएम मोदी ने तबला वादन का आनंद लिया। गृहमंत्री अमित शाह और नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू किंजरापू की बैठक। देश के प्रमुख एयरपोर्ट पर यात्री सुविधाओं, सुरक्षा और इमिग्रेशन व्यवस्था की हाई लेवल समीक्षा की गई। सीमावर्ती जिलों के एसपी के साथ आज गृह मंत्रालय की हाई लेवल बैठक होनी है। बैठक में अवैध घुसपैठ रोकने की रणनीति पर चर्चा होगी। अलवर दौरे पर सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया। गडकरी ने अधिकारियों के साथ बैठक की, एक्सप्रेसवे पर होने वाले काम के ऑडिट के आदेश दिए। बोले जिस ठेकेदार का काम खराब मिलेगा उसके खिलाफ कार्यवाही होगी। इथेनॉल विवाद पर नितिन गडकरी ने बड़ा बयान देते हुए कहा, इथेनॉल को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। ई2 फ्यूल से एक भी गाड़ी अगर खराब हुई है तो सामने लाएं। नीट पेपर लीक केस में बड़ा एक्शन हुआ है। पीवी कुलकर्णी और शिवराज की हिरासत 11 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। कल अयोध्या जा सकते हैं सीएम योगी। सोहावल में पूर्व मंत्री की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। बीकापुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। चित्रकूट दौरे पर सीएम योगी, 124 विकास परियोजनाओं के उद्घाटन शिलान्यास समारोह में उन्होंने हिस्सा लिया। योगी ने अखिलेश पर सियासी वार करते हुए कहा, इन्हें न रामकृष्ण में आस्था नहीं है, परिवारवाद वंशवाद के नाम पर समाज में नफरत फैलाई। राम मंदिर ट्रस्ट में बड़ा बदलाव किया गया है। 3 लोग मिलकर संभालेंगे बैंक खातों की जिम्मेदारी। राम मंदिर दान चोरी मामले में 3 आरोपियों को भीखापुर के पास सुनसान बाग लेकर पहुंची पुलिस। इसी जगह मंदिर से चोरी की गई रकम को इकट्ठा करते थे आरोपी और बंटवारा करते थे। चंदा चोरी के आरोपों को लेकर के डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने कहा कि अखिलेश का परिवार रामद्रोही है, 2027 में सपा का सुपड़ा साफ हो जाएगा। राम मंदिर ट्रस्ट विवाद के बीच भोग गोपाल राव का बड़ा बयान, बोले मैं यहीं रहूंगा, बर्खास्तगी की खबरें गलत हैं। शिव की नगरी काशी में सावन की तैयारियां तेज हो गई। इस बार विश्वनाथ मंदिर में 7 प्रवेश द्वार होंगे, वीआईपी स्पर्श दर्शन पर रोक रहे। बद्रीनाथ चढ़ावा चोरी मामले पर सीएम धामी ने कहा, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, किसी को नहीं बख्शेंगे। टीएमसी पर ईडी की आर्थिक चोट पहुंचाई गई है। 3 बैंक खातों में 440 करोड़ रुपए फ्रीज कर दिए गए। मनी लॉन्ड्रिंग कानून में कोलकाता और 5 जगहों पर तलाशी अभियान चला। कोलकाता में बारूईपुर घटना के विरोध में तृणमूल युवा कांग्रेस की रैली के दौरान बीजेपी टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई। कोलकाता के कालीघाट स्थित आवास के बाहर घायल कार्यकर्ताओं को अस्पताल भेजने के दौरान बवाल मचा। ममता बनर्जी ने टीएमसी कार्यकर्ता को थप्पड़ मारा। बिहार में सीएम सम्राट कैबिनेट की बैठक में कुल 22 एजेंडों पर मुहर लगी। पटना एम्स के विस्तार के लिए 26.5 एकड़ भूमि के अधिग्रहण की स्वीकृति मिली। परिवहन व्यवस्था के विकास में भी अहम फैसला लिया गया। बिहार सरकार ने राजधानी पटना को राज्य के प्रमुख शहरों से जोड़ने वाले रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम को मंजूरी दी। पटना में 25 साल के युवक के अपहरण पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। आक्रोशित भीड़ ने सड़क जाम की। मौके पर पहुंचे प्रशांत किशोर। जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर के खिलाफ बेतिया कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दर्ज किया गया। 28 जुलाई को पेश होने का आदेश दिया गया है। डीआरडीओ ने इतिहास रचते हुए नया कीर्तिमान बनाया है। लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट मिसाइल पिनाका का सफल परीक्षण किया। फ्लाइट टेस्ट के सभी लक्ष्यों को पूरा किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सफल फ्लाइट टेस्ट के लिए डीआरडीओ भारतीय सेना इंडस्ट्री को दी बधाई। सफल परीक्षण से जुड़ी सभी टीमों की सराहना की। सौरव गांगुली को जन्मदिन पर बड़ा तोहफा दिया गया। पूर्व कप्तान को आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। ये सम्मान पाने वाले बारहवें भारतीय बने सौरव गांगुली। महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद पर बैठक में शामिल हुए शरद पवार। एनडीए में जाने के अटकलों के बीच सियासी चर्चा बढ़ गई है। महाराष्ट्र विधानसभा में कनेक्टिंग लिंक परियोजना पर विपक्ष को सीएम फडणवीस का जवाब, बोले मुझे नहीं महाराष्ट्र को बदनाम किया तो छोड़ूंगा नहीं।
ठाणे के डोंबिवली में शिवसेना पार्षद रमेश मात्रे को गिरफ्तार किया गया। सरकारी अस्पताल में डॉक्टरों महिला नर्स से मारपीट की थी, सामने आया था वीडियो। डोंबिवली में महिला नर्स से मारपीट मामले में शिवसेना यूबीटी विधायक आदित्य ठाकरे अस्पताल पहुंचे, पीड़ित से मेडिकल स्टाफ से बात की, कहा उनकी इस पार्टी को मुद्दे को उठाएगी। पुणे में वेस्ट एनर्जी प्लांट की इमारत ढह गई, 7 लोगों को मलबे से सुरक्षित निकाला गया, 9 अभी फंसे, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। सीएमसी जिला परिषद सभाधिपति विश्वनाथ बावरी के घर पर हमला हुआ, बेटे के प्रेम संबंध को लेकर के बवाल, भीड़ ने तोड़फोड़ की, भारी पुलिस बल तैनात किया गया। पंजाब बार एसोसिएशन के संयुक्त एक्शन कमेटी के आह्वान पर राज्य में 70,000 वकील अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे, उन्होंने अपनी मांगे रखी हैं। इंदौर के एमजीएम मेडिकल कॉलेज में 7 मेंटेनेंस घोटाले पर बड़ी कार्रवाई हुई है, 5 हॉस्पिटल को नोटिस दिया गया। दरभंगा में स्पा सेंटर के नाम पर व्यापार, देह व्यापार का अवैध धंधा, स्पेशल क्राइम डीएसपी ने पुलिस बल के साथ छापेमारी की, 4 लोग गिरफ्तार। अलवर में केंद्रीय मंत्री के कार्यक्रम के दौरान एक्सप्रेसवे पर 20 टन मांस से भरा कंटेनर पकड़ा गया, जांच के लिए सैंपल लिया गया। दिल्ली एनसीआर में 2 दिनों से लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही है, इससे मौसम बदल गया, तापमान में गिरावट आई। मौसम विभाग अगले 2 दिनों के लिए मध्यम से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मानसून की बारिश में पहले साल 2026 में पहली बार हवा सबसे साफ हुई, संतोषजनक श्रेणी में AQI दर्ज किया गया। गुरुग्राम में भी झमाझम बारिश हुई, सुहावने मौसम के बीच ठंडी हवाओं से तापमान में 5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई। दिल्ली से सटे नोएडा में भी जमकर बरसे हैं बादल, जोरदार बरसात से कई जगहों पर पानी भरा। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के थाटरी इलाके में बादल फटा, प्राकृतिक आपदा के चलते कई मकान और दुकानें क्षतिग्रस्त। गुजरात और मध्य भारत में लगातार बारिश का दौर जारी है, कई राज्यों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। सूरत सहित दक्षिण गुजरात में पिछले कुछ दिनों से हो रही है मूसलाधार बारिश, जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ, खाड़ियों का जलस्तर खतरे के निशान के पार। सूरत में कई घंटे बाद भी सड़कों पर पानी जमा, जिससे लोगों का जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ, जान जोखिम में डालकर रास्ते से गुजरने को मजबूर हैं लोग। सूरत में खाड़ी का कहर, डिंडोली इलाके में दूध के लिए अफरा तफरी मची, वीडियो वायरल हुआ, पानी में डूबे कई इलाके। नवसारी में बरसात के बाद उफान पर अंबिका नदी रोद रूप में बहता दिखाई दे रहा है प्रसिद्ध गिर वाटरफॉल। वडोदरा में भारी बारिश से कई नदियों में उफान मचा, प्रशासन अलर्ट हुआ, निचले इलाकों में रह रहे लोगों के लिए चेतावनी जारी की गई। सूरत में भारी बारिश से रिहायशी इलाकों में पानी घुसा, रोजमर्रा की चीजों के लिए जैसे दूध पानी के लिए लोग अब परेशान हो रहे हैं। सूरत में लगातार हो रही बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, सीमा खाड़ी इलाका ओवरफ्लो होने से कई इलाकों में पानी घुसा, सड़कें नदी बन गई। भारी बारिश से पूरा सूरत शहर जलमग्न हो गया, जगह जगह एनडीआरएफ फायर ब्रिगेड जैसे लोगों के रेस्क्यू में जुटे। मध्य प्रदेश के खरगोन में तेज बहाव में एक युवक बह गया, लोगों ने रस्सी से बचाने की कोशिश की, तैरते तैरते युवक का लाइव वीडियो सामने आया। मुंबई ठाणे में बारिश का तेज दौर जारी है, तेज हवा के साथ बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया, जरूरी सावधानी बरतने की सलाह दी है मौसम विभाग ने। महाराष्ट्र के रायगढ़ में भारी बारिश के चलते करीब 3,000 एलपीजी सिलेंडर नदी में बह गए, जिला कलेक्टर ने लोगों को सूचना देने की अपील की है। पुणे में जोरदार बारिश का असर है, भिड़े ब्रिज डूबा गया, छोड़ा गया 27,000 क्यूसेक पानी। महाराष्ट्र के वसई में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ, रेलवे ट्रैक पर पानी भरा, ट्रेन सेवाएं प्रभावित हुई। छत्रपति संभाजीनगर में नदी नाले उफान पर है, ग्रामीणों से सुरक्षित स्थान पर रहने की अपील की गई है। राजस्थान के अलवर में भी झमाझम बारिश से भीषण गर्मी से राहत मिली, लेकिन जोरदार बारिश के चलते सड़कों पर पानी भरा। छत्तीसगढ़ के गोरेला पिंडरा मारवाही में मूसलाधार बारिश से नदियां उफान पर हैं, सड़क मार्ग टूटने से ग्रामीण परेशान। पंजाब के कई इलाकों में अगले 36 घंटे बारिश का अलर्ट जारी किया गया, मौसम लगातार बारिश वाला बना हुआ है। हिमाचल प्रदेश में 13 जुलाई तक बारिश का दौर जारी रहने का अनुमान, पहाड़ों पर अचानक बाढ़ वाली जगहों से दूरी बनाए रखने की सलाह दी गई है। कुल्लू के ऊपरी पहाड़ियों में बारिश के बाद नजारा बदल गया, पहाड़ियों में शांत झरने कई गुना बढ़ गए, जलस्तर काफी बढ़ता दिखाई दिया। पुणे में 3 मंजिला बिल्डिंग में ऊपर से कचरा गिरने से दबी, 23 लोगों में से 14 लोगों को बाहर निकाला गया। कचरा गिरने पर मंत्री गिरीश महाजन का बयान, कहा कई सालों से कचरा डिपो है, बारिश की वजह से कचरा नीचे आ गया, घटना पर अफसोस जताया। सुपौल में एक रात में भारी बारिश में पुल निर्माण के लिए बना डायवर्जन बह गया, 150 परिवारों का संपर्क टूट गया। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में बेकाबू कार लोगों और गाड़ियों को रौंदते हुए दुकान में घुस गई, 8 लोग घायल हुए, सीसीटीवी वीडियो सामने आया। इंदौर में तेंदुए का आतंक, डिलीवरी बॉय पर हमले का सीसीटीवी फुटेज सामने आया, वन विभाग तेंदुए की तलाश कर रही है। रांची पुलिस ने तोड़फोड़ के मामले में 2 पक्षों को गिरफ्तार किया, मारपीट के आरोप लगे। आगरा में लगातार हो रही बारिश के बीच 2 मंजिला कपड़े की दुकान अचानक भरभराकर टूट पड़ी, मलबे से 5 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। जम्मू में वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर भूस्खलन हुआ, हिमकोटी मार्ग पर बैटरी कार सेवा बंद हो गई, मलबा हटाने का काम अभी जारी है। उज्जैन में सड़क धंसने से सीमेंट से भरा ट्रक नाले में गिर गया, सीसीटीवी में कैद हादसा, लोगों ने प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगाए।
दरभंगा बम धमाके में घायल मजदूर की मौत हो गई, लोगों का सड़क पर गुस्सा फूटा, आगजनी कर चक्का जाम किया, 20 लाख रुपए मुआवजे की मांग की गई। मेरठ में दलित प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए गए युवक ने फांसी लगाने का प्रयास किया, वीडियो सामने आया। ग्रेटर नोएडा में इंटरव्यू में रिजेक्ट होने के बाद युवक ने 21वीं मंजिल से छलांग लगाकर आत्महत्या की, पुलिस मामले की जांच कर रही है। दिल्ली के संगम विहार में कार्डबोर्ड फैक्ट्री में भीषण आग लगी, दमकल की टीम ने बुझाई आग। दिल्ली के रोहिणी इलाके के सेक्टर 16 में बारिश के बीच चार मंजिला बिल्डिंग गिर गई, मलबे में दबने से एक युवक की मौत, कई लोगों के दबे होने की आशंका थी, रेस्क्यू अभियान जारी है। रोहतक में पिलर तोड़कर भाग रहे डंपर ने रोकने आए दुकानदार को कुचल दिया, सीसीटीवी में पूरी वारदात कैच हुई।

0: रूबरू फिल्म का ट्रेलर आउट हो चुका है। 17 जुलाई को यह फिल्म पर्दे पर दस्तक देगी। प्रज्वल देवराज और राजवी शेट्टी की कन्नड़ फिल्म करावली का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। 24 जुलाई को फिल्म रिलीज होगी। फिल्म श्रीराम भूमि की शूटिंग का आज अयोध्या में पहला दिन है। अनुपम खेर ने शेयर की पोस्ट, लिखा श्रीराम मंदिर जाकर रामलला से आशीर्वाद लिया। अभी खत्म नहीं हुई है कांतारा के फ्रेंचाइजी, ऋषभ शेट्टी ने अपडेट दिया। कांतारा 2 पर काम अभी भी जारी है।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस।
0: आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया दौरे पर है और अब से कुछ ही देर पहले ये तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें पीएम मोदी और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री सेल्फी ले रहे हैं। तो मेलबर्न में प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा है और ऐसे में ये दोनों नेताओं की सेल्फी लेते हुए ये जो तस्वीरें हैं ये सामने आई हैं। प्रधानमंत्री मोदी और अल्बनीज की ये तस्वीरें मेलबर्न से आ रही हैं। आज दोनों के बीच द्विपक्षीय बातचीत होनी है। सीईओ फोरम में भी प्रधानमंत्री ने हिस्सा लिया जहां पर मेक इन इंडिया और इन्वेस्ट इन इंडिया का उद्देश्य उन्होंने सबके सामने रखा। द्विपक्षीय बातचीत होनी है और इसी के साथ ऊर्जा संकट के साथ साथ भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रक्षा सहयोग पर भी चर्चा होगी। लेकिन उस चर्चे के बीच दरअसल अब ये सेल्फी टॉकिंग पॉइंट हो गया। मेलबर्न में दोनों की मुलाकात के बीच जब एल्बनीज ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ ये सेल्फी ली, ये वो लम्हा है, ये वो मोमेंट है जो अब टॉकिंग पॉइंट बन गया। प्रधानमंत्री का ये 3 देशों का जो दौरा है, इसके पहले वो इंडोनेशिया में थे, इंडोनेशिया के बाद ऑस्ट्रेलिया पहुंचे, मेलबर्न में उनका स्वागत है और उसके बाद प्रधानमंत्री एल्बनी से उनकी मुलाकात हुई और इस मुलाकात के बाद नजर दरअसल द्विपक्षीय वार्ता पर होगी। द्विपक्षीय वार्ता में आखिर कौन कौन से मुद्दे होंगे, तकनीक, रक्षा, इनोवेशन और इन्वेस्टमेंट को लेकर के चर्चा होगी। इन 3 तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मुलाकातों का दौर और इस दौर के बीच आखिर मुलाकात के मायने क्या हैं। पहली तस्वीर, प्रधानमंत्री मोदी जब मेलबर्न पहुंचे उनका स्वागत हुआ, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री एल्बनीज के साथ उनकी सेल्फी और उसके बाद सीईओ फोरम में प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी। इसी के साथ रुक रहे, एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें जा रही हैं, आप देखते रहिए आज तक।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच,
2: एकजे, द नंबर 1 कोरियन स्किन केयर ब्रांड।
3: नीड बेटर इंटरनेट? Cox Internet has the fast, reliable speeds you're looking for. Perfect for seamless streaming, gaming, and working from home. And now get Cox 300 meg internet with a 2-year plan, price lock guarantee, plus equipment included. Oh yeah. So get your household up to speed. Switch to Cox Internet today. Taxes and fees excluded from price guarantee.
4: TuneIn is bringing together your music, news, sports, and more all in one place. Whether you love music, want to stay in the know with top news,
5: continue to face political pressure to reach a peace deal,
4: or hear your favorite teams with live sports. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices, at home, in the car, or on the go. So you'll never miss a beat. Just sit back and listen.
2: Now in India.
6: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
7: हमें स्वस्थ रखने वाली सारी चीजें ज्यादातर शुद्ध होनी चाहिए, सूर्य की किरणें और स्वच्छ पानी। वैसा ही है लाइन अरेबियन डेट्स और अब लाइन लाइना डेट्स। इसमें फाइबर्स और विटामिन्स भी कुदरती हैं, जो देता है स्वास्थ्य भी कुदरती।
8: लाइन लाइना प्रीमियम डेट्स।
9: In association with
10: Sharda University, the world comes together at Sharda University. Where are you?
11: Punjab National Bank, Bharose ka Prati.
12: Vimal, bolo zubaan kesri. Hint, bade aaram se.
13: Aaj tak la raha hai aapke liye video wala paper. Har roz subah aapke mobile par, wo bhi aapke purane newspaper se pehle. इसे पढ़ने के लिए अपने डिवाइस पर ePaper.aajtak.in टाइप करें या फिर स्क्रीन पर दिए हुए QR कोड को स्कैन करें।

0: महाराष्ट्र इस वक्त मूसलाधार आफत का सामना कर रहा है। शासन प्रशासन की सारी तैयारियां बेबस नजर आ रही हैं। मुंबई से सटे पालघर में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते सड़कें मानो दरिया बन गई हैं। नदी में उफान के चलते हालात काफी खराब हो गए हैं। निचले इलाकों में पानी भर गया है। सड़कों पर पानी आ जाने की वजह से गाड़ियों की रफ्तार में ब्रेक लग गया है। पालघर में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। बारिश और हादसों की वजह से अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 3 लोग घायल हैं। पालघर ही नहीं, महाराष्ट्र के दूसरे इलाकों में भी हाल काफी खराब है। पुणे का हाल देख लीजिए, सड़कें दरिया बन गई हैं, गलियां मानो जैसे समंदर हो गई। नासिक में भी बारिश मुसीबत बनकर बरस रही है। गोदावरी समेत कई नदियां उफान पर हैं, हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। त्र्यंबकेश्वर में भी चारों तरफ पानी पानी दिख रहा है। सड़कों पर सैलाब ही सैलाब है, खेत खलिहान सब डूब चुके हैं। वहीं मौसम विभाग ने मुंबई ठाणे के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है, जिसके चलते महाराष्ट्र को अभी बारिश से राहत मिलती नहीं दिख रही है। पालघर से विद्या और पुणे से श्रीकृष्ण पांचाल के साथ आज तक।
1: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
2: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
3: Akajay, the number one Korean skincare brand, now in India.

0: मूसलाधार मुसीबत के आगे महाराष्ट्र बेबस नजर आ रहा है। मुंबई से सटे पालघर में लगातार हो रही बारिश के बाद सड़कों पर सैलाब आ गया है। सूर्या नदी उफान पर आने से हालात आउट ऑफ कंट्रोल होने लगे हैं।
1: इस वक्त हम मुंबई के पास वसई इलाके में हैं। वसई ये दरअसल पालघर डिस्ट्रिक्ट में आता है और पिछले चार दिनों से लगातार तकरीबन 200 mm से ज्यादा की बरसात हो रही है यहाँ पे। और इस वक्त आप मेरे पीछे देख लीजिए, ये है वसई नालासोपारा लिंक रोड। दरअसल यहाँ पर कुछ जो एवरशाइन सिटी और ऐसे कई सारे इलाके हैं जहाँ पर की कनेक्टिविटी इसी रोड के जरिए है। और लोग देखिए अपनी गाड़ियाँ और जो लोग हैं खुद भी अपने आप को इसी तरह से, दरअसल ये जो इलाका है ये पूरा सॉल्ट पैन का इलाका है, यहाँ पर नमक बनाए जाते हैं, इसलिए यहाँ पर ये खाली मैदान है। और यहाँ पर देखिए इतना ज्यादा पानी भरा हुआ है। ये जिस पर हम अभी इस वक्त खड़े हैं वो है ईस्ट वेस्ट, जो वसई का जो मेन ईस्ट वेस्ट कनेक्टिविटी रोड है वहां पर है। और इस वक्त आप देख लीजिए, आइए लोगों से बात करते हैं, कितने दिनों से पानी भरा हुआ है यहाँ पे?
2: कितने दिन हो गया? फोर डेज, चार दिन से भरा हुआ है। आने जाने का रास्ता एकदम ब्लॉक है। उधर ग्राउंड फ्लोर पे पूरा बिल्डिंग में पानी लग गया है। हाँ। और इधर भी जो एवरशाइन वाला रास्ता है उधर भी ग्राउंड फ्लोर में पानी।
1: साल की एक ही कहानी है,
2: हर साल की एक कहानी है।
0: 2 से 3 फीट पानी सड़कों पर आया तो गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया। पानी में गाड़ी बंद ना हो उसके लिए लोग जुगाड़ का सहारा लेते दिखाई दिए।
1: ट्रैक्टर का इस्तेमाल करके लोग अपने घरों से, क्योंकि जरूरी अगर होता है तो निकलना ही पड़ता है। जैसे एक शख्स अभी मिल रहे थे, इन्होंने अपनी गाड़ी में देखिए यहाँ पे मॉडिफिकेशन किया हुआ है। देखिए ये गाड़ी में इन्होंने ये मॉडिफिकेशन किया है। कोई चल रही है आपकी गाड़ी?
3: गाड़ी अभी चालू है, गाड़ी चालू है। पासपोर्ट का आज ही टाइम है, वो भी लास्ट डेट है। हाँ। जाना तो पड़ेगा ही, है ना?
1: ये हर मॉनसून में आप यही लगा लेते हैं?
3: नहीं, इस बार ट्राई करके देख रहे हैं।
2: इस बार जुगाड़ में आपने लगा लिया बस।
1: चल दी आपकी गाड़ी?
2: चल रही है, देखो गाड़ी चालू है। चालू हो गई।
0: वसई नालासोपारा लिंक रोड पर कमर तक पानी से गुजरने के लिए ट्रैक्टर का इस्तेमाल किया जा रहा है। दरअसल पालघर में पिछले 6 दिनों से लगातार बारिश हो रही है जिससे जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित है। पालघर में लगातार हो रही बारिश और हादसों की वजह से अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 3 लोग घायल हैं। पालघर के ज्यादातर बांध 50% से ज्यादा भर चुके हैं जबकि झांझरौली बांध भी लबालब हो चुका है। पालघर में पिंजाल नदी का जलस्तर भी खतरे के निशान को पार कर गया है। पालघर में मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर भी सैलाब का कब्जा दिख रहा है। देखिए जहां तक नजर जा रही है वहां पानी ही पानी नजर आ रहा है। अब पालघर के वसई के इस इलाके का हाल देखिए, जहां दोनों ओर मार्केट के सामने सड़कों पर कई फीट पानी भरा है, लेकिन स्थानीय लोग इसी सैलाब से होकर गुजरने को मजबूर दिख रहे हैं। इसीलिए मौसम विभाग ने पालघर में रेड अलर्ट जारी किया है। पुणे का हाल भी जुदा नहीं है। सड़कें दरिया बनी दिख रही हैं और गलियां समंदर, लेकिन बच्चे इस हाल में भी मस्ती करते नजर आए। पानी का प्रकोप देखिए कि आधी से ज्यादा गाड़ियां डूबी हुई हैं। पिछले 24 घंटे में लोनावला में 620 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। इसी वजह से रास्ते तालाब में तब्दील हो गए हैं। पुणे की बड़ी बड़ी सोसाइटी में घरों के अंदर पानी घुस गया है। अभी सोसाइटी का हाल देखिए, जहां घरों के अंदर से लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। बाकायदा रेस्क्यू टीम नाव के जरिए सैलाब में फंसे लोगों का रेस्क्यू कर रही है, लेकिन ये बच्ची घबराहट की वजह से रोने लगी। इस वीडियो में देखिए कैसे पुणे की इन सोसाइटी के ग्राउंड फ्लोर पूरी तरह से पानी में समा चुके हैं। नासिक में भी बारिश मुसीबत बनकर बरस रही है। गोदावरी समेत कई नदियां उफान पर हैं। एनडीआरएफ के साथ प्रशासन और पुलिस की टीमें लोगों का रेस्क्यू कर रही हैं। लगातार बारिश की वजह से हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। ये देखिए जब नशे में धुत ये शख्स अपनी जान जोखिम में डालकर सैलाब के बीच चला गया। पहले तो रेस्क्यू टीम ने उसे बहुत धैर्य से किनारे की ओर बुलाया, लेकिन जैसे ही वो पास आया पुलिस ने उसकी पिटाई कर दी। नासिक के त्र्यंबकेश्वर में भी चारों तरफ पानी ही पानी दिख रहा है। सड़कों पर सैलाब ही सैलाब है, खेत खलिहान सब डूब चुके हैं।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

ट्रंप की धमकी के बाद हमलों से दहला ईरान, कई शहरों पर अमेरिकी सेना की एयर स्ट्राइक, बंदर अब्बास में तेज धमाके। ट्रंप ने कहा दोबारा हमला हुआ तो देंगे गंभीर जवाब। नाटो समिट के बाद ईरान को लेकर ट्रंप का बड़ा दावा, ईरान की किल लिस्ट में मैं नंबर वन, कहा जो होगा बहुत जल्द खत्म होगा। ईरान का पलटवार, अभद्रता का जवाब कार्रवाई से देते हैं। ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पीएम एंथनी अल्बनीज के साथ द्विपक्षीय वार्ता, बिजनेस फोरम समिट में संबोधन, कहा ऊर्जा संकट बड़ी चुनौती, साझा लक्ष्य निर्धारित करना जरूरी। योगी ने फिर से बोला अखिलेश पर धावा, कहा इन्हें ना राम ना कृष्ण में आस्था, परिवारवाद वंशवाद के नाम पर समाज में फैलाई नफरत, 10 जुलाई को अयोध्या जाएंगे सीएम। नई दिल्ली एनसीआर में रात से हो रही लगातार बारिश, कई इलाकों में जलभराव से ट्रैफिक सुस्त, रोहिणी में गिरी इमारत, रायगढ़ में बह गए हजारों सिलेंडर तो सूरत में घुसा पानी।

0: बजे हैं और अब वक्त है खास बुलेटिन सुपर 8 का। इस बुलेटिन में अब तक की तमाम बड़ी खबरें आपको बताएंगे, आपको बताएंगे कि ईरान में ताजा हमले की खबर क्या है, बात करेंगे ट्रंप के किल लिस्ट वाले दावे की भी खबर, खामेनेई की भी होगी जिन्हें आज सुपुर्द खाक किया जाएगा। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर हैं, उसको लेकर भी आपको ताजा अपडेट देंगे। साथ ही आपको भी बताएंगे कि टीएमसी के अकाउंट आखिर अब फ्रीज क्यों किए गए हैं, तस्वीरें मानसूनी खतरे की भी दिखाएंगे, कहां पर नदी में तैरने लगे हैं सिलेंडर ये भी आपको बताएंगे, खबरें महाराष्ट्र की आफत की भी होगी, साथ ही गुजरात में भी भीषण बारिश है, बारिश के कहर पर गुजरात में अपडेट भी आपको देंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मिडिल ईस्ट में फिर से शुरू हुई जंग की। दरअसल इसकी वजह से तनाव बढ़ रहा है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बाद अमेरिकी सेनाओं ने एक बार फिर से ईरान पर हमला शुरू कर दिया। ईरान के कई शहरों पर, द्वीप पर अमेरिकी सेना ने ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक की है। ईरान के बंदर अब्बास, सिरिक, चाबहार और साथ ही कोनारक, अबू मूसा द्वीप, जास द्वीप और बुशहर पर हमला किया गया। प्रेस टीवी के मुताबिक बंदर अब्बास में 8 धमाके सुनाई दिए गए हैं, जबकि सिरिक में 3 धमाके हुए। कोनारक और चाबहार के पास 10 धमाकों की आवाजें भी सुनाई दी गई। अबू मूसा द्वीप, जास्क द्वीप में भी 10 धमाके सुने गए हैं। मेयर की रिपोर्ट के मुताबिक बुधवार को ईरान पर अमेरिकी हमले में 2 मछुआरों की मौत भी हुई और इसके बाद ईरान पर अमेरिकी हमले में 2 मछुआरों की मौत की खबर सामने आई है। तो कहां कहां पर वो कौन कौन सी जगह हैं जिन पर निशाना साधा गया, जिन पर हमले किए गए हैं, अब वो समझ लेते हैं। एक बार फिर से मिडिल ईस्ट की जंग काफी तेजी से भड़क उठी है। अब आप ही समझिए, बंदर अब्बास, चाबहार और साथ ही कोनारक और अबू मूसा द्वीप और इसी के साथ बुशहर पर भी हमला किया गया, जास्क द्वीप और सिरिक, इन सभी को निशाना बनाया गया है ट्रंप की धमकी। और उसके बाद ईरान में जो धमाके हुए हैं वो ये जगह है जहां पर कई धमाके किए गए। अब देखिए, ईरान के कई हमलों में अमेरिकी हमला हुआ है और ऐसे में अमेरिका जो हमला कर रहा है फिर से ईरान उसके बाद दहल गया है। ईरान के कई हमलों में अमेरिकी हमले हुए हैं, बंदर अब्बास वो जगह है जहां पर एयर स्ट्राइक की गई और सिरिक में भी एयर स्ट्राइक की गई है, यानी इन दोनों जगहों को टारगेट किया गया। बंदर अब्बास में एयर स्ट्राइक की वजह से 8 धमाकों की आवाज सुनी गई है, वहीं सिरिक में 3 तेज धमाकों की आवाज सुनी गई है, सिरिक में लोग दहल गए, वहीं चाबहार और कोनारक में भी 10 धमाकों की आवाज सुनी गई। तो इन सभी जगहों को निशाना बनाया गया, अबू मूसा और जास्क द्वीप पर भी निशाना बनाया गया। अबू मूसा द्वीप पर अब तक 10 तेज धमाके हुए हैं, बुशहर में 2 अमेरिकी प्रोजेक्टाइल गिरे, वहीं ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम भी एक्टिवेट हो गया है इसके बाद। तो एक के बाद एक हमले किए गए हैं, ये जगह आपने समझी जहां पर जिनको टारगेट किया गया। उधर ईरान पर अमेरिकी सेना के हमले के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर चाबहार में हमले के बाद उठती आग की लपचुकी तस्वीरें शेयर की है। उन्होंने यह तस्वीर शेयर करते हुए लिखा है कि ईरान की ओर से जहाजों पर किए गए हमले का जवाब है। उन्होंने धमकी भरे अंदाज में आगे लिखा है कि ऐसी कार्रवाई अगर दोबारा हुई तो जवाब इससे भी कहीं अधिक गंभीर होगा। ट्रुथ सोशल पर चाबहार में हमले को लेकर कहा गया है, उठती आग की लपटों की एक फोटो शेयर की गई है, ये तस्वीर आप देख रहे हैं, इसको पोस्ट किया गया है। जहाजों पर किए गए हमले का जवाब दिया जाएगा, ये कहीं अधिक गंभीर होगा। ट्रुथ सोशल पर चाबहार में हमले को लेकर कहा गया है, उठती आग की लपटों की एक फोटो शेयर की गई है, ये तस्वीर आप देख रहे हैं, इसको पोस्ट किया गया है। जहाजों पर किए गए हमले का जवाब दिया जाएगा, ये ट्रंप ने कहा है, और इसके अधिक गंभीर परिणाम होंगे। और इसी को लेकर मिडिल ईस्ट में एक बार दोबारा से भीषण जंग चल रही है। तो यूएस की तरफ से इस पूरे हमले को लेकर क्या कुछ कहा गया है वो आपको बताते हैं। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश पर अमेरिका ने होर्मुज में ईरान की क्षमता को और कम करने के लिए फिर से हमले शुरू कर दिए हैं। ऐसे में अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग पर स्वतंत्र रूप से आवागमन कर रहे जहाजों और नागरिक दल के खिलाफ हाल ही में किए गए हमले के लिए ईरान को जवाबदेह ठहरा रहा है और उसको लेकर अब ट्रंप ने भी धमकी दी है। अशरफ वानी हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के लिए। अशरफ, देखिए ट्रंप की धमकी एक तरफ, दूसरी तरफ ईरान भी रिटेलिएट कर रहा है, अब क्या लग रहा है कि आखिर ये जो एक दूसरे की तरफ बैलिस्टिक मिसाइल दागी जा रही है ये आखिर खत्म कब होगा? अशरफ,
1: हुक्म ये तब तक नहीं हो पाएगा जब तक कि जो किसी समझौते पर दोनों देश पहुंचते ही नहीं है बल्कि पालन भी करते हैं उन समझौतों का। हमको पता है कि जून के महीने में ही जो है एमओयू साइन हुआ था जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी हस्ताक्षर किए और साथ ही साथ ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजिश्कियान ने भी उस पर हस्ताक्षर किए, लेकिन दोनों देशों की तरफ से आरोप है कि उस पर अमल नहीं हो रहा है। खासतौर से ईरान की तरफ से जो है सबसे ज्यादा सवाल उठाए जा रहे हैं कि जो एमओयू में शर्तें थी ईरान और अमेरिका के बीच में जो तय हुई थी उन पर अमेरिका पालन नहीं कर रहा है। उसमें स्ट्रेट ऑफ हार्मूज सबसे बड़ा जो है इसमें विवाद की वजह बनी हुई है। स्ट्रेट ऑफ हार्मूज में ईरान चाहता है कि वही उसकी न सिर्फ सुरक्षा दे बल्कि साथ ही साथ वही तय करे कि अंतर्राष्ट्रीय जो जहाज हैं जो वेसल्स हैं वो किस रास्ते से गुजरें, जबकि अमेरिका ऐसा नहीं चाहता है। और यही कारण है कि वहीं से ये विवाद जो है कहीं ना कहीं बड़ी जो है चुनौती इस दोनों देशों के बीच में किसी समझौते को लेकर बना है। और दूसरी महत्वपूर्ण लेबनान है। लेबनान भी जो है पहले पॉइंट में शामिल है कि दोनों सीज़फ़ायर जो है वो हर फ्रंट पे होगा उसमें लेबनान भी शामिल है, लेकिन हमने देखा कि लेबनान में पिछले 20 दिन के दौरान सीज़फ़ायर के दौरान करीब 100 लोग जो हैं इजरायली हमलों में मारे गए हैं। वो कहीं ना कहीं ईरान को जो है काफी परेशान कर रहा है। यही कारण है कि ईरान जो है लगातार दबाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। और हमने देखा
0: कि बहुत बहुत शुक्रिया अशरफ तमाम जानकारी के लिए। वही अमेरिकी हमलों का ईरान ने भी जवाब दिया है। ईरान की मिलिट्री ने एक वीडियो जारी कर बताया है कि कैसे अमेरिकी बेस को निशाना बनाया गया। वीडियो आप देखिए, ये वीडियो जारी किया गया है ईरान की मिलिट्री द्वारा जिसमें जवाब दिया गया है अमेरिकी ठिकानों पर। ईरान ने पलटवार किया है और उसको लेकर यह वीडियो जारी किया है कि कैसे अमेरिकी बेस को निशाना बनाया जा रहा है। तो ईरान इस वीडियो के जरिए अपनी सैन्य क्षमता का प्रदर्शन भी कर रहा है। अमेरिका के ताजा हमले के बाद ईरान ने यह कार्रवाई की है, यानी ईरान भी रिटेलिएट लगातार कर रहा है और मिसाइल अटैक किया गया जिसका वीडियो भी जारी किया है कि कैसे अमेरिकी बेस को निशाना बनाया जा रहा है। और ईरान ने एक और वीडियो जारी कर दावा किया है कि उसकी मिलिट्री ने कुवैत में स्थित अमेरिकी बेस को निशाना बनाया। जी हां, मिसाइल से हमले की इस तस्वीर को ईरान ने जारी किया है। कुवैत में अमेरिका के ठिकानों पर हमले की बात कही गई है और ये नया वीडियो ईरान की तरफ से जारी किया गया है कुवैत में हमले को लेकर। तो ये तस्वीर आप देखिए जिसमें बैलिस्टिक मिसाइलों की लॉन्चिंग भी दिखाई गई और ये ताजा वीडियो जारी किया गया है ईरान की तरफ से जिसमें कहा गया है कि अमेरिका के ठिकानों पर हमले किए गए हैं, कुवैत में हमले की बात कही जा रही है। जिस तरीके से अमेरिका ईरान पर हमले कर रहा है उसी का जवाब ईरान भी बखूबी से दे रहा है और ऐसे में अब कुवैत पर मिसाइल ताकी गई है, उसका ये ताजा वीडियो ईरान ने जारी किया। तो ईरान और अमेरिका को लेकर एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को लेकर बड़ा बयान दिया है। दरअसल ट्रंप ने कहा है कि ईरान का अभी फोन आया था और वो बहुत बुरी तरह से डील करना चाहते हैं। रिपोर्टर ने ट्रंप से पूछा कि अगर वो डील करना चाहते हैं तो उन्होंने कमर्शियल जहाजों पर हमला क्यों किया। तो ट्रंप ने ये कहा क्योंकि वो थोड़े पागल है लेकिन वो बहुत बुरी तरह से डील करना चाहते हैं। ईरान का फिर से फोन आया था, ये डोनाल्ड ट्रंप ने रिपोर्टर से कहा।
2: They want to make a deal so badly. They called a little while ago. They want to make a deal so badly.
3: If they want to make a deal, why do you think they attacked commercial vessels?
2: Because they're sort of crazy, to be honest. They're sort of crazy.
0: हमले के बीच ईरान के मशहद में पोस्टर लगे हैं जिसमें कि ट्रंप की हत्या की धमकी दी गई है। पोस्टर पर साफ साफ लिखा नजर आ रहा है वी विल किल ट्रंप। और ऐसी धमकी के बीच अंकारा में नाटो शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि कल की वो ईरान का सबसे बड़ा निशाना है और वो ईरान की किल लिस्ट में नंबर एक पर है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह भी कहा है कि उन्हें इसकी परवाह नहीं है। ट्रंप ने चेतावनी दी है कि ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। उन्होंने ईरान के खिलाफ अमेरिका की सैन्य कार्रवाई का बचाव भी किया। ट्रंप ने यह भी कहा है कि उन्हें ईरान के साथ संघर्ष के दोबारा भड़कने की उम्मीद नहीं है।
2: Right?
3: But was there a specific
2: perhaps someday you want to change professions.
0: तो ईरान को लेकर ट्रंप के दिए गए बयान पर ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराग्ची ने पलटवार किया है। अराग्ची ने कहा है कि ईरान की सभ्य और साहसी जनता को अपमानजनक भाषा में संबोधित करने से उनकी महानता कम नहीं होती। ईरानी लोग अपनी सभ्यता, संस्कृति और मजबूत नैतिक मूल्यों के लिए जाने जाते हैं। हम अभद्रता का जवाब अभद्रता से नहीं बल्कि कार्रवाई से देते हैं, निडरता और अदम्य साहस के साथ देते हैं। तो अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा ईरान को कैंसर कहने वाले बयान पर ईरानी विदेश मंत्री ने भी पलटवार दिया। दरअसल सैयद अब्बास अराग्ची ने कहा है कि ईरान की सभ्य और साहसी जनता को अपमानजनक भाषा में संबोधित करने से उनकी महानता कम नहीं होती। ईरानी लोग अपनी सभ्यता, संस्कृति और मजबूत नैतिक मूल्यों के लिए जाने जाते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जहां एक तरफ अमेरिका ने ईरान पर फिर से हमला बोला है तो वहीं दूसरी तरफ शोक और गम पूरा ईरान डूबा नजर आ रहा है। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई की अंतिम विदाई की तैयारियां पूरी हो चुकी है। उन्हें आज सुपुर्दे खाक किया जाएगा। आयतुल्लाह अली खामेनेई को उनके गृहनगर मशहद में इमाम रजा दरगाह में सुपुर्दे खाक किया जा रहा है। इसके साथ ही तेहरान और अन्य शिया केंद्रों में 4 जुलाई से चल रहे उनके सप्ताह भर के भव्य अंतिम संस्कार का समापन हो जाएगा। इस भारी लम्हे पर न सिर्फ ईरान बल्कि इराक तक गहरा शोक व्यक्त किया जा रहा है। सड़कों पर लाखों लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है और पूरे पश्चिम एशिया में माहौल तनावपूर्ण और गमगीन है। तो 28 फरवरी को अमेरिकी हमले में आयतुल्लाह अली खामेनेई की मौत हुई थी। यह हमला तेहरान में हुआ था। खामेनेई जिस इमारत में मौजूद थे उसे अमेरिका ने मिसाइल से तबाह कर दिया था। उस तबाह इमारत की तस्वीरें पहली बार दुनिया के सामने आई है। ईरान की मेहर न्यूज एजेंसी ने यह वीडियो जारी किया है और इसी इमारत में आयतुल्लाह अली खामेनेई की जान चली गई थी। अमेरिकी हमले में खामेनेई के साथ साथ कई परिजनों और रक्षा अधिकारियों की भी जान चली गई थी और ये उसी इमारत का वीडियो सामने आया है।
4: تو برمیگردی و روزی در تو نماز اقامه میکنی و این تعبیر
0: तो आज तक की टीम पहली बार उस इमारत तक पहुंची जहां खामेनेई की मौत हुई थी। वहां से और जानकारी दे रहे हैं आज तक संवाददाता सुमित चौधरी। देखिए,
5: आज तक की टीम इस समय मौजूद है उस जगह पे, उस घर पर जो पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई का घर हुआ करता था, जहां पर उनकी हत्या की गई। मेरे पीछे जो आप जगह देख रहे हैं, दरअसल आप देखें इसको पूरा कॉर्डन कर दिया गया। पीछे जो इमारतें देख रहे हैं, अगर आप देख पा रहे हो तो उनको नुकसान पहुंचा था। सारी इमारतें आसपास की बम्बारमेंट किया गया था और कहा जाता है कि न सिर्फ एक इमारत को बल्कि मल्टीपल आसपास की जो भी इमारतें थी उनको भी ध्वस्त कर दिया गया। अब इस पूरे इलाके को कॉर्डन कर दिया गया है, इस पूरे इलाके से डिब्रीज को या फिर उनको चीज़ों को हटा दिया गया। लेकिन अगर आप देखें कि यहाँ पर जहाँ पर गेट लगाया गया है, ये वो पूरा कंपाउंड था जहाँ वो अपने परिवार के साथ उस समय रह रहे थे, उनका ऑफिस भी वही था। और अभी यहाँ पर लोग उनकी दुआओं के लिए उनको याद करते हुए, अगर आप देखें बच्चे भी आपको नज़र आएंगे, महिलाएँ भी याद हैं, रो रहे हैं आप अपने सुप्रीम लीडर को याद करते हुए। और इस समय के ताज़ा हालात कुछ ऐसे हैं कि लोग गमज़दा हैं, बहुत ज़्यादा परेशान है। सुप्रीम लीडर का जो आपका फ्यूनरल है वो अब यहाँ से निकल चुका है, तेहरान से वो कुंभ है। और इसी बीच मैं आज तक की टीम आपको सबसे पहले उस लोकेशन पर लेकर आई है जहाँ पर उनकी हत्या या उनको मारा गया था। यही है सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई का वो घर जहां पर 28 फरवरी को उन पर अटैक किए गए थे अमेरिका और इसराइल द्वारा जॉइंट ऑपरेशंस में। और ये पूरे कंपाउंड अगर आप मेरे पीछे देख रहे हो, हालांकि देखिए किसी भी मीडिया समूह को आज तक आने की इजाज़त नहीं थी, आज तक एकलौती ऐसी भारतीय मीडिया है जो इस समय मौजूद है और आपको दिखा रही है कि आखिर यहाँ की ताज़ा तस्वीरें कैसी हैं।
0: और अब बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऑस्ट्रेलिया दौरे की कर लेते हैं। मेलबर्न में अब से कुछ देर पहले पीएम मोदी ने इंडिया ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम को संबोधित किया है। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि दुनिया अस्थिरता, सप्लाई चेन बाधा और ऊर्जा संकट से जूझ रही है। ऐसे समय में भारत और ऑस्ट्रेलिया के प्राकृतिक और विश्वसनीय पार्टनर हैं। साथ ही पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलिया को भारत में निवेश के लिए आमंत्रित किया। और अब थोड़ी देर में पीएम मोदी ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बनीज के साथ तीसरे वार्षिक शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता करने वाले हैं। दोनों नेताओं के बीच रक्षा और सुरक्षा, व्यापार और निवेश, शिक्षा, कौशल एवं छात्र गतिशीलता तथा दोनों देशों के लोगों के बीच संबंधों को और मजबूत करने सहित कई अहम मुद्दों पर भी चर्चा हो। सीईओ फोरम में संबोधन के बाद ऑस्ट्रेलियाई पीएम अल्बनीज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सेल्फी लेते नजर आए हैं। दोनों ने एक दूसरे से गर्मजोशी के साथ मुलाकात की और दोनों देशों के रिश्ते और मजबूत करने की बात भी कही। आज दोनों नेता द्विपक्षीय वार्ता भी करने जा रहे हैं। इस बीच अल्बनीज ने पोस्ट कर कहा है कि हम मिलकर अपनी अर्थव्यवस्थाओं को आगे बढ़ा रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया और भारत के व्यवसायों को समर्थन दे रहे हैं। मुलाकात की तस्वीरें आपने देखी, जब दोनों एक दूसरे से मिले सेल्फी लेते हुए वहां के लोग नजर भी आए हैं। अब ये मुलाकात इतनी अहम क्यों मानी जा रही है, चलिए अब वो समझ लेते हैं। दरअसल सीईसीए समझौते पर बातचीत आगे बढ़ने की उम्मीद इस मुलाकात से की जा रही है। डिफेंस और ट्रेड डील पर भी इस मुलाकात में नजर होगी। क्वाड सहयोग को नई मजबूती इससे मिलेगी। तो ये दौरा काफी ज्यादा खास है। व्यापार, स्वच्छ ऊर्जा और खनिजों पर भी इस मुलाकात में फोकस होगा। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर भी चर्चा की जा सकती है जब दोनों के बीच वार्ता की जाएगी। वहीं अब आगे बढ़ते हैं, अब अगली खबर राम मंदिर चढ़ावा चोरी से जुड़ी हुई। दरअसल पुलिस की पूछताछ में तीनों आरोपियों ने कई राज उगले हैं और खुलासा हुआ है कि रिश्तेदारों के हाथों से चोरी की रकम को सफेद करते थे। सूत्रों के मुताबिक आरोपियों ने बताया है कि पुलिस को कि चोरी के रुपये वो अपने करीबियों और रिश्तेदारों को भेजते थे और उनसे अपने खातों में रकम ट्रांसफर करवाते थे ताकि रकम का सोर्स छिपा रहे और शक भी ना हो। बैंक डिटेल से इसकी पुष्टि भी हुई है। पूछताछ में तीनों आरोपियों अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा और करुणेश पांडे ने कई और राज भी उगले हैं। आज रकम, जेवर आदि की बरामदगी भी हो सकती है। चलिए अब खबर मौसम की मार की। उत्तराखंड के टिहरी में कदूखाल इलाके में NH-707A पर भूस्खलन की घटना सामने आई है। उस लैंडस्लाइड की जद में दो रेस्टोरेंट आ गए हैं। वैसे तो एहतियात के तौर पर दोनों रेस्टोरेंट और आसपास की झुग्गियों को खाली करवा दिया गया, लेकिन भूस्खलन में एक पुरानी खाली भवन तबाह हो गया और जांच में सामने आया है कि वहां पर होटल के निर्माण के लिए खुदाई कराई जा रही थी और उसी वजह से पहाड़ी का हिस्सा वहां से दरक गया। तो मैदानी इलाकों ही नहीं, अब पहाड़ों पर भी मुसीबत बढ़ने वाली है। उत्तराखंड के लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। देर रात से ही देहरादून समेत प्रदेश के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर बारिश का दौर जारी है। सभी जिलों में प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है।
6: मानसून बारिश का मैदानों ही नहीं पहाड़ों पर भी अपना रौद्र रूप जारी है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में हो रही बारिश से हालात खराब होते दिख रहे हैं। चमोली में हो रही बारिश के चलते अलकनंदा नदी उफान पर नजर आ रही है। नदी का पानी तटों के काफी पास से बहता नजर आ रहा है। वहीं बद्रीनाथ धाम में रुक रुक कर हो रही बारिश के चलते श्रद्धालुओं की संख्या में भी जबरदस्त कमी देखने को मिल रही है।
7: बद्रीनाथ धाम की बात करें तो यहाँ पे बारिश हो रही है, हेमकुंड साहिब में बारिश हो रही है। हालांकि यात्रा मार्ग अभी फिलहाल ठीक है, लेकिन प्रशासन की जो अपील है, कभी कभार जैसे ही मार्गों पे मार्ग बंद हो रहा है, हालांकि मशीन तैनात है, लेकिन मूसलाधार बारिश के दौरान यात्रियों से सुरक्षित स्थानों पर रुकने की अपील जो है प्रशासन बार बार कर रहा है।
6: वहीं हिमाचल प्रदेश में भी बारिश के चलते पहाड़ी इलाकों में हालात खराब होते नजर आ रहे हैं। भारी बारिश के चलते कुल्लू का डंडू झरना में पानी का बहाव तेज हो गया है, जिसके बाद लोगों को अलर्ट जारी कर दिया गया है। प्रशासन ने लोगों से अपील कर झरनों, नालों और नदी नालों के किनारों से दूर रहने की सलाह दी है। आसमान से बरसी आफत के चलते वैष्णो देवी मार्ग पर भी लैंडस्लाइड हुआ है। पहाड़ों से मलबा बहकर मार्ग पर आ गया है। हालांकि इसमें किसी के घायल होने की कोई खबर नहीं है, लेकिन बैटरी कार मार्ग श्रद्धालुओं के लिए अगले निर्देश तक बंद कर दिया गया। चमोली से कमल नयन सिलोड़ी के साथ आज तक ब्यूरो।
0: खबर महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवड़ इलाके में कल हुए हादसे के बाद अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन वहां जारी है, जहां पर आज सुबह कंक्रीट के भारी पिलर के नीचे फंसे एक कर्मचारी को कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। पिंपरी चिंचवड़ फायर ब्रिगेड, एनडीआरएफ और सेना की टीमें अपनी जान जोखिम में डालकर ये बेहद ही चुनौतीपूर्ण रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। आशंका है कि अब भी 9 लोग मलबे में फंसे हुए हैं और इन्हें सुरक्षित बाहर निकालने के लिए युद्ध स्तर पर राहत और बचाव अभियान लगातार जारी। आज सुबह इमारत के बेसमेंट और निचले हिस्से तक पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया और इसे बेहद ही चुनौतीपूर्ण और हाई रिस्क रेस्क्यू ऑपरेशन माना जा रहा है, क्योंकि जरा सी चूक किसी भी जान पर भारी पड़ सकती है। जारी रेस्क्यू ऑपरेशन में अब तक 9 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला भी जा चुका है और माना जा रहा है कई लोग वहां पर अभी भी फंसे हुए हैं। चलिए अब बात महाराष्ट्र के रायगढ़ से आई हैरान करने वाली तस्वीर की। दरअसल रायगढ़ के पनवेल तालुका में पाताल गंगा नदी के तेज बहाव के कारण महाराष्ट्र के रायगढ़ में मूसलाधार बारिश के बीच एक अनोखा वीडियो सामने आया है। रायगढ़ के पनवेल तालुका में HPCL पाताल गंगा LPG बॉटलिंग प्लांट से करीब 3000 गैस सिलेंडर भारी बारिश की वजह से पाताल गंगा नदी में बह गए। ये रिपोर्ट देखिए।
6: मिडिल ईस्ट में जंग के दौरान जिस चीज की लोगों को काफी जरूरत थी वो अब भारी बारिश में बहते दिख रहे हैं। महाराष्ट्र के रायगढ़ से हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। पाताल गंगा नदी का ये तेज बहाव और उसमें बहते दिख रहे हैं गैस सिलेंडर। भारी बारिश के चलते रायगढ़ में HPCL का बॉटलिंग प्लांट नदी की चपेट में आ गया और तेज बहाव में करीब 3000 सिलेंडर पानी के साथ बह गए। इसमें कुछ भरे हैं और कुछ खाली। नदी में बहते सिलेंडर को देखने के लिए इलाके में हड़कंप मच गया। नदी का किनारा हो या पुल, लोग सिलेंडर को देखने के लिए जुट गए। नदी में सिलेंडर के बहने की सूचना जैसे ही प्रशासन को मिली वैसे ही जिलाधिकारी ने अपील जारी कर दी। लोगों को सिलेंडर से दूर रहने की सलाह दी गई। जिलाधिकारी ने कहा सिलेंडर में गैस है या नहीं या वे सुरक्षित स्थिति में हैं या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं होती, इसलिए लोग इनसे दूरी बनाकर रखें। फिलहाल स्थानीय प्रशासन और गैस प्लांट के लोग सिलेंडर को बरामद करने की कोशिश में जुटे हैं। रायगढ़ से महबूब के साथ आज तक ब्यूरो।
0: बात दिल्ली NCR की कर लेते हैं जहां पर कल से ही झमाझम बारिश का सिलसिला जारी है। रात भर हुई बारिश से सड़कों पर पानी भरा हुआ है। इस बीच मौसम विभाग ने आज भी बारिश से राहत नहीं मिलने की संभावना जताई है। IMD ने दिल्ली और हरियाणा के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। रात भर से हो रही बारिश नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद समेत NCR के इलाकों में सड़कों पर जल जमाव से लोगों को काफी परेशानी हो रही है, जिससे कि गाड़ियों की रफ्तार सुस्त हो गई है और लोगों को आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं दिल्ली NCR की जुड़ी, जहां पर सड़कों पर लबालब पानी बह रहा है जिसकी वजह से दिल्लीवासियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। चलिए यहां पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए आज तक।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से इन एसोसिएशन विद
9: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सुख।
10: क्या इथेनॉल से नुकसान हो रहा है सर गाड़ियों?
11: मारुति सुजुकी के पास एक भी कंप्लेन नहीं है, टोयोटो के पास एक भी कंप्लेन नहीं है। मुझे बदनाम करने के लिए और इथेनॉल को बदनाम करने के लिए प्रयास है।
10: नए नए एक्सप्रेस वे जो बन रहे हैं उनमें गड्ढे,
11: ये हमारे हाईवे में जितने गड्ढे हैं उसके ऊपर आप कार्यक्रम करिए और दिखा दीजिए।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से इन एसोसिएशन विद
9: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
12: Accuray, the number one Korean skincare brand, now in India.
13: TuneIn's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
14: Did you know you can control the speed of what you're listening to? During playback, you can tap on the speed control setting to adjust the speed, whether you'd like to make it faster to get to the end or take it a bit slower to give it time to digest. You can listen to all your favorite podcasts and audiobooks however you want. Plus, if you follow your favorite podcast and books, you'll get recommendations on what to listen to next. Why not try out this feature today?

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: देख इतना बड़ा आदमी मुझे इन्वेस्टमेंट टिप्स दे रहा है।
2: अच्छा सिर्फ तुझे ही दे रहा है?
1: ओ अर्ज किया है दूर से लगा कि एक जाना पहचाना चेहरा हंसकर सच कह रहा था, पास जाकर देखा तो झूठे वीडियो के जाल में मैं फंस रहा था। सेबी और एनएससी का कहना है किसी भी वीडियो में पलके और लिप सिंक पर ध्यान दें, सिर्फ ऑथराइज्ड सोर्सेज पे ही विश्वास करें। वाह
3: सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर।
4: एनएससी द्वारा निवेशकों के हित में जारी।
5: हमें स्वस्थ रखने वाली सारी चीजें ज्यादातर शुद्ध होनी चाहिए, सूर्य की किरणें और स्वच्छ पानी, वैसा ही है लाइन अरेबियन डेट्स और अब लाइन लाइना डेट्स। इसमें फाइबर्स और विटामिन्स भी कुदरती हैं, जो देता है स्वास्थ्य भी कुदरती।
6: लाइन लाइना प्रीमियम डेट्स।
7: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
8: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
9: सोच बदलो और बैंक भी।
10: जब बात हो सोयाबीन और मक्के की फसलों को सूंडियों से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का प्रोक्लेम एक्स्ट्रा, जीते हर बाजी।
11: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
12: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
13: हनी इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
14: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा, रुंगटा स्टील TMT से बना।
15: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं, रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
16: हमने तब भी सवाल किया था,
17: दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में हुए कोचिंग हादसे पर दिल्ली हाई कोर्ट ने आज खूब फटकार लगाई है।
16: हम आज भी सवाल करते हैं,
17: लखनऊ में भी दर्दनाक हादसे में 15 लोग इसीलिए मारे गए क्योंकि नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। दिल्ली जैसा हादसा लखनऊ में हो गया और लखनऊ जैसे हालात कभी भी दिल्ली में बन सकते हैं।
16: ऑपरेशन अग्नि,
17: आज तक के स्टिंग ऑपरेशन में हमने आपको दिखाया कि बेसमेंट में नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, कोचिंग और लाइब्रेरी चलाई जा रही है। आग लगने की स्थिति में अगर ये बंद हो जाए तो फिर अंदर फंसे लोग कैसे निकलेंगे।
16: आज तक के स्टिंग में सामने आई चौंकाने वाली सच्चाई, खबरदार सिर्फ आज तक पर।
18: In association with E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
19: 25 सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये खबरें 7 तक, देखते रहिए आज तक।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। Akajay, the number one Korean skincare brand, now in India.

रायगढ़ में बहे हजारों सिलेंडर, सूरत में घुसा पानी। बुशहर, चाबहार समेत ईरान के कई इलाकों में अमेरिका ने गिराए बम। बंदर अब्बास में तेज धमाके, ईरान का बारूदी पलटवार। कुवैत और बहरीन में फिर से बजने लगे जंग के सायरन। ट्रंप का आक्रामक बयान, ईरान की किल लिस्ट में मैं नंबर वन। दोबारा हिमाकत हुई तो देंगे 20 गुना ताकत से जवाब। तेहरान का जवाब, अभद्रता का जवाब एक्शन से देंगे। ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी, आज पीएम एंथनी अल्बनीज के साथ द्विपक्षीय वार्ता। बिजनेस फोरम समिट में संबोधन, कहा ऊर्जा संकट बड़ी चुनौती। मेलबर्न में हुआ अभूतपूर्व स्वागत। चढ़ावा चोरी केस में बड़ा खुलासा, पूछताछ में आरोपियों ने उगले राज। रिश्तेदारों के अकाउंट में वाइट करते थे लूट की रकम। 10 जुलाई को अयोध्या जाएंगे सीएम योगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ पूजा पराशर। चलिए, वक्त हो गया है नॉनस्टॉप 100 का। प्रेजेंटेड

दिल्ली एनसीआर में दो दिनों से लगातार रुक रुक कर हो रही बारिश से बदला मौसम, तापमान में आई गिरावट। मौसम विभाग का अगले दो दिनों के लिए मध्यम से भारी बारिश का अलर्ट। मॉनसून की पहली बारिश से साल 2026 में पहली बार हवा हुई सबसे साफ। संतोषजनक श्रेणी में 59 दर्ज किया गया AQI। गुरुग्राम में भी हुई झमाझम बारिश। सुहावने मौसम के बीच ठंडी हवाओं से तापमान में 4 से 5 डिग्री तक गिरावट दर्ज। दिल्ली से सटे नोएडा में भी जमकर बरसे हैं बादल। जोरदार बरसात से कई जगहों पर भरा पानी। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के ठाठरी इलाके में बादल फटा। प्राकृतिक आपदा के चलते कई मकान और दुकानें क्षतिग्रस्त। गुजरात और मध्य भारत में लगातार बारिश का दौर जारी। कई राज्यों में भारी बारिश का रेड अलर्ट। सूरत सहित पूरे दक्षिण गुजरात में पिछले कुछ दिनों से हो रही है मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। खाड़ियों का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर। सूरत में कई घंटे बाद भी सड़कों पर पानी जमा हुआ है, जिससे कि लोगों का जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ। जान जोखिम में डालकर रास्ते से गुजरने को मजबूर लोग। सूरत में खाड़ी का कहर। डिंडोली इलाके में दूध के लिए मची अफरा तफरी। वीडियो हुआ वायरल। पानी में डूबे कई इलाके। नवसारी में भारी बरसात के बाद उफान पर अंबिका नदी रौद्र रूप में बहता दिखाई दे रहा है प्रसिद्ध गिर वाटरफॉल। वडोदरा में भारी बारिश से कई नदियां उफान पर। प्रशासन हुआ अलर्ट। निचले इलाकों में रह रहे लोगों को लिए चेतावनी जारी की गई। सूरत में भारी बारिश से रिहायशी इलाकों में घुसा पानी। रोजमर्रा की चीजों के लिए जैसे दूध पानी लेने के लिए लोग हो रहे हैं परेशान। सूरत में लगातार हो रही बारिश से बाढ़ जैसे हालात। सीमाड़ा खाड़ी ओवरफ्लो होने की वजह से कई इलाकों में घुसा पानी। सड़कें बनी नदियां और कई वाहन डूबे। जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित। भारी बारिश से पूरा सूरत शहर जलमग्न। जगह जगह NDRF और फायर ब्रिगेड फंसे, लोगों के रेस्क्यू में जुटे। MP के खरगोन में तेज बहाव में बहा युवक। लोगों ने रस्सी से बचाने की कोशिश की। तैरते हुए युवक का लाइव वीडियो आया सामने। मुंबई ठाणे बारिश का दौर जारी। तेज हवा के साथ बारिश का ऑरेंज अलर्ट। जरूरी सावधानी बरतने की सलाह। महाराष्ट्र के रायगढ़ में भारी बारिश के चलते करीब 3000 LPG सिलेंडर नदी में बहे। जिला कलेक्टर ने लोगों से सूचना देने की अपील की। पुणे में जोरदार बारिश का असर। भिड़े ब्रिज डूबा। छोड़ा गया 27,000 क्यूसेक पानी। महाराष्ट्र के वसई में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित। रेलवे ट्रैक पर भरा पानी। ट्रेन सेवा प्रभावित। छत्रपति संभाजीनगर में नदी नाले उफान पर। ग्रामीणों से सुरक्षित स्थानों पर रहने और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से दूर रहने की अपील। राजस्थान के अलवर में भी झमाझम बारिश के कारण भीषण गर्मी से मिली राहत। जोरदार बारिश से सड़कों पर भरा पानी। छत्तीसगढ़ के गोरेला पेंड्रा मरवाही में मूसलाधार बारिश के कारण उफान पर नदी नाले। सड़क मार्ग टूटने की वजह से ग्रामीण परेशान। पंजाब के कई इलाकों में अगले 36 घंटे बारिश का अलर्ट जारी। मौसम लगातार बना हुआ है बारिश वाला। हिमाचल प्रदेश में 13 जुलाई तक बारिश का दौर जारी रहने का अनुमान। पहाड़ों पर अचानक से बाढ़ वाली जगहों से दूरी बनाए रखने की सलाह। कुल्लू के ऊपरी पहाड़ियों में बारिश के बाद बदला नजारा। पहाड़ियों में शांत झरने में कई गुना बढ़ा जलस्तर। दिखा अद्भुत नजारा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की धमकी के बाद अमेरिकी सेनाओं ने ईरान पर हमले किए शुरू। ईरान के कई शहरों और द्वीपों पर ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक की गई। ईरान के सिरिक बंदर अब्बास में जोरदार धमाके। फिलहाल धमाकों के कारण और नुकसान की आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई। मेयर की रिपोर्ट के मुताबिक बंदर अब्बास में 8 धमाके, सिरिक में 3 और चाबहार के पास 10 धमाके सुनाई दिए गए। हमले में 2 मछुआरों की मौत की खबर भी सामने आई। ईरान के विदेश मंत्री अराग्ची का सख्त संदेश। कहा अशिष्टता का जवाब जब शब्दों से नहीं कार्रवाई से देंगे। ईरान की महानता अपमान से कम नहीं होगी। अराग्ची बोले हम जवाब बहादुरी और कार्रवाई से देते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि कार्रवाई जहाजों पर हुए हमले का जवाब है। अगर ऐसी घटना दोबारा हुई तो इसका जवाब और भी सख्ती से दिया जाएगा। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने घोषणा की है कि ट्रंप के निर्देश पर ईरान पर नई हवाई हमले शुरू किए गए। ये कार्रवाई हॉर्मुज में जहाजों पर हालिया हमलों के जवाब में की गई। ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध विराम पर दिया विस्फोटक बयान। कहा मेरे लिए खत्म हो चुका है युद्ध विराम। साथ ही कहा नेटो देश हॉर्मुज में भेजेंगे समुद्री सुरंगों को हटाने वाले जहाज। ईरान ने खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर दागी मिसाइलें। साथ ही ईरान पर किए गए अमेरिकी हमले की नई तस्वीर सामने आई। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने ईरान द्वारा युद्ध विराम तोड़ने को ठहराया गलत। कहा खाड़ी देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हुए ईरान के हमले अंतरिम समझौते का उल्लंघन है। ऑस्ट्रेलिया के 2 दिनों के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एंथनी अल्बनीज के साथ द्विपक्षीय वार्ता। एयरपोर्ट पर ऑस्ट्रेलियाई सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने प्रधानमंत्री का गर्मजोशी के साथ किया स्वागत। दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। मेलबर्न के भारतीय समुदाय ने भी प्रधानमंत्री का किया मेगा स्वागत। होटल पहुंचने पर बड़ी संख्या में मौजूद भारतीय प्रवासियों ने मोदी मोदी और वंदे मातरम के लगाए नारे। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का किया गया आयोजन। पीएम मोदी ने तबला वादन का लिया आनंद। गृहमंत्री अमित शाह और नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू
किंजरापू की बैठक की देश के प्रमुख एयरपोर्ट्स पर यात्री सुविधाओं, सुरक्षा और इमिग्रेशन व्यवस्था की हाई लेवल समीक्षा की गई। सीमावर्ती जिलों के एसपी के साथ आज गृह मंत्रालय की हाई लेवल मीटिंग होगी। मीटिंग में अवैध घुसपैठ रोकने की रणनीति पर होगी चर्चा, डेमोग्राफिक बदलावों की भी समीक्षा। अलवर दौरे पर सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का किया गया निरीक्षण। गडकरी ने अधिकारियों के साथ की मीटिंग, एक्सप्रेसवे पर होने वाले काम के ऑडिट के दिए गए आदेश, बोले जिस ठेकेदार का काम खराब मिलेगा उसके खिलाफ होगी कार्रवाई। एथेनॉल विवाद पर नितिन गडकरी का बड़ा बयान, कहा एथेनॉल को बदनाम करने की कोशिश, बोले E20 फ्यूल से एक भी गाड़ी खराब हुई तो सामने लाए। नीट पेपर लीक केस में बड़ा एक्शन, पीवी कुलकर्णी और शिवराज की हिरासत 11 जुलाई तक बढ़ी। कल अयोध्या जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, सोहावल में पूर्व मंत्री की प्रतिमा का करेंगे अनावरण, बीकापुर में जनसभा को भी करेंगे संबोधित। चित्रकूट दौरे पर सीएम योगी, 124 विकास परियोजना के उद्घाटन और शिलान्यास समारोह में लिया हिस्सा। सीएम योगी का अखिलेश परिवार, कहा इन्हें न राम न कृष्ण में आस्था, परिवारवाद वंशवाद के नाम पर समाज में फैलाई नफरत। राम मंदिर ट्रस्ट में बड़ा बदलाव, अब तीन लोग मिलकर संभालेंगे बैंक खातों की जिम्मेदारी। राम मंदिर दान चोरी मामले में तीनों आरोपियों को भीकापुर के पास सुनसान बाग में लेकर पहुंची पुलिस। इसी जगह पर मंदिर से चोरी की गई रकम को लेकर इकट्ठा होते थे आरोपी और करते थे बंटवारा। चंदा चोरी के आरोपों को लेकर डिप्टी सीएम कृष्ण प्रसाद मौर्य ने कहा कि अखिलेश का परिवार रामद्रोही, 2027 में सपा का सूपड़ा हो जाएगा साफ। राम मंदिर ट्रस्ट विवाद के बीच गोपाल राव का बड़ा बयान, बोले मैं यहीं रहूंगा, बर्खास्तगी की खबरें गलत। शिव की नगरी काशी में सावन की तैयारियां तेज, इस बार विश्वनाथ मंदिर में होंगे 7 प्रवेश द्वार, वीआईपी और स्पर्श दर्शन पर रहेगी रोक। बद्रीनाथ चढ़ावा चोरी मामले पर सीएम धामी ने कहा दोषियों पर होगी कड़ी कार्रवाई, किसी को नहीं बख्शेंगे। टीएमसी पर ईडी की आर्थिक चोट, 3 बैंक खातों में 440 करोड़ रुपए फ्रीज। मनी लॉन्ड्रिंग कानून में कोलकाता और 5 जगहों पर चला तलाशी अभियान। कोलकाता में बुरईपुर घटना के विरोध में तृणमूल युवा कांग्रेस की रैली के दौरान बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। कोलकाता के कालीघाट स्थित आवास के बाहर घायल कार्यकर्ताओं को अस्पताल भेजने के दौरान बवाल, ममता बनर्जी ने अपनी ही टीएमसी कार्यकर्ता को मारा थप्पड़। बिहार में सीएम सम्राट कैबिनेट की बैठक में कुल 22 एजेंडों पर लगी मुहर। पटना एम्स के विस्तार के लिए 26.5 एकड़ भूमि के अधिग्रहण की मिली स्वीकृति। परिवहन व्यवस्था के विकास में भी अहम फैसला, बिहार सरकार ने राजधानी पटना को राज्य के 4 प्रमुख शहरों से जोड़ने वाले रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के निर्माण को दी है मंजूरी। पटना में 25 साल के युवक के अपहरण पर फूटा परिजनों को और लोगों का गुस्सा, आक्रोशित भीड़ ने जाम की सड़क, मौके पर पहुंचे प्रशांत किशोर। जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर के खिलाफ बेतिया कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दर्ज, 28 जुलाई को पेश होने का आदेश। डीआरडीओ ने रचा एक और कीर्तिमान, लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट पिनाका का किया गया सफल परीक्षण, फ्लाइट टेस्ट के सभी तय लक्ष्यों को किया पूरा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सफल फ्लाइट टेस्ट के लिए डीआरडीओ, भारतीय सेना और इंडस्ट्री को दी है बधाई, सफल परीक्षण से जुड़ी सभी टीमों को सराहना की। सौरव गांगुली को जन्मदिन पर बड़ा तोहफा, पूर्व कप्तान को आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में किया गया शामिल, ये सम्मान पाने वाले 12वें भारतीय बने गांगुली। महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद पर बैठक में शामिल हुए शरद पवार, एनडीए में जाने की अटकलों के बीच बढ़ी सियासी चर्चा। महाराष्ट्र विधानसभा में कनेक्टिंग लिंक परियोजना पर विपक्ष को सीएम फडणवीस का जवाब, बोले मुझे नहीं, महाराष्ट्र को बदनाम किया तो छोड़ूंगा नहीं। थाने के डोंबिवली में शिवसेना पार्षद रमेश महात्रे गिरफ्तार, सरकारी अस्पताल में डॉक्टर्स और महिला नर्स से की गई थी मारपीट, सामने आया वीडियो। डोंबिवली में महिला नर्स से मारपीट मामले में शिवसेना यूबीटी विधायक आदित्य ठाकरे अस्पताल पहुंचे और पीड़ित मेडिकल स्टाफ से की बात, कहा उनकी पार्टी इस मुद्दे को उठाएगी। पुणे में वेस्ट टू एनर्जी प्लांट की इमारत ढही, 7 लोगों को मलबे से सुरक्षित निकाला गया बाहर, 9 अब भी फंसे, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। टीएमसी जिला परिषद सभाधिपति विश्वनाथ बौरी के घर पर हमला, बेटे के प्रेम संबंध को लेकर बवाल मचा, भीड़ ने की तोड़फोड़, भारी पुलिस बल तैनात। पंजाब बार एसोसिएशन की संयुक्त एक्शन कमेटी के आह्वान पर राज्य में 70,000 वकील की अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू, रखी मांगे। इंदौर में एमजीएम मेडिकल कॉलेज में मेंटेनेंस घोटाले पर बड़ी कार्रवाई, 5 हॉस्पिटल को दिया गया है नोटिस। दरभंगा में स्पा सेंटर के नाम पर चल रहा था देह व्यापार का अवैध धंधा, स्पेशल क्राइम डीवाईएसपी ने पुलिस बल के साथ की छापेमारी, लोग गिरफ्तार किए गए 4। अलवर में केंद्रीय मंत्री के कार्यक्रम के दौरान एक्सप्रेसवे पर 20 टन मांस से भरा कंटेनर पकड़ा गया, जांच के लिए लिया गया सैंपल। पुणे में 3 मंजिला बिल्डिंग पर ऊपर से कचरा गिरने की वजह से दबी बिल्डिंग, 23 लोगों में से 9 से 14 लोगों को बाहर निकाला गया। कचरा गिरने पर मंत्री गिरीश महाजन का बयान, कहा कई सालों से यह कचरा डिपो है और बारिश की वजह से यह कचरा नीचे आ गया, घटना पर दुख।
सुपौल में एक रात की भारी बारिश के कारण पुल निर्माण के लिए बना डायवर्जन बहा, 150 परिवारों का संपर्क टूटा। छिंदवाड़ा में बेकाबू कार लोगों और गाड़ियों को रौंदते हुए दुकान में जाकर घुसी, 8 लोग घायल हुए, सीसीटीवी वीडियो आया सामने। इंदौर में तेंदुए का आतंक, डिलीवरी बॉय पर हमले का सीसीटीवी फुटेज सामने आया, वन विभाग कर रही तेंदुए की तलाश। रांची पुलिस ने तोड़फोड़ के मामले में 2 पक्षों को गिरफ्तार किया, मारपीट के लगे आरोप। आगरा में लगातार हो रही भीषण बारिश के बीच 2 मंजिला कपड़े की दुकान अचानक से भरभरा कर रही, मलबे की वजह से 5 लोगों को सुरक्षित वहां से बाहर निकाला गया। जम्मू में वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर भूस्खलन, हिमकोटी मार्ग पर बैटरी कार सेवा बंद, मलबा हटाने का काम जारी। उज्जैन में सड़क धंसने की वजह से सीमेंट से भरा ट्रक नाले में गिरा, सीसीटीवी में कैद हुआ हादसा, लोगों ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया। दरभंगा बम धमाके में घायल मजदूर की मौत, लोगों का सड़क पर फूटा गुस्सा, आगजनी कर किया चक्का जाम और 20 लाख मुआवजे की मांग। मेरठ में दलित प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए गए युवक ने फांसी लगाने का किया प्रयास, वीडियो आया सामने। ग्रेटर नोएडा में इंटरव्यू में रिजेक्ट होने के बाद युवक ने 21वीं मंजिल की छलांग लगाकर आत्महत्या की, पुलिस कर रही है मामले की जांच। दिल्ली के संगम विहार में कार्डबोर्ड फैक्ट्री में लगी भीषण आग, दमकल की टीम ने बुझाई आग। दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 16 में बारिश के बीच 4 मंजिला बिल्डिंग गिरी, मलबे में दबने की वजह से 1 की मौत, कई लोगों के दबे होने की आशंका, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। रोहतक में पिलर तोड़कर भाग रहे डंपर ने रोकने आए दुकानदार को कुचला, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। सौरभ गांगुली बायोपिक दादा से राजकुमार राव का फर्स्ट लुक जारी, गांगुली के जन्मदिन पर मेकर्स ने जारी किया पोस्टर, लॉर्ड सेलिब्रेशन लुक की झलक। रहूं मैं तेरे रूबरू का ट्रेलर आउट, 17 जुलाई को रिलीज होगी रोमांस मिस्ट्री सस्पेंस और ट्विस्ट से भरी ये फिल्म। प्रज्वल देवराज और राज बी शेट्टी की कन्नड़ फिल्म करावली का ट्रेलर रिलीज हुआ, 24 जुलाई को रिलीज होगी फिल्म। फिल्म श्री रामभूमि की शूटिंग का आज अयोध्या में पहला दिन, अनुपम खेर ने शेयर की पोस्ट, लिखा श्री राम मंदिर जाकर रामलला से लिया आशीर्वाद। अभी खत्म नहीं हुई है कांतारा फ्रेंचाइजी, ऋषभ शेट्टी ने किया अपडेट, कांतारा 2 पर काम जारी।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की। ये जानेंगे कि आज का दिन कैसा जाने की संभावना बनती है और आज के दिन को बेहतर बनाने के उपाय क्या हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 9 जुलाई 2026 दिन बृहस्पतिवार, तिथि है आषाढ़ कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि, प्रातः 10:37 तक। नक्षत्र है अश्विनी नक्षत्र,

बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा

राशि, स्वास्थ्य कमजोर हो सकता है, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी, परिवार में विवादों से बचाव करें, केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा।

स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं, अतिथि का आगमन होगा, भगवान को पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा

ठीक बनी रहेगी, करियर की स्थिति में सुधार होगा, काम की अधिकता रहेगी, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। मकर राशि, मानसिक समस्या हो सकती है, परिवार में विवाद हो सकता है, धन खर्च पर ध्यान दें, केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। कुंभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, करियर की स्थिति अच्छी रहेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद।

करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा फिरोजी। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।

सावधानी रखें। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
3: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।

0: गुजरात में बरस रही है मानसूनी आफत। शहर शहर पानी की मार से त्राहिमाम कर रहे हैं। पानी की मार ऐसी कि लोगों की जान पर बनाई है। अब नवसारी की तस्वीर देखिए। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की ये तस्वीर है। नवसारी के खारेल ओवर ब्रिज के नीचे इतना पानी भरा है कि टैक्सी पानी में आधा डूब गई।
1: दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे और इसके आगे से जो नया एक्सप्रेस हाईवे बना हुआ है, दोनों के बीच को जोड़ता हुआ एक खारेल का जो अंडरपास है, अंडरपास के सर्विस रोड के नीचे एक तरफ जो बस फंसी हुई है, दूसरी तरफ जो आप देख सकते हो यहाँ पे एक पैसेंजर कार पर फंसी हुई है। इसको बचाने के लिए यहाँ पे जो है वो रेस्क्यू टीम आ चुकी है।
0: टैक्सी के पानी में फंसने की खबर प्रशासन को लगी तो तुरंत एनडीआरएफ के जवान रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गए। कुछ घंटों की मशक्कत के बाद एनडीआरएफ के जवानों ने रस्सी से कार को खींच लिया, कार सवारों की जान बचाई। नीचे कार फंसी थी तो थोड़ी दूर पर एक बस भी फंस गई। दिल्ली मुंबई नेशनल हाईवे पर खारेल ओवर ब्रिज के सर्विस रोड पर फंसी इस बस को देखिए। बस में महिलाओं और बच्चों समेत करीब 30 लोग सवार थे। बताया जाता है कि बस यात्रियों की मदद के लिए रेस्क्यू टीम करीब 2 घंटे बाद पहुंची, लेकिन अच्छी बात ये रही कि सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। नवसारी में कल मूसलाधार बारिश नहीं मानो आफत बरसी थी। 12 घंटे में 10.5 इंच बारिश से आधा शहर जलमग्न हो गया। नवसारी शहर का हाल देख लीजिए। सड़कों पर घुटनों भर पानी बह रहा है। बारिश का पानी कई घरों और दुकानों में भी घुस गया। लोग अपने घरों और सामानों को बचाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। लगातार बारिश के चलते पूर्णा नदी का जलस्तर अपने खतरे के निशान 23 फीट को स्पर्श कर चुका है। कावेरी नदी पर तारकेश्वर मंदिर पूरी तरह जलमग्न हो चुका है।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

टेंडर, सूरत में घुसा पानी। बुशहर, चाबहार समेत ईरान के कई इलाकों में अमेरिका ने गिराए बम, उड़ाया रेलवे ब्रिज। बंदर अब्बास में धमाके, ईरान का बारूदी पलटवार। कुवैत और बहरीन में बजने लगे जंगी सायरन। ट्रंप का आक्रामक बयान, ईरान की किल लिस्ट में मैं नंबर वन। दोबारा हिमाकत हुई तो देंगे 20 गुना ताकत से जवाब। तेहरान का बयान, अमेरिकी अभद्रता का हिसाब होगा। ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर। मेलबर्न में अभूतपूर्व स्वागत। पीएम एंथनी एल्बनीज के साथ द्विपक्षीय वार्ता। बिजनेस फोरम समिट में कहा ऊर्जा संकट को चुनौती। चढ़ावा चोरी मामले में बड़ा खुलासा, पुलिस कस्टडी में आरोपियों ने उगले राज। रिश्तेदारों के अकाउंट में वाइट करते थे लूट की रकम। 30 बैंक खाते फ्रीज, सभी की जांच।

0: नमस्कार, स्वागत है आपका। घड़ी में 9 बज गए हैं, वक्त हो गया है आपके फेवरेट मॉर्निंग प्राइम टाइम शो 9 बज गए का। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। सुबह का सबसे पहला संपूर्ण न्यूज बुलेटिन लेकर एक बार फिर से हम हाजिर हैं खबरें रफ्तार से और विस्तार से। लेकिन सबसे पहले खबरों की झलकियों पर एक नजर डाल लेते हैं। अब दिल्ली NCR पहुंच गई है मानसूनी मुसीबत। कल रात से ही लगातार हो रही बारिश से मच गया है त्राहिमाम। दिल्ली में रेड अलर्ट जारी। पुणे के पिंपरी चिंचवाड़ में मूसलाधार बारिश के बीच बड़ा हादसा। कूड़े का पहाड़ गिरने से गिरी इमारत। जारी है रेस्क्यू ऑपरेशन। सूरत का हाल है बेहाल। बारिश तो थम गई है लेकिन अभी भी कई इलाकों में भरा हुआ है पानी। और ठीक आधे घंटे बाद यानी कि सुबह 9:30 बजे 100 शहर 100 खबर बुलेटिन की शुरुआत करें मुंबई में आई मानसूनी आफत के साथ। क्योंकि मुंबई में इस तमाम खबरों के बीच सबसे ज्यादा बारिश हुई है। दिल्ली NCR कल से ही झमाझम बारिश का सिलसिला देख रहा है लेकिन रात भर रुक रुक कर जो बारिश हुई है उससे कई इलाकों में अभी भी बारिश का दौर जारी है। बारिश से कई इलाकों में सड़कों पर पानी भरने की खबर है। मौसम विभाग ने दिल्ली और हरियाणा के लिए बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम के बिगड़ते मिजाज को देखते हुए गाजियाबाद में 12वीं तक के स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। इस बीच दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश इलाके में नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल के बाहर एक पेड़ गिरने से यातायात बाधित हो गया है। तो लगातार मुसीबतें जारी हैं। एक मुसीबत से पार पाइए, दूसरी आगे पैर पसारे खड़ी है। कहीं घर से निकलिए तो मैनहोल खुला हुआ है, कहीं आगे बढ़िए तो पेड़ गिर जाता है। ऐसे में मानसूनी आफत लगातार दिल्ली NCR ही नहीं पूरे देश में अलग अलग हिस्सों से ऐसी तस्वीरें आती हैं जो ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या मानसून में वाकई घर से बाहर निकलना चाहिए या फिर नहीं। ये तस्वीर यही कहानी बयां कर रही है। अभी भी दिल्ली के कई इलाकों में इस वक्त बारिश जारी है। NCR में भी यही आलम है। गुड़गांव के कई इलाकों में कल काफी घंटों तक ट्रैफिक जाम रहा। आशुतोष मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। आशुतोष, तस्वीरें दिखाइए।
1: नेहा, रेड अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग ने दिल्ली समेत NCR, और सबसे ज्यादा जो असर होगा वो दिल्ली और हरियाणा में होगा। हालांकि मैं इस समय जो सेंट्रल दिल्ली में हूँ गोल मार्केट के आसपास, तो अभी जो स्पेल है ये मॉडरेट रेन है और ये मान के चलिए कि ये 100 मिलीमीटर तक जो बारिश है वो दर्ज की जा सकती है। हालांकि यही 100 मिलीमीटर की बारिश अगर एक दो घंटे में हो जाए तो चारों तरफ जल प्रवाह दिखेगा, सड़कें जो है सैलाब में बदल जाएंगी। लेकिन मॉडरेट रेन है। हालांकि इसका सबसे ज्यादा असर जो दिखाई देगा वो गाजियाबाद में, गौतम बुद्ध नगर, ग्रेटर नोएडा, ग्रेटर नोएडा वेस्ट और गुरुग्राम के ज्यादा, खासकर पूर्वी और दक्षिण गुरुग्राम में ज्यादा दिखाई देगा, जिसके चलते हमने वो तस्वीरें देखी थी कि सैलाब बनी है। लेकिन आज चूंकि गाजियाबाद में छुट्टियां की गई और पूरा इलाका अगर आप देखें नई दिल्ली में, आमतौर पर हम देखते थे कि मानसून में एक सवाल उठता था कि मानसून आया, बारिश कहां चली गई। संभवतः अगले 24 से 36 घंटे वो समय होगा जब कोई इलाका नहीं बचेगा, जबकि दिल्ली NCR का पूरा जो कवर है ये 40 किलोमीटर की परिधि दिल्ली से, वहां लगातार बारिश होगी। और लगातार बारिश का मतलब हर उस इलाके में स्पेल होगा, कहीं लाइट रेन होगी, मॉडरेट, और कुछ इलाके ऐसे हैं जहां भारी से भारी वर्षा हो सकती है। सैटेलाइट तस्वीरें दिखा रही हैं कि बहुत ज्यादा जो आसमान में बादलों का डेरा है वो बहुत घना है और कुछ क्लस्टर पे इतने ज्यादा है जहां पर भारी बारिश हो सकती है। और ऐसे में इसीलिए छुट्टियां और मौसम विभाग ने भी सलाह दी है कि जब तक बेहद जरूरी ना हो घर से बाहर ना निकले, क्योंकि सड़कों पर अगर जल जमा हुआ तो एक तो ट्रैफिक की समस्या होगी और दूसरा मुश्किलें बढ़ सकती है। और इसीलिए गाजियाबाद में एहतियात के कदम उठाए गए हैं, नोएडा में भी एहतियात के कदम उठाए गए हैं, गुरुग्राम और गौतम बुद्ध नगर के लिए मुश्किलें ज्यादा हो सकती हैं, खासकर हरियाणा में। और ये जो बारिश का असर है ये चंडीगढ़, सोनीपत, पानीपत इन इलाकों को भी अपनी चपेट में लेगा, वहां भारी बरसात। तो रेड अलर्ट अगले 36 घंटे दिल्ली NCR हरियाणा के लिए। नेहा,
0: अमित भारद्वाज मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं इस वक्त तमाम जानकारी के साथ। अमित, आप जिस इलाके में वहां की तस्वीरें दिखाइए।
2: नेहा, देखिए हर साल की कहानी होती है, जब बारिश होती है तो सांसदों के घर के ठीक बाहर क्या तस्वीर होती है। पिछले साल भी हमने रिपोर्ट दिखाई थी, मैं अनुराग जी को कहूंगा कि वो तस्वीरें दिखाएं। थोड़ी सी बारिश कल 7 और 8 तारीख को लेकर अलर्ट जारी था, 9 जुलाई की तस्वीर है ये, सुबह से बारिश हो रही है। और ये BD मार्ग है, बाएं हाथ पे माननीय सांसदों का आवास है, दाहिने हाथ पे माननीय सांसदों का आवास है, और उस आवास के अंदर जाने के लिए आपको इस पानी के बीच से वेड इन करके गाड़ियां ले जानी पड़ेंगी। एक दो गाड़ियां खराब भी हैं इसी सड़क पे क्योंकि बारिश का पानी संभवतः उसके अंदर चला गया होगा। तो देखिए, ऑटो वाले हों, गाड़ी वाले हों, सब इसी पानी में जो जल भराव है, जल जमाव है यहां पर, उससे होकर गुजर रहे हैं। दाहिने हाथ पे नर्मदा कॉम्प्लेक्स है जिसमें तमाम माननीय सांसद रहते हैं और पिछले साल भी ऐसे ही हालात यहां पर बने हुए थे, घुटने तक पानी जमा था और इसका कारण संभवतः यह है कि जो पानी का एग्जिट है इस पॉइंट पे वो आपको पर्याप्त मात्रा में नहीं है, जिसकी वजह से एनडीएमसी के स्पेशल जो एम्प्लॉयज होते हैं उनको भेजना पड़ता है यहाँ पानी निकालने के लिए। तो देखिए कैसे धीमी रफ्तार से गाड़ियां निकल रही हैं क्योंकि जल भराव है। सर, हर साल की तरह इस बार भी यहाँ जल जमाव दिख रहा है?
3: यस,
2: मुश्किलें होती हैं, गाड़ियां खराब।
3: पिछले साल भी यहाँ पे ऐसे ही हुआ था, गाड़ियां बंद हो रही थी, रोड ब्लॉक हो रही थी।
2: थैंक यू। आपको कोई दिख रहा है यहाँ काम करते हुए?
3: अभी ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। थैंक यू सो मच।
2: तो देखिए हमने कहा आपको कि कैसे पिछले साल भी जब बारिश हुई थी तो इसी जगह पे लुटियंस दिल्ली के स्पॉश इलाके में जहां सांसदों का घर है, तमाम एम्बेसीज के लिए रास्ता यहीं से होके गुजरता है, वहां जल भराव होता है, जल जमाव होता है और इसकी वजह से गाड़ियां भी खराब होती हैं। जो लोग यातायात इस इलाके से निकलते हैं उनको दिक्कतें होती हैं और ट्रैफिक जाम की भी समस्या होती है। देखिए जो गाड़ियां जा रही हैं क्योंकि जल भराव है आगे तो निकलना ऐसे हालात में उनके लिए मुश्किल भरा होता है और थ्री वे ट्रैफिक यहाँ नेहा रहता है, इसकी वजह से भी दिक्कत है।
0: बने रहिए हमारे साथ। इस बीच दिल्ली के अलग अलग इलाकों से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं पीयूष मिश्रा, मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। पीयूष, आप किस इलाके में हैं, वहां पर क्या सूरत हाल है?
4: जी नहीं, यहाँ पर लगातार बारिश हो रही है और बहुत जोर से बारिश हो रही है। पिछले अगर हम 12 घंटे की बात करें तो 12 घंटे से लगातार बारिश दिल्ली के अलावा एनसीआर के कई इलाकों में हो रही है। मेरी मौजूदगी इस वक्त गाजियाबाद के परथला में और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमने छाता अपने हाथ में लिया हुआ लेकिन फिर भी हम गीले हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि बहुत जोर से इस वक्त लगातार बारिश हो रही है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, ट्रैफिक जाम पूरा लग चुका है, सड़कें जो है वो पानी से लबालब इस वक्त भरी हुई है। एक छोटा सा कोना हमको मिला जहां पर हम इस वक्त अपनी गाड़ी पार्क करके ये आपको नजारे इस वक्त दिखा रहे हैं। ये गाजियाबाद की स्थिति है। यहां पर अभी की अगर हम बात करें तो रेड अलर्ट तो इशू किया ही गया है आईएमडी की तरफ से। इसी के साथ साथ जो स्कूल है, ये देखिए एक स्कूल बस, छोटी सी स्कूल वैन सामने से निकल रही है। स्कूल जो है उनको फिलहाल बंद करने के आदेश दे दिए गए हैं और इसीलिए जो स्कूल बसेस हैं वो बच्चों को वापस अपने घरों पर छोड़ने के लिए पहुंच रही हैं धीरे धीरे। तो स्थिति इस वक्त गाजियाबाद में चिंताजनक है। स्कूलों को बंद करने के आदेश दे दिए गए हैं। अगर हम बारिश की बात करें तो आज सुबह 2:30 बजे से 5:30 बजे तक के बीच में 34.88 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है और अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि 180 का आंकड़ा पार कर देगी। तो लगातार बारिश होने की वजह से कई इलाकों में जल भराव हो गया है, कई इलाकों में जो है ट्रैफिक जाम लग गया है। लोग जो है अपना फॉग लाइट ऑन कर चलने के लिए मजबूर हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि विजिबिलिटी लेवल भी काफी ज्यादा गिर चुका है। ये परथला की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और यहाँ से आगे की तरफ बढ़ेंगे तो और भी इलाके हैं जहाँ पर इसी तरह की स्थिति है, जाम लगे हुए हैं, जाम लगा हुआ है, पानी भरा हुआ है और लगातार लोगों को इस वक्त लगातार हो रही बारिश की वजह से।
0: बहुत बहुत शुक्रिया सभी का, तमाम इलाकों से हमारे संवाददाता रिपोर्ट पहुंचाते हुए कि वहां पर बारिश के बाद क्या हाल है। इस बीच आशुतोष मिश्रा मेरे सहयोगी ने नोएडा फिल्म सिटी का जायजा लिया, देखिए उनकी ये रिपोर्ट।
1: दिल्ली एनसीआर में पिछले 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है और अभी भी मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली एनसीआर हरियाणा के ज्यादातर इलाकों में भारी बारिश और उसकी तस्वीरें भी सामने आने लगी हैं। मसलन आप नोएडा में देखेंगे, गौतम बुद्ध नगर की तस्वीर है और सेक्टर 16 का इलाका है, ये सड़कों पर आपको पानी जमा हुआ दिखाई देगा। हालांकि ज्यादा नहीं, 1 फीट ही है, लेकिन रेड अलर्ट के बाद बारिश जो है और इसका असर अब दरअसल पूरे इलाके में देख रहे हैं। हमने पहले गुड़गांव में देखा, गुरुग्राम में कैसे उस तरह से सड़कें दरिया बन गई थी और अब आप ये नोएडा की तस्वीरें देख रहे हैं, यहां भी सब कुछ जलमग्न हो चुका है। और ये देखिए सामने से जो गाड़ियां आ रही हैं इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे धीरे धीरे वाटर लॉगिंग की समस्या बढ़ेगी और ये पूरे इलाके में होगा। तो रेड अलर्ट जारी करने के बाद दिल्ली हरियाणा सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे, एनसीआर के इलाकों में ज्यादा दिक्कत होगी। लगातार बारिश अभी भी हो रही है और ऐसे में सलाह दी जाती है कि जब तक बहुत जरूरी ना हो यात्रा करने से बचे, बाहर ना निकले, क्योंकि आज का दिन दिल्ली वालों के लिए मुसीबत भरा हो सकता है। सड़कों पर जो जल जमाव है ऐसी तस्वीरें आगे दिन में बढ़ सकती हैं। नोएडा से मैं आशुतोष मिश्रा, आज तक।
0: और अब बात पुणे जिले के पिंपरी चिंचवाड़ की करेंगे जहां पर कल हुए हादसे की तस्वीरें सामने आने लगी है। कल कचरे का पहाड़ गिरने से वेस्ट टू एनर्जी प्लांट की इमारत ढह गई जिसमें कई लोग फंस गए। कल से ही रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इमारत ढहने के बाद 5 लोग को निकाला गया, राहत कर्मी अब तक कुल 9 लोगों को निकाल चुके हैं, कुल 14 लोगों की जान बचाई गई है, 9 लोगों के अभी भी फंसे होने की आशंका है। पिंपरी चिंचवाड़ फायर ब्रिगेड, एनडीआरएफ और सेना की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई। तो ये उस जगह की तस्वीरें हैं जहां पर कूड़े का पहाड़ ये गिरने से एक बिल्डिंग के अंदर लोग फंस गए हैं। कल सुबह का ये मामला है लेकिन अब तक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है।
5: समझता नहीं है, लैंडस्लाइड अब बहुत फास्ट हो जाती है। ये बिल्डिंग से 30 मीटर की दूरी पे था तो काफी डिस्टेंस पे बिल्डिंग थी, मगर अभी दो तीन दिन जो बारिश हो रही है लगभग 300-400 mm बारिश पीसीएमसी एरिया में हुआ, 400 के भी ऊपर बारिश हुआ है, तो उससे वो पूरा जो पहाड़ जैसा जो कचरे का है वो पूरा नीचे आ गया, लैंडस्लाइड जैसे हो गया।
0: श्री कृष्ण पांचाल मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं इस वक्त तमाम जानकारी के साथ सीधे पुणे से। श्री कृष्ण, इस वक्त क्या ताजा हालात हैं? रेस्क्यू ऑपरेशन कहां तक पहुंचा है और कितने लोग अंदर फंसे हुए हैं अभी?
6: टे हुए हैं, ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। कल दोपहर 1:30 बजे यहाँ पर घटना जो है सामने आई थी। आप यहाँ पे देख सकते कि वेस्ट टू एनर्जी का प्रोजेक्ट है और उस प्रोजेक्ट की जो इमारत है वो कोलैप्स हो गई थी। जो कचरे का ढेर है, जो मोसी डिपो है वहाँ पे ये जो है बिल्डिंग है और जो कचरे का ढेर है उस पे भूस्खलन हुआ और उसके बाद ये जो दो मंजिल इमारत है वो ढह गई थी और इसमें कुल 23 जो कर्मचारी है दबे हुए थे। लेकिन जब ये इंसिडेंट हुआ तब 5 लोग जो है बाहर निकले हैं और उसके बाद जो 9 लोगों को निकालने में सफलता हासिल हुई। हमारे साथ यहाँ जो दमकल विभाग के अधिकारी हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, ये पूरा क्या इंसिडेंट है, कितने लोगों को निकाला गया है?
7: साधारणतः कल दोपहर जब पालकी जा रही थी तुकाराम महाराज की पालकी, उसी समय 1:30 बजे खाने का समय था तो बहुत सारे लोग कैंटीन में गए थे और हमें उसी वक्त कॉल आया कि ऐसा ऐसा बिल्डिंग गिर गया है और बहुत सारे लोग अंदर फंसे। तो फिर स्टार्टिंग में हमने 3-4 व्हीकल भेजी लेकिन बाद में सब व्हीकल हमने इधर रवाना किया और देखा, इधर आके देखा तो बिल्डिंग पूरा का पूरा कोलैप्स नहीं होता, वो पूरा 45 डिग्री में कोलैप्स हुआ है और वो अधंतरी है, वो कभी भी गिर सकता है, तो बहुत सारी दिक्कत हमें।
0: ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। बात अब सूरत की करेंगे। डायमंड सिटी के नाम से मशहूर सूरत इन दिनों पानी पानी हो चुका है, बारिश का दौर तो वहां फिलहाल थम गया है लेकिन पानी की मुसीबत से राहत नहीं मिल पाई है। शहर के कई इलाकों में पानी जमा हुआ। आज सीएम भूपेन्द्र पटेल हालात का जायजा लेने सूरत पहुंच रहे हैं।
1: बारिश थम गई है लेकिन सूरत अब भी पानी के साए में है। ड्रोन से ली गई ये तस्वीरें बता रही हैं कि मूसलाधार बारिश ने शहर पर कैसा कहर बरपाया। सरथाना, पर्वत पाटिया, चीकुवाड़ी, सनिया, बमरोली और प्रसिद्ध श्याम मंदिर के आसपास के इलाके अब भी जलमग्न हैं। जहां नजर जाती है वहां सिर्फ पानी ही पानी दिखाई देता है। सूरत में किस कदर मूसलाधार आफत बरसी उसका जायजा लेने के लिए कल आज तक की टीम फायर ब्रिगेड की बोट रेस्क्यू टीम के साथ निकली। बारिश थमने के बाद भी कितना पानी भरा है वो आप इन तस्वीरों से देख सकते हैं। सड़क पर ट्रैक्टर डूबा पड़ा है, ट्रक पानी में फंसा है, पेट्रोल पंप जलमग्न है और BRTS बस स्टैंड भी पानी में डूबा हुआ है। लोग अब भी कमर तक पानी में चलने को मजबूर हैं। ये तस्वीरें बता रही हैं कि बारिश ने सिर्फ सड़कें नहीं डुबोई बल्कि शहर की रफ्तार भी थाम दी।
8: सूरत में जलभराव की परिस्थिति क्या है इसकी पड़ताल की आज तक की टीम फायर ब्रिगेड की बोट पर सवार है और तस्वीरों के जरिए हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। देखिए, पूरा BRTS बस स्टैंड है और जो पूरा पानी में डूब चुका है। इसके अलावा जितनी भी आप देखेंगे यहाँ पे व्हीकल्स खड़े हुए वो भी पानी में पूरे डूब चुके हैं। ये सामान्य दिनों की हम बात कर लें तो यहाँ पर BRTS बसें चलती हैं लेकिन फिलहाल यहाँ पर पानी चल रहा है और ये टेक्सटाइल मार्केट का एरिया है वो भी आप देखेंगे तो यहाँ पर सब कुछ पानी में डूब चुका है। सामान्य दिनों की जैसे मैंने बताया आपको यहाँ पर व्हीकल चलते हैं, लोगों की आवाजाही होती है, लेकिन ये पूरा रास्ता जो है अब पानी में पूरा डूब चुका है और लोगों की आवाजाही बंद है। आस्था की टीम ने लगातार इस रास्ते पर बहुत सारे ट्रैक्टर को जो है पानी में डूबा हुआ देखा है, ट्रकों को देखा हुआ, और ये जो पेट्रोल पंप आप देख रहे हैं ये भी पेट्रोल पंप पूरा पानी में डूब चुका है। अब आप समझ सकते हैं ये खाड़ी के किनारे का जो इलाका है, खाड़ी ओवरफ्लो होने के चलते ये जलभरा हुआ है।
1: सूरत में बारिश ने सिर्फ रिकॉर्ड नहीं बनाया बल्कि राहत और बचाव एजेंसियों की सबसे बड़ी परीक्षा भी ली। मंगलवार सुबह 6 बजे से बुधवार सुबह 6 बजे के बीच सूरत शहर में 24 घंटे में 358 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। सूरत के पलासना तालुका में सबसे ज्यादा 462 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। इतनी बारिश की लोगों की जान पर बनाई। अधिकारियों के मुताबिक 3400 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया। निचले इलाकों से 3800 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया गया। फायर ब्रिगेड के मुताबिक उनकी टीम ने अकेले एक बाजार से 150 से ज्यादा लोगों की जान बचाई।
9: हम रात से 6-7 बजे से लगे हुए हैं। तकरीबन हमने 176 के अबाव हमने रेस्क्यू किया हुआ है। यहाँ से जो मार्केट के अंदर फंसे हुए थे वो एक्चुअली घर पे थे, पर वो मार्केट के अंदर उनका सामान सब रह गया था, तो उसको सेव करने के लिए वो वापस आए और पानी बढ़ने के कारण वो वहीं पे ट्रैप हो गए।
1: मूसलाधार बारिश के बाद सूरत की बिगड़ी सूरत की एक और तस्वीर भी दिखाते हैं। सूरत के दिलाड़वा इलाके की तस्वीर देखिए। बारिश थमने के कई घंटों के बाद भी सड़कों पर पानी जमा है जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। स्थानीय लोगों को घुटनों तक भरे पानी से होकर अपने घरों और काम पर जाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। बारिश की मार में यहाँ सड़कें टूट चुकी हैं। सूरत में बारिश से बिगड़े हालात पर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। सूरत के प्रभारी मंत्री कनुभाई देसाई ने कलेक्ट्रेट ऑफिस में हाई लेवल बैठक की जिसमें अफसरों के अलावा स्थानीय सांसद और विधायक भी शामिल हुए। बारिश फिलहाल थम गई है और पानी भी धीरे धीरे उतर रहा है, लेकिन सवाल अब भी वही खड़ा है, हर साल मानसून आते ही सूरत जैसे आधुनिक और योजनाबद्ध शहर की तस्वीर क्यों बदल जाती है? आखिर ऐसा क्या है कि कुछ घंटों की बारिश पूरे शहर को ठहरने पर मजबूर कर देती है? जब तक इन सवालों का जवाब नहीं मिलता तब तक हर बारिश के बाद ऐसी तस्वीरें लौटती रहेंगी। संजय सिंह राठौड़, सूरत आज तक।
0: और अब आपको दिखाते हैं महाराष्ट्र के रायगढ़ की हैरान कर देने वाली तस्वीर, क्योंकि रायगढ़ के पनवेल तालुका में एचपीसीएल एलपीजी बॉटलिंग प्लांट से करीब 3000 गैस सिलेंडर भारी बारिश के चलते पातालंग गंगा नदी में बह गए।
10: मिडिल ईस्ट में जंग के दौरान जिस चीज की लोगों को काफी जरूरत थी वो अब भारी बारिश में बहते दिख रहे हैं। महाराष्ट्र के रायगढ़ से हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। पाताल गंगा नदी का ये तेज बहाव और उसमें बहते दिख रहे हैं गैस सिलेंडर। भारी बारिश के चलते रायगढ़ में एचपीसीएल का बॉटलिंग प्लांट नदी की चपेट में आ गया और तेज बहाव में करीब 3000 सिलेंडर पानी के साथ बह गए। इसमें कुछ भरे हैं और कुछ खाली। नदी में बहते सिलेंडर को देखने के लिए इलाके में हड़कंप मच गया। नदी का किनारा हो या पुल, लोग सिलेंडर को देखने के लिए जुट गए। नदी में सिलेंडर के बहने की सूचना जैसे ही प्रशासन को मिली वैसे ही जिलाधिकारी ने अपील जारी कर दी। लोगों को सिलेंडर से दूर रहने की सलाह दी गई। जिलाधिकारी ने कहा सिलेंडर में गैस है या नहीं या वे सुरक्षित स्थिति में है या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं होती, इसलिए लोग इनसे दूरी बनाकर रखें। फिलहाल स्थानीय प्रशासन और गैस प्लांट के लोग सिलेंडर को बरामद करने की कोशिश में जुटे हैं। रायगढ़ से महबूब के साथ आज तक ब्यूरो।
0: तो मैदानी इलाकों में नहीं पहाड़ों पर भी मुसीबत का दौर जारी है। उत्तराखंड के लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया। देर रात से देहरादून समेत प्रदेश के कई इलाकों में बारिश का दौर जारी है।
1: शोर करता अलकनंदा नदी का पानी, चमोली में लगातार बारिश से अलकनंदा नदी में उफान आने लगा है। अलकनंदा नदी पूरी रफ्तार से बह रही है। हालांकि अभी खतरे जैसी बात नहीं है, लेकिन मौसम के मिजाज को देखते हुए श्रद्धालुओं और सैलानियों की संख्या में जबरदस्त कमी आई है। बद्रीनाथ धाम में भी रुक रुक कर बारिश हो रही है।
11: चमोली में एक बार फिर से मौसम ने करवट बदल दी और झमाझम बारिश का दौर जो है वो बद्रीनाथ से लेकर चमोली तमाम जगहों पे इस समय देखने को मिल रहा है। आसमान में काले बादलों ने अब डेरा डाल दिया है मानसून का दौर। पहाड़ों में लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिससे जहां बढ़ती गर्मी से राहत मिल रही है, वहीं बद्रीनाथ धाम में गर्म कपड़ों की भी आवश्यकता और बरसाती की जरूरत पड़ रही है। वहीं बद्रीनाथ धाम की बात करें तो यहां पे बारिश हो रही है, हेमकुंड साहिब में बारिश हो रही है, हालांकि यात्रा मार्ग अभी फिलहाल ठीक है।
1: ये तस्वीर हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की है। मूसलाधार बारिश से कुल्लू के डुंडू झरने में पानी का बहाव तेज हो गया। अब ये तस्वीरें देखिए, डुंडू झरना इस वक्त शांत नजर आ रहा है, लेकिन अचानक पानी का ऐसा बहाव आया कि झरने ने सैलाब का रूप ले लिया। सोशल मीडिया में ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। जिस वक्त झरने में सैलाब आया, उस वक्त वहां कई सैलानी मौजूद थे, लेकिन राहत की बात यही रही कि कोई नुकसान नहीं हुआ। हालात को देखते हुए प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। लोगों से अपील की है कि झरनों, नालों और नदी नालों के किनारों से दूर रहें। आसमान से बरसी आफत के चलते वैष्णो देवी मार्ग पर भी लैंडस्लाइड हो गया। पहाड़ों से मलबा बहकर मार्ग पर आ गया है। हालांकि इसमें किसी के घायल होने की कोई खबर नहीं है, लेकिन बैटरी कार मार्ग श्रद्धालुओं के लिए अगले निर्देश तक बंद कर दिया गया है। चमोली से कमल नयन सिलोड़ी, कुल्लू से मनविंदर अरोड़ा और कटरा से गौरव पराशर के साथ आज तक ब्यूरो।
0: और अब बात राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की। पुलिस की पूछताछ में तीन आरोपियों ने कई राज उगले। आरोपी ने बताया कि चोरी के रुपए वो अपने करीबियों और रिश्तेदारों को भेजते थे और अपने खातों में रकम ट्रांसफर करवाते थे, ताकि रकम का सोर्स छिपा रहे और शक ना हो। बैंक डिटेल से इसकी पुष्टि हुई है। खुलासा ये भी हुआ है कि कुछ आरोपी अपने परिजनों के खातों को ऑपरेट कर रहे थे। उनके घर वालों को पता ही नहीं था कि उनका अकाउंट का इस्तेमाल चोरी की रकम की हेराफेरी में किया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक अविनाश शुक्ला के भाई अभिषेक को इसकी जानकारी थी, इसीलिए वो जांच के दायरे में है। उस पर शिकंजा कस सकता है। पूछताछ में तीन आरोपियों अनिकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा और करुणेश पांडे ने कई और राज खोले हैं। आरोपियों से मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। चढ़ावा चोरी के आरोपियों और उनके परिजनों के करीब 30 बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए हैं। पुलिस ने संबंधित बैंक से उन खातों का पूरा ब्यौरा जुटाया जिसमें आय से अधिक ट्रांजैक्शन मिले हैं, लिहाजा जांच पूरी होने तक ये खाते फ्रीज रहेंगे। आरोपियों के खातों का दोबारा शुरू होना संभव नहीं हो पाएगा। पुलिस ने इन तथ्यों के सबूत के तौर पर जांच में शामिल किया है। अब आज रकम, जेवर आदि की बरामदगी की जा सकती है। समद मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। समद, किस तरीके से ये ट्रांजैक्शंस हो रहे थे?
12: नया देखिए, बहुत बड़ा खुलासा एक तरीके से हुआ है। कल जो है पुलिस इंटरोगेशन में सूत्रों के मुताबिक तीनों आरोपियों ने इस बात को कबूला है कि वो अपने रिश्तेदारों के खातों का इस्तेमाल कर रहे थे अपने काले धन को सफेद करने के लिए। यानी कि आसान भाषा में समझें तो जो भी पैसा वो चंदा चोरी के माध्यम से चुराते थे, यानी कि मंदिर परिसर में दान किया हुआ पैसा जो चुराते थे, उसको जो उनके रिश्तेदार हैं उनके खातों में भेज देते थे, जिसके जिससे कि कहीं पर भी ये शक ना जाए कि पूरा ट्रांजैक्शन उनके ही बैंक अकाउंट से हुआ है। और फिर अपने रिश्तेदारों के खातों से वो अपने अकाउंट्स में कुछ कुछ अमाउंट्स जो है वो लिया करते थे। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कबूला है कई ऐसे स्थान हैं जहां पर कैश और ज्वेलरी उन्होंने छुपाई हुई है जो कि रामलला को दान हुई थी, और पुलिस उसकी बरामदगी के लिए आज भी उन्हें जेल परिसर से लेकर निकल सकती है। पुलिस लाइन में फिलहाल पूछताछ इस वक्त जारी है। 40 घंटे की रिमांड थी जो आज शाम तक खत्म हो जाएगी। कल एक जगह पुलिस ले गई थी जहां पर ये लोग बैठकर पैसे का हेरफेर करते थे, यानी कि आपस में बंदर बांट करते थे जो पैसा चुराया हुआ होता था। और आज भी कुछ ऐसे स्थान हैं जहां पर पुलिस ले जाएगी। लेकिन उससे बड़ी बात यहां पर सामने ये आ रही है, लगभग 30 ऐसे अकाउंट्स हैं जिन्हें अयोध्या पुलिस ने फ्रीज कर दिया है, और ये वो अकाउंट्स हैं जो इन तीनों ही आरोपियों के रिश्तेदारों के बताए जा रहे हैं। ये एक बड़ी खबर इसलिए भी है कि अकाउंट फ्रीज करने की नौबत क्यों आई है, ये एक बड़ा सवाल है। इसका मतलब कि ट्रांजैक्शंस जो हो रहे थे उनका जो अमाउंट था वो कहीं ज्यादा था, यानी कि जो भी डोनेशन का पैसा आ रहा था उसको कहीं, और ये भी बड़ी बात है कि उनके रिश्तेदारों, कई ऐसे भी रिश्तेदार हैं जिनको इस बात की भनक नहीं थी, उनको नहीं पता था कि उनके अकाउंट्स को इस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, उन्हें भी एक तरीके से आरोपी बनाया जा रहा है। इसे लेकर कुछ रिश्तेदारों से भी पुलिस ने कल पुलिस लाइन में पूछताछ की है। आज का दिन बेहद अहम इसलिए है क्योंकि पुलिस जो है कई जगह बरामदगी के लिए इन आरोपियों को ले जा सकती है। जी हां,
0: ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऑस्ट्रेलियाई दौरे की, इस वक्त वो मेलबर्न में मौजूद है और लगातार उनके दौरे से जुड़ी तस्वीरें वहां से आ रही हैं। थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री को मेलबर्न में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, इससे पहले उन्होंने भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम को संबोधित किया।
13: भारत और ऑस्ट्रेलिया की बिजनेस पावर और बिजनेस एम्बिशन के दर्शन एक साथ हो रहे हैं। आप सबकी यहां उपस्थिति हमारे शेयर्ड कॉन्फिडेंस और शेयर्ड एस्पिरेशंस का प्रतीक है। आज दुनिया अनसर्टेनिटी, सप्लाई चेन डिसरप्शन और एनर्जी क्राइसिस के दौर से गुजर रही है। ऐसे समय में भारत और ऑस्ट्रेलिया का नेचुरल और ट्रस्टेड पार्टनर के रूप में आगे बढ़ना स्वाभाविक भी है और आवश्यक भी है।
0: अब आपको ये तस्वीर दिखाते हैं मेलबर्न में, माँ तुझे सलाम।

0: और अब बात अमेरिका ईरान युद्ध की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बाद अमेरिकी सेनाओं ने एक बार फिर ईरान पर हमला शुरू कर दिया है। ईरान के कई शहरों और द्वीपों पर अमेरिकी सेना ने ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक की है। ईरान के बंदर अब्बास, सिरिक, चाबहार, कोनारक, अबू मूसा द्वीप, जाक द्वीप और बुशहर पर हमला किया गया है। प्रेस टीवी के मुताबिक बंदर अब्बास में 8 धमाके सुने गए हैं, जबकि सिरिक में 3 धमाके, वहीं कोनारक और चाबहार के पास 10 धमाकों की आवाज सुनाई दी।
1: So we hit him very hard last night. Very, very hard. Probably hit him hard again tonight. I'll give him a little warning. We're going to hit him hard tonight.
2: क्या अमेरिका और ईरान का सीज फायर टूट चुका है? क्या मिडिल ईस्ट में संघर्ष विराम का कोई मतलब नहीं रह गया? ईरान के शहरों पर रात के अंधेरे में अमेरिकी फौजों ने धावा बोल दिया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ईरान पर इतने बारूद बरसाए कि पूरा ईरान दहल गया। ये हमला उस वक्त हुआ जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप नाटो देशों की बैठक के लिए तुर्की के अंकारा में थे। ट्रंप अंकारा से ऐलान करते हैं कि ईरान पर हमला होगा और उसी रात अमेरिकी फौजें ईरान के कई शहरों को दहला देती हैं। सिरिक, चाबहार, कोनारक, अबू मूसा द्वीप, जास्क द्वीप और बुशहर पर अमेरिका ने हमला किया। ईरानी मीडिया प्रेस टीवी के मुताबिक बंदर अब्बास में 8 धमाके सुने गए, जबकि सिरिक में 3 धमाके हुए। वहीं कोनारक और चाबहार के पास 10 धमाकों की आवाज सुनाई दी। अबू मूसा द्वीप, जास्क द्वीप में भी 10 धमाके सुने गए। इसके अलावा दक्षिण पूर्वी ईरान में एक एयरपोर्ट पर भी हमला हुआ। उत्तरी ईरान के अकाला रेलवे ब्रिज पर भी अमेरिकी मिसाइल गिरी। ईरान में कहां कहां हमले हुए आपको ये भी दिखा देते हैं। ये वो इलाके हैं जो मार्क किए गए जहां पर ईरान की नौसैनिक, और इनमें खास बात अगर आप देखेंगे कि ये सारे शहर दरअसल वो इलाके हैं जो ईरान की कोस्टल लाइन पे हैं, या तो उसकी ताकत है या फिर उसकी कोस्टल लाइन पर है, ताकि वहां पर उसकी जो नौसेना है, उन्होंने पहले ही कहा कि हमने तो उनके 135 जहाज डुबा दी। तो कहां कहां हमले हुए? बंदर अब्बास, सबसे क्रिटिकल पोर्ट, उसका ऊर्जा का संसाधन यहां से है। बंदर अब्बास से लोडेड शिप जो है वो क्रूड ऑयल लेकर के दुनिया भर में जाते हैं। इसी के साथ जास्क आइलैंड, जास्क आइलैंड भी ईरान की एनर्जी की रीढ़ की हड्डी है, कमर की हड्डी है, उस पर हमला किया गया। उसी के साथ चाबहार पोर्ट, चाबहार पोर्ट अगर आपको याद हो वो जगह जहां भारत का अपना भी इंटरेस्ट था, भारत भी इस पोर्ट को विकसित कर रहा था, लेकिन उसके बाद जब सैंक्शन प्रतिबंध अमेरिका ने लगा दिया तो भारत ने हाथ यहां से खींच लिया। उसके बाद कोनारक, अब कोनारक के साथ साथ ये जो चाबहार है, ये दोनों अब बेहद नजदीक है। अब कोनारक के पास दरअसल उसकी नेवल फ्लीट थी, उसकी सबमरीन भी थी। अगर आपको 28 फरवरी को तारीख याद हो तो मार्च के पहले सप्ताह में जो हमले हुए थे सबसे ज्यादा नुकसान कोनारक और चाबहार के पास हुए थे। इसी के साथ अब आते हैं पश्चिम में, अबू मूसा द्वीप, स्ट्रेटेजिक आइलैंड माना जाता है ईरान का, जहां से वो पूरे हॉर्मुज, अब ये इलाका अगर आप देखें ये हॉर्मुज है, लेकिन इसके आगे जैसे आप जाते हैं तो यहां पर यूएई और फिर ऊपर इस इलाके पर नियंत्रण के लिए अबू मूसा द्वीप पर उसका बड़ा नौसैनिक अड्डा। उसी के साथ बुशहर और सिरिक, ये उसके दो शहर है लेकिन ये भी तटीय शहर है। सीज फायर के बाद ये पहली बार है जब अमेरिकी फौजों ने ईरान पर इतने बड़े स्तर पर हमला किया।
0: और अब रुक करेंगे 100 शहर 100 खबर का।

दिल्ली में बारिश की मार, नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट कैलाश इलाके में गिरा पेड़, पेड़ गिरने से सड़क पर जाम। दिल्ली मिंटो रोड पर बारिश ने बढ़ाई परेशानी, तेज बारिश के बीच सड़क पर आवाजाही करते वाहन दिखे। दिल्ली में भारी बारिश का असर, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जलभराव, स्टेशन परिसर में भरा पानी, यात्रियों को परेशानी। दिल्ली में मानसून की बारिश से बड़ी परेशानी, कई इलाकों में जलभराव, ओखला बदरपुर संगम विहार में सड़क तक भरा पानी। दिल्ली एनसीआर में बारिश ने बदला मौसम, तापमान में भारी गिरावट, दो दिन के लिए भारी बारिश का रेड अलर्ट। यूपी में बारिश का रेड अलर्ट, कई जिलों में भरा बारिश का पानी, नोएडा गाजियाबाद समेत कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश का अनुमान। गाजियाबाद में बारिश बनी आफत, कई इलाकों में पानी घुसा, सड़कें डूबी, आवाजाही प्रभावित। गाजियाबाद के शास्त्री नगर विजयनगर में हालात खराब, सड़क पर भरा पानी, लोगों को आवाजाही में दिक्कत। गाजियाबाद में भारी बारिश से जलभराव, स्कूलों की छुट्टी 12वीं तक के लिए घोषित। नोएडा सेक्टर 62 लेबर चौक पर जलभराव, सड़क पर भरा पानी, लोगों को आवाजाही में परेशानी। गुजरात और मध्य प्रदेश में लगातार बारिश का दौर जारी, कई राज्यों में भारी बारिश का रेड अलर्ट। सूरत सहित पूरे दक्षिण गुजरात में पिछले कुछ दिन से हो रही मूसलाधार बारिश, जनजीवन अस्त व्यस्त। सूरत में कई घंटे बाद सड़कों पर पानी जमा है, जिससे लोगों का जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है, जान जोखिम में डालकर रास्ते से गुजरने को मजबूर हैं लोग। सूरत में खाड़ी का कहर, डिंडोरी इलाके में दूध के लिए मची अफरा तफरी, वीडियो हुआ वायरल, पानी में डूबे कई इलाके। नवसारी में भारी बरसात के बाद उफान पर अंबिका नदी रौद्र रूप में बहता दिखाई दे रहा है, प्रसिद्ध गिर वाटरफॉल। वडोदरा में भारी बारिश के बाद कई नदियों में उफान, प्रशासन अलर्ट पर, निचले इलाकों में रह रहे लोगों के लिए चेतावनी जारी। सूरत में भारी बारिश से रिहायशी इलाकों में घुसा पानी, रोजमर्रा की चीजों के लिए दूध पानी लेने के लिए लोग परेशान। सूरत में लगातार बारिश से बाढ़ जैसे हालात, सीमाड़ा खाड़ी ओवरफ्लो होने से कई इलाकों में घुसा पानी। भारी बारिश से पूरा सूरत शहर जलमग्न, जगह जगह एनडीआरएफ और फायर ब्रिगेड फंसे, लोगों के रेस्क्यू में जुटे हुए हैं। एमपी के खरगोन में तेज बहाव में बहा युवक, लोगों ने रस्सी से बचाने की कोशिश की, तैरते हुए युवक का लाइव वीडियो आया सामने। मुंबई ठाणे बारिश का दौर जारी, तेज हवाओं के साथ बारिश का ऑरेंज अलर्ट, जरूरी सावधानी बरतने की सलाह। महाराष्ट्र के रायगढ़ में भारी बारिश के चलते करीब 3000 एलपीजी सिलेंडर नदी में बहे, जिला कलेक्टर ने लोगों से सूचना देने की अपील की। पुणे में जोरदार बारिश का असर, भिड़े ब्रिज डूबा, छोड़ा गया 27,000 क्यूसेक पानी। महाराष्ट्र के वसई में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित, रेलवे ट्रैक पर भरा पानी। संभाजीनगर में नदी नाले उफान पर, ग्रामीणों से सुरक्षित स्थानों पर रहने और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से दूर रहने की अपील की गई है। टिहरी गढ़वाल के कद्दूखाल में भूस्खलन, NH 707A पर दो रेस्टोरेंट खतरे में, एहतियातन खाली कराए गए रेस्टोरेंट। हरिद्वार में बारिश ने खोली जल निकासी व्यवस्था की पोल, जलभराव के बीच अंतिम यात्रा घुटनों तक पानी से होकर गुजरी। बद्रीनाथ धाम में रुक रुक कर हो रही बारिश का दौर जारी, चमोली जिले में बदला मौसम। बागेश्वर में मूसलाधार बारिश से जनजीवन बेहाल, मलबा और बोल्डर गिरने से 16 सड़कें बाधित, सरयू नदी उफान पर। हिमालय में अगले एक हफ्ते तक भारी बारिश का अलर्ट, 5 जिलों में भूस्खलन और फ्लैश फ्लड का खतरा। राजस्थान के अलवर में झमाझम बारिश से भीषण गर्मी से राहत, लेकिन जोरदार बारिश से सड़क पर भरा पानी। छत्तीसगढ़ के गोरेला पेंड्रा मारवाही में मूसलाधार बारिश से नदियां उफान पर, सड़क मार्ग बाधित। पंजाब के कई इलाकों में 36 घंटे बारिश का अलर्ट, मौसम लगातार बारिश वाला। कुल्लू की ऊपरी पहाड़ियों में बारिश के बाद बदला नजारा, पहाड़ियों में शान झरने में कई गुना बढ़ा जलस्तर, दिखा अद्भुत नजारा। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में ठाठरी इलाके में बादल फटा, प्राकृतिक आपदा के चलते कई मकाने और दुकानें क्षतिग्रस्त। ईरान के दिवंगत सुप्रीम लीडर खामेनेई का पार्थिव शरीर कर्बला पहुंचा, इमाम हुसैन दरगाह पर अंतिम संस्कार की तैयारियां। ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध विराम पर दिया विस्फोटक बयान, कहा मेरे लिए खत्म हो चुका है युद्ध विराम, साथ ही कहा नेटो देश होर्मुज में भेजेंगे समुद्री सुरंगों को हटाने वाले जहाज। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने ईरान द्वारा युद्ध विराम तोड़ने को ठहराया गलत, कहा खाड़ी देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हुए ईरानी हमले में अंतरिम समझौते का है उल्लंघन। मेयर की रिपोर्ट के बाद बंदर अब्बास ने 8 धमाके, सिरिक पे 3 और चाबहार में 10 धमाके सुनाई दिए। ईरान की खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर दागी गई मिसाइलें, साथ ही ईरान पर किए गए अमेरिकी हमले की तस्वीरें आई सामने। मशहद की सड़कों पर ट्रंप के खिलाफ नारे वाले बैनर, अंतिम संस्कार की तैयारियों के बीच लगाए गए पोस्टर। बेरिन मिसाइल का सीधा हमला, धमाके का वीडियो आया सामने, ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल के सीधे टकराने का दावा। कुवैत में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने का दावा, वीडियो जारी, ईरानी सरकारी मीडिया IRIB ने हमले का फुटेज जारी किया। न्यूज एजेंसी का दावा, आयतुल्ला अली खामेनेई की आवाज, कार्यालय परिसर में तबाही के दृश्य पहली बार सामने आए। ईरान का दावा, अमेरिकी ठिकानों पर जवाबी मिसाइल हमला, मिसाइल लॉन्च के फुटेज जारी। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी, CA फोरम में लिया हिस्सा, भारत मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक साझेदारी पर चर्चा। मेलबर्न में पीएम मोदी बोले, भारत और ऑस्ट्रेलिया भरोसेमंद साझेदार, दुनिया में अनिश्चितता के बीच मजबूत साझेदारी की जरूरत पर दिया जोर।
पीएम मोदी ने कहा भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों का नया दौर शुरू। ईसीटीए समझौते से कारोबार और बाजार पहुंच में बढ़ोतरी का जिक्र। पीएम मोदी के ऑस्ट्रेलियाई दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच डिफेंस डील संभव। दोनों देशों के प्रधानमंत्री भारत और ऑस्ट्रेलिया के कई कारोबारियों से करेंगे मुलाकात। प्रधानमंत्री मोदी और एंथनी एल्बनीज की सेल्फी हुई वायरल। अयोध्या चढ़ावा चोरी मामले में बड़ा एक्शन। 30 बैंक खाते फ्रीज। आरोपी और परिजनों के खातों मिले संदिग्ध ट्रांजैक्शन। चंदा चोरी के आरोपों को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा अखिलेश का परिवार रामद्रोही है। अखिलेश यादव का बड़ा बयान राम मंदिर चंदा चोरी मामले में घेरा बीजेपी को। बोले छोटे लोगों पर कार्रवाई, बड़े लोगों पर क्या हुआ पता नहीं। लखनऊ में अखिलेश यादव ने की शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से मुलाकात। एसपी प्रमुख से मुलाकात के बाद कई मुद्दों पर रखी अपनी बात। राम मंदिर ट्रस्ट विवाद के बीच गोपाल राव का बड़ा बयान, बोले मैं यहीं रहूंगा, बर्खास्तगी की खबरें गलत हैं। टीएमसी जिला परिषद सभाधिपति विश्वनाथ बाउरी के घर पर हमला। बेटे के प्रेम संबंध को लेकर बवाल, भीड़ ने की तोड़फोड़। पंजाब बार एसोसिएशन की संयुक्त एक्शन कमेटी के आह्वान पर राज्य में 70,000 वकील की अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू, रखी अपनी मांगे। इंदौर के एमजीएम मेडिकल कॉलेज में मेंटेनेंस घोटाले पर बड़ी कार्रवाई, 5 हॉस्पिटल्स को दिया गया नोटिस। दरभंगा में स्पा सेंटर के नाम पर चल रहा देह व्यापार का धंधा, क्राइम DYSP ने पुलिस बल के साथ की छापेमारी, 4 गिरफ्तार। अलवर में केंद्रीय मंत्री के कार्यक्रम के दौरान एक्सप्रेस वे पर 20 टन मांस से भरा कंटेनर पकड़ा गया, जांच के लिए लिया गया सैंपल। मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा की हाईटेक निगरानी, आई से रखी जाएगी नजर। फेस डिटेक्शन और क्राउड रीडिंग से लेस 2,500 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। मेरठ ललिता गौतम हत्याकांड प्रदर्शन मामले 13 पर मुकदमा दर्ज। झड़प और भ्रामक पोस्ट के आरोप में 7 गिरफ्तार। गोरखपुर में जमीन विवाद में युवक की हत्या, आरोपी गिरफ्तार। ट्रक टकरा करने को लेकर था विवाद। गाजियाबाद में नशे के कारोबार में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। कफ सिरप तस्करी मामले में 2 आरोपियों पर PIT NDPS एक्ट के तहत हुआ एक्शन। प्रयागराज हाईकोर्ट ने 1987 मर्डर मामले में आरोपी को किया बरी, कहा दोष साबित करने के लिए ठोस सबूत जरूरी। रोहिणी में 4 मंजिला इमारत ढही, मलबे में 3 शव बरामद। रेस्क्यू ऑपरेशन में 1 मजदूर को जिंदा निकाला गया, रेस्क्यू जारी। लश्कर आतंकी अहदेदार की धमकी, 2026 में कुछ बड़ा करने का दावा। पानी विवाद का जिक्र कर भारत के खिलाफ उकसावे वाली बात। जयपुर में दर्दनाक हादसा, ट्रेलर ने युवक युवती को कुचला, दोनों की मौत, मौके पर मचा हड़कंप। नू एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसा, पुलिस जवान की मौत, तेज रफ्तार वाहन ने मारी टक्कर। मुंबई के मशहूर के रस्टम पर FDA का एक्शन, लाइसेंस सस्पेंड। आइसक्रीम आउटलेट में हाइजीन नियमों का उल्लंघन का आरोप। पुणे में 3 मंजिला बिल्डिंग के ऊपर से कचरा गिरने से दबी बिल्डिंग, 23 लोगों में से 9 को बाहर निकाला गया। कचरा गिरने पर मंत्री गिरीश महाजन का बयान, कई सालों से कचरा डिपो है, बारिश की वजह से कचरा नीचे आ गया। सुपौल में एक रात भारी बारिश से पुल निर्माण के लिए बना डायवर्जन बाहर, 150 परिवारों का संपर्क टूटा। छिंदवाड़ा में बेकाबू कार ने लोगों और गाड़ियों को रौंदते हुए दुकान में घुसा, 8 लोग घायल, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। इंदौर में तेंदुए का आतंक, डिलीवरी बॉय पर हमले का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। रांची पुलिस ने तोड़फोड़ के मामले में 2 पक्षों को किया गिरफ्तार, मारपीट के लगे आरोप। आगरा में लगातार हो रही बारिश से 2 मंजिला कपड़े की दुकान ढही, मलबे में 5 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। जम्मू के वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर भूस्खलन, हिमकोटी मार्ग पर बैटरी कार सेवा बंद। उज्जैन में सड़क धंसने से सीमेंट से भरा ट्रक नाले में गिरा, सीसीटीवी में कैद हुआ हादसा। दरभंगा बम धमाके में घायल मजदूर की मौत, लोगों का सड़क पर फूटा गुस्सा, आगजनी कर किया चक्का जाम, 20 लाख मुआवजे की मांग। मेरठ में दलित प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए गए युवक ने फांसी लगाने का प्रयास किया, वीडियो आया सामने। ग्रेटर नोएडा के इंटरव्यू में रिजेक्ट होने के बाद युवक ने किसी मंजिल छलांग लगाकर की आत्महत्या। दिल्ली के संगम विहार में कार्डबोर्ड फैक्ट्री में लगी आग, दमकल टीम ने बुझाई आग। दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 16 में बारिश के बीच 4 मंजिला बिल्डिंग गिरी, मलबे में दबने से 1 की मौत, कई घायल। रोहतक में पिल्ला तोड़कर भाग रहे डंपर को रोकने आए दुकानदार को कुचला, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। सौरभ गांगुली बायोपिक दादा से राजकुमार राव का फर्स्ट लुक, गांगुली के जन्मदिन पर मेकर्स ने जारी किया पोस्टर। रहूं में तेरे रूबरू का ट्रेलर आउट, 17 जुलाई को रिलीज होगी रोमांस मिस्ट्री और सस्पेंस वाली फिल्म। प्रज्वल देवराज और राज बी शेट्टी की कन्नड़ फिल्म करावली का ट्रेलर लॉन्च। फिल्म श्री राम भूमि की शूटिंग का आज अयोध्या में पहला दिन, अनुपम खेर ने शेयर की पोस्ट, लिखा श्री राम मंदिर जाकर रामलला से लिया आशीर्वाद। अभी खत्म नहीं हुए कांतारा फ्रेंचाइजी, ऋषभ शेट्टी ने दिया अपडेट, कांतारा 2 पर काम जारी। दिल्ली NCR में कल देर रात से लगातार बारिश का दौर जारी। इस बीच दिल्ली सरकार ने राजधानी की मुख्य सड़कों और अंडरपास की तस्वीरें जारी की, दावा है कि तमाम मुख्य मार्गों पर जल भराव को लेकर स्थिति नियंत्रण में। इंद्रलोक ITO प्रगति अंडरपास और मयूर विहार फेज 3 की जल भराव फ्री सड़कों की ये तस्वीरें देखिए। सरकार का यह दावा है कि जल बोर्ड PWD और नगर निगम की टीम ग्राउंड पर है और हर परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार है। ये तस्वीरें दिल्ली सरकार द्वारा जारी की गई।

0: और अब आपको दिखाते हैं महाराष्ट्र के रायगढ़ की हैरान कर देने वाली तस्वीर। रायगढ़ के पनवेल तालुका में एचपीसीएल एलपीजी बॉटलिंग प्लांट से करीब 3000 गैस सिलेंडर भारी बारिश की वजह से पाताल गंगा नदी में बह गए।
1: मिडिल ईस्ट में जंग के दौरान जिस चीज की लोगों को काफी जरूरत थी वो अब भारी बारिश में बहते दिख रहे हैं। महाराष्ट्र के रायगढ़ से हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। पाताल गंगा नदी का ये तेज बहाव और उसमें बहते दिख रहे हैं गैस सिलेंडर। भारी बारिश के चलते रायगढ़ में एचपीसीएल का बॉटलिंग प्लांट नदी की चपेट में आ गया और तेज बहाव में करीब 3000 सिलेंडर पानी के साथ बह गए। इसमें कुछ भरे हैं और कुछ खाली। नदी में बहते सिलेंडर को देखने के लिए इलाके में हड़कंप मच गया। नदी का किनारा हो या पुल, लोग सिलेंडर को देखने के लिए जुट गए। नदी में सिलेंडर के बहने की सूचना जैसे ही प्रशासन को मिली वैसे ही जिलाधिकारी ने अपील जारी कर दी। लोगों को सिलेंडर से दूर रहने की सलाह दी गई। जिलाधिकारी ने कहा सिलेंडर में गैस है या नहीं या वे सुरक्षित स्थिति में है या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं होती, इसलिए लोग इनसे दूरी बनाकर रखें। फिलहाल स्थानीय प्रशासन और गैस प्लांट के लोग सिलेंडर को बरामद करने की कोशिश में जुटे हैं। रायगढ़ से महबूब के साथ आज तक ब्यूरो।
0: और महाराष्ट्र नहीं पूरे गुजरात में मानसून ने हालात आउट ऑफ कंट्रोल कर दिए हैं। सूरत में बारिश के बाद रिहायशी इलाके डूब चुके हैं, लोग अपने घरों में कैद हो गए हैं। कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं, कई जगहों पर पीने के पानी और दूध की किल्लत पड़ गई।
1: आसमान से बरस रही मानसूनी आफत ने सूरत का हाल बेहाल कर दिया है। हीरा और टेक्सटाइल हब के रूप में जाने जाने वाले सूरत में सड़कों पर सैलाब नजर आ रहा है। अच्छी और महंगी से महंगी सोसाइटी में करोड़ों का फ्लैट लेने वाले लोग घर में ही कैद हो चुके हैं क्योंकि सब कुछ डूब चुका है। ये तस्वीर सूरत के पर्वत पाटिया और गोड़ादरा इलाके के हालात से समझिए, जिसकी सड़कें नदियों में तब्दील हो चुकी हैं। हालात तो ये हैं कि बचाव कार्य के लिए फायर ब्रिगेड और एनडीआरएफ की टीमों को उतारना पड़ा है। सूरत के डिंडोली की ये तस्वीर देखिए, जहां दूध को लेकर मारामारी मच गई। बताया जा रहा है कि इलाके में पीने के पानी और दूध की किल्लत हो गई है। सूरत ही नहीं, गुजरात के बाकी इलाकों का हाल भी काफी अच्छा नहीं है। दक्षिण गुजरात के नवसारी, तापी, डांग में भी हालात आउट ऑफ कंट्रोल होते दिख रहे हैं। डांग में लगातार बारिश से नदियां उफान पर हैं, रास्ते नदियों में तब्दील हो चुके हैं। अंबिका नदी उफान पर बह रही है जिसके चलते डांग और नवसारी के कई इलाकों में बाढ़ से हालात बन गए हैं। मौसम विभाग ने ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। अगले 24 घंटे में बारिश होने को लेकर लोगों को चेतावनी दी गई है। सूरत से संजय सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।
0: 9 बज गए, मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए

0: This is the sound of Claire cooking dinner at home. And that's the sound of a fraud alert from Wells Fargo flagging a charge for a pricey restaurant in Paris. Considering Claire isn't in Paris right now, that seemed odd to the bank and to Claire. Two taps later, Claire says nope to the charge and Wells Fargo is on the case. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
1: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
2: Back to the songs that never left. Jukebox Oldies is your favorite jukebox for 70s and 80s favorites that still feel young. From Madonna to George Michael to Hall & Oates and Eurythmics, the hits live on. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Jukebox Oldies to start listening now.
3: पैसे डबल होंगे बस ऑफर क्लेम करना है
4: पैसे डबल ऐसे कोई भी ग्रुप से
5: तो अर्ज किया है डबल रिटर्न्स के लालच में तुम्हें उलझाएंगे ये शेयर बाजार के अनवेरिफाइड ग्रुप फेक टिप्स भेजकर तुम्हारी जेबें खाली कर जाएंगे सेबी और एनएससी का कहना है सिर्फ सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह लें और पेमेंट सिर्फ वेरीफाइड अकाउंट या यूपीआई पे करें
6: समझ कर, इन्वेस्ट कर।
7: एनएससी द्वारा निवेशकों के हित में जारी।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: आगे आगे
2: उधर उधर
1: गया। करेक्ट करेक्ट
3: मिल गया।
4: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
5: जब बात हो रस चूसक कीटों से फसल सुरक्षा की, तो हर असली हीरो चुनता है जिवोरा। जिवोरा, सफलता का शंखनाद।
6: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
7: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
8: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
9: हमें स्वस्थ रखने वाली सारी चीजें ज्यादातर शुद्ध होनी चाहिए। सूर्य की किरणें और स्वच्छ पानी, वैसा ही है लाइन अरेबियन डेट्स। और अब लाइन लाइना डेट्स, इसमें फाइबर्स और विटामिन्स भी कुदरती हैं, जो देता है स्वास्थ्य भी कुदरती।
10: लाइन लाइना प्रीमियम डेट्स।
11: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
12: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
13: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार, एकदम सॉलिड।
14: In association with Sharda University, the world comes together at Sharda University. Where are you?
15: Punjab National Bank, Bharose ka Prateek.
14: Vimal, bolo zubaan kesri. Hint, bade aaram se.
16: We must rise, we must fight. दरअसल ईरान की सड़कों पर ऐसे पोस्टर तो आपने देखे होंगे, लेकिन आपको याद होगा कि ये सिंबॉलिक जो हाथ आप देख रहे हैं, ये पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई का है। लेकिन अब ये हाथ जो है जिसमें उनकी अंगूठी हमेशा नजर आती थी, जो एक पावर का साइन था, वो अब ईरान में खासतौर पर तेहरान के इन इलाकों में नजर आएगा, आजादी स्क्वायर पर नजर आएगा। आप देखते रहिए आज तक।
17: महाराष्ट्र इस वक्त मूसलाधार आफत का सामना कर रहा है। शासन प्रशासन की सारी तैयारियां बेबस नजर आ रही हैं। मुंबई से सटे पालघर में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते सड़कें मानो दरिया बन गई हैं। नदी में उफान के चलते हालात काफी खराब हो गए हैं। निचले इलाकों में पानी भर गया है। सड़कों पर पानी आ जाने की वजह से गाड़ियों की रफ्तार में ब्रेक लग गया है।

पालघर में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। बारिश और हादसों की वजह से अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 3 लोग घायल हैं। पालघर ही नहीं महाराष्ट्र के दूसरे इलाकों में भी हाल काफी खराब है। पुणे का हाल देख लीजिए, सड़कें दरिया बन गई हैं, गलियां मानो जैसे समंदर हो गईं। नासिक में भी बारिश मुसीबत बनकर बरस रही है। गोदावरी समेत कई नदियां उफान पर हैं, हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। त्र्यंबकेश्वर में भी चारों तरफ पानी पानी दिख रहा है। सड़कों पर सैलाब ही सैलाब है, खेत खलिहान सब डूब चुके हैं। वहीं मौसम विभाग ने मुंबई ठाणे के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है, जिसके चलते महाराष्ट्र को अभी बारिश से राहत मिलती नहीं दिख रही है। पालघर से विद्या और पुणे से श्रीकृष्ण पांचाल के साथ आज तक।

0: क्या इथेनॉल से नुकसान हो रहा है सर गाड़ियों?
1: मारुति सुजुकी के पास एक भी कंप्लेन नहीं है, टोयोटो के पास एक भी कंप्लेन नहीं है। मुझे बदनाम करने के लिए और इथेनॉल को बदनाम करने के लिए प्रयास है।
0: नए नए एक्सप्रेस वे जो बन रहे हैं उनमें गड्ढे,
1: ये हमारे हाईवे में जितने गड्ढे हैं उसके ऊपर आप कार्यक्रम करिए और दिखा दीजिए।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
4: Oh, sorry.

0: चलो चलो प्रसाद बांट लें।
1: हाँ बांटो बांटो बांटो।
0: हाँ बांटो भाई। ले एक तेरा एक तेरा एक मेरा बराबर है।
1: हाँ बढ़िया बढ़िया बढ़िया। हाँ सही सही सही।
0: ले दो तेरा दो तेरा दो मेरा ठीक है।
1: बिल्कुल सही बिल्कुल सही। हाँ
0: भाई तीन तेरा तीन मेरा ठीक है। सही है ना? कोई दिक्कत तो नहीं?
1: कोई दिक्कत नहीं भाई, मजा आ गया।
0: वाह वाह वाह वाह। चलो ठीक है, हो गया बंटवारा।
1: आप चंपत हो जाओ यहाँ से, कल फिर मिलते हैं रात को।
0: मिलेंगे मिलेंगे। जय राम जी की,
1: जय राम जी की,
0: जय राम जी की।
2: Hey there, it's Stormy Warren, and on my podcast called The Stormy Cast, I talk to artists like Luke Bryan, Tim McGraw, and Miranda Lambert about their journey from their hometowns to their first big break in Nashville. Thomas Rhett called his episode of The Stormy Cast the best therapy session he's ever had. And during my conversation with Little Big Town, he needed tissues, and a lot of them. Yeah, the conversations go that deep. You'll find The Stormy Cast wherever you listen to your favorite podcasts, in the TuneIn app or at TuneIn.com.
3: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste Complete Oral Health ka Sach in association with
4: Bharat ki apni electric sawari Sokudo
3: Durable Pipes Fittings and Tanks a complete range of sanitary solutions
4: Akajay the number one Korean skincare brand now in India

0: दिल्ली एनसीआर में लगातार बारिश, मौसम विभाग का रेड अलर्ट, रोहिणी में गिरी इमारत, 3 की मौत, सीएम ऑफिस का बयान, सभी एजेंसियां मुस्तैद, गाजियाबाद में 12वीं तक स्कूल बंद। बुशहर, चाबहार समेत ईरान के कई इलाकों में अमेरिका ने गिराए बम, उड़ाए रेलवे ब्रिज, बंदर अब्बास में धमाके, ईरान का बारूदी पलटवार, कुवैत और बहरीन में बजने लगे जंगी सायरन। डोनाल्ड ट्रंप का आक्रामक बयान, ईरान की किल लिस्ट में मैं नंबर 1, दोबारा हिमाकत हुई तो देंगे 20 गुना ताकत से जवाब, तेहरान का बयान, अमेरिकी अभद्रता का हिसाब होगा। ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर, मेलबर्न में अभूतपूर्व स्वागत, पीएम एंथनी एल्बनीज के साथ द्विपक्षीय वार्ता, बिजनेस फोरम समिट में कहा ऊर्जा संकट चुनौती। चढ़ावा चोरी केस में बड़ा खुलासा, पुलिस कस्टडी में आरोपियों ने उगले राज, रिश्तेदारों के अकाउंट में वाइट करते थे लूट की रकम, 30 बैंक खाते फ्रीज, सभी की जांच।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो, एकजे द नंबर 1 कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया।

नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल। मॉर्निंग प्राइम टाइम आज सुबह के साथ एक बार फिर से हाजिर है। आज राजधानी दिल्ली में बादल जमकर बरसे, रात से बारिश हो रही है। एक दिन की ही बारिश में दिल्ली पर आफत टूट पड़ी है। आगे हम दिखाएंगे दिल्ली और एनसीआर का हाल, जहां सड़कों गलियों में पानी भरा हुआ है। दफ्तर के लिए निकले लोग ट्रैफिक में अटके हुए हैं, अंडरपास में गाड़ियां बंद पड़ी हैं। साथ ही दिखाएंगे गुजरात के शहर सूरत का हाल। इस कारोबारी शहर की सूरत ही बदल गई है, हर तरफ पानी ही पानी है, सड़कों का पता नहीं है पर नावें तैर रही हैं। और दिखाएंगे कि महाराष्ट्र के रायगढ़ में कैसे पाताल गंगा नदी के उफान से एलपीजी बॉटलिंग प्लांट सी भी बिल्कुल पानी पानी हो गया और 3000 से ज्यादा सिलेंडर नदी की धार में बहते हुए नजर आए।

0: मानसून के पूरे भारत में छाते ही आपातकाल भी शुरू हो गया है। मैदान से पहाड़ तक आसमान से आफत बरस रही है। पहाड़ों पर दरकती जमीन डरा रही है तो मैदानी इलाकों में नदी नाले उफान पर हैं। शहर गांव लबालब है, सड़कों का पता नहीं है। निचले इलाकों में घरों तक पानी तूफानी हो गया है। और अब आपके लिए लेकर आते हैं बड़ी खबर। राजधानी दिल्ली में बारिश में गिरी एक बहुमंजिला इमारत में मरने वालों की संख्या 3 हो गई है। यह हादसा दिल्ली के रोहिणी इलाके में हुआ है। 4 लोगों को इस इमारत के मलबे से रेस्क्यू किया गया है। आपको बता दें कि बारिश की वजह से इस तरह के हादसे होते हैं और जो खबर आ रही है कि यह 4 मंजिला इमारत थी और इसके गिरने से यह हादसा हुआ है।
1: तो एक और देख इसको निकालने का हाथ दबाओ
2: स्लैब जी।
1: मैं अच्छा अच्छा कोई नहीं आराम से निकालो, आराम से
2: करो। हम काम कर रहे हैं, ऊपर
3: हाथ दबाओ मेरा
2: ना। नहीं बता लेंगे आपको, चिंता मत करो आप।
4: रोहिणी में बुधवार की शाम को एक बिल्डिंग कोलैप्स हुई थी। मैं अभी उसी जगह पर खड़ा हूं, देख सकते हैं जोर शोर से जो रेस्क्यू है वो यहां पर किया जा रहा है। फिलहाल जो मलबा था वो तो यहां से हटा लिया गया, लेकिन देख सकते हैं अभी भी यहां पर जो व्हीकल जो इसके बिल्डिंग की चपेट में आए थे वो यहीं पर अभी तक पड़े हुए। काफी बड़ी बड़ी यहां पर मशीनें हैं वो लगाई गई है, देख सकते हैं। मैं आपको सबसे पहले उसी जगह की तस्वीरें दिखा देता हूं। ये पूरी की पूरी वही बिल्डिंग की जगह है जहां पर 5 मंजिला जो बिल्डिंग है वो बनाई जा रही थी और इसमें कई लोग दबे थे ऐसा बताया जा रहा। जो मालिक था वो भी इसके अंदर ही दबा था। फिलहाल 3 लोगों की इसमें मौत हुई है और 2 लोग घायल थे जिनमें से एक गंभीर रूप से था और दोनों को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। देख सकते हैं तस्वीरों की अगर बात की जाए तो युद्ध स्तर पर यहां पर जो काम है वो किया गया था और रातों रात पूरा का पूरा जो मलबा है वो हटा लिया गया। दूसरी तरफ मैं आपको एक तस्वीर और दिखा देता हूं। ये वो गाड़ी है जो यहां से रोड से गुजर रही थी और इस गाड़ी की हालत देखकर भी आप समझ सकते हो कि जो इस गाड़ी के अंदर जो लोग थे वो समय रहते निकल गए थे ऐसा बताया गया था पुलिस अधिकारियों की तरफ से। लेकिन गाड़ी की हालत आप देखकर जरूर ये अंदाजा लगा सकते हैं कि तस्वीरें क्या रही होगी, उस समय का मंजर क्या रहा होगा। बड़ी बड़ी जो मशीनरी है वो लगाई गई है, पोपलाइन यहाँ पर लगाई गई है कि जो मलबा है उस मलबे को तो रातों रात उठा लिया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर अभी भी जो रोड है वो उसको पूरी तरह कॉर्डन ऑफ किया गया है।
0: और दिल्ली NCR तो एक ही ठीक ठाक बारिश में त्राही त्राही करने लगा है। रात भर की बारिश के बाद जब दिल्ली वाले जागे तो निचले इलाकों की सड़कें लबालब मिली, घरों के बाहर पानी का कब्जा मिला। तो आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरह का हाल दिल्ली NCR के इलाकों में हो गया। ये तस्वीरें हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं कि जब बारिश आई तो देखिए सड़कों का हाल, पानी पानी। ये देश भर की तस्वीरें अब आपके लिए हम लेकर आएंगे किस तरीके से रात भर अलग अलग इलाकों में जब बारिश चली या कल के दिन पूरी बारिश देखी गई तो उसके बाद सड़कों का क्या हाल हो गया। सूरत, जिसकी बात हम आपको बता रहे थे कि कारोबारी क्षेत्र है, लेकिन हालत देखिए क्या होती जा रही है। और ये रायगढ़ का वो इलाका महाराष्ट्र का जहां पे एक बॉटलिंग प्लांट पे पानी घुस गया, वो भी पाताल गंगा नदी का, और उसमें सिलेंडर बह गए। साथ ही आपके लिए लेकर आ रहे हैं अंबिका नदी का ये रूप, और ये खड़कवासला पुणे का डैम है जहां पर किस तरीके से पानी छोड़ा जा रहा है क्योंकि पानी बढ़ता जा रहा है। और ये अलग अलग इलाके दिल्ली के जहां पर लगातार बारिश की वजह से लोगों का बुरा हाल है, लेकिन मजबूरी है, काम पर जाना है, सड़कों पर उतरना है। सड़कों को देखने वाला कोई नहीं है। हालत म्युनिसिपैलिटियों ने और म्युनिसिपल कॉरपोरेशनों ने यह कर दी है कि ट्रक तक डूब जाते हैं, नावों का इस्तेमाल होकर के लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। तो ये तो स्थिति है हमारे देश के शहरों की जहां सड़कों पर भी सिलेंडर है और नदियों में भी इस तरह का हाल नजर आ रहा है। तो चलिए अब बात करते हैं दिल्ली की, जहां पर जब लोग घरों से बाहर निकले तो उन्हें हर जगह पानी पानी मिला और घरों के बाहर पानी का लगातार कब्जा ही दिखा। जब वो दफ्तर के लिए निकले तो पूरे रास्ते पानी का सामना करना पड़ा। अंडरपास से गाड़ियां डूबती हुई नजर आई, वहां से निकलते हुए जब दिखी तो NH24 के बारे में भी आपको बता देते हैं। वहां पे सड़क पर ट्रैफिक की भरमार लगी हुई है, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक लगा हुआ है। और आपको अब बताते हैं कि किस तरीके से दिल्ली में कैसी बारिश हुई है। देखिए, पूसा का इलाका, मयूर विहार का इलाका, नारायणा, लोधी रोड, छतरपुर, मेहरोली, नजफगढ़, यानी कि दिल्ली के कोने कोने की जो हम बारिश की हाल दिखा रहे हैं, मिलीमीटर के हिसाब से आपको बारिश दिखा रहे हैं, और ये बारिश ने जो हाल किया है वो भी आपको बता रहे हैं। मौसम विभाग ने जाहिर तौर पर वहां पर एक रेड अलर्ट जारी किया हुआ है दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में, क्योंकि रुक रुक कर बारिश हो रही है, लेकिन लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से जल भराव की दिक्कतें सामने आ रही हैं और कई परेशानियां दिखी हैं। कहीं पे पेड़ गिर गए हैं, कहीं पर पानी भरा हुआ है अंडरपास में। तो ये सारी परेशानियों को देखते हुए मौसम विभाग ने चेताया है कि अगर जरूरत ना हो तो बाहर ना निकले। तो चलिए रुक करते हैं दिल्ली का हाल जानने के लिए। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी पीयूष और आशुतोष जुड़ गए हैं। बारिश का हाल बुरा है, तो आशुतोष पहले आपके पास आ जाते हैं। आपके पीछे दिख रहा है थोड़ी बारिश कम है, हालांकि पीयूष जहां खड़े हैं वहां पर पानी लबालब दिख रहा है। तो माफ कीजिएगा, पहले मैं पीयूष के पास ही चली जाती हूं, क्योंकि उनके पीछे जो हाल है ट्रैफिक का वो समझ में आता है। आप कहां हैं पीयूष और क्या हुआ है वहां पे? पीयूष, चलिए बारिश का ये हाल देखिए कि संपर्क भी करना मुश्किल हो रहा है। आशुतोष आपके पास आ जाते हैं जब तक पीयूष के साथ भी कनेक्ट बने। आशुतोष, आप तक आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। अब ये बताएं कि आप किस इलाके में खड़े हैं, क्योंकि यहाँ ट्रैफिक तो थोड़ा सुचारू लग रहा है और बारिश भी थमी हुई लग रही है।
3: ठीक 500 या 600 मीटर पीछे अगर मैं जाऊंगा तो बारिश हो रही है। दरअसल महिपालपुर का इलाका है, तो गुरुग्राम में कल जो हमने देखी थी दो दिन की तस्वीरें, अभी थोड़ी राहत है, लेकिन ज्यादा राहत है नहीं, बस थोड़ी सी ड्रिजल शुरू हुई है और बादलों की आवाज है। दरअसल रेडार पर सैटेलाइट इमेजेस जो ताजा आई है मौसम विभाग में, उसमें यही क्लस्टर दिखाई दे रहा है। तो ये जो क्लस्टर है ये वो है जिसकी वजह से आप नोएडा और गाजियाबाद में मूसलाधार बारिश देख रही है। सेंट्रल दिल्ली, दिल्ली के कुछ इलाकों में थोड़ी कम बारिश है और अब ये धीरे धीरे दक्षिण दिल्ली से होते हुए आगे जो है ये क्लस्टर वो अब गुरुग्राम की ओर बढ़ रहा है। तो अब से एक घंटे के भीतर आप देखेंगे कि यहां पर भी भारी बारिश होगी, और इसीलिए जो रेड अलर्ट है आज का वो सिर्फ दिल्ली एनसीआर नहीं बल्कि उसी के साथ साथ हरियाणा के लिए खास कर है। और उसकी वजह ये है कि जहां बारिश हुई है आगे थोड़ी सी वाटर लॉगिंग अगर होगी तो जो ट्रैफिक की रफ्तार है, चूंकि मैं जिस दिशा में हूं उधर आपको नहीं दिखाई दे, लेकिन दूसरी तरफ देखिए ये सैकड़ों गाड़ियों का काफिला जो जमा हुआ ये ट्रैफिक जाम है। यहां पर भी कछुए की भी धीमी रफ्तार से गाड़ियां यहां पर चल रही हैं, तो काफी लंबा ट्रैफिक जाम है। और बस थोड़ी देर में जैसे इस इलाके, क्योंकि ये अलर्ट हर जगह के लिए है और पिछले दो दिनों में हमने गुरुग्राम की तस्वीरें देखी हैं कि गाड़ियां तैर रही थी, अपार्टमेंट, सबवे, अंडरपास सब कुछ भरा हुआ था। दिल्ली में दरअसल इसलिए आपको अभी बहुत ज्यादा बारिश का वाटर लॉगिंग इसलिए नहीं दिख रही है क्योंकि जो स्पेल है वो थोड़ी कम है, बारिश ज्यादा है वो कंटिन्यूटी में है, निरंतरता बनी हुई है। लेकिन अगर सबसे ज्यादा जैसे लोधी रोड इलाके में 80 मिलीमीटर से ज्यादा दर्ज की गई तो ये लगभग 24 घंटों में है। वहीं गाजियाबाद में 100 मिलीमीटर, 124 मिलीमीटर तक बारिश दर्ज की गई थी। गौतम बुद्ध नगर में भी 80 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हुई है, तो ये 24 घंटे में है। फ्लड की स्थिति या वाटर लॉगिंग तगड़ी हम तब देखते हैं जब 40 mm, 50 mm, एक या दो घंटे के अंदर बारिश हो जाती है, और आज वो उसी तरह का अलर्ट है कि जैसे पूरा दिन अगले 24 घंटे इसीलिए क्रिटिकल हैं। गाजियाबाद में एहतियात बरता गया है, गौतम बुद्ध नगर में एहतियात बरता गया है, दिल्ली में भी अभी तक प्रशासन ने कई जगह तैयारियां की हैं, लेकिन जैसे ये स्पेल थोड़ा सा बढ़ेगा इन तैयारियों के पोल खुलेगी, जैसे गुरुग्राम में होता है हर साल, हमने देखा ही था कल परसों भी तस्वीरें देखी हैं, आज इसीलिए गुरुग्राम में हूं कि इन इलाकों में अभी थोड़ी देर में बहुत तेज बारिश होने वाली है। और इस बरसात के बाद तक कैसे तस्वीरें बदल जाती है, राजधानी का इलाका हो, एनसीआर का इलाका हो, तो हाँ खासकर दिल्ली एनसीआर हरियाणा के लिए ये मुश्किल समय है, अगले 24 घंटे क्रिटिकल हैं।
0: जी बिल्कुल, 24 घंटे क्रिटिकल हैं क्योंकि एक बार अगर बारिश हो जाती है तो दिक्कतें आती हैं। तो चलिए सीधा रुक करते हैं गाजियाबाद का, एनसीआर का इलाका, जहां पर कल भी परेशानी देखने को मिली थी। पीयूष, परेशानी तो लगता है अब तक बरकरार है जैसे हाल आपके पीछे नजर आ रहा है। पीयूष
5: जी, जी अंजलि, मेरी मौजूदगी इस वक्त NH24 पर है और ये वो NH24 है जो अक्षरधाम से शुरू होता हुआ मेरठ और मेरठ के बाद हरिद्वार से देहरादून की तरफ जाता है, लेकिन यहाँ की तस्वीर काफी डरा देने वाली है क्योंकि जो पानी है वो घुटनों तक भर चुका है। मैं सीधे आपको तस्वीरें दिखाऊंगी। देखिए मेन NH24 है, नेशनल हाईवे है और सरकार जो है वो दावा करती है कि NH24 जो है पूरी तरह से सेफ है, सुरक्षित है, लेकिन यहाँ पर आप देखिए कैसे पानी भर चुका है। कई सारी गाड़ियां इस पानी में फंसने के बाद खराब हो चुकी है। कई लोग जो घंटों से पानी के अंदर भरे फंसे हुए हैं वो धीरे धीरे करके बाहर निकल रहे हैं। जो एक राहगीर आ रहे हैं उनसे बात करते हैं, कितनी देर से पानी में फंसे हुए, पानी कितना है? और
6: यहाँ पे काम पानी कम से कम आधा मीटर के आसपास है नीचे गहराई में। मैं तो इसी के चक्कर में डिवाइडर से चढ़ा के लाया, फिर भी डेढ़ फुट के आसपास पानी पड़ रहा है।
5: पूरा पानी भरा हुआ है? पूरा पानी भरा हुआ है,
7: पूरा पानी भरा हुआ है। हम तो भैया कपड़े लेके बैग में जब ड्यूटी पे जा रहे हैं।
5: आप लोग ड्यूटी पे जा रहे हैं?
3: हाँ जी।
5: कितनी देर से आप लोग फंसे हुए हैं?
3: हम फंसे हुए हैं
7: आधा घंटा हो गया कम से कम।
3: हम तो ऊपर ऊपर से आ रहे हैं ना,
5: आधे घंटे उससे ऊपर से आने के बाद भी आधे घंटे से।
7: हाँ जी
6: सर, कम से कम डेढ़ किलोमीटर का जाम पड़ा है, डेढ़ से दो किलोमीटर का।
3: उधर भी है विजय बाईपास की साइड में।
5: तो मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ और मेरे सहयोगी अंजलि एक बार कैमरा पैन करके आपको दिखा सकते हैं। देखिए लाइन से यहाँ पे गाड़ियां खड़ी हैं, ये वो गाड़ियां हैं जो इस जाम में फंसने के बाद खराब हो चुकी है। एक तस्वीर और जो बहुत महत्वपूर्ण है जानने की, देखिये ये तो हाईवे की हालत है, वो देखिए नीचे क्या तस्वीर है। नीचे भी पूरी तरह से पानी भरा हुआ है। और मनीष भिदुड़ी मेरे सहयोगी अगर जूम करके आपको तस्वीरें दिखाएं तो आप देख सकते हैं एक गाड़ी जो है वो नाले में जाकर फंस चुकी है और अब तक वो निकल नहीं पाई है। जद्दोजहद काफी देर से की जा रही है लेकिन लगातार जो है वो हम देख रहे हैं लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और लंबी लंबी कतारें और काफी लंबा जाम इस वक्त मेन नेशनल हाईवे पर दिखा जा सकता है और लबालब पानी जो है वो यहाँ पर भरा हुआ है। NHAI के जो अधिकारी है वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं, उन्होंने भी कोशिश की कि इसको पानी को यहाँ से निकाला जाए लेकिन अब तक पानी जो है वो निकाल नहीं पाए हैं। यहाँ पर जो अधिकारी हैं जी
8: निकल रहा है, वहाँ से साफ करवा दिया गया है, वो क्या रहते हैं जो पाइप बंद था वो निकल रहा है, चल रहा है पानी धीरे धीरे, आधे घंटे 10-15 मिनट सूख जाएगा।
5: लेकिन जब भी बारिश होती है ऐसी हालत हो जाती है?
8: बिल्कुल होती है सर, थोड़ा समस्या होती है, पानी सानी भर जाता है।
5: थोड़ी समस्या तो नहीं है सर, यहाँ पे तो बहुत
8: एक्चुअली दिक्कत तो होती है सर, थोड़ा मतलब कचरा फंस जाता है, मतलब पन्नी मतलब पॉलीथीन है उस तरह फंसा रहता है तो निकालने में थोड़ा दिक्कत होती है। निकल गया, निकल रहा है पानी,
5: निकल रहा है पानी, इस तरह के दावे अंजलि यहाँ पर किए जा रहे हैं। लेकिन आप स्थिति देख सकते हैं कैसे जो है जाम काफी लंबा जाम यहाँ पर देखा जा सकता है। स्कूल बसेस जो है वो भी अब वापस आ रही है क्योंकि अब गाजियाबाद में ऑर्डर्स आ चुके हैं कि स्कूलों को जो है वो बंद कर दिया जाए। और ये स्थिति इसलिए हुई है क्योंकि लगातार बारिश जो है वो हो रही है और गाजियाबाद में इस वक्त रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। जी अंजलि,
0: एक्सप्रेस वे और हाईवेज का है तो अंदर क्या होगा, सीधा रुक करते हमारे सहयोगी अमित भारद्वाज का। अमित आप किधर मौजूद है और छतरी देख के लगता है आपके इलाके में तो इस वक्त वर्षा हो रही है, तो फिर ये बताइए कि पीछे ट्रैफिक चल रहा है कि नहीं, क्योंकि दिल्ली के कई इलाके तो अब बिल्कुल थम चुके हैं।
9: अंजलि देखिए मेरी मौजूदगी लुटियंस दिल्ली में है, खासतौर पे ट्रैफिक पुलिस ये कोशिश जरूर करती है दिल्ली में कि इस इलाके में जाम ना लगे। हमने सुबह एक रिपोर्ट दिखाई थी बीडी मार्ग से जहां माननीय सांसदों का आवास है दोनों तरफ, आप भी उस इलाके से गए होंगे, वहां अपार्टमेंट्स हैं एक लाइन से लेफ्ट और राइट में और वहीं पे पानी जमा हुआ है। अपार्टमेंट में जाना है तो आपको गाड़ियों को पानी के अंदर से वेड इन करके लेके जाना होगा, हर साल वो तस्वीर बनती है। हालांकि जिस जगह पे मैं जिस इंटरसेक्शन पे मैं खड़ा हूं भगवान दास रोड के इंटरसेक्शन पे, यहां फिलहाल आपको कोई ट्रैफिक जाम नहीं दिखेगा। ITO की तरफ से ट्रैफिक यहां आता है, लुटियंस के अलग अलग इलाकों में जाता है। भारत मंडपम पे हमने जरूर ये तस्वीर देखी है जब मैं यहां आ रहा था कि वहां बाकायदा मोटर लगा के जनरेटर्स लगा के पानी को बाहर निकाला जा रहा है। संभवतः जो पार्किंग में पानी इकट्ठा होता है टनल पाथवे वहां जो बनाया गया है उसमें, हर बार बारिश में हम देखते हैं कि जब मूसलाधार बारिश होती है तो बहुत ज्यादा जल भराव होता है, टनल बंद भी करना पड़ता है। राहत इस इलाके में जो तस्वीरें हमने देखी है गुरुग्राम की या जहां पीयूष खड़े थे वहां से राहत की तस्वीर दिल्ली के लुटियंस इलाके में जरूर है। उसका कारण हालांकि निश्चित रूप से आप कह सकते हैं कि भी यहां मूसलाधार बारिश नहीं हो रही है, लाइट रेन्स है, मॉडरेट रेन्स है जो सुबह से ही हो रहा है। लेकिन सवाल ये होगा कि क्या जब हेवी रेनफॉल होगा उस वक्त तैयारियां जिस तरह की दिल्ली सरकार दावा कर रही है, अलग अलग एजेंसीज दावा कर रही हैं, वो सारी तैयारियों का दावा सही निकलेगा या पिछले साल वाली तस्वीरें फिर से दिल्ली में आनी शुरू हो जाएंगी। अंजलि
0: जी बिल्कुल, और यही हाल दिल्ली से सटे इलाकों का भी है जो NCR का इलाका कहलाता है यानी कि नोएडा। नोएडा में फिल्म सिटी का क्या हाल था सुबह दिखा रहे हैं हमारे सहयोगी आशुतोष मिश्रा।
3: दिल्ली एनसीआर में पिछले 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है और अभी भी मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली एनसीआर हरियाणा के ज्यादातर इलाकों में भारी बारिश और उसकी तस्वीरें भी सामने आने लगी हैं। मसलन आप नोएडा में देखेंगे, गौतम बुद्ध नगर की तस्वीर है और सेक्टर 16 का इलाका है, ये सड़कों पर आपको पानी जमा हुआ दिखाई देगा। हालांकि ज्यादा नहीं, एक फिट ही है, लेकिन रेड अलर्ट के बाद बारिश जो है और इसका असर अब दरअसल पूरे इलाके में देख रहे हैं। हमने पहले गुड़गांव में देखा, गुरुग्राम में कैसे उस तरह से सड़कें दरिया बन गई थी और अब आप ये नोएडा की तस्वीरें देख रहे हैं, यहाँ भी सब कुछ जलमग्न हो चुका है। और ये देखिए सामने से जो गाड़ियां आ रही हैं, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे धीरे धीरे वाटर लॉगिंग की समस्या बढ़ेगी और ये पूरे इलाके में होगा। तो रेड अलर्ट जारी करने के बाद दिल्ली हरियाणा सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे, एनसीआर के इलाकों में ज्यादा दिक्कत होगी। लगातार बारिश अभी भी हो रही है और ऐसे में सलाह दी जाती है कि जब तक बहुत जरूरी ना हो यात्रा करने से बचे, बाहर ना निकले, क्योंकि आज का दिन दिल्ली वालों के लिए मुसीबत भरा हो सकता है। सड़कों पर जो जल जमाव है, ऐसी तस्वीरें आगे दिन में बढ़ सकती हैं। नोएडा से मैं आशुतोष मिश्रा आज तक।
0: और एनसीआर का एक और इलाका गाजियाबाद, वहां क्या हाल रहा देखिए हमारे सहयोगी मयंक गौड़ के साथ।
10: गाजियाबाद में समय मौजूद है और रात से बारिश का सिलसिला यहां जारी है। सड़कों की बात करें तो जलभराव की स्थिति यहां सड़कों पर देखी जा रही है। गाजियाबाद के रेलवे स्टेशन रोड पर इस समय मौजूद है, ये वो रोड है जो विजयनगर लाइन पर क्षेत्र को गाजियाबाद के रेलवे स्टेशन से जोड़ती है। मुख्य मार्ग ये है, वाहनों का काफी भीड़ यहाँ रहती है और सड़कों पर जल भराव है, लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही जो बाइकें हैं या जो वाहनों के पहिए हैं वो डूबे हुए नजर आ रहे हैं। भारी परेशानी लोगों को यहाँ हो रही है, सड़कों पर जल भराव की स्थिति है। वही जो ऐसी बारिश है वो अक्सर क्योंकि बारिश के चलते जब सड़कों पर पानी भरा होता है तो जो गड्ढे होते हैं वो नजर नहीं आते और कहीं ना कहीं हादसे की वजह भी बन जाते हैं। बीती रात से ये जो जल भराव है सड़कों पर देखा जा रहा है। गाजियाबाद, हालांकि जो गाजियाबाद जिला अधिकारी हैं उनके द्वारा गाजियाबाद के स्कूलों की छुट्टी की गई है, लेकिन सुबह का समय है, लोग घरों से निकले हैं, सड़कों पर जल भराव है वो नजर आ रहा है। देख सकते हैं किस तरीके से जो सड़कों पर जल भराव है, पानी की लहरें भी इस जो वाहन जब गुजरते हैं तो पानी की लहर भी अलग नजर आती है और लोगों को खासी दिक्कतें यहाँ उठानी पड़ रही है। जो वाहन है वो इस बारिश में फंसने की वजह से बंद हो जाते हैं।
0: तो दिल्ली में तो बस शुरुआत ही है, लेकिन गुजरात और महाराष्ट्र में आफत की बरसात है। दोनों राज्यों के कई शहर पानी पानी है। गुजरात का बिजनेस कैपिटल है सूरत, इसकी सूरत ही बदल गई है, पूरा शहर सैलाब का शहर बन गया है। सड़कों का पता नहीं है, गाड़ियों की जगह अब नावें तैर रही हैं। तो महाराष्ट्र में नदी नाले इस तरह से उबल पड़े हैं कि मानो सब कुछ बहा कर ले जाएंगे। रायगढ़ में पातालगंगा नदी के रौद्र रूप में एलपीजी का बॉटलिंग प्लांट ही पानी पानी हो गया और 3,000 से ज्यादा सिलेंडर नदी की धार में बह गए। तो ये हालत है इन इलाकों की, लेकिन सूरत में इस वक्त क्या हाल है ये जानने के लिए आइए सीधा वहीं का रुख करते हैं। हमारे सहयोगी अतुल तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सूरत की जो तस्वीरें आई थी चौंकाने वाली थी और पिछले कई दिन से आ रही ये तस्वीरें, अतुल, तो इस वक्त क्या स्थिति है और प्रशासन क्या कर रहा है?
11: अब बिल्कुल, सूरत की बात कर लें तो बीते 24 घंटों के अंदर सूरत में बारिश तो नहीं हुई है, लेकिन बीते 24 घंटों के पहले जो बारिश 12 घंटों के अंदर हुई वो 15 से 18 इंच जितनी बारिश हुई थी, जिसकी वजह से सूरत के अलग अलग इलाकों में जल भराव की स्थिति सामने आई। कई सारे ऐसे वीडियोस वायरल भी हुए जिसमें बेसमेंट से लेकर कॉम्प्लेक्स की पहली मंजिल जलमग्न दिखाई दी। फिलहाल मैं वराछा इलाके के अंदर हूँ और मेरे पीछे की तरफ की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं पुदार आर्केड की, कि जहाँ पे ये वो पुदार आर्केड है जहाँ के वीडियो वायरल हुए थे। फर्स्ट फ्लोर तक पूरा ये कॉम्प्लेक्स जलमग्न था और नीचे का बेसमेंट जो अभी खुला दिख रहा है, लेकिन 24 घंटे पहले पूरी तरह से ये बेसमेंट जलमग्न था और नीचे की तरफ की जो मोबाइल की शॉप्स यहाँ पे दिखाई पड़ रही है पूरी तरह से पानी के अंदर डूबी हुई थी। हमारे साथ इसी कॉम्प्लेक्स के एक दुकानदार भी मौजूद है, उनसे बात करेंगे क्या ये पहली बार इस प्रकार की स्थिति हुई और आपकी दुकान यहाँ पे कहाँ है, कितने का नुकसान अब आपको हो रहा है?
12: जी, मेरा दुकान सामने आपको दिख रहा होगा, राज मोबाइल ग्राउंड फ्लोर पे, वो मेरा दुकान है। और ये नुकसान की स्थिति अपने समझे तो मेरा 50 से 40 लाख रुपए का नुकसान हुआ है और ऑल ओवर पूरे मार्केट का गिने तो 200 से 250 करोड़ का नुकसान है।
11: अच्छा, किस किस चीज़ों की यहाँ पे दुकानें हैं, क्योंकि मोबाइल की दुकानें तो दिखाई पड़ रही है लेकिन लगभग 24 से 30 घंटे पहले तो फर्स्ट फ्लोर का भी आधा हिस्सा डूबा हुआ।
12: हाँ, तो यहाँ पे पूरा मोबाइल ही मार्केट है और एक पूरा गुजरात का फेमस है और सूरत का भी फेमस है, सब लोग पोदार आर्केड को जानते ही है और दिल्ली से बेंगलोर से जहाँ जहाँ हमारे व्यापारी लोग हैं तो उसका भी मैसेज कॉल आता है।
11: अच्छा, किस वजह से यहाँ पे ये जल भराव की स्थिति इस बार हो गई?
12: अच्छा, ये जल भराव की स्थिति, ये जो मल्टीमीडिया हब रेलवे स्टेशन होता है उसके सामने सिडको करके है, और ये जो स्टेशन का काम चालू है तो उसकी वजह से सामने की साइड में वो जो ब्रिज का काम चालू है तो वहाँ पे वो पत्रे लगाए हैं उन लोगों ने, आड़स की है पत्रे की, और जो गटर वो सब ब्लॉक है, तो जो कुदरती आफत से जो पानी आता है ना उसका निकाल के अवरोध की वजह से, और सूरत महानगर पालिका की लापरवाही और वो जो सिडको कंपनी का एजेंट है कोई, उनकी लापरवाही की वजह से ये हुआ है।
11: आपका कितना नुकसान हुआ है? क्योंकि हम देख रहे हैं साफ सफाई यहाँ पे की जा रही है, सारे फर्नीचर्स बाहर निकाले गए।
13: सर, नुकसान तो का तो अभी आंकलन ही नहीं कर सकते, क्योंकि जितना था एकदम पूरा पूरा जीरो है, कोई 1% कोई सामान नहीं बचा। आपने मीडिया के मार्फत से दिखाया, अभी DVR कैमरा मोबाइल आप देख सकते हैं, इसमें चार्जर और जितना नया नया सामान है वो सब एकदम पूरा का पूरा कचरे में फेंक रहे हैं हम, और सब दुकान में कम से कम इतनी इतनी बड़ी दुकान है तो 1-1 करोड़ का कम से कम आंकलन के हिसाब से माल होगा, एकदम जीरो हो गया, पूरा फर्नीचर AC कोई चीज नहीं बची है सर। बाकी यहाँ ये पोदार पूरा सुरक्षित था, 2006 में यहाँ पूरे सूरत में पानी आया था, पोदार में एक बूंद भी पानी नहीं आया था।
11: आपको मैं फिर से कॉम्प्लेक्स के बेसमेंट की तस्वीरें दिखाऊंगा कि मोबाइल की शॉप हर तरफ आपको यहाँ पे नजर पड़ेगी, और जो भी मोबाइल की शॉप्स हैं उनमें जो भी सामान था पूरा जलमग्न हो चुका था, पानी में डूब चुका था, अब उसे बाहर निकालकर यहाँ पे साफ सफाई का जो कामकाज है वो शुरू किया गया है। लेकिन दुकानदार
0: बिल्कुल, अतुल बारिश आई है, आफत लाई है और नुकसान भी लेकर आई है इन कारोबारियों के लिए। फिलहाल हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी है।
14: Presented by पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से, इन एसोसिएशन विद भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकु।
15: क्या इथेनॉल से नुकसान हो रहा है सर गाड़ियों?
16: मारुति सुजुकी के पास एक भी कंप्लेन नहीं है, टोयोटा के पास एक भी कंप्लेन नहीं है, मुझे बदनाम करने के लिए और इथेनॉल को बदनाम करने के लिए प्रयास है।
15: नए नए एक्सप्रेस वे जो बन रहे हैं उनमें गड्ढे,
16: ये हमारे हाईवे में जितने गड्ढे हैं उसके ऊपर आप कार्यक्रम करिए और दिखा दीजिए।
17: This is the sound of Claire cooking dinner at home. And that's the sound of a fraud alert from Wells Fargo flagging a charge for a pricey restaurant in Paris. Considering Claire isn't in Paris right now, that seemed odd to the bank and to Claire. Two taps later, Claire says nope to the charge and Wells Fargo is on the case. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
18: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
19: Hey, this is Harry Douglas from Freddie and Harry. Stay on top of the MLB season with ESPN Radio. Get daily sports talk covering every big moment from around the league.
20: Right field, and it will...
19: From the first pitch of the season to the stretch run.
20: And that's the ball game.
19: We've got you covered with analysis, storylines, and insider perspective. And all season long, catch selective live games so you can tune in for key matchups and hear the action unfold. Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
21: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
22: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
23: सोच बदलो और बैंक भी।
24: पापा।
25: सॉरी यार, गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
26: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
25: छक्का?
26: सब कैशलेस हो गया है।
25: हाँ।
27: टाटा AIG है तो भरोसा है।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
2: जब बात हो सोयाबीन के खेतों को खरपतवार से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का अमोरा। अमोरा तेज तरार वार, हारे अब खरपतवार, देश के हीरो की पहली पसंद।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
5: आज सुबह में आपका एक बार फिर से स्वागत है और इस वक्त आपके लिए लेकर आएंगे एक डराने वाली तस्वीर। बड़ी खबर आ रही है उत्तराखंड के कद्दूखाल इलाके से, जहां पर भूस्खलन देखा गया है। ये नेशनल हाईवे 707A पर देखा गया है। देखिए ये तस्वीर जिसमें पूरी एक बिल्डिंग जमीन के साथ नीचे गिर गई, खिसक कर जमीन नीचे आई तो साथ में बिल्डिंग भी गिरी। तो ये तस्वीर आप जो देख रहे हैं, दरअसल वहां पर होटल निर्माण चल रहा था और खुदाई हो रही थी, जिसके दौरान पहाड़ी का एक हिस्सा गिर गया और जब ऐसा हुआ तो वहां पर जो बिल्डिंग थी वो भी साथ में नीचे आ गई। तो आप ये जो तस्वीर पहाड़ों की देख रहे हैं, पहाड़ कच्चे हो जाते हैं, बारिश का वक्त होता है और ऐसे में लैंडस्लाइड अक्सर देखने को मिलते हैं, लेकिन इस तरीके से पूरा हिस्सा निकल जाना, उसके साथ पूरा एक ये बिल्डिंग का ढह जाना, ये बेहद चौंका देने वाली तस्वीर है। तो वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए आज तक।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से, इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। एकजे द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया।
6: This is the sound of Claire cooking dinner at home. And that's the sound of a fraud alert from Wells Fargo flagging a charge for a pricey restaurant in Paris. Considering Claire isn't in Paris right now, that seemed odd to the bank and to Claire. Two taps later, Claire says nope to the charge and Wells Fargo is on the case. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
7: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
8: From the biggest names in sports talk to the biggest moments in sports, this is NBC Sports Radio. Get your daily football fix with Mike Florio. Spend your mornings with Dan Patrick and the Danettes. And dive deep with Dan Le Batard. Live, unfiltered, and always on Monday through Friday. Then when the games are on, we've got you covered with live events from NBC Sports. Search NBC Sports Radio or tell your device to play NBC Sports Radio on TuneIn to listen.
3: Presented by पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। एकजे द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया।

दिल्ली एनसीआर में लगातार बारिश, मौसम विभाग का रेड अलर्ट, रोहिणी में गिरी इमारत, 3 की मौत। सीएम ऑफिस का बयान, सभी एजेंसियां मुस्तैद, गाजियाबाद में 12वीं तक स्कूल बंद। बुशहर, चाबहार समेत ईरान के कई इलाकों में अमेरिका ने गिराए बम, उड़ाए रेलवे ब्रिज, बंदर अब्बास में धमाके, ईरान का बारूदी पलटवार, कुवैत और बहरीन में बजने लगे जंगी सायरन। डोनाल्ड ट्रंप का आक्रामक बयान, ईरान की किल लिस्ट में मैं नंबर 1, दोबारा हिमाकत हुई तो देंगे 20 गुना ताकत से जवाब। तेहरान का बयान, अमेरिकी अभद्रता का हिसाब होगा। ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर, मेलबर्न में अभूतपूर्व स्वागत, पीएम एंथनी ऑल्बनीज के साथ द्विपक्षीय वार्ता, बिजनेस फोरम समिट में कहा ऊर्जा संकट चुनौती। चढ़ावा चोरी केस में बड़ा खुलासा, पुलिस कस्टडी में आरोपियों ने उगले राज, रिश्तेदारों के अकाउंट में वाइट करते थे लूट की रकम, 30 बैंक खाते फ्रीज, सभी की जांच।

सुबह में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बुलेटिन के इस हिस्से में बात करेंगे युद्ध की। मिडिल ईस्ट में फिर से युद्ध भड़क गया है। अमेरिका ने ईरान के कई शहरों पर हमला किया है। बदले में ईरान ने भी मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों पर अटैक कर दिया है। एक बार फिर से मध्य पूर्व में युद्ध की आग भड़क गई है। एक तरफ खामनेई की अंतिम यात्रा ईरान में निकल रही है, दूसरी तरफ हमले भी शुरू हो गए हैं। उधर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान की हिट लिस्ट में सबसे पहला नाम उन्हीं का है। तो अगले आधे घंटे अमेरिका ईरान के बीच वॉर की खबरें हम आपके लिए लेकर आएंगे। तो अमेरिकी सेनाओं ने एक बार ईरान पर फिर से हमला शुरू कर दिया है। ईरान के कई शहरों और द्वीपों पर अमेरिकी सेना ने ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक की है। ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर अमेरिका ने बम बरसाए हैं। अमेरिकी फाइटर जेट्स ईरान को दहला रहे हैं। 90 से ज्यादा हमले ईरान पर हुए हैं। 90 से ज्यादा ठिकानों पर दावा किया है अमेरिका ने कि उन्होंने ईरान पर हमले किए हैं। इन हमलों में ईरान सरकार के कई कर्मचारियों के मारे जाने की भी खबरें आ रही हैं। तो एक बार फिर से युद्ध की आहट आ रही है। 2 हफ्ते का संघर्ष विराम और अब फिर से संग्राम।

0: तो ईरान के जिन इलाकों पर अमेरिका ने हमला किया है इनको आपको दिखाते हैं स्क्रीन पर। तो ये बंदर अब्बास का इलाका खासतौर पर से अहम है क्योंकि इस इलाके पे जब से युद्ध विराम अप्रैल वाला हुआ था तब से हमला नहीं हुआ था। और इसके अलावा आप देख सकते हैं सिरीक, चाबहार, कोनारक, ये इलाके हैं जहां पर हमला किया गया है। और साथ ही अबू मूसा द्वीप, यहां पर भी हमला किया गया है। जास्क द्वीप, बुशहर। ईरानी मीडिया के मुताबिक अगर माना जाए तो बंदर अब्बास में 8 धमाके सुने गए हैं, सिरीक में 3 धमाके हुए हैं। वहीं अगर कोनारक की बात करें तो, और साथ में चाबहार की भी बात करें जहां पर पोर्ट भी है, वहां उसके पास 10 धमाकों की आवाज सुनाई दी है। अब आपको बताते हैं कि अबू मूसा द्वीप और जास्क द्वीप में क्या हुआ, वहां पर भी 10 धमाकों को सुना गया है। तो अटैक लगातार जारी है, करीब 80 जगहों पर या 90 जगहों पर हमले हुए हैं। अमेरिका ने पहली बार चाबहार पोर्ट पर हमला किया है, चाबहार पोर्ट जहां भारत का भी निवेश है, आप जानते हैं इसको। इस पोर्ट को भारत ने बनाया है, इसमें योगदान दिया है और अब इस पोर्ट पर भी अमेरिका ने बम बरसा दिए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि ये हमला अमेरिका की रणनीति में एक बड़ा बदलाव है। इससे पहले अमेरिकी कार्रवाई केवल बंदर अब्बास और हॉर्मुज स्ट्रेट के आसपास के इलाकों तक ही सीमित थी, लेकिन चाबहार को निशाना बनाकर अब अमेरिका ने इस टकराव को सीधे हिंद महासागर यानी कि इंडियन ओशन के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। एक ऐसा पोर्ट जिसमें भारत का भी योगदान है, उसे निशाना बनाना अमेरिका की तरफ से, आखिर इसके क्या मायने हैं? तो सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी प्रणय उपाध्याय का, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या मायने हैं इस अटैक के। युद्ध तो दोबारा ऐसे लग रहा है शुरू हो ही गया है, लेकिन अगर चाबहार पोर्ट पर अटैक होता है भारत इसे किस तरीके से देखेगा?
1: लेकिन निश्चित रूप से भारत की इस पूरे इलाके को लेकर चिंताएं भी हैं, भारत का निवेश भी है, लेकिन अगर आप देखें कि चाबहार कोई अकेला पोर्ट नहीं है, बंदर अब्बास का भी पोर्ट है जो कि चाबहार से बेहद नजदीक में है। इसके अलावा आप ईरान की पूरी कोस्ट लाइन देखें यानी फारस की खाड़ी से लेकर ओमान की खाड़ी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जो पूरा इलाका है, ईरान की लंबी जो तटरेखा है उस तटरेखा पर अलग अलग इलाकों में अमेरिका की तरफ से कार्रवाई की गई है। और अगर आप देखें कि पिछले यानी 18 जून को जो संघर्ष विराम समझौता या कह लीजिए MOU हुआ था अमेरिका और ईरान के बीच से, उसके बाद से भी कई बार ये इस तरीके की घटनाएं सामने आई हैं जिसके अंदर बंदर अब्बास हो, सिरिक हो, इसके अलावा जो है ये जो कशम आइलैंड का इलाका हो, खर्ग आइलैंड का इलाका हो, इन तमाम इलाकों के ऊपर अमेरिका की तरफ से कार्रवाई की गई है। और जाहिर तौर पर अगर आप अमेरिकी सेना की तरफ से आए हुए या अमेरिकी सेंट्रल कमांड के बयानों को देखें तो उसमें यह साफ तौर पर नजर आता है कि जो कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर है जहां ईरान ने अपने मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स को तैनात किया है, उसके कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं, और साथ ही जहां से जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर आने जाने वाले जहाज हैं उनके ऊपर संभावित तौर पर हमला हो सकता है, उन्हें टारगेट किया जा रहा है, ये अमेरिका की तरफ से आए हुए बयानों में दावा किया जा रहा है। यानी अमेरिका एक जस्टिफिकेशन दे रहा है कि वो इन पोर्ट्स को या इन ठिकानों को क्यों निशाना बना रहा है। लेकिन जो हाल ही में तस्वीरें सामने आई हैं, चाहे आप पश्चिम आइलैंड की तस्वीरें देखें या बंदर अब्बास के पास से आई हुई तस्वीरें देखें, चाबहार से जो तस्वीर आई है उसके अंदर चाबहार पोर्ट का जो वॉच टावर है वो ध्वस्त हुआ है या रेल लाइनें ध्वस्त हुई हैं, जाहिर तौर पर जो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर है ईरान का वो भी निशाने के ऊपर है। तब तर्क ये दिया जा रहा है कि इसी सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल IRGC भी कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ इसकी टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, यानी ऐसे समय में जब ईरान के अंदर उसके जो दिवंगत
0: जी प्रणय, आप हमारे साथ बने रहे क्योंकि एक और बड़ी खबर आ रही है। आइए सीधा रुख करते हैं इस बड़ी खबर का। तो लगातार हमले किए जा रहे हैं अमेरिका की तरफ से, उधर जवाबी पलटवार भी देखने को मिल रहा है ईरान की तरफ से। ईरान ने अमेरिकी ठिकानों पर किया है हमला, ये खबर आ रही है। ईरान ने मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों पर हमला कर दिया है। बहरीन और कुवैत में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर ईरान ने मिसाइलों से हमला किया है। ईरान का दावा है कि उसने सिर्फ अमेरिकी साइट्स को ही टारगेट किया है, अपने पड़ोसी देशों को नहीं जवाब में टारगेट किया है। तो ये दावा ईरान का है। और आइए सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी अशरफ वानी का और उनसे जानने की कोशिश करते हैं। अशरफ, अगर वो कहते भी हैं ईरान में कि हम सिर्फ अमेरिकी ठिकानों को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन जो पड़ोसी देश हैं उसे इस नजरिए से नहीं देखते क्योंकि नुकसान तो होता है, तो क्या अब मामला जो है वो बढ़ता जा रहा है?
2: बिल्कुल, जो पड़ोसी देश ईरान के हैं और जिनको अलाई माना जाता है अमेरिका का, और उसको लेकर चेतावनी भी एक बार नहीं कई बार ईरान की तरफ से जारी की गई थी कि यदि किसी भी देश जो कि पड़ोसी देश ईरान के हैं, गल्फ के नेशन हैं, चाहे उसमें यूएई हो, चाहे उसमें कतर हो, चाहे सऊदी अरबिया हो या बहरीन और कुवैत हो या फिर जॉर्डन हो, यहां पर वो अमरीकी बेसिस को निशाना बनाएंगे। लेकिन यहां पर भी चुन चुन कर जो है ईरान की तरफ से जवाबी कार्रवाई हो रही है, उन छोटे छोटे देशों पर हो रही है जो सक्षम नहीं है जवाबी कार्रवाई करने के लिए ईरान के खिलाफ। और हमने देखा कि जब से ये युद्ध शुरू हुआ 28 फरवरी से ही, खास तौर से बहरीन में जो 5th फ्लीट है अमेरिका का, उसको एक बार नहीं बल्कि दर्जनों बार जो है ईरान ने अपनी जवाबी कार्रवाई में निशाना बनाया है। वही हाल जो है कुवैत का भी है, कुवैत में भी भारी नुकसान अमरीकी बेसिस को पहुंचा है, अमरीका का राडार स्टेशन भी वहां तबाह किया ईरान ने अपने मिसाइल स्ट्राइक्स में, और वही अब जॉर्डन की तरफ ज्यादा रुख कर दिया है ईरान ने अपनी जवाबी कार्रवाई का। तो काफी प्रेशर है इन देशों का भी अमेरिका पर कि वो कार्रवाई न करें, हमला न करें ईरान पर, क्योंकि जब भी ईरान की तरफ से जवाबी कार्रवाई होती है वो ईरान अमेरिका में तो कोई कार्रवाई नहीं कर सकता है, तो जाहिर है कि वो उन बेसिस को ही निशाना बना रहा है, जिस पर चिंताएं भी ये देश जता रहे हैं। इन्होंने ये मुद्दा यूएन में भी
0: जी
2: लिया था,
0: जी
2: लेकिन
0: बिल्कुल
2: कहीं ना
0: अशरफ
2: कहीं जो है दबाव बढ़ाने की कोशिश ईरान
0: जी
2: की
0: बिल्कुल,
2: तरफ से
0: आप
2: कर
0: हमारे
2: रहे
0: साथ बने रहिए क्योंकि अब हम बताते हैं कि आखिर इस हमले के पीछे की वजह क्या है। दरअसल 6 जुलाई को ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में 3 जहाजों पर हमला किया। ये जहाज दक्षिणी रूट से हॉर्मुज पार कर रहे थे, यानी ओमान की तरफ से। डोनाल्ड ट्रंप को हमले की सूचना मिली तो वो भड़क गए। ट्रंप को नेटो की बैठक के लिए तुर्की जाना था तो वो चले भी गए। तुर्की में डोनाल्ड ट्रंप बोले कि आज रात ईरान पर हमला होगा। ट्रंप ने कहा कि ईरान एक मारेगा तो हम 20 मारेंगे। डोनाल्ड ट्रंप का आदेश आते ही ईरान पर हमला हुआ। हमले में ईरान सरकार के कई लोग मारे भी गए। ईरान के रेलवे, एयरपोर्ट सबको निशाना बनाया गया। ईरान ने भी जवाब दिया, बहरीन और जॉर्डन पर मिसाइलें दाग दी। तो ये पूरी वजह रही जिसकी वजह से अब एक बार फिर से लग रहा है कि युद्ध शुरू हो चुका है। तो आइए आपको एक और बड़ी खबर बता दें इसी से जुड़ी हुई। तुर्की से निकलने के बाद डोनाल्ड ट्रंप का एक बड़ा बयान भी सामने आया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा है कि ईरान की हिट लिस्ट में मेरा नाम सबसे ऊपर है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान हमसे डील भी करना चाहता है, लेकिन उनकी हिट लिस्ट में मेरा नाम सबसे ऊपर है। तो ये दावा डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किया जा रहा है। वो कहते हैं कि वो हिट लिस्ट में है, और हिट लिस्ट में ही नहीं है ईरान की, वो नंबर 1 है इस हिट लिस्ट में। लेकिन इस सब के बाद भी वो कहते हैं कि ईरान बात करना चाहता है। तो आइए सीधा रुक करते हमारे सहयोगी प्रणय उपाध्याय का। प्रणय, डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी तरफ से सीज फायर कैंसिल कर दी, उसके बाद उन्होंने हमला भी करवा दिया, और अब वो ये भी कहते हैं कि मैं नंबर 1 हूं हिट लिस्ट में। उनकी बातों से यही लगता है कि वो नाराज हैं ईरान से।
1: जाहिर तौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो नाराज हैं, अब वो चाहते हैं कि ईरान उनकी शर्तों को मान ले, वो ईरान को मौका दे रहे हैं। देखिए, इसके अंदर ना एक ऐसी स्थिति है जिसके अंदर कुछ अमेरिका की घरेलू राजनीति के कंपल्शन है, कुछ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के कंपल्शन है, और अमेरिका चाहता तो है कि वो इस युद्ध से बाहर आ जाए, लेकिन वो अपनी शर्तों पर आना चाहते हैं बाहर, जिसके अंदर अमेरिका और अमेरिका के राष्ट्रपति ये दिखा सकें कि उन्होंने वो हासिल कर लिया जो इससे पहले कोई राष्ट्रपति हासिल नहीं कर पाया, और साथ ही वो एक जीत का परचम लहराते हुए जाना चाहते हैं। और अनफॉर्चुनेटली उन्हें अभी तक ये मौका नजर तो कम से कम नहीं मिल रहा है, और यही वजह है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एक छटपटाहट भी है, एक परेशानी नजर आ रही है। लेकिन उनसे इसी ऑनबोर्ड जो उनसे सवाल जवाब हो रहे थे, उसमें एक सवाल ये भी पूछा गया अंजलि कि क्या माना जाए कि अभी जो कार्यवाही हुई है उसके बाद एक बार फिर अमेरिका युद्ध में लौट आया है, तो इसका जवाब उन्होंने ना में दिया है। यानी एक एस्केलेशन ट्रैप यहां पर नजर आ रहा है, जहां अमेरिका और ईरान भिड़ते हुए तो कई बार नजर आएंगे, लेकिन फुल फ्लेजेड वॉर जो है उससे कम से कम अभी तक डोनाल्ड ट्रंप इनकार कर रहे हैं।
0: चलिए, नजर रहेगी इस पर हमारी। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि एक और बड़ी खबर इस वक्त आ गई है। IRGC का बयान सामने आया है, और ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड यानी कि IRGC ने कहा है कि अली खमनई के अंतिम संस्कार के ऐतिहासिक समारोह को प्रभावित करना चाहता है अमेरिका। यह आरोप लगा रहा है IRGC। वो कह रहा है कि इसी वजह से अमेरिका ने मशहद जाने वाले पुल पर हमला कर दिया है। मशहद वो इलाका है जहां आज अली खमनई को सुपुर्दे खाक किया जाएगा। उससे पहले मशहद जाने वाले पुल पर अमेरिका ने हमला कर दिया है। तो अंतिम यात्रा जो लगातार चल रही है 4 जुलाई से। और एक और बड़ी खबर, ईरान के सर्वोच्च नेता के सैन्य सलाहकार मोहसेन रजाई का एक बड़ी चेतावनी आ रही है। मोहसेन रजाई ने कहा है कि हमलावर और उसके मददगारों को कड़ी सजा दी जाएगी। ईरान ने अमेरिका से बदला लेने की बात कही है। तो ये जो बयान आया है, ये सैन्य सलाहकार हैं सुप्रीम लीडर के, उन्होंने कहा है। तो अभी 2 हफ्ते पहले की बात है, अमेरिका ईरान में सीजफायर हुआ था, लेकिन अचानक से ऐसा क्या हुआ कि संघर्ष विराम टूट गया? दरअसल अमेरिका का दावा है कि ईरान लगातार सीजफायर तोड़ रहा है, इसलिए उन्होंने इसका जवाब दिया है। जबकि ईरान कह रहा है कि हमारे नेता का जनाजा निकला है, उसमें ईरान खलल डालना चाहता है, इसलिए हमने हमला किया है।
3: And so we hit him very hard last night. Very, very hard. Probably hit him hard again tonight. I'll give him a little warning. We're going to hit him hard tonight.
4: क्या अमेरिका और ईरान का सीज फायर टूट चुका है? क्या मिडिल ईस्ट में संघर्ष विराम का कोई मतलब नहीं रह गया? ईरान के शहरों पर रात के अंधेरे में अमेरिकी फौजों ने धावा बोल दिया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ईरान पर इतने बारूद बरसाए कि पूरा ईरान दहल गया। ये हमला उस वक्त हुआ जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप नाटो देशों की बैठक के लिए तुर्की के अंकारा में थे। ट्रंप अंकारा से ऐलान करते हैं कि ईरान पर हमला होगा और उसी रात अमेरिकी फौजें ईरान के कई शहरों को दहला देती हैं। सिरिक, चाबहार, कोनारक, अबू मूसा द्वीप, जास्क द्वीप और बुशहर पर अमेरिका ने हमला किया। ईरानी मीडिया प्रेस टीवी के मुताबिक बंदर अब्बास में 8 धमाके सुने गए, जबकि सिरिक में 3 धमाके हुए। वहीं कोनारक और चाबहार के पास 10 धमाकों की आवाज सुनाई दी। अबू मूसा द्वीप, जास्क द्वीप में भी 10 धमाके सुने गए। इसके अलावा दक्षिण पूर्वी ईरान में एक एयरपोर्ट पर भी हमला हुआ। उत्तरी ईरान के अकाला रेलवे ब्रिज पर भी अमेरिकी मिसाइल गिरी। ईरान में कहां कहां हमले हुए आपको ये भी दिखा देते हैं। ये वो इलाके हैं जो मार्क किए गए जहां पर ईरान की नौसैनिक, और इनमें खास बात अगर आप देखेंगे कि ये सारे शहर दरअसल वो इलाके हैं जो ईरान की कोस्टल लाइन पे हैं, या तो उसकी ताकत है या फिर उसकी कोस्टल लाइन पर है, ताकि वहां पर उसकी जो नौसेना है, उन्होंने पहले ही कहा कि हमने तो उनके 135 जहाज डुबा दी। तो कहां कहां हमले हुए? बंदर अब्बास, सबसे क्रिटिकल पोर्ट, उसका ऊर्जा का संसाधन यहां से है। बंदर अब्बास से लोडेड शिप जो है वो क्रूड ऑयल लेकर के दुनिया भर में जाते हैं। इसी के साथ जास्क आइलैंड, जास्क आइलैंड भी ईरान की एनर्जी की रीढ़ की हड्डी है, कमर की हड्डी है, उस पर हमला किया गया। उसी के साथ चाबहार पोर्ट, चाबहार पोर्ट अगर आपको याद हो वो जगह जहां भारत का अपना भी इंटरेस्ट था, भारत भी इस पोर्ट को विकसित कर रहा था, लेकिन उसके बाद जब सैंक्शन प्रतिबंध अमेरिका ने लगा दिया तो भारत ने हाथ यहां से खींच लिया। उसके बाद कोनारक, अब कोनारक के साथ साथ ये जो चाबहार है, ये दोनों अब बेहद नजदीक है। अब कोनारक के पास दरअसल उसकी नेवल फ्लीट थी, उसकी सबमरीन भी थी। अगर आपको 28 फरवरी को तारीख याद हो तो मार्च के पहले सप्ताह में जो हमले हुए थे, सबसे ज्यादा नुकसान कोनारक और चाबहार के पास हुए थे। इसी के साथ अब आते हैं पश्चिम में, अबू मूसा द्वीप, स्ट्रेटेजिक आइलैंड माना जाता है ईरान का, जहां से वो पूरे हॉर्मुज, अब ये इलाका अगर आप देखें ये हॉर्मुज है, लेकिन इसके आगे जैसे आप जाते हैं तो यहां पर यूएई और फिर ऊपर इस इलाके पर नियंत्रण के लिए अबू मूसा द्वीप पर उसका बड़ा नौसैनिक अड्डा। उसी के साथ बुशहर और सिरिक, ये उसके 2 शहर है, लेकिन ये भी तटीय शहर है। सीजफायर के बाद ये पहली बार है जब अमेरिकी फौजों ने ईरान पर इतने बड़े स्तर पर हमला किया। इन हमलों में ईरान के कई लोगों के मारे जाने की खबरें हैं। ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नुकसान हुआ। इन हमलों का जवाब देने में ईरान ने भी देरी नहीं की। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन से हमला कर दिया। ईरान का पहला टारगेट बहरीन और जॉर्डन के अमेरिकी बेस बने। ईरानी मिसाइलों की आहट से कुवैत में भी सायरन बज उठे। ईरान ने अमेरिका को धमकी भी दी कि इन हमलों का अंजाम बुरा होगा। ईरान अमेरिका पर और अमेरिका ईरान पर सीजफायर तोड़ने का आरोप लगाता है। एक तरफ ट्रंप दावा करते हैं कि ईरान डील करना चाहता है, वो डील करने के लिए बेताब है। दूसरी तरफ ईरान

0: है कि जब ईरान डील चाहता है तो फिर ट्रंप ने उस पे हमला क्यों किया। ट्रंप कहते हैं कि ईरान के लोग सनकी हैं, वो कमर्शियल जहाजों पर हमला करते हैं, फिर डील की भी बात करते हैं, लेकिन अगर वो एक हमला करेंगे तो हम 20 मारेंगे। ट्रंप ने यहाँ तक दावा किया कि ईरान की हिट लिस्ट में पहला नाम उन्हीं का है।
1: जहां प्रधानमंत्री मोदी
2: मीडिया के साथियों नमस्कार। मेलबर्न में मेरे और मेरे डेलीगेशन के शानदार स्वागत और आतिथ्य के लिए मैं अपने मित्र प्रधानमंत्री एल्बेनिस्ट का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। उनके व्यक्तिगत प्रयासों ने, उनके कमिटमेंट ने भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों को नई ऊंचाई और व्यापकता दी है। उनके इस बहुमूल्य योगदान के लिए मैं उनका अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, भारत और ऑस्ट्रेलिया दो वाइब्रेंट डेमोक्रेसीज हैं, दो मल्टी कल्चरल सोसाइटीज हैं और दो महत्वपूर्ण ओशन पावर्स हैं। हमारी ये समानताएं और हमारा कॉमन वर्ल्ड व्यू हमें गहरे आपसी विश्वास के साथ निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। हमारी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ने पिछले कुछ वर्षों में अभूतपूर्व प्रगति की है और आज तीसरी एनुअल समिट से हमारे सहयोग में कई नए आयाम जुड़े हैं। 2022 में किए गए इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट से हमारे व्यापार और निवेश का दायरा लगातार बढ़ा है। अब हमने कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट यानी सीका पर तेजी से काम करने का निर्णय लिया है, जो दोनों देशों के लिए बैलेंस, एम्बिशियस और विन विन होगा। हम बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी पर भी तेजी से आगे बढ़ेंगे। हमारी रिन्यूएबल एनर्जी पार्टनरशिप, क्लीन एनर्जी और क्लाइमेट एक्शन में हमारे प्रयासों को साकार रूप दे रही है। इसके तहत हम इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री कोलैबोरेशन पर विशेष बल दे रहे हैं। पीएम सूर्यघर योजना को सपोर्ट करने के लिए हमने मिलकर गुजरात में रूपटॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी बनाई है। यह एकेडमी अनेक महिलाओं और युवाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग में योगदान देगी। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में आज हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी। क्रिटिकल मिनरल्स में हमारा सहयोग हमारी स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी और क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन के लिए महत्वपूर्ण है। इसी सोच के साथ आज हमने ऑस्ट्रेलिया इंडिया पार्टनरशिप ऑन साइबर, क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज एंड सप्लाई चेन्स यानी एआई पैक्ट की पहल ली है। हम मिलकर क्रिटिकल मिनरल्स कॉरिडोर पर भी काम करेंगे। साथियों,

0: इंडो पैसिफिक केवल दो महासागरों का संगम नहीं है, यह भारत और ऑस्ट्रेलिया जैसे लाइक माइंडेड डेमोक्रेसीज के शेयर्ड एस्पिरेशंस का भी प्रतीक है। रक्षा और सुरक्षा में सहयोग बढ़ाने के लिए आज हमने एक महत्वपूर्ण ज्वाइंट डिक्लेरेशन जारी की है। भारत ऑस्ट्रेलिया डिफेंस इनोवेशन कॉरिडोर से हम डिफेंस स्टार्टअप्स और इंडस्ट्रीज को जोड़ने पर काम करेंगे। हमारे मैरिटाइम सिक्योरिटी कोलैबोरेशन रोडमैप से इंडो पैसिफिक में हमारे साझा प्रयासों को नई ताकत मिलेगी। हम शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर और मेंटेनेंस में भी मिलकर आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड्स, आज हमने कई क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा की। भारत और ऑस्ट्रेलिया मानते हैं कि आतंकवाद केवल किसी एक देश के लिए नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। इसलिए आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई भी साझा है, हमारे संकल्प भी अटूट है और हमारा सहयोग भी लगातार मजबूत हो रहा है। हमारा यह भी मानना है कि विश्व के अनेक भागों में चल रहे तनावों और युद्धों का समाधान डायलॉग और डिप्लोमेसी से ही संभव है। पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में हम मिलकर पीस, स्टेबिलिटी, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और रूल्स बेस्ड ऑर्डर को और मजबूत करेंगे। फ्रेंड्स, हमारे संबंधों की सबसे विशिष्ट ताकत हमारे पीपल टू पीपल टाइज है। भारतीय मूल के लोग ऑस्ट्रेलिया के आर्थिक और सामाजिक जीवन में सकारात्मक योगदान दे रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया भारतीय छात्रों के लिए पसंदीदा डेस्टिनेशन रहा है। भारत में ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज के कैंपस खुलने से हमारी नॉलेज पार्टनरशिप में नया अध्याय जुड़ा है। हम दोनों देशों के बीच स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स और टूरिस्ट के बीच आदान प्रदान बढ़ाने के लिए प्रयास करते रहेंगे। साथियों, आज जब हम दुनिया की स्पोर्टिंग कैपिटल मेलबर्न में है तो स्पोर्ट्स की बात न करना वैसा ही होगा जैसे क्रिकेट में टॉस के बाद मैच ही शुरू न करना। क्रिकेट भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्तों की अपनी डिप्लोमेटिक लैंग्वेज है, इसलिए हमारी मीटिंग्स भी क्रिकेट जैसी लगती है। एजेंडा वनडे जैसा फोकस है, डिसीजन ट्वीट एंट्री जितने तेज है और पार्टनरशिप टेस्ट मैच जितनी लंबी और गहरी। आने वाले वर्षों में दोनों देशों में ओलंपिक्स और कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े स्पोर्टिंग इवेंट्स आयोजित किए जाएंगे। इससे हमारा खेल सहयोग तो बढ़ेगा ही, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश की भी अनेक संभावनाएं बनेगी। फ्रेंड, आज की हमारी चर्चा का भाव स्पष्ट रहा है, भारत और ऑस्ट्रेलिया की पार्टनरशिप केवल वर्तमान की नहीं भविष्य की पार्टनरशिप भी है। हम हमारे साझा विजन पर मिलकर आगे बढ़ते रहेंगे। प्राइम मिनिस्टर एल्बेनिज़ी, आपकी मित्रता, आपकी प्रतिबद्धता और आज की सार्थक चर्चा के लिए मैं एक बार फिर आपका आभार व्यक्त करता हूं। मुझे और 140 करोड़ भारतवासियों को जल्द से जल्द भारत में एक बार फिर आपका स्वागत करने में खुशी होगी. बहुत बहुत धन्यवाद.
1: थैंक यू.
0: स्वागत करने में खुशी होगी. बहुत बहुत धन्यवाद.
1: थैंक यू.
2: से जहां अभी प्रधानमंत्री मोदी ने अपना भाषण दिया, उन्होंने बताया कि किस तरीके से ऑस्ट्रेलिया और भारत के रिश्ते प्रगाढ़ हैं, क्यों दोनों में समानताएं हैं, और कि उन्होंने एक और बहुत ही दिलचस्प बात कही, वो ये थी कि पार्टनरशिप जो भारत और ऑस्ट्रेलिया की है वो क्रिकेट के साथ नापी तोली जा सकती है. और उन्होंने बताया कि किस तरीके से डिसीजन T20 की तरह लिया जाता है, लेकिन जो रिश्ता है वो एक लंबा रिश्ता है, टेस्ट मैच की तरह पार्टनरशिप चलती है.
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो.
3: Durable pipes, fittings and tanks, a complete range of sanitary solutions.
4: Acoje, the number one Korean skincare brand, now in India.

0: बिहार में लगातार बारिश, मौसम बाहर रेड अलर्ट, रोहिणी में गिरी इमारत, 3 की मौत, गाजियाबाद में डूबे कई इलाके, मेरठ नेशनल हाईवे पर घुटनों तक पानी, ट्रैफिक जैम।
1: गुजरात के बिजनेस कैपिटल में त्राहिमाम, सूरत में भरा पानी, महाराष्ट्र के रायगढ़ में बहते 3000 सिलेंडर से बड़ा खतरा, उत्तराखंड में नेशनल हाईवे 707 ए के पास लैंडस्लाइड।
0: ऑस्ट्रेलिया के साथ साझा घोषणा पत्र में पीएम मोदी का क्रिकेट की तरह रिश्तों पर जोर, कहा वनडे जैसे डिसीजन, टेस्ट जैसे रिश्ते, इंडो पैसिफिक की सुरक्षा पर समझौता, छात्रों के लिए भारत में खुलेंगे ऑस्ट्रेलियन कैंपस।
1: बुशहर, चाबहार, बंदर अब्बास समेत ईरान में 90 ठिकानों पर अमेरिका ने गिराए बम, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा 20 गुना ताकत से जवाब देंगे, ईरान का पलटवार, कुवैत और बहरीन में जंगी सायरन।
0: चढ़ावा चोरी मामले में बड़ा खुलासा, पुलिस कस्टडी में आरोपियों ने उगले राज, रिश्तेदारों के अकाउंट में वाइट करते थे लूट की रकम, 30 बैंक खाते फ्रीज, सभी की जांच।

0: दिल्ली में बारिश की मार, नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट कैलाश इलाके में गिरा बड़ा पेड़, पेड़ गिरने से सड़क पर लगा जाम। दिल्ली में तेज बारिश के बीच सरकार ने जारी की जल भराव मुक्त इलाकों की तस्वीरें। दिल्ली सरकार का दावा, भारी बारिश में भी हॉटस्पॉट पर नहीं भरा पानी, लगातार मॉनिटरिंग। दिल्ली में भारी बारिश का असर, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जल भराव, तेज बारिश के बाद स्टेशन परिसर में भरा पानी, यात्रियों की परेशानी बढ़ी। दिल्ली में मानसून की बारिश से बड़ी परेशानी, कई इलाकों में जल भराव, ओखला, बदरपुर और संगम विहार में सड़कों पर भरा पानी। दिल्ली एनसीआर में बारिश से बदला मौसम, मौसम विभाग का अगले दो दिन के लिए भारी बारिश का रेड अलर्ट। दिल्ली एनसीआर में कमला नेहरू नगर में 24 घंटे में सबसे ज्यादा 160 mm बारिश दर्ज। आईएमडी के मुताबिक लोधी रोड, पूसा और सफदरजंग में भी भारी बारिश रिकॉर्डेड। और दिल्ली में बारिश का असर, बीडी मार्ग पर जल भराव, सांसदों के आवास जाने वाले सड़कों पर जमा हुआ पानी। मुंबई में मॉनसून एक्टिव, भारी बारिश वाले इलाकों पर नजर, ईस्टर्न सबर्ब में सबसे ज्यादा 39.37 mm बारिश दर्ज। उत्तराखंड में भारी बारिश का रेड अलर्ट, हरिद्वार पौड़ी में खतरा अगले तीन घंटे, लक्सर, मैंगलोर और कोटद्वार में भारी से बहुत भारी बारिश की है चेतावनी। सूरत के सरथाना में पानी पानी के हालात, जेसीबी बनी सहारा, बुजुर्ग महिला को सुरक्षित निकाला गया, लोगों तक पहुंचाई गई राहत सामग्री।
1: गाजियाबाद में बारिश के कहर जारी है, H24 पर जलभराव से ट्रैफिक प्रभावित, इंदिरापुरम इलाके में सड़कों पर भरा पानी, वाहन चालकों की बड़ी परेशानी। गाजियाबाद में बारिश बनी आफत, कई इलाकों में पानी, सड़कें डूबी, आवाजाही प्रभावित। गाजियाबाद के शास्त्री नगर, विजय नगर में हालात खराब, सड़क पर भरा पानी, लोगों को आवाजाही में दिक्कत। गाजियाबाद में भारी बारिश से जलभराव, स्कूलों की छुट्टी घोषित, कक्षा 12 तक के सभी स्कूल बंद। नोएडा सेक्टर 62 लेबर चौक पर जलभराव, सड़क पर भरा पानी, लोगों को आवाजाही में दिक्कत। वडोदरा में भारी बारिश से कई नदियों में उफान, प्रशासन हुआ अलर्ट, निचले इलाकों में रह रहे लोगों के लिए चेतावनी जारी। सूरत में भारी बारिश से रिहायशी इलाकों में घुसा पानी, रोजमर्रा की चीजों के लिए जैसे दूध पानी के लिए लोग हो रहे हैं परेशान। सूरत में लगातार हो रही बारिश से बिगड़े हालात, सीमाड़ा खाड़ी ओवरफ्लो होने से कई इलाकों में घुसा पानी, सड़कें बनी नदी, कई वाहन डूबे। भारी बारिश से पूरा सूरत शहर जलमग्न, जगह जगह एनडीआरएफ और फायर ब्रिगेड फंसे लोगों की रेस्क्यू में जुटी। एमपी के खरगोन में तेज बाढ़ में बहा युवक, लोगों ने रस्सी से बचाने की कोशिश की, तैरते हुए युवक का लाइव वीडियो आया सामने।
0: मुंबई ठाणे में बारिश का दौर जारी, तेज हवा के साथ बारिश का ऑरेंज अलर्ट, जरूरी सावधानी बरतने की है सलाह। महाराष्ट्र के रायगढ़ में भारी बारिश के चलते करीब 3000 एलपीजी सिलेंडर नदी में बहे, जिला कलेक्टर ने लोगों को सूचना दी और कहा कि अपील की कि सूचना दें। पुणे में जोरदार बारिश का असर, भिड़े ब्रिज डूबा, छोड़ा गया 27,000 क्यूसेक पानी। महाराष्ट्र के वसई में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित, रेलवे ट्रैक पर भरा पानी, ट्रेन सेवा प्रभावित। छत्रपति संभाजी नगर में नदी नाले उफान पर ग्रामीणों से सुरक्षित स्थानों पर रहने और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से दूर रहने की अपील। बीएमसी मुख्यालय और माटुंगा इलाके में लगाए गए वार्निंग बोर्ड, कमजोर पेड़ों के पास सावधानी बरतने की है अपील। बीएमसी ने खतरनाक पेड़ों की पहचान के लिए लगाए चेतावनी के पोस्टर, नागरिकों को सतर्क रहने और हादसों से बचने की पहल। रियासी में बढ़े चिनाब नदी के जलस्तर के बाद सलाल डैम के गेट खोले गए, प्रशासन ने नदी किनारे रहने वालों को सतर्क रहने की सलाह दी। जम्मू कश्मीर के रियासी में भारी बारिश के चलते चिनाब उफान पर, पानी के दबाव को नियंत्रित करने के लिए सलाल डैम से शुरू की गई जल निकासी। चिनाब नदी में बढ़ते जल प्रवाह के बीच सलाल हाइड्रो प्रोजेक्ट के स्पिलवे गेट खोले गए, अधिकारियों ने सुरक्षा के मद्देनजर हालात पर निगरानी बढ़ाई।
1: केरल के वायनाड में टनल निर्माण स्थल के पास हुए भीषण भूस्खलन में मृतकों की संख्या बढ़कर 5, लापता लोगों की तलाश जारी। बागपत में आसमान से बरसी आफत, दिल्ली यमुनोत्री हाईवे की थामी रफ्तार, जलभराव के कारण कई किलोमीटर लंबा जाम, रेंगते नजर आए वाहन। पंजाब के कई इलाकों में अगले 36 घंटे बारिश का अलर्ट जारी, मौसम लगातार बारिश वाला। हरिद्वार में लगातार मूसलाधार बारिश के कारण जनजीवन बुरी तरह अस्त-व्यस्त, जगह जगह जलभराव के कारण वाहन चालकों को करना पड़ रहा है दिक्कतों का सामना। टिहरी में मूसलाधार बारिश से बढ़ा नदियों का जलस्तर, प्रशासन के आदेश के बाद स्कूलों में छुट्टी। टिहरी गढ़वाल के कद्दूखाल में भूस्खलन, NH 707A पर 2 रेस्टोरेंट खतरे में, एहतियातन खाली कराए गए रेस्टोरेंट। हल्द्वानी बारिश ने खोली जल निकासी व्यवस्था की पोल, जलभराव के बीच अंतिम यात्रा घुटनों तक पानी से होकर गुजरी। बद्रीनाथ धाम में रुक रुक कर बारिश का दौर जारी, चमोली जिले में बदला मौसम। बागेश्वर में मूसलाधार बारिश, जनजीवन बेहाल, मलबा और बोल्डर गिरने से 16 सड़कें बंद, सरयू नदी उफान पर। हिमाचल में अगले एक हफ्ते तक भारी बारिश का अनुमान, 5 जिलों में भूस्खलन और फ्लैश फ्लड का खतरा।
0: ईरान के दिवंगत सुप्रीम लीडर खामनेई का पार्थिव शरीर कर्बला पहुंचा, इमाम हुसैन दरगाह पर अंतिम संस्कार की है तैयारियां, बड़ी संख्या में जुटे समर्थक। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध विराम पर दिया विस्फोटक बयान, कहा मेरे लिए खत्म हो चुका है युद्ध विराम, साथ ही कहा नेटो देश होर्मुज में भेजेंगे समुद्री सुरंगों को हटाने वाले जहाज। फ्रांस के राष्ट्रपति मैनुअल मैक्रों ने ईरान द्वारा युद्ध विराम तोड़ने को ठहराया गलत, कहा खाड़ी देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हुए ईरान के हमले अंतरिम समझौते का है उल्लंघन। मेयर की रिपोर्ट के मुताबिक बंदर अब्बास में 8 धमाके, सिरीक में 3 और चाबहार के पास 10 धमाके सुनाई दिए हैं, हमले में 2 मछुआरों की मौत की भी खबर। ईरान में खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर दागी मिसाइलें, साथ ही ईरान पर किए गए अमेरिकी हमले की नई तस्वीरें आई सामने।
1: मशहद की सड़कों पर ट्रंप के खिलाफ नारे वाले बैनर, अंतिम संस्कार की तैयारी के बीच लगाए गए पोस्टर। बेरेन में मिसाइल का सीधा हमला, धमाके का वीडियो आया सामने, ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल के सीधे टकराने का दावा। कुवैत में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने का वीडियो जारी, ईरानी सरकारी मीडिया IRIB ने हमले का फुटेज जारी किया। न्यू एजेंसी का दावा, आयतुल्ला अली खामनेई के आवास कार्यालय परिसर में तबाही के दृश्य पहली बार सामने आए। ईरान का दावा, अमेरिकी ठिकानों पर जवाबी मिसाइली हमला, लॉन्च के फुटेज जारी। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी, CEO फोरम में लिया हिस्सा, मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक साझेदारी पर चर्चा। मेलबर्न में PM मोदी बोले भारत ऑस्ट्रेलिया भरोसेमंद साझेदार, दुनिया में अनिश्चितता के बीच मजबूत साझेदारी की जरूरत पर दिया जोर। PM मोदी ने कहा भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों का नया दौर शुरू, ECTA समझौते से कारोबार और बाजार पहुंच में बढ़ोतरी का जिक्र। PM मोदी के ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच डिफेंस डील संभव, दोनों देशों के प्रधानमंत्री भारत ऑस्ट्रेलिया के कई कारोबारियों से मुलाकात करेंगे, PM मोदी और एंथनी एल्बनीज की सेल्फी वायरल।
0: अयोध्या चढ़ावा चोरी केस में बड़ा एक्शन, 30 बैंक खाते फ्रीज, आरोपियों और परिजनों के खातों में मिले संदिग्ध ट्रांजैक्शन। चंदा चोरी के आरोपों को लेकर डिप्टी CM केशव मौर्य ने कहा अखिलेश का परिवार रामद्रोही, 2027 में सपा का सुपड़ा हो जाएगा साफ। अखिलेश यादव का बड़ा बयान, राम मंदिर चंदा चोरी मामले में घेरा बीजेपी को, बोले छोटे लोगों पर कार्रवाई, बड़े लोगों पर क्या हुआ पता नहीं। लखनऊ में अखिलेश यादव ने की शंकराचार्य स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद से मुलाकात, SP प्रमुख ने मुलाकात के बाद कई मुद्दों पर रखी अपनी बात। राम मंदिर ट्रस्ट विवाद के बीच गोपाल राव का बड़ा बयान, बोले मैं यही रहूंगा, बर्खास्तगी की खबरें बिल्कुल गलत। अयोध्या चढ़ावा चोरी केस में SIT की तीसरी विजिट की तैयारी, अंतिम रिपोर्ट से पहले हो सकती है और गिरफ्तारियां। अयोध्या चढ़ावा चोरी केस में SBI की भूमिका पर SIT ने उठाए सवाल, जांच के घेरे में बैंक अधिकारी और कैश काउंटिंग से जुड़े कर्मचारी। अयोध्या में गोविंद देवगिरी का बड़ा बयान, बोले चंपत राय से मुलाकात हुई, उनके मन में कोई नाराजगी नहीं। अयोध्या मामले में अखिलेश यादव ने SIT पर उठाए सवाल, बोले लीपापोती कर रही है SIT, कहा जांच टीम के एक सदस्य पर भी 420 का मुकदमा है। अखिलेश यादव का आरोप, अयोध्या मामले को बताया दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई, बीजेपी में कथित अंदरूनी कहल का किया दावा।
1: बिहार में फर्जी प्रमाण पत्र पर नौकरी पाने वाले 3,035 शिक्षक बेनकाब, 1,830 FIR दर्ज। इलाहाबाद हाईकोर्ट की बड़ी टिप्पणी, का मुस्लिम पर्सनल लॉ पीसीएमए और पॉक्सो अधिनियम जैसे कानून को निष्प्रभावी नहीं कर सकता, सभी के लिए कानून एक समान। हनीमून मर्डर मामले में सोनम रघुवंश ने सुप्रीम कोर्ट में दी सफाई, अलफनामे में खुद को बताया निर्दोष, कहा मुझे फंसाया गया। इंदौर के एमजीएम मेडिकल कॉलेज में मेंटेनेंस घोटाले पर बड़ी कार्रवाई, 5 हॉस्पिटल्स को दिया गया नोटिस। अकाल तख्त का बड़ा फैसला, 14 जुलाई को सतलुज किनारे होगी अरदास। मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा की हाईटेक निगरानी, एआई से रखी जाएगी नजर, फेस डिटेक्शन और क्राउड रीडिंग से लैस 2,500 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। मेरठ ललिता गौतम हत्याकांड प्रदर्शन मामले में 13 पर मुकदमा दर्ज, पुलिस से झड़प और भ्रामक पोस्ट के आरोप में 7 गिरफ्तार। गोरखपुर में जमीन विवाद में युवक की हत्या, आरोपी गिरफ्तार, ट्रक टकरा करने को लेकर विवाद, धारदार हथियार से हमला। गाजियाबाद में नशे में कारोबार पर पुलिस की कार्रवाई, कफ सिरप तस्करी मामले में 2 आरोपियों पर पीआईटी एनडी पीएस एक्ट के तहत एक्शन। प्रयागराज हाईकोर्ट ने 1987 मर्डर केस में आरोपी को किया बरी, कहा दोष साबित करने के लिए ठोस सबूत जरूरी।
0: दिल्ली के रोहिणी इलाके में 4 मंजिला इमारत ढही, मलबे में 3 शव बरामद, रेस्क्यू ऑपरेशन में 1 मजदूर को जिंदा निकाला गया। लश्कर आतंकी हैरिस डार की धमकी, 2026 में कुछ बड़ा करने का दावा, पानी विवाद का जिक्र कर भारत के खिलाफ उकसावे वाली बात कही। जयपुर में दर्दनाक हादसा, ट्रेलर ने युवक युवती को कुचला, हादसे में दोनों की मौत, मौके पर मचा हड़कंप। नू एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसा, पुलिस जवान की मौत, तेज रफ्तार वाहन ने मारी टक्कर। मुंबई के मशहूर के रुस्तम पर एफडीए का एक्शन, लाइसेंस सस्पेंड, आइसक्रीम आउटलेट में हाइजीन नियमों के उल्लंघन का है आरोप। पुणे में 3 मंजिला बिल्डिंग पर ऊपर से कचरा गिरने से दबी बिल्डिंग, 23 लोगों में से 14 लोगों को बाहर निकाला गया। कचरा गिरने पर मंत्री गिरीश महाजन का बयान, कहा कई सालों से ये कचरा डिपो है, बारिश की वजह से ये कचरा नीचे आ गया, घटना पर दुख है। सुपौल में एक रात की भारी बारिश में पुल निर्माण के लिए बना डायवर्जन बहा, 150 परिवारों का संपर्क टूटा। छिंदवाड़ा में बेकाबू कार लोगों और गाड़ियों को रौंदते हुए दुकान में घुसी, 8 लोग घायल, सीसीटीवी वीडियो आया सामने। इंदौर में तेंदुए का आतंक, डिलीवरी बॉय पर हमले का सीसीटीवी फुटेज आया सामने, वन विभाग कर रही है तेंदुए की तलाश।
1: रांची पुलिस ने तोड़फोड़ के मामले में 2 पक्षों को किया गिरफ्तार, मारपीट के लगे आरोप। आगरा में लगातार हो रही बारिश के बीच 2 मंजिला कपड़े की दुकान ढही, मलबे में 5 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। जम्मू में वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर भूस्खलन, हिमकोटी मार्ग पर बैटरी कार सेवा बंद। उज्जैन में सड़क धसने से सीमेंट से भरा ट्रक नाले में गिरा, सीसीटीवी में कैद हुआ हादसा, लोगों ने प्रशासन पर लगाए लापरवाही के आरोप। दरभंगा बम धमाके में घायल मजदूर की मौत, लोगों का सड़क पर फूटा गुस्सा, आगजनी कर किया चक्का जाम। मेरठ में दलित प्रदर्शन के दौरान हिरासत ले गए युवक ने फांसी लगाने का किया प्रयास, वीडियो आया सामने। ग्रेटर नोएडा में इंटरव्यू में रिजेक्ट होने के बाद युवक ने किसी मंजिल छलांग लगाकर किया आत्महत्या। दिल्ली के संगम विहार में कार्डबोर्ड फैक्ट्री में आग, दमकल की टीम ने बुझाई आग। रोहतक में पिल्ला तोड़कर भाग रहे डंपर को रोकने आए दुकानदार को कुचला, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात।
0: रहूं मैं तेरे रूबरू का ट्रेलर आउट, 17 जुलाई को रिलीज होगी रोमांस मिस्ट्री सस्पेंड और ट्विस्ट से भरी ये फिल्म। प्रज्वल देवराज और राजवी शेट्टी की कन्नड़ फिल्म करावली का ट्रेलर रिलीज, 24 जुलाई को रिलीज होगी ये फिल्म। फिल्म श्री राम भूमि की शूटिंग का आज अयोध्या में पहला दिन, अनुपम खेर ने शेयर किया पोस्ट, लिखा श्री राम मंदिर जाकर रामलला से लिया आशीर्वाद। अभी खत्म नहीं हुई है कांतारा फ्रेंचाइजी, ऋषभ शेट्टी ने दिया अपडेट, कांतारा 2 पर काम जारी।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से आकजे।
1: इस बीच भारी बारिश के कारण बड़ा हादसा पुणे में हुआ है, वेस्ट टू एनर्जी प्लांट में मूसलाधार बारिश के बाद कचरे का एक विशाल ढेर इमारत पर गिर गया है, प्लांट के अंदर 23 मजदूरों के फंसे होने की आशंका है, 14 मजदूरों को अब तक रेस्क्यू किया गया है।
0: हालात कितने भयावह हैं इसका अंदाजा इन ड्रोन तस्वीरों से लगाया जा सकता है, कचरे का ढेर इतना बड़ा है कि इमारत बुरी तरह से गिर गई। प्रशासन का कहना है कि अंदर फंसे लोगों की ओर से फिलहाल कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल रही है, ऐसे में एनडीआरएफ, सेना और पिंपरी चिंचवड़ फायर ब्रिगेड की टीमें युद्ध स्तर पर राहत और बचाव के अभियान में जुटी हुई हैं।
1: श्री कृष्ण पांचाल मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। श्री कृष्ण, ताजा हालात क्या है इस वक्त, कितने लोगों को रेस्क्यू किया गया है, कितने फंसे हुए हैं?
3: देखिए, अभी हम मोशी कचरा डिपो है वहीं पर खड़े हैं और वेस्ट टू एनर्जी जो प्रोजेक्ट था, वो जो बिल्डिंग है उसका जो दो मंजिला बिल्डिंग थी वो कचरे की वजह से ढह गई है। फिलहाल आज सुबह NDRF के जवान और दमकल विभाग के कर्मचारी हो या फिर पुलिस हो, उन्होंने एक कर्मचारी की डेड बॉडी जो है अभी निकाली है। यानी कि अभी तक 9 लोग जो थे वो मलबे में दबे हुए थे जो ग्राउंड फ्लोर पे, उसमें से एक को निकाला गया है और 8 जो लोग हैं अभी भी मलबे में दबे हुए हैं, उनसे कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है। हमारे साथ नगर निगम के अधिकारी हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, क्या बताना चाहोगे, अभी तक कितने लोगों को निकाला गया है और मलबे में कितने लोग हैं और कितने लोगों की डेथ हुई है?
4: कल 1:30 बजे ये हादसा हुआ, तब से 5 लोग तो सेफली बाहर निकल चुके थे। उसके बाद रात में 6 और रात में 3 लोग, ऐसे 9 लोगों को हमने जिंदा यहाँ से बाहर निकाला। NDRF की टीम, फायर हमारा टीम और पुलिस और आर्मी की टीम, इन्होंने ये बहुत ऑपरेशन
0: जी उम्मीद करते हैं कि ये काम जारी रहेगा रेस्क्यू ऑपरेशन का। तो बढ़ते हैं उत्तराखंड की तरफ, जहां मॉनसून की एंट्री होते ही प्रदेश भर से भूस्खलन और सड़कों के बंद होने की खबरें सामने आने लगी हैं। टिहरी जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 707A पर बुधवार शाम भूस्खलन से 2 रेस्टोरेंट खतरे की जद में आ गए, एक पुराना खाली भवन भी क्षतिग्रस्त हो गया।
1: भूस्खलन के बाद से पूरे इलाके को खाली कराया गया। नीलकंठ महादेव मंदिर के समीप पहाड़ी से मलबा सड़क पर आने से मार्ग यातायात प्रभावित हो गया। उत्तरकाशी में नालू पानी समेत कई जगहों पर बोल्डर आने से बंद है। प्रदेश भर में 4 राजमार्ग समेत 70 सड़कें बंद हो गई हैं। लोगों की परेशानी बढ़ गई है। कल भी प्रदेश भर में भारी बारिश का अलर्ट है।
5: ओ माय गॉड, पिक्चर हो यार भाई।
0: इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी अंकित शर्मा, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। अंकित, पहाड़ों में भूस्खलन ये अक्सर देखने को मिलता है, लेकिन इस तरीके से पूरी इमारत का सीधे नीचे चले आना ये कम ही होता है। कहां कहां से इस तरह की खबरें आ रही हैं और कोई क्षति हुई है इसमें जान माल की?
6: अंजलि, देखिए, जिस तरह से टाइमली यहां पर इवैक्यूएशन हो गया था, क्योंकि पहले से ही बिल्डिंग को जर्जर बताया गया था और जिस तरह से लैंडस्लाइड और जो भूस्खलन का बाकी जगह जो बिल्डिंग गिरने का डर रहता है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर जो है स्लोप पे बने हुए हैं और जैसा कि भारी बारिश के समय यहाँ पर हमेशा डर रहता है, तो इसका अंदेशा था। इसको देखते हुए पहले ही वहां पर इवैक्यूएशन कर दिया गया था, जिसको जिसकी वजह से वहां पर लोगों की जान बचा ली गई। हालांकि जो वहां पर रेस्टोरेंट्स हैं या जो वहां पे एरियाज हैं, जिस तरह से आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से टिके हुए हैं, वहां पर भी खाली कराने की कवायद जारी है। जैसे कि आज उत्तराखंड में काफी क्षेत्रों में रेड अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट भी घोषित किया है। खासतौर पर हरिद्वार और पौड़ी के जो क्षेत्र है वहां पर रेड अलर्ट घोषित किया है अगले 3 घंटे के लिए, और भारी बारिश जो है सुबह से देखी जा रही है। हालांकि अच्छी बात यह है कि फिलहाल जो नदियां हैं उफान पर जरूर हैं, लेकिन फिलहाल खतरे की जद से अंदर है और लगातार वार्निंग दी जा रही है कि नदी नाले किनारे ना जाएं, क्योंकि ऐसे में कभी भी
1: ठीक है। अंकित, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। इसी के साथ यहाँ रुकना होगा छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर, टिकते रहिए आज।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से।
7: Akaje, the number one Korean.
8: This is the sound of Lucy staying on top of her spending. You see, even though she's buying a new pair of jeans, she knows that it fits within her monthly budget. Because Wells Fargo will send an alert if her balance drops below her set amount. Yep, nothing gets past Lucy, or Wells Fargo for that matter. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
9: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
10: When your cat is acting weird-er, or your dog is being loud-er, your turtle moves slow-er.
11: Hello, Ted.
10: Your cat seems thirsty-er.
12: Whoa, slow down, buddy.
10: Or your puppy is acting clumsy-er. Day or night. If you don't know what's wrong, know where to go.
13: Veg ER for pets. This is Kate.
10: Veg. the better, kinder ER for pets.
13: Take it easy with Soft Hits. Soft Hits brings together relaxing pop favorites from the 70s, 80s, and 90s. Familiar songs, easy melodies, and a sound that lets you slow down. Perfect for stepping back and catching your breath. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Soft Hits to start listening now.
2: Skincare brand.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
3: AU सोच बदलो और बैंक भी।
4: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो।
5: सॉरी यार गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
6: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
5: छक्का
6: सब कैशलेस हो गया
5: है। हां ओ ला भाई मेरा बैट,
7: वो अभी तो ठीक हुआ तू।
8: बिलो तो चार्ज हुआ यार।
9: ओला बैट किसका है?
10: टाटा AIG है तो भरोसा है।
11: आगे आगे उधर करेक्ट करेक्ट
12: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
13: जब बात हो सोयाबीन और मक्के की फसलों को सूंडियों से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का प्रोक्लेम एक्स्ट्रा। जीते हर बाजी।
14: इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
15: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
16: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
17: In association with Sharda University, the world comes together at Sharda University. Where are you?
18: Punjab National Bank, Bharose ka Prateek.
17: Vimal, bolo zubaan kesri. Hint, bade aaram se.
19: We must rise, we must fight. दरअसल ईरान की सड़कों पर ऐसे पोस्टर तो आपने देखे होंगे, लेकिन आपको याद होगा कि ये सिंबॉलिक जो हाथ आप देख रहे हैं, ये पूर्व सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामनेई का। लेकिन अब ये हाथ जो है जिसमें उनकी अंगूठी हमेशा नजर आती थी, जो एक पावर का साइन था, वो अब ईरान में खासतौर पर तेहरान के इन इलाकों में नजर आएगा, आजादी स्क्वायर पर नजर आएगा। आप देखते रहिए आज तक।
18: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा। एक्जे द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया।

लैंडस्लाइड के चलते एक बार फिर केरलम का वायनाड थर्राया। लैंडस्लाइड की इन तस्वीरों ने 2 साल पहले की भयानक घटना की याद दिला दी। लैंडस्लाइड का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें ये पूरी घटना कैद हो गई। इसमें 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हैं और 9 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। यह हादसा अनाकोम्पाइल में पाड़ी टनल प्रोजेक्ट साइट के पास हुआ, जहां तेज बारिश के बाद सैकड़ों टन मिट्टी और मलबा अचानक बहने लगा। लोग जान बचाने के लिए भागे, लेकिन कई लोग मलबे की चपेट में आ गए। अधिकारियों के मुताबिक लगातार हो रही बारिश के बाद सुरंग का काम रोक दिया गया था। फिलहाल मलबे को हटाने और फंसे लोगों को निकालने का काम जारी है। इस हादसे के बाद वायनाड में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। हादसे के बाद पुलिस और एनडीआरएफ की टीमें मौके पर मौजूद हैं और राहत और बचाव काम जारी है। 2 साल पहले भी वायनाड में एक के बाद एक 3 भूस्खलन हुए थे, जिसमें 400 से ज्यादा जानें चली गई थी। यह हादसा भी उसी तरह के लैंडस्लाइड की तरह खतरनाक था, लेकिन साइट पर काम बंद होने की वजह से जान का बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। आज तक फिरो

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो।
1: एक्जे, द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड, नाउ इन इंडिया।

0: बिहार में लगातार बारिश, मौसम विभाग का रेड अलर्ट, रोहिणी में गिरी इमारत, 3 की मौत, गाजियाबाद में डूबे कई इलाके, मेरठ नेशनल हाईवे पर घुटनों तक पानी, ट्रैफिक जाम।
1: गुजरात के बिजनेस कैपिटल में त्राही माम, सूरत में भरा पानी, महाराष्ट्र के रायगढ़ में बहते 3000 सिलेंडर से बड़ा खतरा, उत्तराखंड में नेशनल हाईवे 707 ए के पास लैंडस्लाइड।
0: ऑस्ट्रेलिया के साथ साझा घोषणा पत्र में पीएम मोदी का क्रिकेट की तरह रिश्तों पर जोर, कहा वनडे जैसे डिसीजंस, टेस्ट जैसे रिश्ते, इंडो पैसिफिक की सुरक्षा पर समझौता, छात्रों के लिए भारत में खुलेंगे ऑस्ट्रेलियन कैंपस।
1: बुशहर, चाबहार, बंदर अब्बास समेत ईरान में 90 ठिकानों पर अमेरिका ने गिराए बम, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा 20 गुना ताकत से जवाब देंगे, ईरान का पलटवार, कुवैत और बहरीन में जंगी सायरन।
0: चढ़ावा चोरी मामले में बड़ा खुलासा, पुलिस कस्टडी में आरोपियों ने उगले राज, रिश्तेदारों के अकाउंट में वाइट करते थे लूट की रकम, 30 बैंक खाते फ्रीज, सभी की जांच।

0: देश की संसद के सामने पानी, सांसदों के आवास के सामने पानी, फिर एक बार दिल्ली पर चल प्रहार। पहली बारिश में गर्त में गाजियाबाद, सड़क से कॉलोनी तक पानी ही पानी। नोएडा पर भी भारी पहली बारिश, बारिश में ध्वस्त तमाम इंतजाम। दिल्ली एनसीआर में चल तांडव, महाराष्ट्र में भी बारिश से त्राही त्राही। रायगढ़ में सिलेंडर फैक्ट्री बही, पानी की धार में बहे सिलेंडर। गुजरात में गर्जा आसमान, बारिश से बदली सूरत।
1: जिस मानसून का देश बेसब्री से इंतजार कर रहा था, वो जब आया तो राहत के साथ साथ आफत लेकर आया। हर साल की तरह इस बार भी मानसून की एंट्री के साथ जलभराव और आम लोगों की परेशानियों की खबरें आने लगी।
2: यूं तो देश के कई हिस्सों में मानसून की वजह से मुसीबत आने की खबर आ रही है, लेकिन सबसे बुरा हाल दिल्ली और एनसीआर का आज दिख रहा है। दिल्ली गाजियाबाद से नोएडा तक कल से आज तक लगातार बारिश हो रही है। रात भर की बारिश के बाद जब दिल्ली वाले जागे तो निचले इलाकों की सड़कें लबालब भरी मिली, घरों के बाहर पानी का कब्जा मिला। जब दफ्तर के लिए निकले तो पूरे रास्ते पानी का सामना करना पड़ा। अंडरपास में गाड़ियां डूब कर निकल रही हैं, तो NH9 जैसी सड़कों पर ट्रैफिक की भरमार मिल रही है और बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक मिल रहा है।

0: मानसून की पहली बारिश में ही दिल्ली पानी पानी हो गई। कई इलाकों से लबालब पानी में डूबी सड़कों की तस्वीरें आने लगी। देश की संसद से कुछ ही दूरी पर सांसदों की आवाज के सामने भी पानी भर गया।
1: साल बदला है लेकिन हालात नहीं। दिल्ली के लुटियन जोन में जहां माननीय सांसदों का आवास है, उसके ठीक बाहर आप देखिए बीडी मार्ग पे क्या हालात बने हुए हैं। जल जमाव, जल भराव का हालात। नर्मदा अपार्टमेंट्स जिसमें माननीय सांसद रहते हैं, बाएं हाथ में भी सांसदों का आवास है, दाहिने हाथ पे भी सांसदों का आवास है। लुटियन जोन जहां पूरा पावर कॉरिडोर दिल्ली का रहता है, उसी जोन में नर्मदा अपार्टमेंट्स के ठीक बाहर की तस्वीर। पिछले साल भी हमने आपको यहां से तस्वीर दिखाई थी कि कैसे मूसलाधार बारिश के बाद जबरदस्त जल भराव इस जगह पे हुआ था, क्योंकि पानी निकलने का संभवतः जो सिस्टम है यहाँ वो बहुत ही खराब है।
0: पिछले कुछ हफ्तों से गर्मी और उमस का सामना करती दिल्ली को इस बारिश से राहत तो मिली, लेकिन साथ में आफत भी आती दिखी। ईस्ट ऑफ कैलाश में नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट के ठीक सामने एक पेड़ सड़क पर गिर पड़ा और ट्रैफिक ठप पड़ गई।
2: राजधानी दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश इलाके में मौजूद हैं और लगातार राजधानी दिल्ली में हो रही बारिश के बीच कई जगहों पर यह बारिश लोगों के लिए आफत बनती हुई नजर आ रही है। हम देख सकते हैं यहाँ पर एक पेड़ गिरा हुआ है। ये हॉस्पिटल है, नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट, और यहीं पर ये पेड़ गिरा है। देख सकते हैं पेड़ कितना बड़ा है, और बताया जा रहा है कि ये सुबह 4 बजे के करीब ये पेड़ गिरा है, जिसके बाद ये यातायात बाधित हुई है। और चूंकि ये पास में बिल्कुल हॉस्पिटल है, देख सकते हैं नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट है।
0: दिल्ली से सटे गाजियाबाद और नोएडा की भी हालत इस पहली बारिश में पतली होती दिखी। गाजियाबाद के विजयनगर में सड़क पर भारी जल भराव हो गया।
3: इस समय मौजूद है और रात से बारिश का सिलसिला यहाँ जारी है। सड़कों की बात करें तो जल भराव की स्थिति यहाँ सड़कों पर देखी जा रही है। गाजियाबाद के रेलवे स्टेशन रोड पर इस समय मौजूद है। ये वो रोड है जो विजयनगर लाइन पर क्षेत्र को गाजियाबाद के रेलवे स्टेशन से जोड़ती है। मुख्य मार्ग है ये है, वाहनों का काफी भीड़ यहाँ रहती है और सड़कों पर जल भराव है। लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही जो बाइकें हैं या जो वाहनों के पहिए हैं वो डूबे हुए नजर आ रहे हैं। भारी परेशानी लोगों को यहाँ हो रही है।
0: अभी तो बारिश के मौसम की शुरुआत ही हुई है, अगर बारिश ने रौद्र रूप दिखाया तो हालात बद से बदतर हो सकते हैं। आज तक ब्यूरो।
4: तो दिल्ली को गाजियाबाद और मेरठ से जोड़ने वाले NH9 पर कैसे बारिश का पानी भर गया है, एक ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
5: मेरी मौजूदगी इस वक्त अब NH24 पर है, और ये वो NH24 है जो अक्षरधाम से शुरू होता हुआ मेरठ और मेरठ के बाद हरिद्वार से देहरादून की तरफ जाता है। लेकिन यहाँ की तस्वीर काफी डरा देने वाली है, क्योंकि जो पानी है वो घुटनों तक भर चुका है। मैं सीधे आपको तस्वीरें दिखाऊंगी। देखिए मेन NH24 है, नेशनल हाईवे है, और सरकार जो है वो दावा करती है कि NH24 जो है पूरी तरह से सेफ है, सुरक्षित है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कैसे पानी भर चुका है। कई सारी गाड़ियां इस पानी में फंसने के बाद खराब हो चुकी हैं। कई लोग जो घंटों से पानी के अंदर फंसे हुए हैं वो धीरे धीरे करके बाहर निकल रहे हैं। जो एक राहगीर आ रहे हैं उनसे बात करते हैं, कितनी देर से पानी में फंसे हुए, पानी कितना है? और
6: यहाँ पे पानी कम से कम आधा मीटर के आसपास है नीचे गहराई में। मैं तो इसी के चक्कर में डिवाइडर से चढ़ा के लाया, फिर भी 1.5 फुट के आसपास पानी पड़ रहा है।
5: पूरा पानी भरा हुआ है? पूरा पानी भरा हुआ है,
7: पूरा पानी भरा हुआ है। हम तो भैया कपड़े लेके बैग में जब ड्यूटी पे जा रहे हैं।
5: आप लोग ड्यूटी पे जा रहे हैं?
7: हाँ जी।
5: कितनी देर से आप लोग फंसे हुए हैं?
7: हम फंसे हुए हैं
5: आधा घंटा हो गया कम से कम।
7: हम तो ऊपर से आ रहे हैं ना,
5: आधे घंटे उससे ऊपर से आने के बाद आधे घंटे से।
7: हाँ जी
8: सर, कम से कम 1.5 किलोमीटर का जाम पड़ा है, 1.5 से 2 किलोमीटर का।
7: उधर भी है विजय बाईपास की साइड।
5: ये वो गाड़ियां हैं जो इस जाम में फंसने के बाद खराब हो चुकी है। एक तस्वीर और जो बहुत महत्वपूर्ण है जानने की, देखिए ये तो हाईवे की हालत है, वो देखिए नीचे क्या तस्वीर है। नीचे भी पूरी तरह से पानी भरा हुआ है। और मनीष भिदुड़ी मेरे सहयोगी, अगर जूम करके आपको तस्वीरें दिखाएं तो आप देख सकते हैं एक गाड़ी जो है वो नाले में जाकर फंस चुकी है और अब तक वो निकल नहीं पाई है। जद्दोजहद काफी देर से की जा रही है, लेकिन लगातार जो है वो हम देख रहे हैं लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और लंबी लंबी कतारें और काफी लंबा जाम इस वक्त मेन नेशनल हाईवे पर देखा जा सकता है और लबालब पानी जो है वो यहाँ पर भरा हुआ है। NHAI के जो अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं, उन्होंने भी कोशिश की कि इसको पानी को यहाँ से निकाला जाए, लेकिन अब तक पानी जो है वो निकाल नहीं पाए हैं।
9: और आइए सीधा रुक करते हैं हमारे सहयोगी पीयूष मिश्रा का, जो इस वक्त गाजियाबाद के क्रॉसिंग्स रिपब्लिक इलाके में मौजूद है। पीयूष, गाजियाबाद का हाल तो पिछले 24 घंटे से बेहद बुरा है, इस वक्त क्रॉसिंग्स रिपब्लिक में क्या हालात हैं, जरा दिखाएं।
5: जी बिल्कुल अंजलि, बिल्कुल आपने सही कहा, इस वक्त गाजियाबाद की हालत बहुत चिंताजनक है। पिछले 12 घंटे से ज्यादा का समय हो गया और लगातार बारिश होने की वजह से कई इलाकों में जल भराव हो गया है। मैं इस वक्त जहां मौजूद हूं, ये वो इलाका है जो एक क्लासिक एग्जांपल है सरकार के फेलियर का, अथॉरिटीज के फेलियर का। मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं, देखिए ये मेरे दाईं ओर ये खुला नाला है और लगातार बारिश होने की वजह से जो है इस नाले का पानी अब ओवरफ्लो कर रहा है, यानी ये पानी लगातार अब सड़कों पर आ रहा है। और ये देखिए नाला है जो क्रॉसिंग रिपब्लिक है, जो पूरी तरह से खुला हुआ है, इस नाले में पानी भर चुका है और ये पानी यहां से निकल के मेरे सहयोगी मनीष पिथोड़ी मेरे साथ आगे बढ़ेंगे। ये नाले का पानी, अब देखिए नाले का पानी यहां से निकल के ओवरफ्लो होकर सड़कों पर आ गया है और सड़कों पर आने की वजह से यहां पर जल भराव हो गया। और ये जो पानी आपको दिख रहा है ये कोई बारिश का पानी नहीं है, ये नाले का पानी है और बारिश का पानी इसमें मिलने की वजह से पानी का लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है। और एक तरफ जो गाड़ी सामने से आ रही है ये एक तरफ का रास्ता है और दूसरी तरफ का रास्ता आप देखिए गाड़ी डूबती हुई यहां से निकल रही है। मेरे सहयोगी आपको तस्वीरें दिखा रहे होंगे मनीष भदौड़ी, इस पूरे पानी के अंदर गाड़ियां जो है वो डूबती हुई यहां से निकल रही हैं। सामने वो जूम करके तस्वीर दिखा सकते हैं, एक बाइकर जो है वो फंस चुके हैं, उनकी गाड़ी बीच में ही खराब हो गई है, वो इस वक्त इस पानी में, गंदे पानी में जहां मौजूद है उसमें फंस चुके हैं। तो इस वक्त जहां से मैं रिपोर्ट कर रहा हूं, जो लोग चल रहे हैं सड़कों पर, ये सारा इतना गंदा पानी है कि लोग परेशान हो चुके हैं और सड़कों पर जो पानी बह रहा है ये नाले का पानी आ चुका है। ये क्लासिक एग्जांपल है सरकार के फेलियर का, क्यों? क्योंकि इस नाले की सफाई नहीं हुई, इस नाले का जो कूड़ा है वो निकाला नहीं गया। और ये इलाका जो है वो क्रॉसिंग रिपब्लिक है, VIP इलाकों में आता है, ग्रेटर नोएडा से नेशनल हाईवे 24 को जोड़ता है। बड़ी बड़ी सोसाइटीज है यहाँ पर, सामने ही सर्वोदय हॉस्पिटल है और सामने ही आप ये देखिए कि कैसे सोसाइटीज यहाँ पर बनी हुई है। और ये पूरा इलाका रिहायशी इलाका है और रिहायशी इलाके पर ये स्थिति हो गई है कि नाले का पानी अब सड़कों पर आ गया और ये स्थिति काफी चिंताजनक है, काफी डराने वाली है, भयावह है। जो लोग हैं यहाँ पे उनसे हम बात भी कर लेते।
10: बाइक है ना, इस साइलेंसर में पानी भर गया सारा
5: साइलेंसर,
10: आधे घंटे में मुझे कहीं पहुंचना अंगूठा लगाने के लिए राशन की दुकान पे, वो हमारा खत्म है,
5: पूरा खराब हो गया
11: भाई साहब। इतनी बुरी हालत है, इतनी बुरी हालत है भाई साहब, रोड पे चलने के लिए मुसीबत आ रही है इतनी कि देखो बाइक से आया हूँ मैं, अभी लड़के बेचारे दो खड़े वहाँ पे लेके जा रहा हूँ, उनको कोई सवारी नहीं मिल रही, कोई कुछ नहीं, ऑटो नहीं मिल रहा, बताओ।
5: पानी तो नाला ओवरफ्लो कर चुका है,
11: ओवरफ्लो नाला हो चुका, अगर यहाँ मर गया कोई आदमी क्या करेगा, कोई
5: डूब गया,
11: देखिए क्या, आप बताओ। मैं भी जा रहा हूँ, रिस्क लेके जा रहा हूँ, मेरे लड़के बेचारे मेरे वहाँ दो खड़े आने के लिए,
5: गाड़ी खराब हो गई, आपकी गाड़ी खराब,
10: साइलेंसर में पानी चला गया।
5: क्या स्थिति है सर?
12: मैं तो बच्चों की स्कूल बस की इंतजार कर रहा हूँ, देख रहा हूँ इतना पानी कैसे बस आएगी, वही समझ नहीं आ रहा।
5: बच्चों
12: के स्कूल की बस आने वाली है लेकिन आएगी कैसे यही नहीं पता, पानी भरा पड़ा घुटने कमर तक,
5: देख सकते हैं ये स्थिति है और पानी इतना भर चुका है, मैं खुद देख पा रहा हूँ, आधी आधी गाड़ियां डूब के यहाँ से जा रही है और ये चिंता लगातार बढ़ती जा रही है अंजलि, क्योंकि ये गाजियाबाद है और कहा जाता है कि स्मार्ट सिटी है गाजियाबाद, लेकिन गाजियाबाद आप स्मार्ट तो सिटी का आम सामने से हटा ही देना चाहिए, क्योंकि सरकार को पता होता है मॉनसून आएगा और जब जब मॉनसून आता है मॉनसून आने से पहले तैयारियां की जानी चाहिए, लेकिन कोई तैयारी नहीं की। ये जो पानी इस वक्त यहाँ पर बह रहा है ये सारा का सारा नाले का पानी है, क्यों? क्योंकि नाले को साफ नहीं किया गया अथॉरिटीज के द्वारा और ये पानी सोसाइटीज के अंदर घुस रहा है, देखिए उसके अंदर भी ये पानी घुस रहा है और लोग परेशान है, विवश है और सड़कों पर जो है इसी
4: के परेशान करने वाली तस्वीरें दिल्ली और NCR के अलग अलग इलाकों से, लेकिन महाराष्ट्र में भी इस वक्त सूरत हाल काफी खराब है। वहां पर रायगढ़ से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया जिससे भारी बारिश की वजह से लगभग 3000 LPG गैस सिलेंडर नदी में बह गए। ये सिलेंडर HPCL पाताल गंगा LPG बॉटलिंग प्लांट के पास नदी में बहते दिखाई दिए, इनमें से कुछ गैस सिलेंडर खाली है जबकि कुछ भरे हुए हैं। ऐसे में जिला प्रशासन लोगों से इनसे दूर रहने की अपील की है। प्रशासन की ओर से जारी बयान में कहा गया कि सिलेंडर में गैस है या नहीं, वो सुरक्षित स्थिति में है या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ऐसे में उत्सुकता ये है कि इस्तेमाल के मकसद से ऐसे सिलेंडर को उठाना खतरनाक हो सकता है।

0: और अब बात करते हैं अयोध्या के राम मंदिर में चंदा चोरी की, जहां लगातार नए नए खुलासे हो रहे हैं। आरोपियों से एसआईटी की पूछताछ लगातार जारी है। आरोपियों ने माना है कि उन्होंने चोरी की है और ये भी बताया है कि टिन्नू यादव की वजह से उनके लिए चोरी करना कितना आसान हो गया था।
1: एसआईटी की जांच जारी है, लेकिन अब भी बड़े चेहरों पर एक्शन ना होने से सवाल उठ रहे हैं। अब बड़ा सवाल ये भी बना हुआ है कि आखिरकार चंपत राय पर अब तक एफआईआर क्यों नहीं दर्ज की गई।
2: हम लोगों का ये निश्चय है कि इस प्रकार का अपराध जिन लोगों ने किया है उनकी जांच होनी चाहिए, उनको दंड मिलना चाहिए।
3: हनुमान जी निर्णय करेंगे, निश्चित बात है, छोड़ेंगे नहीं।
4: वहाँ पे भगवान के दरबार में पहले से ही लोगों को बैठा हो ताकि वहाँ से फिर से विश्वास की बहाली हो।
5: रामधन में सिंध मारी हुई तो संतों साधुओं का आक्रोश स्वाभाविक था। रामधन की लूट हुई तो आरोपियों के हिसाब किताब की आवाज बुलंद होना भी स्वाभाविक था। स्वाभाविक था यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का ये कहना कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा।
6: जो प्रमाण मिले केवल 6 लोग इसमें चोरी करते हुए पाए गए, कुल 6 लोग, 2 लोग उसमें साजिश का पार्ट थे, यानी कुल 8 लोग। एसआईटी ने अपनी सिफारिश ट्रस्ट को भेज दी, ट्रस्ट ने उसके अनुसार एफआईआर दर्ज करवाई, कार्रवाई हो गई।
5: शर्मसार कर देने वाले चोरी के अपराध पर गुस्सा, क्षोभ, आक्रोश सब कुछ स्वाभाविक था, लेकिन अब जो हो रहा है वो स्वाभाविक नहीं है। चंपत राय पर अब तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। एसआईटी रिपोर्ट में नाम होने के बाद भी अनिल मिश्रा पर एक्शन नहीं हुआ है और गोपाल राव अभी तक ट्रस्ट में बने हुए हैं और डंके की चोट पर कह रहे हैं कि नहीं हटेंगे।
7: नहीं, किसी को बाहर नहीं किया है। नहीं नहीं, गलत है, गलत संदेश है। अरे गलत
8: बैठिए, बंद कराइए,
9: मंदिर में आप रहेंगे?
7: हाँ रहेंगे, रहेंगे।
5: अदना से अदना इंसान से पूछ लीजिए तो यही कहेगा कि अपराध हुआ है तो मुकदमा होना चाहिए, अपराधियों को पद से हटना चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। लेकिन अयोध्या में गंगा उल्टी बहाने की कोशिश हो रही है, छोटी मछलियों को निगलने की कोशिश हो रही है, बड़े मगरमच्छों पर हाथ डालने की हिम्मत नहीं हो रही। जैसे कि बुधवार को 3 आरोपियों अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, करुणेश पांडे को रिमांड में लेकर पुलिस भीखापुर में आम के बाग में ले जाकर पूछताछ करती है। आरोप है कि यहीं चढ़ावा चोरी की रकम की बंदरबांट होती थी।
10: यहाँ पर सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि ये वो जगह है जहाँ पर बंदरबांट हुआ करता था और आरोपी जो पैसा गणना लेते थे करते थे, उसके बाद जो चुराया हुआ पैसा होता था उसको वहीं पर बांट लिया जाता था। भारी पुलिस

0: महाराष्ट्र इस वक्त मूसलाधार आफत का सामना कर रहा है। शासन प्रशासन की सारी तैयारियां बेबस नजर आ रही हैं। मुंबई से सटे पालघर में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते सड़कें मानो दरिया बन गई हैं। नदी में उफान के चलते हालात काफी खराब हो गए हैं। निचले इलाकों में पानी भर गया है। सड़कों पर पानी आ जाने की वजह से गाड़ियों की रफ्तार में ब्रेक लग गया है। पालघर में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। बारिश और हादसों की वजह से अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 3 लोग घायल हैं। पालघर ही नहीं, महाराष्ट्र के दूसरे इलाकों में भी हाल काफी खराब है। पुणे का हाल देख लीजिए, सड़कें दरिया बन गई हैं, गलियां मानो जैसे समंदर हो गयी। नासिक में भी बारिश मुसीबत बनकर बरस रही है। गोदावरी समेत कई नदियां उफान पर हैं, हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। त्र्यंबकेश्वर में भी चारों तरफ पानी पानी दिख रहा है। सड़कों पर सैलाब ही सैलाब है, खेत खलिहान सब डूब चुके हैं। वहीं मौसम विभाग ने मुंबई ठाणे के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है, जिसके चलते महाराष्ट्र को अभी बारिश से राहत मिलती नहीं दिख रही है। पालघर से विद्या और पुणे से श्रीकृष्ण पांचाल के साथ आज तक।
1: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: राम मंदिर में चोरी हुई, चोर पकड़े गए, महासचिव का इस्तीफा हो गया, विशेष आमंत्रित सदस्य निकाल बाहर किए गए, दो दो जांच चल रही है। एसआईटी की रिपोर्ट 15 जुलाई तक आएगी, पुलिस की जांच चलती जाएगी। लेकिन इस पूरे प्रकरण में राम मंदिर ट्रस्ट के भरोसे को जो ठेस पहुंची, उसकी भरपाई कैसे होगी? भक्तों के मन में तमाम सवाल बने रह जाएंगे। क्या आखिर गलती किसकी, दोषी कौन, जिम्मेदारी किसकी, लापरवाह कौन कि राम के धाम में चोरी का कलंक लग गया? ट्रस्ट कहता है कि 6 जुलाई की बैठक के बाद व्यवस्था में तेजी से सुधार किया जा रहा है। कृष्ण मोहन अंतरिम महासचिव बन गए। अब बैंक खातों का संचालन कृष्ण मोहन, जगदीश और चंदन राय के संयुक्त हस्ताक्षर से होगा। जहां दान की गिनती होगी वहां 43 लोग रहेंगे। 13 एक्स्ट्रा सीसीटीवी कैमरे लग गए। दान पेटी को कक्ष तक पहुंचाने के लिए 27 निजी सुरक्षा कर्मी रखे गए। दान पेटियों के पास अतिरिक्त पुलिस कर्मी तैनात कर दिए गए। बाकी आगे का काम संभालने के लिए ट्रस्ट ने सीईओ की तलाश तेज कर दी है। इसके लिए सर्च कमेटी बन चुकी है। सीईओ आते ही सारा मामला पटरी पर आ जाएगा, वरना सरकार से लेकर अदालत तक तमाम रास्ते खुले हुए हैं। अयोध्या का मौजूदा ट्रस्ट सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक 1993 की अयोध्या एक्ट की धारा 6 और 7 की शक्तियों के आधार पर बना। लिहाजा ट्रस्ट के नाकाम रहने पर केंद्र सरकार अयोध्या में कतिपय क्षेत्र अर्जन अधिनियम 1993 की शक्तियों के तहत ट्रस्ट के प्रबंधन नियम बदल सकती है, प्रबंधन का नया प्रशासनिक ढांचा ला सकती है। इसके अलावा अध्यादेश के जरिए बोर्ड को भंग भी कर सकती है। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के जिम्मेदार जिस तरह अपनी जिम्मेदारी में नाकाम साबित हुए हैं, इसे ट्रस्ट के मूल मकसद में नाकामी माना जा सकता है और तब इसे ब्रीच ऑफ ट्रस्ट यानी न्यास भंग मानकर कोर्ट खुद संज्ञान लेकर ट्रस्टियों को अयोग्य घोषित कर सकता है। भारतीय न्यास अधिनियम 1882 के तहत कोई याचिकाकर्ता भी अदालत से शिकायत कर सकता है। उच्चतम अदालत खुद भी संज्ञान लेकर ट्रस्ट की नाकामी की सूरत में मंदिर की व्यवस्था संभालने के लिए अधिकारी नियुक्त कर सकती है। लेकिन अब सवाल सिर्फ राम मंदिर ट्रस्ट का नहीं, मंदिर मंदिर यही हाल है। अयोध्या में चढ़ावा चोरी हुई, मथुरा में चढ़ावा विवाद है, महाकाल में दर्शन रसीद का विवाद, तो बद्रीनाथ में चढ़ावा विवाद की चर्चा है, वैष्णो देवी में फर्जी चांदी के चढ़ावे का विवाद है, तो हरिद्वार के मंदिर में भी दान विवाद है, पूरी मंदिर जमीन और रत्न भंडार के विवाद में है, तो तिरुपति में दर्शन टिकट से लड्डू तक भ्रष्टाचार, पद्मनाभ स्वामी खजाना विवाद है, तो सबरीमाला में चढ़ावा चोरी विवाद है। समवर्ती सूची के विषयों में शामिल मंदिरों को लेकर उठ रहे विवादों पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों के पास पर्याप्त अधिकार है। संविधान के अनुच्छेद 25 भाग 2 ए में धार्मिक आचरण से जुड़ी आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक गतिविधि को कानून बनाकर नियंत्रित या प्रतिबंधित किया जा सकता है। अनुच्छेद 26 में धार्मिक संप्रदायों को अपने मामलों का प्रबंधन करने, संपत्ति अर्जित करने और कानून के अनुसार उसका प्रशासन करने का अधिकार देता है और इसी अधिकार के तहत कार्रवाई की उम्मीद अब हिंदू समुदाय के भीतर बन रही है, जो हिंदू मंदिरों के प्रशासक के लिए सेंट्रल वक्फ कमीशन जैसे सनातन बोर्ड की स्थापना की मांग कर रहा है। साधु संतों के एक वर्ग और बड़े हिंदू समुदाय में सनातन बोर्ड की मांग वाली चर्चा चल रही है। दावा है कि देश में करीब 4 लाख मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण है। वैष्णो देवी में श्राइन बोर्ड अध्यक्ष एलजी होते हैं, अमरनाथ श्राइन बोर्ड में भी एलजी अध्यक्ष होते हैं, बद्री केदार मंदिर समिति के सीईओ सरकारी अफसर हैं, साई बाबा संस्थान ट्रस्ट सरकार की देखरेख में बनी कमेटी देखती है, काशी विश्वनाथ विकास परिषद की कमान सरकारी कमिश्नर के हाथ में है, तिरुपति में टीटीडी बोर्ड समेत कर्नाटक, केरल, आंध्र, तेलंगाना, तमिलनाडु के तमाम मंदिरों की कमान सरकार के हाथ में है, जबकि सिखों के गुरुद्वारों का प्रबंधन एसजीपीसी और मुस्लिम मस्जिदों का प्रबंधन वक्फ बोर्ड के हवाले होता है। हालांकि वक्फ और मंदिरों में बुनियादी फर्क धार्मिक कार्यक्रमों का है, क्योंकि वक्फ का बुनियादी आचरण संपत्तियों की देखरेख का है, जबकि मंदिरों का धार्मिक। यही वजह है कि सरकार ऐसे किसी सनातन बोर्ड की मांग को मानने के लिए तैयार नहीं दिखती। आज तक ब्यूरो।
1: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

दिल्ली एनसीआर में लगातार बारिश, मौसम विभाग का रेड अलर्ट। रोहिणी में गिरी इमारत, 3 की मौत। गाजियाबाद में डूबे कई इलाके। मेरठ नेशनल हाईवे पर घुटनों तक पानी, ट्रैफिक हुआ जाम।

सूरत में भरा पानी, महाराष्ट्र के रायगढ़ में बहते दिखे 3000 सिलेंडर, उत्तराखंड में नेशनल हाईवे 707 ए के पास लैंडस्लाइड। ऑस्ट्रेलिया के साथ साझा घोषणा पत्र में पीएम मोदी का क्रिकेट डिप्लोमेसी, कहा वनडे जैसे फैसले, टेस्ट जैसे रिश्ते, इंडो पैसिफिक की सुरक्षा पर समझौता, आतंक के खिलाफ दोनों देश। बुशहर, चाबहार, बंदर अब्बास समेत ईरान में 90 ठिकानों पर अमेरिका ने गिराए बम, ट्रंप ने कहा 20 गुना ताकत से जवाब देंगे। ईरान का पलटवार, कुवैत और बहरीन में जंगी सायरन। और चढ़ावा चोरी केस में बड़ा खुलासा, पुलिस कस्टडी में आरोपियों ने उगले राज, रिश्तेदारों के अकाउंट में वाइट करते थे लूट की रकम, 30 बैंक खाते फ्रीज हुए, सभी की जांच जारी।

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। 12 बजे 12 रिपोर्ट की शुरुआत करते हैं दिल्ली की बारिश से। मौसम विभाग ने दिल्ली में बारिश का ताजा रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली में कल शाम की मूसलाधार बारिश के बाद रात भर से रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। राजधानी के कई इलाकों में बारिश से जल भराव की खबर है। मौसम विभाग के मुताबिक पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा तुकमीरपुर खजूरी में 160 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, मयूर विहार में 103 मिलीमीटर, महरौली में 86 और लोधी रोड पर 80 mm बारिश दर्ज की गई है। दिल्ली में बारिश के बीच दिल्ली सरकार ने तस्वीरें जारी कर यह दावा किया कि इस बार भारी बारिश में दिल्ली का कोई हॉटस्पॉट नहीं भरा है। जो आमतौर पर पहले विंटो ब्रिज से लेकर कई तस्वीरें आती थी, इस बार ऐसा कुछ नहीं है। कहां कितनी बारिश है यहां पर आप देख लीजिए। आपको बताया तुकमीरपुर खजूरी में 160 मिलीमीटर बारिश हुई है और मयूर विहार में 103, महरौली में 86 मिलीमीटर बारिश हुई। और बारिश की वजह से लोगों की परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। दफ्तर जो जाते हैं सुबह सुबह, उनका हाल देखिए, कतार में चलना पड़ रहा है क्योंकि दूसरी तरफ पानी है, बहुत ज्यादा पानी है। लोधी रोड में 80 मिलीमीटर बारिश हुई है, रिज में 78 मिलीमीटर बारिश हुई है, छतरपुर में 72 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। और बारिश जिस तरह से जारी है यह बढ़ भी सकता है। पालम में 63 मिलीमीटर, प्रगति मैदान 50 mm बारिश। अब देखिए, एक बड़ा पेड़ गिर गया, यह तस्वीर देखिए।
1: असम विभाग द्वारा दिल्ली के लिए जारी किए गए मॉनसून अलर्ट का असर आज लगातार तीसरे दिन देखने को मिल रहा है। बृहस्पतिवार को सुबह से ही दिल्ली भर में या तो कहीं बूंदाबांदी हो रही है तो कहीं मॉडरेट रेन्स का असर देखने को मिल रहा है। लेकिन गुरुग्राम और गाजियाबाद से जैसी तस्वीरें आ रही हैं, उससे इतर दिल्ली की तस्वीर है जहां बारिश की वजह से मेजरली अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा कहीं वाटर लॉगिंग जैसी समस्या देखने को नहीं मिल रही है। और इसी बीच दिल्ली सरकार के पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने तस्वीरें जारी करके दावा किया है कि बीते कई सालों से 5 ऐसे हॉटस्पॉट जहां वाटर लॉगिंग मॉनसून में होता ही होता था, वहां इस बार इसका असर देखने को नहीं मिल रहा है। उनमें से एक जगह है मिंटो ब्रिज, जहां फिलहाल आपको वाटर लॉगिंग की समस्या नहीं देखने को मिलेगी। हालांकि अभी जो बारिश दिल्ली में हो रही है वो हल्का फुल्का बूंदाबांदी से लेके मॉडरेट रेन्स है, मूसलाधार बारिश लगातार नहीं हो रही है। और उसके बाद ही पता चलेगा कि जो रेखा गुप्ता सरकार के दावे हैं, उनकी एजेंसियों के दावे हैं, वो दावे सिर्फ दावे हैं या फिर इस बार धरातल पर बदलाव देखने को मिल रहा है।
0: तो दिल्ली से सटे नोएडा और गाजियाबाद में बारिश से बुरा हाल है। गाजियाबाद में जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उससे साफ पता चलता है कि बारिश की समस्या ने लोगों को और ज्यादा परेशान कर दिया है। उनका घर से बाहर निकलना दूभर हो गया है, सड़कों पर पानी है, तेज बहाव है, दो पहिया वाहन जहां थे वहीं ठहर गए हैं, चार पहिया वाहन की हालत भी ज्यादा ठीक नहीं है, बीच बीच में गाड़ी बंद हो जाती है, धक्का लगाना पड़ता है। अब ये दो तस्वीरें आप देखिए, नोएडा सेक्टर 16 की एक तस्वीर है जहां पर हर जगह पानी भरा हुआ है, सड़क तो आपको कहीं दिखाई नहीं देगी, चाहे वो गाजियाबाद हो चाहे वो नोएडा हो, दोनों तरफ एक ही जैसे हालात हैं। और जो गाड़ियां हैं वो थमी हुई हैं, लोगों को सावधानी बरतने के लिए कहा गया है। पीयूष मिश्रा गाजियाबाद से हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पीयूष, जरा गाजियाबाद की तस्वीरें दिखाइए, कुछ राहत मिलती दिख रही है या फिर आफत का दौर जारी है?
2: एक राहत जरूर मिलती हुई नजर आ रही है मानसू, जिसमें हल्की सी जो बारिश है उसकी जो इंटेंसिटी है वो थोड़ी कम हुई है और इसीलिए आप देख रहे होंगे कि इस वक्त मैंने छाता हटा दिया। हालांकि बूंदाबांदी हो रही है लेकिन इस लगातार हो रही बारिश की वजह से जो सड़कें हैं उनकी हालत बहुत बेकार है, बद से बदतर स्थिति होती ही जा रही है। उसका कारण ये है कि जो नाले हैं वो पूरी तरह से जाम हो चुके हैं, नाले का पानी सड़कों पर आ गया है, सड़कों के दोनों तरफ आप देख सकते हैं कि ये जो गंदा पानी है वो सड़कों पर बह रहा है। हालांकि बारिश फिलहाल कम हो रही है लेकिन उसके बावजूद जल भराव कम नहीं हुआ है। आप देखिए, एक बारिश और सड़कों का हाल देखिए, सड़कें जो है वो भी टूट के बिखर चुकी हैं। देखिए सड़कों पर गिट्टियां फैली हुई हैं, क्यों? क्योंकि बारिश हुई, गाड़ियां चली और गिट्टियां फैल के यहाँ पर नजर आ रही है क्योंकि सड़कें भी टूट चुकी हैं, गड्ढे हो चुके हैं सड़कों पर और पानी लबालब भरा हुआ है। लोगों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लंबे लंबे ट्रैफिक जाम यहाँ पर नजर आ रहे हैं। साथ साथ लगातार हो रही बारिश की वजह से वाटर लॉगिंग गाजियाबाद के कई इलाकों में देखने को मिला है। ना सिर्फ रिहायशी इलाकों के पास स्थिति है बल्कि जो मेन नेशनल हाईवे है जो अक्षरधाम से होता हुआ मेरठ और हरिद्वार उत्तराखंड की तरफ जाता है, वहां पर भी पानी घुटनों से ऊपर तक भर चुका है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से ये जो अथॉरिटीज हैं उनका पूरी तरह से फेलियर है कि एक तरफ जहां हाईवे पर पानी भरा हुआ है वहीं दूसरे रिहायशी इलाकों में जो नाले हैं वो उनमें सफाई नहीं होने की वजह से वो जो गंदा पानी है वो सड़कों पर आ चुका है और इस वजह से लोगों को खासी दिक्कतों का।
0: लेकिन असर किस पे पड़ता है पीयूष? असर पड़ता है आम जनता पर जो घरों से बाहर निकल जाते हैं, इन गड्ढों में फंस जाते हैं और बारिश की वजह से परेशान होते हैं। एक बार फिर से आपको वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं गाजियाबाद, जहां से अभी पीयूष रिपोर्टिंग कर रहे थे, बता रहे थे। गाजियाबाद की तस्वीरें आपने देख ली, नोएडा सेक्टर 75 की तस्वीर देख लीजिए, 75, 76, 77 आप लाइन से आगे बढ़ जाइए, हर जगह इसी तरह से पानी के हालात हैं, जगह जगह पानी भरा हुआ है। और जबकि यहां पर बहुत अच्छा स्पेस है, खुला हुआ है, लेकिन उसके बावजूद पानी यहां पर भरा हुआ है। शिवानी हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई है, शिवानी से भी बात कर लेते हैं। शिवानी, आप जहां पर मौजूद हैं वो जगह कौन सी है और कितना लोगों को परेशान कर रही है ये बारिश?
3: देखिए हिमांशु, मैं इस वक्त सेक्टर 16 फिल्म सिटी में मौजूद हूं। मेरे कैमरा पर्सन अजय कुमार दिखाएंगे कि किस तरह से यहां सड़कें लबालब पानी से भरी हुई हैं, लोगों को बेहद मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। खासतौर पर जो दफ्तर आने वाले लोग हैं, स्कूल जाने वाले बच्चे हैं जिन्हें बाहर निकलना ही है, उनके लिए ये बारिश आफत बनकर आई है। और इससे ये भी पता चल रहा है हिमांशु कि दो दिन की बारिश में नोएडा का ये हाल है, तमाम अलग अलग जगहों पर जलभराव है, नालियां साफ नहीं की गई थी। तो ये तैयारी दिखाई दे रही है कि नोएडा प्रशासन ने कितनी तैयारी की थी। जाहिर तौर पर रेड अलर्ट जारी किया गया है दिल्ली NCR के लिए और तमाम अलग अलग जगहों पर पानी भरा हुआ है, लोग मशक्कत से अपने ऑफिसों को जा पा रहे हैं और गंदगी है, ये जो पानी भरा हुआ है ये गंदा पानी है, ये नालियों और सीवर का पानी है जो सड़क में आ गया है। तो ट्रैफिक की व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है, लोगों के लिए बीमारियों का सबब बना हुआ है, मुश्किलें हो रही हैं। बहुत हाई राइज सोसाइटीज़ में भी इसी तरह का जो पिक्चर्स हैं वो सामने आ रही हैं, बेसमेंट्स में पानी भर गए हैं, सड़कों पर पानी भरा हुआ है हिमांशु। तो जगह जगह नोएडा भी इस बारिश को राहत की तरह नहीं ले पा रहा है। हालांकि इंतजार किया जा रहा था कि बारिश आएगी तो जो गर्म और तपिश वाला मौसम था उससे राहत मिलेगी, लेकिन अब ये लग रहा है कि ये बारिश।
0: बिल्कुल शिवानी, जगह जगह खतरा बना हुआ है क्योंकि जैसा आपने जिक्र किया कई जगह सोसाइटी के बेसमेंट में पानी भर गया है, लोगों को बहुत परेशानी हो रही है, खतरा भी बना हुआ है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। गुजरात की बात कर लेते हैं। गुजरात के सूरत शहर में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। शहर का तटीय इलाका इस समय पूरी तरह से जलमग्न हो गया है जिससे स्थानीय निवासियों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और इसी बीच सरथाड़ा इलाके 92 साल के बुजुर्ग का रेस्क्यू किया गया, JCB की मदद से बुजुर्ग को निकाला गया और उन्हें अस्पताल भेजा गया। सूरत में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। देखिए ये वो तस्वीरें देखिए शहर में, देखिए 9 लोगों की मौत हो गई है लेकिन लोगों को बचाने की कोशिशें जारी है। बुजुर्गों को कैसे रेस्क्यू किया गया ये इन तस्वीरों में दिखाई दे रहा है।
4: मौसम विभाग ने दक्षिण गुजरात के वापी, वलसाड़, तापी और नवसारी में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया हुआ है। इन जिलों को छोड़कर गुजरात में आज बारिश नहीं होने की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। खास करके बीते 24 घंटों की बात करें तो 60 जितने तालुकाओं में राज्य के बारिश हुई है। इसके अलावा अगर बात करें तो सूरत, जहाँ बीते 24 घंटों में बारिश रुकी जरूर से है लेकिन 24 घंटों के पहले सूरत में जो मूसलाधार बारिश हुई उसके बाद अब नुकसान की तस्वीरें सामने आ रही है। कई सारे बेसमेंट जो कि जलमग्न थे, वहां से जो भी दुकानदार हैं अपने सामान बाहर निकाल रहे हैं और अलग अलग कॉम्प्लेक्सेस की अलग अलग दुकानों में लाखों करोड़ों की नुकसान की बात और दावे किए जा रहे हैं।
0: अब ये रिपोर्ट देश की राजधानी से है जहां भारी बारिश की वजह से रोहिणी इलाके में एक इमारत गिर गई, 3 लोगों की मौत हो गई। रोहिणी सेक्टर 16 की यह घटना है और मंगलवार शाम करीब 4 बजे निर्माणाधीन बहुमंजिला इमारत अचानक गिर गई। हादसे के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। आशंका है कि कई लोग अब भी मलबे में नीचे दबे हो सकते हैं। मौके पर NDRF, दिल्ली फायर सर्विस और दिल्ली पुलिस की टीमें लगातार राहत और बचाव अभियान चला रही हैं।
5: दिल्ली में बीते 24 घंटे से लगातार हो रही बारिश की वजह से एक बड़ा हादसा हो गया। 7 जुलाई को लगभग 4:30 बजे दिल्ली पुलिस को जानकारी मिली कि रोहिणी के सेक्टर 16 इलाके में एक 4 मंजिला इमारत भरभराकर गिर गई है। दिल्ली पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, फायर डिपार्टमेंट की टीम मौके पर पहुंची तो पता चला कई लोग मलबे में दबे हुए हैं। उसके बाद NDRF की टीम को बुलाया गया। मलबे से एक विचलित करने वाली तस्वीर भी सामने आई, एक शख्स हाथ निकालकर खुद को बचाने की गुहार लगा रहा था। गनीमत ये रही कि कि उस शख्स को जिंदा बाहर निकाला गया। तकरीबन 12 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, 4 लोगों को उसमें से निकाला गया, जिनमें इलाज के दौरान 3 लोगों की मौत हो गई। बिल्डिंग मालिक के पिता की भी इस हादसे में मौत हो गई है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि इस मामले में FIR दर्ज कर जांच की जा रही है।
0: अब 12 बजे 12 रिपोर्टर में अगली बड़ी खबर उत्तराखंड से। उत्तराखंड में मॉनसून की एंट्री होते ही प्रदेश भर में भूस्खलन हो रहे हैं, सड़कें बंद हो रही हैं। टिहरी जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 707A पर बुधवार शाम भूस्खलन से 2 रेस्टोरेंट खतरे की जद में आ गए। एक पुराना खाली भवन भी क्षतिग्रस्त हो गया। जगह जगह पहाड़ दरकने से उत्तराखंड में 4 राजमार्ग समेत 70 सड़कें बंद हैं। मौसम विभाग ने आज और कल बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। उधम सिंह नगर, नैनीताल, चंपावत में बहुत ज्यादा भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया। देखिए बर्बादी, तबाही।
6: ये देखो भाई लोग, ओह माय गॉड, पीछे रहो यार भाई।
2: मतलब खम्बे निकलेंगे तो।
0: और अब बात करते हैं राम मंदिर चढ़ावा चोरी की। SIT आज फिर अयोध्या पहुंच सकती है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और इसी बीच गिरफ्तार आरोपियों से कई खुलासे हुए हैं। चंदा चोरी के पैसे को ये लोग अपने रिश्तेदारों के खातों में भेजते थे और अब पुलिस ने ऐसे 30 खातों को फ्रीज कर दिया है जिन पर शक था। तो चोरी के पैसों को रिश्तेदारों के अकाउंट में भेजते थे, क्यों? वाइट करना है, बाद में अपने खातों में ट्रांसफर करा लेते थे। बहुत शातिर थे। कुछ आरोपित खुद परिजनों का अकाउंट हैंडल भी करते थे। परिजनों को पैसों की हेरा फेरे की जानकारी ही नहीं थी कि क्या हो रहा है उनके अकाउंट से। अविनाश शुक्ला का भाई अभिषेक सच जानता था। अविनाश शुक्ला जैसे पूछताछ की जा रही है। अब जब अभिषेक शुक्ला भी पुलिस की अब दायरे में आ गया है, क्योंकि जांच तो की जा रही है। पुलिस ने अभी तक 30 बैंक अकाउंट फ्रीज किए हैं जो इस काम में शामिल थे।
7: अनुकल्प, करुणेश और लवकुश, अयोध्या चंदा चोरी के वो 3 आरोपी जो इस वक्त पुलिस रिमांड में हैं, उन्होंने कई राज उगले हैं। अपने पैसे को, काले धन को सफेद करने के लिए अपने ही रिश्तेदारों के बैंक खातों का उनके द्वारा इस्तेमाल किया गया, जिससे मंदिर से चुराया गया पैसा वो सही दिखा पाए और किसी को सोर्स ऑफ इनकम नहीं पता लग पाए। अब पुलिस बैंक तक भी पहुंची है और खंगाले हैं उनके अकाउंट्स, जिसमें इस बात से साफ हुआ है, जिसके बाद पुलिस ने उन्हीं के 30 रिश्तेदारों के बैंक अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया है। उनके कई ऐसे भी रिश्तेदार हैं जिनको इस बारे में मालूम ही नहीं था कि ये चंदा चोरी का पैसा उनके ही अकाउंट में सफेद किया जा रहा है। बड़ी बात यह भी है कि कई जगह पुलिस उन्हें लेकर गई है और आज भी कई जगह लेकर जा सकती है जहां उन्होंने कैश और ज्वेलरी, चुराया हुआ कैश और ज्वेलरी छुपाया था। इसी बीच में SIT फाइनल रिपोर्ट देने से पहले एक आखिरी बार अयोध्या दस्तक दे सकती है और कुछ और गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं।
0: चलिए अब बात बिहार की करते हैं। पटना की बांकीपुर सीट पर उपचुनाव हो रहा है और आज बीजेपी उम्मीदवार अभिषेक कुमार बंटी अपना नामांकन दाखिल करेंगे। RJD उम्मीदवार रेखा गुप्ता भी आज पर्चा भरेंगी, जबकि जन स्वराज उम्मीदवार प्रशांत किशोर 13 जुलाई को नामांकन दाखिल करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफे से यह बांकीपुर सीट खाली हुई है, बीजेपी के लिए साख का सवाल है। तो वहीं विपक्ष भी पूरी ताकत लगा रहा है कि यह सीट बीजेपी से छीन ली जाए।
8: पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट के लिए हो रहे उपचुनाव में आज 2 उम्मीदवारों का नामांकन हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार बनाए गए अभिषेक सिन्हा बंटी अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं, साथ ही साथ RJD उम्मीदवार रेखा गुप्ता का भी नामांकन आज हो रहा है। प्रशांत किशोर ने पहले ही इस सीट से अपनी दावेदारी पेश की है। अब जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक प्रशांत किशोर 13 जुलाई को यानी नामांकन दाखिल करने के आखिरी दिन अपना पर्चा भरेंगे। बांकीपुर विधानसभा सीट बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है, क्योंकि यहीं से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन विधायक हुआ करते थे और उनके इस्तीफे के बाद इस सीट पे उपचुनाव हो रहा है। वहीं प्रशांत किशोर ने अपनी चुनौती पेश करके यहां की लड़ाई को दिलचस्प बना दिया है।
0: और अब बात सोनम रघुवंशी की जमानत की करते हैं। हनुमान पर पति की हत्या की आरोपित सोनम ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर खुद को निर्दोष बताया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सोनम ने कहा कि उसे फंसाया गया। सोनम की जमानत पर अब मंगलवार को सुनवाई होगी। सोनम पर पति की हत्या का आरोप है। अब सोनम की जमानत पर मंगलवार को सुनवाई होगी और सोनम का कहना है कि उसे फंसाया जा रहा है। राजा रघुवंशी मर्डर केस में फंसाया जा रहा है मुझे, ये सोनम ने हलफनामे में कहा। सिर्फ काल्पनिक आशंका पर आरोपों का जाल बुन दिया गया है। सिर्फ आरोपों के आधार पर दोषी नहीं माना जा सकता। बारह बजे बारह रिपोर्टर में बात अब करेंगे डिप्लोमेसी की। पीएम मोदी ऑस्ट्रेलिया दौरे पर हैं। आज उन्होंने मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में शिरकत की है और उसके बाद दोनों देशों के नेताओं की द्विपक्षीय बैठक हुई जिसमें दोनों देशों के बीच रक्षा, व्यापार, निवेश, ऊर्जा, शिक्षा, साइबर सुरक्षा, स्पेस और महत्वपूर्ण खनिज सहित कई क्षेत्र में अहम समझौते हुए हैं।
9: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेलबर्न दौरे ने कई मायनों में भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्तों को नई ऊर्जा दी है, क्योंकि 2015 से अटका हुआ यूरेनियम आपूर्ति का समझौता अब रफ्तार पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। इसके तहत दुनिया में 28% यूरेनियम का भंडार रखने वाला ऑस्ट्रेलिया भारत के परमाणु संयंत्रों के लिए यूरेनियम की आपूर्ति करेगा। इसके अलावा भारत और ऑस्ट्रेलिया ने अपने आर्थिक रिश्तों के साथ साथ अपने सामरिक संबंधों को भी मजबूत करने का ऐलान किया है। इसके तहत दोनों देश रक्षा उत्पादन और साथ साथ दोनों देशों की सेनाओं के बीच आपसी साझेदारी को भी मजबूत करेंगे। इसके साथ ही पहलगाम और बांडी बीच जैसे आतंकी हमलों को झेल चुके दोनों देश आतंकवाद और कट्टरपंथ के खिलाफ भी लड़ाई को साझा तौर पर लड़ेंगे।
0: और अब बात वेस्ट एशिया की करेंगे। अमेरिकी सेनाओं ने एक बार फिर से ईरान पर हमला किया। ईरान के कई शहरों और द्वीपों पर अमेरिकी सेना ने ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक की है। ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर अमेरिका ने बम बरसाए। अमेरिकी फाइटर जेट्स ईरान को दहला रहे हैं। 90 से अधिक हमले ईरान पर अभी तक हुए हैं और इन हमलों में ईरान सरकार के कई कर्मचारियों के मारे जाने की भी खबर है। तो एक बार फिर से युद्ध की आहट है। 2 हफ्ते का संघर्ष विराम और अब फिर से जोरदार संग्राम।
10: ईरान और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। कल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी थी कि बीती रात जो गुजरी है उसमें और हमले होंगे ईरान पर और ऐसा ही कुछ हुआ और पिछले कुछ दिनों के दौरान ये तनाव लगातार बढ़ रहा है और इसका दायरा भी बढ़ रहा है। पहले दिन हमने देखा कि अमेरिका की तरफ से मात्र जो है दक्षिणी ईरान के उन तटों पर हमला किया गया जहां से अमेरिका का आरोप था कि जहाज़ों पर ईरान की आईएसआई हमला कर रही है, लेकिन कल बीती रात जो हमले हुए हैं उनमें न सिर्फ उत्तरी ईरान बल्कि दक्षिणी ईरान के सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी अमेरिका ने बमबारी की है, जिसमें 2 रेलवे पुल भी उड़ाए गए और साथ ही साथ कई सारे इलाकों में बिजली के ट्रांसमिशन स्टेशन्स को भी निशाना बनाया है। तो जाहिर है कि इससे जो है काफ़ी गुस्साया है ईरान और ईरान की तरफ से जो जवाबी कार्रवाई हुई है वो भी अब अमेरिका के अलग अलग बेसिस में न सिर्फ बहरीन और कुवैत में बल्कि साथ ही साथ अब जॉर्डन में भी अमेरिकी बेस पर ईरान ने जवाबी कार्रवाई की है। लेकिन दूसरी तरफ जिस अंदाज से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान आया है कि उनको एक बार फिर ईरान की तरफ से गुहार लगाई जा रही है कि वो डील करें, तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं संकेत यही आ रहा है कि दोनों देश फुल स्केल वार नहीं चाहते हैं।
0: और 12 बजे 12 रिपोर्टर में अगली रिपोर्ट अफगानिस्तान से। पाकिस्तान और तालिबान के बीच तनाव चरम पर है। आज तक पहुंच गया है अफगानिस्तान की डोरंड रेखा पर जहां तालिबान के सैनिक हथियारों से लैस होकर 2600 किलोमीटर लंबी और मुश्किल डोरंड लाइन पर आक्रामक रूप से गश्त कर रहे हैं।
11: आज तक की टीम पहुंची है ड्यूरेंट लाइन पे। ड्यूरेंट लाइन नाम आपने बहुत सुना होगा, पाकिस्तान अफगानिस्तान कन्फ्लिक्ट हुआ और हर कोई ड्यूरेंट लाइन की बात करता है। आज हम आपको दिखाएंगे ड्यूरेंट लाइन और इस वक्त हम हैं शमखनी जो कि ड्यूरेंट लाइन का ही इलाका है और मेरे आसपास जैसे आप देख रहे होंगे तालिबान के जो जवान हैं यहाँ पैनी नज़र बनाए हुए हैं। मैं कैमरन को बोलूँगा इस तरफ आपको दिखाएगा। ये ड्यूरेंट लाइन का एक हिस्सा है। 2600 किलोमीटर लंबा ये बॉर्डर है और एक ऐसा बॉर्डर है जिसकी कोई मिसाल पूरे दुनिया में नहीं होगी क्योंकि पहाड़ों के बीच से और बहुत खतरनाक टोपोग्राफी है। इसको जो है पूरी तरह बंद करना तकरीबन नामुमकिन है। पाकिस्तान ने कोशिश की, फेंसिंग की, लेकिन तब भी वो पूरे इलाके को बंद नहीं कर पाए। हरमन को बोलूंगा आपको दिखाएगा, ये पूरा इलाका जो है ये ड्यूरेंट लाइन का इलाका है। ये सबसे टेंस अगर जो विश्व की इस वक्त सरहदें हैं उनमें से एक है, और मेरे आसपास आप देख रहे हैं तालिबान के जवान हैं, नजर बनाए हुए हैं। हम यहाँ आए तो साफ तौर पे काफ़ी ज़्यादा टेंशन है यहाँ पे, और जो कन्फ्लिक्ट हुआ है और जो लगातार एरियल स्ट्राइक्स हैं बॉर्डर पे, जो पाकिस्तानी आर्मी ने गोलीबारी की है, तालिबान ने उसका जो है मुंहतोड़ जवाब दिया है, और काफ़ी टेंशन है। लेकिन तालिबान के जवान जो हैं, जिसको आप कहेंगे लॉक्ड एंड लोडेड हैं, यानी कि तैयार हैं अगर कोई भी एग्रेशन होता है उसका जवाब देने को।
0: और चलिए बात कर लेते हैं अब क्रिकेट की। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज का आज चौथा मुकाबला खेला जाएगा। ब्रिस्टल के काउंटी ग्राउंड में यह मैच होगा। भारतीय टीम के लिए मुकाबला बहुत अहम है, क्योंकि आज हारे तो सीरीज गवा बैठेंगे लगातार दूसरी। सीरीज में बने रहने के लिए आज जीत जरूरी है।
12: इंग्लैंड के खिलाफ खेली जा रही 5 मैचों की T20 सीरीज में भारतीय टीम लगातार 2 मैच हारकर पीछे चल रही है, और आज चौथा मुकाबला ब्रिस्टल में खेला जाना है, जो कि भारतीय टीम के लिए करो या मरो वाला है, क्योंकि अगर आज हार मिली तो भारतीय टीम इंग्लैंड की धरती पर हार जाएगी सीरीज। कोच गौतम गंभीर और कप्तान श्रेयस अय्यर की सबसे बड़ी जिम्मेदारी भारतीय बल्लेबाजों को रंग में लाने का होगा, और साथ ही साथ ये भी देखना होगा कि क्या आज कोई बदलाव हो सकता है। वैभव जरूर अंदर आए थे, संजू सैमसन बाहर बैठे थे, लेकिन अभिषेक शर्मा, श्रेयस अय्यर, तिलक वर्मा, अक्षर पटेल, शिवम दुबे, इन सब के कंधों पर जिम्मेदारी होगी अच्छा बैटिंग प्रदर्शन करने का, क्योंकि सबसे बड़ा संकट ही इस वक्त भारतीय टीम का बैटिंग लाइनअप है। अब देखना काफी दिलचस्प होगा कि बाकी के बचे 2 मैचों में भारतीय टीम जीत दर्ज कर पाती है या फिर निराशाजनक प्रदर्शन और मायूसी लेकर वापस आती है। उम्मीद यही की जानी चाहिए कि आज का दिन भारतीय टीम के नाम होगा।
0: और यहां रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।
13: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से। एकजे द नंबर वन। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा। एकजे द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया।

0: देख इतना बड़ा आदमी मुझे इन्वेस्टमेंट टिप्स दे रहा है।
1: अच्छा सिर्फ तुझे ही दे रहा है?
0: अर्ज किया है दूर से लगा कि एक जाना पहचाना चेहरा हंसकर सच कह रहा था, पास जाकर देखा तो झूठे वीडियो के जाल में मैं फंस रहा था। सेबी और एनएससी का कहना है किसी भी वीडियो में पलके और लिप सिंक पर ध्यान दे, सिर्फ ऑथराइज्ड सोर्सेज पे ही विश्वास करें। वाह
2: सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर।
3: एनएससी द्वारा निवेशकों के हित में जारी।
4: पापा
5: सॉरी यार गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
6: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
5: छक्का?
6: सब कैशलेस हो गया है।
5: ओले ला भाई मेरा बैट, वो अभी तो ठीक हुआ तू।
7: बिल्कुल चार्ज हुआ यार।
8: ओले बैट किसका है?
9: टाटा AIG है तो भरोसा है।
10: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
11: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
12: सोच बदलो और बैंक भी।
13: जब बात हो रस चूसक कीटों से फसल सुरक्षा की तो हर असली हीरो चुनता है जिवोरा। जिवोरा सफलता का शंखनाद।
14: हमने तब भी सवाल किया था,
15: दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में हुए कोचिंग हादसे पर दिल्ली हाई कोर्ट ने आज खूब फटकार लगाई है।
14: हम आज भी सवाल करते हैं,
15: लखनऊ में भी दर्दनाक हादसे में 15 लोग इसीलिए मारे गए क्योंकि नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। दिल्ली जैसा हादसा लखनऊ में हो गया और लखनऊ जैसे हालात कभी भी दिल्ली में बन सकते हैं।
14: ऑपरेशन अग्नि,
15: आज तक के स्टिंग ऑपरेशन में हमने आपको दिखाया कि बेसमेंट में नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, कोचिंग और लाइब्रेरी चलाई जा रही है। आग लगने की स्थिति में अगर ये बंद हो जाए तो फिर अंदर फंसे लोग कैसे निकलेंगे।
14: आज तक के स्टिंग में सामने आई चौंकाने वाली सच्चाई। खबरदार सिर्फ आज तक पर।
16: In association with, presented by, पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। Acoj, the number one Korean skincare brand, now in India.

0: आइए आपको लिए चलते यूपी एक्सप्रेस वे पर। अयोध्या चढ़ावा चोरी केस में एसआईटी की तीसरी विजिट की तैयारी, अंतिम रिपोर्ट में पहले हो सकती है और गिरफ्तारियां। अयोध्या चढ़ावा चोरी केस में बड़ा एक्शन, 30 बैंकों के खाते फ्रीज, आरोपियों और परिजनों के खातों में मिले संदिग्ध ट्रांजैक्शन। अयोध्या चढ़ावा चोरी केस में बैंक की भूमिका पर एसआईटी ने उठाए सवाल, जांच के घेरे में बैंक अधिकारी और कैश काउंटिंग से जुड़े कर्मचारी। अयोध्या मामले में अखिलेश यादव ने एसआईटी पर उठाए सवाल, बोले लीपा पोती कर रही है एसआईटी, कहा जांच टीम के एक सदस्य पर भी 420 का मुकदमा। अखिलेश यादव का आरोप, अयोध्या मामले को बताया दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई, बीजेपी में कथित अंदरूनी कलह का किया दावा। अखिलेश यादव का बड़ा बयान, राम मंदिर चंदा मामले पर घेरा बीजेपी को, बोले छोटे लोगों पर कार्रवाई, बड़े लोगों पर क्या हुआ पता नहीं। लखनऊ में अखिलेश यादव ने की शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद से मुलाकात, एसपी प्रमुख ने मुलाकात के बाद कई मुद्दों पर रखी अपनी बात। चंदा चोरी के आरोपों को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा अखिलेश का परिवार रामद्रोही, 2027 में सपा का सूपड़ा साफ हो जाएगा। राम मंदिर ट्रस्ट विवाद के बीच गोपाल राव का बड़ा बयान, बोले मैं यहीं रहूंगा, बर्खास्तगी की खबर गलत। अयोध्या में गोविंद देवगिरी का बड़ा बयान, बोले चंपत राय से मुलाकात हुई, उनके मन में कोई नाराजगी नहीं। मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा की हाईटेक निगरानी, एआई से रखी जाएगी नजर, फेस डिटेक्शन और क्राउड रीडिंग से लैस 2500 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। मेरठ ललिता गौतम हत्याकांड के प्रदर्शन मामले में 13 पर मुकदमा दर्ज, पुलिस से झड़प और भ्रामक पोस्ट के आरोप में 7 गिरफ्तार। गोरखपुर में जमीन विवाद में युवक की हत्या, आरोपित गिरफ्तार, ट्रैक्टर खड़ा करने को लेकर विवाद, धारदार हथियार से हमला किया। गाजियाबाद में नशे के कारोबार पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, कफ सिरप तस्करी मामले में 2 आरोपित गिरफ्तार। वाराणसी में गंगा में डूबते युवक को एनडीआरएफ ने बचाया, डांडी घाट पर जवानों ने दिखाई बहादुरी।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से। एकजे द नंबर 1 कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया।
0: तो यूपी एक्सप्रेसवे के बाद आगे बढ़ते हैं। अयोध्या के चोरी मामले में आज एक बड़ी खबर आई है, वो आपको बता दें बड़ी खबर, राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में जल्द ही कुछ और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। ये बड़ी खबर आ रही है, अब तक किस मामले में 8 आरोपित गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन अब सूत्र बता रहे हैं कि जल्द ही कुछ और गिरफ्तारियां होने वाली हैं। इससे पहले चोरी कांड की जांच कर रही 3 सदस्यों वाली एसआईटी एक बार फिर अयोध्या दौरे पर आने वाली है, अंतिम रिपोर्ट सौंपने से पहले एसआईटी का यह बहुत महत्वपूर्ण अयोध्या दौरा होने वाला है।

0: अयोध्या चोरी कांड में चोर पकड़े गए, चढ़ावा चोरी कांड में बैंक कर्मी पकड़ा गया, अयोध्या चोरी कांड में चोरों का सुपरवाइजर पकड़ा गया, अयोध्या चोरी कांड में 30 बैंक खाते सीज किए गए। लेकिन अब इस चोरी कांड के सरगना तक पहुंच सकती है एसआईटी।
1: अयोध्या चंदा चोरी प्रकरण में अब वो तारीख नजदीक आ रही है जब एसआईटी अपनी फाइनल रिपोर्ट यूपी सरकार को सौंपने जा रही है। लेकिन उससे पहले एक आखिरी बार एसआईटी की टीम अयोध्या दस्तक देने वाली है, और ये दस्तक आम नहीं है। इस दस्तक में कुछ और गिरफ्तारियां हो सकती हैं, इस दस्तक में कुछ और अकाउंट्स खंगाले जा सकते हैं, और कुछ और बड़े चेहरों की पूछताछ भी हो सकती है जो ट्रस्ट से जुड़े रहे हैं, जिन्होंने गड़बड़ियां की हैं या अभी तक की जांच में जो बचते नजर आए हैं। ये निर्णायक मूवमेंट एसआईटी का इस फाइनल रिपोर्ट में कहीं ना कहीं इस जांच की दशा और दिशा तय करता हुआ दिखाई पड़ेगा।
0: अब तक की जांच में एसआईटी के पास कई और अहम तथ्य और सबूत मिल चुके हैं। मंदिर से बैंक तक और बैंक से आरोपियों के घर तक हुई तलाशी में मिले तथ्य और सबूतों के बाद मिलीभगत का दायरा बड़ा होता दिख रहा है। यही वजह है कि चोरी कांड में और आरोपियों की गिरफ्तारी का खतरा बढ़ गया है। ये ताजा घटनाक्रम तब सामने आया जब अयोध्या पुलिस ने लवकुश मिश्रा, अनुकल्प मिश्रा और करुणेश पांडे से पूछताछ में कई अहम तथ्यों और सबूतों का पता लगाया है। अयोध्या पुलिस ये भी जांच कर रही है कि क्या कांड सिर्फ दान के कैश की हेरा फेरी तक सीमित था या फर्जी रसीद के जरिए भी पैसे वसूले गए थे। आरोपियों ने उस दान की रकम से कैश या डिजिटल पेमेंट के जरिए प्रॉपर्टी या दूसरी संपत्तियां खरीदी थी, इसकी भी जांच चल रही है। आरोपियों ने बताया कि चोरी की रकम अपने करीबियों और रिश्तेदारों को भेजते थे और उनसे अपने खातों में रकम ट्रांसफर करवाते थे ताकि रकम का स्रोत छिपा रहे और शक न हो। बैंक डिटेल से इसकी पुष्टि भी हुई है। खबर ये भी है कि आरोपियों ने माना है कि उन्होंने चोरी की और टिन्नू और गणना इंचार्ज सुभाष श्रीवास्तव की मिलीभगत होने से रकम पार करने में कभी कोई दिक्कत भी नहीं हुई। आरोपियों ने यह भी माना कि उन्हें पता था कि वे पकड़े नहीं जाएंगे, इसीलिए वो बेफिक्री से चोरी करते रहे। कोशिश होती थी कि एक बार में ज्यादा से ज्यादा रकम बाहर ले जाएं। यूपी पुलिस फिलहाल लवकुश, अनुकल्प और करुणेश नाम के तीन आरोपियों को रिमांड पर लेकर जांच कर रही है। लेकिन सीएम योगी ने कहा कि चढ़ावा गिनती में शामिल 150 लोगों में सिर्फ 6 चोर और कुल 8 आरोपी ही मिले हैं।
2: लगभग 150 लोग अयोध्या में जो मंदिर में चढ़ावा आता है उसकी काउंटिंग में है, और जो प्रमाण मिले केवल 6 लोग इसमें चोरी करते हुए पाए गए। कुल 6 लोग, 2 लोग उसमें साजिश का पार्ट थे, यानी कुल 8 लोग। फिर इसमें पूरे ट्रस्ट को बदनाम करने, पूरी अयोध्या पर उंगली उठाने, प्रभु श्री राम की विरासत को अपमानित करने का औचित्य कहां से होता था।
0: हालांकि अभी एसआईटी की जांच पूरी नहीं हुई है, पुलिस की जांच अभी शुरू ही हुई है। लेकिन यूपी सरकार 8 आरोपियों के सिर ही पूरे कांड का ठीकरा फोड़ने की कोशिश में दिख रही है। एसआईटी और पुलिस दोनों की जांच अभी जारी है। सूत्रों का कहना है कि फाइनल रिपोर्ट में घटनाओं के क्रम को विस्तार से बताया जाएगा, संस्थागत और व्यक्तिगत कमियों की पहचान की जाएगी, कथित साजिश का ब्यौरा दिया जाएगा और आगे कानूनी और प्रशासनिक कार्रवाई की सिफारिश की जाएगी। समर श्रीवास्तव, अयोध्या आज तक।
3: तो अयोध्या के चढ़ावा चोरी केस में सरकार जांच का हवाला दे रही है, पुलिस की अपनी तफ्तीश चल रही है, एसआईटी की अपनी पड़ताल चल रही है। एसआईटी की रिपोर्ट आने में हफ्ते भर का और वक्त है, लेकिन पुलिस की जांच अपनी गति से चल रही है और उसकी चार्जशीट में न जाने कितना वक्त लगेगा। लेकिन उससे पहले एसआईटी जांच को लेकर बहुत से सियासी सवाल उठाए जा रहे हैं।
4: हम जब मुख्यमंत्री रहेंगे तब तक हमारी लाश पर भी मस्ती नहीं कराई जाएगी।

0: データコネカミヤムソースはわかなーれなえが
1: अयोध्या के राम मंदिर में चोरी क्या हुई, सियासी अदावत में राम की भक्ति वाले तारीख के पन्ने और राम से द्रोह वाले गड़े मुर्दे उखाड़े जाने लगे, समाजवादी पार्टी आस्था को ठेस, नैतिकता के पतन और जिम्मेदारी से मुंह चुराने के आरोप बढ़ रही है, तो बीजेपी राम द्रोह की राजनीति के पन्ने पलट रही है।
0: बाबरी मस्जिद पर कोई परिंदा पर नहीं मार सकता।

0: बीजेपी के सोशल मीडिया हैंडल्स पर समाजवादी पार्टी नेताओं के ऐसे पुराने बयान और अयोध्या कांड की तस्वीरें लगातार पोस्ट की जा रही हैं।
1: कि सरकार कुर्बान कर सकते हैं, लेकिन हम जब मुख्यमंत्री रहेंगे तब तक हमारी लाश का भी मस्ते नहीं कराई जाएगी।
2: वहाँ जो घटना घटी है उसकी SIT भी और FIR कर जांच करने का काम कर रही है, जांच का इंतजार करिए।
3: अटल बिहारी वाजपेयी जी ने खुद कहा कि राम मंदिर बाबरी मस्जिद का जो विध्वंस है वो एक हमारी गलती थी और उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ।
0: दरअसल ये सियासी तलखी इसलिए बढ़ती जा रही है क्योंकि एक तो समाजवादी पार्टी राम मंदिर में चोरी के भंडाफोड़ का दावा कर रही है, ऊपर से चोरी की जांच को लेकर भी लीपापोती के सवाल खड़े कर रही है।
4: उनके ऊपर FIR
5: भाई SIT क्या है? लीपापोती SIT किससे मनाई है? और सुनने में आया कि SIT में भी सवाल खड़े हो गए हैं। SIT में जो कोई सदस्य है उन पे 420 का मुकदमा है। अब बताइए वही रहेंगे SIT में?
0: दरअसल समाजवादी पार्टी सवाल उठा रही है कि SIT के 3 सदस्यों में से एक विजय विश्वास पद के ऊपर पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम में रहते हुए धोखाधड़ी और सरकारी दस्तावेज में हेरफेर के आरोप लगे हैं, जिसकी क्राइम ब्रांच से जांच चल रही है। इसके अलावा कांग्रेस आरोप लगाती है कि कुंभ में भगदड़ के दौरान भी यही अफसर वहाँ प्रभारी अधिकारी थे। अब अखिलेश यादव का आरोप है कि अयोध्या कांड में दरअसल बैठाई गई जांच बीजेपी के दिल्ली और लखनऊ चैप्टर की अंदरूनी सियासत है।
5: ये लड़ाई बड़ी है, आप नहीं समझ पा रहे हो, ये दिल्ली लखनऊ की लड़ाई है। दिल्ली वाले अगर जांच करते तो ED, CBI, इनकम टैक्स करते।
0: अखिलेश का कहना है कि SIT जांच कराकर CM योगी ने राम मंदिर पर ऊपरी नियंत्रण को चुनौती दी है और इसमें असली चोरों को पकड़ने के बजाय लीपापोती की कोशिश हो रही है।
6: इस प्रकार के उलूल जुलूल बयान दे करके बहुत घटिया हरकत कर रहे हैं और मैं उनसे यही कहूंगा कि इससे वो बाज आवे।
0: बीजेपी का कहना है कि राम मंदिर में चोरी कुछ कर्मचारियों का गुनाह है और इसके लिए ट्रस्ट को चोर कह देना नाजायज है। CM योगी भी हर मंच से यही दावा कर रहे हैं कि चोरों को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कोई भी हो। संतोष शर्मा, लखनऊ आज तक।
7: अयोध्या से आगे बढ़ते हैं और एक बड़े बयान की बात करते हैं। बड़ा बयान, मध्य प्रदेश की तरह उत्तर प्रदेश के वक्फ बोर्ड में भी गैर मुस्लिम सदस्यों को रखा जाएगा। यह बड़ा बयान उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी की ओर से आया है। दानिश आजाद अंसारी ने कहा कि मोदी सरकार के वक्फ संशोधन अधिनियम के मुताबिक अब उत्तर प्रदेश में जो वक्फ बोर्ड बनेगा उसमें पसमांदा मुसलमानों के अलावा गैर मुस्लिम भी सदस्य रखे जाएंगे। UP के मंत्री दानिश अंसारी ने क्या कहा है, सुनिए।
8: केंद्र की मोदी सरकार वक्फ संशोधन अधिनियम लेके आई, जिसके पीछे का मकसद यह था कि वक्फ की संपत्तियों पे को उसका बेहतर रखरखाव हो और उसका बेहतर मैनेजमेंट हो। इसके लिए कई सारे सकारात्मक संशोधन भी किए गए वक्फ संशोधन अधिनियम 2024 के माध्यम से, जिसके तहत नए जो वक्फ की जो टीम बनेगी, जो वक्फ बोर्ड का गठन होगा, उसमें पिछड़े पासमानदा जो मुसलमान है उनका रिप्रेजेंटेशन होगा, जो महिलाएं हैं उनका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, हमारे जो तमाम और भी मुस्लिम समाज के अलग अलग वर्ग है उनका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, हमारे 2 ऐसे सदस्य का भी नॉमिनेशन उसमें होना है जो नॉन मुस्लिम है। तो जो अमेंडमेंट लेके आए, जो प्रावधान केंद्र सरकार लेके आया, उस प्रावधान के अनुसार मध्य प्रदेश में या तमाम जगह प्रस्तावित है बोर्ड का गठन होना और यकीनी तौर पर पारदर्शी व्यवस्था हो, सुचारू रूप से वक्फ का प्रबंधन चले, इस नियत के साथ केंद्र की मोदी सरकार आगे बढ़ रही है।
9: यूपी में भी लागू होना चाहिए? यूपी में भी?
8: वो तो केंद्र की सरकार जब वक्फ संशोधन अधिनियम लेके आई तो उसे पूरा देश उसको लागू करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट भी और यूपी गवर्नमेंट भी। वो अधिनियम को लागू करना ये हर स्टेट के लिए मैंडेटरी है। तो यकीनी तौर पर आने वाले समय में जब उत्तर प्रदेश में भी ऐसे गठन की प्रक्रिया चलेगी तो वक्फ संशोधन अधिनियम के अनुसार जो भी फॉर्मेशन की प्रक्रिया होगी, नियम कायदे कानून होंगे, बायलाज होंगे, उस अनुसार यूपी में भी ऐसा गठन किया जाएगा।
7: अली जैदी इस वक्त सिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हमारे साथ में मौजूद हैं। जैदी साहब, जो फैसला लिया गया है अब जिसमें कहा गया है कि गैर मुस्लिम सदस्य भी वक्फ बोर्ड में रहेंगे। इस फैसले को आप कैसे देखते हैं?
10: देखिए, ये तो जब केंद्र सरकार ने कानून में संशोधन लाई थी, कानून बनाया था नया, उन्होंने ये चीज इस चीज को स्पष्ट कर दिया था। तो अब जो कानून है जो पारित हो चुका है वही जो है नियम है, उस नियम अनुसार जो है बोर्ड का गठन होगा।
7: लेकिन इससे पहले कई सवाल उठते रहे और ये कहा गया है कि इसमें गैर मुस्लिमों को शामिल नहीं होना चाहिए, इस तरह की कई मांग की गई है, मुस्लिम धर्मगुरुओं की तरफ से मांग की गई है।
10: देखिए, मांग क्या की गई है और क्या होना चाहिए और क्या नहीं है तो जो है सरकार तय करेगी, और सरकार कानून बनाने के बाद ये चीज तय कर चुकी है और मामला सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय भी गया था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी दो नॉन मुस्लिम मेंबर्स की लिमिट लगा दी है बोर्ड में, और दो नॉन मुस्लिम मेंबर्स को जो है उन्होंने परमिट कर दिया है। तो यही कानून है और यही माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो है फैसला है, उसको सबको आदर करना चाहिए।
7: नहीं, लेकिन जदी साहब एवा बताइए, जब ये मामला कोर्ट में है तो आपको लगता है कि इस तरह के बयान देने चाहिए?
10: किस तरह के बयान?
7: जिसमें कहा गया कि गैर मुस्लिमों को उसमें जगह दी जाएगी, ये बयान की बात की जा रही है।
10: ये तो कानून बन चुका है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस पर रोक नहीं लगाई है, उसने परमिशन दे दी है कि बोर्ड का यदि नए बोर्ड का गठन हो तो उसमें दो नॉन मुस्लिम मेंबर जो है रखे जा सकते हैं।
7: पारदर्शिता एक बहुत बड़ा मकसद बताया गया है इस फैसले के पीछे, तो आपको लगता है कि अब वक्फ के कामकाज में पारदर्शिता और आगे बढ़ेगी?
10: जी बिल्कुल, होनी चाहिए।
7: शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, ये बहुत स्पष्ट है, अगर ऐसा होता है जैसा कि उत्तर प्रदेश के मंत्री की तरफ से कहा गया, अगर ऐसा होता है तो मध्य प्रदेश के बाद यूपी देश का दूसरा राज्य होगा जो वक्फ बोर्ड में गैर मुसलमान सदस्य रखेगा। क्योंकि आपको बता दें, यूपी में फिलहाल दो वक्फ बोर्ड हैं, सुन्नी वक्फ बोर्ड और शिया वक्फ बोर्ड। दोनों बोर्ड की संरचना कुछ ऐसी है कि दोनों बोर्ड में 11-11 सदस्य होते हैं, जिसमें अध्यक्ष के अलावा मुस्लिम सांसद, मुस्लिम विधायक, मुस्लिम विधान परिषद सदस्य, इस्लामिक विद्वान और मतवल्लियों के प्रतिनिधि होते हैं। इसके अलावा सरकारी अधिकारी सीईओ होता है। यानी अभी की व्यवस्था में गैर मुस्लिम सदस्य वक्फ बोर्ड में नहीं होते हैं, लेकिन वक्फ संशोधन बिल के बाद, नई व्यवस्था के बाद वक्फ बोर्ड में कम से कम दो गैर मुस्लिम सदस्य अनिवार्य हैं। इसके अलावा दो मुस्लिम महिला सदस्य, पसमानदा प्रतिनिधि और सांसदों, विधायकों, बार काउंसिल के सदस्यों में से एक एक का सीधे मनोनयन होगा। यानी पहले चुनाव होता था, उन्हें अब मनोनीत किया जाएगा।
11: देखिए, वक्फ का मामला अभी पूरी तरह से विचाराधीन है, लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार वो वक्फ में दो गैर मुस्लिम सदस्यों को रखती है, वो केवल इसलिए प्रयास है भारतीय जनता पार्टी का कि किसी तरह से जो चंदा और चढ़ावा में लूट का मुद्दा है, उस मुद्दे से जनता का ध्यान हट जाए। हर समस्या का समाधान मुसलमान है भारतीय जनता पार्टी की, तो अब फिर से मुसलमान को सामने लाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया जा रहा है। मुसलमान मुसलमान मुसलमान मुसलमान, हर समस्या का समाधान मुसलमान है, भारतीय जनता पार्टी का ये प्रयास को सफल होने वाला नहीं।
7: मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली इस वक्त हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। मौलाना साहब, अब उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, अल्पसंख्यक मंत्री की तरफ से कहा गया है कि जैसा सरकार की तरफ से कहा गया था, दो गैर मुस्लिमों को अब वक्फ बोर्ड में जगह दी जाएगी, शामिल होंगे यूपी वक्फ बोर्ड में।
12: जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट बना है, नया वाला जिसको पार्लियामेंट ने पास किया है, उसमें ये प्रोविजन रखा गया है कि वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम को भी शामिल किया जाएगा। अरे, पार्लियामेंट से अब खैर कानून बन चुका है, हालांकि बिफोर पासिंग ऑफ द एक्ट जो है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी और तमाम मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन ने हुकूमत के सामने बात रखी थी कि जिस तरीके से किसी भी दूसरे रिलीजियस बोर्ड या कमेटी में उस रिलीजन के अलावा लोगों को शामिल नहीं किया जाता है कानूनी तौर पर, उसी तरीके से अभी तक लॉ बोर्ड का भी यही रूल था, लेकिन लिहाजा इसमें कोई चेंज ना किए जाए, लेकिन हुकूमत ने उस बात को तस्लीम नहीं किया और उसमें नॉन मुस्लिम को रखने का भी प्रोविजन बल्कि कंपलसरी कर दिया है। और हम लोगों ये कहना था कि वक्फ बोर्ड जो है या वक्फ प्रॉपर्टीज जो है वो खालिसतन एक मजहबी मुसलमानों का मामला है, और मोर देन 90% ऑफ द वक्फ प्रॉपर्टी जो है वो इन द फॉर्म ऑफ मस्जिद, कब्रिस्तान, दरगाह, करबला और इमामबाड़ों और मदरसों की शक्ल में है। तो लिहाजा इनका मैनेजमेंट किस तरीके से किया जाए ये मुसलमानों ही के रीति रिवाज के मुताबिक होता चला आ रहा है, उसी को बरकरार रखना चाहिए।
7: तो आपकी ये मांग थी कि गैर मुस्लिमों को शामिल इसमें ना किया जाए। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक इस वक्त जुड़ चुके हैं। अभिषेक, क्या उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों का मुद्दा बड़ा विवाद खड़ा कर सकता है, क्योंकि मामला तो अभी कोर्ट में है?
13: देखिए, विवाद तो हो सकता है जब नॉमिनेशन होगा, लेकिन अभी गठन हुआ नहीं है और मुझे लगता है कि चुनाव के पहले ज़रूर ये सरकार दोनों बोर्ड को का गठन करेगी और तब दो दो मेंबर गैर मुस्लिम या यूं कह लें हिंदू बिरादरी से होंगे, इसकी पूरी संभावना है। जिस तरीके से इस पर सियासत उत्तर प्रदेश में हुई है, चुनाव के पहले अगर ये गठन होता है तो निश्चित तौर पर इस पर विवाद भी होगा, नामों पर भी विवाद उस वक्त होगा। लेकिन अब लगभग सबने एक्सेप्ट कर लिया है कि दो लोग तो होंगे ही होंगे और उत्तर प्रदेश में जब योगी सरकार इसका गठन करेगी तो मान लीजिए कि होना ही है। खाली देखना ये होगा कि चुनाव के पहले होते हैं या चुनाव के बाद। फिलहाल अभी पुराना बोर्ड ही चल रहा
7: है। लेकिन अभी अभी जो बोर्ड है उसमें भी तो सरकार की मर्जी के ही लोग होंगे ना।
13: देखिए, ये तो पुराना बोर्ड चल रहा है, सरकार ने सिर्फ उसको आगे बढ़ाया था। जब से ये बोर्ड है तब से ये वक्फ का मुद्दा अदालत में भी नहीं था, उसके पहले से ये बोर्ड है। तो अब इसका कार्यकाल जैसे ही खत्म होगा नए बोर्ड का गठन होगा। तो जब नए बोर्ड का गठन होगा उसके बाद इसमें उसी वक्त इसमें दो मेंबर्स आएंगे। इस पुराने बोर्ड में फिलहाल कोई दो मेंबर नहीं है और ना ही सरकार की ऐसी मंशा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कुछ महीनों में इसका गठन हो सकता है और तब दो गैर मुस्लिम यानी कि हिंदू सदस्य इसमें आ सकते हैं।
7: तो ऐसी खबर है कि चुनावों से पहले गठन हो सकता है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दरअसल इसी हफ्ते मध्य प्रदेश में सीएम मोहन यादव ने राज्य वक्फ बोर्ड का ऐलान किया, जिसमें

0: 25 मई 2026 से 15 जून 2026 तक करीब 21 दिनों में चार राज्यों के सीमावर्ती जिलों का दौरा करते दिखे। हालांकि इसमें यूपी के साथ सीमावर्ती जिलों में अमित शाह नहीं गए थे, लेकिन यूपी में अवैध घुसपैठ और डेमोग्राफिक चेंज बड़ा चुनावी मुद्दा भी रहा है। खासकर एसआईआर के दौरान इस पर खूब सियासत हुई थी। दरअसल केंद्र सरकार ने 26 मई को ही रिटायर्ड जस्टिस प्रकाश प्रभाकर नावलेकर की अध्यक्षता में 5 सदस्यों की एक कमेटी बनाई, जिससे सीमावर्ती जिलों में अस्वाभाविक डेमोग्राफिक बदलाव का अध्ययन करने को कहा गया। अब इस कॉन्फ्रेंस में उस पर भी चर्चा हो सकती है, जिसके बाद बॉर्डर जिलों के डेमोग्राफिक डेटा की समीक्षा करके अवैध घुसपैठ को रोकने, घुसपैठियों की पहचान करने के तरीके, डिपोर्टेशन की प्रक्रिया को आसान बनाने और इंटरनेशनल बॉर्डर के 10 से 15 किलोमीटर के दायरे में अतिक्रमण हटाने का मुद्दा शामिल है। वैसे तो भारत के 3 दिशाओं में 3 सरहदों पर अलग अलग देशों से राज्य की सीमाएं मिलती हैं, जिनमें अरुणाचल के 15 हैं, बंगाल के 9, बिहार के 7, यूपी के 7, पंजाब के 6, उत्तराखंड के 5, जम्मू कश्मीर के 5, राजस्थान 4, गुजरात 3, लद्दाख के 2 जिले शामिल हैं। लेकिन अवैध घुसपैठ से डेमोग्राफिक चेंज की समस्या और खतरा पूर्वी और उत्तरी सरहद पर सबसे ज्यादा महसूस किया जा रहा है, जिसे लेकर केंद्र सरकार बेहद गंभीर है। और यहां रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस। Akajay, the number one Korean skincare brand, now in India.
2: TuneIn is bringing people together through radio. Listen to all of your favorite music, news, sports, and more all in one place. Hear all of the audio you love, whether you're a music lover, interested in what's going on around the world?
3: We know that Hamas has agreed to a deal at some point, and
2: or want to catch your team's live play-by-play. It's all right here on TuneIn. Just sit back, relax, and listen.
4: AU savings account mein milte hai amazing benefits, paperless banking and higher interest. Wo bhi har mahine.
5: Money, money, money, money, every month.
6: Soch badlo aur bank bhi.
7: पत्रकारिता के गुर यहाँ नहीं सीखे तो क्या सीखे, नाम ही काफी है। इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट रजिस्टर करने के लिए विजिट करें www.indiatodaymediainstitute.in या 9560065465 पर कॉल करें।

0: इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है यूपी के बांदा में। थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री योगी ने विपक्ष पर बड़ा हमला किया। बीजेपी की सरकार आई तो पैसा मंदिरों के विकास, धामों के सौंदर्यीकरण में इस्तेमाल हो रहा है। सपा की सरकार में कब्रिस्तान बनाने में जाता था।
1: कुछ लोग हैं जो विरासत को अपमानित करते हैं, कुछ लोगों ने हिंदू परंपरा और सनातन को अपमानित करना, सनातन परंपरा को कोसना ही अपना जीवन का एकमात्र ध्येय बनाया है। वे लोग भारत को वैभवशाली और विकसित भारत के रूप में देखना पसंद नहीं करते। उन्हें अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर अच्छा नहीं लगता, उन्हें काशी में काशी विश्वनाथ धाम अच्छा नहीं लगता, उन्हें मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी का ये भव्य धाम अच्छा नहीं लगता, उन्हें चित्रकूट धाम के कार्यों के लिए और उसकी सजावट के लिए किए जाने वाले प्रयास अच्छे नहीं लगते, और उनको मंदिरों के सुंदरीकरण और विकास के लिए किए जाने वाले प्रयास भी अच्छे नहीं लगते। याद करिए, हम विरासत का संरक्षण करने के लिए जो पैसा आज हमारे जनप्रतिनिधिगण मंदिरों के सुंदरीकरण के कार्य के लिए प्रदान करते हैं,

0: एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे, देखते रहिए आज तक।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस।

0: At DSW, we ask the important questions, like, what shoes are you going to wear? Whether you're prepping for wedding season, festival season, or just planning the ultimate vacay, the right shoes can make or break an RSVP. So own the moment. You've got big plans, and we've got just the shoes. At the perfect price, of course. Get ready to get ready with Designer Shoe Warehouse. Head to your DSW store or DSW.com today, and let us surprise you.
1: To 15-year-old Harper, buying an $80 vintage rock t-shirt is a great investment. To Harper's mom, this logic has a few holes in it. So she helped Harper open a Wells Fargo Clear Access banking account. With no overdraft fees and tools to track spending, Harper's learning, one heavy metal tee at a time. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
2: Terms apply. Visit wellsfargo.com/deposit disclosures for fees and details.
3: No.
4: Oh, no.
5: Welcome to Get Real.
3: I got something to say.
5: A weekly talk show for the reality TV obsessed.
4: Oh, my God.
3: It's got to be deliciously desperate.
4: Why do these girls forgive him? Well,
6: she has a soft spot for troubled men.
3: Boo bloody who.
5: This is your show. Search Get Real on TuneIn to listen.
4: Love runs deeper than we know.
5: And stream new episodes Thursdays on Hulu and Hulu on Disney+.
7: हमने तब भी सवाल किया था।
8: दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में हुए कोचिंग हादसे पर दिल्ली हाईकोर्ट ने आज खूब फटकार लगाई है।
7: हम आज भी सवाल करते हैं।
8: लखनऊ में भी दर्दनाक हादसे में 15 लोग इसीलिए मारे गए क्योंकि नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। दिल्ली जैसा हादसा लखनऊ में हो गया और लखनऊ जैसे हालात कभी भी दिल्ली में बन सकते हैं।
7: ऑपरेशन अग्नि,
8: आज तक के स्टिंग ऑपरेशन में हमने आपको दिखाया कि बेसमेंट में नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, कोचिंग और लाइब्रेरी चलाई जा रही है। आग लगने की स्थिति में अगर ये बंद हो जाए तो फिर अंदर फंसे लोग कैसे निकलेंगे।
7: आज तक के स्टिंग में सामने आई चौंकाने वाली सच्चाई। खबरदार, सिर्फ आज तक पर।
9: In association with E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
10: I'm a very independent person, जिसे अकेले घूमना बहुत पसंद है। Like I don't need anyone's company. I love to just hang out by myself. Fun fact, I've never had any job in my life. मैंने सिर्फ content creation ही किया है आज तक। मेरा content creation journey start किया when I was 16. So just fresh out of school. तो जब आपने ये बात अपने family में रखी होगी, family के सामने रखी होगी, तो उनका क्या reaction था? क्या मतलब YouTuber बनना है? So for them to even think कि मैं post graduation नहीं करने वाली हूँ was like mind blowing to them. Most embarrassing influencer moment. A beauty hack that actually works.
11: Ooh.

में लगातार बारिश, मौसम विभाग का रेड अलर्ट, रोहिणी में गिरी इमारत, तीन की मौत, गाजियाबाद में डूबे कई इलाके, मेरठ नेशनल हाईवे में घुटनों तक पानी। गुजरात के बिजनेस कैपिटल में ट्राइमाम, सूरत में भरा पानी, महाराष्ट्र के रायगढ़ में बहते 3000 सिलेंडर से बड़ा खतरा, उत्तराखंड में नेशनल हाईवे 707A के पास लैंडस्लाइड। ऑस्ट्रेलिया के साथ साझा घोषणा पत्र में पीएम मोदी का क्रिकेट डिप्लोमेसी, कहा वनडे जैसे फैसले, टेस्ट जैसे रिश्ते, इंडो पैसिफिक की सुरक्षा पर समझौता, आतंक के खिलाफ दोनों देश। चाबहार, बंदर अब्बास समेत ईरान में 90 ठिकानों पर अमेरिका ने गिराए बम, ट्रंप ने कहा 20 गुना ताकत से जवाब देंगे, ईरान का पलटवार, कुवैत और बहरीन में जंगी साइन। मध्यप्रदेश मॉडल पर बदलेगा यूपी का वक्फ बोर्ड, शामिल होंगे दो हिंदू समुदाय, शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन का बयान, हमें कोई दिक्कत नहीं है।

में बारिश का रौद्र रूप, फंती नदी में बहे बाइक सवार ग्रामीणों ने बचाई महिला सहित तीन की जान। ऋषिकेश में पहाड़ी इलाकों में लगातार बारिश के कारण गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा, स्थानीय प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने और आवश्यक सावधानी बरतने की सलाह दी। लगातार हो रही बारिश की वजह से नोएडा की कई सड़कें जलमग्न, प्राधिकरण के दावों की खुली पोल, लोगों को करना पड़ रहा है दिक्कतों का सामना। भारी बारिश के कारण नोएडा में तबाही, कई जगहों पर गिरे पेड़, आवाजाही बाधित। गुरुग्राम के सेक्टर 37C स्थित एम्पोरिया एस्कोरा फेज सोसाइटी में बड़ा हादसा, अचानक भड़बड़ा कर गिरा एक फ्लैट की बालकनी, कोई हताहत नहीं। टिहरी गढ़वाल के दुखाल में भूस्खलन, NH-707-1 पर दो रेस्टोरेंट खतरे से के चलते एहतियातन खाली कराए गए। हल्द्वानी बारिश ने खोली जल निकासी व्यवस्था की पोल, जल भराव के बीच अंतिम यात्रा घुटनों तक पानी से होकर गुजरी। बद्रीनाथ धाम में रुक रुक कर बारिश का दौर जारी, चमोली जिले में बदला मौसम। बागेश्वर में मूसलाधार बारिश से जनजीवन बेहाल, मलबा और बोल्डर गिरने से 16 सड़कें बंद, सरयू नदी उफान पर। हिमाचल में अगले एक हफ्ते तक भारी बारिश का अलर्ट, 5 जिलों में भूस्खलन और फ्लैश फ्लड का खतरा। टिहरी में मूसलाधार बारिश से बढ़ा नदियों का जलस्तर, प्रशासन के आदेश के बाद स्कूलों की छुट्टी, लोगों से अनावश्यक यात्रा टालने की अपील। हरिद्वार में लगातार मूसलाधार बारिश के कारण जनजीवन बुरी तरह अस्तव्यस्त, जगह जगह जलभराव के कारण वाहन चालकों को करना पड़ा है भारी दिक्कतों का सामना। पंजाब के कई इलाकों में अगले 36 घंटे बारिश का अलर्ट, मौसम लगातार बना हुआ है बारिश का। बागपत में आसमान से बरसी आफत, यमुनोत्री हाईवे पर थमी रफ्तार, जलभराव के कारण कई किलोमीटर लंबा जाम, रेंगते नजर आए वाहन। केरल के वायनाड में टनल निर्माण स्थल के पास हुए भीषण भूस्खलन में मृतकों की संख्या बढ़कर 5, लापता लोगों की तलाश तेज। मुंबई ठाणे बारिश का दौर जारी, तेज हवाओं के साथ बारिश का ऑरेंज अलर्ट, जरूरी सावधानी बरतने की सलाह। महाराष्ट्र के रायगढ़ में भारी बारिश के चलते 3000 एलपीजी सिलेंडर बहे, जिला कलेक्टर ने लोगों को से सूचना देने की अपील की। पुणे में जोरदार बारिश का असर, भिडे ब्रिज डूबा, छोड़ा गया 27,000 क्यूसेक पानी। महाराष्ट्र के वसई में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, रेलवे ट्रैक पर भरा पानी, ट्रेन सेवा प्रभावित। छत्रपति संभाजीनगर में नदी नाले उफान पर, ग्रामीणों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील। बीएमसी मुख्यालय और माटुंगा इलाके में लगाए गए वार्निंग बोर्ड, कमजोर पेड़ों के पास सावधानी बरतने की अपील। बीएमसी ने खतरनाक पेड़ों की पहचान के लगाए चेतावनी पोस्टर, नागरिकों को सतर्क रहने और हादसों से बचाने की पहल। रियासी में बढ़े चेनाब नदी के जलस्तर के बाद सलाल डैम के गेट खोले गए, प्रशासन नदी किनारे रहने वालों को सतर्क रहने की सलाह दी। जम्मू कश्मीर के रियासी में भारी बारिश के चलते चेनाब उफान पर, पानी के दबाव को नियंत्रित करने के लिए सलाल डैम की शुरू की गई जल निकासी। चेनाब नदी में बढ़ते जल प्रवाह के बीच सलाल हाइड्रो प्रोजेक्ट के स्पिलवे गेट खोले गए, अधिकारियों ने सुरक्षा के मद्देनजर बढ़ाई निगरानी। दिल्ली में बारिश की मार, नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट ईस्ट ऑफ कैलाश इलाके में गिरा बड़ा पेड़, पेड़ गिरने से सड़क पर लगा जाम। दिल्ली में तेज बारिश के बीच सरकार ने जारी की जलभराव मुक्त इलाकों की तस्वीर। दिल्ली सरकार का दावा, भारी बारिश के बीच हॉटस्पॉट पर नहीं भरा है पानी, लगातार की जा रही है मॉनिटरिंग। दिल्ली में भारी बारिश का असर, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जलभराव, तेज बारिश के बाद स्टेशन परिसर में भरा पानी, यात्रियों को परेशानी।

दिल्ली एनसीआर में कमला नेहरू नगर में 24 घंटे में सबसे ज्यादा 160 mm बारिश। आईएमडी के मुताबिक लोधी रोड पूसा और सफदरजंग में भारी बारिश का रिकॉर्ड। दिल्ली में बारिश का असर, बीडी मार्ग पर जलभराव, सांसों की आवाज, जाने वाली सड़कों पर जमा हुआ पानी। मुंबई में मॉनसून एक्टिव, भारी बारिश वाले इलाकों पर नजर। ईस्टर्न सबर्ब में सबसे ज्यादा 39.37 मिलीमीटर बारिश दर्ज। उत्तराखंड में भारी बारिश का रेड अलर्ट, हरिद्वार पौड़ी में खतरा। अगले 3 घंटे लक्सर, मंगलौर और कोटद्वार में भारी बारिश से अलर्ट रहने की चेतावनी। सूरत के सर थाना में पानी हालात, जेसीबी बनी सहारा, बुजुर्ग महिला को सुरक्षित निकाला गया, लोगों तक पहुंचाई गई राहत सामग्री। गाजियाबाद में बारिश का कहर, श्रेणी 4 बजर भराव, ट्रैफिक प्रभावित। इंदापुरम इलाके में सड़कों पर भरा पानी, वाहन चालकों की बड़ी परेशानी। गाजियाबाद में बारिश बनी आफत, कई इलाकों में पानी, सड़कें डूबी, आवाजाही प्रभावित। गाजियाबाद में वसुंधरा में अटल चौक के पास भारी बारिश के बाद सड़क धंसने से एक और कार स्कूटर गड्ढे में गिरे, फिलहाल हादसे में कोई जनहानि नहीं। गाजियाबाद में भारी बारिश से जलभराव, स्कूलों की छुट्टी घोषित, कक्षा 12 तक स्कूल बंद। नोएडा सेक्टर 62 में लेवर चौक पर जलभराव, सड़कों पर भरा पानी, लोगों को आवाजाही में परेशानी। वडोदरा में भारी बारिश से कई नदियों में उफान, प्रशासन अलर्ट, निचले इलाकों में रह रहे लोगों के लिए चेतावनी जारी की। सूरत में भारी बारिश से रिहायशी इलाकों में घुसा पानी, रोजमर्रा की चीजों के लिए जैसे दूध पानी लेने के लिए लोग हो रहे हैं परेशान। सूरत में लगातार हो रही बारिश से बाढ़ जैसे हालात, सीमाड़ा खाड़ी ओवरफ्लो होने से कई इलाकों में घुसा पानी। भारी बारिश से पूरा सूरत शहर जलमग्न, जगह जगह एनडीआरएफ और फायर ब्रिगेड फंसे, लोगों के रेस्क्यू में जुटे। एमपी के खरगोन में तेज बहाव में बहा युवक, लोगों ने रस्सी से बचाने की कोशिश की, तैरते हुए युवक का लाइव वीडियो आया सामने। ईरान के दिवंगत सुप्रीम लीडर खामनेई का पार्थिव शरीर कर्बला पहुंचा है, इमाम हुसैन दरगाह पर अंतिम संस्कार की तैयारियां, बड़ी संख्या में जुटे समर्थक। ट्रंप ने ईरान के साथ युद्धविराम पर दिया विस्फोटक बयान, कहा मेरे लिए खत पहुंच चुका है युद्धविराम, साथ ही कहा नाटो देश हॉर्मुज भेजेंगे समुद्री सुरंगों से को हटाने वाले जहाज। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रॉन ने ईरान द्वारा युद्धविराम तोड़ने को ठहराया गलत, कहा खाड़ी देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हुए ईरान के हमले अंतरिम समझौते का उल्लंघन है। मेयर की रिपोर्ट के मुताबिक बंदर अब्बास में 8 धमाके, सिरिक में 3, चाबहार के पास 10 धमाके सुनाई दिए। ईरान ने खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर दागी मिसाइल, साथ ही ईरान पर किए गए अमेरिकी हमलों की नई तस्वीरें आई सामने। मशहद की सड़कों पर ट्रंप के खिलाफ नारे वाले बैनर, अंतिम संस्कार तैयारियों के बीच लगाए गए पोस्टर। बहरीन मिसाइल का सीधा हमला, धमाके का वीडियो आया सामने, ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल के सीधे टकराने का दावा। कुवैत में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने का दावा, वीडियो जारी कर ईरानी सरकारी मीडिया IRIB ने हमले के फुटेज जारी किए। न्यूज एजेंसी का दावा, आयतुल्ला अली खामनेई के आवास कार्यालय परिसर के तबाही के दृश्य पहली बार सामने आए। ईरान का दावा, अमेरिकी ठिकानों पर जवाबी मिसाइल हमला, मिसाइल लॉन्च के फुटेज जारी। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी, सीईओ फोरम में लिया हिस्सा, मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक साझेदारी पर चर्चा। मेलबर्न में पीएम मोदी बोले भारत और ऑस्ट्रेलिया भरोसेमंद साझेदार, दुनिया में अनिश्चितता के बीच मजबूत साझेदारी पर दिया जोर। पीएम मोदी ने कहा भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों का नया दौर शुरू, ECTA समझौते से कारोबार और बाजार में बढ़ोतरी का जिक्र। पीएम मोदी का ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच डिफेंस डील संभव। दोनों देशों के प्रधानमंत्री भारत ऑस्ट्रेलिया के कई कारोबारियों से करेंगे मुलाकात। पीएम मोदी और एंटनी अल्बनीज का सेल्फी वायरल, पीएम का गार्ड ऑफ ऑनर। अयोध्या चढ़ावा चोरी मामले में SIT की तीसरी विजिट की तैयारी, अंतिम रिपोर्ट से पहले हो सकती है गिरफ्तारियां। अयोध्या चढ़ावा चोरी मामले में बड़ा एक्शन, 30 बैंक खाते फ्रीज, आरोपियों और परिजनों के खातों में मिले संदिग्ध ट्रांजेक्शन। अयोध्या चढ़ावा चोरी मामले में बैंक की भूमिका पर SIT ने उठाए सवाल, जांच के घेरे में बैंक अधिकारी और कैश काउंटिंग से जुड़े कर्मचारी। अयोध्या मामले में अखिलेश यादव ने SIT पर उठाए सवाल, कहा वो लीपापोती कर रही है। अखिलेश यादव का आरोप, अयोध्या मामले को बताया दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई। अखिलेश यादव का बड़ा बयान, राम मंदिर चंदा चोरी मामले में घेरा बीजेपी को, बोले छोटे लोगों पर कार्रवाई, बड़े लोगों पर क्या हुआ पता नहीं। लखनऊ में अखिलेश यादव ने की शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद से मुलाकात, SP प्रमुख ने मुलाकात के बाद कई मुद्दों पर रखी अपनी बात। चंदा चोरी के आरोपों को लेकर डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने कहा अखिलेश का परिवार रामद्रोही, 2027 में सपा का सूपड़ा हो जाएगा साफ। राम मंदिर ट्रस्ट विवाद के बीच गोपाल राव का बड़ा बयान, बोले मैं यहीं रहूंगा, बर्खास्तगी की खबरें गलत हैं। अयोध्या में गोविंद देवगिरी का बड़ा बयान, बोले चंपत राय से मुलाकात हुई, उनके मन में कोई नाराजगी नहीं है। बिहार में फर्जी प्रमाण पत्रों पर नौकरी पाने वाले 3,035 शिक्षक बेनकाब, 1,830 FIR दर्ज। इलाहाबाद हाईकोर्ट की बड़ी टिप्पणी, कहा मुस्लिम पर्सनल लॉ, PCMA और पॉक्सो अधिनियम जैसे कानून को निष्प्रभावी नहीं कर सकता, सभी के लिए कानून एक समान। हनीमून मर्डर केस में सोनम रघुवंशी ने सुप्रीम कोर्ट में दी सफाई, हलफनामे में खुद को बताया निर्दोष, कहा मुझे फंसाया गया। इंदौर के MGA मेडिकल कॉलेज में मेंटेनेंस घोटाले पर बड़ी कार्रवाई, 5 हॉस्पिटल को दिया गया नोटिस।
अकाल तख्त का फैसला 14 जुलाई को सतलुज किनारे होगी अरदास। धामी कार्यक्रम में संगत में शामिल होने की अपील। मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा की हाईटेक निगरानी, एआईएस रखी जाएगी नजर।

पुणे में तीन मंजिला बिल्डिंग के ऊपर कचरा गिरने से बिल्डिंग दबी, 23 लोगों में से 9 को बाहर निकाला गया। कचरा गिरने पर मंत्री गिरीश महाजन का बयान, का कई सालों से कचरा डिपो है, बारिश की वजह से कचरा नीचे आ गया, घटना पर खेद है। सुपौल में एक रात भारी बारिश से पुल निर्माण के लिए बना डायवर्जन बहा, 150 परिवारों का संपर्क टूटा। छिंदवाड़ा में बेकाबू कार ने लोगों और गाड़ी को रौंदते हुए दुकान में घुसी, 8 लोग घायल, सीसीटीवी वीडियो आया सामने। इंदौर में तेंदुए का आतंक, डिलीवरी बॉय पर हमले का सीसीटीवी फुटेज आया सामने, वन विभाग कर रही है तेंदुए की तलाश। रांची पुलिस ने तोड़फोड़ मामले में 2 पक्षों को किया गिरफ्तार, मारपीट के लगे आरोप। आगरा में लगातार बारिश के बीच 2 मंजिला कपड़े की दुकान अचानक गिरी, मलबे में 5 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। जम्मू में वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर भूस्खलन, हिमकोटी मार्ग पर बैटरी कार सेवा बंद। उज्जैन में सड़क धंसने से सीमेंट से भरा ट्रक नाले में गिरा, सीसी में कैद हुआ हादसा। दरभंगा बम धमाके में घायल मजदूर की मौत, लोगों का सड़क पर फूटा गुस्सा, आगजनी कर किया चक्का जाम। रहू में डेरे रूबरू का ट्रेलर आउट, 17 जुलाई को सिनेमाघर में होगी रिलीज। प्रज्वल देवराज और राजबी शेट्टी की कन्नड़ फिल्म करावली का ट्रेलर लॉन्च, 24 जुलाई को रिलीज होगी फिल्म। फिल्म श्री राम भूमि की शूटिंग का आज अयोध्या में पहला दिन, अनुपम खेर ने शेयर की पोस्ट, लिखा श्री राम मंदिर जाकर रामलला से लिया आशीर्वाद। अभी खत्म नहीं हुई कांतारा फ्रेंचाइजी, ऋषभ शेट्टी ने दिया अपडेट, कांतारा 2 पर काम जारी।

दिल्ली सटे गाजियाबाद और नोएडा से बारिश से ताहिमाम की तस्वीरें आ रही हैं। गाजियाबाद के वसुंधरा में लगातार बारिश के बीच सड़क का एक हिस्सा धंसने से कार गड्ढे में गिर गई। दरअसल सड़क किनारे चल रहे एक बिल्डिंग के निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी खिसकने से कटान हुई और इससे कार गड्ढे में धंस गई। लगातार बारिश के कारण शहर के कई इलाकों में ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। वसुंधरा इलाके से एक और तस्वीर आई है, सड़कें यहां दरिया बन गई हैं। इसमें मुसीबत आम लोगों को हो रही है, सड़क पर पानी भरने से स्कूल बस खराब हो गई है।

0: गड्ढे में गाड़ी, और ये दरअसल एक निर्माणाधीन इमारत, और वहां पर अचानक ये जमीन धंसने से इसी में कार समा गई। कार का बुरा हाल, कई जगहों से कार को काफी क्षति पहुंची है। अब हालांकि इसमें कोई जान का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ये बताती है कितने गंभीर ये विषय हैं बारिश के मौसम में, जहां पर सड़क में गड्ढा है या फिर गड्ढे में सड़क है, ये कह पाना मुश्किल होता है। गाजियाबाद की एक और तस्वीर देखिए, यहां बसें रेंग रेंग कर चल रही हैं क्योंकि सड़कें दरिया बन चुकी हैं। कई जगहों पर बस खराब होने से इन्हें धक्का देकर निकालना पड़ रहा है। आशुतोष मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं इस वक्त तमाम जानकारी के साथ। आशुतोष, वहां के ताजा हाल दिखाइए।
1: नेहा, अगर किसी को कोई प्लान कर रहा था ना छुट्टियों में वेनिस जाने के लिए, तो उनको एनसीआर वालों को तो नहीं जाना, आ सकते इंदिरापुरम। ये पूरा वेनिस में ही तब्दील हो चुका है। पानी बस थोड़ा मटमैला है, बस नाले के ढक्कन जो है खुले हुए हैं कई जगहों पर। बस इतना हुआ है कि नालों की सफाई नहीं हुई है, मानसून की तैयारी नहीं है, बाकी यहाँ सब कुछ ठीक है। तो जिस सड़क पर जा रहा हूँ ये पूरा इलाका, आगे तो आप देखेंगे कमर तक पानी है, गाड़ियां ब्रेक डाउन हुई है। इन सोसाइटी में थोड़ी देर पहले ऐसा आलम था, अब जैसे बारिश देखिए, भगवान मेहरबान इतना है कि बारिश रुक गई है, वरना यहाँ पर थोड़ी देर में ओला उबर वाले अपनी नाव चला सकते हैं। खासकर ये आसपास रिहायशी इलाका गगनचुंबी इमारतें हैं, 10 मंजिला 12 मंजिला इमारत है, लेकिन आगे जाने के बाद इस सड़क पर अब ऐसी स्थिति है कि कई सारी स्कूल की गाड़ियां, जो छोटे छोटे टेम्पो वाले, उन्हें गाइड करना पड़ा, यहां मत आइए मुश्किल हो जाएगी। और जैसे ही सड़क, ये दोनों लेन है, ये पूरी तरह से जलमग्न है, गाड़ियां ठप पड़ेंगी, आने जाने वालों के लिए खतरा। और सड़कों पर सीवर लाइन पर अगर कहीं मैन होल का ढक्कन खिला, तो खुल गया अगर, तो समझिए कि आदमी गया उसके जीवन से हाथ धो बैठेगा। तो पूरा इलाका, आगे हम देख रहे हैं एक पेड़ झुका हुआ है, उसके आगे पेड़ की टहनियां टूटी है, डाल टूटी है, और उसके साथ ये पूरा रास्ता, और यहाँ पर कुछ गाड़ियां हैं ये भी अब लगभग जो सड़क किनारे खड़ी हैं वो पार्किंग के यहाँ पर दरअसल जलमग्न हो रही हैं। सड़क के दूसरी ओर लिए चलता हूँ, इन रास्तों से लेकर के लोग अपने लाखों करोड़ों रुपए के आशियाने में जाते हैं, मेहनत की कमाई, जोड़ जोड़ के घर खरीदा है कि मानसून में अगर अच्छी बारिश हो तो बैल्कनी में बैठ के कम से कम चाय पकौड़ों को आनंद ले, लेकिन अगर आज वो घर से बाहर निकले होंगे तो पकौड़ों का आनंद दरअसल इस गंदे पानी में धूमिल हो जाए। देखिए, वो किसी का घर है, कोई बेचारा अपने घर की ओर जाना चाहता, प्रमुख द्वार है, जिस रास्ते गाड़ियां निकलती उनको वहां पर भी जो है संभल के जाना पड़ रहा है कि कहीं कोई गड्ढा ना खुदा हो, और अगर हुआ तो आप समझ सकती कैसे अनहोनी होगी। सड़क का दोनों का रास्ता जो है, एक लेन वो भी नहीं, पूरी की पूरी दोनों जो लेन है वहां पर पानी है, जल जमाव है, कहीं 1 फीट है, कहीं 1.5 फीट है, कहीं उससे भी ज्यादा। देखिए, ये जो गाड़ियां निकल रही हैं, लग रहा है कि ये गाड़ियां सड़क पर चल रही हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि मानो ये तैर कर निकलने की कोशिश कर रही हैं। और अगर ऐसे में छोटा टेम्पो होगा तो उसकी मुश्किल कैसी है। अब देखिए, ये बेचारा भाई बाइक को डाल करके पूरी ताकत से पैर ऊपर, अगर बीच में गाड़ी बंद पड़ जाए तो क्या होगा। वहां वो स्कूल की बस जा रही है, वो बेचारे आगे जा रहे थे, उनका पहिया डूब रहा था, उन्हें कहना पड़ा यहाँ से मत लाइए, मुश्किल होगा, उसमें बच्चे हैं, महिलाएं हैं, दिक्कत हो जाएगी। हम आगे चलते, वहां देखिए वो स्कूटर दिखाई दे रहा है, निकलने की कोशिश की, पानी में था, अपना काम निपटा के आए हैं, गाड़ी ब्रेक डाउन पड़ी है, अब निकालना मुश्किल पड़ रहा है। तो यहाँ जितनी भी गाड़ियां, अगर किसी को, वो दूर से एक जनाब आ रहे हैं,
0: ठीक है, मैं रोकूंगी आपको। तीन तस्वीरें देखिए किस तरीके से दिल्ली एनसीआर में इस वक्त मुश्किलों का अंबार लग गया है। बारिश से हादसे की तस्वीर आ रही है, तो कहीं पर सड़कों पर जलभराव के चलते रफ्तार पर ब्रेक लग गया है, तो मूसलाधार बारिश जिसकी कामना सभी कर रहे थे भीषण गर्मी के बीच, अब आफत ही आफत लेकर आई है। कल देर रात से ही लगातार बारिश जारी है, जिससे तमाम ट्रैफिक व्यवस्था किस तरीके से चरमरा गई है दिखाई दे रहा है। और दिल्ली में भी मुंबई की तरह ही पेड़ गिरने की घटना सामने आई। रिमझिम बारिश के बीच सुबह ईस्ट ऑफ कैलाश इलाके में पेड़ गिरने से रास्ता ब्लॉक हो गया, और अब दिल्ली के रणजीत नगर इलाके से भी ऐसी खबर है, यहां पर बारिश के बीच कार पर पेड़ गिर गया है। ये देखिए कार का क्या हाल हुआ है पेड़ गिरने के बाद। ये रिहायशी इलाका जहां पर ये पुराने पेड़ भारी बारिश के चलते गिर रहे हैं। तो दिल्ली में जलभराव पर नजर रखने के लिए कंट्रोल रूम बनाया गया। थोड़ी देर पहले दिल्ली के मंत्री प्रवेश वर्मा कंट्रोल रूम में पहुंचे, उन्होंने दावा किया कि दिल्ली में आज लोग बारिश का मजा लेंगे। दिल्ली 40 ऐसे हॉटस्पॉट से घिरी हुई है जहां पर पानी भरता था, लेकिन वहां पर आज पानी नहीं भरा है। इस पर तमाम मंत्री और दिल्ली सरकार के लोग अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। तस्वीरें जारी कर दी गई हैं, वीडियो जारी किए गए हैं बताने के लिए कि यहां पर पानी नहीं भरा है। लेकिन ये कुछ ही जगह है महज, आपको बता दें अमूमन जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वो यही दिल्ली और आसपास के इलाकों की है। वहां पर लगभग 12 घंटे की बारिश में क्या हाल हुआ है आप देख सकते हैं।
2: देखिए, हमारी सरकार बनने से पहले हम भी ये सोचते थे कि मिंटो ब्रिज में पानी भरने की जो समस्या है, बस के डूबने की समस्या है, वो कैसे ठीक हो सकती है। जब हम वहां पर गए, हमारी मुख्यमंत्री जी वहां पर गई, मैं वहां पे कई बार गया, हमने इंजीनियर के साथ में बैठ के उसका सॉल्यूशन निकाला। वहां पे ज्यादा पंप लगाए, आगे बड़ी ड्रेन डाली, उसका सॉल्यूशन निकल गया। मेरे पीछे मिंटो ब्रिज है, पिछले 24 घंटे में 100 mm की बारिश हुई है, उसके बाद में भी पानी नहीं भरा, मिंटो ब्रिज नहीं डूबा। और उसकी ये आपको द्वारका अंडरपास दिखाई दे रहा है, ये आपको जखीरा अंडरपास दिखाई दे रहा है, जितने 45 ऐसी लोकेशन थी जो सारी पानी से डूबी रहती थी,
3: हॉटस्पॉट जो थे,
2: जो सारे हॉटस्पॉट थे, आपको केवल 2-3 जगह पे ऐसे जहाँ पे पानी है। और वहां पे हमारा जो यहाँ का कंट्रोल रूम का यही इंचार्ज है, वो तुरंत वहां के कंसर्न इंजीनियर को फोन करके बताता है, एक्शन होता है, उसकी रिपोर्ट ली जाती है, और हमारे चाहे हमारे सेक्रेटरी हो, चीफ इंजीनियर हो, वो एक एक पॉइंट के ऊपर में खुद जाके उसको देखते हैं। तो आज दिल्ली की जनता इतना बड़ा फर्क को देख पा रही है और वो महसूस कर पा रही है कि जहां पे घंटों घंटों पानी भरा रहता था, आज वहां पे 15 मिनट में पानी निकल जाता है। तो ये केवल काम तो बहुत बड़ा था, मगर काम ये नामुमकिन नहीं था, मगर इसके पीछे किसी ने प्रयास नहीं किया, हमने किया तो हो पाया।
0: सुशांत मेहरा मेरे सहयोगी कंट्रोल रूम से जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। सुशांत, ये हॉटस्पॉट्स तक तो ठीक है, ये हर साल भर जाते थे पानी से, जो नॉन हॉटस्पॉट्स हैं, जो कभी पानी से लबालब भरे रहते हैं, वहां पर भी ट्रैफिक की समस्या होगी, कोई ना कोई वाहन फंस गया होगा, उनका क्या हाल है जो अभी तक सीसीटीवी मॉनिटर भी नहीं हुए?
4: बहुत अच्छा सवाल नेहा आपने किया, क्योंकि दिल्ली के अंदर सिर्फ 40 से 45 ऐसे हॉटस्पॉट थे जहां पर अमूमन हर साल जो है वो वाटर लॉगिंग होती थी, घंटों जाम लगता था। लेकिन कई सारे इलाके ऐसे भी हैं जहां पर वाटर लॉगिंग आज भी है। खुद पीडब्ल्यूडी मंत्री ने भी माना कि कई सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर वाटर लॉगिंग हुई है। सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं, ये कंट्रोल रूम की तस्वीरें हैं। दिल्ली के हर इलाके से यहां पर फोन आ रहा है कि कहां पर वाटर लॉगिंग है, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। उसके साथ साथ मेरे पीछे अगर आप देखेंगे तो यहां पर 179 जो कैमरेज पूरी दिल्ली के अंदर आपको यहां पर नजर आएंगे, उन सब पे निगरानी जो है वो रखी जा रही है। कई जगहों पर आपको पानी जो है वो भरा हुआ नजर आएगा, यहां पर कंट्रोल रूम के जरिए तुरंत वहां पर पंप भेजे जा रहे हैं ताकि पानी की निकासी जल्द से जल्द की जाए। देखेंगे तो दिल्ली का मेन पॉइंट्स जहां पर पानी भरता था, पूरे रोड ब्लॉक कर दिए जाते थे, ट्रैफिक डाइवर्ट कर दिया जाता था, वो था जकीरा का अंडरपास, जो आप देखेंगे वो इस वक्त पूरा क्लीन नजर आ रहा है। इसके अलावा अगर बात करें तो धोला कुआं, द्वारका, और इसके अलावा मिंटो ब्रिज 2023-24 पिछले कई सालों से 93 तक की तस्वीरें जो हम देखते थे कि डीटीसी की बसेस जो है वो गाड़ी जान चली जाती थी, आज उसकी तस्वीर यहाँ पर लाइव जो है वो देखी जा रही है। सरकार पूरी तरीके से मॉनिटर कर रही है, पहली बार होगा जब इस तरीके का कंट्रोल रूम जो है वो सरकार की तरफ से बनाया गया है। खुद प्रवेश वर्मा अलग अलग स्पॉट्स पर जाकर के जायजा ले रहे हैं और उन्होंने भी माना है कि कहीं जगह पर पानी भरा है, वहां पर कहीं ना कहीं कोई खामी जरूर रही है, उसको भी दूर करने की कोशिश की जाएगी। लगभग 50 लाख मेट्रिक टन जो सिल्ट है बड़े बड़े नालों से, छोटे नालों से जो है वो बाहर निकाली गई है, जो पिछले 10 सालों से नहीं निकाली गई थी, उन सब को निकालने के बाद आज दिल्ली की स्थिति ये है कि कई ऐसे पॉइंट्स हैं
0: जो आपके पास। इस बीच सहारनपुर में लगातार बारिश हो रही है और इसकी वजह से शिवालिक पहाड़ियों से उतरने वाली बरसाती नदियां इस वक्त तूफान पर है। ऐसी एक नदी के तेज बहाव में दो बाइक सवार फंस गए, पानी की तेज धार के बीच बाइक के साथ साथ बाइक सवार भी बहने लगे। मौके पर ग्रामीणों ने दोनों बाइक सवारों को रेस्क्यू किया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे सैलाब के बीच फंसी एक महिला और दो युवकों ने को ग्रामीणों ने बाहर निकाला। पानी और मिट्टी से भरा ये सैलाब, जिसमें सड़क पार करने के वक्त ये दुर्घटना हुई। दरअसल ऐसे जगहों पर लोगों को सड़क पार करने से बचना चाहिए, क्योंकि ये रोड और ये पुल अब इस्तेमाल के लायक नहीं है, क्योंकि इन पर पानी गुजर रहा है। ऐसे में जान खतरे में डालना, जोखिम में डालना ठीक नहीं है। वक्त इस से ब्रेक का हौसला, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से, इन एसोसिएशन विद
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। Accuray, the number one Korean skincare brand.
6: TuneIn has all of your favorite audio in one spot. So you can enjoy listening to anything, anywhere. From breaking news.
7: After multiple assassination attempts, they can't even get.
8: They're reliable.
9: Always when I need them.
6: To live sports action.
10: One hand jam by LeBron on the break.
11: That's another three, Steph Curry.
6: And your favorite music.
12: Well, the dawn begins to crack.
6: TuneIn has got it all. Discover new stations in the app or ask your device to play TuneIn.
5: Now in India.
13: जब बात हो सोयाबीन के खेतों को खरपतवार से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का अमोरा। अमोरा तेज तरार वार, हारे अब खरपतवार, देश के हीरो की पहली पसंद।
14: आगे आगे, अरे उधर उधर, करेक्ट करेक्ट,
15: मिल गया।
16: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
3: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
4: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
5: सोच बदलो और बैंक भी।
6: शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ।
7: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
8: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
9: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
10: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।

0: in association with Sharda University. The world comes together at Sharda University. Where are you?
1: Punjab National Bank. Bharose ka prateek.
0: विमल बोलो जुबां केसरी हिंद बड़े आराम से
2: वी मस्ट राइज वी मस्ट फाइट। दरअसल ईरान की सड़कों पर ऐसे पोस्टर तो आपने देखे होंगे, लेकिन आपको याद होगा कि ये सिंबॉलिक जो हाथ आप देख रहे हैं ये पूर्व सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खामनेई का है, लेकिन अब ये हाथ जो है जिसमें उनकी अंगूठी हमेशा नजर आती थी, जो एक पावर का साइन था, वो अब ईरान में खासतौर पर तेहरान के इन इलाकों में नजर आएगा, आजादी स्क्वायर पर नजर आएगा। आप देखते रहिए आज तक।
3: Presented by पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
0: In association with
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। Acoje, the number one Korean skincare brand, now in India।

0: क्या इथेनॉल से नुकसान हो रहा है सर गाड़ियों?
1: मारुति सुजुकी के पास एक भी कंप्लेंट नहीं है, टोयोटा के पास एक भी कंप्लेंट नहीं है। मुझे बदनाम करने के लिए और इथेनॉल को बदनाम करने के लिए प्रयास है।
0: नए नए एक्सप्रेस वे जो बन रहे हैं उनमें गड्ढे,
1: ये हमारे हाईवे में जितने गड्ढे हैं उसके ऊपर आप कार्यक्रम करिए और दिखा दीजिए।
2: Hey there, it's Stormy Warren, and on my podcast called The Stormy Cast, I talk to artists like Luke Bryan, Tim McGraw, and Miranda Lambert about their journey from their hometowns to their first big break in Nashville. Thomas Rhett called his episode of The Stormy Cast the best therapy session he's ever had. And during my conversation with Little Big Town, he needed tissues, and a lot of them. Yeah, the conversations go that deep. You'll find The Stormy Cast wherever you listen to your favorite podcast, in the TuneIn app or at TuneIn.com.
3: Presented by पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
4: इन एसोसिएशन विद
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो,
6: एकजे द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया।

दिल्ली एनसीआर में लगातार बारिश, मौसम विभाग का रेड अलर्ट, रोहिणी में गिरी इमारत, 3 की मौत, गाजियाबाद में डूबे कई इलाके, मेरठ नेशनल हाईवे पर घुटनों तक पानी, ट्रैफिक जाम। गुजरात के बिजनेस कैपिटल में त्राहिमाम, सूरत में भरा पानी, महाराष्ट्र रायगढ़ में बहते 3,000 सिलेंडर से बड़ा खतरा। ऑस्ट्रेलिया के साथ साझा घोषणा पत्र में पीएम मोदी का क्रिकेट डिप्लोमेसी, कहा वनडे जैसे फैसले, टेस्ट जैसे रिश्ते, इंडो पैसिफिक की सुरक्षा पर समझौता। यूपी के बांदा में अखिलेश यादव पर योगी का करारा हमला, कहा 2017 से पहले की सरकारों को कब्रिस्तान बनाने में खर्च किए पैसे, बीजेपी ने बनाया राम मंदिर और काशी विश्वनाथ। बुशहर, चाबहार, बंदर अब्बास समेत ईरान में 90 ठिकानों पर अमेरिका ने गिराए बम, ट्रंप ने कहा 20 गुना ताकत से जवाब देंगे, ईरान का पलटवार। कुवैत और बहरीन में जंगी सायरन।

0: नमस्कार, हमारे इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ हूं मैं नेहा बातम। बात करेंगे ईरान में जारी शोक और लड़ाई की, क्योंकि एक तरफ आज ईरान में आयतुल्ला अली खामेनेई को दफनाए जाने की तैयारी है, वहीं इराक के नजफ से खामेनेई के ताबूत को लेकर विमान ईरान के मशहद शहर के लिए रवाना हो चुका है। आज शाम ही खामेनेई को सुपुर्द खाक किया जाएगा। ईरान की इस तैयारी के बीच अमेरिका के लगातार दूसरे दिन हमले से तनाव और बढ़ गया है। ईरान के लिए आज का दिन शोक और सदमे वाला है। एक तरफ मशहद में दिवंगत सुप्रीम लीडर खामेनेई को सुपुर्द खाक किए जाने की तैयारी है, आज शाम उन्हें दफनाया जाना है, लेकिन उससे पहले अमेरिकी हमलों ने ईरान की टेंशन बढ़ा दी है। और यह हमला उस वक्त हुआ जब ईरान अपने सर्वोच्च नेता खामेनेई को अंतिम विदाई दे रहा है।
1: ईरान में शोक की घड़ी है। पूरा मुल्क आयतुल्ला अली खामेनेई को नम आंखों से विदा कर रहा है। कुछ ही घंटे बाकी हैं जब उन्हें सुपुर्द खाक कर दिया जाएगा। इसी मातम और शोक की वजह से अमेरिका और ईरान में बातचीत के अगले राउंड की तारीख आगे रखी गई थी, लेकिन ना तो अभी ईरान का शोक काल बीता है और ना ही वो वार्ता हो पाई है। अमेरिका और ईरान में ताजा टकराव पूरी दुनिया को डराने लगा है। उत्तर पूर्वी ईरान में पवित्र मशहद शहर में खामेनेई को सुपुर्द खाक करने का इंतजार है, तो वहां से करीब 1300 किलोमीटर दूर दक्षिणी ईरान के इलाकों में फिर से बारूदी तबाही मची हुई है। अमेरिका के निशाने पर अब चाबहार पोर्ट भी आ गया है। लड़ाकू विमान गरज रहे हैं, मिसाइलें कहर बरपा रही हैं। दोनों देशों की फौज आर्या पार के इरादे से अलर्ट पर है और दुनिया एक बार फिर से सहम गई है कि क्या होगा। सवाल कई है, क्या यह भीषण युद्ध का ट्रेलर है? क्या फिर से पश्चिमी एशिया के हालात गंभीर होने वाले हैं? क्या फिर से हॉर्मुज में जहाजों की आवाजाही बंद हो जाएगी? क्या दुनिया के सामने नया आर्थिक संकट शुरू होने वाला है? पहले ईरान का हॉर्मुज में कमर्शियल जहाजों पर हमला और फिर उसके बहाने अमेरिका का ईरान पर घातक प्रहार, कहीं और बड़े खतरे की आहट तो नहीं? आज तक ब्यूरो।
0: आयतुल्ला अली खामेनेई के ताबूत को ईरान के मशहद ले जाया गया। मशहद में उन्हें दफनाया जाना है। अब तक उनका पार्थिव शरीर इराक के करबला शहर में रखा गया था और कल उन्हें ईरान नहीं लाया जा सका। कुछ घंटे पहले ही नजफ एयरपोर्ट से विमान ताबूत के जरिए मशहद के लिए रवाना हो गया है और अब खबर यह है कि वहां विमान पहुंच चुका है। और ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव में एक बड़ी खबर आ रही है। उससे पहले आपको बता दें कि आज अमेरिकी हमले मारे गए आयतुल्ला अली खामेनेई को सुपुर्द खाक किया जाने वाला है। पवित्र शहर मशहद में इसकी तैयारी की जा रही। सुपुर्द खाक किए जाने के साथ ही 3 जुलाई से जारी अंतिम विदाई से जुड़े कार्यक्रम का समापन हो जाएगा।
2: ईरान का पवित्र शहर मशहद तैयार है। यहां आयतुल्ला अली खामेनेई को सुपुर्द खाक किए जाने की तैयारी है। यही वो शहर है जहां खामेनेई का जन्म हुआ था। जिस मिट्टी में वो पले बढ़े थे, आज उसी शहर में आयतुल्ला को मिट्टी दी जाएगी। मशहद जहां इमाम रजा का मजार है, उसी जगह खामेनेई को सुपुर्द खाक किए जाने वाला है। इमाम रजा का मजार शिया मुसलमानों के लिए बेहद पवित्र है। शिया संप्रदाय के कुल 12 पवित्र इमाम रहे हैं। उनमें से इमाम रजा एकमात्र ऐसे इमाम हैं जिन्हें ईरान की धरती पर दफनाया गया है। बाकी के सभी इमामों को या तो सऊदी अरब में या फिर इराक के नजफ, करबला और सबर्रा में दफनाया गया। इमाम रजा शिया इस्लाम के 8वें इमाम माने जाते हैं। उनकी बढ़ती लोकप्रियता से डरकर तत्कालीन शासक अब्बासी खलीफा ने उन्हें जहर देकर उनकी हत्या करा दी थी। जहां इमाम रजा को दफनाया गया, उस जगह का नाम बाद में मशहद पड़ गया, जो आज ईरान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। मशहद शिया मुसलमानों के लिए मक्का, मदीना और करबला के बाद सबसे पवित्र स्थानों में से एक है। यहां हर साल दुनिया के कई देशों से लाखों लाख शिया श्रद्धालु जियारत के लिए पहुंचते हैं। ये दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद भी है। ईरान में इस्लामी क्रांति का मुख्य केंद्र भी रहा है। मशहद को शहादत का शहर भी कहा जाता है। इसी दरगाह में ईरान के पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी भी दफनाए गए हैं। और सबसे बढ़कर बात ये कि यही मशहद आयतुल्ला अली खामेनेई का जन्म स्थान भी है। आज वही उन्हें दफनाने की तैयारी है। खामेनेई का पार्थिव शरीर आज भी इराक में है। दो दिन पहले ही पार्थिव शरीर नजफ पहुंचा था। 8 जुलाई को नजफ में अंतिम यात्रा भी निकाली गई थी, जिसमें लाखों की संख्या में लोग शामिल हुए। छठा दिन था जब इराक के नजफ और कर्बला में खामेनेई की अंतिम यात्रा निकाली गई। नजफ में इमाम अली दरगाह पर अंतिम संस्कार की प्रार्थना की गई। फिर तमाम रस्मों के बाद वहां से खामेनेई के पार्थिव शरीर को कर्बला ले जाया गया। कर्बला में इमाम हुसैन दरगाह और अल अब्बास दरगाह पर खामेनेई को श्रद्धांजलि दी गई। दोनों शहरों में लाखों लाख लोग जुटे। हर कोई अपने धर्म गुरु के लिए गम में डूबा हुआ था।

0: इराक से पहले ईरान के शहर कोम और तेहरान में बड़े आयोजन हुए। वहां मानो पूरा ईरान अपने दिवंगत सुप्रीम लीडर को अंतिम विदाई देने उमड़ा था। 3 जुलाई को ही तेहरान में कार्यक्रम की शुरुआत हो गई थी। करीब 2 करोड़ लोगों ने खामेनेई को आखिरी विदाई दी थी। अब आज सीधे इराक के करबला से खामेनेई के ताबूत को मशहद ले जाया जाएगा और अंतिम यात्रा पूरी होगी। मशहद के गवर्नर ने जानकारी दी है कि आयतुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में 1.5 करोड़ लोग शामिल हो सकते हैं। ताजा अमेरिकी हमलों के बीच ईरान की सरकार ने मशहद में आयोजित कार्यक्रम के लिए भारी सुरक्षा इंतजाम किए हैं। सड़कें, हवाई क्षेत्र बंद रखे गए हैं। ऐसे में ये आयोजन ईरान की ताकत और एकजुटता दिखाने का मौका भी है। आज तक ब्यूरो।
1: 28 फरवरी को हुए अमेरिकी हमले में आयतुल्ला अली खामेनेई की जान चली गई थी। हमले के वक्त खामेनेई सुरक्षा चिंताओं पर अपने रक्षा अधिकारियों के साथ मंथन कर रहे थे। अमेरिका इजराइल के हमले को लेकर रणनीति बना रहे थे, तभी अमेरिकी हमले में उनकी जान चली गई। अब उस इमारत की तस्वीर आई है जिसमें खामेनेई की जान गई। इन सबके बीच उनके अंतिम संस्कार की तैयारी अंतिम पड़ाव पर है और सस्पेंस मुश्तबा खामेनेई को लेकर है।

0: वो तारीख थी 28 फरवरी 2026 और शहर था तेहरान। ईरान पर अमेरिकी इजरायली हमले शुरू हो चुके थे। सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई अपने आधिकारिक निवास में बैठे थे, साथ में शीर्ष सैन्य कमांडर थे, परिवार के सदस्य भी थे। तभी अमेरिकी मिसाइल ने इमारत को सीधे हिट किया। और फिर जो हुआ वो पूरी दुनिया जान चुकी है। उस घटना को आज 132 दिन हो चुके हैं तब से। अब तक खामनेई के पार्थिव शरीर को ईरान ने सहेज कर रखा था। अब जाकर 132 दिन बाद उन्हें सुपुर्द खाक किया जा रहा है, जिस वक्त मशहर में सुपुर्द खाक की तैयारी है उसी वक्त खामनेई के उस आधिकारिक निवास की तस्वीरें सामने आईं, जो अमेरिकी हमले में तबाह हो गया था। तबाह इमारत की तस्वीरें पहली बार दुनिया के सामने आई हैं। ईरान की मेहर न्यूज एजेंसी ने वीडियो जारी किया। इसी इमारत में आयतुल्ला अली खामनेई की जान चली गई थी। अमेरिकी हमले में खामनेई के साथ साथ कई परिजनों और रक्षा अधिकारियों की भी जान चली गई थी। पूरी की पूरी इमारत मलबे के ढेर में तब्दील हो गई है। यहाँ का मंजर देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि खामनेई को मारने के लिए अमेरिका और इसराइल ने कितना घातक प्लान तैयार किया था। तेहरान में इसी इमारत तक आज तक की टीम पहुंची।
1: आज तक की टीम इस समय मौजूद है उस जगह पे, उस घर पर जो पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई का घर हुआ करता था, जहां पर उनकी हत्या की गई। मेरे पीछे जो आप जगह देख रहे हैं, दरअसल आप देखें इसको पूरा कॉर्डन कर दिया गया। पीछे जो इमारतें देख रहे हैं, अगर आप देख पा रहे हो तो उनको नुकसान पहुंचा था। सारी इमारतें आसपास की बम्बारमेंट किया गया था और कहा जाता है कि न सिर्फ एक इमारत को बल्कि मल्टीपल आसपास की जो भी इमारतें थी उनको भी ध्वस्त कर दिया गया। अब इस पूरे इलाके को कॉर्डन कर दिया गया है, इस पूरे इलाके से डिब्रीज को या उनको चीज़ों को हटा दिया गया। लेकिन अगर आप देखें कि यहाँ पर जहाँ पर गेट लगाया गया है, ये वो पूरा कंपाउंड था जहाँ वो अपने परिवार के साथ उस समय रह रहे थे, उनका ऑफिस भी वही था। और अभी यहाँ पर लोग उनके उनसे उनकी दुआओं के लिए उनको याद करते हुए, अगर आप देखें बच्चे भी आपको नजर आएंगे, महिलाएं भी याद हैं, रो रहे हैं आप अपने अपने सुप्रीम लीडर को याद करते हुए। और इस समय के ताज़ा हालात कुछ ऐसे हैं कि लोग गमजदा हैं।
0: आयतुल्ला खामनेई के उस तबाह आवास के बाहर अब ईरान के लोग आकर आंसू बहा रहे हैं, उन्हें याद कर रहे हैं, उनसे उनका नेता छीन लिया गया और अब आज उसे सुपुर्द खाक किया जा रहा है। पूरा ईरान शोक में डूबा है। खबरों के मुताबिक आज मशहद में होने वाले अंतिम संस्कार में खामनेई के परिजन और रिश्तेदार भी मौजूद रहेंगे। लेकिन नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई इस अंतिम विदाई में शामिल नहीं होंगे। उनके दूसरे बेटे और सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई सुरक्षा कारणों से सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आएंगे। हालांकि वह पूरे आयोजन पर खुद निगरानी रख रहे हैं और लिखित निर्देशों के जरिए अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहे हैं। पांच जुलाई को तेहरान में भी जब खामनेई का अंतिम दर्शन चल रहा था तब मुस्तफा नहीं पहुंचे थे। उनके अन्य भाइयों ने अपने पिता को श्रद्धांजलि दी थी। साथ ही राष्ट्रपति पेजेश्कियान, स्पीकर गालिबाफ और विदेश मंत्री अराग्ची ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की थी। लेकिन मुस्तफा इस आयोजन से दूर ही थे। अमेरिका और इसराइल से जारी टकराव और सुप्रीम लीडर बनाए जाने के बाद से मुस्तफा पर खतरा बरकरार है और सुपुर्द खाक से पहले ही अमेरिकी हमलों ने उन्हें अपने नए सुप्रीम लीडर को लेकर ईरान की चिंताएं और बढ़ा दी हैं। तेहरान से सुमित चौधरी के साथ आज तक ब्यूरो।
2: इस बीच आपको एक तस्वीर दिखा देते हैं। आयतुल्ला अली खामनेई के ताबूत को ईरान की मशहद ले जाया गया है, मशहद में उन्हें दफनाया जाएगा। अंतिम तैयारियां इस वक्त चल रही हैं पार्थिव शरीर को दफनाने की। इराक के कर्बला शहर में इसे रखा गया है। कल उन्हें ईरान नहीं लाया जा सका था। कुछ घंटे पहले नजफ एयरपोर्ट से विमान ताबूत लेकर मशहद के लिए रवाना हो चुका है। वहां विमान अब पहुंच गया है। तस्वीरें उसी जगह की। खामनेई होंगे सुपरदे खाक। आज इस पूरे प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा। अंतिम पड़ाव पर ये अंतिम संस्कार की प्रक्रिया, अलग अलग शहरों में का ताबूत ले जाया गया था और अब ये मशहद लाया जा चुका है। एक तरफ खामनेई को सुपुर्दे खाक करने की तैयारी में ईरान जुटा है तो दूसरी ओर उसे अमेरिकी हमले का सामना करना पड़ रहा है। सीज फायर को ताक पर रखकर अमेरिका ने आज फिर हमले किए। दो दिन में दूसरा बड़ा हमला है।
3: So we hit him very hard last night. Very, very hard. Probably hit him hard again tonight. I'll give him a little warning. We're going to hit him hard tonight.
4: ट्रंप की धमकी आई और फिर अमेरिकी फौज ने ताबड़तोड़ हमले कर दिए। दो दिनों में दूसरी बार अमेरिकी हथियारों का जखीरा ईरान में तबाही मचा रहा था। पहले दिन अमेरिकी फौज ने ईरान में करीब 80 ठिकानों को तबाह किया और आज ट्रंप का फरमान आते ही उनकी सेना ने 90 ठिकानों को टारगेट किया। अमेरिकी हमले की तबाही के निशान साफ साफ दिख रहे हैं। ईरान के अलग अलग हिस्सों में भारी तबाही मची है। आज हुए हमले के बाद अमेरिका ने सैन्य अभियान फिलहाल रोक दिया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ईरान में तबाही मचाने की तस्वीरें भी जारी की। इसके मुताबिक अमेरिकी मिलिट्री ने एयरपोर्ट के रनवे और मिसाइल लॉन्चर को तबाह कर दिया। अमेरिकी सेना ने कहा है कि अमेरिकी सेना सतर्क है और कमांडर इन चीफ के आदेश पर ऑपरेशन दोबारा शुरू करने को तैयार है। ईरान के शहरों पर रात के अंधेरे में अमेरिकी फौज ने धावा बोला। अमेरिकी सेना ने ईरान पर इतने बारूद बरसाए कि पूरा ईरान दहल गया। ये हमला उस वक्त हुआ जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नाटो देशों की बैठक के लिए तुर्की के अंकारा में थे। वहीं से ट्रंप ने ऐलान किया कि उनकी सेना ईरान पर हमला करेगी। उसके बाद अमेरिकी फौज का ईरान के कई शहरों पर अटैक तेज हो गया। सिरिक, चाबहार, कोनारक, अबू मूसा द्वीप, जास्क द्वीप और बुशहर पर अमेरिका ने हमला किया। ईरानी मीडिया प्रेस टीवी के मुताबिक बंदर अब्बास में 8 धमाके सुने गए। सिरिक में 3 धमाके हुए। वहीं कोनारक और चाबहार के पास 10 धमाकों की आवाज सुनाई दी। अबू मूसा द्वीप, जास्क द्वीप में भी 10 धमाके सुने गए। दक्षिण पूर्वी ईरान में एक एयरपोर्ट पर भी हमला हुआ। उत्तरी ईरान के अकाला रेलवे ब्रिज पर भी अमेरिकी मिसाइल गिरी। ताजा अमेरिकी हमले के दौरान ईरान के खुजिस्तान प्रांत के अहवाज इलाके में 3 लोगों की जान भी चली गई। इरना न्यूज एजेंसी ने जानकारी दी है कि हमले में कई लोग जख्मी हैं। सीज फायर के बाद ये पहली बार है जब अमेरिकी फौज ने ईरान पर इतने बड़े स्तर पर हमला किया। आयतुल्ला अली खामेनेई की अंतिम संस्कार की तैयारियों में जुटे ईरान ने अमेरिकी हमले के बाद पलटवार तेज कर दिया। तनिक भी देर नहीं की, मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों पर ईरान ने मिसाइल और ड्रोन दागे। ईरान का पहला टारगेट बहरीन और जॉर्डन के अमेरिकी बेस बने। कुवैत के आसमान पर भी ईरानी मिसाइल गरजे। ईरान ने अमेरिका को धमकी भी दी कि इन हमलों का अंजाम बुरा होगा। ईरान अमेरिका पर और अमेरिका ईरान पर सीज फायर तोड़ने का आरोप लगाता है। एक तरफ ट्रंप दावा करते हैं कि ईरान डील करना चाहता है, वो डील करने के लिए बेताब है। दूसरी तरफ ईरान पर हमला करते हैं, लेकिन सवाल यह है कि जब ईरान डील चाहता है तो फिर ट्रंप ने उस पर हमला क्यों किया?
3: A little while ago, they want to make a deal so badly.
5: If they want to make a deal, why do you think they attacked commercial vessels?
3: Because they're sort of crazy, to be honest with you. They're sort of crazy.
4: ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान के लोग सनकी हैं, वो कमर्शियल जहाजों पर हमला करते हैं और फिर डील की भी बात करते हैं। जारी तनाव के बीच ट्रंप ने यहां तक दावा किया है कि ईरान की हिट लिस्ट में पहला नाम उन्हीं का है।
5: But was there a specific
3: perhaps someday you want to change?
6: professions.
4: ऐसे दावों के बीच खबर है कि व्हाइट हाउस हॉर्मुज पर कई दिनों तक चलने वाले सैन्य ऑपरेशन की तैयारी में जुटा है। समाचार एजेंसी एक्सियोस के हवाले से यह खबर है। आज तक के
2: तो अमेरिका ने ईरान के जिन ठिकानों को टारगेट किया उस पर और जानकारी दे रहे हैं आज तक संवाददाता आशुतोष मिश्रा।
7: ईरान में कहां कहां हमले हुए आपको ये भी दिखा देते हैं। ये वो इलाके हैं जो मार्क किए गए जहां पर ईरान की नौसैनिक, और इनमें खास बात अगर आप देखेंगे कि ये सारे शहर दरअसल वो इलाके हैं जो ईरान की कोस्टल लाइन पे हैं, या तो उसकी ताकत है या फिर उसकी कोस्टल लाइन पर है, ताकि वहां पर उसकी जो नौसेना है, उन्होंने पहले ही कहा कि हमने तो उनके 135 जहाज डुबा दी। तो कहां कहां हमले हुए, बंदर अब्बास सबसे क्रिटिकल पोर्ट, उसका ऊर्जा का संसाधन यहां से है, बंदर अब्बास से लोडेड शिप जो है वो क्रूड ऑयल लेकर के दुनिया भर में जाते हैं। इसी के साथ जास्का आइलैंड भी ईरान की एनर्जी की रीढ़ की हड्डी है, कमर की हड्डी है, उस पर हमला किया गया। उसी के साथ चाबहार पोर्ट अगर आपको याद हो वो जगह जहां भारत का अपना भी इंटरेस्ट था, भारत भी इस पोर्ट को विकसित कर रहा था, लेकिन उसके बाद जब सैंक्शन प्रतिबंध अमेरिका ने लगा दिया तो भारत ने हाथ यहां से खींच लिया। उसके बाद कोणार्क, अब कोणार्क के साथ साथ ये जो चाबहार है ये दोनों अब बेहद नजदीक है। अब कोणार्क के पास दरअसल उसकी नेवल फ्लीट थी, उसकी सबमरीन भी थी। अगर आपको 28 फरवरी को तारीख याद हो तो मार्च

0: के लिए अबू मूसा द्वीप पर, उसका बड़ा नौसैनिक अड्डा, उसी के साथ बुशहर और सिरिक, ये उसके दो शहर हैं, लेकिन ये भी तटीय शहर हैं।
1: वहीं युद्ध विराम के बाद पहली बार अमेरिकी सेना ने चाबहार पर हमला किया है। इससे ईरान की रणनीतिक हिंद महासागर तट पर एक नया मोर्चा खुल गया है। बंदरगाह शहर चाबहार में कई जगहों पर धमाके सुने गए। ईरान के सरकारी मीडिया ने शहर के कुछ हिस्सों में बड़े पैमाने पर बिजली कटौती की बात कही है। लोगों की माने तो उन्हें कई धमाके सुनाई दिए हैं। बुनियादी ढांचे और सैन्य सुविधाओं को निशाना बनाया जा रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक हमलों में समुद्री ट्रैफिक कंट्रोल टावर और पास की सैन्य संपत्तियों को नुकसान पहुंचा है। यह चाबहार रणनीतिक रूप से काफी अहम है, क्योंकि ये ईरान का एकमात्र गहरे पानी वाला समुद्र बंदरगाह है और हिंद महासागर तक तेहरान के सबसे अहम प्रवेश द्वार में से एक है। इस बंदरगाह को ईरान के लिए प्रमुख आर्थिक जीवन रेखा माना जाता रहा है। इसे भारत से भी भारी निवेश मिला है, जिसका मकसद पाकिस्तान को दरकिनार कर दक्षिण एशिया को अफगानिस्तान और मध्य एशिया से जोड़ने वाला एक व्यापार गलियारा विकसित करना है। इस बुलेटिन में मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। Accuray, the number one Korean skincare brand, now in India.
4: Need better internet? Cox Internet has the fast, reliable speeds you're looking for. Perfect for seamless streaming, gaming, and working from home. And now get Cox 300 meg internet with a 2-year plan price lock guarantee, plus equipment included. Oh yeah! So get your household up to speed. Switch to Cox Internet today. Taxes and fees excluded from price guarantee.
5: To 15-year-old Harper, buying an $80 vintage rock t-shirt is a great investment. To Harper's mom, this logic has a few holes in it. So she helped Harper open a Wells Fargo Clear Access banking account. With no overdraft fees and tools to track spending, Harper's learning one heavy metal tee at a time. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
6: Terms apply. Visit wellsfargo.com/deposit disclosures for fees and details.
7: Tune in's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
8: Looking for your favorite local radio stations? Look no further. TuneIn has got you covered. Not only can you stream all the best music, news, sports from all around the world, but you can also listen to all your local radio stations. Just head to the radio page on TuneIn to listen, and you can explore our interactive map to find all the local stations you know and love. Are you ready to dive in? Start listening today.
2: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste Complete Oral Health Ka Sach. In association with
3: Bharat Ki Apni Electric Sawari Sokudo. Accuray, the number one Korean skincare brand, now in India.
9: Durable pipes, fittings and tanks, a complete range of sanitary solutions.
5: To 15-year-old Harper, buying an $80 vintage rock t-shirt is a great investment. To Harper's mom, this logic has a few holes in it. So she helped Harper open a Wells Fargo Clear Access banking account. With no overdraft fees and tools to track spending, Harper's learning one heavy metal tee at a time. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
6: Terms apply. Visit wellsfargo.com/deposit disclosures for fees and details.
7: Tune in's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
8: TuneIn has got your favorite podcast, from sports to special interests. Did you know that you can listen to all your favorites offline? It's simple. Just head to any podcast page, tap the three little dots next to the episode title, and hit download. Whether it's true crime, lifestyle, health, and science, or anything else, stream your favorite podcasts and listen to them anytime, anywhere.
10: महाराष्ट्र इस वक्त मूसलाधार आफत का सामना कर रहा है। शासन प्रशासन की सारी तैयारियां बेबस नजर आ रही हैं। मुंबई से सटे पालघर में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते सड़कें मानो दरिया बन गई हैं। नदी में उफान के चलते हालात काफी खराब हो गए हैं। निचले

0: इलाकों में पानी भर गया है। सड़कों पर पानी आ जाने की वजह से गाड़ियों की रफ्तार में ब्रेक लग गया है। पालघर में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। बारिश और हादसों की वजह से अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 3 लोग घायल हैं। पालघर ही नहीं महाराष्ट्र के दूसरे इलाकों में भी हाल काफी खराब है। पुणे का हाल देख लीजिए, सड़कें दरिया बन गई हैं, गलियां मानो जैसे समंदर हो गयी। नासिक में भी बारिश मुसीबत बनकर बरस रही है। गोदावरी समेत कई नदियां उफान पर हैं, हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। त्र्यंबकेश्वर में भी चारों तरफ पानी पानी दिख रहा है। सड़कों पर सैलाब ही सैलाब है, खेत खलिहान सब डूब चुके हैं। वहीं मौसम विभाग ने मुंबई ठाणे के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है, जिसके चलते महाराष्ट्र को अभी बारिश से राहत मिलती नहीं दिख रही है। पालघर से विद्या और पुणे से ऋषिकृष्ण पांचाल के साथ आज तक।
1: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
2: इथेनॉल से नुकसान हो रहा है सर गाड़ियों?
3: मारुति सुजुकी के पास एक भी कंप्लेन नहीं है, टोयोटा के पास एक भी कंप्लेन नहीं है। मुझे बदनाम करने के लिए और इथेनॉल को बदनाम करने के लिए प्रयास है।
2: नए नए एक्सप्रेसवेज जो बन रहे हैं उनमें गड्ढे,
3: हमारे हाईवे में जितने गड्ढे हैं उसके ऊपर आप कार्यक्रम करिए और दिखा दीजिए।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
5: इन एसोसिएशन विद
6: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

दिल्ली एनसीआर में लगातार बारिश, मौसम विभाग का रेड अलर्ट, रोहिणी में गिरी इमारत, 3 की मौत, गाजियाबाद में डूबे कई इलाके, मेरठ नेशनल हाईवे तक घुटनों तक पानी पानी, ट्रैफिक हुआ जाम। गुजरात के बिजनेस कैपिटल में त्राहिमाम, सूरत में भरा पानी, महाराष्ट्र के रायगढ़ में बहते 3000 सिलेंडर से बड़ा खतरा, उत्तराखंड में नेशनल हाईवे 707 ए के पास लैंडस्लाइड। ऑस्ट्रेलिया के साथ साझा घोषणा पत्र में पीएम मोदी की क्रिकेट डिप्लोमेसी, कहा वनडे जैसे फैसले टेस्ट जैसे रिश्ते, इंडो पैसिफिक की सुरक्षा पर समझौता, आतंक के खिलाफ दोनों देश। यूपी के बांदा में अखिलेश यादव पर योगी का करारा हमला, कहा 2017 से पहले की सरकारों ने कब्रिस्तान बनाने में खर्च किए पैसे, बीजेपी ने बनाया राम मंदिर और काशी विश्वनाथ। बुशहर, चाबहार, बंदर अब्बास समेत ईरान में 90 ठिकानों पर अमेरिका ने गिराए बम, ट्रंप ने कहा 20 गुना ताकत से जवाब देंगे, ईरान का पलटवार, कुवैत और बहरीन में जंगी सायरन।

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। दो बज गए हैं, न्यूज रूम लाइव में एक बार फिर आप सभी के सामने हाजिर हैं। और जैसा कि हमेशा होता है न्यूज रूम लाइव में, सबसे पहले हम आपको बताते हैं कौन सी खबरें हम आपको दिखाने वाले हैं। तो वो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं, आज सबसे पहले जिस खबर के बारे में बात की जाएगी वो हम आपको बता देते हैं। आज अयोध्या में लेकर चढ़ावा चोरी को लेकर दिल्ली वर्सेस लखनऊ, क्या है ये पूरा मामला, ये डिटेल में हम आपको बताएंगे। इसके बाद बात हम करेंगे कहां की, पंजाब की। पंजाब कांग्रेस की जो कला है इसमें सुलह कैसे होगा, क्योंकि पंजाब में भी चुनाव नजदीक है, कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है। तीसरी जो हमारी बड़ी खबर रहेगी वो भी हम आपको बता देते हैं, ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, किस तरह की डिप्लोमेसी पीएम नरेंद्र मोदी ने अपनाई है, कैसे रिश्ते मजबूत होंगे, ये हम आपको बताएंगे। और ठीक 2:30 बजे हम आपको बताएंगे बारिश की वजह से हालात कैसे हैं, ये मानसून की बारिश अब आगे और क्या क्या करेगी, लोगों की परेशानी कितनी बढ़ाएगी, क्योंकि बारिश की वजह से लोगों की परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, लोगों की समस्याओं में इजाफा होता जा रहा है और बारिश की वजह से हर जगह हाल बेहाल हो गया। इसीलिए आज सबसे पहले बारिश से जुड़ी 10 बड़ी खबरें आपको बताएंगे। मानसून की पहली बारिश में ही दिल्ली का पूरा दम, कई इलाकों में जल भराव से वाहनों की आवाजाही पर पड़ा असर। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जल भराव, तेज बारिश के बाद स्टेशन परिसर में पानी भर गया, यात्रियों को भारी परेशानी। दिल्ली के वीवीआईपी इलाके में भी पानी, संसद भवन के करीब सांसदों की आवास के बाहर भी पानी जम गया। रोहिणी इलाके में मकान गिरने से 3 की मौत, पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा ने कंट्रोल रूम जाकर किया हालात का मुआयना, कहा इस बार हॉटस्पॉट पर भी वाटर लॉगिंग नहीं है। गाजियाबाद में वसुंधरा में अटल चौक के पास भारी बारिश के बाद सड़क धंसने से एक कार और स्कूटर गड्ढे में गिरे, बाल बाल बची जिंदगी। NH24 पर जल भराव से ट्रैफिक प्रभावित, दफ्तर आने जाने वालों को भारी दिक्कत। गाजियाबाद के रिहायशी इलाके क्रॉसिंग रिपब्लिक में भी सड़कों पर भारी जल भराव से परेशानी, कमर तक पानी में रेंगते दिखी कार और दोपहिया वाहन। इंदिरापुरम में भी कई इलाकों में पानी भरने से लोगों की मुसीबत बढ़ी। नोएडा सेक्टर 62 लेवर चौक पर जलभराव, सड़कों पर भरा पानी, लोगों को आवाजाही में परेशानी। लगातार हो रही बारिश की वजह से नोएडा की कई सड़कें हुई जलमग्न, प्राधिकरण के दावों की खुली पोल, फिल्म सिटी में भी पानी। यूपी के सहारनपुर में बारिश का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है, उफनती नदी में बहे बाइक सवार, ग्रामीणों ने बचाई महिला सहित 3 की जान, घटना का वीडियो वायरल, प्रशासन ने दी एहतियात बरतने की हिदायत। टिहरी गढ़वाल के कद्दूखाल में भूस्खलन हुआ, यह घटना NH707A के पास हुई, एहतियातन इलाके को खाली कराया गया। आज और कल पूरे उत्तराखंड में भारी बारिश की आशंका है, मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। महाराष्ट्र के रायगढ़ में भारी बारिश के चलते करीब 3000 LPG सिलेंडर नदी में बह गए, सिलेंडर गोदाम में बाढ़ का पानी घुसने के बाद सैलाब हजारों सिलेंडर बहा ले गया, कई भरे हुए सिलेंडर के पानी में तैरने की वजह से आसपास के इलाकों को खतरा है, प्रशासन ने सावधानी बरतने की चेतावनी दी है। उत्तराखंड के कई इलाकों में पहाड़ दरकने से कहर बरपा है, ऋषिकेश में लगातार बारिश के कारण गंगा नदी का जलस्तर बढ़ रहा है, स्थानीय प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने और आवश्यक सावधानी बरतने की सलाह दी है, आने वाले 24 घंटे में मुसीबत बढ़ सकती है। सूरत में बारिश का कहर, कई इलाके जलमग्न, वराछा में स्थित पोदार आर्केड के बेसमेंट समेत पहली मंजिल से 24 घंटे बाद उतरा पानी, लेकिन तब तक हुआ लाखों का नुकसान। तो अयोध्या की बात कर लेते हैं और बड़ी खबर आपको बताते हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से एक बड़ा बयान दिया गया है और उन्होंने कहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कि पहले किस तरह की चर्चाएं होती थी, पहले कब्रिस्तानों में पैसे लगाए जाते थे लेकिन अब मंदिरों में पैसे लगाए जा रहे हैं, ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। अयोध्या के राम मंदिर में चंदा चोरी के मामले को लेकर सवालों का सामना कर रहे योगी आदित्यनाथ ने आज फिर से मंदिर बनाम कब्रिस्तान का मुद्दा उठाया। बांदा में योगी ने किस अंदाज में हमला किया पहले वो देखिए।
1: कुछ लोगों ने हिंदू परंपरा और सनातन को अपमानित करना, सनातन परंपरा को कोसना ही अपना जीवन का एकमात्र ध्येय बनाया है। याद करिए, हम विरासत का संरक्षण करने के लिए जो पैसा आज हमारे जनप्रतिनिधिगण मंदिरों के सुंदरीकरण के कार्य के लिए प्रदान करते हैं, ये पैसा समाजवादी पार्टी, पैसा तो आपका, अंतर यही है बीजेपी की सरकार आई तो पैसा मंदिरों के विकास के लिए, धामों के सुंदरीकरण में खर्च हो रहा है, और समाजवादी पार्टी के समय वही पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल के लिए चला जाता था। उनको कब्रिस्तान प्यारा है, इसलिए वे राम मंदिर और काशी विश्वनाथ धाम और मां विंध्यवासिनी धाम और नैमी सारण्य और चित्रकूट धाम के विकास का विरोध करते हैं।
0: तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंदिर वर्सेस कब्रिस्तान का एक बयान दे रहे हैं कि पुरानी सरकार में क्या हो जाता, लेकिन अखिलेश यादव क्या कर रहे हैं? अखिलेश यादव की तरफ से एसआईटी पर सवाल उठा दिए गए हैं और अखिलेश यादव की तरफ से कहा जा रहा है कि एसआईटी में जो जांच करने वाले हैं उन पर खुद पर 420 का मुकदमा दर्ज है। तो ऐसे में क्या निष्पक्ष जांच की उम्मीद कर सकते हैं? ये दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई है, ये अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया है।
2: लिपापोती एसआईटी किसने मनाई है? और सुनने में आया कि एसआईटी में भी सवाल खड़े हो गए हैं। एसआईटी में जो कोई सदस्य हैं उन पे 420 का मुकदमा है। अब बताइए वही रहेंगे एसआईटी में? ये लड़ाई बड़ी है, आप नहीं समझ पा रहे हो, ये दिल्ली लखनऊ की लड़ाई है। दिल्ली वाले अगर जांच करते तो ईडी सीबीआई इनकम टैक्स करते। आज भी यूपी में आपने देखा होगा, अखबार पढ़ा होगा, किसी की दीवालों से कुछ निकल रहा है, किसी पे बंडल निकल रहा है।
0: तो देखिए बयानबाजी हो रही है, सियासत जारी अपनी ओर, लेकिन एसआईटी की जांच भी जारी है और एसआईटी की जांच जब हो रही है तो बहुत से खुलासे अब सामने आ रहे हैं और ये भी पता चला है कि ये जो आरोपी है ना, ये पैसे को वाइड कैसे करते थे, अपने रिश्तेदारों को पहले रकम पहुंचाते थे उनके अकाउंट में, चोरी की रकम का मनी ट्रेल मिला है। क्योंकि जांच अब आगे बढ़ रही है तो बड़े खुलासे भी हो रहे हैं, अपने रिश्तेदारों के अकाउंट में ये पैसे डालते थे और फिर वहां से ये पैसे अपने अकाउंट में वापस डलवाते थे। तो रिश्तेदारों को इन्होंने शामिल कर दिया था, हालांकि रिश्तेदारों को बहुत से लोगों को जानकारी नहीं थी कि ऐसा हो चुका है। दूसरों के खातों को भी ये खुद ऑपरेट करते थे, वहां से पैसे पहुंचाना और फिर पैसे वहां से लाना ताकि ट्रांजेक्शन दिख सके और बता सके कि हाँ भाई ईमानदारी का पैसा है। अब तक 30 ऐसे खाते जांच में सीज किए गए हैं, फ्रीज किए गए हैं। बैंकों को बोल दिया गया है कि ये 30 खाते ऐसे हैं जिसमें लेन देन हुआ है, सबूत मिले हैं, तो उनको फ्रीज कर दिया गया है। अब उसकी जांच की जा रही है। अब कुछ लोगों को मालूम था कि ऐसा किया जा रहा है, जैसे अविनाश शुक्ला का भाई, और उसके बारे में बताया जा रहा था कि जानकारी थी कि अकाउंट से पैसे यहां पहुंचाए जा रहे हैं और उसके पैसे यहां पर पहुंचाए जा रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे, दिमाग लगाने की पूरी कोशिश कर रहे थे सारे आरोपी जो अब गिरफ्तार किए गए हैं, पूछताछ अब खुलासे आ रहे हैं। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जल्द ही अयोध्या जाएगी एसआईटी की टीम। ये बहुत बड़ी खबर है और बड़ी खबर इसलिए भी है क्योंकि देखिए एसआईटी को अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी है। अब 15 जुलाई को अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंपनी है। पिछले 3 हफ्तों में इकट्ठा किए गए दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक मौखिक सबूतों की जांच के बाद अपने निष्कर्षों का मसौदा तैयार करने के अंतिम चरण में है और अंतिम रूप देने से पहले रिपोर्ट को अयोध्या में एक आखिरी बार फील्ड वेरिफिकेशन करना चाहती है। और इस दौरे का मकसद आरोपियों से हिरासत में पूछताछ के दौरान मिले सबूतों का मिलान करना है। समर्थ हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं तो उनसे बात कर लेते हैं। समर्थ जरा ये बताइए कि अयोध्या एक बार फिर जब एसआईटी की टीम पहुंचेगी तो इस बार ये दौरा क्यों बहुत खास होगा?
3: हिमांशु देखिए, सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी मिल रही है कि एसआईटी की टीम एक बार और अभी अयोध्या आ सकती है और ये पहला कहीं ना कहीं एक बड़ा एक तरीके से दौरा होने वाला है, क्योंकि ये आखिरी दौरा भी होगा। फाइनल रिपोर्ट 15 जुलाई को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपनी है, तो उसके सौंपने से पहले ये दौरा जो है एसआईटी का बेहद अहम माना जा रहा है। फील्ड पर उतरेगी एसआईटी और कई ऐसी जगहों पर जाएगी जहां पर निशान जो आरोपी है उनकी निशानदेही पर पहुंचेगी, जहां जहां से बरामदगी की गई है वहां पहुंचेगी, जहां ये लोग आपस में नगदी का बंदरबांट करते थे वहां पहुंचेगी। एक बड़ी बात और सामने आई है, कल पुलिस की इंटरोगेशन में आरोपियों ने कहा है कि उन्हें मालूम था कि वो पकड़े नहीं जाएंगे, क्योंकि टुन्नू यादव और सुभाष के साथ मिलकर पूरा नेक्सस चल रहा था, इन दोनों का सपोर्ट था और 6 लोग मिलकर चोरी कर रहे थे। तो ये जो नेक्सस है उनको लगा कभी भंडाफोड़ होगा ही नहीं, इसीलिए बड़े स्तर पर ये नेक्सस चलता रहा। अब जो बात आ रही है कि 30 अकाउंट्स जो हैं उनको फ्रीज कर दिया है यूपी पुलिस ने, रीजन ये है क्योंकि अपने ही रिश्तेदारों की मदद लेते थे ये आरोपी अपने पैसे को वाइट करने के लिए, यानी कि जो डोनेशन का पैसा चुराया जाता था उसको वाइट करने के लिए अपने ही रिश्तेदारों के कंधे पर बंदूक रखकर यहां चलाई जा रही थी। कई रिश्तेदार इनके ऐसे भी हैं जिनको इस बात का इल्म ही नहीं था। अब हुआ क्या इसके बाद, इन्वेस्टिगेशन में इनके रिश्तेदार भी ऐड हो गए, कुछ एकाध के रिश्तेदार हैं जिनसे पुलिस ने कर पूछताछ भी की है, लेकिन बड़ी बात यह है कि एसआईटी का अयोध्या में कुछ ही पलों में, आज कल परसों कब आएगी ये नहीं मालूम है, लेकिन आना तय है। ये तीसरा दौरा एसआईटी का सबसे ज्यादा अहम होने वाला है मानशु, और इसमें बड़े राज जो है जो दबे हैं अभी भी अयोध्या। नाम है वो खुलेंगे और जो ट्रस्ट के बड़े नाम है उनके नाम भी आखिरी रिपोर्ट में शामिल हो सकते हैं, इस पर सबकी नजर बनी हुई है।
0: 15 जुलाई को वो आखिरी रिपोर्ट यहाँ पर सौंपनी है। बिल्कुल सही कहा आपने, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सबसे बड़ी बात है वो यहाँ पर आप देखिए कि जांच जब आगे बढ़ रही है ना तो खुलासे हो रहे हैं। आरोपियों से पूछताछ हुआ तो उन्होंने क्या बताया कि उनके साथ में जब टिन्नू यादव था तो उनके लिए बहुत आसान हो गया था ये सारा काम करना। मॉडस ऑपरेंडी किस तरह से उनकी हो गई थी एक रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं।
4: लोगों का ये निश्चय है कि इस प्रकार का अपराध जिन लोगों ने किया है उनकी जांच होनी चाहिए, उनको दंड मिलना चाहिए।
5: हनुमान जी निर्णय करेंगे, निश्चित बात है, छोड़ेंगे नहीं।
6: वहाँ पे भगवान के दरबार में पहले से ही लोगों को बैठा हो ताकि वहाँ से फिर से विश्वास की बहाली हो।
7: रामधन में सेंधमारी हुई तो संतों साधुओं का आक्रोश स्वाभाविक था। रामधन की लूट हुई तो आरोपियों के हिसाब किताब की आवाज बुलंद होना भी स्वाभाविक था। स्वाभाविक था यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का ये कहना कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा।
8: जो प्रमाण मिले केवल 6 लोग इसमें चोरी करते हुए पाए गए, कुल 6 लोग, 2 लोग उसमें साजिश का पार्ट थे, यानी कुल 8 लोग। एसआईटी ने अपनी सिफारिश ट्रस्ट को भेज दी, ट्रस्ट ने उसके अनुसार एफआईआर दर्ज करवाई, कार्रवाई हो गई।
7: शर्मसार कर देने वाले चोरी के अपराध पर गुस्सा, क्षोभ, आक्रोश सब कुछ स्वाभाविक था, लेकिन अब जो हो रहा है वो स्वाभाविक नहीं है। चंपत राय पर अब तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। एसआईटी रिपोर्ट में नाम होने के बाद भी अनिल मिश्रा पर एक्शन नहीं हुआ है और गोपाल राव अभी तक ट्रस्ट में बने हुए हैं और डंके की चोट पर कह रहे हैं कि नहीं हटेंगे।
9: नहीं, किसी को बाहर नहीं किया है। नहीं नहीं, गलत है, गलत संदेश है, गलत
10: तरीके से। बंद कराइए,
11: मंदिर में हम रहेंगे।
9: हाँ रहेंगे,
11: रहेंगे।
7: अदना से अदना इंसान से पूछ लीजिए तो यही कहेगा कि अपराध हुआ है तो मुकदमा होना चाहिए, अपराधियों को पद से हटना चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। लेकिन अयोध्या में गंगा उल्टी बहाने की कोशिश हो रही है, छोटी मछलियों को निगलने की कोशिश हो रही है, बड़े मगरमच्छों पर हाथ डालने की हिम्मत नहीं हो रही। जैसे कि बुधवार को 3 आरोपियों अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, करुणेश पांडे को रिमांड में लेकर पुलिस भीखापुर में आम के बाग में ले जाकर पूछताछ करती है। आरोप है कि यहीं चढ़ावा चोरी की रकम की बंदरबांट होती थी।
12: यहाँ पर सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि ये वो जगह है जहाँ पर बंदरबांट हुआ करता था और आरोपी जो पैसा गणना लेते थे करते थे उसके बाद जो चुराया हुआ पैसा होता था उसको वहीं पर बांट लिया जाता था भारी पुलिस फोर्स के बीच में। आरोपियों को जो है वो यहाँ लाया गया है।
7: खबर है कि पूछताछ में अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा और करुणेश पांडे ने कई और राज उगले हैं। आरोपियों ने बताया कि चोरी की रकम अपने करीबियों और रिश्तेदारों को भेजते थे, उनसे अपने खातों में रकम ट्रांसफर करवाते थे ताकि रकम का स्रोत छिपा रहे और शक ना हो। बैंक डिटेल से इसकी पुष्टि भी हुई है। खबर ये भी है कि आरोपियों ने माना है कि उन्होंने चोरी की और टिन्नू और गणना इंचार्ज सुभाष श्रीवास्तव की मिलीभगत होने से रकम पार करने में कभी कोई दिक्कत ही नहीं। आरोपियों ने यह भी माना कि उन्हें पता था कि पकड़े नहीं जाएंगे, इसलिए वो बेफिक्री से चोरी करते थे। कोशिश होती थी कि एक बार में ज्यादा से ज्यादा रकम बाहर ले जाएं। तो राम मंदिर में चोरी का खुला खेल चल रहा था, लेकिन अब भी बड़ा सवाल यह है कि छोटे खिलाड़ी तो दबोच लिए गए लेकिन बड़े खिलाड़ियों पर एक्शन कब होगा। आशीष श्रीवास्तव के साथ समर्थ श्रीवास्तव, अयोध्या आज तक।
0: जांच चल रही है, कांग्रेस सवाल भी उठा रही है। कांग्रेस के नेता प्रमोद तिवारी की तरफ से कहा गया है कि ये जो लूट कर रहे थे ये आरोपी, इनके पीछे बड़ा कौन है चेहरा, इसकी जांच होनी चाहिए।
13: फिर एक संगठित गिरोह है जो उसे बाहर ले जाता है, फिर वही संगठित गिरोह रिश्तेदारों के खाते में डालता है और वहां से वाइट करता है। तो ये एक साधारण अपराध नहीं है, ऑर्गेनाइज क्राइम, ऑर्गेनाइज गैंग द्वारा हुआ है। और इन सब को किसने रखा था, किसने रखा था? सिर्फ महामंत्री जी ने, चंपत राय जी ने, चंपत राय कैसे बेदाग बच सकते हैं, उनके नाक के नीचे हो रहा है, उनके लोग कर रहे हैं, तो वो कैसे बच सकते हैं। मैं जानना चाहता हूं योगी जी, अगर किसी और ने किया होता तो अब तक बुलडोजर गरज गया होता, क्या बुलडोजर की बैटरी बनने चली गई है? बुलाइए और अपराधियों को ऐसा सबक दीजिए।
0: अब बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिप्लोमेसी की करते हैं। ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं और मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया सीईओ मिलन में शिरकत भी करते हैं, और इस दौरान ऑस्ट्रेलिया भारत के जो क्रिकेट के रिश्ते हैं उसको लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी बात कही और कहा कि हमारी साझेदारी टेस्ट जैसी है, हमारे एजेंडे में वनडे मैच जैसा फोकस है।
10: क्रिकेट भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्तों की अपनी डिप्लोमेटिक लैंग्वेज है, इसलिए हमारी मीटिंग्स भी क्रिकेट जैसी लगती है। एजेंडा वनडे जैसा फोकस है, डिसीजन ट्वीट एंट्री जितने तेज है और पार्टनरशिप टेस्ट मैच जितनी लंबी और गहरी। आने वाले वर्षों में दोनों देशों में ओलंपिक्स और कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े स्पोर्टिंग इवेंट्स आयोजित किए जाएंगे, इससे हमारा खेल सहयोग तो बढ़ेगा ही, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश की भी अनेक संभावनाएं बनेगी। एक क्षेत्र ऐसे है व्यापार के, अब तो डिफेंस का क्षेत्र भी ऐसा है, स्पेस का क्षेत्र ऐसा है, टेक्नोलॉजी का क्षेत्र है, और 21वीं सदी जब टेक्नोलॉजी ड्रिवन शताब्दी है तो हम मिलकर के उस क्षेत्र में भी काफी कर सकते हैं। और खुशी की बात है, हमारी युवा जनरेशन एक प्रकार से साथ साथ ग्रो कर रही है। जिस तेजी से भारत के युवाओं को यहाँ पर स्वागत सम्मान मिला है, दो देशों की युवा शक्ति का साथ साथ ग्रो होना, वो भी दुनिया के लिए यानी इस पूरी सेंचुरी के ऊपर एक बहुत बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट करने वाली एक बहुत बड़ी प्रयोगशाला बन रहा है ऑस्ट्रेलिया इंडिया का संबंध, जिसके डीएनए में डेमोक्रेसी है, टेक्नोलॉजी सहज स्वभाव है, इनोवेशन के प्रति रुचि है, और मैं समझता हूँ टेक्नोलॉजी के प्रति कमिटेड है। ऐसी एक सोसाइटी पूरा विश्व के लिए एक बहुत बड़ा कैटलिक एजेंट का रोल करेगा, और ये मैं साफ साफ देख रहा हूँ कि भारत ऑस्ट्रेलिया के संबंधों में से विश्व को बहुत बड़ा लाभ होने की संभावना मैं देख रहा हूँ।
0: तो देश में अवैध घुसपैठियों की वजह से होने वाली जो डेमोग्राफी में बदलाव है उसको रोकने के लिए सरकार ने अब भरसक प्रयास शुरू कर दिए हैं, और इसी के चलते आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बैठक होने वाली है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। सीमावर्ती जो जिले हैं, देश भर के सीमावर्ती जिले, उनके पुलिस अधीक्षकों के साथ कार्यक्रम है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सीमावर्ती जिलों के दौरे के बाद ये अहम कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। अब इस कॉन्फ्रेंस में सभी सरहदी जिलों के कप्तान, पुलिस कप्तान जिन्हें एसपी कहा जाता है, वो बुलाए गए हैं। केंद्र सरकार ने 26 मई को ही रिटायर्ड जस्टिस प्रकाश प्रभालकर नवलकर की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कमेटी बनाई है, और जिसे सीमावर्ती जिलों की अस्वाभाविक डेमोग्राफी बदलाव का अध्ययन करने को कहा गया है। पंजाब कांग्रेस की भी बात कर लेते हैं। चुनावों से पहले जबरदस्त उठापटक इस वक्त पंजाब कांग्रेस में देखने को मिल रही है। चरणजीत सिंह चन्नी, उनके समर्थक, अब ये बताया जा रहा है कि ये कांग्रेस आलाकमान की मुश्किलें बढ़ाते हुए दिख रहा है। पंजाब कांग्रेस के प्रभारी अभी पंजाब में ही है, और इसी बीच कुछ कांग्रेस विधायकों की बैठक की खबर आ रही है। माना जा रहा है कि चन्नी गुट की यह बैठक है, चरणजीत सिंह चन्नी भी मौजूद है। अमन भारद्वाज जुड़े हुए हमारे साथ। अमन, ये जो गुटबाजी इस वक्त चल रही है, ये कितना लंबा खिंच सकती है और क्या आला कमान की तरफ से कदम उठाए गए हैं?
14: देखिए, चार दिन से तो लगातार हम देख ही रहे हैं, और पिछले हफ्ते मोरिंडा में क्योंकि चरणजीत चन्नी की रिहाइश पर बैठक हुई थी तो एक हफ्ते का तो समय हो गया है, लेकिन पिछले तीन दिनों से कोई तवज्जो हाईकमांड से नहीं मिली। यहाँ पर इस गुट के, चन्नी गुट के जो व्यूज हैं, रिव्यूज हैं, और जो ग्रीवियंसिस हैं, जो मतभेद हैं, उसको लेकर हाईकमान तक अप्रोच किया गया, पर यह बताया जाता है कि सीनियर लीडर्स के पीए जो हैं उन्होंने फोन नहीं उठाया, कोई मुलाकात का समय नहीं मिला, इसी के चलते अब वापस उनको भूपेश बघेल के रास्ते ही अपने ग्रीवियंसेस रखने का मौका मिलेगा। हालांकि पिछले चार दिनों से आप देखिए हिमांशु की बैठकें लगातार भूपेश बघेल की ओर से की जा रही हैं और कल का समय दिया गया है इन लीडर्स को, इन कमेटीज को, जिसके मुखिया चरणजीत चन्नी या सुखजिंदर रंधावा जो जो नाराज हैं या एक गुट में हैं उनको कल का समय उन कमेटीज को दिया गया है। तो अब ये डेडलॉक यहाँ पर आकर खत्म हुआ है कि ये गुट जो है आज जो इन्होंने बैठक की, ढाई घंटे मीटिंग चली, सेक्टर 4 राणा गुरजीत जो फॉर्मर मिनिस्टर और एमएलए हैं उनके घर मीटिंग हुई इसी गुट की। तो अब चरणजीत चन्नी, सुखजिंदर रंधावा या पूरा गुट ये प्रगट सिंह भूपेश बघेल से कल कांग्रेस दफ्तर या उनके साथ मुलाकात करेगा और अपनी जो उनकी नाराजगी या डिफरेंस ओपिनियन इसको वो नाम दे रहे हैं उसके बारे में उनको उनके संदर्भ में उनके ध्यान में लाएगा।
0: मतलब बहुत बड़ी परेशानी यहाँ पर कांग्रेस के लिए है, इस पर जल्द से जल्द लगाम लगाने की चुनौती भी है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आइए अब बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जहाँ संजय राउत की तरफ से एक बड़ा बयान दिया गया और उनका ये कहना है कि जो शरद पवार हैं वो जो गद्दार नेता हैं उनको ज्यादा इज्जत दे रहे हैं, ऐसा शरद पवार के लिए कहना है संजय राउत का। महाराष्ट्र का सियासी माहौल गर्मा गया। शिवसेना ने इस मुलाकात पर नाराजगी जताई शरद पवार और एकनाथ शिंदे की। संजय राउत ने कहा पवार गद्दार नेताओं को इज्जत दे रहे हैं। कल शरद पवार गुट की बैठक के लिए शरद पवार विज्ञान भवन पहुंचे थे और ये बैठक एकनाथ शिंदे के ऑफिस में हुई। ऋत्विक भालेकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋत्विक, क्या वजह रही कि संजय राउत को इस तरह का बयान देने पड़ा और अब आगे क्या?
15: जी बिल्कुल, देखिए कल जो एकनाथ शिंदे की केबिन में जिस तरह से शरद पवार की अचानक से एंट्री हुई और उसके बाद कैबिनेट बैठक छोड़ एकनाथ शिंदे शरद पवार से मिलने पहुंचे, उन्होंने हौसला अफजाई की, मुलाकात हुई, 15-20 मिनट तक चर्चा भी हुई, इन सारे चीजों की वजह से ये जाहिर सी बात है कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना को तो दुख होगा और वही नाराजगी कड़े शब्दों में संजय राउत ने भी आज सुबह जताई है। उनका कहना है कि आप गद्दारों को प्रतिष्ठा देने की काम कर रहे हैं और ये तभी हो सकता है जब आपके बारे में जो विश्वास लोगों में है वो कम हो जाएगा, तो आप अपनी विश्वासार्हता भी इससे जो है वो कम करने की कोशिश कर रहे हैं और आपके विधायकों की बैठक एकनाथ शिंदे की केबिन में लेना ये उचित नहीं है। इससे कहीं ना कहीं एक गलत संदेश जाता है, एक गलत संकेत जाता है, क्योंकि जिस तरह से उद्धव ठाकरे की पार्टी को फोड़ा था, एकनाथ शिंदे ने दोफाड़ किया था, उसी तरह कहीं ना कहीं शरद पवार की पार्टी में भी दो कुट हुए थे और उन्हें कोई हक नहीं बनता इसके बारे में बात करने का अगर वो एकनाथ शिंदे को जाकर मिलते हैं।
0: मतलब ये कहा जा सकता है कि महाराष्ट्र की सियासत में बहुत कुछ देखना बाकी है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए आज तक।
16: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से, इन एसोसिएशन विद भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। एकजे द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड।
17: Music for every mood lives on TuneIn. Whether you want to relax, focus, or turn things up, you'll find the right station. Hear from the top stations like today's hits, classic rock, coffee house, and more. Stream non-stop music from stations you know and new favorites waiting to be discovered. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
16: Now in India.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां।
3: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
4: ये देखो एक इन्वेस्टमेंट गुरु के टिप से पैसे डबल होंगे, बस ऑफर क्लेम करना है।
5: पैसे डबल ऐसे कोई भी ग्रुप से तो अर्ज किया है, डबल रिटर्न्स के लालच में तुम्हें उलझाएंगे ये शेयर बाजार के अनवेरिफाइड ग्रुप, फेक टिप्स भेजकर तुम्हारी जेबें खाली कर जाएंगे।
6: वाह वाह।
5: सेबी और एनएससी का कहना है सिर्फ सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह लें और पेमेंट सिर्फ वेरीफाइड अकाउंट या UPI पे करें।
7: समझकर इन्वेस्ट कर।
8: एनएससी द्वारा निवेशकों के हित में जारी।
9: पापा
10: सॉरी यार गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
11: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
10: छक्का?
11: सब कैशलेस हो गया है।
10: हाँ
12: टाटा AIG है तो भरोसा है।
13: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
14: Akajay द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया।
13: तड़का हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
14: Akajay द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया।

0: क्या इथेनॉल से नुकसान हो रहा है सर गाड़ियों?
1: मारुति सुजुकी के पास एक भी कंप्लेन नहीं है, टोयोटा के पास एक भी कंप्लेन नहीं है। मुझे बदनाम करने के लिए और इथेनॉल को बदनाम करने के लिए प्रयास है।
0: नए नए एक्सप्रेस वे जो बन रहे हैं उनमें गड्ढे,
1: ये हमारे हाईवे में जितने गड्ढे हैं उसके ऊपर आप कार्यक्रम करिए और दिखा दीजिए।
2: This is the sound of Claire cooking dinner at home. And that's the sound of a fraud alert from Wells Fargo flagging a charge for a pricey restaurant in Paris. Considering Claire isn't in Paris right now, that seemed odd to the bank and to Claire. Two taps later, Claire says nope to the charge and Wells Fargo is on the case. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
3: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
4: Feeling a bit nostalgic for the 90s? TuneIn has got you covered with 90s hits. Jam out to your favorite artists from the 90s, like pop stars NSYNC and Britney Spears. Or rock artists like Sublime and Third Eye Blind. Reminisce about the good old days of the 90s. Just search 90s hits or ask your device to play 90s hits on TuneIn.
5: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार।
1: विमल बोलो जुमा केसरी।
2: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
3: AU सोच बदलो और बैंक भी।
4: जब बात हो सोयाबीन और मक्के की फसलों को सूंडियों से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का प्रोक्लेम एक्स्ट्रा, जीते हर बाजी।
5: शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां।
6: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
7: हम सिखाएंगे आपको मास कम्युनिकेशन के एक्सपर्ट बनने का हुनर। ज्वाइन कीजिए इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट।
8: रजिस्टर करने के लिए विजिट करें www.indiatodaymediainstitute.in या 9560065465 पर कॉल करें।
9: पच्चीस सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये है खबरें 7 तक, देखते रहिए आज तक।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
1: एक्जे द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया।

दिल्ली एनसीआर में लगातार बारिश, मौसम विभाग का रेड अलर्ट, रोहिणी में गिरी इमारत, तीन की मौत, गाजियाबाद में डूबे कई इलाके, मेरठ नेशनल हाईवे पर घुटनों तक पानी, ट्रैफिक हुआ जाम। गुजरात के बिजनेस कैपिटल में त्राहिमाम, सूरत में भरा पानी, महाराष्ट्र के रायगढ़ में बहते 3000 सिलेंडर से बड़ा खतरा, उत्तराखंड में नेशनल हाईवे 707 के पास लैंडस्लाइड। ऑस्ट्रेलिया के साथ साझा घोषणा पत्र में पीएम मोदी का क्रिकेट डिप्लोमेसी, कहा वनडे जैसे फैसले, टेस्ट जैसे रिश्ते, आतंक के खिलाफ दोनों देश, 30,000 भारतीयों के बीच थोड़ी देर में पीएम का संबोधन। यूपी के बांदा में अखिलेश यादव पर योगी का करारा हमला, कहा 2017 से पहले की सरकारों ने कब्रिस्तान बनाने में खर्च किए पैसे, बीजेपी ने बनाया राम मंदिर और काशी विश्वनाथ। बुशहर, चाबहार, बंदर अब्बास समेत ईरान में 90 ठिकानों पर अमेरिका ने गिराए बम, ट्रंप ने कहा 20 गुना ताकत से देंगे जवाब, ईरान का पलटवार, कुवैत और बहरीन में जंगी सायरन।

तो न्यूज रूम लाइव में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बारिश हो रही है, परेशानी ला रही है। वैसे तो बारिश होती है तो राहत मिलती है, लेकिन जब बहुत ज्यादा बारिश होती है तो शहरों में बाढ़ जैसे हालात आ जाते हैं और लोगों की परेशानियां बढ़ जाती हैं। जगह जगह की कुछ ऐसी ही तस्वीरें हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में देखेंगे तो वहां पर जोरदार बारिश हो रही है। अब ये कुछ तस्वीरें हैं और ये तस्वीरें बता रही हैं कि पहली परीक्षा जो सरकार की थी उसमें वो फेल होती हुई दिखाई दे रही है। दिल्ली से ज्यादा गाजियाबाद और नोएडा परेशान रहा, मेरठ एक्सप्रेसवे लबालब रहा, नोएडा भी त्राहिमाम करता दिखा। पश्चिमी भारत के गुजरात महाराष्ट्र के कई शहरों में अब भी पानी पानी है। रायगढ़ सिलेंडर बह गए, चमोली में क्या हुआ, उफान पर अलकनंदा नदी है। वडोदरा में आप देखेंगे तो औरसंग नदी उफान पर है। नवसारी अंबिका नदी डरा रही है, अमरेली बीच बह गए हैं। अब ये देखिए आधा भारत पानी पानी हो गया और इसलिए कहा जा रहा है कि ये बारिश बहुत तूफानी है और इस बारिश की वजह से लोगों की समस्या बढ़ रही है। बाइक तो कई जगह डूब ही गई हैं। ये दिल्ली में रात भर की बारिश ने मुसीबत खड़ी करके रख दी है। बाढ़ से बेहाल है शहर पानी पानी। सूरत की तो सूरत बदल गई, सूरत में हालात बहुत खराब हो गए हैं। अब सरकार रेस्क्यू ऑपरेशन सूरत में चला रही है। रायगढ़ में देखिए पाताल गंगा नदी में उफान और यहां पर क्या हुआ, 3000 सिलेंडर बह गए और इसी की वजह से अब अलर्ट जारी किया गया है। तो देश में ज्यादातर जगहों के आपने हालात देख लिए, कैसे लोगों की परेशानी बढ़ गई। अब गुजरात और महाराष्ट्र से आई कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं। वो तस्वीरें आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये बारिश तो मुसीबत बनकर आई है, राहत बनकर नहीं आई है। ये रायगढ़ की तस्वीर आप देखिए, यहां पर 3000 सिलेंडर बह गए। गैस एजेंसी थी वहां पर, बाढ़ आई, पानी इतना आया कि वहां पर 3000 जो सिलेंडर थे वो बह गए और इसमें से ज्यादातर तो भरे सिलेंडर है। ये हालात यहां पर हो गए हैं। पाताल गंगा नदी के रौद्र रूप में एलपीजी का बॉटलिंग प्लांट पानी पानी हो गया है। महाराष्ट्र में नदी नाले इस तरह उबल पड़े हैं कि मानो सब कुछ बहाकर अपने साथ में ले जाए। प्रशासन कह रहा है कि अब आप सावधान रहिएगा क्योंकि ये सिलेंडर कहां कहां दूर जाकर गिरे कुछ पता नहीं चल रहा।

0: फिल्म पुष्पा में तो डायरेक्टर ने पुलिस से बचाने के लिए लकड़ियों को नदी में बहाने का सीन क्रिएट किया था, लेकिन यहाँ तो कुदरत ने ही फिल्म बना दी। बारिश का पानी इतना तेज आया कि पनवेल तालुका के चावड़े स्थित HPCL के पाताल गंगा LPG बॉटलिंग प्लांट में बाढ़ का पानी घुस गया और करीब 3000 सिलेंडर नदी की धारा में बह निकले। इन सिलेंडरों में कुछ भरे हुए थे तो कुछ खाली, लेकिन नदी की तेज धारा में बहते हुए कोई ये नहीं बता सकता था कि कौन सा सिलेंडर सुरक्षित है और कौन खतरे का कारण बन सकता है। यही वजह है कि नदी किनारे खड़े लोग भी हैरान थे और प्रशासन की चिंता भी बढ़ गई। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में नदी में दर्जनों सिलेंडर एक साथ बहते दिखाई दिए। दृश्य ऐसा था मानो नदी गैस सिलेंडरों की धारा बन गई हो। कई लोग बहते सिलेंडरों को पकड़ने की सोच रहे थे, लेकिन प्रशासन ने समय रहते सख्त चेतावनी जारी कर दी। नदी में बहकर आए सिलेंडर में गैस है या नहीं, या वो सुरक्षित है या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए कोई भी व्यक्ति उत्सुकता या इस्तेमाल के लिए ऐसे सिलेंडर को उठाने, खोलने या घर ले जाने की कोशिश बिल्कुल ना करे। LPG सिलेंडर अगर क्षतिग्रस्त हो, वाल्व टूट जाए या गैस का रिसाव हो तो मामूली सी चिंगारी भी बड़े हादसे की वजह बन सकती है। यही वजह है कि प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि अगर कहीं भी बहता हुआ सिलेंडर दिखाई दे तो उससे दूरी बनाए रखें और तुरंत स्थानीय प्रशासन को सूचना दें। फिलहाल प्रशासन और संबंधित एजेंसियां नदी में बहे सिलेंडरों का पता लगाने और उन्हें सुरक्षित तरीके से निकालने की कोशिश में जुटी है। इस घटना ने एक बार फिर दिखा दिया है कि बारिश और बाढ़ सिर्फ सड़कें और घर ही नहीं बहाती, कई बार औद्योगिक इलाकों में ऐसा खतरा भी पैदा कर देती है जो हजारों लोगों की सुरक्षा से जुड़ा होता है। इसलिए अगर नदी में बहता हुआ LPG सिलेंडर दिखे तो उसे हाथ लगाने की गलती बिल्कुल न करें, क्योंकि जिज्ञासा की एक छोटी सी भूल जानलेवा साबित हो सकती है। रायगढ़ में बारिश ने ऐसा मंजर दिखाया जो फिल्मों में भी कम ही देखने को मिलता है, लेकिन असली जिंदगी में ऐसे दृश्य रोमांच नहीं बल्कि चेतावनी होते हैं। सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। महबूब जमादार, रायगढ़ आज तक।
1: DM की अपील समझिए और सिलेंडर से सतर्क रहिए, सावधान रहिए। अब गुजरात की बात कर लेते हैं। गुजरात में नवसारी से लेकर अमरेली तक हर जगह पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। सूरत की तो सूरत बदल गई, जैसा हम शुरुआत से कहते आ रहे हैं। सूरत में बारिश की वजह से लोगों की परेशानियों में बहुत इजाफा हो गया और सूरत ही नहीं, आसपास के इलाकों में भी हाल बेहाल है।
2: बारिश थम गई है लेकिन सूरत अब भी पानी के साए में है। ड्रोन से ली गई ये तस्वीरें बता रही हैं कि मूसलाधार बारिश ने शहर पर कैसा कहर बरपाया। सरथाना, पर्वत पाटिया, चीकुवाड़ी, सनिया, बमरोली और प्रसिद्ध श्याम मंदिर के आसपास के इलाके अब भी जलमग्न हैं। जहां नजर जाती है वहां सिर्फ पानी ही पानी दिखाई देता है। सूरत में किस कदर मूसलाधार आफत बरसी उसका जायजा लेने के लिए कल आज तक की टीम फायर ब्रिगेड की बोट रेस्क्यू टीम के साथ निकली। बारिश थमने के बाद भी कितना पानी भरा है वो आप इन तस्वीरों से देख सकते हैं। सड़क पर ट्रैक्टर डूबा पड़ा है, रेस्क्यू टीम के साथ निकली। बारिश थमने के बाद भी कितना पानी भरा है वो आप इन तस्वीरों से देख सकते हैं। सड़क पर ट्रैक्टर डूबा पड़ा है, ट्रक पानी में फंसा है, पेट्रोल पंप जलमग्न है और BRTS बस स्टैंड भी पानी में डूबा हुआ है। लोग अब भी कमर तक पानी में चलने को मजबूर हैं। ये तस्वीरें बता रही हैं कि बारिश ने सिर्फ सड़कें नहीं डुबोई बल्कि शहर की रफ्तार भी थाम दी।
3: सूरत में जलभराव की परिस्थिति क्या है इसकी पड़ताल की आज तक की टीम फायर ब्रिगेड की बोट पर सवार है और तस्वीरों के जरिए हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। देखिए, पूरा BRTS बस स्टैंड है और जो पूरा पानी में डूब चुका है। इसके अलावा जितनी भी आप देखेंगे यहाँ पे व्हीकल्स खड़े हुए वो भी पानी में पूरे डूब चुके हैं। ये सामान्य दिनों की हम बात कर लें तो यहाँ पर BRTS बसें चलती हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ पर पानी चल रहा है और ये टेक्सटाइल मार्केट का एरिया है वो भी आप देखेंगे तो यहाँ पर सब कुछ पानी में डूब चुका है। सामान्य दिनों की जैसे मैंने बताया आपको यहाँ पर व्हीकल चलते हैं, लोगों की आवाजाही होती है, लेकिन ये पूरा रास्ता जो है अब पानी में पूरा डूब चुका है और लोगों की आवाजाही बंद है। आज तक की टीम लगातार इस रास्ते पर बहुत सारे ट्रैक्टर को जो है पानी में डूबा हुआ देखा है, ट्रकों को देखा हुआ, और ये जो पेट्रोल पंप आप देख रहे हैं ये भी पेट्रोल पंप पूरा पानी में डूब चुका है। अब आप समझ सकते हैं ये खाड़ी के किनारे का जो इलाका है, खाड़ी ओवरफ्लो होने के चलते ये जलभरा हुआ है।
2: सूरत में बारिश ने सिर्फ रिकॉर्ड नहीं बनाया बल्कि राहत और बचाव एजेंसियों की सबसे बड़ी परीक्षा भी ली। मंगलवार सुबह 6 बजे से बुधवार सुबह 6 बजे के बीच सूरत शहर में 24 घंटे में 358 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। सूरत के पलासना तालुका में सबसे ज्यादा 462 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। इतनी बारिश की लोगों की जान पर बनाई। अधिकारियों के मुताबिक 3400 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया। निचले इलाकों से 3800 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया गया। फायर ब्रिगेड के मुताबिक उनकी टीम ने अकेले एक बाजार से 150 से ज्यादा लोगों की जान बचाई।
4: हम रात से 6-7 बजे से लगे हुए हैं। तकरीबन हमने 176 के अबाव हमने रेस्क्यू किया हुआ है। यहाँ से जो मार्केट के अंदर फंसे हुए थे वो एक्चुअली घर पे थे, पर वो मार्केट के अंदर उनका सामान सब रह गया था, उसको सेव करने के लिए वो वापस आए और पानी बढ़ने के कारण वो वहीं पे ट्रैप हो गए।
2: मूसलाधार बारिश के बाद सूरत की बिगड़ी सूरत की एक और तस्वीर भी दिखाते हैं। सूरत के दिलाडवा इलाके की तस्वीर देखिए। बारिश थमने के कई घंटों के बाद भी सड़कों पर पानी जमा है जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। स्थानीय लोगों को घुटनों तक भरे पानी से होकर अपने घरों और काम पर जाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। बारिश की मार में यहां सड़कें टूट चुकी हैं। सूरत में बारिश से बिगड़े हालात पर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। सूरत के प्रभारी मंत्री कनुभाई देसाई ने कलेक्ट्रेट ऑफिस में हाई लेवल बैठक की जिसमें अफसरों के अलावा स्थानीय सांसद और विधायक भी शामिल हुए। बारिश फिलहाल थम गई है और पानी भी धीरे धीरे उतर रहा है, लेकिन सवाल अब भी वही खड़ा है, हर साल मानसून आते ही सूरत जैसे आधुनिक और योजनाबद्ध शहर की तस्वीर क्यों बदल जाती है? आखिर ऐसा क्या है कि कुछ घंटों की बारिश पूरे शहर को ठहरने पर मजबूर कर देती है? जब तक इन सवालों का जवाब नहीं मिलता तब तक हर बारिश के बाद ऐसी तस्वीरें लौटती रहेंगी। संजय सिंह राठौड़, सूरत आज तक।
1: तो आप समझ गए होंगे क्यों कहा जा रहा है कि सूरत की सूरत यहां पर बदल गई है। सूरत की एक और रिपोर्ट दिखाते हैं हमारे सहयोगी अतुल तिवारी की आंखों से।
5: सूरत के रिंग रोड पर स्थित टेक्सटाइल मार्केट में फिलहाल मेरी मौजूदगी है और सूरत में 24 घंटे के पहले अलग अलग इलाकों में 15 से 18 इंच जितनी जो बारिश पड़ी है वो अब थम तो गई है, लेकिन अब लाखों करोड़ों की नुकसानी के तौर पर सामने आ रही है। फिलहाल जिस प्रकार की तस्वीरें सामने आ रही है वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये जो टेक्सटाइल मार्केट है वहां जल भराव की स्थिति अभी भी देखने को मिल रही है। टेक्सटाइल मार्केट का ये बिल्डिंग और इसी बिल्डिंग के नीचे की तरफ दो फ्लोर गोडाउन है और वो दोनों फ्लोर का जो गोडाउन है, बेसमेंट है, वो पूरा जलमग्न है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जो भी बेसमेंट के अंदर मौजूद गोडाउन के अंदर पानी भरा हुआ है उसे निकालने के लिए मोटर का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। पानी निकालने की कोशिश बीते कई घंटों से जारी है, लेकिन इन कोशिशों के बीच करोड़ों की नुकसानी की बात अब फॉस्टा यानी कि जो टेक्सटाइल एसोसिएशन है उनकी तरफ से कही जा रही है। हमारे साथ फॉस्टा के जनरल सेक्रेटरी भी मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे किस प्रकार की स्थिति है, क्योंकि सूरत में हमने देखा है 24 घंटे के पहले जिस प्रकार से आसमानी आफत एक प्रकार से कहें कि देखने को मिली। अब बारिश तो रुक गई है लेकिन अभी भी आप लोगों के बेसमेंट जो दो फ्लोर के हैं वो अभी भी जलमग्न है, कितना नुकसान हो रहा है टेक्सटाइल मार्केट को?
6: ऐसा है कि 20 इंच की बरसात ये तो सुना था खाली चेरापूंजी में गिरती है, सूरत में गिरेगी ये कभी सोचा नहीं था। जिस हिसाब से बरसात गिरी है उस हिसाब से तो पूरा सब जगह से ये होना ही था, पर इतना होगा ऐसा अनुमान नहीं था हम लोगों का, क्योंकि हमारे बेसमेंटों के अंदर पराए पराए सभी बेसमेंटों के अंदर ये पानी आया है। रोड जाम होने की वजह से, पीछे खाड़ी जाम होने की वजह से पानी गया नहीं और वो फ्लो बैक मारा, उसने भी मारा और ऊपर से कुदरत के भी बरसात गिरने से बड़ा बड़ा नुकसान हुआ है व्यापारियों का। और रही बात एवरेजों की, तो हमारा अंदाजा ऐसा है कि कम से कम जिस हिसाब से आपने ये मार्केट देखा है ऐसे कई मार्केट अभी भी पानी के अंदर है।
1: गुजरात का हाल आपने देख लिया, दिल्ली एनसीआर की अब कुछ तस्वीरें आप देखिए और दिल्ली एनसीआर को जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा नहीं कि राष्ट्रीय राजधानी है, क्योंकि यहां पर इतना जल जमाव हुआ है कि लोगों की परेशानी बढ़ गई। दिल्ली की वही कहानी, हर बार बारिश में पानी ही पानी। गर्त में गाजियाबाद चला गया, क्यों कह रहे हैं? क्योंकि तस्वीरें इसकी गवाही दे रही हैं। कई जगह पर हादसे हुए हैं, कई जगह पर गाड़ियां धस गई हैं, कई जगह पर बाइक धस गई हैं। कंट्रोल रूम में मंत्री जी पहुंच गए हैं, जगह जगह मुआयना ले रहे हैं, हालात का जायजा ले रहे हैं। हालांकि पिछली बार जहां पर जल जमाव था वहां पर इस बार नहीं है, लेकिन बाकी जगह है।

0: बारिश की बूंदें, सड़कों पर समंदर, घुटनों तक पानी, रेंगती गाड़ियां और परेशान लोग। दिल्ली एनसीआर में मानसून की पहली तेज बारिश ने राहत से ज्यादा मुसीबत की तस्वीर पेश कर दी। पहली बारिश में ही दिल्ली एनसीआर वालों की पहली परीक्षा है। सबसे बुरा हाल तो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का रहा। बरसात की एक रात ने इस एक्सप्रेसवे को दरिया बना दिया। NH9 पर घुटने तक पानी जमा हो गया। गाड़ियां डूब डूब कर चलने लगी।
1: ये वो हाईवे है जो अक्षरधाम से शुरू होकर मेरठ से होता हुआ हरिद्वार और फिर उत्तराखंड की तरफ जाता है। अब इस नेशनल हाईवे 24 की स्थिति आप देख सकते हैं, कैसे यहाँ पर जो लोग हैं वो काफी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि पानी जो है वो घुटनों से ऊपर तक भर चुका है। इस पानी के भरने के कारण यहाँ पर जो जाम है, ट्रैफिक जाम है, वो यहाँ पर देखा जा सकता है। लोग काफी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। कई गाड़ियां इस जाम में फंसने के बाद खराब हो चुकी हैं और सड़क के किनारे जो है वो गाड़ियां लगी भी हुई हैं। आप देखिए कि कैसे यहाँ पर जो लोग हैं जो पिछले काफी देर से फंसे हैं, वो यहाँ पर अब जिनकी गाड़ियां खराब हो गई हैं, वो गाड़ी खड़ी कर यहाँ पर खड़े हुए नजर आ रहे हैं। फिर लंबा जाम नेशनल हाईवे पर लग चुका है और तस्वीरें देख सकते हैं कैसी जो एम्बुलेंस है वो जो है वो यहाँ पर देखी जा रही है, जो इस वक्त यहाँ से निकाली जा रही है। और ये कहीं ना कहीं स्थिति काफी भयावह है।
0: एनसीआर में सबसे ज्यादा बारिश गाजियाबाद में हुई, तो इसकी बानगी भी सड़कों, गलियों और कॉलोनियों में दिखने लगी। गाजियाबाद के वसुंधरा में एक कार टाटा पंच गड्ढे में समा गई। अटल चौक के पास सड़क का एक हिस्सा धंस गया। सड़क किनारे चल रहे एक बिल्डिंग के निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी खिसकने से कटान हो गया, जिससे एक टाटा पंच कार गड्ढे में धंस गई। गाजियाबाद का विजयनगर भी लबालब है, हर तरफ पानी ही पानी है। नोएडा में भी हालात अलग नहीं थे। कई सेक्टरों की सड़कें पानी में डूब गईं। ऑफिस जाने वाले लोग हों या स्कूल से लौटते बच्चे, हर किसी को जल भराव और ट्रैफिक की मार झेलनी पड़ी। निचले इलाकों में पानी भरने से कई जगह वाहनों की रफ्तार थम गई। दिल्ली में सुबह से हुई तेज बारिश के बाद कई इलाके जलमग्न हो गए। संसद से कुछ ही दूरी पर सांसदों के सरकारी आवास के सामने सड़कें पानी पानी हो गईं। जहां रोज वीआईपी मूवमेंट रहता है, वहीं बारिश का पानी घंटों तक जमा रहा।
2: साल बदला है लेकिन हालात नहीं। दिल्ली के लुटियन जोन में जहां माननीय सांसदों का आवास है, उसके ठीक बाहर आप देखिए बीडी मार्ग पे क्या हालात बने हुए हैं। जल जमाव, जल भराव का हालात। नर्मदा अपार्टमेंट्स जिसमें माननीय सांसद रहते हैं, बाएं हाथ में भी सांसदों का आवास है, दाहिने हाथ पे भी सांसदों का आवास है। लुटियन जोन जहां पूरा पावर कॉरिडोर दिल्ली का रहता है, उसी जोन में नर्मदा अपार्टमेंट्स के ठीक बाहर की तस्वीर। पिछले साल भी हमने आपको यहां से तस्वीर दिखाई थी कि कैसे मूसलाधार बारिश के बाद जबरदस्त जल भराव इस जगह पे हुआ था, क्योंकि पानी निकलने का संभवतः जो सिस्टम है यहां वो बहुत ही खराब है।
0: दिल्ली में इस बार हालात थोड़े बेहतर रहे। मिंटो रोड जो हर बारिश में दरिया बन जाता था, इस बार सब ठीक रहा। दिल्ली सरकार भी कंट्रोल रूम से नजर बनाए हुए है। ईस्ट ऑफ कैलाश में नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट के सामने भारी भरकम पेड़ सड़क पर गिर पड़ा। पेड़ गिरते ही ट्रैफिक पूरी तरह थम गया। दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और लोगों को घंटों परेशानी झेलनी पड़ी। नगर निगम और संबंधित एजेंसियों की टीमों ने पेड़ हटाने का काम शुरू किया, तब जाकर यातायात धीरे धीरे सामान्य हो सका। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में दिल्ली एनसीआर में और बारिश की संभावना जताई है। यानी अगर यही हाल रहा तो आने वाले दिनों में जल भराव और ट्रैफिक की समस्या और गंभीर हो सकती है। गाजियाबाद से पीयूष मिश्रा के साथ अमित भारद्वाज, दिल्ली आज तक।

0: क्या इथेनॉल से नुकसान हो रहा है सर गाड़ियों?
1: मारुति सुजुकी के पास एक भी कंप्लेन नहीं है, टोयोटा के पास एक भी कंप्लेन नहीं है। मुझे बदनाम करने के लिए और इथेनॉल को बदनाम करने के लिए प्रयास है।
0: नए नए एक्सप्रेस वे जो बन रहे हैं उनमें गड्ढे,
1: ये हमारे हाईवे में जितने गड्ढे हैं उसके ऊपर आप कार्यक्रम करिए और दिखा दीजिए।
2: This is the sound of Claire cooking dinner at home. And that's the sound of a fraud alert from Wells Fargo flagging a charge for a pricey restaurant in Paris. Considering Claire isn't in Paris right now, that seemed odd to the bank and to Claire. Two taps later, Claire says nope to the charge and Wells Fargo is on the case. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
3: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
4: Talk Sport presents The S Word with Will Gavin and Master Tesfacion.
5: We're finally giving North American football fans the show they deserve.
6: Fiery fan debate, in-depth analysis, and plenty of fun along the way.
5: We're here Monday to Friday, 8 till 10 Eastern, and every single day of the World Cup.
6: Remember, around here, we use the F Word.
5: Never The S Word.
4: The S Word, available now on TuneIn,
7: wherever you get your podcasts,
4: and on the S Word YouTube channel.
8: मुख्यमंत्री रहेंगे तब तक हमारी लाश पर भी मस्ते नहीं कराई जाएगी।
9: अयोध्या के राम मंदिर में चोरी क्या हुई, सियासी अदावत में राम की भक्ति वाले तारीख के पन्ने और राम से द्रोह वाले गड़े मुर्दे उखाड़े जाने लगे, समाजवादी पार्टी आस्था को ठेस, नैतिकता के पतन और जिम्मेदारी से मुंह चुराने के आरोप बढ़ रही है, तो बीजेपी राम द्रोह की राजनीति के पन्ने पलट रही है। बीजेपी के सोशल मीडिया हैंडल्स पर समाजवादी पार्टी नेताओं के ऐसे पुराने बयान और अयोध्या कांड की तस्वीरें लगातार पोस्ट की जा रही हैं।
8: कि सरकार कुर्बान कर सकते हैं लेकिन हम जब मुख्यमंत्री रहेंगे तब तक हमारी लाश पर भी मस्ते नहीं कराई जाएगी।
10: वहाँ जो घटना घटी है उसकी SIT भी और FIR कर काम कर रही है, जांच का इंतजार करिए।
11: अटल बिहारी वाजपेयी जी ने खुद कहा कि राम मंदिर बाबरी मस्जिद का जो विध्वंस है वो एक हमारी गलती थी और उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ।
9: दरअसल ये सियासी तलखी इसलिए बढ़ती जा रही है क्योंकि एक तो समाजवादी पार्टी राम मंदिर में चोरी के भंडाफोड़ का दावा कर रही है, ऊपर से चोरी की जांच को लेकर भी लीपापोती के सवाल खड़े कर रही है।
12: उनके ऊपर FIR
13: SIT क्या है? लीपापोती है, लीपापोती SIT किससे मनाई है? और सुनने में आया कि SIT में भी सवाल खड़े हो गए हैं। SIT में जो कोई सदस्य है उन पे 420 का मुकदमा है। अब बताइए वही रहेंगे SIT में?
9: दरअसल समाजवादी पार्टी सवाल उठा रही है कि SIT के 3 सदस्यों में से एक विजय विश्वास पद के ऊपर पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम में रहते हुए धोखाधड़ी और सरकारी दस्तावेज में हेरफेर के आरोप लगे हैं, जिसकी क्राइम ब्रांच से जांच चल रही है। इसके अलावा कांग्रेस आरोप लगाती है कि कुंभ में भगदड़ के दौरान भी यही अफसर वहां प्रभारी अधिकारी थे। अब अखिलेश यादव का आरोप है कि अयोध्या कांड में दरअसल बैठाई गई जांच बीजेपी के दिल्ली और लखनऊ चैप्टर की अंदरूनी सियासत है।
13: ये लड़ाई बड़ी है, आप नहीं समझ पा रहे हो, ये दिल्ली लखनऊ की लड़ाई है। दिल्ली वाले अगर जांच करते तो ED, CBI, इनकम टैक्स करते।
9: अखिलेश का कहना है कि SIT जांच कराकर CM योगी ने राम मंदिर पर ऊपरी नियंत्रण को चुनौती दी है और इसमें असली चोरों को पकड़ने के बजाय लीपा पोती की कोशिश हो रही है।
14: इस प्रकार के उलूल जुलूल बयान दे करके बहुत घटिया हरकत कर रहे हैं और मैं उनसे यही कहूंगा कि इससे वो बाज आवे।
9: बीजेपी का कहना है कि राम

0: मंदिर में चोरी कुछ कर्मचारियों का गुनाह है और इसके लिए ट्रस्ट को चोर कह देना नाजायज है। सीएम योगी भी हर मंच से यही दावा कर रहे हैं कि चोरों को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कोई भी हो। संतोष शर्मा, लखनऊ आज तक।
1: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

ऑस्ट्रेलिया के साथ साझा घोषणा पत्र में पीएम मोदी की क्रिकेट डिप्लोमेसी, कहा वनडे जैसे फैसले टेस्ट जैसे रिश्ते, आतंक के खिलाफ दोनों देश, 30,000 भारतीयों के बीच थोड़ी देर में पीएम का संबोधन। यूपी के बांदा में अखिलेश यादव पर योगी का करारा हमला, कहा 2017 से पहले की सरकारों ने कब्रिस्तान बनाने में खर्च किए पैसे, बीजेपी ने बनाया राम मंदिर और काशी विश्वनाथ। शिंदे पवार की मीटिंग से हिला महाविकास अघाड़ी, राउत का सवाल, गद्दारों को क्यों इज्जत दे रहे हैं पवार, जिसने सरकार गिराई कैसी दोस्ती, इस मुलाकात से शिवसेना को दुख हुआ। दिल्ली एनसीआर में लगातार बारिश, मौसम विभाग का रेड अलर्ट, रोहिणी में गिरी इमारत, 3 की मौत, गाजियाबाद में डूबे कई इलाके, मेरठ नेशनल हाईवे पर घुटनों तक पानी, ट्रैफिक हुआ जाम। अबुशहर, चाबहार, बंदर अब्बास समेत ईरान में 90 ठिकानों पर अमेरिका ने गिराए बम, ट्रंप ने कहा 20 गुना ताकत से देंगे जवाब, ईरान का पलटवार, कुवैत और बहरीन में जंगी सायरन।

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ मानशो दीक्षित। सबसे पहले आपको दिखाते हैं 100 शहर 100 खबर।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
0: सहारनपुर में बारिश का रौद्र रूप, उफनती नदी में बहे बाइक सवार, ग्रामीणों ने बचाई महिला सहित 3 की जान। ऋषिकेश में पहाड़ी इलाकों में लगातार बारिश के कारण गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा, स्थानीय प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने को कहा। लगातार हो रही बारिश की वजह से नोएडा की कई सड़कें जलमग्न, प्राधिकरण के दावों की पोल खुली, लोगों को परेशानी। भारी बारिश के कारण नोएडा में भी तबाही, कई जगहों पर गिरे पेड़, आवाजाही बाधित हुई। गुरुग्राम के सेक्टर 37C स्थित इंपीरिया एम्फोरा फेज 2 सोसाइटी में बड़ा हादसा, अचानक भरभरा कर गिरा एक फ्लैट की बालकनी, कोई हताहत नहीं। टेहरी गढ़वाल के कद्दूखाल में भूस्खलन, नेशनल हाईवे 707A पर 2 रेस्टोरेंट खतरे में, एहतियातन खाली कराए गए। हल्द्वानी में बारिश ने खोली जल निकासी व्यवस्था की पोल, जल भराव के बीच अंतिम यात्रा घुटनों तक भरे पानी में से होकर गुजरी। बद्रीनाथ धाम में रुक रुक कर बारिश का दौर जारी, चमोली जिले में भी बदला मौसम। बागेश्वर में मूसलाधार बारिश से जनजीवन बेहाल, मलबा और बोल्डर गिरने से 16 सड़कें बंद, सरयू नदी उफान पर। हिमाचल में अगले एक हफ्ते तक भारी बारिश का अलर्ट, 5 जिलों में भूस्खलन और फ्लैश फ्लड का खतरा। टिहरी में मूसलाधार बारिश से बड़ा नदियों का जलस्तर, प्रशासन के आदेश के बाद स्कूलों से छुट्टी कर दी गई है। हरिद्वार में लगातार मूसलाधार बारिश के कारण जनजीवन बुरी तरह अस्त व्यस्त, जगह जगह जल भराव। पंजाब के कई इलाकों में अगले 36 घंटे बारिश का अलर्ट जारी, मौसम लगातार बना हुआ है बारिश वाला। बागपत में आसमान से बरसी आफत ने दिल्ली यमुनोत्री हाईवे की रफ्तार थाम दी है, जल भराव के कारण कई किलोमीटर का जाम लगा। केरल के वायनाड में टनल निर्माण स्थल के पास हुए भीषण भूस्खलन में मृतकों की संख्या बढ़कर 6 हुई, लापता लोगों की तलाश जारी है। मुंबई ठाणे बारिश का दौर जारी है, तेज हवा के साथ बारिश का ऑरेंज अलर्ट, जरूरी सावधानी बरतने की सलाह। महाराष्ट्र के रायगढ़ में भारी बारिश के चलते करीब 3,000 एलपीजी सिलेंडर नदी में बह गए, जिला कलेक्टर ने लोगों को सूचना देने की अपील की है। पुणे में जोरदार बारिश का असर, भिड़े ब्रिज डूबा, छोड़ा गया 27,000 क्यूसेक पानी। महाराष्ट्र के वसई में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ, रेलवे ट्रैक पर भरा पानी, ट्रेन सेवा प्रभावित। छत्रपति संभाजीनगर में नदी नाले उफान पर, ग्रामीणों से सुरक्षित स्थानों पर रहने, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र से दूर रहने की अपील। बीएमसी मुख्यालय और माटुंगा इलाके में लगाए गए वार्निंग बोई, कमजोर पेड़ों के पास सावधानी बरतने की अपील। बीएमसी ने खतरनाक पेड़ों की पहचान के लिए लगाए चेतावनी पोस्टर, नागरिकों को सतर्क रहने की अपील की गई है। रियासी में बड़े चिनाब नदी के जलस्तर के बाद सलाल डैम के गेट खोले गए हैं, प्रशासन ने नदी किनारे रहने वालों को सतर्क रहने की सलाह दी। जम्मू कश्मीर के रियासी में भारी बारिश के बाद चिनाब नदी उफान पर है, पानी के दबाव को नियंत्रित करने के लिए सलाल डैम से शुरू की गई जल निकासी। चिनाब नदी में बढ़ते जल प्रवाह के बीच सलाल हाइड्रो प्रोजेक्ट के स्प्लिट वे गेट खोले गए हैं, अधिकारियों ने सुरक्षा के मद्देनजर हालात पर निगरानी बढ़ाई। दिल्ली में बारिश के बाद नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट ईस्ट ऑफ कैलाश इलाके में गिरा बड़ा पेड़, सड़क पर जाम लग गया। दिल्ली में तेज बारिश के बीच सरकार ने जारी की जल भराव मुक्त इलाकों की तस्वीरें, दिल्ली सरकार का दावा, भारी बारिश में भी हॉटस्पॉट पर नहीं भरा पानी। दिल्ली में भारी बारिश का असर, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जल भराव, तेज बारिश के बाद स्टेशन परिसर में भरा पानी, यात्रियों को परेशानी। दिल्ली में मानसून की बारिश से बड़ी परेशानी, कई इलाकों में जलभराव, ओखला बदरपुर और संगम विहार में सड़कों पर पानी भर गया। दिल्ली एनसीआर में बारिश से बदला मौसम, मौसम विभाग का अगले 2 दिनों के लिए भारी बारिश का रेड अलर्ट। दिल्ली एनसीआर में कमला नेहरू नगर में 24 घंटे में सबसे ज्यादा 160 mm बारिश दर्ज, IMD के मुताबिक लोधी रोड, पूसा, सफदरजंग में भी भारी बारिश होगी। दिल्ली में भी बारिश का असर, BD मार्ग पर जलभराव, सांसदों की आवाज जाने वाली सड़कों पर जमा हुआ पानी। मुंबई में मानसून एक्टिव, भारी बारिश वाले इलाकों पर नजर, ईस्टर्न सवर में सबसे ज्यादा 39.37 मिलीमीटर बारिश दर्ज। उत्तराखंड में भारी बारिश का रेड अलर्ट, हरिद्वार पौड़ी में खतरा अगले 3 घंटे लगसर, बंगलौर और कोटद्वार में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी। सूरत के सरथाड़ा में पानी पानी हालात, JCB बनी सहारा, बुजुर्ग महिला को सुरक्षित निकाला, लोगों तक पहुंचाई राहत सामग्री। गाजियाबाद में बारिश का कहर। नेशनल हाईवे 24 पर जल भराव से ट्रैफिक प्रभावित। इंदिरापुरम इलाके में सड़कों पर भरा पानी, वाहन चालकों की बड़ी परेशानी। गाजियाबाद में बारिश बनी आफत, कई इलाकों में पानी पानी, सड़कें डूबी, आवाजाही प्रभावित। गाजियाबाद में वसुंधरा में अटल चौक के पास भारी बारिश के बाद सड़क धंसने से एक कार और स्कूटर गड्ढे में गिरे। फिलहाल हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। गाजियाबाद में भारी बारिश से जलभराव, स्कूलों की छुट्टी घोषित, कक्षा 12 तक के स्कूल बंद। नोएडा सेक्टर 62 लेवर चौक पर जलभराव, सड़कों पर भरा पानी, लोगों को आवाजाही में परेशानी। वडोदरा में भारी बारिश से कई नदियों में उफान, प्रशासन हुआ अलर्ट, निचले इलाकों में रह रहे लोगों के लिए चेतावनी। सूरत में भारी बारिश से रिहायशी इलाकों में पानी घुस गया, रोजमर्रा की चीजों के लिए दूध पानी के लिए परेशान होना पड़ रहा लोगों को। सूरत में लगातार हो रही बारिश से बाढ़ जैसे हालात, सीमाड़ा खाड़ी ओवरफ्लो होने से कई इलाकों में पानी घुस गया है, जनजीवन प्रभावित हुआ है। भारी बारिश से पूरा सूरत शहर जलमग्न, जगह जगह एनडीआरएफ और फायर ब्रिगेड फंसे लोगों को रेस्क्यू कर रही है। मध्य प्रदेश के खरगोन में तेज बहाव में बहा युवक, लोगों ने रस्सी से बचाने की कोशिश की, तैरते हुए युवक का लाइव वीडियो सामने आया। शरद पवार और एकनाथ शिंदे की मुलाकात से महाराष्ट्र का सियासी पारा हाई, संजय राउत ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा पवार गद्दार नेताओं को इज्जत दे रहे हैं। शिवसेना यूबीटी गुट के एमपी संजय राउत ने मुलाकात पर तंज कसते हुए कहा गद्दारों के साथ मीटिंग करने से पार्टी की छवि को पहुंचता है नुकसान। बांदा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर फिर बड़ा निशाना साधा, बोले समाजवादी पार्टी की सरकार को कब्रिस्तान प्यारा है इसलिए पैसा उसी में जाता है। बाइट योगी
2: कब्रिस्तान की बाउंड्री, बीजेपी की सरकार आई तो अब पैसा मंदिरों के विकास के लिए धामों के सुंदरीकरण में खर्च हो रहा है और समाजवादी पार्टी के समय वही पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल के लिए चला जाता था।
0: उत्तर प्रदेश कांग्रेस से अशोक सिंह ने इस्तीफा दिया, पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप से आहत होकर कदम उठाया। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर पीएम मोदी, सीईओ फोरम में हिस्सा लिया, मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक साझेदारी पर चर्चा। मेलबर्न में पीएम मोदी बोले भारत और ऑस्ट्रेलिया भरोसेमंद साझेदार, दुनिया में अनिश्चितता के बीच मजबूत साझेदारी की जरूरत पर जोर। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न आपको सीधे लिए चलते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर मौजूद, ओमेगा शो शुरू हुआ।

जाती है। कैसे स्वागत उनका किया जा रहा है मेलबर्न में, ये आप देखिए।

I would like to begin by acknowledging the traditional owners of the land on which we meet, and I pay my respects to their elders, past, present, and emerging. Vanakkam, Melbourne. Namaskar, mates. कैसे हैं आप? केम छो? ये शो हाउसफुल है, ब्लॉकबस्टर है, मैं अपना भाषण शुरू करूं इससे पहले विक्टोरिया के प्रीमियम और मेरे मित्र प्रधानमंत्री जी के सम्मान में आप सब अपने मोबाइल फोन की फ्लैश लाइट बजा के इनको सम्मानित कीजिए, इनके सम्मान में। साथियों, इससे पहले मैं दो बार सिडनी में आप सबसे मिला था। मेलबर्न वालों से मिलने का मुझे भी इंतजार था, इसलिए सोचा इस बार मेलबर्न वालों के साथ फ्लैट व्हाइट कॉफी पीता हूं। साथियों, जिस एनर्जी से आप सभी ने, हमारे ओसी फ्रेंड्स ने हम सभी को वेलकम किया है, वो और भी अमेजिंग है। मेलबर्न ने एक तरह से मैदान मार लिया है। साथियों, मैं मेरे मित्र, भारत के मित्र प्राइम मिनिस्टर एंथनी अल्बनीसी का भी बहुत आभारी हूं। आप सिडनी में भी साथ थे और आज यहां मेलबर्न में भी भारतीय कम्युनिटी के बीच आए हैं, और ये एक प्रकार से फुल सर्कल हो गया है। अहमदाबाद, जहां दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट ग्राउंड है, और मेलबर्न, जहां आइकॉनिक स्टेडियम है, हम दोनों साथ रहे हैं। और साथियों, हम सभी ने देखा है प्राइम मिनिस्टर अल्बनीसी जब बोलते हैं तो भारतीयों के दिल और दिमाग में छा जाते हैं। सिडनी में भी आपने धूम मचाई थी,
और यहां भी आप छा गए। मैं विक्टोरिया की प्रीमियर का भी उनके ऊर्जा भरे शब्दों के लिए, भारत के प्रति इतने स्नेह से उन्होंने जो कहा उसके लिए उनका भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, मैं जब साल 2014 में ऑस्ट्रेलिया आया था तो 28 साल के बाद भारत का कोई पीएम यहां पहुंचा था। और आप याद कीजिए, तब मैंने कहा था कि अब आपको 28 साल इंतजार नहीं करना पड़ेगा। पिछले 12 वर्षों में मैं तीसरी बार यहां आया हूं। यानी इस बार हैट्रिक लगी है। ये दिखाता है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्ते किस ऊंचाई पर है। और जानते हैं इसमें सबसे बड़ी भूमिका किसकी है? मोदी की नहीं, इसमें आप सभी साथियों की भूमिका है। इंडियन डायस्पोरा की भूमिका है। साथियों, कहते हैं कि मेलबर्न शहर एक दिन में ही 4 सीजन के दर्शन करा देता है। लेकिन भारतीय समुदाय ने अपने कल्चरल कलर से इसको और वाइब्रेंट बना दिया है। यहां मेलबर्न में और आसपास काफी ऐसे स्थान हैं, ऐसे मार्केट्स हैं जो भारतीयता के रंग से भरे हैं। कोई इन्हें लिटिल इंडिया कहता है, कोई मिनी इंडिया कहता है, नाम जो भी हो, लेकिन रंग भारतीयता से भरे हुए हैं। ऐसे ही एक मार्केट का वीडियो किसी ने मुझे दिखाया। वीडियो में बता रहे थे कि वहां खूब सेल चलती रहती है। इस सेल के चक्कर में लोग गनचक्कर बन जाते हैं। शॉपिंग का मूड न भी हो तो भी खरीदारी करनी ही पड़ती है। मैं सही कह रहा हूं ना? सेल का आकर्षण होता है ना? साथियों, आप में से कई साथी फर्स्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया आए और कईयों का जन्म भी यही हुआ। पीढ़ियां बदल गई लेकिन भीतर की भारतीयता
हमेशा हमेशा जिंदा रही। यहां कई सारे साथी ऐसे होंगे जिनके घर में कम से कम दो टाइम जोन चलते हैं। यहां बच्चे स्कूल से घर ऑस्ट्रेलियन टाइम के हिसाब से आते हैं, लेकिन भारत में दादा दादी नाना नानी वीडियो कॉल पर इंतजार कर रहे होते हैं। यहां वीकेंड होता है तो भारत में किसी शादी की लाइव स्ट्रीमिंग चल रही होती है, यानी वीकेंड होता है तो भारत में किसी शादी की लाइव स्ट्रीमिंग चल रही होती है, यानी दूरी हजारों किलोमीटर की है लेकिन डेली रूटीन आज भी भारत से जुड़ा हुआ है। और इस रूटीन के साथ आप सभी ऑस्ट्रेलिया के विकास में पूरी शक्ति से जुटे हुए हैं। मुझे आप सब पर गर्व है। साथियों, हम भारतीय ऐसे ही हैं जैसे दूध में चीनी मिल जाती है, उसे और मीठा कर देती है, वैसे ही हम भारतीय दुनिया में अपने प्रेम का रंग घोलते रहते हैं। घर में दूध ऑस्ट्रेलिया वाला आता है लेकिन चाय भारत वाली बनती है। अरे चाय वाला

दाल सब्जियां ऑस्ट्रेलिया की है लेकिन उनमें तड़का देसी मसालों का ही लगता है। साथियों, आपने सुना होगा भारत में आजकल भजन क्लबिंग का नया ट्रेंड चल रहा है। इसको हमारी जैन जी ड्राइव कर रही है और यहां ऑस्ट्रेलिया में भी मैंने सुना है कि आपका वीकेंड आस्था और आध्यात्म से भरा रहता है। कहीं किसी के घर भगवान सत्यनारायण की कथा, कहीं गुरुद्वारे में अरदास, कहीं बच्चों द्वारा भांगड़ा या भारतनाट्यम की प्रस्तुति, कहीं कोई क्रिकेट टूर्नामेंट चल रहा होता है। और अब तो इंडियन फिल्म फेस्टिवल भी यहां आ गया है। कुछ दिन बाद ही मेलबर्न में इंडियन फिल्म फेस्टिवल शुरू होने वाला है। मैं इसके सफल आयोजन की आपको अभी से शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आप सभी ऑस्ट्रेलिया की ग्रोथ को अपने परिश्रम से सींच रहे हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि आपकी एक नजर भारत पर लगातार रहती है। भारत क्या कर रहा है, भारत की प्रगति, भारत की गति, इसकी खोज खबर आप लेते रहते हैं। साथियों, 21वीं सदी का भारत आज विकसित होने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। एक सपना पूरा होता है तो नया सपना जन्म ले लेता है। पहले कहते थे एक दीप से जले दूसरा, जलते दीप हजार। आज मैं कहता हूं एक सपने से जन्मे दूसरा सपना, सपने जन्मे हजार। एक लक्ष्य पूरा होता है तो उससे भी बड़ा संकल्प सामने आता है। ये वो भारत है जो कहता है ग्रो मोर अचीव मोर। हम 140 करोड़ एस्पिरेशन से भरे राष्ट्र है। हम अधीर है, बेसब्र है। हम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी है, लेकिन हम जल्द से जल्द दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी बनना चाहते हैं, क्योंकि हमारी प्रेरणा है ग्रो मोर अचीव मोर। ग्रो मोर, ग्रो मोर, ग्रो मोर। साथियों,
आपने भी देखा है, भारत ने मून के साउथ पोल पर चंद्रयान लैंड कराया। दुनिया में कोई और देश ऐसा नहीं कर पाया, चंद्रयान लैंड कराया। दुनिया में कोई और देश ऐसा नहीं कर पाया, लेकिन भारत इतने भर से संतुष्ट नहीं रहा, क्योंकि भारत कहता है ग्रो मोर। इसलिए साथियों, भारत अब स्पेस में अपना गगनयान भेजने की तैयारी कर रहा है। भारत अब अपना स्पेस स्टेशन बनाने के लक्ष्य पर चल रहा है। साथियों, कुछ साल पहले तक 5G टेक्नोलॉजी को लेकर बड़े सवाल देश के सामने थे, कब लॉन्च होगी, कैसे रोल आउट होगा, कितना समय लग जाएगा। हमने 2022 के अंत में 5G रोल आउट करना शुरू किया और आज भारत के 99% डिस्ट्रिक्ट इससे कवर हो चुके हैं। और आपको खुशी होगी दोस्तों, भारत 5G का फास्टेस्ट रोल आउट करने वाले देशों में से एक देश है। आज भारत दुनिया का दूसरा बड़ा 5G मार्केट बन चुका है। और इतना ही नहीं, भारत आज मेड इन इंडिया 6G टेक्नोलॉजी पर तेजी से काम कर रहा है। और इतना ही नहीं, भारत आज मेड इन इंडिया 6G टेक्नोलॉजी पर तेजी से काम कर रहा है। वो इसलिए क्योंकि भारतीय कहते हैं ग्रो मोर। साथियों, पिछले 12 वर्षों में भारत के 2 दर्जन से अधिक शहरों में मेट्रो नेटवर्क पहुंच चुका है। आज भारत में हर दिन 1.25 करोड़ से अधिक लोग मेट्रो में सफर करते हैं। भारत दुनिया का तीसरा बड़ा मेट्रो नेटवर्क वाला देश है, लेकिन हम भारतीय इससे भी संतुष्ट नहीं है। हम कहते हैं ग्रो मोर। इसलिए हम भारत में नमो भारत रैपिड रेल और वंदे भारत जैसे सेमी हाई स्पीड नेटवर्क को तेजी से बढ़ा रहे हैं। एक और उदाहरण मेक इन इंडिया का है। बीते 12 वर्षों में मेक इन इंडिया ग्लोबल ब्रांड बन गया है। हमारे मोबाइल फोन,
हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स दुनिया भर में पहुंचे, हमारे ऑटोमोबाइल, हमारे फार्मा प्रोडक्ट्स का ग्लोबली और विस्तार हुआ। भारत के डिफेंस प्लेटफॉर्म की कैपेबिलिटी और क्रेडिबिलिटी दुनिया देख रही है। आपने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान

ऑपरेशन सिंदूर के दौरान डेमो तो देख ही लिया होगा। धमाके आतंकियों के अड्डों पर हो रहे थे और गुंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही थी। टेरर कैंप पर इस करारे प्रहार से आपको गर्व हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? साथियों, भारत इतने पर ही रुकना नहीं चाहता। भारत कह रहा है ग्रो मोर। इसलिए आज चिप से लेकर शिप तक मैन्युफैक्चरिंग का भारत में एक नया इकोसिस्टम डेवलप किया जा रहा है। साथियों, भारत के बड़े सपनों, बड़ी एस्पिरेशंस की नींव है। भारत का नागरिक, वी द पीपल, और इन सपनों को एनर्जी दे रहा है। पीपल फर्स्ट, यानी नागरिक देवो भव का मंत्र, ये आज के भारत की गवर्नेंस का मूल मंत्र बन गया है। मैं आपको अटेस्टेशन का उदाहरण देता हूं। अटेस्टेशन की मजबूरी कुछ साल पहले तक बहुत कॉमन हुआ करती थी, यानी कुछ भी करना हो, कहीं भी अप्लाई करना हो, अपने डॉक्यूमेंट किसी अधिकारी से अटैच कराने ही पड़ते थे। कतार में खड़े रहना पड़ता था सुबह सुबह, और क्या काम था ये बताने के लिए कि हाँ तुम वही हो। हमारे लिए तो नागरिक देवो भवा अब ये स्थिति नहीं है। अब ज्यादातर काम

रही है और इससे इलाज की व्यवस्था और सुधर रही है। यही नहीं, टेली कंसल्टेशन का चलन भी तेजी से आगे बढ़ रहा है और इससे इलाज की व्यवस्था और सुधर रही है। यही नहीं, टेली कंसल्टेशन का चलन भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत का एक ई संजीवनी प्लेटफॉर्म है, इससे अभी तक 48 करोड़ यानी 480 मिलियन टेली कंसल्टेशन हो चुकी है। इस प्लेटफॉर्म से 2.25 लाख से अधिक हेल्थ केयर प्रोवाइडर जुड़े हैं। साथियों, एक जमाने में आप सभी ने पासपोर्ट से जुड़ी परेशानियां भी सही होगी, आप याद कीजिए कितने हफ्ते लगते थे पासपोर्ट बनने में, लेकिन आज पासपोर्ट औसतन कुछ ही दिनों में मिल जाता है। यही सिटीजन फर्स्ट गवर्नेंस है, यही नागरिक देवो भव के मंत्र की सफलता है। साथियों, मैं अक्सर एक बात कहता हूं, भारत का सामर्थ्य जितना बढ़ता है उसका फायदा पूरी मानवता को होता है। हमारे संस्कार है सर्वे भवन्तु सुखिनः, यानी सब सुखी रहे, यही शाश्वत संस्कार आज भी भारत की पॉलिसीज और एक्शंस को प्रेरित करते हैं। साथियों, अभी पिछले महीने ही वेनेजुएला में भूकंप की इतनी बड़ी त्रासदी आई, कितना बड़ा विनाश हुआ, सैकड़ों लोगों की जान गई। हमने दूरी कितनी है देखा नहीं, हमने वेनेजुएला की उस पीड़ा को अपनी पीड़ा समझा। भारत ने रिलीफ और रेस्क्यू के लिए ऑपरेशन चलाया, हमने जितनी तेजी से संभव हो सकता था मदद भेजी, अपने एक्सपर्ट भेजे, हमारी मेडिकल टीम से तेजी से काम शुरू किया। मुझे बहुत संतोष है, इससे अनेक जिंदगियां बच पाई। साथियों, ऐसे ही तुर्की और सीरिया में जब भूकंप आया तब भी भारत ने बहुत तेजी से राहत और बचाव के लिए मदद भेजी। ऐसे अनेक उदाहरण हैं। पिछले साल हमने म्यांमार में ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया, श्रीलंका में साइक्लोन की तबाही हुई तो हम ऑपरेशन सागर बंधु चलाया। साथियों, कोरोना काल की यादें भी आज तक हमारे मन में ताजा है। हमने दुनिया भर से भारत के ही नहीं अन्य देशों के नागरिकों को भी अपने अपने घर पहुंचाया, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, जरूरतमंदों तक दवाई पहुंचाई, 100 से अधिक देशों को वैक्सीन भेजी। युद्ध क्षेत्रों में भी भारत ने संकट में फंसे व्यक्तियों को बाहर निकालने के लिए भरसक प्रयास किया। साथियों, भारत जब मदद करता है तो पासपोर्ट नहीं देखता, भारत जब मदद भेजता है तो पासपोर्ट का रंग नहीं देखता।

0: इसलिए दुनिया भी भारत पर इतना विश्वास करती है। साथियों, मैं जानता हूं कि मानवता के हित में काम करने में ऑस्ट्रेलिया की भी बहुत बड़ी भूमिका है। ये हम दोनों देशों की पार्टनरशिप का एक अहम पिलर है और हम दोनों देशों की साझेदारी को एक और सेक्टर मजबूती देता है। ये सेक्टर है स्पोर्ट्स, खेलकूद। स्पोर्ट्स की दुनिया में ऑस्ट्रेलिया अपने आप में एक ब्रांड है। लेकिन भारत में भी स्पोर्ट्स इकोसिस्टम ट्रांसफॉर्म हो रहा है। साथियों, आपने खेलो इंडिया मिशन का नाम सुना होगा। ये सिर्फ एक स्पोर्ट्स पॉलिसी नहीं है, ये अभियान स्कूल लेवल से ही हजारों खिलाड़ियों का एक पूल तैयार कर रहा है। भारत में स्कूल यूनिवर्सिटी, नेशनल लेवल, स्कूल लेवल खेलो इंडिया गेम्स होते हैं। इनमें लाखों एथलीट्स पार्टिसिपेट करते हैं। इस मिशन के तहत भारत के रिमोट एरियाज में भी स्पोर्ट्स इंफ्रा तैयार किया जा रहा है। इससे ज्यादा से ज्यादा एथलीट्स को, खासतौर पर हमारी बेटियों को ज्यादातर अवसर मिल रहे हैं। और ये सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं है। सांसद खेल महाकुंभ जैसे आयोजनों से गांव गांव में स्पोर्ट्स को फिटनेस से जोड़ा जा रहा है, करियर अपॉर्चुनिटी से कनेक्ट किया जा रहा है। और ये जो कुछ भी हो रहा है, इसका इम्पैक्ट फील्ड में दिख रहा है। भारत के एथलीट्स, भारत की टीम्स बेटर से बेस्ट होती जा रही है। साथियों, यही कॉन्फिडेंस भारत को स्पोर्टिंग लीग के नेक्स्ट लेवल पर ले जा रहा है। 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स भारत होस्ट कर रहा है। भारत 2036 ओलंपिक्स को होस्ट करने का भी दावेदार है। मुझे पूरा विश्वास है स्पोर्ट्स के क्षेत्र भी ऑस्ट्रेलिया और भारत की पार्टनरशिप का और विस्तार होके रहेगा। साथियों, भारत और ऑस्ट्रेलिया जो कुछ भी करते हैं वो हम दोनों देशों के लिए भी शुभ होता है। इसका एक बड़ा उदाहरण भारत ऑस्ट्रेलिया ट्रेड एग्रीमेंट है। आपने वे शेर सुना होगा, आपको तो याद भी होगा, मैं अकेला ही चला था जानिब ए मंजिल, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। ऐसे ही भारत और ऑस्ट्रेलिया का एग्रीमेंट एक शुरुआत थी और आज ये कारवां दुनिया के लगभग 40 देशों के साथ ट्रेड एग्रीमेंट तक पहुंच चुका है। साथियों, हम केवल ट्रेडिंग नेशन नहीं है, हम इनोवेशन को, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को महत्व देते हैं। ऑस्ट्रेलिया की अनेक उपलब्धियां हैं, हियरिंग इम्प्लांट, वाईफाई, सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन, फ्लाइट ब्लैक बॉक्स, सीक्रेट बैलेट वोटिंग, ऐसे कितने इनोवेशंस हैं जिनमें ऑस्ट्रेलिया का एक बड़ा रोल रहा है। और आज ये पूरी दुनिया को बेहतर बनाने का काम कर रहे हैं। साथियों, ऐसे ही भारत भी अपने साइंस, टेक और इनोवेशन इकोसिस्टम को ट्रांसफॉर्म कर रहा है। आपको ये जानकर खुशी होगी, आज भारत के 10,000 स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब चल रही है। ये स्कूल लेवल पर ही इनोवेशन का माइंडसेट तैयार कर रही है। बीते 12 वर्षों में भारत दुनिया का तीसरा बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। लेकिन मैं नंबर बताऊंगा तो आप भी हैरान रह जाएंगे। आप डेटा सुनना चाहेंगे तो बताऊं, आज भारत में 2,00,000 से अधिक रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स हैं। भारत में हर महीने 4,000 से ज्यादा नए स्टार्टअप रजिस्टर हो रहे हैं और डिफेंस और स्पेस जैसे सेक्टर्स में भी सैकड़ों स्टार्टअप काम कर रहे हैं। इनके उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि ये सारे सेक्टर पहले भारत में बंद थे। कुछ साल पहले ही इनको प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप के लिए खोला गया और आप देखिए, भारत का एक स्पेस स्टार्टअप बहुत जल्द अपने रॉकेट में पहली बार सैटेलाइट लॉन्च करने जा रहा है। साथियों, मुझे खुशी है कि एजुकेशन, स्किल, इनोवेशन में भारत और ऑस्ट्रेलिया का रिश्ता और गहरा हो रहा है और मजबूत हो रहा है। आज ऑस्ट्रेलिया में हजारों भारतीय स्टूडेंट पढ़ रहे हैं और अब ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज भारत में भी अपने कैंपस खोल रही है। डिकिन और वुलांगोंग यूनिवर्सिटी के कैंपस शुरू हो चुके हैं और भी ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज इस तरफ आगे बढ़ रही है। और ये केवल नए कैंपस खोलने तक की बात नहीं है, ये दुनिया को स्किल इनोवेटिव टैलेंट देने का ग्लोबल लीडरशिप तैयार करने का भी अभियान है। साथियों, भारत की इतनी सारी बातें मैंने आपके बीच की है, अब मैं आपसे एक आग्रह भी करूंगा। करूं? करोगे? मेरी बात मानोगे? वादा? कुछ समय पहले हमने हमारी प्रवासी कम्युनिटी के बच्चों के लिए भारत को जानो क्विज की शुरुआत की है। ये क्विज दुनिया को भारत की डायवर्सिटी से परिचित कराती है और साथ ही भारतीय कम्युनिटी के परिवारों को अपनी विरासत से जोड़ती है। मुझे जानकर अच्छा लगा कि इस साल ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे युवा साथियों ने इस कार्यक्रम के कर्टन रेजर में पार्टिसिपेट किया। अब इस कंपटीशन के 6th एडिशन की शुरुआत होने जा रही है। इस बार गेमिफाइड मोड में बहुत से कंपटीशन होने जा रहे हैं। मैं ऑस्ट्रेलिया में भारतीय कम्युनिटी के सभी परिवारों से आग्रह करूंगा, इसमें जरूर हिस्सा लें। लेकिन साथ साथ आप ऑस्ट्रेलिया के दोस्तों को भी, आपके स्कूल में पढ़ने वाले साथियों को, कॉलेज में पढ़ने वाले साथियों को, उनको भी इस कंपटीशन में जरूर जोड़ें। करेंगे? भूल गए? करेंगे? साथियों, आप सभी ने भारत ऑस्ट्रेलिया के रिश्तों को मजबूत बनाने में बहुत मेहनत की है, बहुत योगदान दिया है, लेकिन आपका काम यहां खत्म नहीं हुआ है, बल्कि यहां से आपकी जिम्मेदारियां और बढ़ गई है। अब भारत और ऑस्ट्रेलिया की पार्टनरशिप का एक अलग ही फेज शुरू हो रहा है, इसलिए आप ऐसे ही भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों को अपने जोश से भरते रहिए, चौके छक्के मारते रहिए। आपकी सफलता में ही भारत और ऑस्ट्रेलिया की सफलता है। साथियों, आज के इस कार्यक्रम के लिए प्राइम मिनिस्टर अल्बनीज़ी और आप सभी साथियों को मेरा एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे वंदे वंदे वंदे वंदे वंदे वंदे वंदे।
1: देखिए तस्वीरें हम आपको सीधे मेलबर्न से दिखा रहे हैं, जहां पे प्रधानमंत्री मोदी संबोधित कर रहे हैं। वहां पे भारतीय डायस्पोरा को, भारतीय लोगों को और 30,000 से ज्यादा लोग इस समय यहां मौजूद हैं। ये देखिए किस गर्मजोशी के साथ प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने कई बड़ी बातें इसमें कही। उन्होंने कहा कि देखिए चिप से लेकर शिप तक सब भारत बना रहा, भारत की रफ्तार आप समझ सकते हैं, और आज भारत कितनी ज्यादा तेज प्रगति की ओर बढ़ रहा है, ये भी उन्होंने उसका जिक्र किया। कई मुख्य बातें उसके बारे में बताई। और देखिए प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत कैसे गर्मजोशी से किया गया, और ये 30,000 से ज्यादा भारतीय स्टेडियम में मौजूद हैं। मेलबर्न से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि देखिए हमारी प्रेरणा है ग्रो मोर, और भारत अपना स्पेस स्टेशन बना रहा है, ये भी बताया उन्होंने, और भारत की तरक्की और सभ्यता दोनों का जिक्र उन्होंने किया। और देखिए प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के विकास की रफ्तार, भारत की तरक्की के बारे में की, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र भी किया। आइए आपको सुनाते हैं।
0: भारत के डिफेंस प्लेटफॉर्म की कैपेबिलिटी और क्रेडिबिलिटी दुनिया देख रही है। आपने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान

0: ऑपरेशन सिंदूर के दौरान डेमो तो देख ही लिया होगा। धमाके आतंकियों के अड्डों पर हो रहे थे और गुंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही थी। टेरर कैंप पर इस करारे प्रहार से आपको गर्व हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ?
1: और चलिए अब खबरें के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और अब वक्त है रणभूमि का। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। कल तक मैं तेहरान में ईरान से लगातार आपको पल पल की जानकारियां दे रहा था, आपको हर बड़ी खबर से रूबरू करा रहा था। आज ईरान से जुड़ी खबरों को लेकर मैं स्टूडियो में हाजिर हूं आपके सामने। ऐसे समय में जब एक तरफ ईरान में पूर्व सुप्रीम लीडर आली खामनेई के अंतिम संस्कार के कार्यक्रम का एक अंतिम चरण या आज उन्हें सुपुर्द खाक किया जा रहा है, तब अमेरिका और ईरान के बीच वार पलटवार का नया सिलसिला भी शुरू हो चुका है। इन सब से जुड़ी रिपोर्ट मैंने आपको एक बार नहीं कई बार ईरान के अलग अलग इलाकों से, अलग अलग क्षेत्रों से और शहरों से पहुंचाई। मैंने आपको दिखाया कि कैसे अमेरिका और इसराइल ने विनाशकारी हमलों के बाद भी ईरान का जंगी जोश एकदम हाई है और अब एक बार फिर से अमेरिका के हर हमले को दो टूक जवाब दिया जा रहा है। एक तरफ जहां पर अमेरिका ने दावा किया है कि उसने बीती रात ईरान के 90 से ज्यादा ठिकानों पर भीषण बमबारी की है, वहीं ईरान ने भी बहरीन और कुवैत में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया, कई मिसाइलें दागी हैं। तुर्की की नाटो समिट में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को पहले ही चेतावनी दे दी थी कि अमेरिका का जवाब 20 गुना ज्यादा होने वाला है, यानी ईरान अगर एक हमला करेगा तो अमेरिका 20 हमले करेगा। ट्रंप ने यह भी कहा था कि उसके हिसाब से ईरान के साथ हुआ समझौता अब खत्म हो गया है। ताजा हमले और चेतावनी के बाद जहां तेल के दाम फिर से आसमान पर पहुंच चुके हैं, वहीं इसी खबर से भारत के लिए भी चिंताजनक विषय पैदा हो गया। इस जंग में पहली बार अमेरिका ने ईरान के चाबार पोर्ट को भी निशाना बनाया। भारत के चाबार कितना ज्यादा अहम है आपको सबसे पहले एक रिपोर्ट भी दिखाते हैं। और ये सारे तनाव उस वक्त हुए हैं जब ईरान से पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई को सुपुर्द खाक किया जा रहा है। दूसरी तरफ इसके बाद होने वाली ईरान और अमेरिका की बातचीत को लेकर भी सस्पेंस और ज्यादा बढ़ गया है। और देखिए इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर यह है कि व्हाइट हाउस ने ईरान के खिलाफ कई दिनों या कई हफ्तों तक चलने वाले सैन्य अभियान की तैयारियां कर रहा है। अमेरिकी न्यूज वेबसाइट एक्सियोस के मुताबिक ये धमाका अमेरिकी अधिकारियों के बीच बातचीत के बाद किया गया। उसके मुताबिक अमेरिका की ये जंग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान की पकड़ को खत्म करने या कमजोर करने के लिए की जा रही है। एक अमेरिकी अधिकारी ने एक्सियोस से यह भी कहा कि हम थोड़े तमाचे जड़ेंगे ताकि वो समझ जाए कि हम मजाक नहीं कर रहे। उस अधिकारी ने अमेरिकी सैन्य अभियान कितना लंबा होगा ये तेहरान के अगले कदम पर निर्भर करेगा, ऐसा भी कहा गया। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि अब अमेरिका का मुख्य जंगी इरादा यह है कि हॉर्मुज को फिर से जहाजों के लिए मुक्त आवाजाही के लिए खोल दिया जाए। ईरान इस जिद पर अड़ा हुआ है कि वो इसे अपनी ही शर्तों पर खोलेगा। अमेरिका के उपराष्ट्रपति भी इस बात को लेकर कह चुके हैं कि अमेरिका तब तक हमले जारी रखेगा जब तक हॉर्मुज पूरी तरीके से खुल नहीं जाता, वहां पर जहाजों की आवाजाही पहले की तरह नहीं हो जाती। क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जान पर बहुत बड़ा खतरा मंडराने लग गया है? क्या ईरान के डर से ट्रंप को अपना चमचमाता हुआ नया एयरफोर्स वन विमान बीच रास्ते में छोड़ना पड़ा? तुर्की की राजधानी अंकारा में एक ऐसी सीक्रेट स्क्रिप्ट लिखी गई जिसे पूरी दुनिया ने रक्षा विशेषज्ञ को सन कर दिया। डेंजर जोन में नया विमान छोड़कर डोनाल्ड ट्रंप अचानक दशकों पुराने विमान में ही क्यों सवार हो गए? क्या इसके पीछे ईरान की वो हिटलिस्ट है जिसमें ट्रंप का नाम सबसे ऊपर है? विमान के सबसे रहस्यमयी खेल के पीछे इनसाइड स्टोरी क्या है? सबसे पहले आपको अपनी एक रिपोर्ट दिखाते हैं।

0: अंकारा से सीक्रेट टेक ऑफ। तुर्की की राजधानी अंकारा का रनवे, आसमान में मंडराता बारूद का धुआं और खाड़ी में अमेरिकी मिसाइलों की गड़गड़ाहट। नाटो समिट खत्म हो चुका था, लेकिन महायुद्ध के मुहाने पर खड़े मिडिल ईस्ट के बीचों बीच दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान के इर्द गिर्द एक ऐसा सस्पेंस बुना जा रहा था जिसकी भनक किसी को नहीं थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अंकारा आए तो थे कतर से मिले चमचमाते अत्याधुनिक नए एयरपोर्ट वन से, लेकिन जब लौटने की बारी आई तो अचानक गेम बदल गया। ट्रंप अंकारा से नए विमान में नहीं बल्कि दशकों पुराने रिटायरमेंट की कगार पर खड़े पुराने एयरफोर्स वन VC-25A में सवार हुए। आखिर क्यों? क्या ट्रंप की जान को था सीधा खतरा? कहानी यहीं से रहस्यमयी हो जाती है। ठीक उसी समय ईरान की गलियों में ट्रंप को मारने के नारे गूंज रहे थे, उनके पुतले फूके जा रहे थे। खामिनई को अंतिम विदाई दे रहे ईरानी ट्रंप को खत्म करने की कसमें खा रहे थे। वहीं ईरान पर अमेरिका के ताजा हमलों के बाद ट्रंप की सुरक्षा करने वाली सीक्रेट सर्विस के कान खड़े हो चुके थे। अंकारा में ही नहीं बल्कि हवा में उड़ते विमान के भीतर भी ट्रंप ने खुद कबूल किया कि मौत उनके कितने करीब मंडरा रही है।
1: I'm number one on their list before you, but if I go, you go, right?
2: But was there a specific
1: So perhaps, today? Perhaps someday you want to change professions.
0: Purani yaad ya maut ka dar? ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि उन्होंने पुरानी यादों के लिए पुराने विमान को चुना ताकि नया विमान सीधे ब्रिटेन के आरएएफ माइल्डन हॉल बेस पर जा सके और वहां तैनात अमेरिकी सैनिक उसका टूर कर सकें। लेकिन दुनिया के सबसे शातिर रक्षा विशेषज्ञों को ये दलील हजम नहीं हो रही है। तुर्की ईरान बॉर्डर के इतने पास डेंजर जोन में नया विमान छोड़कर पुराने विमान को चुनना कोई यादों का खेल नहीं था, बात कुछ और थी। बात थी उस नए विमान की सुरक्षा और उसके कतर कनेक्शन की। सच्चाई नंबर एक, ये नया विमान बोइंग का ऑफिशियल प्रेसिडेंशियल प्लेन VC-25B नहीं है। क्या वो साल 2028 में आएगा? तब तक इसका इस्तेमाल किया जाना है। सच्चाई नंबर दो, ये कतर से मिला गिफ्टेड बोइंग 747-8 है जिसे बेहद जल्दबाजी में रिफिट किया गया है। बड़ा सवाल, क्या जल्दबाजी में हुए इस रिफिट के कारण इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति की सुरक्षा के सारे फीचर नहीं थे जैसे कि मिसाइल डिफेंस? क्या सीक्रेट सर्विस को इस बात का डर था कि कतर कनेक्शन वाले इस नए विमान की फ्रीक्वेंसी या स्पाई लूप होल का फायदा उठाकर ईरान उसे निशाना बना सकता था? डेंजर जोन में पुराना, सेफ जोन में नया। पूरे खेल को समझिए। अंकारा जो ईरान की मिसाइलों की जद के बेहद करीब था, वहां से निकलने के लिए सीक्रेट सर्विस ने उसी विमान पर भरोसा किया जो दशकों से आजमाया हुआ है, जो मिसाइल हमलों को हवा में नाकाम करने की अचूक तकनीक से लैस है। अंकारा से लेकर ब्रिटेन के मिल्डन हॉल तक का सफर सबसे खतरनाक था, लिहाजा उसे पुराने और सबसे भरोसेमंद विमान से तय किया गया। और जैसे ही ट्रंप ब्रिटेन पहुंचे, जो एक सुरक्षित नाटो सहयोगी देश है, वहां उन्होंने पुराने विमान को अलविदा कहा और फिर से उसी नए खतरी विमान में बैठकर अमेरिका के लिए उड़ान भरी। उड़ान से पहले ट्रंप ने कहा था, मैं ईरान की हिट लिस्ट में सबसे ऊपर हूं।
1: नंबर वन ऑन द किल लिस्ट फॉर Iran, they're lovely people. I'm number one, so I don't know. I can't tell you that, but I don't really care because I'm doing my job and I'm doing it, I hope, better than anybody's ever done it because we have a country that's hot and really, really successful. But I mention it only because it's on the list. I mean, it came out. There was another list came out yesterday and I'm number one on, I like being number one on TikTok better, but I'm number one on the list for killing.
0: तस्वीर साफ है, एक तरफ सैनिकों को टूर कराने का बहाना था, दूसरी तरफ सेफ साइड खेलने की बड़ी रणनीतिक मजबूरी। अगर खतरा नहीं था तो खतरे वाले इलाके में पुराना विमान और सुरक्षित इलाके में नया विमान क्यों? अमेरिका और ईरान के बीच छिड़े इस महायुद्ध में ट्रंप भले ही कहें कि वो ईरान को हरा चुके हैं, लेकिन विमानों के इस खेल ने ये साबित कर दिया है कि ईरान की धमकियों को अमेरिका भी हल्के में नहीं ले रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
3: आपने रिपोर्ट देखी, मिडल ईस्ट में एक बार फिर से मुकम्मल महायुद्ध छिड़ गया और खाड़ी देश दहल उठे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस ऐलान के बाद अमेरिका और ईरान के बीच आर पार की जंग एक बार फिर से शुरू हो गई है। लगातार दूसरी रात अमेरिका ने ईरान के 90 से ज्यादा ठिकानों पर भीषण बमबारी की है। इसमें अब तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है और करीबन 78 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जवाब में बौखला ईरान ने भी कुवैत, बहरीन और कतर में मौजूद अमेरिकी मिलिट्री बेसिस पर आत्मघाती ड्रोन और मिसाइलों की बरसात कर दी है। आसमान में सायरन गूंज रहे हैं, वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में आग लग गई है। क्या दुनिया आर्थिक तबाही की ओर बढ़ रही है? खाड़ी में मची इस बारूदी तबाही की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
0: खाड़ी में फिर भड़की जंग, ईरान का पलटवार, दहल उठे तीन देश। मिसाइलों की गड़गड़ाहट और सायरन की चीखों से दहल उठी है पूरी खाड़ी। ईरान और अमेरिका की जंग अब चरम पर पहुंच चुकी है। आज सुबह कुवैत, बहरीन और कतर में अचानक मिसाइल अलर्ट के सायरन बजने लगे। आसमान से बरसती ईरानी मिसाइलों और ड्रोन को कुवैत की सेना ने हवा में ही मार गिराना शुरू कर दिया। ये तबाही तब शुरू हुई जब अमेरिका ने ईरान पर नए दौर के भीषण हवाई हमले किए और जवाब में ईरान ने बहरीन और कुवैत को निशाना बना डाला। ईरान की सरकारी मीडिया IRIB ने वीडियो जारी करते हुए कहा, ये कुवैत में अमेरिकी आतंकियों के बेस को निशाना बनाए जाने के फुटेज हैं। दूसरी तरफ अमेरिका ने भी बीती रात ईरान में बारूदी तबाही मचाई। लगातार दूसरी रात ईरान पर अमेरिकी बमबारी का वीडियो जारी करते हुए अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा, अमेरिकी फौज ने 8 जुलाई को ईरान में अगले दौर की स्ट्राइक्स की हैं। इसका इरादा हुर्मुज में कमर्शियल जहाजों और बेकसूर नाविकों पर ईरान की हमला करने की ताकत को और कमजोर करना है। सेंट्रल कमांड ने करीब 90 ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया, जिनमें एयर डिफेंस सिस्टम, तटीय निगरानी के संसाधन, मिसाइल, ड्रोन स्टोरेज साइट्स, नौसैनिक क्षमता और ईरान तट के किनारे सैन्य ढांचे शामिल थे। अमेरिका ईरान के बीच बार पलटवार की जिद फिर से मध्य पूर्व को भीषण महायुद्ध में झोंकने पर तुल गई है। नाटो समिट से निकलते ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में हो रहे धमाकों के वीडियो पोस्ट कर दिए और ईरान को सीधे शब्दों में चेतावनी दे डाली। ट्रंप ने साफ कर दिया कि सीज फायर अब इतिहास बन चुका है।
2: Is the ceasefire done? Is the MOU dead?
1: It's a very interesting question. To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is? They're scum. They're sick people. They're led by sick people. And they're vicious, violent people. And if they had a nuclear weapon, they'd use it. As far as I'm concerned, it's over. It's just a waste of time dealing with them. There's something wrong with them. They're cuckoo. As far as I'm concerned, it's over.
0: ट्रंप सिर्फ धमकी नहीं दे रहे बल्कि ईरान के पावर प्लांट, पानी के प्लांट और सबसे बड़े ऑयल हब खार द्वीप को जब्त करने की तैयारी में हैं, जहां से ईरान का 90% तेल एक्सपोर्ट होता है। इधर ईरान के बुशहर न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स, चाबहार, कोनार और बंदर अब्बास जैसे बंदरगाहों पर लगातार धमाकों की खबरें हैं, लेकिन ईरान भी झुकने को तैयार नहीं है। सुलह की बात करने वाले धमकी पर उतर आए हैं। मुख्य वार्ताकार और ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बाघेर गालिबाफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, धौंस और जबरन वसूली का दौर अब खत्म हो चुका है। इससे कुछ हासिल नहीं होने वाला। हम पीछे नहीं हटेंगे, हम झुकेंगे नहीं। इस बयानबाजी ने पूरी दुनिया की सांसें अटका दी हैं। ट्रंप ने साफ कह दिया है कि शांति समझौता अब पूरी तरह खत्म हो चुका है। इस एक बयान के बाद वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में आग लग गई है। ईरान में ये जंग ऐसे समय पर भड़की है जब 28 फरवरी को मारे गए सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई का अंतिम संस्कार आज खत्म हो रहा है।
3: आपने हमारी दोनों खास रिपोर्ट देखी, लेकिन वक्त अब छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद भी रणभूमि में हम आपको बताएंगे कि कैसे ये चिंगारी एक बड़ी आग में एक बार फिर से तब्दील होती जा रही है। आप देखते रहिए आज तक।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से इन एसोसिएशन विद
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। Accuje, the number one Korean skincare brand.
6: To 15-year-old Harper, buying an $80 vintage rock t-shirt is a great investment. To Harper's mom, this logic has a few holes in it. So she helped Harper open a Wells Fargo Clear Access banking account. With no overdraft fees and tools to track spending, Harper's learning, one heavy metal tea at a time. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
7: Terms apply. Visit wellsfargo.com/deposit disclosures for fees and details. Hey, this is Freddie Coleman from Freddie and Harry. Stay on top of the Major League Baseball season with ESPN Radio. Get daily sports talk covering every big moment from around the league.
8: To right field, and it will leave.
7: From the first pitch of the season to the stretch run.
8: And that's the ballgame.
7: We've got you covered with analysis, storylines, and insider perspective. And all season long, catch select live games so you can tune in for key matchups and hear the action unfold. Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
4: Presented by Patanjali Gaay Ka Ghee. Lagaye swaad aur sehat ka tadka, har maa ka bharosa, pyar se paros.
5: Acajay, the number one Korean skincare brand, now in India.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: जब बात हो सोयाबीन के खेतों को खरपतवार से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का अमोरा। अमोरा तेज तरार वार, हारे अब खरपतवार, देश के हीरो की पहली पसंद।
3: The action never stops and neither do we. From breaking updates to match analysis, from big moments to bigger conversation. This is where sports comes alive. Fast, sharp, unfiltered. For the fans who want every update, every story, every headline first. Welcome to Sports Today, your destination for everything sports. Press that bell icon and subscribe now.
4: पच्चीस सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये है खबरें 7 तक, देखते रहिए आज तक।

या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
1: एकजे, द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड, नाउ इन इंडिया।

शो अपने संबोधन में ग्रो मोर अचीव मोर का दिया विकास मंत्र, कहा आज चिप से लेकर शिप तक बना रहा है भारत। अखिलेश यादव पर योगी का करारा हमला, कहा 2017 से पहले की सरकारें कब्रिस्तान बनाने में खर्च के पैसे, बीजेपी ने बनाया राम मंदिर और काशी विश्वनाथ।

दे रहे हैं पवार, जिसने सरकार गिराई उससे दो कैसी दोस्ती। दिल्ली एनसीआर में बेहिसाब बारिश, रोहिणी में इमारत गिरने से तीन की मौत, गाजियाबाद में मेरठ एक्सप्रेसवे पर घुटनों तक भरा पानी, उत्तराखंड में भी रिकॉर्ड बरसात।

0: अमेरिका के 90 हमले, ईरान के शहर दहले, ईरान का पलटवार, कुवैत बहरीन में अटैक, चाबहार पर पहला हमला, भारत के हितों को खतरा, ट्रंप ने विमान क्यों बदला, ईरान के हमले का खतरा, पुराने विमान पर भरोसा, खामेनेई की विदाई, फिर भड़की लड़ाई।
1: ब्रेक के बाद रणभूमि में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज तक पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह आ रही है कि चिंताजनक जो खबरें हैं, जो अपडेट यह है कि खाड़ी देशों में भड़के अमेरिका और ईरान के महायुद्ध की सबसे भीषण आज अब भारत की रणनीतिक महत्वाकांक्षाओं पर भी पहुंचने लग गई। अमेरिकी नौसेना और वायुसेना ने ईरान के दक्षिणी बंदरगाह चाबहार पर ताबड़तोड़ मिसाइलों भी बरसाई है। इस हमले में चाबहार में जहाजों की आवाजाही को भी कंट्रोल करने वाला ट्रैफिक कंट्रोल टावर पूरी तरीके से तबाह हो गया है। देखने में यह हमला अमेरिका का ईरान पर एक्शन है, लेकिन इसके सबसे गहरा जख्म भारत पर लगेगा, क्योंकि चाबहार भारत की लुफ्ट वेस्ट पॉलिसी के रीढ़ माना जाता है। आपके लिए यह समझना बेहद जरूरी है कि यह हमला अब तक के तमाम हमलों से अलग और इतना ज्यादा बड़ा क्यों है। अब तक अमेरिका और ईरान के बीच जहां पर भी जंग हुई है या हमले हुए हैं, हालात बने वहां पर चाबहार हमेशा सुरक्षित रहा है, क्योंकि वहां पर भारत का रणनीतिक हिस्सेदारी या फिर उसे कह सकते हैं भारत का वहां पर इंटरेस्ट रहा है। और पूर्व में अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद भारत की कूटनीति के कारण चाबहार को हमेशा छूट मिलती रही है, लेकिन इस बार सुपर पावर अमेरिका ने सारे नियम बदल दिए। पहली बार अमेरिका की मिसाइलें सीधे चाबहार को ही निशाना बना रही है, जो पूरे मध्य एशिया की लाइफलाइन है। अमेरिका का यह कदम साफ संदेश है कि अब ईरान की घेराबंदी के लिए वो भारत जैसे अपने सबसे मजबूत रणनीतिक साझेदारों के हितों को भी दांव पर लगाने से अब पीछे नहीं हटने वाला है। आपने ये खबर तो देख ली, लेकिन अब आपको इसका इनसाइट भी समझाना बहुत जरूरी है, क्योंकि चाबहार से भारत का कितना गहरा और अहम संबंध है, भारत का क्या कुछ यहां पर दांव पर लगा हुआ, ये आपको बड़ी स्क्रीन पर मैं दिखाने और समझाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि चाबहार बहुत इंपॉर्टेंट है। ईरान ने चाबहार को भारत की पूंजी दांव 2003 में शाहिद बहतिशी टर्मिनल को लेकर सहमति बनी थी। इसको डेवलप करना था, इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को भारत को ही तैयार करके देना था, और बहशती जो टर्मिनल है इसको लेकर भारत बहुत तेजी से काम भी कर रहा था। 2016 में प्रधानमंत्री मोदी का ऐतिहासिक ईरान दौरा भी आपको याद होगा, जब चाबहार सबसे बड़ी और सबसे मजबूत रणनीति थी जिसको भारत आगे बढ़ाना चाहता था, क्योंकि ये भारत के वैश्विक स्तर पर भारत की रणनीति या फिर उसके व्यापार को बहुत मजबूत करता। द्विपक्षीय समझौता करीबन 500 मिलियन निवेश का दावा था। कहा जा रहा था कि भारत चाबहार को लेकर 500 मिलियन डॉलर वहां पर खर्च करेगा, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर को, उस पोर्ट को डेवलप करेगा। 2017 में पाक को लगातार सेटबैक करते हुए, धता बताते हुए अफगानिस्तान को गेहूं की खेप यहीं से दी जा रही थी। आपको याद होगा पाकिस्तान ने जब अफगानिस्तान के बॉर्डर्स को सील कर दिया था, तब भारत ने मदद इसी पोर्ट के मदद से अफगानिस्तान तक पहुंचाई थी। भारत के लिए अफगानिस्तान में पैट बनाने के लिए चाबहार बहुत इंपॉर्टेंट है। मई 2024 में भारतीय कंपनियां IPGL ने 10 साल तक का करार किया था, और एक कोशिश की जा रही थी कि भारत के लिए भी ये समझौता, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रह सके। अब अगला अपडेट क्या है, मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आप समझिए कि इसका सिर्फ रणनीतिक रूप से नहीं, इसका व्यापारिक रूप से, इसका आर्थिक रूप से भी बहुत महत्व है दोनों देशों के लिए। भारत ने क्रेन, बर्थ और इंफ्रा के लिए 3,000 करोड़ की पूंजी लगाई है। वहां पर अभी हाल ही में आपको याद होगा कि हमारे कई क्रेन्स को भेजा गया था, कई हेवी मशीनरी को भेजा गया था, ताकि चाबहार के काम को बहुत तेजी से बढ़ाया जा सके। चाबहार के बारे में एक और बात बता दूं आपको, क्योंकि ये मैं आपको ये तमाम इनपुट, ये तमाम आंकड़े इसलिए बता रहा हूं ताकि आप समझिए कि चाबहार की रणनीतिक इंपॉर्टेंस क्या है। सबसे पहले आइए आपको दिखाता हूं, यह है बंदर अब्बास का इलाका जहां पर इस समय अमेरिका का फोकस है। यह है चाबहार, चाबहार और ग्वादर पोर्ट में 170 से 200 किलोमीटर की दूरी है। आप मानिए कि ग्वादर जहां पर लगातार अमेरिका पाकिस्तान इसका इस्तेमाल करता है, और पाकिस्तान के बेहद करीब आ जाता है चाबहार, और चाबहार लाइफलाइन है अफगानिस्तान जाने की। यानी अगर आप देखें यहां से, अगर आप जो लाइन देख रहे हैं यहां से, अगर रसद साजो सामान अफगानिस्तान तक पहुंचाना हो तो भारत को फिर यहां से भेजने की जरूरत नहीं है, यानी अगर पाकिस्तान बंद भी कर देता है कोई मदद, आर्थिक मदद या किसी भी तरीके की राहत सामग्री, जो पाकिस्तान ने किया भी था आपको याद होगा, तो फिर भारत अफगानिस्तान से यहां से चीजों को भेज सकता है। अब सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि इस जगह पर ना सिर्फ पाकिस्तान की नजर है बल्कि चीन की नजरें भी चाबहार को लेकर रही है। चीन लगातार आसपास के इलाकों में ईरान को यह ऑफर देता रहा है कि वो उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को, उनकी रोड्स को डेवलप करेगा, लेकिन चाबहार पर अगर अटैक अमेरिका करता तो निश्चित तौर पर इससे भारत का भी नुकसान होगा, क्योंकि आप मानिए इस पूरी बड़ी कोस्टल लाइन के अंदर चाबहार वो एंट्री पॉइंट है जहां से भारत ना सिर्फ ईरान बल्कि आप कह सकते हैं अफगानिस्तान और बाकी इलाकों में, यानी अगर यहां से अगर रूट आगे बना तो बाकी के देशों में भी, ऊपर इराक की बात कर लीजिए आप, दूसरे देशों की बात कर लीजिए, तुर्की तक बात कर लीजिए, भारत का एक्सेस सीधे तौर पर यहां से यहां हो जाता है और यूरोप तक जाएगा। यही वजह है कि चाबहार को बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट माना जाता है, लेकिन अगर अमेरिका यहां पर अटैक करता है, यहां पर नुकसान पहुंचाता है, तो उससे भारत का भी बहुत ज्यादा नुकसान होगा। चाबहार की इंपॉर्टेंस तो मैंने आपको समझा दी, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, वो खबर है अंतर्राष्ट्रीय खबर। ईरानी सरकारी मीडिया के हवाले से बहुत बड़ा अपडेट मिल रहा है कि ईरान के बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट के बाहरी परिसर यानी पेरीमीटर पर अमेरिकी मिसाइल या प्रोजेक्टाइल गिरा है। आपको बता दें कि बुशहर वही पावर प्लांट है जहां पर रूस के साइंटिस्ट काम करते थे। रूस ने जब जंग शुरू हुई तो अपने सारे साइंटिस्ट को वहां से निकाल दिया। ईरानी स्टेट मीडिया का दावा है कि अमेरिका की तरफ से दागा गया एक प्रोजेक्टाइल सीधे न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स के बाहरी सीमा पर जाकर टकरा गया। अमेरिका और ईरान के महायुद्ध के बीच यह अब तक का सबसे घातक और संवेदनशील हमला माना जा रहा है, जिससे पूरी दुनिया में परमाणु संकट का ऐलान या अलर्ट घोषित हो जाएगा। आपको बता दें कि बुशहर दरअसल ईरानी मानता है कि सिविल चीजों के लिए पावर प्लांट बनाया गया है और इससे ईरान के बहुत हद तक आप कह सकते हैं उनकी पावर सप्लाई, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर, उसकी रीढ़ की हड्डी बुशहर है, और इसको पूरा डेवलप करने के लिए रूस ने भी ईरान की बहुत मदद की थी। और देखिए इसी वक्त एक बेहद चौंकाने वाली खबर भी सामने आ रही है। खाड़ी में महायुद्ध के बीच जॉर्डन ने बहुत बड़ी एक अपडेट मिला। जॉर्डन के कई इलाकों में एक साथ हवाई हमलों के अलर्ट जारी कर दिए गए और एयर रेड सायरन यानी लगातार ये सायरन भी बजा जा रहा है। जॉर्डन के अलग अलग प्रांतों में आ रही खबरों के मुताबिक अचानक बजे इन सायरनों के बाद पूरे देश में हड़कंप मच गया। हालांकि जॉर्डन में बज रहे इन सायरनों की असली वजह क्या है, खतरा किस तरीके का है, कितना ज्यादा वहां पर गंभीर मामला है, ये अब तक साफ नहीं हो पाया। लेकिन खाड़ी में जारी भीषण तबाही और तनाव के बीच जॉर्डन ने भी सायरन की आवाजें गूंजनी शुरू हो गई है। जॉर्डन वो इलाका है जहां पर अमेरिका ने कई अपने डिफेंस यूनिट्स को लगाया था, और हाल ही में जब ईरान ने जॉर्डन पर अटैक किया, अमेरिका ने वहां से अपने कई एयर डिफेंस सिस्टम्स को रीलोकेट करना शुरू कर दिया था ताकि उनको ईरान की मिसाइलों की रेंज से दूर खींचा जा सके, दूर रखा जा सके। शायद इसी वजह से अब एक बार फिर से जब ये जंग और भीषण हुई है, नई फेज की तैयारियां शुरू है, तब जॉर्डन में भी ऐसी आवाजाही या फिर आप कह सकते हैं ऐसी खलबली देखी जा रही है। और खाड़ी में बरसती अमेरिकी मिसाइलों के बीच इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, एक बड़ा अपडेट मिल रहा है कि ईरान के एक बेहद भावुक और अभूतपूर्व तस्वीर आ रही है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई का आज उनके जन्मस्थल या फिर उनके आप कह सकते पैतृक शरीर या फिर उनके उनके जो उनका परिवार जो आप कह सकते उनका शहर माना जाता है, वो उनके वहां पर पार्थिव शरीर उनका वहां पर ले जाया जा रहा है। इमाम रजा मजार में सुपुर्द खाक करने की जो प्रक्रिया है, जो संस्कार की तरीके हैं, वो शुरू हो रहे हैं। अमेरिकी हमलों के सबसे बड़े साए में भारी सुरक्षा के बीच इस अंतिम विदाई में करीब 1.5 करोड़ लोग का सैलाब उमड़ रहा है, और जंग के मुहाने पर खड़ा ईरान इस गमगीन माहौल के बीच दुनिया को अपनी एकजुटता और ताकत भी दिखा रहा है। देखिए मशहद से आई ये बेहद भावुक कर देने वाली ग्राउंड रिपोर्ट।
2: ईरान का पवित्र शहर मशहद मायूस है। यहीं आयतुल्ला अली खामनेई को सुपुर्दे खाक किया जा रहा है। यही वो शहर है जहां खामनेई का जन्म हुआ था। जिस मिट्टी में वो पले बढ़े थे, आज उसी शहर में आयतुल्ला को मिट्टी दी जा रही है। मशहद जहां इमाम रजा का मजार है, उसी जगह खामनेई को सुपुर्दे खाक किया जा रहा है। इमाम रजा का मजार शिया मुसलमानों के लिए बेहद पवित्र है। शिया संप्रदाय के कुल 12 पवित्र इमाम रहे हैं। उनमें से इमाम रजा एकमात्र ऐसे इमाम हैं जिन्हें ईरान की धरती पर दफनाया गया है। बाकी के सभी इमामों को या तो सऊदी अरब या फिर इराक के नजफ, करबला और समर्रा में दफनाया गया। इमाम रजा शिया मुसलमानों के 8वें इमाम माने जाते हैं। उनकी बढ़ती लोकप्रियता से डरकर तत्कालीन शासक अब्बासी खलीफा ने उन्हें जहर देकर उनकी हत्या करा दी थी। जहां इमाम रजा को दफनाया गया उस जगह का नाम बाद में मशहद पड़ गया, जो आज ईरान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। मशहद शिया मुसलमानों के लिए मक्का, मदीना और करबला के बाद सबसे पवित्र स्थानों में से एक है। यहां हर साल दुनिया के कई देशों से लाखों लाख शिया श्रद्धालु जियारत के लिए पहुंचते हैं। ये दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद भी है। ईरान में इस्लामिक क्रांति का मुख्य केंद्र भी रहा है। मशहद को शहादत का शहर भी कहा जाता है। इसी दरगाह में ईरान के पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी भी दफनाए गए हैं। और सबसे बढ़कर ये कि यही मशहद आयतुल्लाह अली खामेनेई का जन्म स्थान भी है। खामेनेई का पार्थिव शरीर कल इराक में था। आज वहां से ईरान लाए जाने के बाद उन्हें सुपुर्द-ए-खाक किया जा रहा है।

इससे पहले छठे दिन इराक के नजफ और कर्बला में खामेनेई की अंतिम यात्रा निकाली गई। नजफ में इमाम अली दरगाह पर अंतिम संस्कार की प्रार्थना की गई। फिर तमाम रस्मों के बाद वहां से खामेनेई के पार्थिव शरीर को कर्बला ले जाया गया। कर्बला में इमाम हुसैन दरगाह और अल अब्बास दरगाह पर खामेनेई को श्रद्धांजलि दी गई। दोनों शहरों में लाखों लोग जुटे, हर कोई अपने धर्म गुरु के लिए गम में डूबा था।

इराक से पहले ईरान के शहर कोम और तेहरान में बड़े आयोजन हुए। वहां मानो पूरा ईरान अपने दिवंगत सुप्रीम लीडर को अंतिम विदाई देने उमड़ा था। 3 जुलाई को ही तेहरान में कार्यक्रम की शुरुआत हो गई थी। करीब 2 करोड़ लोगों ने खामेनेई को आखिरी विदाई दी थी।

0: मशहद के गवर्नर ने जानकारी दी है कि आयतुल्ला अली खामिनेई के अंतिम संस्कार में 1.5 करोड़ लोग शामिल हो रहे हैं। ताजा अमेरिकी हमलों के बीच ईरान की सरकार ने मशहद में आयोजित कार्यक्रम के लिए भारी सुरक्षा इंतजाम किए हैं। सड़कें, हवाई क्षेत्र बंद रखे गए हैं। ऐसे में ये आयोजन ईरान की ताकत और एकजुटता दिखाने का मौका भी है।
1: अट्ठाईस फरवरी को अमेरिका के हमलों में आयतुल्ला अली खामनेई की जान चली गई थी। हमले के वक्त खामनेई सुरक्षा चिंताओं पर अपने रक्षा अधिकारियों के साथ मंथन कर रहे थे। अमेरिका इजराइल के हमले को लेकर रणनीति बना रहे थे, तभी अमेरिकी हमलों में उनकी जान चली गई। अब उस इमारत की तस्वीर आई है जिसमें खामनेई की जान गई थी। इन सब के बीच उनके अंतिम संस्कार की तैयारी भी अपने अंतिम पड़ाव पर है और सस्पेंस मुश्तबा खामनेई पर भी है।

0: वो तारीख थी 28 फरवरी 2026 और शहर था तेहरान। ईरान पर अमेरिकी इजरायली हमले शुरू हो चुके थे। सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई अपने आधिकारिक निवास में बैठे थे, साथ में शीर्ष सैन्य कमांडर थे, परिवार के सदस्य भी थे। तभी अमेरिकी मिसाइल ने इमारत को सीधे हिट किया। और फिर जो हुआ वो पूरी दुनिया जान चुकी है। उस घटना को आज 132 दिन हो चुके हैं। तब से अब तक खामनेई के पार्थिव शरीर को ईरान ने सहेज कर रखा था। अब जाकर 132 दिन बाद उन्हें सुपुर्द खाक किया जा रहा है, जिस वक्त मशहर में सुपुर्द खाक की तैयारी है उसी वक्त खामनेई के उस आधिकारिक निवास की तस्वीरें सामने आईं, जो अमेरिकी हमले में तबाह हो गया था। तबाह इमारत की तस्वीरें पहली बार दुनिया के सामने आई हैं। ईरान की मेहर न्यूज एजेंसी ने वीडियो जारी किया। इसी इमारत में आयतुल्ला अली खामनेई की जान चली गई थी। अमेरिकी हमले में खामनेई के साथ साथ कई परिजनों और रक्षा अधिकारियों की भी जान चली गई थी। पूरी की पूरी इमारत मलबे के ढेर में तब्दील हो गई है। यहाँ का मंजर देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि खामनेई को मारने के लिए अमेरिका और इजराइल ने कितना घातक प्लान तैयार किया था। तेहरान में इसी इमारत तक आज तक की टीम पहुंची।
1: आज तक की टीम इस समय मौजूद है उस जगह पे, उस घर पर जो पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई का घर हुआ करता था, जहां पर उनकी हत्या की गई। मेरे पीछे जो आप जगह देख रहे हैं, दरअसल आप देखें इसको पूरा कॉर्डन कर दिया गया। पीछे जो इमारतें देख रहे हैं, अगर आप देख पा रहे हो तो उनको नुकसान पहुंचा था। सारी इमारतें आसपास की बम्बारमेंट किया गया था और कहा जाता है कि न सिर्फ एक इमारत को बल्कि मल्टीपल आसपास की जो भी इमारतें थी उनको भी ध्वस्त कर दिया गया। अब इस पूरे इलाके को कॉर्डन कर दिया गया है, इस पूरे इलाके से डिब्रीज को या फिर उनको चीज़ों को हटा दिया गया। लेकिन अगर आप देखें कि यहाँ पर जहाँ पर गेट लगाया गया है, ये वो पूरा कंपाउंड था जहाँ वो अपने परिवार के साथ उस समय रह रहे थे, उनका ऑफिस भी वही था। और अभी यहाँ पर लोग उनके उनसे उनकी दुआओं के लिए उनको याद करते हुए, अगर आप देखें बच्चे भी आपको नजर आएंगे, महिलाएं भी याद हैं, रो रहे हैं आप अपने अपने सुप्रीम लीडर को याद करते हुए। और इस समय के ताज़ा हालात कुछ ऐसे हैं कि लोग गमजदा हैं।
0: आयतुल्ला खामनेई के उस तबाह आवास के बाहर अब ईरान के लोग आकर आंसू बहा रहे हैं, उन्हें याद कर रहे हैं, उनसे उनका नेता छीन लिया गया और अब आज उसे सुपुर्द खाक किया जा रहा है। पूरा ईरान शोक में डूबा है। खबरों के मुताबिक आज मशहद में होने वाले अंतिम संस्कार में खामनेई के परिजन और रिश्तेदार भी मौजूद रहेंगे। लेकिन नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई इस अंतिम विदाई में शामिल नहीं होंगे। उनके दूसरे बेटे और सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई सुरक्षा कारणों से सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आएंगे। हालांकि वह पूरे आयोजन पर खुद निगरानी रख रहे हैं और लिखित निर्देशों के जरिए अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहे हैं। पांच जुलाई को तेहरान में भी जब खामनेई का अंतिम दर्शन चल रहा था तब मुज्तबा नहीं पहुंचे थे। उनके अन्य भाइयों ने अपने पिता को श्रद्धांजलि दी थी। साथ ही राष्ट्रपति पेजेश्कियान, स्पीकर गालिबाफ और विदेश मंत्री अराग्ची ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की थी। लेकिन मुज्तबा इस आयोजन से दूर ही थे। अमेरिका और इसराइल से जारी टकराव और सुप्रीम लीडर बनाए जाने के बाद से मुज्तबा पर खतरा बरकरार है और
2: यानी ईरान और अमेरिका में एक नई जंगी शुरुआत हो चुकी है जो कभी भी और ज्यादा भीषण हो सकती है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप देखते रहिए आज तक।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
3: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस
5: नीड बेटर इंटरनेट Cox Internet has the fast, reliable speeds you're looking for. Perfect for seamless streaming, gaming, and working from home. And now get Cox 300 Meg Internet with a 2-year plan price lock guarantee, plus equipment included. Oh yeah! So get your household up to speed. Switch to Cox Internet today. Taxes and fees excluded from price guarantee.
6: Tune in to How To. A brief look at all the special functions and

0: पीएम मोदी का ब्लॉकबस्टर शो अपने संबोधन में ग्रो मोर अचीव मोर का दिया विकास मंत्र, कहा आज चिप से शिप तक भारत बना रहा है। अखिलेश पर योगी का करारा हमला, कहा 2017 से पहले की सरकारों ने कब्रिस्तान बनाने में खर्च किए पैसे। मंत्री ओपी राजभर बोले इस जन्म में सीएम नहीं बनेंगे अखिलेश। शिंदे पवार की मुलाकात से महाविकास आघाड़ी में हड़कंप, राउत ने पूछा गद्दारों को क्यों इज्जत दे रहे हैं शरद पवार, जिसने गिराई सरकार उससे कैसी दोस्ती। दिल्ली एनसीआर में बेहिसाब बारिश, रोहिणी में इमारत गिरने से 3 की मौत, गाजियाबाद में मेरठ एक्सप्रेसवे पर घुटनों तक पानी, उत्तराखंड में भी रिकॉर्ड बरसात। ईरान के 90 ठिकानों पर हमले के बाद भी ट्रंप की धमकी, कहा 20 गुना ताकत से करेंगे हमला। तेहरान ने कुवैत और बहरीन में अमेरिकी ठिकानों को बनाया निशाना।
1: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: में आपका स्वागत है। आज का दंगल उत्तर प्रदेश में चल रही धर्म, मजहब, वक्फ, बाबर और कब्रिस्तान वाली राजनीति पर है। और ये राजनीति कुछ ऐसी ही हो रही है कि जब से राम मंदिर में चोरी का मुद्दा सामने आया है, समाजवादी पार्टी लगातार आस्था, भक्ति और मंदिर की ज्यादा ही चर्चा करने लगी है। अखिलेश के ज्यादातर बयानों में केदारेश्वर मंदिर का जिक्र हो रहा है। कभी अखिलेश शंकराचार्य, अभी मुक्तेश्वरानंद के चरणों में 81 दिवसीय गो रक्षा आंदोलन की शुरुआत करते नजर आते हैं। कभी अखिलेश के सांसद ब्राह्मण सम्मेलन में शिरकत करते नजर आते हैं। ब्राह्मण, मंदिर, गोरक्षा, राम, परशुराम, मथुरा और अयोध्या जैसे मामले समाजवादी पार्टी के चुनावी सिलेबस में इससे पहले कभी नहीं दिखे थे, लेकिन 2027 के चुनावी समर में इन्हें एक बार फिर इन चैप्टर्स को समाजवादी पार्टी पढ़ने की कोशिश कर रही है। और इसका रिएक्शन ऐसा है कि यूपी में बीजेपी के फायर ब्रांड सीएम फुल थ्रॉटल में अपने टेस्टेड एंड ट्राइड सिलेबस पर चल निकले हैं। और वो सिलेबस क्या है वो आप सभी को पता है। पिछले 5 दिनों में अगर किसी ने सीएम योगी के भाषण सुने होंगे तो उसमें वक्फ, बाबर, औरंगजेब, मुसलमान और कब्रिस्तान वाले हमले जबरदस्त हो रहे हैं। सीएम योगी बीजेपी को राम भक्त और समाजवादी पार्टी को राम द्रोही कह रहे हैं। सीएम योगी बीजेपी को सनातन प्रेमी और विपक्ष को सनातन विरोधी करार दे रहे हैं। और आज चुनावी मेले में यूपी के मंत्री भी जुड़ चुके हैं और वो कह रहे हैं कि एमपी की तरह उत्तर प्रदेश में भी वक्फ बोर्ड बनाया जाएगा और उसमें 2 हिंदू सदस्य भी शिरकत करेंगे। विपक्ष पर होने वाले इन ताबड़तोड़ हमलों के पीछे क्या है? अयोध्या के राम मंदिर का चढ़ावा चोरी कांड है, क्योंकि विपक्ष इस विशुद्ध भ्रष्टाचार के मसले को आस्था पर लेकर गया है, यानी आस्था पर प्रहार का मामला बताना शुरू कर दिया और उसमें शायद वो भूल कर बैठा है। और इसीलिए अब मुख्यमंत्री योगी जिले जिले, गली गली घूमकर बता रहे हैं कि विकास का जो पैसा सनातन की रक्षा के लिए खर्च हो रहा था वो समाजवादी पार्टी की सरकार में कब्रिस्तान पर खर्च किया जा रहा था। और इसीलिए आज हम यही चर्चा करेंगे कि क्या यूपी की चुनावी राजनीति के बीच में ये वक्फ, बाबर, कब्रिस्तान और इसी की चर्चा होगी। लेकिन इससे पहले यह रिपोर्ट देखते हैं।
1: बीजेपी के लोग किसी भी सीमा तक झूठा प्रचार कर सकते हैं।
2: समाजवादी पार्टी के लोगों को तो ठेके पट्टे से ही फुर्सत नहीं है।
3: अयोध्या में चढ़ावा चोरी क्या हुई? उत्तर प्रदेश में बीजेपी की चुनावी राजनीति के पौबारा हो गए। महीने भर में कांग्रेस और समाजवादियों ने जितनी बार राम का नाम नहीं लिया होगा उतनी बार वक्फ, बाबर, कब्रिस्तान हो चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ धुआंधार रैलियां और कार्यक्रम कर रहे हैं। सैकड़ों करोड़ की योजनाओं की सौगात जिले जिले दी जा रही है और इसके साथ ही विपक्ष पर मुस्लिम परस्त, मुगल परस्त, मौका परस्त होने की सियासी बौछार चल रही है।
2: आज के समाजवादी राम से दूरी बनाते हैं, बाबर को अपना आदर्श मानते हैं, औरंगजेब को अपना आदर्श मानते हैं, राम और कृष्ण को नहीं मानते।
4: अंतर यही है, बीजेपी की सरकार आई तो अब पैसा मंदिरों के विकास के लिए, धामों के सुंदरीकरण में खर्च हो रहा है और समाजवादी पार्टी के समय वही पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल के लिए चला जाता था।
2: वक्फ के नाम पे हजारों एकड़ लैंड बेच भी दी गई, वारा नारा किया गया, ये सीधे सीधे डकैती थी। इसके नाम पर एक भी बार समाजवादी पार्टी नहीं बोली, एक भी बार कांग्रेस नहीं बोली, बल्कि जब मोदी जी ने इसके खिलाफ कानून बनाया, उस लूट के खिलाफ कानून बनाया, तो इन लोगों ने आंदोलन किया।
3: एक तरफ समूचा विपक्ष राम मंदिर में चोरी को लेकर हमलावर था तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वक्फ में घोटालों का मुद्दा उठाया और अब उसी लाइन को यूपी के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ने और आगे बढ़ा दिया।
5: उत्तर प्रदेश में भी वक्फ बोर्ड, सुन्नी वक्फ बोर्ड जो है इस समय वर्तमान में रिक्त है। आने वाले दिनों में जब सुन्नी वक्फ बोर्ड का गठन होगा तो जो वक्फ संशोधन अधिनियम के अनुसार जो गाइडलाइन है उस गाइडलाइन के अनुसार उत्तर प्रदेश में भी उस अधिनियम के माध्यम से वक्फ के बोर्ड का गठन होगा, जिसमें पिछड़े मुसलमानों को रखा जाएगा, मुस्लिम महिलाओं को रखा जाएगा, ऐसे हमारे हिंदू भाई समाज के दो भाइयों को रखा जाएगा, जो भी उस प्रावधान में जो भी गाइडलाइन है उस गाइडलाइन के अनुसार ही आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में भी वक्फ बोर्ड के फॉर्मेशन होगा।
3: अगर ऐसा होता है तो एमपी के बाद उत्तर प्रदेश देश का दूसरा राज्य होगा जो वक्फ बोर्ड में गैर मुसलमान सदस्य रखेगा।
6: मुझे लगता है कि ये हमारे जो फंडामेंटल राइट हैं और हमारे जो मजहबी आजादी हमें दी गई है यकीनी तौर पर उसके साथ कहीं ना कहीं सीधा टकराव है, इसलिए हुकूमत को अपने इस फैसले पर नजरसानी करने की जरूरत है।
3: हालांकि उत्तर प्रदेश में मौजूदा शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन का कहना है कानून संसद से बना हुआ है तो उसका पालन अनिवार्य है, लेकिन सुन्नी समुदाय के मौलानाओं का कहना है वक्फ संशोधन कानून के कुछ प्रावधानों पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है और मामला कोर्ट में लंबित, लिहाजा अभी ऐसा नहीं करना चाहिए। वैसे यूपी में फिलहाल दो वक्फ बोर्ड है, सुन्नी वक्फ बोर्ड और शिया वक्फ बोर्ड। दोनों बोर्ड की संरचनाएं कुछ ऐसी कि दोनों बोर्ड में 11-11 सदस्य होते हैं, जिसमें अध्यक्ष के अलावा मुस्लिम सांसद, मुस्लिम विधायक, मुस्लिम विधान परिषद सदस्य, इस्लामिक विद्वान और मतवल्लियों के प्रतिनिधि होते हैं। इसके अलावा सरकारी अधिकारी सीईओ होता है, यानी अभी की व्यवस्था में गैर मुस्लिम सदस्य वक्फ बोर्ड में नहीं होते, लेकिन वक्फ संशोधन बिल के बाद, नई व्यवस्था के बाद वक्फ बोर्ड में कम से कम दो गैर मुस्लिम सदस्य अनिवार्य हैं। इसके अलावा दो मुस्लिम महिला सदस्य, पसमानदा प्रतिनिधि, सांसद, विधायक, बार काउंसिल के सदस्यों में से एक एक का सीधे मनोनयन होगा, यानी पहले चुनाव होता था उन्हें अब मनोनीत किया जाएगा।
7: चुल चंदा और चढ़ावा में लूट का मुद्दा है, उस मुद्दे से जनता का ध्यान हट जाए, हर समस्या का समाधान मुसलमान है भारतीय जनता पार्टी की, तो अब फिर से मुसलमान को सामने लाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया जा रहा है। मुसलमान मुसलमान मुसलमान मुसलमान, हर समस्या का समाधान मुसलमान है, भारतीय जनता पार्टी का ये प्रयास वो सफल होने वाला नहीं।
3: यूपी में सुन्नी वक्फ बोर्ड इसी साल 15 मार्च को भंग हुआ है, 6 महीने के अंदर इसका पुनर्गठन जरूरी है, यानी चुनाव से ठीक पहले सितंबर 2026 तक यूपी में सुन्नी वक्फ बोर्ड का गठन होगा, जिसमें यूपी सरकार हिंदू समुदाय के 2 सदस्यों को रखने की तैयारी कर चुकी है। दरअसल इसी हफ्ते मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी राज्य वक्फ बोर्ड का ऐलान किया है, जिसमें 10 सदस्यों में 2 सदस्य हिंदू हैं। इसके बाद उत्तर प्रदेश में से लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई। संतोष शर्मा के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक।
0: तो चोरी पर चिंगारी उठी और मजहब की राजनीति एक बार फिर उत्तर प्रदेश के भीतर शुरू हो गई है, और इस पर चर्चा करेंगे हमारे साथ डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, राज्यसभा के सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के जुड़ रहे हैं, अभय दुबे, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस की तरफ से इसमें अपनी भूमिका रखेंगे, सैयद असीम बकार एआईएमआईएम की तरफ से चर्चा में शामिल होंगे, डॉक्टर एम एच खान समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी इस चर्चा में रहेंगे, और मोहम्मद फैज खान, ये कन्वीनर है मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के, उनसे भी कुछ सवाल हम पूछेंगे। 3 सवाल मेरे पैनल के सामने। पहला सवाल, चढ़ावा चोरी कांड का विरोध अब सांप्रदायिक सियासत की ओर बढ़ता दिख रहा है क्या? क्योंकि जैसे हमने कहा कि पिछले 5 दिनों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से भाषण दे रहे हैं, बार बार विपक्ष को मुस्लिम पसंद कहने की कोशिश कर रहे हैं, मुस्लिम परस्त कहने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा सवाल, हर रैली में बाबर वक्फ कब्रिस्तान का जिक्र करके सीएम योगी अब ध्रुवीकरण की राजनीति करना चाहते हैं क्या? जिस तरीके से समाजवादी पार्टी अपना सिलेबस चेंज कर रही है उसके जवाब में मुख्यमंत्री की ध्रुवीकरण की राजनीति। और तीसरा सवाल, क्या वक्फ बोर्ड में 2 हिंदू रखने के ऐलान से बीजेपी को क्या चुनावी फायदा होगा? मध्य प्रदेश के बाद अब उत्तर प्रदेश सरकार से भी कहा जा रहा है कि जो बदलाव किए गए हैं कानून में उसके तहत 2 हिंदू सदस्य भी इस बोर्ड में हो सकते हैं। चर्चा शुरू करेंगे सुधांशु त्रिवेदी जी, बार बार यह माना जा रहा था कि उत्तर प्रदेश की सरकार विकास पर बात करेगी, लेकिन जैसे जैसे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने राम नाम जपना शुरू किया, पिछले 5 दिन से हम देख रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ बार बार कब्रिस्तान, वक्फ और मुसलमानों का जिक्र करना शुरू कर चुके हैं, और विपक्ष को खास करके मुस्लिम को सपोर्ट करने वाले एक तरीके से या कब्रिस्तान की राजनीति करने वाले करार दे रहे हैं।
8: देखिए, जिस प्रकार के आपने जो साहिल की बात कही, बड़ी तर्कसंगत और तथ्यात्मक बात है। आरोप लगाने का प्राइमरी काम विपक्ष का होता है, तो अब यह तय होता है कि विपक्ष कौन से आरोप लगा रहा है, सरकार उसके अनुसार जवाब देगी। क्या विपक्ष ने आज तक हमारी इस विधानसभा कार्यकाल पूरा होने जा रहा हो, पिछली विधानसभा बहुत बोल रहे हैं अखिलेश जी ये महंगाई है, बेरोजगारी है, फलाना है, धमाका है, वो क्या फैक्ट, अलग बात,
9: एक बार महंगाई को लेकर कोई प्रस्ताव लाए हों कि चर्चा होनी चाहिए तो बताइए, एक बार उत्तर प्रदेश की आर्थिक स्थिति की समीक्षा के लिए इन 11 वर्षों में विपक्ष से एक प्रस्ताव आया हो तो बताइए, कोई चर्चा के लिए लाए नहीं। अब आइए, पब्लिक डिस्कोर्स में कभी इस विषय को उन्होंने आरोप लगाया हो तो बताइए। तो जब वो सारा आरोप, वो तथाकथित चढ़ावा चोरी और राम मंदिर, सनातन आस्था, ये विषय उठा रहे हैं, तो ये इस बात को प्रमाणित करता है कि विकास और जो वास्तविक क्षेत्र है, लॉ एंड ऑर्डर, विकास एंड डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इन सब पे सरकार ने इतना अच्छा काम किया है कि विपक्ष को लग रहा है कि इस पे बोलने का कोई बहुत लाभ नहीं मिलने वाला। पहली बात। दूसरी बात, जिस विषय के ऊपर वो बोल रहे हैं कि आपको लग रहा है कि योगी जी हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, यहां पर मैं थोड़ा सा परिवर्तन करूंगा आपकी बात में। हम हिंदू मुसलमान नहीं कर रहे हैं, हम ये बता रहे हैं कि वो सिर्फ अपराधी, आतंकवादी, लुटेरे और अत्याचारी मुसलमानों के साथ खड़े। कौन? कट्टरपंथी, अपराधी, आतंकवादी और इतिहास में जो घोषित लुटेरे हैं, सिर्फ उनके साथ खड़े होते हैं। उनके साथ अच्छे मुसलमान के साथ आज तक कभी खड़े होते हुए दिखाइएगा। साहिल जोशी जी, हम लोग उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं।
10: मैं दो सेंटेंस, दो बयान आपके सामने रखता हूँ।
9: औरंगजेब,
10: सुधांशु जी, दो बयान आपके सामने,
9: हाँ बताइए,
10: दो बयान आपके सामने रखता हूँ। पहला बयान कि समाजवादी पार्टी के समय कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल के लिए पैसा खर्च होता था, उन्हें कब्रिस्तान प्यारा है और इसीलिए राम मंदिर, काशी विश्वनाथ धाम का वो विरोध करते हैं। पहला बयान, राम से दूरी बनाते थे, बाबर औरंगजेब को अपना आदर्श मानते थे। दूसरा बयान, अयोध्या में भगवान राम जन्मभूमि में जो घटना हुई उसको लेकर हमने पत्र लिखा, लेकिन समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, अन्य सेक्युलर पार्टियां इसके गठन की मांग कर रही थी, फिर भी हमारे खिलाफ वो इस वक्त लगे हुए हैं और पिछले एक महीने में हमारी पवित्र अयोध्या की छवि खराब करने की कोशिश उनके तरफ से की जा रही है, और ये मुस्लिम परस्त पार्टियां हैं जो आरोप उन पर लगाया जा रहा है। हाँ। आप कह रहे हैं कि जो राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं उनके बारे में योगी जी बात कर रहे हैं, लेकिन कब्रिस्तान को खर्चा पैसा देना, ये बयान देखिए आप, और ये लगातार हर 5 दिन में हम देख रहे हैं, 5 दिनों में लगातार
9: ये कब्रिस्तान। मैं ये बात सब प्रमाण बोल रहा हूं, कब्रिस्तान के को बनाने का विचार किसका है? कट्टरपंथी मुस्लिमों का। इस्लाम में तो पक्की कब्र कुफ्र है, आई चैलेंज। इसके बारे में तो हदीत और कुरान में एस्टैब्लिश्ड है कि पक्की कोई चीज होनी नहीं चाहिए जिसका एस्टैब्लिश हो, अदरवाइज तो वो धीरे धीरे मूर्ति पूजा की तरफ आ जाती है। और मैं विनम्रता और चैलेंज करके पूछता हूं, बताइए साहब, जितने भी बड़े बड़े खलीफा और पुराने लोग हुए उनमें से भारत के अलावा, भारतीय उपमहाद्वीप के अलावा, कितनों की पक्की कब्रें और कब्रिस्तान की बाउंड्री बनाई गई? कब्रिस्तान जैसी चीज का कोई कॉन्सेप्ट इस्लाम में था ही नहीं। यहां पर जमीनों को कब्जा करने
10: और कब्रिस्तान पे,
9: मैं दर्शकों से कहूंगा,
10: मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि कब्रिस्तान पे खर्चा हो रहा था, कितना खर्चा किया, कितने कब्रिस्तान बनाए उत्तर प्रदेश में 2012 से 2017 तक, ऐसे कितने कब्रिस्तान, कितना खर्च किया गया उस
9: पर? आप कब्रिस्तान पे खर्च करेंगे जो, हाँ अभी बता रहा हूं, आप कब्रिस्तान पे खर्च करेंगे जो सिर्फ कट्टरपंथी मुस्लिमों को अच्छा लगता है। आप आगरा में मुगल गार्डन बनवाएंगे, उससे कौन खुश हो रहा था भाई? वो भी कट्टरपंथी मुस्लिमों के लिए हो रहा था। अब मैं दूसरी बात कहूं, आपने हज हाउस गाजियाबाद में बनाया, अरे भाई अगर हज पे ही आदमी जा रहा था, हज टर्मिनल बना रहता है हर एयरपोर्ट में, मगर नहीं, गाजियाबाद जो कि एक 50 किलोमीटर की दूरी पे है दिल्ली एयरपोर्ट से, वहां पे हज हाउस बनाएंगे। अब ठीक है, उसमें बाबा साहब अंबेडकर के लिए क्या बोला था वो एक अलग बात है। अब मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं कि ये बात तो अपनी जगह है, मगर मैं विनम्रता से पूछना चाहता हूं, इसी उत्तर प्रदेश में सैयद इब्राहिम रसखान की भी तो मजार है, बहुत बड़े कृष्ण भक्त कवि थे। चैलेंज करके पूछता हूं, इनमें से कोई गया हो तो बताइए, आप बताइए, पद्मावत मूवी जो बनी थी, पद्मावत लिखने वाला कौन था? मलिक मोहम्मद जायसी, उत्तर प्रदेश के रायबरेली का। कोई गांव मलिक मोहम्मद जायसी का तो बताइए? उसने अलाउद्दीन खिलजी को विलेन और राणा रतन सिंह को अच्छा व्यक्ति कहा है, बताइए। आलम शेख बहुत बड़े कृष्ण भक्त कवि थे, कभी ये लोग उनके यहां गए हो तो बताइए उनके ऊपर। और बाकी तो मैं कई बार बोल चुका हूं, यूपी का, इंडिया की आर्मी का पहला गैलेंट्री अवार्ड विनर ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान, उसके घर पे कभी गए हो बताइए? आतंकवादियों के घर पे जाके इन्होंने सिजदे किए हैं आज। हम इसीलिए मैं कह रहा हूं, कट्टरपंथी, अपराधी, आतंकवादी मुसलमान आज का और लुटेरा शासक पूर्व का, बस ये। और मैं लास्ट में एक और बात कह दूं, ये जो मुकदमा था राम मंदिर का, इसमें एक पैरोकार श्री रामलला विराजमान भी थे, तो जब बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के वकील बनकर कांग्रेस के पूर्व कानून मंत्री कपिल सिब्बल खड़े होते थे तो वो श्री रामदला विराजमान के खिलाफ खड़े होते थे। जब जफर याब जिलानी जो एडिशनल एडवोकेट जनरल समाजवादी पार्टी की सरकार में थे और उसी समय वो बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के वकील थे तो वो श्री रामदला विराजमान के खिलाफ चुनाव लड़ते थे, मुकदमा लड़ते थे।
10: इसीलिए उत्तर प्रदेश के चुनाव में बाबर, औरंगजेब, कब्रिस्तान और वक्त, इसी मुद्दों पर बात होगी क्या? ये एक सवाल तो कायम रहता है। लेकिन डॉक्टर एम एच खान, कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये अभी लेटेस्ट तस्वीरें हैं। यहां पर दिख रहे हैं कि अविमुक्तेश्वरन के चरणों में, शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरन के चरणों में अखिलेश यादव वहां पर बैठे हुए हैं। आपने आपका सिलेबस बदल दिया, अब भारतीय जनता पार्टी को मौका मिल गया। जिस सिलेबस में उन्हें 100 में से 100 अंक प्राप्त होते हैं, उसी सिलेबस पर आप उनको चैलेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। केदारेश्वर मंदिर बना रहे हैं, चरणों में बैठे हुए अखिलेश यादव समाजवादी आज तक तो मैंने कभी नहीं देखे, लेकिन इस चुनाव के पहले देखने लग गए। और सुधांशु जी सही कह रहे हैं, अगर आप मामला भटकाएंगे तो वो उससे ज्यादा बेहतर कर सकते हैं। कई गलती तो नहीं हो गई रणनीति बदलकर?
11: नहीं साहिल जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे अखिलेश यादव जी एक बार नहीं कई बार शंकराचार्य जी से मिल चुके हैं। और शंकराचार्य जी से मिलना क्या अपराध है? क्या किसी में धर्म गुरु से मिलना अपराध है? क्या उनका सम्मान करना अपराध है? क्या उनके साथ बैठना अपराध है? क्या ये कौन सी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं सुधांशु जी? अरे भाई, आप शंकराचार्य को आप क्या समझते हैं? हिंदू समाज के भाइयों के सबसे बड़े धर्म गुरु होते हैं शंकराचार्य, और उनके चरणों में अगर माननीय अखिलेश यादव जी बैठ रहे हैं तो इसमें किसी को क्या ऐतराज है? वक्त की बात कर रहे थे आप, वक्त के नाम पर हमको बुलाया गया है, वक्त की बात कर लेते हैं। वक्त पे जो भी बहस होनी थी वो सब बहस हो चुकी है। और वक्त जो है, वक्त माने ही होता है दान करना। वक्त में वही दान करता है जिसके पास जमीन अपनी नंबर एक की होती है और वो अपने किसी खानदान को ना दे करके, अपने खानदान वालों को ना दे करके अल्लाह के नाम पर दे देता है। उस पर हक किसका होना चाहिए? आज 10 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में सरकार बने हुए। 10 साल में वक्फ बोर्ड की क्या कार्रवाई हुई? कितने भ्रष्टाचारी पकड़े गए? कितने लोगों का आपने जमीन छोड़वाया? नहीं छोड़वाया आपने। आज 10 साल के पूरे होने के बाद इस पर सीबीआई जांच भी बैठाई गई थी। सीबीआई जांच में क्या हुआ? टाइट ऑफिस, कुछ नहीं निकला, कुछ बात नहीं बली, कुछ बात ही नहीं किया इन लोगों ने। इन लोगों ने पर्दा डालने की कोशिश की है और हिंदू मुसलमान करने की कोशिश करते हैं। ये हिंदू मुसलमान नहीं चलेगा, भाईचारा चलेगा। सब हिंदू धर्म के लोग हमारे भाई हैं, मुस्लिम समाज के लोग
10: एक,
11: हमारे
10: एक
11: भाई
10: बात बताइएगा,
11: हम सबको लेके संविधान के अनुसार।
10: डॉक्टर एम एच खान जी,
11: जी
10: समाजवादियों की राजनीति तो हम सालों से देख रहे हैं, आज तक तो मैंने कभी नहीं देखा कि किसी शंकराचार्य के चरणों में जाकर समाजवादी पार्टी के नेता इस तरीके से बैठे हो और उनकी उनसे बातचीत कर रहे हो। सकता है कि उनकी श्रद्धा हो सकता है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन क्या ये सियासत के लिए बैठे हैं या श्रद्धा के लिए बैठे हुए हैं? ये जो सॉफ्ट हिंदुत्व है, देखिए 2024 के बाद भारतीय जनता पार्टी ने संबल का मुद्दा उठाया तो यहां पर आप शंकराचार्य को पकड़ रहे हैं, केदारेश्वर मंदिर बना रहे हैं, ये भी तो चीजें नजर आ रही है ना। आप अपने अपने सिलेबस पर नहीं जा रहे हैं, अपनी पढ़ाई नहीं कर रहे, दूसरे की पढ़ाई करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी के वजह से तो बीजेपी को मौका मिला, यही तो बात है राजनीति की।
11: साहिल जी, आज आप कुछ बदले से नजर आ रहे हो, आज आपकी भाषा भी बदली हुई है। क्या किसी के मन की बात आप पढ़ सकते हो? क्या आप साहिल जी बताइए,
10: मैं पूछ रहा हूं आपसे। अरे मैं आपसे पूछ रहा हूं आपको क्या लगता है
11: मन की बात मैं पढ़ सकता हूं क्या? आप क्या करने गए मंदिर, क्या करने गए मस्जिद, ये पढ़ सकते हैं क्या? किस लिए गए थे मंदिर, किस लिए गए थे शंकराचार्य जी के पास? इस पर भी सवाल उठेगा अब हिंदुस्तान भारतवर्ष में कि शंकराचार्य के चरणों में बैठ गए? इस पर अब सवाल उठेगा? कितनी शर्म की बात है ये कि जो लोग शंकराचार्य को शंकराचार्य नहीं मानते हैं, अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी शंकराचार्य के चरणों में बैठ के उनको मान सम्मान दे रहे हैं, इसमें भी राजनीति करेंगे आप? ये राजनीति नहीं चलेगी भारतवर्ष में,
10: ठीक है?
11: ये राजनीति नहीं चलेगी, ये राजनीति बिल्कुल नहीं चलेगी।
10: आप सच बता दीजिएगा,
11: हिंदू मुसलमान सब भाई भाई हैं।
10: ये तस्वीरें देखकर आपको क्या लगता
11: है? ये सबके साथ खड़ा बनना पड़ेगा।
10: सही असीम बकार जी, आप बता दीजिएगा, आप सच बता दीजिएगा, आपको ये तस्वीरें देखकर क्या लगता है? क्योंकि एआईएमआईएम हमेशा कहता है कि देखिए मुसलमानों का वोट बैंक समझकर सेक्युलर पार्टियां चलती है, कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, और अब चुनाव के पहले ये सॉफ्ट हिंदू, तो आपको क्या लगता है ये तस्वीरें देखकर?
12: नहीं, मुझे देखकर कुछ नहीं लगता है, मुझे देख के सिर्फ इतना लगता है कि आप लोग काम पे लगा दिए गए, क्योंकि राम मंदिर से जो चंदा पे डकैती पड़ी थी, उस डकैती को लेकर पूरे विपक्ष ने, पूरे देश ने, पूरे हिंदू धर्म ने, पूरे सनातनियों ने जो जवाब तलब किया है भारतीय जनता पार्टी की स्टेट और केंद्र सरकार से, उससे आप लोग डर गए। और अब उसको कैसे खत्म किया जाए, कैसे लोगों की भावनाओं को बदला जाए, तो वक्फ बोर्ड ले आओ, बाकी और मुद्दे ले आओ। तो मुझे तो लगता है कि सबसे पहले तो इस बात का जवाब देना होगा जो अटल बिहारी वाजपेयी का एक लोकसभा का बयान है कि अगर चोरों को देखकर पहरे में बैठा कुत्ता ना भौंके तो समझ लो कि कुत्ता चोरों को पहचानता है और कुत्ता चोरों से मिला हुआ है। आगे दो लाइनें मैं बोले दे रहा हूं कि वो कुत्ता जरूर चोरों से बिस्कुट लेकर खा रहा है। बात को समझ गए आप? ये पूर्व प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े नेता का बयान है, मेरा नहीं है। आप लोगों ने आज तक हिसाब नहीं दिया। और मैं न समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता हूं, न कांग्रेस पार्टी का हूं, न बीजेपी का हूं, न किसी दल का हूं, मैं देश का प्रवक्ता हूं। अब देश सवाल ये पूछ रहा है कि ये वही शंकराचार्य जी हैं, अभी बहुत पुरानी बात नहीं है, अभी बहुत पुरानी बात नहीं है, यही शंकराचार्य जी समाजवादी पार्टी को नमाजवादी पार्टी बोल रहे थे और बहुत नाराज रहते थे अगर कोई सवाल पूछ लेता था उनसे कि वो नमाजवादी वाली नमाजवादी पार्टी। तो मैं खाली इतना पूछ रहा हूं कि एकदम से ऐसा तो है नहीं कि जो 6 महीने पहले समाजवादी को नमाजवादी पार्टी कह रहा था और मुसलमानों के विरोध की बात कर रहा था, वो उसका मन तो एकदम से बदलेगा नहीं।
10: असीम वकार जी, आप तो राजनीति जानते हैं, आप भी तो राजनीतिक पार्टी से प्रवक्ता है, आप भी राजनीतिक पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, आप भी तो देख रहे हैं। आपने कहा अभी मुक्तेश्वर आनंद के बारे में कि उनका उनका मिजाज थोड़ा सा बदल गया है, उसी तरीके से अखिलेश यादव भी उन पर लाठीचार्ज किया करते थे जब मुख्यमंत्री थे, उनका भी मिजाज बदल गया है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को भी मौका मिल गया। सुधांशु जी को सुना कि नहीं आपने?
12: सुन लीजिए सर, मेरी बात तो सुन लीजिए। बात समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी की नहीं हो रही है, बात हो रही है उसूलों की। जब मोहन यादव पे भ्रष्टाचार का आरोप लगा, कांग्रेस ने लगाया और कांग्रेस ने बकायदा सबूत पेश किए कि ये मोहन यादव ने इतना बड़ा भ्रष्टाचार किया है, खुद अपने परिवार को जमीनें खरीदवा दी, उनका इस्तीफा मांगा, तो बड़े यादव थे मोहन यादव, इसलिए अखिलेश जी उनके साथ खड़े हो गए। लेकिन जब टिन्नू यादव पर भ्रष्टाचार और चोरी का आरोप लगा तो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अगर किसी ने टिन्नू यादव से मुझको मिलाया तो मैं रिपोर्ट लिखा दूंगा, एफआईआर करा दूंगा। मोहन यादव, टिन्नू यादव, इन दोनों यादवों के साथ अखिलेश जी अलग अलग रवैया, अलग अलग व्यवहार, अलग अलग बयान क्यों दे रहे हैं? और फिर एक बात बोल दूं आपसे, ये जो वक्फ बोर्ड का आप मुद्दा लेकर आए हैं, ये सीधा सीधा सा राम मंदिर के मुद्दे को दबाने के लिए है, ठीक। और बहुत जनरल सी बात बोल रहा हूं, आप 2-4 लाख गैर मुसलमान इसमें घुसड़ दो, आज नहीं कल तो सरकार पलटेगी, कल नहीं परसों पलटेगी, आपका ये कानून वापस से बदलकर फिर से जो हिंदुओं का है वो हिंदुओं को दिया जाएगा, जो मुसलमानों का है वो मुसलमानों को दिया जाएगा, जो क्रिश्चियन का है वो क्रिश्चियन के पास रहेगा।
10: असीम वकार जी ने एक नया मुद्दा छेड़ दिया है, लेकिन मेन मुद्दा समाजवादी पार्टी उठा रही है कि आपको मुसलमान की राजनीति हमेशा क्यों नजर आती है, और उसके बाद हम कांग्रेस प्रवक्ता के पास भी चलेंगे।
12: अरे सर, मेरी बात ही नहीं आने दे रहे आप। अरे हजरत, एक छोटी सी बात और बोल दूं आपसे, योगी जी का मैं भाषण सुन रहा था, नहीं सुन लीजिए सर, सुधांशु जी से सवाल है मेरा, योगी जी का एक भाषण है, योगी जी कहने लगे राम मंदिर पे बोलने वाले लोग वक्फ बोर्ड के डकैती पे क्यों नहीं बोलते, जमीनें बेच दी गई। तो सर, राम मंदिर का जो चोरी हुई है, डकैती हुई है, वो आपकी हुकूमत में हुई है और पिछले 10 साल से देश में, और 9 साल समझिए 9 साल हो गए योगी जी की सरकार को, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन भी आप ही के हैं।
10: ठीक है,
12: शिया वक्फ बोर्ड के
10: सुधांशु जी दोनों सवालों के जवाब दे दीजिएगा।
12: अगर लूट हुई है तो आप ही की सरकार में हुई है।
10: वकार पूछ रहे हैं,
12: भी आप लूट रहे हैं, मंदिर भी आप लूट रहे हैं, हिसाब कौन देगा?
8: अब असीम वकार साहब हो गया काफी। देखिए असीम वकार जी ने जो बोला था मैं उन्हीं की पॉइंट बाय पॉइंट उत्तर देता हूं। उन्होंने कहा बिस्कुट आता है किसी के पास, तो ये असीम वकार साहब क्या आप उन लोगों के लिए कह रहे हैं जिसके पास विदेश से बिस्किट आता है? उन लोगों की तरफ तो इशारा नहीं आपका जिनके FCRA का आता था और वो बिस्किट खाने के बाद हिसाब ही नहीं देते थे कि बिस्किट आया कहां से और बिस्किट खर्च किसके ऊपर हो गया। केवल इतना सवाल पूछा गया था कि भाई जो ये सीमा पार से बिस्किट आ रहा है ये बता तो दो कहां से आया है, तो वही आप लोग उछल के खड़े हो गए थे। ट्रस्ट है, ट्रस्ट पे तो सवाल ही नहीं पूछ सकती सरकार, वो तो इंडिपेंडेंट है। वक्फ बोर्ड भी ट्रस्ट है, और क्या गजब का आप लोगों ने पावर दे रखी थी कि अगर वो एक कह दे कि जमीन हमारी है तो जमीन का कागजात दिखाना नहीं है। वक्फ बाई यूजर, मैंने कह दिया ये हमारी सल्तनत है तो हो गई, और इसके बाद सिर्फ इतना ही नहीं, उसमें मैं क्या करूंगा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 2013 का वक्फ बोर्ड से आते आते 2014 तक 22 लाख एकड़ जमीन ऐड हो जाती है, और क्या कहा जाता है वो तो मुस्लिम समाज ने दान दी है। यानी जो समाज 22 लाख एकड़ जमीन दान दे सकता है वो कहता है कि साहब हमारी स्थिति तो बतौर सच्चर कमीशन SC ST के बराबर है। ये सब जो आप लोगों ने मुगालते पालकर लोगों को झांसा देने का प्रयास किया था वो पूरी तरीके से अब एक्सपोज होकर सामने आ रहा है। अब दूसरी बात, मैं भी एक नया एंगल बताना चाहता हूं। देखिए इनके मुंह से लास्ट में क्या निकला, चाहे सुन्नी वक्फ बोर्ड हो या शिया वक्फ बोर्ड हो, और राम मंदिर में भी पैरोकार सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड था। मैं एक बात साहिल जी हमेशा कहता था कि ये भारत 2014 से पहले संवैधानिक दृष्टि से आंशिक मुस्लिम राष्ट्र था, और आंशिक मुस्लिम राष्ट्र के इंपैक्ट आज भी भारत के इंटेलेक्चुअल सिस्टम में है। यहां सुन्नी वक्फ बोर्ड और शिया वक्फ बोर्ड अलग है, मगर किसी चुनाव में मीडिया की तरफ से नहीं दिखाया जाता जब हिंदू समाज का वर्णन आता, इतने ब्राह्मण, इतने ठाकुर, इतने बनिए, इतने जाट, इतने गुजर, इतने यादव, इतने पासी, इतने सोनकर, इतने और इतने मुसलमान, कोई नहीं दिखाता। इतने शिया, इतने सुन्नी, इतने सैयद, इतने शेख, इतने हलालखोर, इतने गद्दी,
10: जो उठ रहा है मीडिया पर ही सवाल उठा रहा है।
8: यानी अब देखिए मैं एक एक लाइन और कह दूं, हमारे यहां कोई ट्रस्ट अलग अलग नहीं है। कोई नहीं कह सकता कि साहब ये ब्राह्मणों का ट्रस्ट है, ये यादवों का ट्रस्ट है, ये सोनकरों का ट्रस्ट है, ये शैवों का अलग है और वैष्णवों का अलग है और शाक्यों का अलग है और एक दूसरे के खिलाफ फतवे हैं। मगर साहब देखिए कैसा भाईचारा है कि जमीन में भरोसा नहीं है, तब शिया सुन्नी को एक दूसरे भरोसा नहीं जमीन पे, मगर हमास और हिजबुल्ला के खिलाफ लड़ना होगा तो सुन्नी भी छाती पीटेगा आके, या भले ही हिजबुल्ला शिया है तो क्या हुआ, हम छाती पीटेंगे क्योंकि बीजेपी या भारत सरकार की खिलाफत करनी है, अपनी भारत सरकार से उसका कोई लेना देना नहीं है। मगर जब जमीन के मामला आएगा तो शिया को सुन्नी भाई नजर नहीं आएगा, सुन्नी को शिया भाई नजर नहीं आएगा।
10: नहीं जरा वो मुस्लिम राजनीति पर भी बोल दीजिए ना सुधांशु जी, वही असली सवाल तो वही था जो MH खान वहां पर उठा रहे थे कि अब हर बार हर चुनाव के समय पहले आपको मुसलमान नजर आते हैं विपक्ष के भीतर, इसका भी जवाब दे दीजिएगा, उसके बाद अभय दुबे जी के पास चलूंगा जरा।
8: नहीं, हम बिल्कुल साफ साफ बताना चाहते हैं किसी भी चुनाव के समय हमको विपक्ष में मुसलमान नजर नहीं आते। अभी उदाहरण देना चाहता हूं, 4 मई 2024 से पहले मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बन रही थी कि नहीं, और अखिलेश यादव जी खुल के जाके उनके लिए प्रचार किए थे, और बाबरी मस्जिद का कनेक्शन अयोध्या से बताया जा रहा था, पूछा जा रहा था भाई अयोध्या में बाबरी मस्जिद है मुर्शिदाबाद में क्यों, तो जवाब दिया जा रहा था अयोध्या में मेजॉरिटी में नहीं है, हम यहां मेजॉरिटी में है। अब आइए चुनाव में ही मैं जवाब देना चाहता हूं, जुबली हिल का चुनाव हैदराबाद किसने बोला, कांग्रेस मतलब मुसलमान, मुसलमान मतलब कांग्रेस, कांग्रेस की ताकत मुसलमान, मुसलमान की ताकत कांग्रेस, रेवंत रेड्डी कांग्रेस के मुख्यमंत्री। 2023 का चुनाव मध्य प्रदेश, यहां अभय दुबे जी बैठे हैं, कमलनाथ जी का वो वीडियो जिसमें वो कह रहे हैं मुसलमानों का 100% वोट चाहिए, 100%, 1% भी कम नहीं होना चाहिए। 2023 मध्य प्रदेश का बुरहानपुर चुनाव, हमास के पक्ष में नारे रखते हुए वीडियो।
10: लेकिन
8: अब आइए
10: सुधांशु जी,
8: अभी का केरल का चुनाव,
10: एक लिस्ट तो मेरे पास भी है
8: जो आज इनके मुख्य,
10: एक लिस्ट तो मेरे पास भी है सुधांशु जी,
9: आप बताइए
10: ठीक ठीक है, लेकिन एक लिस्ट मेरे पास भी है ना। देखिए वेस्ट बंगाल 2026 का चुनाव क्या कहा था सुकांत मजुमदार ने कि ये नेसेसरी है कि हमको कम्युनल होना चाहिए क्योंकि कम्युनल होंगे तभी हम रिलीजियस प्रोटेक्शन कर पाएंगे हमारा। सुकांत मजुमदार जो केंद्रीय मंत्री है उनका ये बयान है। बिहार चुनाव 2025 बीजेपी के ऑफिशियल हैंडल से ट्वीट किया गया था जिसके बारे में राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस पार्टी को कहा था कि मुस्लिम लेबल्ड एज इन्फिल्ट्रेटर्स उनको सपोर्ट कर रहे हैं, ये उनके बारे में कहा गया था। हेमंत बिश्व शर्मा बिहार के इलेक्शन में एक बार फिर वही कह रहे थे, राम मंदिर का मुद्दा और उसके साथ साथ मुस्लिम घुसपैठियों का मुद्दा। झारखंड के चुनाव में हेमंत बिश्व शर्मा एक बार फिर वही सवाल उठा रहे थे। लेकिन अभय दुबे इसी बात को लेकर मुझे आपसे सवाल है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि अगर आप सही मुद्दे उठाते विकास को लेकर उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर तो उस पर चर्चा होती, आप आस्था पर चले गए तो उसका जवाब उस तरीके से दे रहा है, तो आखिरकार सांप्रदायिकता की राजनीति कौन कर रहा है या हिंदुत्व की राजनीति कर कौन रहा है? आप लोग कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी कर रही है, भारतीय जनता पार्टी कर रही है या एमआईएम कर रही है?
13: साहिल जी 27 मिनट आप देश के लोगों आपने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को सुना और 27 नहीं 12 साल देख लीजिए। अगर आप भारतीय जनता पार्टी
10: एमआईएम और समाजवादी पार्टी को भूल गए आप?
13: सुन तो लो साहिल जी, अब ठीक है आप और किसी से बुलवा लो अगर मुझे 10 सेकंड भी नहीं बोलने। नहीं नहीं मेरी बात सुनो, वो खान साहब बैठे हैं
10: कोने पे, करेक्शन कर रहा था सर, ऐसे मत करिए।
13: और सुधांशु जी
10: ऐसा अन्याय मत करिए,
13: इन दोनों से ही मेरे करेक्शन वक्तव्य तो सुन लीजिए। अन्याय तो आपने किया है, आज पूरा देश कोसेगा आपको आज की आप।
10: चलिए बोलिए सर, बोलिए,
13: छवि को नुकसान हुआ इस डिबेट,
10: माफ करिए अभय दुबे जी, आज बाकी लोग भी है उनसे भी पूछना पड़ेगा ना, ऐसे थोड़ी है। बोलिए बोलिए।
13: 12 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी के देश के लोगों प्रवक्ताओं को सुनिएगा, ऐसा लगता है दारुल उलूम से पड़े हुए कोई मौलवी बोल रहे हैं। इतना मोदी जी और योगी जी ने मुसलमान मुसलमान मतलब शिया और सुन्नी समुदाय के सारे इन डेप्थ इन्होंने स्टडी कर ली, ऐसा नहीं लगता है कि ये कोई मौलवी। और हिंदू धर्म एक ही बात की इन्होंने, बस चंदा चोरी की माला जपी। देहिक देविक भौतिक तापा राम राज नहीं कही भी आपा, सब नर करी परस्पर प्रीति चले सर्व धर्म निरत श्रुत नीति। तुलसी बाबा ने राम राज्य की कितनी खूबसूरत व्याख्या की कि उस समय जो भी प्रचलित धर्म होंगे वो सब मिलकर साथ रहा करते थे। भारतीय जनता पार्टी का दो उद्देश्य रहे पहले दिन से, देखिए 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बना, 1952 में जनसंघ बना, 1964 में विश्व हिंदू परिषद बनी। 20 से लेकर 50 साल तक रामलला इनकी जबान पर नहीं थे। कब आए? जब 7 अगस्त को 90 को विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने मंडल कमीशन दिया तब इन्होंने कमंडल थाम लिया। भारतीय जनता पार्टी के दो ही उद्देश्य थे, सत्ता को हथियाना, और रामविलास वेदांती जी का सुनना था वो कोबरा पोस्ट का स्टिंग ऑपरेशन। बोले ये कह रहे थे आडवाणी जी और ये तो भाग खड़े हुए कि ये अगर आपने मस्जिद तोड़ दी तो ये मुद्दा ही समाप्त हो जाएगा, मुद्दा जिंदा रहना चाहिए, हमारी सत्ता बरकरार रहेगी। भारतीय जनता पार्टी ने इतना जघन्य पाप किया है जिसकी क्षमा इनको मिल ही नहीं सकती, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारतीय जनता पार्टी और विश्व हिंदू परिषद। जो चंदा चोरी का जघन्य पाप किया है ना, मुस्लिम मुस्लिम मुस्लिम वक्फ बोर्ड की माला जपते रहते हैं, उसके पाप पर पर्दा डालना चाहते हैं। आदित्यनाथ जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सीधे जिम्मेदार हैं। इस ट्रस्ट में आदित्यनाथ जी की सरकार के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जिनको एसआईटी ने रिपोर्ट सौंपी वो इस ट्रस्ट में थे। लोखंडे साहब अमित शाह साहब ने अपना एक विश्वस्त उसमें डलाया जो एडिशनल सेक्रेटरी थे होम मिनिस्ट्री के, और नपेंद्र मिश्र जिनके खिलाफ ये कहते थे आरएसएस के आर्टिकल पढ़ना, सीआईए का एजेंट, सरयू को रक्त रंजित करने वाला आदमी। आप कल्पना कीजिए कि कंस्ट्रक्शन कमेटी का हेड बना दिया। ये अभी बात कर रहे थे
10: चोरी का था ना,
13: विदेशों से बिस्किट आए, सुनिए ना, डाके का था, खुद नपेंद्र मिश्र कह रही बिस्किट का नहीं रत्न जड़ित शिला है,
10: डाके का, चोरी का, भ्रष्टाचार का मामला था ना, आस्था से जोड़ा उसके बाद सांप्रदायिक राजनीति तो नहीं शुरू हो गई, आस्था से जोड़ा इसी की वजह से तो राजनीति शुरू नहीं हो गई।
13: राम मंदिर इनके लिए आस्था का विषय था ही नहीं कभी भी, ये कहते थे कि कोई अदालत हमारी आस्था का फैसला नहीं दे सकती। मैं बताना चाहता हूं कि ये पहला नोटिस इनको 700 करोड़ रुपए का आरोप लगा कि चंदा खा गए, कब? राम जन्मभूमि का आंदोलन चल रहा था, 90 मार्च में पहला नोटिस इनकम टैक्स का इनको आया। क्या किया इन्होंने? जितने की बुकलेट छपाई उससे 10 गुना कम चंदा एकत्रित किया, वो 90 के दशक में। 1400 करोड़ रुपए के चंदा चोरी का निर्मोही अखाड़े ने पहला पत्र लिखा प्रधानमंत्री को 2014 में। अभी सुधांशु त्रिवेदी जी कह रहे थे कि ये क्लेमेंट था और उसने मुकदमा लगाया, सबसे पहला मुकदमा लगाया रघुबर दास जी ने 1885 में। उसके बाद 1959 में निर्मोही अखाड़े ने उसका क्लेमेंट था। कहां गए ये लोग? इन्होंने स्ट्रेटेजिकली दरकिनार कर दिए। क्यों? क्योंकि भूख थी हजारों करोड़ रुपए के चंदा खाने की। 5-7 लोग जो गिरफ्तार हुए उनकी हैसियत है कि वो 5-7 हजार करोड़ रुपए खा जाए?
10: ठीक।
13: अरे 9-10 करोड़ लोगों ने सवाल की तरफ सुधांशु त्रिवेदी जी। और आखिरी बात के
10: पन्ने, ये इतिहास के पन्ने हम कई बार खंगाल चुके हैं। ये सांप्रदायिक राजनीति फिर कौन कर रहा है उत्तर प्रदेश के भीतर? आस्था की राजनीति कौन कर रहा है? उसका जवाब दे दीजिएगा ताकि मैं मोहम्मद फैज खान की तरफ भी जा सकूं, उनके पास भी जाना है मुझे। अभय दुबे जी,
13: बात कहने दीजिए। जो सुधांशु त्रिवेदी जी कह रहे थे कि मुस्लिम आतंकवादी और मुस्लिम, अरे साहब हिंदुस्तान में पहले मुस्लिम आतंकवादी को टिकट सैफुल्ला फारूक को भारतीय जनता पार्टी ने कश्मीर से दिया। तालिब हुसैन को तारिक अहमद मीर विधानसभा का चुनाव लड़ाया, घोषित पाकिस्तान से हथियार सप्लाई करता था, गांव वालों ने पकड़ा। ये बेशर्मी की पराकाष्ठा है। सिर्फ ये मुसलमानों के खिलाफ नफरत इसलिए फैला रहे हैं कि चंदा चोरी के पाप पर पर्दा डालें। आज मैं निरंजन ज्योति से पूछना चाहता हूं, फिर से व्याख्या करो बहन, रामजादे और हरामजादे कौन है? इस चंदा चोरी के बाद रामजादे हरामजादे की व्याख्या करिए साध्वी जी, एक बार फिर आकर मैदान में। ये सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करना,
10: ठीक है। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की क्या भूमिका रहेगी इस पर, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर कब्रिस्तान, बाबर, औरंगजेब, इन सब की बातचीत शुरू हो चुकी है। और कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, एमआईएम कह रहे हैं कि राम मंदिर में जो चोरी हुई उसे छुपाने के लिए ये सारी चीजें निकाली जा रही।
14: नहीं नहीं देखिए साहिल भाई, बात यह है, राम मंदिर में भाजपा सरकार के दौरान चोरी हुई एक सत्य तो है, लेकिन उससे बड़ा सत्य यह है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की सरकार होती तो राम मंदिर बनता ही नहीं, यह ज्यादा बड़ा सत्य है। और रही बात अभी सुधांशु भी को कह रहे थे बहुत इस्लाम का ज्ञान रखते हैं, तो मैं बताऊं वो इस्लाम नहीं सब धर्मों का ज्ञान रखते हैं, पर आनंद की बात तो ये है।
11: क्या बात कर रहे हैं, ये कौन बना रहा है?
14: ये होता ही नहीं। सुनिए एमएच खान साहब सुनिए, हाँ, और आप लोगों ने याचिका दायर की थी, राम जी के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाया था, और आप ये कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान सब भाई भाई हैं, अब दो गैर मुस्लिम वक्त में आ गए तो आपको आपत्ति हो रही है? असीम वकार क्या कह रहे हैं? भैया हमारी सरकार आएगी तो हम हटा देंगे सारे हिंदुओं को, गैर मुस्लिम को। मेरी बारी आई है,
11: आगे देखना चाहिए। तीन जज को तीन बड़े बड़े पोस्ट दिए गए भाई,
14: तो आप कह रहे हैं कि कुत्ता चोरों से बिस्कुट खा रहा है? अरे खा रहा था।
11: सुप्रीम कोर्ट के
14: आप लोगों ने सब्सिडी लेते थे आज के नाम पे, जिसका इस्लाम में कोई उल्लेख नहीं है। आप इफ्तार पार्टी किया करते थे जिसका इस्लाम में,
11: जो है सीजीआई जो है
14: इस्लाम की हर इबादत भेज दिया गया, आपने सियासीकरण किया, अपनी मेहनत की कमाई से वक्त की जमीन देना चाहिए। 2013 के बाद से 116% जमीन बढ़ गई, 22 लाख एकड़ जमीन कहां से बढ़ गई साहब? सच्चाई सुनने की आप हिम्मत रखिए, एमएच खान साहब, सच्चाई सुनने की आप हिम्मत रखिए। आप लोग होते तो मंदिर बनता ही नहीं, यदि सचमुच में शंकराचार्य को बनाया है। आइए श्री कृष्ण मंदिर की बात करें, आइए शिव जी के मंदिर की बात करें, काशी में जी नहीं जी नहीं, आप लोगों का नहीं बनाया।
10: एक एक एक मिनट, मोहम्मद फैज खान, फैज खान, मोहम्मद फैज खान, एक एक मिनट, एक एक मिनट,
11: बीजेपी के
10: जरा एक मिनट, एमएच खान जी एक सेकंड, मैंने भाई एक मिनट, एक एक मिनट
14: की जरा शिकायत,
10: एमएच खान जी एक मिनट, मोहम्मद फैज खान, मेरा सवाल आपसे ये है कि अब जो कहा जा रहा है, उत्तर प्रदेश के मंत्री कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड में भी दो हिंदू सदस्य होंगे, क्या राष्ट्रीय मुस्लिम मंच का इसे सपोर्ट होगा? क्योंकि राम मंदिर के भीतर, राम मंदिर के ट्रस्ट में तो कोई गैर हिंदू हो नहीं सकता, लेकिन वक्फ बोर्ड में जो दो हिंदू होंगे उसके लिए आपका सपोर्ट होगा या नहीं होगा? आपको क्या लगता है, ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए?
11: अरे भैया आरएसएस के आदमी हैं, इनका सपोर्ट तो
10: सपोर्ट, अरे एक मिनट उनको जवाब देने दीजिए ना। एमएच खान
14: जी, तमाम दरगाह कमेटी में, तमाम जगहों में हिंदू अध्यक्ष भी है और हिंदू काम संभाल भी रहे बहुत सारी कमेटियों में। अब यदि दो गैर मुस्लिम आ जाते, हिंदू ही नहीं सिख भी आ जाए,
10: एक मिनट एमएच खान जी को शांत करें प्लीज, एमएच खान जी उनको जवाब देने दीजिए प्लीज, प्लीज प्लीज, डॉक्टर खान प्लीज, फैज खान जी को जवाब देने दीजिए प्लीज, फैज खान जी,
14: साहिल भैया, मैं इस कदम का स्वागत करता हूं और मैंने सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट शिराज कुरैशी साहब से भी बात की है। बिल्कुल कानून के तहत मध्य प्रदेश में दो गैर मुस्लिम सदस्य रखे गए हैं, उत्तर प्रदेश में आते हैं उसका स्वागत करेंगे। अभी एमएच खान साहब खुद कह रहे थे हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई ये कह रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल, अरे दरगाह कमेटियों में कितने हिंदू है?
15: आप झूठ बोलने की बात
13: नहीं, आप बताइए
14: कितनी दरगाह कमेटी में
13: हिंदू मंदिर ट्रस्ट होते हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी से पूछिए,
15: आम जनता ने बनाया है।
14: हमारी इच्छेश्वर हनुमान मंदिर बुरहानपुर ब्रह्मपुर में सदस्य हूँ, 1000 साल पुराना मंदिर है ब्रह्मपुर बुरहानपुर में। अरे आरएसएस छोड़िए,
10: ठीक है, एक मिनट अभय दुबे कुछ पूछना चाह रहे हैं। एक मिनट एमएच खान जी, एक मिनट फैज खान जी, एक मिनट फैज खान कह रहे हैं वो खुद ही सदस्य है बुरहानपुर के हनुमान मंदिर के ट्रस्ट में, वो सदस्य है, वो कह रहे हैं अभय दुबे जी खुद का एक उदाहरण दे रहे हैं।
13: मंदिरों में प्रवेश करने पर बजरंग दल के लोग आ जाते हैं प्रोटेस्ट करने, विश्व हिंदू परिषद भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रोटेस्ट करने आ जाते हैं सेलिब्रिटीज को, क्या बात कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं आप। अरे आप साहब, मैं कह रहा हूँ वो तो आप हैं, आपको छूट है क्योंकि आप आरएसएस के हो, इसलिए इनके पेट में दर्द नहीं होता भारतीय जनता पार्टी वालों के
14: और
13: बजरंग दल के।
14: बंद कीजिए झूठ बात फैलाना बंद।
13: अरे साहब सारे,
10: ठीक है एक मिनट,
13: जितने बड़े बड़ी सेलिब्रिटी आती महंकाल, चलिए आइए, मुझे
10: नहीं रोका, ठीक है अभय दुबे जी एक मिनट, फैज खान जी एक मिनट,
14: चालू घुसने नहीं दिया जाता।
10: हाँ कहना चाह रहे जरा दोनों को शांत करिएगा। असीम मेकर आप कुछ कहना चाह रहे हैं जी? असीम मेकर जी,
12: हाँ हाँ, ये जो बता रहे हैं बुरहानपुर में कौन से मंदिर का जिक्र कर रहे हैं ये फैज खान?
14: बुरहानपुर बजरंग बली के हनुमान जी के मंदिर, बुरहानपुर ब्रह्मपुर 1000 वर्ष पुराना हनुमान मंदिर है, मोहम्मद फैज खान उसकी कमेटी का सदस्य है।
13: ये सुन रहे हैं बजरंग दल के
12: नहीं, वही वाले हनुमान जी की बात कर रहे हैं ना, वो जिनके हाथ में बीजेपी ने अपने झंडा पकड़ा के पार्टी का और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की गाड़ी के आगे नचवा दिया था उनको,
14: बस
12: वही हनुमान जी मंदिर की बात कर रहे हैं।
14: आप लोग यही करते रहिए, आप तो कह रहे हैं आप लोगों की सरकार आएगी,
12: एक्सेप्ट कर लिया है
14: सारे हिंदू सदस्यों को हटा देंगे
12: सर, जो लोग भगवान जो लोग अब मैं सुधांशु त्रिवेदी से पूछ रहा हूँ, फैज खान के लिए तो फैज खान तो जवाब दे नहीं पाएंगे क्योंकि वो तो खाली फर्जी
14: सनातन बनते हैं, देश में फर्जी है
12: क्या? तो नहीं है सुधांशु त्रिवेदी,
10: क्या
12: मैं सुधांशु त्रिवेदी जी से पूछ रहा हूँ,
14: पूछिए सुधांशु,
10: फर्जी क्या? सुना नहीं हमने,
12: ओरिजिनल सनातनी अपने को कहते हैं उनसे पूछ रहा हूँ। नहीं मैंने कहा ये फैज खान जो अपने को सनातनी कहते हैं इनको तो मैं नहीं मानता, ये तो झूठ बोलते हैं। ओरिजिनल सनातनी जो है सुधांशु त्रिवेदी हैं, मैं इनसे पूछ रहा हूँ कि क्या भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की गाड़ी के आगे हनुमान जी के हाथ में झंडा देकर नाच कराना चाहिए था?
10: अभय दुबे जी भी कहते हैं कि हम सनातनी है, असली सनातनी तो वो भी कह रहे हैं।
14: अरे
10: यही तो उत्तर प्रदेश के भीतर हो रहा है,
14: आपको सनातन का
10: कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी भी कह रहे हैं कि हम असली सनातनी है,
14: पूजा जाता है मित्र रूप में,
13: सुधांशु जी से पूछिए,
14: पूजा जाता है
13: सुधांशु जी से पूछिए,
14: माता पिता सब रूप में पूजा जाता है,
13: भारतीय जनता पार्टी का अधिकृत वक्तव्य आ जाएगा, सुधांशु जी से पूछिए एक बार कि वो पक्ष में है,
10: सुधांशु जी
13: देवी श्राइन बोर्ड में, राम जन्मभूमि ट्रस्ट में, इनमें पूछिए एक बार।
16: आप देखिए, हाँ हाँ बिल्कुल, मैं अभी बताता हूँ, देखिए मैं स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों का जवाब दूंगा। पहले तो अभय दुबे जी ने जो आपत्ति दर्ज की थी ना साहिल जी, कि इनको इतनी देर बाद मौका मिला, कितना इनकी गठबंधन में लगाव है दिख गया, हमसे ज्यादा कुल मिलाकर सैयद असीम वकार और फैज खान बोले थे, मगर इनको सपा का बोलना अपना नहीं लग रहा। खैर अब जवाब देता हूं, बिल्कुल टेक्निकल वक्फ बोर्ड के मामले में 1964
13: में मंदिरों का बताओ जो वो
16: आपको जजमेंट आ चुका है इलाहाबाद
13: आरएसएस के,
16: सुने मेरे भाई पूरी बात सुनिए, बीच में मत डिस्टर्ब करिए, आपने बहुत सारी बातें गलत बोली है, मैं पॉइंट बाय पॉइंट बात करिए, बीच में आप नहीं चिल्लाते थे, अब आप जो चिल्ला रहे, हाफिज अहमद वर्सेज इलाहाबाद, हाफिज अहमद वर्सेज यूपी गवर्नमेंट केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 1964 में जजमेंट दिया कि वक्फ बोर्ड का मैनेजमेंट कोई रिलीजियस एक्टिविटी नहीं है, यह महंत या मौलवी के इक्विवेलेंट नहीं है। अब आइए नेक्स्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट
9: कलकत्ता हाई कोर्ट ने बशीर अहमद वर्सेज स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल में यह जजमेंट 1976 में दिया। सेम चीज उसने कहा कि ये अरे फोर्थ हाउस में बोला जा चुका, भाई साहब आपको नहीं पता हुआ कोर्ट की डिबेट में अरे सुना है अरे सुना केरल हाईकोर्ट क्या होता है चिल्लाना शुरू कर दिया
13: मुस्लिमों को रखने के पक्ष में
10: उनको खत्म तो करने दीजिए, उस पर आएंगे ना आपके पास
9: कुछ नहीं। ये क्या तरीका होता है, सब चिल्लाना शुरू कर दिया जैसे ही अंकमेंट आया। अब सुनिए केरल हाईकोर्ट
10: सुधांशु जी को बोलने दीजिए, उसके बाद सैयद आपको जवाब देने का मौका मिलेगा।
9: फसल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 17 मार्च 1983 मैंने तीन कोर्ट किए, इलाहाबाद हाईकोर्ट, केरल हाईकोर्ट और कलकत्ता हाईकोर्ट।
10: डॉक्टर
9: एम एच का दूसरी बात,
10: क्या
9: अब इन्होंने ये
10: क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में हिंदुत्व और सांप्रदायिकता पर अभी आगे बढ़ा जाएगा?
9: अरे भाई
10: नहीं नहीं नहीं, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, पूछ रहा हूँ आपसे
9: अभी किसी के क्या नहीं बोलता हूँ और सबने बीच में चिल्लाना शुरू कर दिया जैसे फैक्ट आने शुरू हुए। और मैं दूसरी बात पूछता हूँ साहिल जी, पहले इनसे पूछिए शिया वक्फ में सुन्नी को रखेंगे कि नहीं,
13: नहीं
9: सुन्नी वक्फ में शिया को रखेंगे कि नहीं बताओ, देवबंदियों के ट्रस्ट में बरेलवी रहेगा कि नहीं, बरेलवी के ट्रस्ट पहले किस आएंगे नहीं जाओ तो पहले। और मैं दूसरा पूछना चाहता हूँ, ये सैयद असीम
10: की सरकार आएगी उसे पूछा जाएगा
9: क्या तरीका,
10: किसके वक्फ बोर्ड पे कौन बैठेगा या मंदिर के ट्रस्ट में कौन बैठेगा? लेकिन एक बात तो साफ नजर आ रही है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति अब सांप्रदायिकता के ओर एक बार फिर जाते हुए नजर आ रही है, क्योंकि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे इस तरीके के भाषण भी हमें सुनाई देंगे। फिलहाल हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद खबरें जारी रहेंगी, आप देखते रहिए आज तक।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: हनी इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
3: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
4: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
5: आगे आगे
6: उधर
5: करेक्ट करेक्ट
7: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
8: जब बात हो सोयाबीन और मक्के की फसलों को सूंडियों से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का प्रोक्लेम एक्स्ट्रा। जीते हर बाजी।
9: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
10: In association with Sharda University, the world comes together at Sharda University. Where are you?
11: Punjab National Bank, bharose ka prateek.
10: विमल बोलो जुबां केसरी। हिंट बड़े आराम से।
12: इंडियन क्रिकेट ने अगर कोई गोट देखा है तो आज मैं उनके सामने बैठा हूं। वैभव सूर्यवंशी को पारी आप कैसे देखते हैं?
13: ह्यूज टैलेंट विदाउट एनी डाउट, इज एज गुड एज सचिन और विराट कोहली।
12: लेकिन क्रिकेटिंग हलकों में क्या उसी तरह से नाम बज रहा था सचिन तेंदुलकर का जैसे आज वैभव सूर्यवंशी का बज?
13: आई थिंक वैभव का थोड़ा ज्यादा है,
12: उनका डेब्यू थोड़ा सा डिलेड है।
13: बट आप इतिहास देखिए तो आपको एहसास होगा कभी कभी लेट ना हो जाए।
12: विराट में आपने ऐसा क्या देखा?
13: विराट को देख के मेरे को मैकेनरो याद आते हैं,
12: जॉन मैकेनरो।
13: हाँ, क्योंकि जब तक वो लड़ते नहीं थे वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाते थे। थोड़ा सा जो उनका अजीब लगता है कि वो ज्यादा जोशीले हो जाए। आई लव टू प्रूव पीपल रॉन्ग।
10: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
11: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
10: ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस।
11: Akajay, the number one Korean skincare brand, now in India.
14: College wasn't built for people with full-time jobs and busy lives. At WGU, we built education around your life. With 24/7 online course access, you're in control. Education that moves with you, not against you. Learn more at wgu.edu.
15: Need better internet? Cox Internet has the fast, reliable speeds you're looking for. Perfect for seamless streaming, gaming, and working from home. And now get Cox 300 Meg Internet with a 2-year plan price lock guarantee, plus equipment included. Oh yeah! So get your household up to speed. Switch to Cox Internet today. Taxes and fees excluded from price guarantee.
16: Step into timeless classical music. Works from the masters. Brought to life by world-class orchestras, conductors, and soloists. From past to present. Every performance played with depth, precision, and care. Music that has lasted for generations and still feels just as powerful today. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search classical hits and start listening now.
17: Hey, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपी अब संभाल लेगा। आप अपना देख लो।
6: वी मस्ट राइज, वी मस्ट फाइट। दरअसल ईरान की सड़कों पर ऐसे पोस्टर तो आपने देखे होंगे, लेकिन आपको याद होगा कि ये सिंबॉलिक जो हाथ आप देख रहे हैं ये पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई का, लेकिन अब ये हाथ जो है जिसमें उनकी अंगूठी हमेशा नजर आती थी, जो एक पावर का साइन था, वो अब ईरान में खासतौर पर तेहरान के इन इलाकों में नजर आएगा, आजादी स्क्वायर पर नजर आएगा। आप देखते रहिए आज तक।
18: बीजेपी के लोग किसी भी सीमा तक झूठा प्रचार कर सकते हैं।
19: समाजवादी पार्टी के लोगों को तो ठेके पट्टे से ही फुर्सत नहीं है।
20: अयोध्या में चढ़ावा चोरी क्या हुई, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की चुनावी राजनीति के पौबारा हो गए। महीने भर में कांग्रेस और समाजवादियों ने जितनी बार राम का नाम नहीं लिया होगा उतनी बार वक्त बाबर कब्रिस्तान हो चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ धुआंधार रैलियां और कार्यक्रम कर रहे हैं, सैकड़ों करोड़ की योजनाओं की सौगात जिले जिले दी जा रही है, और इसके साथ ही विपक्ष पर मुस्लिम परस्त, मुगल परस्त, मौका परस्त होने की सियासी बौछार चल रही है। एक तरफ समूचा विपक्ष राम मंदिर में चोरी को लेकर हमलावर था, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वक्फ में घोटालों का मुद्दा उठाया और अब उसी लाइन को यूपी के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ने और आगे बढ़ा दिया।
21: उत्तर प्रदेश में भी वक्फ बोर्ड, सुन्नी वक्फ बोर्ड जो है इस समय वर्तमान में रिक्त है। आने वाले दिनों में जब सुन्नी वक्फ बोर्ड का गठन होगा तो जो वक्फ अधिनियम संशोधन अधिनियम के अनुसार जो गाइडलाइन है उस गाइडलाइन के अनुसार उत्तर प्रदेश में भी उस अधिनियम के माध्यम से वक्फ के बोर्ड का गठन होगा, जिसमें पिछड़े मुसलमानों को रखा जाएगा, मुस्लिम महिलाओं को रखा जाएगा, ऐसे हमारे हिंदू भाई समाज के दो भाइयों को रखा जाएगा। जो भी उस प्रावधान में जो भी गाइडलाइन है उस गाइडलाइन के अनुसार ही आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में भी वक्फ बोर्ड के फॉर्मेशन होगा।
20: अगर ऐसा होता है तो एमपी के बाद उत्तर प्रदेश देश का दूसरा राज्य होगा जो वक्फ बोर्ड में गैर मुसलमान सदस्य रखेगा। हालांकि उत्तर प्रदेश में मौजूदा शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन का कहना है कानून संसद से बना हुआ है तो उसका पालन अनिवार्य है, लेकिन सुन्नी समुदाय के मौलानाओं का कहना है वक्फ संशोधन कानून के कुछ प्रावधानों पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है और मामला कोर्ट में लंबित, लिहाजा अभी ऐसा नहीं करना चाहिए। वैसे यूपी में फिलहाल दो वक्फ बोर्ड है, सुन्नी वक्फ बोर्ड और शिया वक्फ बोर्ड। दोनों बोर्ड की संरचनाएं कुछ ऐसी कि दोनों बोर्ड में 11-11 सदस्य होते हैं, जिसमें अध्यक्ष के अलावा मुस्लिम सांसद, मुस्लिम विधायक, मुस्लिम विधान परिषद सदस्य, इस्लामिक विद्वान और मतवल्लियों के प्रतिनिधि होते हैं। इसके अलावा सरकारी अधिकारी सीईओ होता है। यानी अभी की व्यवस्था में गैर मुस्लिम सदस्य वक्फ बोर्ड में नहीं होते, लेकिन वक्फ संशोधन बिल के बाद, नई व्यवस्था के बाद वक्फ बोर्ड में कम से कम दो गैर मुस्लिम सदस्य अनिवार्य हैं। इसके अलावा दो मुस्लिम महिला सदस्य, पसमानदा प्रतिनिधि, सांसद, विधायक, बार काउंसिल के सदस्यों में से एक एक का सीधे मनोनयन होगा, यानी पहले चुनाव होता था उन्हें अब मनोनीत किया जाएगा। यूपी में सुन्नी वक्फ बोर्ड इसी साल 15 मार्च को भंग हुआ है, 6 महीने के अंदर इसका पुनर्गठन जरूरी है, यानी चुनाव से ठीक पहले सितंबर 2026 तक यूपी में सुन्नी वक्फ बोर्ड का गठन होगा, जिसमें यूपी सरकार हिंदू समुदाय के दो सदस्यों को रखने की तैयारी कर चुकी है।

0: मोदी का ब्लॉकबस्टर शो, अपने संबोधन में ग्रो मोर अचीव मोर का दिया विकास मंत्र, कहा आज चिप से शिप तक बना रहा है भारत। अखिलेश पर योगी का करारा हमला, 2017 से पहले की सरकारों ने कब्रिस्तान बनाने में खर्च किए पैसे, मंत्री राजभर बोले इस जन्म में सीएम नहीं बनेंगे अखिलेश। ममता को फिर लगेगा झटका, बीजेपी में शामिल हो सकते हैं पूर्व टीएमसी सांसद सुखेंदु शेखर रॉय, पूर्व तृणमूल एमपी सुष्मिता देव भी थाम सकती हैं कमल का दामन। दिल्ली एनसीआर में जानलेवा हुई बारिश, रोहिणी में इमारत गिरने से 3 की मौत, गाजियाबाद में बारिश के जमा पानी में डूबने से 3 वर्ष की बच्ची ने तोड़ा दम। ईरान के 90 ठिकानों पर हमले के बाद भी ट्रंप की धमकी, कहा 20 गुना शक्ति से करेंगे हमला, तेहरान ने कुवैत बहरीन में अमेरिकी ठिकानों को बनाया निशाना।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, एकजे द नंबर 1 कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया।
2: समाजवादी साचा नहीं, पूरा ढांचा बदलना चाहिए। सनातनी बहुत दुखी है, गौ माता की सेवा करने वाले दुखी है, और इस सरकार ने कष्ट दुख दिया, महंगाई दी।
3: भारतीय जनता पार्टी जिन जिन राज्यों में नहीं थी वो रीजनल पार्टी की उंगली पकड़ के गई और उस पार्टी को उसने खत्म कर दिया। तो ये सारी रीजनल पार्टी को भी समझना

0: पड़ेगा कि आज देश के संविधान को बचाने की जरूरत है, लोकतंत्र को बचाने की जरूरत है।
1: ये डबल इंजन की सरकार है, भेदभाव नहीं करती, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा पर सेंध लगाने वालों को चेतावनी भी देती है और नहीं मानते हैं तो उनके लिए यमराज के घर जाने का रास्ता भी खोल देती है।

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। उत्तर प्रदेश में चुनाव जो जो करीब आ रहे हैं, चुनावी तापमान भी बढ़ रहा है, बड़े बड़े मुद्दे भी उठ रहे हैं। इसी के साथ साथ पार्टियों की आपसी लामबंदी भी हो रही है अपने अपने गठबंधन को मजबूत करने के लिए। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मुद्दा अगर लगातार छाया रहा तो दूसरी तरफ कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर विपक्ष सरकार को घेर रहा है, लेकिन योगी आदित्यनाथ भी फ्रंट फुट पर बैटिंग कर रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश के चुनाव की आड़ जैसे जैसे सुनाई पड़ रही है, इंडिया गठबंधन के नारों में एकजुटता का संदेश नजर आने लगा है। सवाल यही है कि क्या कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में सीटों का बंटवारा आसान है? क्या बीते दिनों में कांग्रेस के यूपी प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम और सांसद इमरान मसूद जैसे नेता कांग्रेस के लिए ज्यादा सीटों की मांग करते देखे गए हैं? और तब भी जब इमरान मसूद ने सीधे सीधे अखिलेश यादव पर कहा कि वो खास तौर पर हिंदुओं के मुद्दे अब उठाने लगे हैं, जब मंदिर मुद्दा आया था, अखिलेश यादव ने सीट बंटवारे को लेकर अपना पत्ता भी नहीं खोला है। हाँ, एक इंटरव्यू में अब से कई महीने पहले ही उन्होंने मुझे ये जरूर कह दिया था कि हाँ, हम हर हाल में गठबंधन करेंगे कांग्रेस पार्टी के साथ। ये जरूर वो कह चुके हैं कि सीट से ज्यादा जीत जरूरी है, ये भी याद रखना होगा। अखिलेश यादव राम मंदिर चढ़ावा चोरी, ब्राह्मण सम्मेलन, पीडीए के सम्मान जैसे मसले में यूपी का चुनावी एजेंडा तलाशते हुए दिख रहे हैं, जिसको लेकर कांग्रेस के नेताओं ने सवाल खड़े किए हैं। अब देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सवाल यही है कि क्या उनके खिलाफ यूपी की चुनौती में इंडिया गठबंधन एकजुट होगा? क्या विपक्ष के वोट बटेंगे? जैसा आपने कई राज्यों में देखा भी है, तो इंडिया गठबंधन संग, लेकिन क्या सीट पर होगी जंग? यही है आज हल्ला बोल का विषय। पहले ये रिपोर्ट देखिए। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद से मुलाकात के बाद अखिलेश यादव का ऐलान है, जो सनातन है वही समाजवाद है।
1: जो सनातन है वही समाजवादी।
0: ये एक और संकेत है कि अखिलेश यादव अब अपनी समाजवादी पहचान के साथ साथ खुलकर उस पिच पर खेल रहे हैं जिस पर बीजेपी दम भरती थी। राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर बीजेपी को घेरने में सफल दिख रहे अखिलेश की दलील है कि आज सनातनी दुखी है, क्योंकि बीजेपी धर्म की नहीं धन की राजनीति करती है।
2: जो भारतीय जनता पार्टी के विचार हैं वो वोट के लिए बदलते हैं, उनके लिए धर्म नहीं धन प्राथमिकता है।
3: हमारे धर्म में, सनातन धर्म में, चढ़ावे की चोरी से बड़ा कोई पाप नहीं है, इन्होंने महापाप किया है।
0: बात सिर्फ राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर आक्रामक होने की नहीं है। अखिलेश यादव और उनकी पार्टी ने हाल में कई ऐसे संदेश दिए हैं जिसे बीजेपी के हिंदुत्व वोट बैंक में सेंध मारने की कोशिश माना जा सकता है। 8 जुलाई को समाजवादी पार्टी की नेता पूजा शुक्ला ने लखनऊ में अविमुक्तेश्वरानंद की मौजूदगी में धार्मिक अनुष्ठान, आध्यात्मिक प्रवचन और सांस्कृतिक कार्यक्रम कराया है। इसके पहले अखिलेश यादव 8 बड़े मंगल पर हनुमान जी को याद करते देखे गए, यहाँ तक कि उन्होंने बड़ा मंगल पर भंडारे का प्रसाद बांटा था। समाजवादी पार्टी ने इसी हफ्ते ब्राह्मण सम्मेलन किया था जिसमें बैनर लगा था ब्राह्मण चला अखिलेश के संग, लेकिन जब अखिलेश अपनी नई राजनीति का नैरेटिव खड़ा करने में लगे हैं तब उनके सामने असल सवाल आने वाले यूपी चुनाव में इंडिया गठबंधन को मजबूत करने का हो सकता है। हाल में कांग्रेस के नए यूपी प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने कहा है कि हम राष्ट्रीय पार्टी हैं और गठबंधन में हमारी बराबर की हिस्सेदारी होगी। यानी सीट बंटवारे पर कांग्रेस ने दबाव बनाने के तेवर दिखा दिए हैं। कांग्रेस की दलील है कि बीजेपी से राष्ट्रीय पार्टी ही लड़ सकती है।
4: भारतीय जनता पार्टी जिन जिन राज्यों में नहीं थी वो रीजनल पार्टी की उंगली पकड़ के गई और उस पार्टी को उसने खत्म कर दिया। तो ये सारी रीजनल पार्टी को भी समझना पड़ेगा कि आज देश के संविधान को बचाने की जरूरत है, लोकतंत्र को बचाने की जरूरत है। आप अगर अपने अपने टुकड़ों में इसी तरह लड़ते रहेंगे तो वो लोग आप सबको तोड़ लेंगे। एक छोटो के इंडिया गठबंधन को मजबूत कीजिए, देश के संविधान और लोकतंत्र की रक्षा हमें मिलकर करनी है।
0: राजेंद्र पाल गौतम के इस बयान से पहले कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने मुसलमानों पर अखिलेश की चुप्पी पर सवाल उठाया था।
5: मंदिर की चंदा चोरी के ऊपर आप मुखरता के साथ बोलते हो, लेकिन मुसलमान की सीना चोरी के ऊपर आप खामोश हो जाते हो, ये समझ में नहीं आ रहा है।
0: इस बयान को भी समाजवादी पार्टी पर कांग्रेस के दबाव की रणनीति माना जा रहा है। हालांकि यूपी में सीट बंटवारे पर अखिलेश की लकीर साफ है, सीट नहीं जरूरी है। उधर अखिलेश जब इस जीत के लिए पीडीए और सनातन का जोड़ लेकर आए हैं तब योगी आदित्यनाथ उन बातों को कुरेद रहे हैं जिस पर समाजवादी पार्टी पहले से घिरती रही है।
6: बीजेपी की सरकार आई तो अब पैसा मंदिरों के विकास के लिए धामों के सुंदरीकरण में खर्च हो रहा है और समाजवादी पार्टी के समय वही पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल के लिए चला जाता था। उनको कब्रिस्तान प्यारा है, इसलिए वे राम मंदिर और काशी विश्वनाथ धाम और मां विंध्यवासिनी धाम और नैमी सारण्य और चित्रकूट धाम के विकास का विरोध करते हैं।
0: यूपी चुनाव नजदीक आते ही योगी की ओर से अखिलेश यादव पर ऐसे हमले और बढ़ेंगे। अगर अखिलेश इंडिया गठबंधन का मजबूत जोड़ बनाए रख पाते हैं तो मुकाबले में उन्हें आसानी होगी। आज तक ब्यूरो। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं और हमारे साथ प्रेम शुक्ला जी प्रवक्ता बीजेपी के जुड़ गए, अखिलेश प्रताप सिंह जी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, अनुराग भदौरिया जी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, वारिस पठान जी प्रवक्ता एआईएमआईएम के, अनुपम मिश्रा जी प्रवक्ता आरएलडी के और सतीश प्रकाश जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़ रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी, आपकी पार्टी पूरी जबरदस्त तैयारी के साथ चुनावी मैदान में अभी से ही दिख रहा है, योगी आदित्यनाथ खूब सारी रैलियां कर रहे हैं, लेकिन बाकी के साथी कहां हैं? अभी आप पूछिएगा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में आपसी फूट है, लेकिन आपके साथी कहां हैं एनडीए वाले सारे?
7: हमारे साथी साथ हैं अंजना जी, आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी भी हमारे साथ हैं, अनुप्रिया जी हमारे केंद्र में मंत्री हैं, आशीष जी राज्य में मंत्री हैं, संजय निषाद जी हैं, तो हमारे सारे साथी पूरी तत्परता के साथ, आरएलडी हमारे साथ है, तो हमारे सारे के सारे साथी जो हैं पूरी तत्परता के साथ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को 2027 के विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत दिलाने के लिए सक्रिय हैं, और हमें जो है किसी प्रकार की मतभिन्नता दूर दूर तक नहीं है। अभी आप ही बता रही हैं, ये मेरा कोई आरोप नहीं है कि राजेंद्र पाल गौतम और इमरान मसूद पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं, तो अब इमरान मसूद और राजेंद्र पाल गौतम की शर्तों के अनुकूल अखिलेश यादव जी दबेंगे तो ये उनको मुबारक हो। 2017 के चुनाव में भी कांग्रेस और सपा का गठबंधन रह चुका है और उस गठबंधन के बावजूद भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को 325 सीटें जीतने में सफलता मिली थी, ये तो इतिहास है सबके सामने।
0: ठीक, योगी जी को हराना आपके लिए मुश्किल है, अखिलेश जी वो ये कह रहे हैं, और ऐसी मुश्किल है उसके बावजूद एकजुटता क्यों नहीं दिखाई देती है? क्योंकि अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे सही कर दीजिएगा, लेकिन हमने राजेश जी का नाम लिया और हमने गौतम जी का और हमने इमरान मसूद जी का नाम लिया, अब अखिलेश जी के खिलाफ क्यों बयानबाजी हो रही है? आपने देखा पश्चिम बंगाल में क्या हुआ, राहुल जी ने ही कहा था कि ममता बनर्जी के अपीजमेंट की वजह से बीजेपी यहां जीत रही है। ये मुद्दे जनता के बीच पहुंचते हैं अखिलेश जी?
8: अंजना, देखिए पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे देश के लोगों को यह पता चल चुका है कि ये बीजेपी आरएसएस विश्व हिंदू परिषद याद इत्यादि इतने ये है ना गिरोह, ये कोई राम भक्त नहीं है, ये सब नाथू राम भक्त हैं, और जनता पहचान गई है, ये छद्म भेषधारी हैं, कालेमी जैसे था। जो राम का नहीं हुआ वो देश की जनता का क्या होगा? सबकी आस्था श्रद्धा को लूट मारा, इनको सिर्फ पैसा और पावर चाहिए, हर बच्चा इनसे घृणा करने लगा है। योगी जी का कोई भाषण हो तो बताइएगा कि योगी जी ने कोई अपने काम की बात की हो, या बीजेपी का कोई नेता अब ये बता रहा हो कि हमने उत्तर प्रदेश में ये काम कर दिए। सुबह से शाम तक सिर्फ लूटना और झूठ बोलना और फिर अगले दिन के लिए लूटने और झूठ बोलने की तैयारी करना, ये बीजेपी का चाल चलित तो चेहरा बन चुका है। जितने का बजट है ना अंजना जी, उससे ज्यादा यूपी में सरकार पे कर्जा कर दिया है बीजेपी की सरकार ने, और हर प्रकार के क्राइम में नंबर एक है, पहले नहीं था लेकिन इन लोगों के आने के बाद पिछले 9-10 वर्षों में उत्तर प्रदेश एकदम टॉप वन में है। ये श्रेय तो जाता ही है इनको, इसमें कोई दुविधा नहीं है, ये क्रेडिट इनको जाता है, पर्चा लीक कराने में नंबर वन, हर चीज में, हर क्राइम में, किस बात पर वोट मिलेगा इनको? सबको लूट डाल रहे हो और लुटेरों का साथ दे रहे हो, कोई निष्पक्षता नहीं, कोई पारदर्शिता नहीं, सिर्फ बचाने में लगी है पूरी सरकार, सिर्फ अपराधियों के साथ साठगांठ में है पूरी सरकार। तो इनका तो थ्री डिजिट में नहीं आ पाएगी बीजेपी। अंजना जी आप बेफिक्र रहिए, देखिएगा बड़े बड़े जितने इनकी पूरी कैबिनेट के जमानत जब्त होगी यूपी में, पूरी कैबिनेट मिनिस्टरों की, किसी ने किसी जनता का
0: फिर भदौरिया जी के पास सीधा जाएंगे। नहीं हाँ शुक्ला जी,
8: शुक्ला जी के जी। फिर मुझे भी समय दे दीजिएगा उनका।
7: देखिए अब जो है लूट की बात कौन कर रहा है, जिसकी सबसे सर्वोच्च नेता 400 बीसी की केस में जमानत पर है, जिसका अपोजिशन लीडर
8: झूठ बोलता है,
7: 400 बीसी की केस में
8: इनके अदालत में क्लीन चिट दे दिया, इनके जांच एजेंसियों को कुछ नहीं मिला और ये आदमी झूठ बोलता है यहाँ पे।
0: अरे ठीक है ठीक है, अखिलेश जी, अखिलेश जी हाथ उठाएगा, मैं आपसे जवाब लूंगी। लेकिन प्रेम शुक्ला जी देखिए ना, अब ये राम मंदिर का चढ़ावा चोरी का मुद्दा तो आपको नहीं लग रहा है कि आपके लिए सेटबैक है?
7: हाँ निश्चित, हम और लोग हर कोई जान रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कोई कार्यकर्ता उसमें शामिल नहीं है, और चाची 420 की हरकतों को भी पूरा देश जानता है, पूरा देश जानता है कि 12 लाख करोड़ रुपयों की लीट लूट 3G 2G जीजाजी, और अभी अभी उत्तराखंड में जो है प्रियंका वड्रा के इशारे पर जो है उनकी उनके रिश्तेदार के लिए जमीन कब्जा करने कांग्रेस का
0: अखिलेश जी जवाब दीजिए। हर कोई जानता है, आपने उनके नेता पर कहा उनको जवाब देने दीजिए, गलत बात
8: है। ये व्यक्ति जो है सिर्फ झूठ बोलता है हमारे, अब इनको चुप कर मैं बोलूं। देखिए
0: शुक्ला जी
8: कोई आरोप नहीं लगे, एक खुद कोर्ट ने कह दिया कोई आरोप नहीं लगे, यहाँ तो पूरी बीजेपी लिप्त है। ये ट्रस्ट आदरणीय मोदी जी ने बनाया था, मोदी जी ने लोगों को उसमें सेलेक्ट किया था, मोदी जी की जिम्मेदारी नहीं बनती है क्या? क्यों खामोश है मोदी जी, क्यों नहीं जांच करा रहे हैं? क्योंकि तार बहुत ऊपर तक जुड़े हुए हैं, कम पैसे हजारों करोड़ की लूट है,
7: रही है।
8: इसी तरह जमीन के घोटाले जब हुए थे, सार्वजनिक हुए थे, कांग्रेस पार्टी ने उसका खुलासा किया था, तो एक मिश्रा जांच कमेटी बनाई गई थी राधेश्याम मिश्रा, उस जांच कमेटी की रिपोर्ट अभी तक क्यों नहीं आई सार्वजनिक करिए बताइए। पूरा का पूरा पैसा हर खजाना सरकारी हो या मंदिरों का है, अभी केदारनाथ के बाद बद्रीनाथ लूट लिया, वहां पे इन्हीं के मुख्यमंत्री बता रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री, तो ये लुटेरे हैं, लुटेरे।
0: शुक्ला जी इस पर जवाब दीजिए, शुक्ला जी इस पर जवाब दीजिए, फिर भदौरिया जी के पास जाएंगे। हो गया अखिलेश जी, अब हो गया, अब आपने बद्रीनाथ जी का भी जिक्र किया है, बद्रीनाथ जी का भी जिक्र किया है, उस पर जवाब सुनिए। बद्रीनाथ जी के मामले में भी FIR दर्ज हुई है शुक्ला जी,
7: नहीं तो उसमें भी FIR कौन दर्ज कर रहा, सरकारी कर रही है, क्योंकि हम लूटने देंगे नहीं। इनके समय तो कोर्ट से आदेश होता था, 2G में आदेश कोर्ट से हुआ, नेशनल हेराल्ड में आदेश कोर्ट से हुआ, इनको तो कोर्ट को आदेश देना पड़ता था ना, क्योंकि ये खुद लुटेरे थे, हम लुटेरों के खिलाफ है, ये साफ तौर पर दिखाई देता है कि हमारा हाथ साफ है, इनका हाथ गंदा था, हर कोई जानता चाची 420 है, कौन नहीं जानता
8: कि हमने FIR
0: जल्दी से मुद्दे पर आइए जो कि जो आज का टॉपिक है, क्योंकि राम मंदिर में चढ़ावा चोरी पर हमने चर्चा किया, और जाहिर तौर पर आज ये मुद्दा भी जब जब यूपी का चुनाव उठेगा तब तब ये मुद्दा उठेगा ही उठेगा। लेकिन अनुराग भदौरिया जी ये बात अखिलेश यादव भी कह चुके हैं कि मिलकर लड़कर ही हम कर सकते हैं, लेकिन सीट बंटवारे को लेकर और अखिलेश जी के बारे में इमरान मसूद कह रहे हैं या जो उनके अन्य नेता कह रहे हैं, क्या आपको लगता नहीं है उससे कहीं ना कहीं दिक्कत है? कम से कम बाद में समझौता हो भी जाता है, जनता में मैसेज रॉन्ग जाता है।
9: देखिए जनता में मैसेज साफ है, कहीं कोई दोराय नहीं है, बीजेपी के अंदर खलबली है, बीजेपी को पता है विपक्ष एक है, और अब जनता ही विपक्ष बन चुकी है। अब भारतीय जनता पार्टी किससे बचेगी बताओ, जनता से बचेगी? उत्तर प्रदेश की जनता ही विपक्ष है, अब वो समझ चुकी है ये जो पार्टी है, 10 साल की सरकार हो गई, रैलियां हो रही हैं, लेकिन सरकार ने क्या काम किया 10 साल में, एक बार भी नहीं गिनाया जा रहा है अंजना जी, एक बार भी। सिर्फ सफाई दी जा रही है, क्या सफाई? कि अयोध्या के मंदिर के चढ़ावा चोरी पे जो हमने उजागर किया है उसकी सफाई देते घूम रही पूरी भारतीय जनता पार्टी। अब देखिए बीजेपी के नेता की हालत क्या हो गई है, 2G 3G उत्तराखंड कौन कौन खंड भाग रहे हैं, लेकिन अयोध्या पे बोलने को तैयार नहीं। सोचो प्रभु राम का नाम पे वहां पे हुई है चोरी, और उसके ऊपर जब सवाल आप पूछती तो कहां चले जाते हैं, 2G 3G उत्तराखंड पता नहीं कौन कौन से इधर उधर भागने लगते हैं। मतलब अयोध्या की बात नहीं करनी है, प्रभु राम की बात नहीं करना चाहते? अरे प्रभु के चढ़ावा में एक आना भी चोरी हुई है ना, एक आना भी, वो भी महापाप है, इसलिए आप सफाई कहां तक देंगे आप? दूसरी बात, ये भारतीय जनता पार्टी की आदत बन चुकी है, कि कभी मुद्दे पर चर्चा नहीं करना चाहती, विपक्ष की चिंता है, विपक्ष की बहुत इनको चिंता रहती है। जितनी चिंता विपक्ष की करते हो ना, और जितनी चिंता विपक्ष को कमजोर करने में करते हो, इतनी चिंता आपने जनता की होती ना, तो शायद आपको इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता, जो अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल आपको करना पड़ता है, जो व्यक्तिगत हमले आपको करने पड़ते हैं, ये व्यक्तिगत हमले नहीं करना पड़ते। आप काम गिना रहे होते कि हमने काम किया, जैसे हम उत्तर प्रदेश में सरकार में थे, आप मुझसे अगर अंजना जी पूछेंगे तो आज भी मैं डंके की चोट पे एक सांस में काम गिनाता हूं कि हम एक सांस में काम गिनाता हूं। हमने एक्सप्रेस वे बनाया, हमने 1090 बनाया, महिला सुरक्षा के लिए 100 डायल बनाया, हमने स्टेडियम बनाया, हमने मेडिकल
7: लगातार बोलेंगे बनाई, इनका ब्रेक फेल हो गया,
9: हमने यूनिवर्सिटी बनाई, तो हमने काम गिनाया है ना, इनके यहाँ काम क्या पता है, इनका काम गिना रहा हूं, इनका काम
0: ठीक है। प्रेम शुक्ला जी वो आपको चैलेंज कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं एक सुर में काम गिना सकता हूं, गिना भी रहे, आप गिनाइए
9: 10 सेकंड
0: ले लीजिए, 10 सेकंड 10 सेकंड दे दीजिए, शुक्ला जी पूरा ही कर रहे हैं, बोलिए बोलिए बोलिए अनुराग जी,
9: नहीं इनके काम गिना रहा हूं, इनके काम अंजना जी 10 सेकंड में इनके काम है, देखिए इनके काम क्या हुए, मंदिर प्रभु के मंदिर में चढ़ावा चोरी, बच्चों का पर्चा में या पर्चा चोरी, सोचो आप पर्चा लीक, किसानों के वहां पे वो जो होता ना खाद में यूरिया चोरी, कमाल की बात है, इनके यहां सड़कों में मिलावट, सड़कें चोरी, कमाल की बात कर रहे हैं, सड़कें चोरी, यूरिया चोरी, परीक्षा चोरी, और तो और प्रभु के मंदिर में चढ़ावा चोरी, तो बताइए
0: जवाब दीजिए,
9: ये तो काम है,
0: ठीक है,
9: और फिर काम गिनाएंगे क्या, ये
0: प्रेम शुक्ला जी जवाब दीजिए, फिर मैं मेहमानों के पास
9: जूट जाता है इनका एक्सप्रेस वे, सोचो
7: मुझे, मैं जवाब देता हूँ, मैं जवाब देता हूँ, और आप जो सवाल पूछती है उसका मैं सटीक जवाब देता हूँ, लेकिन आपने जो दोनों कांग्रेस के प्रवक्ता से सपा के प्रवक्ता से जो सवाल पूछा उसका जवाब मिला आपको, नहीं मिल सकता जवाब, हाँ लेकिन हम जवाब देंगे, जीडीपी 2.5 गुना हमने कर दिया उत्तर प्रदेश की, पर कैपिटा इनकम 2 गुना से अधिक हमने कर दिया उत्तर प्रदेश में, सबसे अधिक एक्सप्रेसवे पूरे देश में उत्तर प्रदेश में हमने बनाया, सबसे सबसे अधिक जो है शौचालय उत्तर प्रदेश में हमने दिए, सबसे अधिक जो है प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान हमने दिए, सबसे अधिक गन्ने का भाव हमने दिया, हमने जो है सबसे अधिक काम करने का, सबसे अधिक मेट्रो लाइने, अरे बीच में क्यों बोल रहा है ये बत्तमीज, बीच में क्यों बोलने लगता है, क्या होता है
0: अनुराग जी प्लीज रिक्वेस्ट है,
7: बीच में मैं अब आप काम गिना रहा हूं, तो क्यों पीड़ा हो रही है,
9: गिर गई
7: अभी अभी अपराध की गिनती कर रहे थे, अपराध गिना रहे थे, अखिलेश सिंह झूठ हो गए सरदार अखिलेश सिंह, भाषा की मर्यादा आप गिरा रहे हैं,
0: अनुराग जी
7: भाषा की मर्यादा बत्तमीज,
0: अनुराग जी बात मानिए,
7: मर्यादा आप से बात कर रहे हैं, डिबेट की मर्यादा आप
9: फिर आ गए,
7: मैं आपके
0: प्रेम शुक्ला जी काम गिनाइए, ठीक है काम गिनाने का आपको मौका मिला ना, काम गिनाइए,
9: चलिए सनातन को मानते हैं,
0: प्रेम शुक्ला जी को और दिखा दीजिए,
7: मैं काम ही गिना रहा हूँ, मैं काम ही गिना रहा हूँ, लेकिन बीच में क्यों चीख रहे हैं, इनकी आवाज जरा डाउन कीजिए ना, मैंने कहा जीडीपी 2.5 गुना किसने की, आदरणीय योगी आदित्यनाथ, पर कैपिटा इनकम डबल किसके कार्यकाल में हुआ, योगी आदित्यनाथ, एम्स जो है रायबरेली और एम्स गोरखपुर किसके कार्यकाल में बना, योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में बना, सबसे हर जिले में अस्पताल किसके, मेडिकल कॉलेज किसके कार्यकाल में बना, योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में, सबसे अधिक सड़कें एक्सप्रेस वे किसके कार्यकाल में बना, योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में बना, सबसे अधिक बिजली की आपूर्ति किसके कार्यकाल में हुई, योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में, सबसे अधिक गन्ने का भाव किसके कार्यकाल में मिला, योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में मिला, सबसे अधिक गेहूं की खरीदारी किसके कार्यकाल में हुई, योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में, सबसे अधिक चावल की खरीदी किसके कार्यकाल में हुई, अभी मैं ऐसे आपको
10: झूठ बोल रहा हूं, जानकारी भी नहीं है,
7: लेकिन मुझे कृपा अभी अपराध पर बात कर रहे थे अखिलेश सिंह, अपराध पर बात कर रहे थे अखिलेश सिंह, 2000 मैं अंजना जी से आग्रह करता हूं कि 2016-17 के एनसीआरबी के आंकड़े और 2024-25 के एनसीआरबी के आंकड़े कंपेयर कर दें आपके चैनल पे, हत्याओं में कमी आई, बलात्कार में कमी आई, महिलाओं के खिलाफ अपराध में कमी आई, दहेज उत्पीड़न में कमी आई, डकैती में कमी आई, छिनैती में कमी आई, और ये आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में हुआ,
0: ठीक है अनुराग जी एक छोटा सा रिस्पांस फिर मैं जाऊंगी वायरस
7: प्रोडक्ट है,
0: ठीक है
9: 10 सेकंड
0: वन डिस्ट्रिक्ट माफिया से वो कह रहे हैं वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है,
9: काम गिनाए मेडिकल
10: वन डिस्ट्रिक्ट वन
9: कहीं कोई प्रोडक्ट नहीं है, झूठी तो बोलना है, एक आध प्रोडक्ट का नाम बता दे, ये बता दे कि एक मिनट मैं अपनी बात,
7: कैसे नहीं हर जिले में प्रोडक्ट है,
9: सीतापुर कौन सा प्रोडक्ट बताइए, खाली बोलना ही है, अरे सुनिए नाम बताइए ना, बताइए क्या बहराइच में क्या है, बाराबंकी में क्या है, बताइए
7: प्रतापगढ़ में आंवला है,
9: बोल दोगे मूठा है, अब मुझे बोलने दीजिए, अब मैं आपके बीच में नहीं बोला, मुझे सुन लीजिए अंजना जी, देखिए
0: अनुराग जी को बोलने दीजिए, शुक्ला जी अब आप बीच में बोल रहे हैं, ना शुक्ला जी
9: आपको सुना है, अभी आप बदतमीज पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे, मैं तो नहीं बोलूंगा
0: अनुराग जी, बोलिए
9: मैं तो बोलूंगा आप, मैं बोलूंगा आप, मैं बदतमीज नहीं बोलूंगा, मुझे बोलने दीजिए, देखिए इन्होंने बोला मेडिकल कॉलेज, मेडिकल कॉलेज इन्होंने क्या बनाया जो
0: शुक्ला जी हो गया हॉस्पिटल, शुक्ला जी हो गया प्लीज नहीं, उसके बाद उन्होंने बात मानी थी, चुप हो गए थे, चुप रहिए प्लीज प्रेम शुक्ला जी।
9: आप देखिए
0: बोले अनुराग,
9: अब देखिए आप इन्होंने बोला मेडिकल कॉलेज, मेडिकल कॉलेज इनके जिले में जो हॉस्पिटल होते थे रंजना जी, जो हॉस्पिटल इन्होंने कह दिया हमने ये मेडिकल कॉलेज हो गया, कमाल की बात है। दूसरी बात एक्सप्रेस वे गिना रहे थे आप, एक्सप्रेस वे एक आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे है अंजना जी, उस आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे जो है वो बेस है, वहीं सारे एक्सप्रेस वे आके मिल रहे हैं। वो अगर हमने बेस नहीं बनाया होता तो आप एक्सप्रेस वे कहां बनाते, किधर जोड़ते जाके, सारे एक्सप्रेस वे आपके लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे में जुड़ते हैं आके, और तो कहीं जुड़ते ही नहीं है, बता दीजिए आप।
0: बुंदेलखंड का हो, वारिस पठान जी, अनुपम मिश्रा, सतीश जी को दिखाइए, तीनों से एक एक रिस्पॉन्स लूंगी। वारिस पठान जी आपकी भी स्थिति गजब की है, सबको आप चिट्ठी लिखते हैं चुनाव से पहले कि हमको शामिल कर लो, खासतौर पर जो अपोजिशन है उसको, लेकिन कोई भी आपको शामिल करने को तैयार नहीं, और आप पर यह आरोप लगता है कि आप हर जगह वोट काटने के लिए विपक्ष का चुनावी मैदान में उतरते हैं, सच तो है ही।
11: देखिए अंजना जी, हम तो पूरी ताकत के साथ इस टाइम यूपी का चुनाव लड़ने वाले हैं इंशाल्लाह। अभी आपने खुद ने देखा असद ओवैसी साहब ने दो सभाएं की, एक बिजनौर में की, उसके पहले वहां की, कितनी पब्लिक
0: का अकेले सरकार बना लेंगे ना आप लोग, इतनी सीटें जीत रहे हैं,
11: उसी के साथ जाएंगे जो हमारे हक के इंसाफ की लड़ाई
0: ना, अकेले सरकार बना लीजिएगा ना इस बार यूपी में,
11: हमको बीजेपी को हराना है। अरे सुनिए, अरे वो भी दिन आएंगे, बन जाएगी, कोई फिक्र की बात नहीं है अंजना जी। हमने क्या कहा, हमारा इंटेंशन क्या है, बीजेपी को हराना है, इंश्योर करना है दूसरी मरतबा बीजेपी सरकार सत्ता में ना आए, इसलिए हमने क्या कहा ओवैसी साहब ने कि हम अलायंस करने के लिए तैयार है, मगर हिस्सेदारी की बात होगी, इज्जत की बात होगी, अब दरी नहीं बिछाएगा अब्दुल, अब बैगिंग बॉल का कटरा लेकर नहीं जाएगा क्या हमारे साथ अलायंस करो, नहीं भाई आइए हराना है ना। अब क्या होगा अंजना जी, ये अपने एरोगेंस में घमंड गुरूर में पड़े रहेंगे, ये आएंगे नहीं, मगर हम तो लड़ेंगे। और दूसरी तरफ देखिए अब बात, एक तरफ योगी आदित्यनाथ है, दूसरी तरफ समाजवादी के अखिलेश है, योगी लड़का एकदम हिंदुत्व की बात करते हैं और अखिलेश सॉफ्ट हिंदुत्व की बात करते हैं, अगर मध्य प्रदेश में कोई यादव आ जाता है गपले के अंदर तो अखिलेश जी की जुबान खुल जाती है, मगर वहीं पर उत्तर प्रदेश के अंदर 111 ML और इतने सारे सांसद होने के बावजूद जब हमारी मस्जिदों को, हमारे मदरसों को शहीद कर दिया जाता है, मुसलमानों पर जुल्म होता है, अखिलेश की जुबान खामोश रहती है, जनता देख रही है, पब्लिक देख रही है, इसीलिए जनता बोल रही है। अब हमको विपक्ष एक तौर पर मिल गया है, हमको AMIM, अब हम जाएंगे ओवैसी साहब के साथ, क्योंकि जो हमारे हक की, इंसाफ की, अधिकार की लड़ाई लड़ेगा उसी के साथ जनता जाएगी, वरना क्यों जाएगी। और हम तो बात करते हैं हमारे दलित भाइयों की, हम बात कर रहे हैं माइनॉरिटी को, मुसलमानों की तो बिल्कुल बात करते ही ना, क्योंकि इनके मुंह में तो जुबान नहीं है, यहाँ इंसाफ दिलाएंगे नहीं, आप मुसलमानों को तो धक्का मार के भगा देते हैं, ईद रमजान में आएंगे टोपी पहनेंगे खजूर खाएंगे, बाद में मुसलमानों को 5 साल आप टोपी पहना देते हो, तो ये सारी चीजें उत्तर प्रदेश का मुद्दा है। साथ साथ में बीजेपी की हालत क्या उत्तर प्रदेश में, जरा ये भी सुन लीजिए अंजना जी, मुझे मेरे दोस्त बता रहे हैं कि जब बीजेपी के मंत्री रास्ते पे चल रहे तो लोग चिल्ला रहे चंदा चोर, ये हालत कर दिया, इतना भव्य राम मंदिर बना दिया, सबसे पहले हमारी बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया, भव्य राम मंदिर बना दिया, पूरा क्रेडिट मोदी जी ने ले लिया, दो से लेकर यहाँ
0: पहुंच गए, अब हो गया।
11: अरे तो अब मोदी जी
0: कोर्ट के पैसे के खिलाफ बोलना है ना, तो कोर्ट जाइए,
11: घपला हो गया,
0: कोर्ट जाइए आप तो इसको अलग ही कम्युनल एंगल दे रहे हैं, क्योंकि आपके कह रहे कोई मुस्लिम होता तो फटाफट एक्शन। अनुपम मिश्रा जी, RLD की तरफ से कुछ बताइए,
11: बिल्कुल
0: मामला सब कुछ अंडर कंट्रोल है सीट बंटवारे को लेकर, या फिर यहाँ पर भी एनडीए के साथियों के बीच में अनबन आएगी, शुरू होगी जब सीट बंटवारा होगा?
12: एनडीए के बीच में कोई इस तरीके का कहीं भी कोई मतभेद नहीं है, हम लोग अभी बैठ के उस पर बात करेंगे, और मुझे लगता है जो पहले हम लोग बात कर रहे थे मैं उससे ही शुरुआत करूंगा। ये बात हो रही थी कि उत्तर प्रदेश के अंदर चुनावी मुद्दा क्या होगा। चुनाव देखिए हमेशा जो होते हैं वो जनता के विकास के, सुशासन के, महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य पर होते हैं, उन्हीं मुद्दों पर होगा। और यदि उत्तर प्रदेश की सरकार ने कार्य ना किया होता तो जैसे हमारे मित्र अनुराग भदौरिया जी कह रहे थे, तो अगर हम एक बात इनके आगरा एक्सप्रेस वे की करें, तो जब ये आगरा एक्सप्रेस वे बना था तो इन्हें मैं याद दिला दूं कि इसके CEO होते थे नवनीत सहगल जी, वो उसके एक इंस्पेक्शन के लिए गए थे और एक हादसे में वो जीवन और मृत्यु के बीच में झूलते रहते, ऐसा आपने बनाया था। तो ये जो दुर्घटनाएं या कोई घटनाएं होती हैं ये कई बार इंजीनियरिंग के तौर पे होती हैं, जिसे किसी दल या सरकार से जोड़कर नहीं देखना चाहिए, पॉइंट नंबर वन। दूसरा जो राम मंदिर का इशू है जिसपे हम बराबर पिछले कई दिनों से हम लोग चर्चा कर रहे हैं, मैं उसमें भी दो बातें स्पष्ट कर दूं, आस्था और अपराध दो अलग विषय होते हैं, आस्था को आप कभी भी अपराध में मिश्रित नहीं कर सकते। जो अपराधी हैं जिन्होंने भी ये कुत्सित कार्य किया है वो न केवल सलाखों के पीछे होंगे बल्कि उन्हें जितनी कड़ी से कड़ी सजा होगी उसका प्रावधान वर्तमान उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है और लगातार उसके लिए कटिबद्ध है। और प्रदेश की जनता बखूबी ये जानती है कि जब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है जो सुशासन और पारदर्शिता के लिए पूरे देश के अंदर जानी जाती है तो उन्हें दिखाई देता है साफ कि उत्तर प्रदेश की सरकार और ये रथ किधर विकास का जा रहा है। दूसरा मैं और एक चीज स्पष्ट करूंगा कि इस तरीके के एलिगेशंस लगाना कि ये ऐसा हुआ ऐसा आप सब की सरकारें रही हैं और मैं अगर इनको याद दिला दूं भदौरिया जी को भी याद दिला दूं तो आपके रामगोपाल जी का एक स्टेटमेंट आजकल बड़ा वायरल मैं उसका जिक्र नहीं करना चाहता हूं पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने जो कहा था गुंबद पर जो कार सेवक चढ़ गया वो उतरा नहीं। आप अभी नए नए राम भक्त बने हैं उसको कुछ दिन समय लीजिए और राम भक्ति में रमिए उसके बाद जनता के बीच में आइए। और मैं कह रहा हूं कि जाप पर कृपा राम की हुई ताप पर कृपा करे सब कोई और जिनके कपट दंभ नहीं माया तिनके हृदय बसों रगराया। बस मैं इसी के साथ चंद्रा जी अपनी बात
0: ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है अब रुक जाइए अनुराग जी सतीश जी भी बोल रहे हैं उसके से जवाब देंगे। सतीश जी वही बीएसपी है देखिए चुनावी नजरिए से अगर पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर इसको देखा जाए तो मायावती का जो स्टैंड रहा है पिछले कुछ चुनावों से उधर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में गठबंधन हो भी जाए लेकिन मायावती और उनका जो एक कोर वोट बैंक है जो पिछले चुनाव में काफी हद तक छटकता हुआ दिखा हालांकि लेकिन बावजूद इसके जो स्थिति वो पैदा करती है आपको नहीं लगता है अगर वाकई बीजेपी के खिलाफ एजेंडा है बीजेपी को हराना है तो बाकियों को एक साथ आना होगा।
13: नहीं गठबंधन को लेकर के बहुजन समाज पार्टी ने बहुत स्पष्ट मानना है गठबंधन उनका एक्सपीरियंस बहुत बेहतर नहीं है। देखिए उत्तर प्रदेश की जनता की क्या समस्या है बीजेपी धर्म की राजनीति करती है। 1989 में पहलगांव में सबसे पहली बार राम मंदिर को बीजेपी ने अपने चुनावी एजेंडे में शामिल किया और बीजेपी धर्म की पिच के ऊपर जाकर के कहीं ना कहीं राजनीति करती है। लेकिन आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में जो चुनावी जो चंदा की जो है ना इतनी घनघोर बारिश हो चुकी है कि बीजेपी की आस्था की पिच गीली है। अब बीजेपी बचेगी कि वो आस्था की पिच पे अगर खेलेगी तो गेंद टर्न लेगी और योगी जी के आउट होने के बहुत सारे चांस है। देखिए उत्तर प्रदेश की जनता की क्या समस्या है ये हिंदू मुस्लिम में कहीं ना कहीं बांटने की कोशिश करेंगे लेकिन उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी। पिछले 10 साल से उत्तर प्रदेश सरकार ने अब आकर के कहीं ना कहीं एग्जाम कराने शुरू किए हैं। 10 साल में तमाम डिपार्टमेंट खाली पड़े हैं उत्तर प्रदेश में 7.5 लाख पद खाली पड़े हैं। उत्तर प्रदेश के हर घर के अंदर एक बेरोजगार आदमी बैठा है। जो आदमी ने 10 साल पहले ग्रेजुएशन किया था उसको इंतजार करते करते आज वो 21 साल से 31 साल का हो गया। देखिए उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था बहुत बेहतर नहीं है उत्तर प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित नहीं है मेरी बात को मानिए। जो कुछ तथाकथित लोग हैं महिलाओं के खिलाफ अपराध करते हैं सरकार आनन फानन में बहुत सारे अपराधियों को बचाते हैं। मैं आज की बताऊं मेरठ के अंदर एक ललिता हत्याकांड है दलित बच्ची थी उसको दो लोगों ने मारा रेप किया मारा उसमें एक अपराधी नामजद अपराधी अभी बाहर है। आज वो जब धरना प्रदर्शन कर रहे थे उनके ऊपर पुलिस ने बहुत बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया। जो अपराधी है वो बाहर है जो न्याय मांगेगा सरकार से उसके ऊपर कहीं ना कहीं हो रहा है। देखिए मेरा मानना ये स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं तमाम विपक्ष को धर्म को राजनीति का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। उत्तर प्रदेश की बहुत सारी समस्याएं हैं उत्तर प्रदेश में वाकई हालात कोई बहुत बेहतर नहीं है। उत्तर प्रदेश में जातिवाद चरम के ऊपर है। अपराधी की क्या जाति होगी अगर अपराधी उनकी जाति का होगा तो निश्चित रूप से उसके बचने के चांस है।
0: 17,000 एनकाउंटर करने के बावजूद भी वो शक जाहिर कर रहे हैं कि आप लोग फिर धार्मिक ध्रुवीकरण के आधार पर चुनाव जीते।
13: एक छोटी सी बात
0: हाँ ठीक है पूरा कीजिए जल्दी पूरा कीजिए।
13: शुक्ला जी आपने कहा कि मेडिकल कॉलेज तो बनाए मेडिकल कॉलेज कोई बिल्डिंग नहीं होते। आप मुझे बताइए कि मेडिकल कॉलेज में एक भी नियुक्ति करी है क्योंकि मेडिकल कॉलेज में बिना डॉक्टर के मेडिकल कॉलेज नहीं बन सकता। पिछले 10 साल में आपने कितने मेडिकल कॉलेज की नियुक्तियां निकाली मैं समझता हूं कि पूरा का पूरा खाली है।
0: जी अब सीधा तो सवाल है उनका पॉइंटेड सवाल पॉइंटेड जवाब दीजिए।
13: जी
0: ठीक ठीक शुक्रिया
7: जी। नहीं पहले सिर्फ एक संशोधन का पहलगाम में अधिवेशन नहीं 1989 में पालमपुर अधिवेशन में हमने श्री राम मंदिर आंदोलन को समर्थन देने का प्रस्ताव पारित किया था तो सिर्फ एक संशोधन छोटा सा। दूसरी बात भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में अपराध पर सबसे जबरदस्त नियंत्रण हुआ और इसको कोई भी आसानी से
13: रोज अपराध हो रहे सर।
7: मेरठ का चोर बाजार किसके कार्यकाल में बताओ अपराधी समाप्त है जी या तो यमलोक पहुंच गए या जेल पहुंच गए हैं अपराधी या तो यमलोक पहुंच गए हैं या कारागार पहुंच गए हैं। अपराधी बिल्कुल जो है या तो अपराध को उन्होंने तौबा कर लिया है या वो यमलोक पहुंच गए हैं या कारागार में है। अपराधी के लिए स्वच्छंद घूमने का कोई अवसर नहीं है।
14: अगर आज जो मेरठ में घटना घटी है अपराधी जेल में जाना चाहिए या उनके माँ बाप
7: कोई भी जान सकता है जी
14: बताइए।
7: इसे नोएडा में जो है निठारी कांड हो जाया करता था इसी नोएडा में।
0: जवाब सुनिए सतीश जी, वो जवाब दें फिर भदौरिया जी को भी बोलने दीजिए। भदौरिया जी और अखिलेश जी हाथ उठा रहे हैं। शुक्ला जी,
7: इसी जो है नोएडा में निठारी कांड हुआ करता था और निठारी कांड पर इसलिए नोएडा नहीं आते थे मुख्यमंत्री कि जो नोएडा आ जाता है वो मुख्यमंत्री फिर मुख्यमंत्री चुनकर नहीं आता वापस। इस अंधविश्वास की गिरफ्त में लोग थे और आदरणीय योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ के नाथपंथ को मानने वाले वो संत स्वरूप व्यक्ति वो लगातार नोएडा आए और मुख्यमंत्री दोबारा चुनकर भी आए। तो तमाम अंधविश्वासों पर भी विजय पाने का काम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। जहां तक नियुक्तियों की बात है सबसे पारदर्शी नियुक्तियां, नहीं तो पीसीएस की परीक्षा में एक ही जाति विशेष के लोग पास होने लगे थे। थानों पे एक ही जात की नियुक्तियां थी, एक ही जाति विशेष के थानेदार सारे थानों में नियुक्त हुए थे। सारे थानों में एक जाति के, उस जाति के बाहर की नियुक्तियां थानों में हो नहीं पाती थी। और सबसे अधिक SC ST एट्रोसिटी एक्ट का केसेस समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर ही लगातार 1994 से लेकर 2024-25 तक के NCRB के आंकड़ों का विश्लेषण कर लीजिए। सबसे अधिक अनुसूचित जाति जनजाति पर उत्पीड़न के मामले समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के विरुद्ध ही दर्ज हुए हैं।
0: इस बार डू और डाई की स्थिति है अनुराग जी आपके लिए, और खास तौर पर तब जबकि लोकसभा में पिछले आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रही उत्तर प्रदेश में। हाँ,
9: एक परिवर्तन आपने अंजना जी देखा है, बड़ा गजब परिवर्तन है भारतीय जनता पार्टी में। हर जगह नोएडा भी पहुंच गए, हर जगह पहुंच गए, लेकिन अयोध्या नहीं जाएंगे। अब अयोध्या की बात ही नहीं करेंगे। कमाल देखा आपने, सवाल अयोध्या पे
7: अयोध्या हमारा पहुंचे नहीं वहां पहुंचे ही
9: नोएडा कोई नहीं जाता है। पहले एक जात की भर्ती होती थी, मैं आपके बीच में नहीं बोला, फिर आप बोलोगे बदतमीज, फिर हम बोलेंगे आप सुन लीजिए। मैं आपके बीच में नहीं बोला अंजना जी, ऐसे नहीं होती डिबेट।
0: शुक्ला जी देखिए, फिर आप देखिए अभी आप क्या क्या बदतमीज भी कह रहे थे। शुक्ला जी
9: सनातनी होने का परिचय
0: ठीक नहीं है।
9: आप बदतमीज हो जाए वो, हम आपकी तरह गालीबाज नेता नहीं है, हम आपकी तरह गालीबाज नेता नहीं है। हम
0: अच्छा टॉपिक पे आइए, अपना अपना स्कोर अलग जगह सेट कीजिएगा, ठीक है अनुराग जी।
9: देखिए मैं टॉपिक पर देखिए मैं कह रहा था अच्छा मैं कह रहा था देखिए कमाल है, आज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कितनी दिक्कत होगी प्रभु राम के यहाँ पे। जैसे आप चढ़ावा चोरी की बात करोगे ना, दुनिया की झूठ बोलना शुरू करेंगे, एक ही जात के लोग भरे गए, एक ही जात का हो गया यहाँ पे, सब एक ही जात के लोग रहते थे। कमाल की बात है, क्या बोल रहे हैं खुद नहीं पता है क्योंकि जवाब नहीं है। दूसरी बात, एक अभी दूसरे RLD के कह रहे थे, याद है वो घटना? हाँ याद है कि हमने आपको राज्यसभा दी थी, याद है हमने राज्यसभा दी थी RLD को, याद है हमसे राष्ट्रवा लेके आपने चुन्नी पलट गई थी। मुझे याद है कि किस तरह से विचारधारा पलट गई, जैसी सत्ता में जाने का मन बनाया, तब तो हमारी विचारधारा में थे ना, हमारी विचारधारा के साथ लड़े और उसके बाद तुरंत पलट गए राज्यसभा लेने के बाद। ऐसी हमें विचारधारा नहीं चाहिए, ये हिंदुस्तानी लोग हैं, हिंदुस्तान में विचारधारा ऐसी अगर पलटने लगती है ना तो समझो जनता भी पलट गई है। इसलिए मैंने कहा ना विपक्ष जनता बन चुकी है। दूसरी बात, अभी एक IIM के बैठे हुए हैं, AIM कौन सी उनकी पार्टी है, अब क्या कह रहे हैं पता है, एक बार भी वो ओवैसी जी की पार्टी के बीजेपी के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, महंगाई बेरोजगारी महिला अत्याचार कुछ नहीं बोल रहे हैं। उनका टारगेट क्या है? विपक्ष, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस। तो समझ जाइए कौन लोग हैं, ये बी टीम है कि नहीं है। जो मुद्दा आपको बोलना चाहिए कि यहां पे लोग परेशान है, महंगाई बेरोजगारी युवा किस तरह से यहां पे पर्चा लीक, ये सब मुद्दे जो उठाना चाहिए वो नहीं। मुद्दा कौन है? समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, ये इनका मुद्दा है। इससे साफ जाहिर होता है इनकी नियत क्या है, किस नियत से चुनाव लड़ने आते हैं। ये बीजेपी को जिताने के लिए आते हैं, लेकिन
0: हमारी मिश्रा जी पर किया RLD की तरफ से, फिर वो अनुपम मिश्रा जी बोल रहे, उसके आ रही हूँ वारिस भाई जल्दी से। मिश्रा जी याद दिला रहे हैं राज्यसभा की कुर्सी ली थी आपने, कह रहे काहे उधर चले गए।
12: तो मैं इनको बता रहा हूँ अनुराग जी को, अगर आपने एक राज्यसभा का आप बात करें, आपने दी थे तो 39 विधायक हमने आपको दिए हैं, पहली बात उसको मान लीजिए। एक दूसरा आपको हमने 39 विधायक से वहां तक पहुंचाया जहां आप नहीं थे। और बात अगर आप ये करते हैं कि आपने अभी लाइन से जो आप गाना गा के अपने काम गिरा रहे थे, तो सुनिए पहले, पहले आप सुनिए, पहले सुनिए,
0: फिर बीच में नहीं, बीच में आवाज नहीं
12: बोलिए, आप पहले सुनिए
0: प्लीज, प्लीज सबको अपनी बात कहनी है।
12: अनुराग जी आप प्लीज सुनिए, डेवलप करिए। अगर आपका, अगर आपका 2017 2012 से 17 तक आप सरकार में थे, अगर आपका काम बोलता था तो काम क्यों नहीं 17 में आपका बोला? आप दोबारा सरकार क्यों नहीं रिपीट कर पाए? आप काम नहीं बोलता था, आपका पूरी जो थी, आपके ढाई मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को चलाते थे, पूरा उत्तर प्रदेश जानता था, और आपका जो सिटिंग मुख्यमंत्री था वो आधा था, बाकी दो लोग और थे। तो आप ये सब मत बताइए। और जिन लिस्टों की बात प्रेम शंकर शुक्ला जी कर रहे हैं, उससे उत्तर प्रदेश के घर घर तक ये बात पता थी कि कौन कांस्टेबल बनेगा और कौन दरोगा बनेगा और किस तरह आप थाने बेचा करते थे। उसी से निजात पाने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार चेंज हुई और उसी वजह से एनडीए सरकार में आई और हमने दोबारा रिपीट किया और तीसरी बार हम फिर रिपीट करेंगे। आपके पास कोई तथ्य नहीं होता है, आप सिर्फ कुछ भी बोलना चाहते हैं, तो कुछ भी बोलने से नहीं होता है। आप तथ्यात्मक बात,
0: जनता ने चुना और बार बार चुना। यही उत्तर प्रदेश में एक वक्त पर कांग्रेस की भी पेट हुआ करती थी, वहां से मामला निकला, क्षेत्रीय दलों का राज आया, एक बार बीएसपी एक बार एसपी, ऐसे सरकार चलती थी। बीजेपी आई है, लगातार जीत रही है, ये कांग्रेस के लिए भी बड़ा चैलेंज है। उसके बाद से मैं आऊंगी वारिस भाई।
8: अंजना देखिए, देश और प्रदेश में आज बीजेपी खुद एक समस्या बन चुकी है। बीजेपी के अंदर ये क्या विपक्ष से क्या लड़ेंगे, बीजेपी आपस में लड़ रही है। एक मुख्यमंत्री को बैलेंस करने के लिए उन्हीं के जिले से गवर्नर बनाए जाते हैं, उन्हीं के जिले से प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाते हैं, आपस में सहमत चल रहा है। पिछले 10 सालों से 2-2 डिप्टी सीएम बनाए गए हैं, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी आए 5 दिन पहले, वो 2 सीएम डिप्टी सीएमों के यहाँ चाय पिए और एक दुकान पर जाके चाय पिए, अयोध्या जाना कोई पूछा तो उधर मुंह ही नहीं किए, लखनऊ में घूमते रहे, ना किसी अपने जो समस्याएं हैं छात्रों के परीक्षा के जो धरने पे बैठे हैं।
0: अखिलेश जी वाला मुद्दा क्यों उठाते हैं? आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी को ये, कांग्रेस पार्टी को ये अधिकार है कि मंदिर कौन गया ना गया इस पर प्रश्न करे?
8: क्यों नहीं अधिकार है? ये किस हैसियत से आप कह सकते कि नहीं अधिकार है?
0: क्योंकि आपके शीर्ष नेता
8: सबसे बड़े राम भक्त हम लोग हैं। कौन?
7: बाबर की कब्र पर जाने वाले राम का नाम
0: वो आपके शीर्ष नेता गए हैं क्या?
7: बाबर की कब्र पर
8: नहीं, मंदिर पूरा बन गया है,
0: मंदिर
8: पूरा बन गया है। आप वह बीजेपी आरएसएस का कार्यालय बना रहे हैं
7: बाबर की कब्र पर,
8: और आप कहेंगे कि आइए हमारे, हम जो कर रहे हैं उसको जस्टिफाई करिए, हम क्यों जाएंगे?
7: जब आप बाबर की कब्र पर खड़े थे,
8: आप
7: जब बाबर की कब्र
8: को क्यों बुलाया?
0: प्रेम जी उनको पूरा करने दीजिए,
8: बीच में इनको
0: मैं आपसे जवाब लूंगी, पहले आप पूरा करिए।
8: सुनिए देखिए, आप नेता हैं मोदी जी, आप ही राम प्रतिष्ठा आप भी करेंगे, प्राण प्रतिष्ठा एक घर के अंदर गृह प्रवेश परामर्श और एक आचार से कराया जाता है, और वो भी आधा अधूरा आपने किया। सारे संतों ने कहा यह गलत है कि चूंकि आपको चुनाव के पहले मंदिर का कष्ट कराना था इसलिए आपने किया। आप शंकराचार्य को नहीं बुलाएंगे, धर्म के अनुरूप नहीं चलेंगे और चाहेंगे कि हर कोई आपको उसमें मोहर लगा दे आपके साथ होने का। वो बीजेपी का कार्यालय बना रखे हैं, आप संघ का कार्यालय बना रखे हैं, किस तरह से वहां लोग बैठे हुए हैं, साधु संतों का ट्रस्ट बनाइए, मंदिर को पूर्ण करिए। बीजेपी का नाम हर कोई ये बात
0: पूरा कर लीजिए
8: कि आपका आपका कोई इसमें श्रेय तो है नहीं बीजेपी का, न मुकदमा लड़ा, न केस गए, न पार्टी बने, न जजमेंट में उसमें सुप्रीम कोर्ट तक में गए, और जब फैसला आ गया तो जनता ट्रस्ट खुद बना लिया, शंकराचार्यों का पुराने ट्रस्ट को हटा दिया और अपने संघ के कार्यकर्ताओं को भर दिया लूटने के लिए। ये तो गजनी के और औरंगजेब के आंखा निकले हैं ना, ये जो बैठे हुए लुटेरे, ये जो बीजेपी विश्वेंदु प्रसाद आरएसएस, ये तो गजनी और औरंगजेब को पीछे छोड़ दिए, जितने मंदिर इन लोगों ने लूटे और तोड़े हैं। तो कौन करेगा इनकी बात, कौन रहेगा इनके साथ? इतिहास में पढ़ा गया था गजनी को, लेकिन आंखों से जनता देख रही है, औरंगजेब को पढ़ा गया था, जनता देख रही है। तो आज के तारीख में ये सब कोई राम भक्त नहीं, जना जी मैं बार बार कहता हूं, ये सब नाथू राम भक्त हैं, ये राम के नाम के चंदा और चढ़ावा खाने के लिए हैं, लूट और झूठ इनका पेशा है और जनता इस बात को जान गई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष आए लखनऊ में, कौन सा राजनीतिक कार्यक्रम किए, कौन सा अपनी सरकार की उपलब्धियों पर बात किए, सिर्फ झगड़े सुलटाते रहे सीएम डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष का, कभी उनके यहां चाय तो उनके यहां चाय, बैलेंस करते रहे।
0: चलिए अब प्रेम शुक्ला जी जवाब दीजिए, पहली बार अखिलेश जी खुद से बोलते हुए चुप हुए।
7: बाबर की
10: नहीं, मुझे लगा कि मैं डिस्कनेक्ट तो नहीं,
7: बाबर की
0: नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, हमने पूछा क्या बोल रही है।
7: और राम मंदिर जाने पर जिनको पीड़ा है, राम मंदिर नहीं गए लेकिन अपने पुरखे बाबर की कब्र पर तीन तीन पीढ़ियां जाकर नाक रगड़कर आई। रामलला को काल्पनिक कहा, राम मंदिर के खिलाफ बाबरी का बाबरी के पक्ष में कपिल सिब्बल मुकदमा लड़े और जो है जफरयाब जिलानी समाजवादी पार्टी से मुकदमा लड़े, बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी में मोहम्मद आजम खां थे, शहाबुद्दीन को पाला कांग्रेस ने जीवन पर्यंत, और ये जो है राम भक्त और शंकराचार्य की बात करते हैं, इनको पता ही नहीं शंकराचार्य है कहां। कांची कामकोट के शंकराचार्य जी, विजेंद्र सरस्वती जी स्वयं रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में थे, वासुदेवानंद सरस्वती जी स्वयं राम जन्मभूमि न्यास समिति के सदस्य हैं, शंकराचार्य है वो, शंकराचार्य पत्रिकाश्रम के हैं वो वासुदेवानंद सरस्वती को अभी से बोलने लगे, हो गया धैर्य टूट गया इनका, बाबरवादियों का धैर्य टूट जाता है, राम को काल्पनिक कहने वालों का धैर्य टूट जाता है। राम को जो है कह रहे थे कि 10,000 कमरों का दशरथ का महल था, उसमें किस कमरे में रामलला पैदा हुए थे पता ही नहीं था इनको, रोज राम के खिलाफ जो है बातें करते थे। इन्होंने संसद में संकल्प लिया था कि श्री राम लला की जन्मभूमि पर बाबर की मस्जिद बनाएंगे, ये कांग्रेस का भारत के संसद में लिया गया संकल्प था, और ये संकल्प पूरा करने की हिम्मत इनकी कभी नहीं हुई।
0: ठीक है, दो लाइन का कंक्लूडिंग रिमार्क ले रही हूं, अयोध्या में वारिस पठान को दिखाई। ठीक है, रुकिए रुकिए, शुक्ला जी आ रही हूं अभी कंक्लूडिंग रिमार्क आप तीनों से, पता है तीनों का हाथ उठा हुआ। वारिस जी, अनुराग जी कह रहे हैं कि बीजेपी के खिलाफ तो बोलते ही नहीं आप
15: जी। अरे हमारे लिए तो अंजना जी एक तरफ बीजेपी, एक तरफ ये कथाकथित सेक्युलर पार्टी है, क्या नाम है अखिलेश की पार्टी का, ये समाज समाज समाज, ये क्या समाजवादी जैसी पार्टी है।
0: अच्छा,
15: दो बार तो मारा नहीं सके बीजेपी को, वो भी हमारी वजह से हो गया है क्या, ये भी ठिकरा हमारे सर में पहुंचेंगे। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करो, हाँ फिर बोलना नहीं बी टीम डी टीम जेड टीम आ गए, क्यों तुम्हारे मुंह से जुबान नहीं खुलती। 111 एमएलए है ना, 37 तुम्हारे पास एमपी है, वह मुसलमानों की मस्जिद गिराई जा रही है, मदरसे गिराए जा रहे, कब बोलेंगे, कब आवाज निकालेंगे, नहीं अब कब दरी नहीं बिछाएगा अब्दुल तुम्हारे लिए,
0: मुसलमानों को रिस्पॉन्ड कीजिए।
15: एक मुसलमान बेचारा वो था, उसको भी आपने साइन करवा दिया, और फिर आगे बोलेंगे नहीं हमको वोट दो, क्यों वोट देगा।
9: अभी आपने देखा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने एक बार चुप करा दिया,
15: मुसलमान नहीं बन सकता मुख्यमंत्री।
0: अंजना जी कह रहे मुस्लिम्स का मुद्दा आप नहीं उठा रहे हैं
9: भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को, आपने देखा, मैं बोल रहा हूँ देखा आपने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कितनी बार बाबर का नाम लिया, हम लोगों ने नाम लिया क्या, ये बाबर बाबर बाबर कर रहे हैं, अब बाबर की आड़ में छुपना चाह रहे हैं, सोचो आप छुपने की जगह क्या मिल रही है इनको, बाबर औरंगजेब इतिहास उसकी आड़ में छुप के बताना, अपने आप को बचाना चाहते हैं, ये राम भक्त नहीं है, ये सत्ता भक्त हैं, इनको सत्ता चाहिए, राम से कोई लेना देना नहीं है, प्रभु राम के नाम पे की तो हम लोग हैं आस्था वाले, जो चढ़ावा चोरियों को हमने उजागर किया, आपने किया नहीं किया,
0: इसीलिए अनुराग जी कह रहे हैं सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर आप चल गए हैं, मुस्लिम से जुड़े मुद्दे नहीं उठा रहे हैं, और यही इमरान मसूद भी कह रहे हैं, इस पर तो जवाब ही नहीं दे रहे आप अनुराग जी।
9: मैं जवाब दे रहा हूं, सनातनी, सनातन का मतलब क्या होता है, सनातनी मतलब पता है क्या होता है, सनातन वो होता है जो सभी धर्मों का सम्मान करता है, हम हिंदू धर्म के लिए भी खड़े होते हैं, हम मुस्लिम।
0: वक्त इतने की इजाजत देता है, आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।

0: Need better internet? Cox Internet has the fast, reliable speeds you're looking for. Perfect for seamless streaming, gaming, and working from home. And now get Cox 300 Meg Internet with a 2-year plan price lock guarantee, plus equipment included. So get your household up to speed. Switch to Cox Internet today. Taxes and fees excluded from price guarantee.
1: Hey, this is Harry Douglas from Freddie and Harry. Stay on top of the MLB season with ESPN Radio. Get daily sports talk covering every big moment from around the league. From the first pitch of the season to the stretch run.
2: And that's the ball game.
1: We've got you covered with analysis, storylines, and insider perspective. And all season long, catch selective live games so you can tune in for key matchups and hear the action unfold. Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
3: हमें स्वस्थ रखने वाली सारी चीजें ज्यादातर शुद्ध होनी चाहिए। सूर्य की किरणें और स्वच्छ पानी, वैसा ही है लाइन अरेबियन डेट्स। और अब लाइन लाइना डेट्स, इसमें फाइबर्स और विटामिन्स भी कुदरती हैं, जो देता है स्वास्थ्य भी कुदरती।
4: लाइन लाइना प्रीमियम डेट्स।
5: अरे वाह, तू भी ये ट्रेडिंग ऐप यूज करती है?
6: हाँ, क्योंकि इसमें गारंटीड रिटर्न्स है ना।
5: गारंटीड रिटर्न्स? तेरी ट्रेडिंग ऐप ऑथेंटिक तो है ना?
6: अर्ज किया है,
5: पहले गारंटीड और हाई रिटर्न्स का भरोसा ये दिलाते हैं, फिर फेक ऐप डाउनलोड करा के अपने झांसे में फंसाते हैं। सेबी और एनएससी का कहना है सेबी इन्वेस्टर साइट पर वेरिफाइड ऐप्स की लिस्ट से ही ऐप डाउनलोड करें।
7: एनएससी द्वारा निवेशकों के हित में जारी।
8: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: जब बात हो रस चूसक कीटों से फसल सुरक्षा की तो हर असली हीरो चुनता है जिवोरा। जिवोरा सफलता का शंखनाद।
3: पापा
4: सॉरी यार गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
5: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
4: छक्का
5: सब कैशलेस हो गया है।
4: हाँ ला भाई मेरा बैट। वो अभी तो ठीक हुआ तू।
6: चार्ज हुआ यार।
7: बैट किसका है?
8: टाटा AIG है तो भरोसा है।
9: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
10: वी आर ओवर जिमी।
11: हे लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो PPF संभाल लेगा। आप अपना देख लो।
12: हनी इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
13: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
14: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
15: In association with E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
16: 20 साल से इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट देश को दे रहा है बेहतरीन पत्रकार। अगर आपका लक्ष्य भी है पत्रकारिता तो फिर सोचना क्या। रजिस्टर करने के लिए विजिट करें www.indiatodaymediainstitute.in या 9560065465 पर कॉल करें।
17: Tuck, digital first channels, 11 billion views, 85 million unique viewers, one stop solution for your brand, regional or hyper local reach. Har shahar, har kasbe tak, advertise karne ke liye email karein.
18: 25 saalon se jahan tiki hai desh ki nazar. मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये है खबरें 7 तक। देखते रहिए आज तक।

राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में आरोपों से घिरे चंपत राय ने आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ दी है। चंपत राय ने राम भक्तों के नाम एक चिट्ठी लिखी, इसमें उन्होंने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को मनगढ़ंत करार दिया और कहा कि जल्द ही वो अपने ऊपर लगे सभी आरोपों का क्रमवार ढंग से जवाब देंगे। वहीं चढ़ावा चोरी की जांच कर रही स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को चंपत राय ने जो जवाब दिए थे वो सामने आ गए हैं। अपने जवाब में चंपत राय ने ट्रस्ट के सदस्य रहे अनिल मिश्र पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इसके साथ ही बैंक के साथ हुए MOU, दिशा निर्देशों और सुरक्षा व्यवस्था पर भी कई सवाल खड़े किए हैं। चंपत राय ने कहा है कि बैंक के साथ हुए MOU पर उनके हस्ताक्षर होने चाहिए थे और उनकी बिना जानकारी के MOU किया गया। साथ ही चंपत राय ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि बैंक के साथ हुए करार में गड़बड़ी हुई है। बैंक की ओर से गणना प्रक्रिया के लिए जारी किए गए दिशा निर्देशों पर भी असहमति जताई है। चंपत राय ने 6 फरवरी 2025 के जिस दिशा निर्देश पत्र का हवाला दिया है उस पर उनके हस्ताक्षर नहीं है। साथ ही कहा कि इसकी जानकारी 13 जून 2026 को हुई। चंपत राय ने आरोप लगाया कि बैंक ने गणना प्रक्रिया के दौरान तय सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया। आज तक ब्यूरो।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार।
1: विमल बोलो जुबा केसरी।
2: पापा
3: सॉरी यार गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
4: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
3: छक्का
4: सब कैशलेस हो गया है।
3: हाँ ला भाई मेरा बैट।
5: वो अभी तो ठीक हुआ तू।
6: चार्ज हुआ यार।
7: बैट किसका है?
8: टाटा AIG है तो भरोसा है।
9: वी आर ओवर जिमी।
10: हे लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे, गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपी अब संभाल लेगा, आप अपना देख लो।
11: अगर आपकी उम्र 21 से 40 साल के बीच है, आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और बिजनेस शुरू करना चाहते हैं लेकिन पैसे नहीं है, तो ये खबर आपके लिए है। अब न बैंक की भारी गारंटी, न जमीन गिरवी और न ही ब्याज का बोझ। यूपी सरकार ऐसी योजना लेकर आई है जिसमें 5 लाख तक का लोन बिना गारंटी और ब्याज मुक्त मिलेगा। सवाल है कौन ले सकता है इसका फायदा और कैसे। उत्तर प्रदेश ने अब सिर्फ नौकरी देने वाला नहीं, नौकरी देने वाले युवा तैयार करने की दिशा में बड़ा कदम उठा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत यानी युवाओं को उद्यमी बनाने का मिशन शुरू किया है। सरकार का लक्ष्य है हर साल 1 लाख नए युवा उद्यमी तैयार करना और अगले 10 साल में 10 लाख आत्मनिर्भर उद्यमियों की नई फौज खड़ी करना। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है बिजनेस शुरू करने के लिए पैसा कहाँ से आएगा। यहीं से शुरू होती है MY युवा योजना की कहानी। अक्सर नए उद्यमियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती होती है बैंक की गारंटी, जमीन गिरवी रखने की शर्त और महंगे ब्याज का बोझ। अब सरकार कह रही है अगर आपका आइडिया अच्छा है तो पूंजी की चिंता सरकार करेगी और इस योजना के

0: To 15-year-old Harper, buying an $80 vintage rock t-shirt is a great investment. To Harper's mom, this logic has a few holes in it. So she helped Harper open a Wells Fargo Clear Access banking account. With no overdraft fees and tools to track spending, Harper's learning, one heavy metal tea at a time. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
1: Terms apply. Visit wellsfargo.com/deposit disclosures for fees and details.
2: K-pop takes center stage. Bold sounds, global energy, and hits that move fast. Today's K-pop plays the biggest tracks, breakout anthems, and chart toppers. Fresh music on repeat, so you never miss a beat. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Today's K-pop to start listening now.
3: आप चर्चा देख रहे थे कि उत्तर प्रदेश में क्या विपक्ष का इंडिया गठबंधन एक साथ तो दिखाई देता है, लेकिन सीट शेयरिंग पर बात हुई है, वहीं एनडीए का क्या हाल है, बहस आप देख रहे थे। हम ब्रेक नहीं ले रहे हैं, अब देखिए सात तक।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस।

0: नमस्कार, मैं हूं नेहा बातम। शाम के 7 बजने वाले आज तक इस खास शो में अगले आधे घंटे में दिन भर की तमाम बड़ी खबरें शामिल होगी, लेकिन खबरों की शुरुआत करें उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मेलबर्न में पीएम मोदी का ब्लॉकबस्टर शो, अपने संबोधन में गो मोर अचीव मोर का दिया विकास मंत्र, कहा आज चिप से शिप तक बना रहा है भारत। ममता को फिर लगा झटका, बीजेपी में शामिल हुए पूर्व टीएमसी राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर, सुष्मिता देव और प्रकाश बराय को उधर सीएम शुभेंदु से मिली शताब्दी रॉय। अखिलेश पर योगी अगर आ रहा हमला, कहा 2017 से पहले ही सरकारों को कब्रिस्तान बनाने में खर्च किए पैसे, मंत्री ओपी राजभर बोले इस जन्म में सीएम नहीं बनेंगे अखिलेश। दिल्ली एनसीआर में जानलेवा हुई बारिश, बादली जल जमाव से डूबने से 7 साल के बच्चे की मौत, गाजियाबाद बरसात के जमे पानी में 3 साल की बच्ची ने तोड़ा दम। ईरान के 90 ठिकानों पर हमले के बाद भी ट्रंप की धमकी, कहा 20 गुना ताकत से करेंगे हमला, तेहरान ने कुवैत और बहरीन में अमेरिकी ठिकानों को बनाया निशान। शो की शुरुआत यूपी में शुरू हुई धर्म की राजनीति से करेंगे, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से मुलाकात करते अखिलेश यादव ने बता दिया कि वो सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर निकल चुके हैं। अखिलेश राम मंदिर पर चढ़ावा चोरी के बहाने बार बार सनातन का जिक्र करके बीजेपी पर निशाना साधते हैं, अखिलेश अब खुद को राम भक्त बताते हैं, लेकिन दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूपी की सियासत में कब्रिस्तान का मुद्दा लेकर आए हैं। ये कब्रिस्तान का मुद्दा अखिलेश के हिंदुत्व के मुद्दे की काट के तौर पर देखा जा रहा है।
1: शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से अखिलेश यादव की इस मुलाकात के गहरे अर्थ हैं। ये तस्वीरें बताती हैं कि अखिलेश यादव सॉफ्ट हिंदुत्व की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। शंकराचार्य से मुलाकात के तुरंत बाद अखिलेश ने सोशल मीडिया पर लिखा कि जो सनातन है वही समाजवाद है। ये एक और संकेत है कि अखिलेश यादव हिंदुत्व की पिच पर उतर चुके हैं, इसीलिए चढ़ावा चोरी के बहाने वो लगातार सनातन की बातें कर रहे हैं। इतना ही नहीं, एक दिन पहले समाजवादी पार्टी की नेता पूजा शुक्ला ने अविमुक्तेश्वरानंद की मौजूदगी में धार्मिक अनुष्ठान किया। अखिलेश यादव 8 बड़े मंगल पर हनुमान जी को याद करते देखे गए। अखिलेश ने चंद रोज पहले ही अपने ब्राह्मण नेताओं की बैठक बुलाई, मतलब अखिलेश यादव और उनकी पार्टी ने हाल में कई ऐसे संदेश दिए हैं जिनसे साफ है कि वो बीजेपी के हिंदुत्व के एजेंडे में सेंधमारी की कोशिश में हैं। मगर अखिलेश हिंदू कार्ड खेल रहे हैं तो बीजेपी की तरफ से भी कम जोर नहीं लगाया जा रहा है। हिंदुत्व और सनातन के मुद्दे के साथ योगी अब कब्रिस्तान का मुद्दा ले आए।
2: बीजेपी की सरकार आई तो अब पैसा मंदिरों के विकास के लिए धामों के सुंदरीकरण में खर्च हो रहा है, और समाजवादी पार्टी के समय वही पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल के लिए चला जाता था। उनको कब्रिस्तान प्यारा है, इसलिए वे राम मंदिर और काशी विश्वनाथ धाम और मां विंध्यवासिनी धाम

0: और नैमिषारण्य और चित्रकूट धाम के विकास का विरोध करते हैं।
1: मतलब ये कि धर्म वाले आरोपों की तलवार पर धार देने की शुरुआत हो गई है और बीते वक्त के साथ इसकी रफ्तार और तेज होगी। आज तक ब्यूरो।
2: वहीं अब वक्फ बोर्ड से जुड़ी खबर आपको दिखाते हैं। मध्य प्रदेश की तरह उत्तर प्रदेश के वक्फ बोर्ड में भी गैर मुस्लिम सदस्यों को रखा जाएगा और ये बड़ा बयान उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी की ओर से आया है। अब वक्फ में गैर मुस्लिम सदस्यों के नाम पर यूपी की सियासत गर्मा गई।
3: वक्फ संशोधन अधिनियम के तहत यूपी में नया वक्फ बोर्ड बनाने की तैयारी है। एक ऐसा बोर्ड बनाया जाएगा जिसमें महिलाओं की भागीदारी होगी, जिसमें पसमांदा मुसलमानों की भागीदारी होगी और जिसमें दो सदस्य गैर मुस्लिम भी होंगे।
4: पिछड़े पसमांदा जो मुसलमान है उनका रिप्रेजेंटेशन होगा, जो महिलाएं हैं उनका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, हमारे जो तमाम और भी मुस्लिम समाज के अलग अलग वर्ग है उनका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, हमारे दो ऐसे सदस्य का भी नॉमिनेशन उसमें होना है जो नॉन मुस्लिम है।
3: बस इसी बात पर हंगामा बरपना शुरू हो गया कि वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों को क्यों शामिल किया जाए।
5: मुझे लगता है कि ये हमारे जो फंडामेंटल राइट हैं और हमारे जो मजहबी आजादी हमें दी गई है यकीनी तौर पर उसके साथ कहीं ना कहीं सीधा टकराव है, इसलिए हुकूमत को अपने इस फैसले पर नजरसानी करने की जरूरत है।
3: सिर्फ मुस्लिम धर्मगुरु ही नहीं, समाजवादी पार्टी भी सरकार के इस फैसले से भड़की हुई है।
6: जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार वो वक्त में दो गैर मुस्लिम सदस्यों को रखती है, वो केवल इसलिए प्रयास है भारतीय जनता पार्टी का कि किसी तरह से जो चंदा और चढ़ावा में लूट का मुद्दा है उस मुद्दे से जनता का ध्यान हट जाए। हर समस्या का समाधान मुसलमान है भारतीय जनता पार्टी की।
3: बताते चले कि अगर यूपी वक्फ बोर्ड में दो सदस्य गैर मुस्लिम होंगे तो एमपी के बाद यूपी देश का दूसरा राज्य होगा जो वक्फ बोर्ड में गैर मुसलमान सदस्य रखेगा, क्योंकि आपको बता दें कि यूपी में फिलहाल दो वक्फ बोर्ड हैं, सुन्नी वक्फ बोर्ड और शिया वक्फ बोर्ड। दोनों बोर्ड की संरचना कुछ ऐसी है कि दोनों बोर्ड में 11-11 सदस्य होते हैं जिसमें अध्यक्ष के अलावा मुस्लिम सांसद, मुस्लिम विधायक, मुस्लिम विधान परिषद सदस्य, इस्लामिक विद्वान और मतवलियों के प्रतिनिधि होते हैं। इसके अलावा सरकारी अधिकारी सीईओ होता है। लेकिन अगर दो सदस्य गैर मुस्लिम हुए तो वक्फ की रूपरेखा बदल जाएगी। आज तक ब्यूरो।
2: तो चढ़ावा चोरी की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे नए नए खुलासे होते जा रहे हैं। मालूम ये चला है कि चढ़ावा चोरी करने वाले आरोपी पैसों का हेर फेर करने के लिए अपने रिश्तेदारों के बैंक अकाउंट का इस्तेमाल करते थे। खास बात यह है कि इन रिश्तेदारों को भी नहीं मालूम था कि उनके अकाउंट्स का इस्तेमाल चढ़ावा चोरी की रकम को ठिकाने लगाने के लिए किया जा रहा था।

0: अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा और करुणेश पांडे। इन तीनों आरोपियों से एसआईटी ने रिमांड में पूछताछ की तो मालूम चला कि चढ़ावा चोरी के खेल को ये कैसे खेलते थे। खजाना चोरी के इस खेल को ये अपने रिश्तेदारों के अकाउंट के जरिए अंजाम दे रहे थे।
1: अपने पैसे को, काले धन को सफेद करने के लिए अपने ही रिश्तेदारों के बैंक खातों का उनके द्वारा इस्तेमाल किया गया, जिससे मंदिर से चुराया गया पैसा वो सही दिखा पाए।
0: चोरी के रुपए ये अपने करीबियों और रिश्तेदारों को भेजते थे और उनसे अपने खातों में रकम ट्रांसफर करवाते थे, ताकि रकम का सोर्स छिपा रहे और शक भी न हो। पुलिस ने इनके करीबियों के करीब 30 खाते फ्रीज किए हैं। पुलिस ने संबंधित बैंकों से उन खातों का पूरा ब्यौरा जुटाया है जिसमें आय से अधिक ट्रांजेक्शन मिले हैं, लिहाजा जांच पूरी होने तक ये खाते फ्रीज रहेंगे। आरोपियों के खातों का दोबारा शुरू होना संभव नहीं हो पाएगा। पुलिस ने इन तथ्यों को सबूत के तौर पर जांच में शामिल किया है। जांच तेज है और उससे भी तेज है इस पर होने वाली सियासत। आज अखिलेश यादव ने एसआईटी पर ही सवाल उठा दिए।
2: एसआईटी क्या है? लीपापोती एसआईटी किसने मनाई है? और सुनने में आया कि एसआईटी में भी सवाल खड़े हो गए हैं। एसआईटी में जो कोई सदस्य है उन पे 420 का मुकदमा है। अब बताइए वही रहेंगे एसआईटी में? ये लड़ाई बड़ी है, आप नहीं समझ पा रहे हो। ये दिल्ली लखनऊ की लड़ाई है।
0: अखिलेश के आरोपों पर सीएम योगी आदित्यनाथ का पलटवार भी आया।
3: कुछ लोगों ने हिंदू परंपरा और सनातन को अपमानित करना, सनातन परंपरा को कोसना ही अपना जीवन का एकमात्र ध्येय बनाया है।
0: सियासत अपनी जगह है, मगर एसआईटी को 15 जुलाई तक अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। जांचकर्ता पिछले 3 हफ्तों में इकट्ठा किए गए दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक और मौखिक सबूतों की जांच के बाद अब अपने निष्कर्षों का मसौदा तैयार करने के अंतिम चरण में है। समर्थ श्रीवास्तव, अयोध्या आज तक।
4: और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, सूत्रों की माने तो राम मंदिर की चोरी के पैसों से एक कार भी खरीदी गई। आरोपी अनुकल्प मिश्रा की निशानदेही पर स्विफ्ट डिजायर कार बरामद की गई है, जो कि राम जन्मभूमि थाने में खड़ी हुई है। कार के अलावा सोने की चेन और सोने के पेंडुलम बरामद हुए हैं। पुलिस के अनुसार ये कार 16 मई 2025 को गोरखपुर से खरीदी गई। 22 मई को अयोध्या आरटीओ कार्यालय में इसका रजिस्ट्रेशन कराया गया था। समर्थ मेरे से योगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। समर्थ, किसके नाम पर ये रजिस्टर्ड कार है और इसका ट्रेस कैसे किया गया?
1: नया देखिए, ये कार जो है अनुकल्प के पिता के नाम पर दर्ज है और हमने वो डॉक्यूमेंट्स निकाले हैं आरटीओ ऑफिस से, तो उसमें साफ दिखा रहा है कि ये कार एड्रेस जो है वो भी वही दिखा रहा है जहां से इसकी बरामदगी की गई है। पुलिस की टीम आज सुबह लगभग 4 बजे तीनों आरोपियों को लेकर निकलती है और अनुकल्प के भी एड्रेस पर जाती है, यानी कि उसके पैतृक निवास पर, जहां से स्विफ्ट डिजायर गाड़ी बरामद होती है। और सूत्रों के मुताबिक जानकारी में साफ सामने आया है कि जो चंदा चोरी का पैसा है अनुकल्प ने ये गाड़ी उससे ही खरीदी है, यानी कि जो चंदा चोरी का पैसा है उसको सफेद करने के लिए एक जुगत नहीं किया गया है, कई तरीके अपनाए गए हैं। रिश्तेदारों के अकाउंट पे पैसे ट्रांसफर किए गए हैं, उसमें आपने ज्वेलरी खरीद ली गई है, सोना खरीद लिया गया है, गाड़ी खरीद ली गई है। इसके अलावा वहां से 2 सोने की ज्वेलरी भी अनुकल्प के यहाँ से बरामद पुलिस ने की है। तो बड़ी बात यह है कि रिकवरी का दौर जारी है, कुछ घंटे में रिमांड जरूर खत्म हो रही है, लेकिन सुबह सुबह पुलिस आज लेकर निकली तीनों ही आरोपियों को और तीनों के पैतृक निवास पहुंची और इस बीच में कहीं ना कहीं जो कार है वो बरामद होती है।
4: ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। बात महाराष्ट्र की सियासत की करेंगे, जहां एक ओर फडणवीस के एक बयान पर विपक्ष भड़क गया है तो दूसरी ओर शिंदे और पवार की मुलाकात ने सियासी हलचल तेज कर दी है, जिसके बाद महाविकास अघाड़ी के नेता इस मुलाकात पर सवाल खड़े कर रहे हैं।

0: करीब 700 करोड़ की लागत से बना मिसिंग सी लिंक पहली बारिश में ही फेल होता दिखा तो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सवाल करने वालों पर ही हमला बोल दिया। भाषा की मर्यादा भूल गए तो वहीं इस मामले को महाराष्ट्र के अपमान से जोड़ दिया।
1: जिनको कुत्ता नहीं पोछता वह आजकल सोशल मीडिया पर आकर सबको गाली देते हैं, मुख्यमंत्री को भी गाली देते हैं। ऐसे कुछ भाड़े के इस मिसिंग लिंक के बारे में भी पैसा ले लेकर सोशल मीडिया पर लिख रहे थे, उनको भी कह देना चाहता हूं अगर महाराष्ट्र का अपमान करोगे छोड़ूंगा नहीं।
0: ये वही मिसिंग लिंक था जिसे महाराष्ट्र सरकार इंजीनियरिंग का करिश्मा बता रही थी। खुद सीएम ने दावा किया था कि इस पर मौसम का कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन आज उनकी भाषा पर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है।
2: उन्होंने कल महाराष्ट्र की जनता को धमकाया कि अगर आप सवाल पूछोगे, सोशल मीडिया पे वक्त होगे तो हम ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। मैं इतना ही कहूंगा उन्हें कि साहब भ्रष्टाचार किया है, पैसा खाया है तो गाली भी खानी पड़ेगी।
0: एक और सवाल पूछने वालों को अपमान से जोड़ा जा रहा है तो वहीं दूसरी ओर मुलाकात को गद्दारी के चश्मे से जोड़ा जा रहा है। कल शरद पवार विधानसभा में अचानक एकनाथ शिंदे से मिलने पहुंच गए। दोनों के बीच करीब 15 मिनट मुलाकात हुई जिसे शिष्टाचार भेंट बताया गया, लेकिन अब उद्धव गुट इस मुलाकात पर भड़का नजर आ रहा है।
3: एकनाथ शिंदे या महाराष्ट्राला भ्रष्टाचाराची आणि गद्दारीची वाळवी लावली, कीड लावली, तर अख्खं विधानभवन का ओस पडलं होतं का? आम्ही कधीही गद्दारांच्या अशा ठिकाणी जाऊन आमच्या पक्षाच्या बैठका घेण्याचं एवढे आम्ही काय म्हणतात ते सहिष्णू नाही आहोत।
0: दरअसल हाल ही में शिवसेना यूबीटी के 6 सांसद शिंदे गुट में शामिल हो गए थे, जिसके बाद अटकलें लगने लगी कि अब शिंदे की नजर पवार गुट के सांसदों पर भी हो सकती है। इन अटकलों के बीच पवार का एकनाथ शिंदे से मिलना विपक्ष को हजम नहीं हो रहा। आज तक ब्यूरो।
4: उधर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के एक वीडियो ने सियासी घमासान छेड़ दिया है। वीडियो में ममता बनर्जी टीएमसी के कार्यकर्ता को थप्पड़ मारती दिख रही है, जिस पर अब बीजेपी सवाल उठा रही है।
0: ममता बनर्जी ने बिरुईपुर रेपकांड को लेकर सड़कों पर मोर्चा संभाला तो सियासत उनके थप्पड़ मारने की तस्वीरों को लेकर होने लगी। रैली के दौरान ममता भड़की नजर आई, फिर गुस्से में एक कार्यकर्ता को थप्पड़ जड़ दिया। वहीं फिर बाकी कार्यकर्ताओं को गुस्से में हटाती नजर आई। इन तस्वीरों ने सियासी रंग ले लिया और बीजेपी अब ममता को घेर रही है।
5: ममता बनर्जी सारे पश्चिम बंगाल के लोगों को थप्पड़ मारा है 15 साल। सारे 15 साल में जितना भी महिला अत्याचार हुआ, एक भी अत्याचार के लिए वो मोमबत्ती नहीं जलाए। कल शुभेंदु अधिकारी का सरकार में जब हुआ है तब वो मोमबत्ती जला रहे।
6: दुनिया ने देखा वो कैसे अपने कार्यकर्ता को खुद थप्पड़ लगा रही है। मतलब उनका फ्रस्ट्रेशन बोलिए, उनका गुस्सा बोलिए, उनसे अब संभाला नहीं जा रहा है।
0: ममता के इस मार्च के दौरान टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। ममता के खिलाफ नारेबाजी हुई तो वहीं अंडे भी फेंके गए। टीएमसी का दावा है कि इस झड़प में कई टीएमसी कार्यकर्ता घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल ले जाने के लिए दीदी रास्ता खाली करा रही थी और उसी में वो गुस्से में भड़क गई।
7: ममता बनर्जी अपने वर्कर को जो भी चाहते है कर सकती है।
0: बहरहाल पश्चिम बंगाल में सियासी हिंसा कम होने का नाम नहीं ले रही है, जिस पर अब ममता के इस थप्पड़ कांड का तड़का लग गया है। आज तक ब्यूरो।
4: इस बीच बड़ी खबर यह है कि टीएमसी को एक बड़ा झटका लगा है। टीएमसी के पूर्व सांसद सुष्मिता देव, सुखेंदु शेख रॉय और प्रकाश बराइक ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। श्रमिक भट्टाचार्य की अगुवाई में तीनों नेता बीजेपी में शामिल हो गए। इन तीनों ने पिछले महीने राज्यसभा से इस्तीफा दिया था, जिसके बाद इनके बीजेपी में शामिल होने की अटकलें तेज थी। अब उम्मीद की जा रही है कि बीजेपी तीनों के बचे हुए टर्म्स के लिए राज्यसभा इन्हें भेज सकती है। 14 जुलाई 2026 को नॉमिनेशन का आखिरी दिन है।
0: अगर
4: और बात बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव की, जहां आज बीजेपी उम्मीदवार अभिषेक कुमार ने नामांकन भरा। अभिषेक ने नामांकन से पहले माता पिता का आशीर्वाद लिया। वहीं आरजेडी की उम्मीदवार रेखा गुप्ता आज नामांकन करने पहुंची। प्रशांत किशोर के चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद यहां मुकाबला बेहद दिलचस्प है। हालांकि प्रशांत किशोर ने अभी तक नामांकन नहीं किया है। 13 जुलाई नामांकन का आखिरी दिन है और ऐसे में पीके के आखिरी दिन नामांकन की अटकलें लगाई जा रही है। ये सीट बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफे के बाद से खाली है, जो कि बीजेपी का गढ़ मानी जाती है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऑस्ट्रेलियाई दौरे की, जहां दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री मोदी ने अलग अलग कार्यक्रमों में शिरकत की। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच यूरेनियम डील पर मोहर लगी। मेलबर्न में पीएम मोदी और ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी एल्बनीज़ ने मीटिंग के बाद जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में रक्षा, व्यापार, ऊर्जा, स्पेस और महत्वपूर्ण खनिज समेत कई क्षेत्र में समझौतों की घोषणा की। इससे पहले गवर्नमेंट हाउस में मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। पीएम ने मेलबर्न में विक्टोरिया की गवर्नर मार्गरेट गार्डनर से मुलाकात की। सीईओ फोरम के बाद ऑस्ट्रेलियाई पीएम ने मोदी के साथ सेल्फी खिंचवाई। वहीं भारतीय समुदाय के लोगों से पीएम ने मुलाकात की। प्रसिद्ध डिडगेरुडू वादक रॉन मरे और फेमस तबला वादक डॉक्टर सैम इवांस ने प्रस्तुति देकर पीएम का स्वागत किया। वहीं मेलबर्न मीट्स मोदी प्रोग्राम में 30,000 भारतीयों को उन्होंने संबोधित किया।
8: भारत के डिफेंस प्लेटफॉर्म की कैपेबिलिटी और क्रेडिबिलिटी दुनिया देख रही है। आपने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान

0: ऑपरेशन सिंदूर के दौरान डेमो तो देख ही लिया होगा। धमाके आतंकियों के अड्डों पर हो रहे थे और गुंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही थी। टेरर कैंप पर इस करारे प्रहार से आपको गर्व हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ?
1: और अब आज शेयर बाजार की, जहां पर शेयर बाजार से लेकर सोने तक तेजी का माहौल देखने को मिला। आज कारोबार के दौरान खरीदारी के पॉजिटिव माहौल के बीच घरेलू शेयर बाजार बढ़त के साथ बंद हुआ है। इस दौरान सेंसेक्स 238 अंक मजबूत होकर 76,742 और निफ्टी 81 अंक चढ़कर 23,963 पर बंद हुआ। शेयर बाजार में तेजी और बैंकिंग शेयर्स में खरीदारी और सकारात्मक ग्लोबल संकेतों के चलते ये तेजी देखने को मिली है। शेयर बाजार की मजबूती के बीच आज रुपए में भी बढ़त देखने को मिली। डॉलर के मुकाबले रुपया 8 पैसे मजबूत होकर 95.40 रुपए के स्तर पर बंद हुआ। रुपए में बढ़त डॉलर की कमजोरी और घरेलू वजह से हुई है। वहीं सराफा बाजार में आज तेजी का रुख रहा। सोना 1,022 रुपए प्रति 10 ग्राम महंगा होकर 1,43,372 पर बंद हुआ, जबकि चांदी 1,752 रुपए बढ़कर 2,23,302 रुपए पर बंद हुई। सोने चांदी में तेजी वैश्विक अनिश्चितता और सुरक्षित निवेश की बढ़ती मांग के चलते आई। रबात अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर बढ़ रहे तनाव की करेंगे, जिसके बाद दोनों देशों के बीच ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। अब सवाल यही है कि आखिर दोबारा हुआ ये तनाव कहां जाकर थमेगा, क्योंकि अमेरिका ने सीज फायर को खारिज कर दिया है, तो वहीं ईरान करारे जवाब की बात कर रहा है।
2: मिसाइलों की गड़गड़ाहट और सायरन की चीखों से दहल उठी है पूरी खाड़ी। ईरान और अमेरिका की जंग अब चरम पर पहुंच चुकी है। आज सुबह कुवैत, बहरीन और कतर में अचानक मिसाइल अलर्ट के सायरन बजने लगे। आसमान से बरसती ईरानी मिसाइलों और ड्रोन को कुवैत की सेना ने हवा में ही मार गिराना शुरू कर दिया। ये तबाही तब शुरू हुई जब अमेरिका ने ईरान पर नए दौर के भीषण हवाई हमले किए और जवाब में ईरान ने बहरीन और कुवैत को निशाना बना डाला। लगातार दूसरी रात ईरान पर अमेरिकी बमबारी का वीडियो जारी करते हुए सेंट्रल कमांड ने करीब 90 ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया, जिनमें एयर डिफेंस सिस्टम, तटीय निगरानी के संसाधन, मिसाइल, ड्रोन स्टोरेज साइट्स, नौसैनिक क्षमता और ईरान तट के किनारे सैन्य ढांचे शामिल थे। अमेरिका ईरान के बीच वार पलटवार की जिद फिर से मध्य पूर्व को भीषण महायुद्ध में झोंकने पर तुल गई है।
3: And I'd say we hit them 20-1. Every time they hit us, we're going to hit them 20. And we did it last night. It did a little something today, but it was really retribution for last night. They hit actually 3 boats, not 2. And when they hit, we hit back much harder.
2: ईरान में ये जंग ऐसे समय पर भड़की है जब 28 फरवरी को मारे गए सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई का अंतिम संस्कार आज खत्म हो रहा है। ईरान के भीतर इस बात को लेकर दो फाड़ हैं कि कड़ा रुख अपनाया जाए या पाबंदियां हटाने के लिए शांति समझौता किया जाए। लेकिन हुर्मुज पर कब्जे की इस जंग ने दुनिया को आर्थिक महातबाही के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
1: रबात फीफा वर्ल्ड कप की, जिसका आज देर रात पहला क्वार्टर फाइनल मैच खेला जाना है। ये मुकाबला फ्रांस और मोरक्को के बीच होगा। भारतीय समय अनुसार ये मैच रात 1:30 बजे से खेला जाएगा। फ्रांस को इस वर्ल्ड कप का प्रबल दावेदार माना जा रहा है। फ्रांस और मोरक्को के बीच अभी सभी तरह की प्रतियोगिताओं के में अब तक 6 बार मुकाबले हुए हैं, जिनमें फ्रांस का पलड़ा भारी रहा है। फ्रांस ने 4 मैचेस जीते हैं, 1 मैच ड्रॉ रहा है और मोरक्को ने 1 मैच जीता है। आज क्रिकेट में टीम इंडिया चौथे T20 मुकाबले में इंग्लैंड से भिड़ेगी और टीम इंडिया इंग्लैंड से 2 मुकाबले अभी तक हार चुकी है। ऐसे में 5 मैच सीरीज को टाई करने के लिए टीम इंडिया को हर हाल में ये मुकाबला और अगला मुकाबला भी जीतना होगा। पिछले मुकाबले में टीम इंडिया इंग्लैंड से 125 रन से बुरी तरह से हार गई थी। ऐसे में अब देखना यह होगा कि क्या टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में कोई बदलाव किया जाएगा या फिर नहीं। रुकेंगे यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर, देखते रहिए आज तक।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से, इन एसोसिएशन विद
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी। Hanging out at the pool is great. Relaxing and playing Vegas-style games on my phone at the same time. Drink in one hand and a blackjack in the other. It's all at SpinQuest. Over 1,000 games, including your favorite slots and table games. Be cool with this summer special. New players get $30 coin packs for 10 at SpinQuest.com.
6: SpinQuest is a free-to-play social casino. Void where prohibited. Visit SpinQuest.com for more details.
7: We hope you're loving TuneIn, but are you ready to love it even more? Upgrade to TuneIn Premium for the ultimate listening experience. Remove ads from top news stations.
8: The climate disaster-related death rate. Tornadoes, hurricanes.
7: Enjoy nonstop music with absolutely no commercials. And hit the field for live sports play-by-play from the biggest leagues.
9: Williams keeps it. First down. Touchdown.
7: Ready to upgrade your listening? Sign up for TuneIn Premium now.
10: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
11: आगे आगे, अरे उधर उधर, करेक्ट करेक्ट।
12: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
13: देख, इतना बड़ा आदमी मुझे इन्वेस्टमेंट टिप्स दे रहा है।
14: अच्छा, सिर्फ तुझे ही दे रहा है?
13: अर्ज किया है, दूर से लगा कि एक जाना पहचाना चेहरा हंसकर सच कह रहा था, पास जाकर देखा तो झूठे वीडियो के जाल में मैं फंस रहा था। सेबी और NSE का कहना है किसी भी वीडियो में पलके और लिप सिंक पर ध्यान दें, सिर्फ ऑथराइज्ड सोर्सेज पे ही विश्वास करें। वाह,
15: सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर।
16: NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
3: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
4: सोच बदलो और बैंक भी।
5: पापा।
6: सॉरी यार, गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
7: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
6: छक्का?
7: सब कैशलेस हो गया है।
6: हाँ ला भाई मेरा बैट, वो अभी तो ठीक हुआ। तू
8: अभी तो डिस्चार्ज हुआ यार।
9: बैट किसका है?
10: टाटा AIG है तो भरोसा है।
11: जब बात हो सोयाबीन के खेतों को खरपतवार से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का अमोरा। अमोरा तेज तरार वार, हारे अब खरपतवार, देश के हीरो की पहली पसंद।
12: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
13: हे, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपी अब संभाल लेगा। आप अपना देख लो।
14: हमें स्वस्थ रखने वाली सारी चीजें ज्यादातर शुद्ध होनी चाहिए। सूर्य की किरणें और स्वच्छ पानी, वैसा ही है लाइन अरेबियन डेट्स और अब लाइन लाइना डेट्स। इसमें फाइबर्स और विटामिन्स भी कुदरती हैं, जो देता है स्वास्थ्य भी कुदरती।
15: लायन लाइना प्रीमियम डेट्स।
16: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
17: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
18: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बाय एकदम सॉलिड।

0: in association with Sharda University. The world comes together at Sharda University. Where are you?
1: Punjab National Bank. Bharose ka prateek.
0: विमल बोलो जुबा केसरी हिंट बड़े आराम से।
2: शेयर बाजार जहां कुछ लोग सीखते रह जाते हैं और कुछ इतिहास लिख जाते हैं। आखिर बड़ा पैसा बनता कैसे है, कौन सी सोच, कौन सी रणनीति और कैसा नजरिया किसी को बनाता है बाजार का असली खिलाड़ी, इन्हीं सवालों का जवाब लेकर आ रही है बिस्तक की नई पॉडकास्ट सीरीज मनी मेकर्स। यहां मुलाकात होगी बाजार के उन दिग्गजों से, उन मार्केट लेजेंड से जिन्होंने सिर्फ मार्केट को देखा नहीं बल्कि बड़े उतार चढ़ाव दिए हैं, मौके पहचाने हैं और दौलत बनाई है। जानेंगे उनकी जर्नी, बड़े फैसले, निवेश की सीख और बड़ा पैसा बनाने की सोच। मनी मेकर्स, बाजार के बड़े नाम, बड़ी सीख, सिर्फ बिस्तक पर।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
2: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
3: सोच बदलो और बैंक भी।
4: वी आर ओवर जिमी।
5: हे, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपीएफ संभाल लेगा, आप अपना देख लो।
6: हमें स्वस्थ रखने वाली सारी चीजें ज्यादातर शुद्ध होनी चाहिए, सूर्य की किरणें और स्वच्छ पानी। वैसा ही है लाइन अरेबियन डेट्स और अब लाइन लाइना डेट्स। इसमें फाइबर्स और विटामिन्स भी कुदरती हैं, जो देता है स्वास्थ्य भी कुदरती।
7: लाइन लाइना प्रीमियम डेट्स।
8: We must rise, we must fight. दरअसल ईरान की सड़कों पर ऐसे पोस्टर तो आपने देखे होंगे, लेकिन आपको याद होगा कि ये सिंबॉलिक जो हाथ आप देख रहे हैं, ये पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई का, लेकिन अब ये हाथ जो है जिसमें उनकी अंगूठी हमेशा नजर आती थी, जो एक पावर का साइन था, वो अब ईरान में खासतौर पर तेहरान के इन इलाकों में नजर आएगा, आजादी स्क्वायर पर नजर आएगा। आप देखते रहिए आज तक।

0: बारिश की बूंदें, सड़कों पर समंदर, घुटनों तक पानी, रेंगती गाड़ियां और परेशान लोग। दिल्ली एनसीआर में मानसून की पहली तेज बारिश ने राहत से ज्यादा मुसीबत की तस्वीर पेश कर दी। पहली बारिश में ही दिल्ली एनसीआर वालों की पहली परीक्षा है। सबसे बुरा हाल तो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का रहा। बरसात की एक रात ने इस एक्सप्रेसवे को दरिया बना दिया। NH9 पर घुटने तक पानी जमा हो गया। गाड़ियां डूब डूब कर चलने लगी। एनसीआर में सबसे ज्यादा बारिश गाजियाबाद में हुई, तो इसकी वानगी भी सड़कों, गलियों और कॉलोनियों में दिखने लगी। गाजियाबाद के वसुंधरा में एक कार टाटा पंच गड्ढे में समा गई। अटल चौक के पास सड़क का एक हिस्सा धंस गया। सड़क किनारे चल रहे एक बिल्डिंग के निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी खिसकने से कटान हो गया, जिससे एक टाटा पंच कार गड्ढे में धंस गई। गाजियाबाद का विजयनगर भी लबालब है। हर तरफ पानी ही पानी है। नोएडा में भी हालात अलग नहीं थे। कई सेक्टरों की सड़कें पानी में डूब गईं। ऑफिस जाने वाले लोग हों या स्कूल से लौटते बच्चे, हर किसी को जल भराव और ट्रैफिक की मार झेलनी पड़ी। निचले इलाकों में पानी भरने से कई जगह वाहनों की रफ्तार थम गई। दिल्ली में सुबह से हुई तेज बारिश के बाद कई इलाके जलमग्न हो गए। संसद से कुछ ही दूरी पर सांसदों के सरकारी आवास के सामने सड़कें पानी पानी हो गईं। जहां रोज VIP मूवमेंट रहता है, वहीं बारिश का पानी घंटों तक जमा रहा। दिल्ली में इस बार हालात थोड़े बेहतर रहे। मिंटो रोड, जो हर बारिश में दरिया बन जाता था, इस बार सब ठीक रहा। दिल्ली सरकार भी कंट्रोल रूम से नजर बनाए हुए है। ईस्ट ऑफ कैलाश में नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट के सामने भारी भरकम पेड़ सड़क पर गिर पड़ा। पेड़ गिरते ही ट्रैफिक पूरी तरह थम गया। दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और लोगों को घंटों परेशानी झेलनी पड़ी। नगर निगम और संबंधित एजेंसियों की टीमों ने पेड़ हटाने का काम शुरू किया, तब जाकर यातायात धीरे धीरे सामान्य हो सका। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में दिल्ली NCR में और बारिश की संभावना जताई है। यानी अगर यही हाल रहा तो आने वाले दिनों में जल भराव और ट्रैफिक की समस्या और गंभीर हो सकती है। गाजियाबाद से पीयूष मिश्रा के साथ अमित भारद्वाज, दिल्ली आज तक।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार।
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। Acajay, the number one Korean skincare brand, now in India.

0: मेलबर्न में पीएम मोदी का ब्लॉकबस्टर शो, अपने संबोधन में गो मोर अचीव मोर का दिया विकास मंत्र, कहा आज चिप से शिप तक बना रहा है भारत। ममता को फिर लगा झटका, बीजेपी में शामिल हुए पूर्व टीएमसी राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर, सुष्मिता देव और प्रकाश बराय को उधर सीएम शुभेंदु से मिली शताब्दी रॉय। अखिलेश पर योगी का करारा हमला, कहा 2017 से पहले की सरकारों ने कब्रिस्तान बनाने में खर्च किए पैसे, मंत्री ओपी राजभर बोले इस जन्म में सीएम नहीं बनेंगे अखिलेश। दिल्ली एनसीआर में जानलेवा हुई बारिश, बादली जलजमाव में डूबने से 7 साल के बच्चे की मौत, गाजियाबाद में बरसात में जमे पानी में 3 साल की बच्ची ने तोड़ा दम। ईरान के 90 ठिकानों पर हमले के बाद ट्रंप की धमकी, कहा 20 गुना ताकत से करेंगे हमला, तेहरान ने कुवैत और बहरीन में अमेरिकी ठिकानों को बनाया निशान।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से, इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। एक्जे द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया।
0: नमस्कार, विशेष में आपका स्वागत है, आपके साथ मैं नेहा बाथम। आज बात करेंगे दिल्ली एनसीआर में हुई जबरदस्त बारिश की, क्योंकि मानसून अभी अभी आया है और पहले टेस्ट में एनसीआर फेल हो चुका है। ये बात सही है कि बारिश ज्यादा हुई, लेकिन बारिश ने सिस्टम को पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया। जगह जगह भरा हुआ पानी, जाम लगना, गाड़ियां फंसी, पेड़ गिरे, मिट्टी धस गई, ये सब कुछ हुआ। लेकिन शाम होते होते खबर आई कि दिल्ली और गाजियाबाद में 2 बच्चों की जान चली गई। गाजियाबाद में 1 3 साल की बच्ची की जान गई है और दिल्ली में 1 7 साल का बच्चा सिस्टम की वजह से मारा गया।

0: दिल्ली एनसीआर में करीब 12 घंटे से लगातार बारिश हुई और सब कुछ डूब गया। नोएडा, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, दिल्ली, गुरुग्राम बुरा हाल। सड़कें डूब गईं, गलियां डूब गईं, नेशनल हाईवे डूब गए, पानी ही पानी। लोगों की गाड़ियां खराब हो गईं, पेड़ उखड़ गए, जमीन धंस गई, उसमें गाड़ियां समा गईं। और सवाल है कि अभी तो मानसून की शुरुआत है, अभी तो पहली बारिश हुई है और उसी में सिस्टम पूरी तरह से एक्सपोज हो गया। अभी तो ये बारिश सितंबर तक चलनी है। सबसे पहले आपको नोएडा का हाल दिखाते हैं। यहाँ कल से ही बारिश हो रही है और आज सुबह से तो लगातार तेज बारिश हुई। नतीजा ये हुआ कि नोएडा के कई सेक्टरों में जल भराव हो गया। सेक्टरों के अंदर ही नहीं बल्कि मेन सड़कों पर भी पानी भर गया। जैसे कि ये बॉटनिकल गार्डन का इलाका है, ये मेन नोएडा है और यह है सेक्टर 18 की तरफ जाने वाली सड़क, पूरी तरह से पानी में डूबी नजर आ रही है।
1: मैं इस वक्त नोएडा में हूं और आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों के लिए ये बारिश आफत बन चुकी है। नोएडा में ये जो इलाका आप देख रहे हैं, बोटानिकल गार्डन से जीआईपी की तरफ बढ़ते हैं तो ये सड़क पड़ती है और यहाँ पर आप देखिए कि किस तरह से पानी भर गया है। 1.5 से 2 फीट तक यहाँ पर पानी है। सड़कें हो या गाड़ियाँ हो, इन सबको यहाँ से निकलने में मशक्कत करनी पड़ रही है। कई बाइक वालों की बाइक्स यहाँ पर ख़राब हो रही है। कुछ लोगों को पैदल इस पानी में से चलकर जाना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पर पानी का कोई निकास नहीं है। ये जो पूरा इलाका है ये बनाया गया है इस नाले के पास और आप देखिए कि नाला और सड़क के बीच में पानी के लिए कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा। ये जो नाला आपको दिखाई दे रहा है, ये जो पूरी ड्रेनेज है ये पूरी भर चुकी है।
0: बारिश रुकी तो हादसे शुरू हो गए। जगह जगह जमीन धंसने की खबरें आ रही हैं। ये ग्रेटर नोएडा वेस्ट है। यहाँ एक मॉल बन रहा था लंदन मार्ट के नाम से। यहाँ भारी बारिश के बाद मॉल की बाउंड्री वॉल ही गिर गई क्योंकि जमीन धंस गई थी।
2: इस वक्त हमारी मौजूदगी है ग्रेटर नोएडा में श्री राधा स्काई गार्डन के ठीक सामने। ये वो इलाका है जिसे साफ सुथरा सुरक्षित इलाका माना जाता है, लेकिन यहाँ पर आप तस्वीरें देख सकते हैं कि कैसे पिछले रात से लगातार हो रही बारिश के कारण यहाँ की जो सड़क है वो धस चुकी है। तस्वीरों में आप देखिए कि यहाँ पर एक अंडर कंस्ट्रक्शन मॉल है जिसका कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जिसको लेकर काम लगातार चल रहा है। एक तरफ जहाँ पर काम चल रहा है वहीं दूसरी ओर जो सड़क है, अमूमन इस जगह पर छोटी छोटी दुकानें लगी हुई हमने देखी हैं, लेकिन यहाँ पर अब रोड जो है वो धस चुकी है। पिछले 12 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है और लगातार बारिश हो रही है और मिट्टी जो है वो गीली होने के कारण ना, जो मिट्टी की पकड़ है वो कमजोर होने के कारण जो सड़क है वो धस चुकी है। गनीमत ये रही कि उस वक्त यहाँ पर कोई गाड़ी कोई इंसान मौजूद नहीं था।
0: बारिश इतनी ज्यादा हुई कि मिट्टी कमजोर हो गई जिसकी वजह से कई जगह पेड़ गिरने की भी खबरें हैं। ये नोएडा का सेक्टर 105 का इलाका है। यहाँ मेन रोड पर पेड़ गिर गया जिसकी वजह से कई घंटों तक एक तरफ की सड़क बंद करनी पड़ी। आमतौर पर नोएडा ग्रेटर नोएडा में पानी की निकासी का सिस्टम दिल्ली, गाजियाबाद और गुरुग्राम से ज्यादा बेहतर माना जाता है, लेकिन लगता है कि इस बार सिस्टम ने अपना काम किया ही नहीं। मानसून आने से पहले नालों की साफ सफाई क्यों नहीं हुई, ये सवाल उठ रहा है। ये नोएडा का सेक्टर 62 है। सड़क पर भयंकर पानी भर गया। एक तरफ पानी कम है तो गाड़ियां उधर से ही गुजर रही हैं। सड़कों पर बहुत सी गाड़ियां खराब भी हो गई।
3: हमारी मौजूदगी नोएडा के सेक्टर 62 और 63 की मेन रोड पर है। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे सैकड़ों की तादाद में यहाँ पे गाड़ियां इस घुटनों से ज्यादा भरे हुए पानी में से होके गुजर रही हैं। गाड़ियां जो इस पानी की वजह से खराब भी हो रही हैं। जो ऑटो है इस ऑटो में भी लोग जो है बैठे हुए थे, ऑटो खराब हो गया, उसके बाद यहाँ पे जाम की स्थिति बन गई है। कहाँ से आ रहे हैं आप? दिल्ली से आ रहे हैं। तो आपकी स्कूटी कितनी देर पहले खराब हुई है?
0: नोएडा ही नहीं, बगल में गाजियाबाद का भी बुरा हाल। ये गाजियाबाद का पॉश इलाका है इंदिरापुरम, जो इस वक्त वेनिस बना हुआ है। हर तरफ पानी भरा है। शायद पानी की निकासी का कोई सिस्टम नहीं है, और सिस्टम है भी तो वो काम नहीं कर रहा।
4: अगर किसी को कोई प्लान कर रहा था ना छुट्टियों में वेनिस जाने के लिए, तो उनको एनसीआर वालों को तो नहीं जाना, आ सकते इंदिरापुरम। ये पूरा वेनिस में ही तब्दील हो चुका है। पानी बस थोड़ा मटमैला है, बस नाले के ढक्कन जो है खुले हुए हैं कई जगहों पर। बस इतना हुआ है कि नालों की सफाई नहीं हुई है, मानसून की तैयारी नहीं है, बाकी यहाँ सब कुछ ठीक है। तो जिस सड़क पर जा रहा ये पूरा इलाका, आगे तो आप देखेंगे कमर तक पानी है, गाड़ियां ब्रेक डाउन हुई हैं। सोसाइटी में थोड़ी देर पहले ऐसा आलम था, अब जैसे बारिश देखिए, भगवान मेहरबान इतना है कि बारिश रुक गई है, वरना यहां पर थोड़ी देर में ओला उबर वाले अपनी नाव चला सकते हैं। खासकर ये आसपास रिहायशी इलाका गगनचुंबी ही मारते हैं, 10 मंजिला 12 मंजिला इमारत है, लेकिन आगे जाने के बाद इस सड़क पर अब ऐसी स्थिति है कि कई सारी स्कूल की गाड़ियां, जो छोटे छोटे टेम्पो वाले, उन्हें गाइड करना पड़ा, यहां मत आइए, मुश्किल हो जाएगी। और जैसे ही सड़क, ये दोनों लेन है, ये पूरी तरह से जलमग्न है, गाड़ियां ठप पड़ेंगी, आने जाने वालों के लिए खतरा। और सड़कों पर सीवर लाइन पर अगर कहीं मैन होल का ढक्कन खिला तो खुल गया अगर, तो समझिए कि आदमी गया, उसके जीवन से हाथ धो बैठेगा।
0: गाजियाबाद का ही एक और इलाका है क्रॉसिंग रिपब्लिक, यहाँ तो और बुरा हाल है। यहाँ तो बगल से बह रहे खुले नाले का पानी मेन सड़क पर आ गया है, सड़क के दोनों तरफ पानी भर गया है।
2: मैं इस वक्त जहाँ मौजूद हूँ, ये वो इलाका है जो एक क्लासिक एग्जांपल है सरकार के फेलियर का, अथॉरिटीज के फेलियर का। मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ, देखिए ये मेरे दाईं ओर ये खुला नाला है, और लगातार बारिश होने की वजह से जो है इस नाले का पानी अब ओवरफ्लो कर रहा है, यानी ये पानी लगातार अब सड़कों पर आ रहा है। और ये देखिए नाला है जो क्रॉसिंग रिपब्लिक है, जो पूरी तरह से खुला हुआ है, इस नाले में पानी भर चुका है, और ये पानी यहां से निकल के मेरे सहयोगी मनीष पिथोड़ी मेरे साथ आगे बढ़ेंगे, ये नाले का पानी, अब देखिए नाले का पानी यहां से निकल के ओवरफ्लो होकर सड़कों पर आ गया है, और सड़कों पर आने की वजह से यहाँ पर जल भराव हो गया। और ये जो पानी आपको दिख रहा है, ये कोई बारिश का पानी नहीं है, ये नाले का पानी है, और बारिश का पानी इसमें मिलने की वजह से पानी का लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है। और एक तरफ जो गाड़ी सामने से आ रही है, ये एक तरफ का रास्ता है, और दूसरी तरफ का रास्ता आप देखिए, गाड़ी डूबती हुई यहां से निकल रही है।
0: और ये दिल्ली को मेरठ से कनेक्ट करने वाला नेशनल हाईवे 24 है, कई लेन का हाईवे है। जब बना था तब इसके टॉप क्लास कंस्ट्रक्शन का दावा किया गया था, हाल देख लीजिए, ये मेन हाईवे है लेकिन पानी ही पानी भरा है, पूरा हाईवे तालाब बन गया है, जगह जगह गाड़ियां खराब हैं, बाइक्स खराब हो गई।
2: इस वक्त हमारी मौजूदगी है नेशनल हाईवे 24 पर, ये वो हाईवे है जो अक्षरधाम से शुरू होकर मेरठ से होता हुआ हरिद्वार और फिर उत्तराखंड की तरफ जाता है। अब इस नेशनल हाईवे 24 की स्थिति आप देख सकते हैं, कैसे यहाँ पर जो लोग हैं वो काफी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि पानी जो है वो घुटनों से ऊपर तक भर चुका है। इस पानी के भरने के कारण यहाँ पर जो जाम है, ट्रैफिक जाम है, वो यहाँ पर देखा जा सकता है।
5: तो दिल्ली में आज पिछले 16 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। दिल्ली में आज ही यानी कि 9 जुलाई को 72.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, और इतनी बारिश में अक्सर दिल्ली के कई बड़े बड़े इलाकों के डूबने की खबरें आती है, लेकिन इस बार दिल्ली सरकार ने दावा कर दिया कि उन्होंने पहले ही दिल्ली के 45 ऐसे इलाकों की पहचान कर ली थी जो डूबा करते थे, और इस बार उन्हें डूबने से बचा लिया गया। दिल्ली सरकार के दावों में कितना दम है, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए।
0: दिल्ली में भी जमकर बारिश हुई, आज दोपहर तक लगातार बारिश हुई, जिसकी वजह से जगह जगह पानी तो भरा लेकिन बहुत सी जगहों पर निकल भी गए। खास तौर पर दिल्ली के वो इलाके जहां हर मॉनसून में सबसे पहले पानी भरता था, जैसे मिंटो ब्रिज या आईटीओ का इलाका, लेकिन इस बार वहां पानी नहीं दिख रहा। दिल्ली सरकार तो दावा कर रही है कि दिल्ली में जो 45 बदनाम हॉटस्पॉट थे जहां हर मॉनसून में पानी भर जाता था, इस बार कहीं पानी नहीं भरा है। दिल्ली सरकार का दावा है कि उन्होंने मॉनसून से पहले ही इन हॉटस्पॉट्स का इलाज किया, समस्या को समझा, और नतीजा ये है कि यहां इतनी ज्यादा बारिश होने के बाद भी पानी नहीं भरा है।
6: हमारी सरकार बनने से पहले हम भी ये सोचते थे कि मिंटो ब्रिज में पानी भरने की जो समस्या है, बस के डूबने की समस्या है, वो कैसे ठीक हो सकती है। जब हम वहां पर गए, हमारी मुख्यमंत्री जी वहां पर गई, मैं वहां पे कई बार गया, हमने इंजीनियर के साथ में बैठ के उसका सॉल्यूशन निकाला, वहां पे ज्यादा पंप लगाए, आगे बड़ी ड्रेन डाली, उसका सॉल्यूशन निकल गया। मेरे पीछे मिंटो ब्रिज है, पिछले 24 घंटे में 100 mm की बारिश हुई है, उसके बाद में भी पानी नहीं भरा, मिंटो ब्रिज नहीं डूबा। और उसकी ये आपको द्वारका अंडरपास दिखाई दे रहा है, ये आपको जखीरा अंडरपास दिखाई दे रहा है, जितने 45 ऐसी लोकेशन थी जो सारी पानी से डूबी रहती थी,
7: हॉटस्पॉट जो थे,
6: जो सारे हॉटस्पॉट थे, आपको केवल 2-3 जगह पे ऐसे जहाँ पे पानी है, और वहां पे हमारा जो यहाँ का कंट्रोल रूम का ए इंचार्ज है वो तुरंत वहां के कंसर्न इंजीनियर को फोन करके बताता है, एक्शन होता है, उसकी रिपोर्ट ली जाती है, और हमारे चाहे हमारे सेक्रेटरी हो, चीफ इंजीनियर हो, वो एक एक पॉइंट के ऊपर में खुद जाके उसको देखते हैं। तो आज दिल्ली की जनता इतना बड़ा फर्क को देख पा रही है और वो महसूस कर पा रही है कि जहां पे घंटों घंटों पानी भरा रहता था, आज वहां पे 15 मिनट में पानी निकल जाता है।
0: आज तक की टीम ने इन जगहों पर जाकर रियलिटी चेक किया कि दिल्ली सरकार के इन दावों में कितना दम है। सबसे पहले आज तक की टीम पहुंची आईटीओ ब्रिज, जहां मॉनसून में बहुत ज्यादा पानी भर जाता था, लेकिन अब ये पूरी तरह से साफ नजर आ रहा है, पानी कहीं नहीं दिखा।
7: कि अमूमन जहां हम खड़े हैं, ये आईटीओ का ब्रिज है, नीचे जो आप सड़कें देख रहे हैं, जरा सी बारिश के बाद इन सड़कों पर जल भराव होता था, वाटर लॉगिंग होती थी और उसके बाद गाड़ियों का चलना दूभर हो जाता था। लेकिन इस बार आप देखिए कि तस्वीर कैसे पूरी तरह से बदल गई है। इस बार भी रात से बारिश हो रही है, लेकिन इस सड़क पर आपको जरा सा भी पानी दिखाई नहीं पड़ेगा। वाटर लॉगिंग यहाँ पर इस बार नहीं हुई है, जल भराव इस पूरी सड़क पर आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, जो कि बहुत रेयर है। पिछले कई सालों से लगातार दिल्ली एनसीआर वाले बस यही दुआ करते थे कि इस इलाके में पानी ना भरे, क्योंकि जरा सी बारिश के बाद ही यहाँ पर वाटर लॉगिंग हो जाया करती थी।
0: लोग भी बता रहे हैं कि पहले इस इलाके में ज्यादा पानी भरता था, जिसकी वजह से जाम लगता था, लोगों की गाड़ियां खराब होती थी, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ।
7: पहले यहाँ पानी भरता था रोड पे?
8: पहले भरता था,
7: इस बार
8: अभी तो नहीं भरा।
7: अभी तो नहीं भरा?
8: नहीं।
7: पहले भी थोड़ी बारिश में ही भरता था या
8: नहीं? कहा इतनी तेज बारिश में तो पानी भर जाता था।
7: उसके बाद दिक्कत कितनी होती थी आप लोग को?
8: बहुत दिक्कत होती थी, वहाँ पर भी भर जाता था।
7: इस बार सही लग रहा है? आईटीओ ब्रिज के नीचे खड़े हैं हम लोग। पहले जरा सी बारिश में ये रास्ता भर जाता था, यहाँ पर पानी बहुत होता था। इस बार है?
9: नहीं, इस बार नहीं है।
7: क्या बदलाव लग रहा है आपको?
9: बदलाव हुआ है पहले से, और पानी अब भर नहीं रहा है यहाँ पे। पहले ज्यादा पानी भर जाता था।
7: पहले भरता था?
9: हाँ, पहले भरता था।
7: तो इस बार जब भरता था पानी, तो आपको दिक्कत क्या होती थी फिर?
9: पानी भर जाता था तो गाड़ियों की दिक्कत होती थी, बंद हो जाती थी गाड़ियाँ, सिलेंसर में पानी आ जाता था, क्या नाम है, पलक पे पानी आ जाता था, पानी उड़ता था गाड़ी की उससे।
5: ब्रेकआउट लैब बने रही हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।
10: When your business grows, communication can get messy fast. Calls come in, texts stack up, and suddenly your team is working in different places without the full picture. That's where Quo comes in. Quo gives your business one shared number, so every call and text lives in one place. Your whole team can see the entire history. Everything stays connected, and nothing falls through the cracks. Money is on the line. Always say hello with Quo. Get started free, plus get 20% off your first 6 months at quo.com/tunein. That's quo.com/tunein.
11: Music for every mood lives on TuneIn. Whether you want to relax, focus, or turn things up, you'll find the right station. Hear from the top stations, like today's hits, classic rock, coffeehouse, and more. Stream nonstop music from stations you know and new favorites waiting to be discovered. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
12: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
13: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
14: सोच बदलो और बैंक भी।
15: वी आर ओवर जिमी।
16: हे, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे, गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपीएफ संभाल लेगा, आप अपना देख लो।

0: हम लोगों का ये निश्चय है कि इस प्रकार का अपराध जिन लोगों ने किया है उनकी जांच होनी चाहिए, उनको दंड मिलना चाहिए।
1: हनुमान जी निर्णय करेंगे, निश्चित बात है, छोड़ेंगे नहीं।
2: वहाँ पे भगवान के दरबार में पहले सही लोगों को बैठा हो ताकि वहाँ से फिर से विश्वास की बहाली हो।
3: रामधन में सेंधमारी हुई तो संतों साधुओं का आक्रोश स्वाभाविक था। रामधन की लूट हुई तो आरोपियों के हिसाब किताब की आवाज बुलंद होना भी स्वाभाविक था। स्वाभाविक था यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का ये कहना कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा। शर्मसार कर देने वाले चोरी के अपराध पर गुस्सा, क्षोभ, आक्रोश सब कुछ स्वाभाविक था। लेकिन अब जो हो रहा है वो स्वाभाविक नहीं है। चंपत राय पर अब तक FIR दर्ज नहीं हुई है। SIT रिपोर्ट में नाम होने के बाद भी अनिल मिश्रा पर एक्शन नहीं हुआ है और गोपाल राव अभी तक ट्रस्ट में बने हुए हैं और डंके की चोट पर कह रहे हैं कि नहीं हटेंगे।
4: नहीं, किसी को पार बाहर नहीं किया है। नहीं नहीं, गलत है, गलत संदेश है।
5: अरे गलत इस तरीके से आप
4: बैठिए, बंद कराइए,
5: मंदिर में आप रहेंगे?
4: हाँ रहेंगे,
5: रहेंगे।
3: अदना से अदना इंसान से पूछ लीजिए तो यही कहेगा कि अपराध हुआ है तो मुकदमा होना चाहिए, अपराधियों को पद से हटना चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। लेकिन अयोध्या में गंगा उल्टी बहाने की कोशिश हो रही है, छोटी मछलियों को निगलने की कोशिश हो रही है, बड़े मगरमच्छों पर हाथ डालने की हिम्मत नहीं हो रही। जैसे कि बुधवार को 3 आरोपियों अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, करुणेश पांडे को रिमांड में लेकर पुलिस भीखापुर में आम के बाग में ले जाकर पूछताछ करती है। आरोप है कि यहीं चढ़ावा चोरी की रकम की बंदरबांट होती थी। खबर है कि पूछताछ में अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा और करुणेश पांडे ने कई और राज उगले हैं। आरोपियों ने बताया कि चोरी की रकम अपने करीबियों और रिश्तेदारों को भेजते थे, उनसे अपने खातों में रकम ट्रांसफर करवाते थे ताकि रकम का स्रोत छिपा रहे और शक ना हो। बैंक डिटेल से इसकी पुष्टि भी हुई है। खबर ये भी है कि आरोपियों ने माना है कि उन्होंने चोरी की और टिन्नू और गणना इंचार्ज सुभाष श्रीवास्तव की मिलीभगत होने से रकम पार करने में कभी कोई दिक्कत ही नहीं। आरोपियों ने यह भी माना कि उन्हें पता था कि पकड़े नहीं जाएंगे, इसलिए वो बेफिक्री से चोरी करते थे। कोशिश होती थी कि एक बार में ज्यादा से ज्यादा रकम बाहर ले जाएं। तो राम मंदिर में चोरी का खुला खेल चल रहा था, लेकिन अब भी बड़ा सवाल ये है कि छोटे खिलाड़ी तो दबोच लिए गए, लेकिन बड़े खिलाड़ियों पर एक्शन कब होगा? आशीष श्रीवास्तव के साथ समर्थ श्रीवास्तव, अयोध्या आज तक।

0: presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो Accuray, the number one Korean skincare brand, now in India.
0: Durable pipes, fittings and tanks, a complete range of sanitary solutions.
2: Feeling a bit nostalgic for the 90s? TuneIn has got you covered with 90s hits. Jam out to your favorite artists from the 90s, like pop stars, NSYNC, and Britney Spears. Or rock artists, like Sublime and Third Eye Blind. Reminisce about the good old days of the 90s. Just search 90s hits or ask your device to play 90s hits on TuneIn.
3: Hey, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे. गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपीएफ संभाल लेगा. आप अपना देख लो.
4: बीजेपी के लोग किसी भी सीमा तक झूठा प्रचार कर सकते हैं.
5: समाजवादी पार्टी के लोगों को तो ठेके पट्टे से ही फुर्सत नहीं है.
6: अयोध्या में चढ़ावा चोरी क्या हुई. उत्तर प्रदेश में बीजेपी की चुनावी राजनीति के पौबारा हो गए. महीने भर में कांग्रेस और समाजवादियों ने जितनी बार राम का नाम नहीं लिया होगा उतनी बार वक्त बाबर कब्रिस्तान हो चुका है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ धुआंधार रैलियां और कार्यक्रम कर रहे हैं. सैकड़ों करोड़ की योजनाओं की सौगात जिले जिले दी जा रही है. और इसके साथ ही विपक्ष पर मुस्लिम परस्त मुगल परस्त मौका परस्त होने की सियासी बौछार चल रही है. एक तरफ समूचा विपक्ष राम मंदिर में चोरी को लेकर हमलावर था तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वक्फ में घोटालों का मुद्दा उठाया और अब उसी लाइन को यूपी के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ने और आगे बढ़ा दिया.
7: उत्तर प्रदेश पे भी वक्फ बोर्ड सुन्नी वक्फ बोर्ड जो है इस समय वर्तमान में रिक्त है. आने वाले दिनों

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो एकजे द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया।

0: 30,000 भारतीयों को बीच मेलबर्न में बोले पीएम मोदी, शिप से चिप तक बना रहा है भारत। ग्रो मोर अचीव मोर का दिया नारा, कहा रक्षा, अंतरिक्ष और यूरेनियम डील पर मुहर। हार के बाहर टीएमसी में जारी है लगातार बिखराव। बीजेपी में शामिल हुए पूर्व राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर, सुष्मिता देव और प्रकाश बराइक, शताब्दी रॉय की सीएम शुभेंदु से मुलाकात। यूपी में चढ़ा चुनावी तापमान, योगी का आरोप, 2017 से पहले कब्रिस्तानों पर पैसा खर्च करती थी एसपी सरकार। ओपी राजभर ने फिर अखिलेश पर किया बड़ा हमला। महाराष्ट्र और गुजरात समेत उत्तर भारत में जोरदार बारिश से परेशानी, दिल्ली एनसीआर भी हुआ पानी पानी। बादली में डूबने से 7 साल के बच्चे की मौत, गाजियाबाद में भी एक बच्चे की जान गई। और अमेरिकी हमले के बीच आज खामेनेई का अंतिम संस्कार। ट्रंप ने फिर से दी धमकी, कहा 20 गुना ताकत से करेंगे अटैक, बदले में अमेरिकी ठिकानों पर तेहरान ने बरसाए बम।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। Akajay, the number one Korean skincare brand, now in India.

आज हम आपको उस मुजरिम से मिलाने वाले हैं जिसका नाम हर साल जून से सितंबर के बीच सबसे ज्यादा हर राज्य में हर दल की सरकार लेती है। वो मुजरिम जिसे कटघरे में खड़ा करके बहुत से मुख्यमंत्री, मंत्री, मेयर, पार्षद से लेकर प्रधान तक की कुर्सी बच जाती है। इस मुजरिम का नाम है मॉनसून। इस मुजरिम का नाम है बादल और बारिश, जिसके नाम पर इन दिनों खूब जवाबदेही का पर्चा फाड़ा जा रहा है, जिसे पुल गिराने, सड़क धंसाने का गुनहगार बताया जा रहा है। क्योंकि किसी भी राज्य में जाकर अगर आपने इस वक्त पूछा कि ये सड़क जो महीने, छह महीने या साल भर पहले बनी, वो एक बारिश में कैसे धस गई, तुरंत जवाब मिलता है क्या करें, इतनी बारिश जो हो रही। यहां तक कि सैकड़ों करोड़ के प्रोजेक्ट की पोल भी जब इस मॉनसून में खुल रही है तो कोई इंजीनियर, कोई ठेकेदार, कोई कंपनी, कोई सरकार नहीं, केवल बादल और बारिश को जिम्मेदार बताकर अपना चेहरा बचाया जा रहा है। इसीलिए आज हमने कटघरे में बादल और बारिश को खड़ा कर दिया है।

बादल और बारिश को आज मान लीजिए यही मुजरिम है, जो सजा देनी हो इन्हीं को दीजिए, जो भी ट्वीट पोस्ट रील इनके खिलाफ बनानी हो बना लीजिए, बाकी पार्षद मेयर चेयरमैन विधायक सांसद मंत्री मुख्यमंत्री सबको बाइज्जत बरी कर दीजिए, कहे कि कोई मानता ही नहीं। मानते होते तो बताइए क्या गाजियाबाद में मानेंगे यहाँ के पार्षद से लेकर विधायक तक कि ये पंचकार गड्ढे में जाकर पार्क नहीं की गई, बल्कि बारिश के बीच सड़क धंसने से इस कार ने समाधि ले ली। कार अकेली नहीं आई, इसके साथ स्कूटी भी गड्ढे में आ गई।

0: जनता यहाँ की बोलने लगी कि गड़बड़ी तो सरकारी है। हमने कहा चुप रहो, अभी अफसर बता देंगे कि जनता को बस बहुत बोलने की बीमारी है। सड़क ही तो धंसी है, कार स्कूटी ही तो गिरी है, ट्रेन बुलवा कर निकाल दिया। इसी बहाने कार और स्कूटी का आज कुछ तूफानी करते हैं वाला मूड भी पूरा हो गया। अब इतने से गड्ढे के लिए क्या सरकारी लापरवाही को जिम्मेदार ठहराओगे? वो तो ये भी कह सकते हैं कि कम से कम सड़क तो दी थी, वरना सड़क ही ना होती तो धसती कैसे।
1: अधिकारी दावा करते हैं कि तैयारी पूरी कर ली गई है, इस बार पानी नहीं भरेगा।
2: तैयारी आप देख रहे हैं खुद कितना पानी भरा हुआ है। अधिकारी तो बोलते ही हैं, लेकिन आम जनता देखती है ना कि जो चीजें वो फेस कर रही है, प्रॉब्लम वो फेस करते हैं।
0: वैसे बादल और बारिश गुनहगार उत्तराखंड में भी है। टिहरी गढ़वाल का वीडियो है, राष्ट्रीय राजमार्ग 707 ए पर भूस्खलन हुआ। दो दुकान मानो खुद ही काउंटडाउन लगाकर खाई में कूद गई। अब इसके लिए कौन जिम्मेदार, बादल बारिश या पहाड़ों को कमजोर कर देने वाली नीति? फिलहाल ठीक रहा बादल बारिश पर फोड़िए। तीसरे राज्य चलिए, महाराष्ट्र का नांदेड़ है। SGGS कॉलेज के सामने पुल का एक हिस्सा गिर गया। ये फ्लाईओवर बस एक साल पहले ही बना। वैसे इस पुल का हिस्सा ढहने के लिए बादल और बारिश मुजरिम बनाने से बाल बाल बचे, क्योंकि इंजीनियर ने नया मुजरिम खोज दिया। दावा कर दिया कि नांदेड़ में देर रात भूकंप का हल्का झटका आया, उसी वजह से ये पुल का हिस्सा गिर गया। उत्तराखंड का एक और वीडियो आया है, जहाँ के मुजरिम बादल बारिश ठहराए जाने हैं। हरिद्वार नजीबाबाद नेशनल हाईवे में चिड़ियापुर के पास साइड से धंस गया। बताया जा रहा है कि जो पुलिया धंसी वो एक महीना पहले ही बनी। इसका मतलब समझे, कौन कितने दिन तक धंसना प्रूफ है कुछ नहीं पता। महीने 15 दिन में भी सड़क धंस जाए तो क्या हुआ, कोई बड़ा इंजीनियर ठेकेदार थोड़ी ना नपेगा। अरे बादल बारिश के नाम पर पर्ची फटेगी। बाकी जनता का क्या है, उसे तो घर तक पानी में डुबा दिया है। ना ना, सरकार या सरकारी व्यवस्था ने नहीं, बादल और बारिश। मुंबई से सटे पालघर के वसई विरार में कई दिन बीतने को आ रहे हैं जब घरों में पानी भरा पड़ा। सरकार तो कह ही सकती है इतनी बारिश हो गई हम क्या करें, लेकिन ये जनता कहां मानती है, देखिए ना सवाल उठा देती।
3: 2018 से हम सहन तो कर ही रहे, पर 2026 में ये जो हम लोग ने देखे ना, ये चीज, ये वर्स्ट देखी। मैंने टॉयलेट तक इधर साफ करी बैठ के, पूरा टॉयलेट ऊपर आ गया था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना कि कोई तो जवाबदार, मतलब या तो गटर साफ नहीं होती है, ड्रेनेज प्रॉब्लम नहीं है।
0: जनता के पास सवाल के सिवाय कुछ बचता नहीं। जैसे गुरुग्राम की जनता, जिसने लाखों रुपए लगाकर एक फ्लैट लिया, फ्लैट भी EMI पर चल रहा होगा, लेकिन देखिए बालकनी ढह गई। इम्पीरिया स्फोरा सोसाइटी में यह हादसा हुआ। गनीमत बस ये रही कि उस वक्त ऊपर या नीचे बालकनी में कोई था नहीं। जिम्मेदार बिल्डर है, सोसाइटी के देख रेख करने वाले लोग, लेकिन यहाँ भी पता है ना, बादल और बारिश को जिम्मेदार ठहरा कर कसूरवार बच जाएंगे। जनता को भगवान भरोसे छोड़ने वाली रवायत का हाल ये है कि आगरा के कमला नगर इलाके में बारिश से सड़क धस जाती है। देखिए कितना बड़ा गड्ढा हो जाता है, कई स्कूल की गाड़ी यहाँ पर चपेट में आने से बचती है। गड्ढा इतना बड़ा था कि इसमें छोटी गाड़ी आ जाती, बस बच्चे बाल बाल इसलिए बच गए क्योंकि जब यहाँ से स्कूल की गाड़ियाँ जाने वाली थी उससे पहले ही सड़क बारिश में धस गई, तो लोगों ने यहाँ रास्ता बंद कर दिया, वरना कोई बड़ा हादसा आगरा में हो जाता।
4: दिल्ली NCR यानी दिल्ली के साथ उत्तर प्रदेश हरियाणा के सीमावर्ती इलाके, जहां आकर देश भर से लोग बसते हैं इस भरोसे के साथ कि राजधानी और उसके आसपास विकास की रोशनी है। लेकिन गाजियाबाद से दुखद खबर आती। गाजियाबाद के विजयनगर थाना क्षेत्र के सर्वोदय नगर इलाके में घर के बाहर गली में भरे पानी में डूबकर 3 साल की बच्ची की जान चली गई। ये बच्ची घर में खेल रही थी, बाहर गली में पानी भरा हुआ था, बच्ची खेलते खेलते उसी पानी में गिर गई, उसकी मौत हो गई। अब परिवार टूटा हुआ है, गुस्से में है, अधिकारी दिलासा देने पहुंच रहे हैं, बारिश को जिम्मेदार बता रहे हैं, लेकिन ये कोई नहीं बता रहा कि गली में 3 फीट तक पानी कैसे भरा, इसका जिम्मेदार कौन।
5: नगर निगम। बच्चा खत्म हो चुके
6: देखिए इतने
7: और है क्या और देखिए
5: और अंदर बहुत गहराई भैया
6: इतने
5: तुम बाहर लग रहा
8: तो पानी निकल गया
9: था
8: ये डूब गया था ये
9: पानी रुक जाता बहुत ज्यादा दिक्कत गर्म पानी रुक जाता
10: विधायक जी के पास
7: हर बार भर देता पानी ये वो गली है जहाँ पूरी गली में पानी भर गया था। बताया जा रहा है कि जिस समय बारिश हो रही थी दोपहर के समय उस समय करीब 3 फुट से ज्यादा पानी यहाँ भरा हुआ था।
8: तो हमारी गली में 3 फुट पानी भर गया। यहाँ एक छोटी बच्ची थी 2.5-3 साल की, वो खेल रही थी और वो गली में पानी में आके डूब गई, किसी को पता नहीं लगी। जब वो तैर के ऊपर आ गई तब उसको देखा गया। ये समस्या हमारी गली में पानी की कई साल से बनी हुई है। इसके लिए हम विभिन्न मंचों पे गए, नगर निगम में कई बार शिकायत कर चुके हैं।
7: कितना पानी भर जाता है
8: ये? 3-3.5 फुट पानी भर जाता है हर बार।
7: भर जाता है
11: कम से कम 3.5 फुट पानी।
7: और कुछ शिकायतें?
11: सर बहुत शिकायत करते हैं, सर बहुत शिकायत। और बताओ कहाँ कहाँ जाए? नगर निगम में गए, पार्षद के पास गए, विधायक के पास गए, और बताओ।
12: हाँ तो 4 फुट हो जाता है।
11: हाँ तो 4 फुट हो जाता है आगे तो।
13: ये बताइए ये कितना बड़ा हादसा है परिवार के लिए, दुखद परिस्थिति है। रीजन ये है कि सब लोगों को नगर निगम में मेल दिया गया है, कोई सेटिस्फेक्शन नहीं है। विधायक जी के यहाँ दिया गया, कोई सेटिस्फेक्शन नहीं है। बुधवार को बोला गया था कि इसका सर्वे होगा, अभी तक कोई बुधवार नहीं आया।
7: सामने वाला मकान है जहाँ ये घटना हुई है, पानी जो मकान के अंदर अभी तक भरा हुआ है। हालांकि जो बताया जा रहा है कि जिस समय घटना हुई थी पूरा 3-3.5 फुट पानी, क्योंकि ये जो घर का रास्ता है काफी नीचे बना हुआ है, तो समझा जा सकता है कि जब गली का पानी ओवरफ्लो होकर इस घर में भरा होगा तो इस गली में कितना पानी रहा होगा। करीब 3.5 फुट से ज्यादा पानी यहाँ रहा होगा। एक गंभीर हादसा यहाँ सामने आया और एक जो 3 वर्षीय बच्ची है उसकी दुखद हादसे में मौत हुई है।
14: पानी भर गया था पूरी गली में, गली में पानी भरता है और ये बेचारी बाहर को गई, नाली में गिर गई और वहीं पे एकदम ये खत्म हो गई। मैं ऐसे हॉस्पिटल लेके गए, उन्होंने ये कि खत्म हो गई।
15: जैसा कि बताया जा रहा है कि डूबने से मृत्यु हुई है। आज पानी ज्यादा बरसा है तो हम लोग जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन सब लोग यहाँ मौके पर आए हैं। परिवार से बातचीत कर चल रही है, जो भी अनमन्य मुआवजा होगा सब इनको विधि के अनुसार दिया जाएगा।
16: आज दिनांक 9/7/2026 को पल्लवी नामक बच्ची जो लगभग 3 साल की थी उसका डूबने से मौत हो गई। इसके बाद परिवारजनों में आक्रोश था, जिसके तहत वो जो भी कार्रवाई चाहते हैं उसे पुलिस द्वारा और करवाया जाएगा और संबंधित विभाग द्वारा भी आश्वासन दिया गया कि जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी वो करवाई जाएगी।
17: परिवार सड़क पर भी आया, समझाया जाएगा पुलिस द्वारा,
16: उनके द्वारा जो भी मांगे हैं या जो भी उनके लिए जो हम लोग कर सकते हैं डिपार्टमेंट के द्वारा कानूनी द्वारा वो सारी कार्रवाई हमारे द्वारा करवाई जाएगी।
4: गड्ढा हो जाए तो बारिश जिम्मेदार, एक्सप्रेसवे पर सड़क धंस जाए तो बारिश जिम्मेदार, पहाड़ टूटे बारिश जिम्मेदार। बारिश इस वक्त मौसम में वो अपराधी है जिस पर हर राज्य के हर दल की सरकार ठीकरा फोड़कर अपनी जवाबदेही से बच जाना चाहती है। जैसे महाराष्ट्र में ही करीब 7,000 करोड़ रुपए की लागत वाले और हाल ही में शुरू किए मुंबई पुणे मिसिंग लिंक प्रोजेक्ट पर भारी बारिश के कारण भूस्खलन हुआ तो सवाल उठा कि जिसे इंजीनियरिंग का बेहतर नमूना बताया गया वहां क्या खामियां हैं। सवाल उठा तो मुख्यमंत्री विधानसभा में बोलते बोलते मर्यादा तोड़ने लगे।
18: हमारे जयंत राव जी ने सही बात कही, जिनको कुत्ता नहीं पोछता वो आजकल सोशल मीडिया पर आकर सबको गाली देते हैं, मुख्यमंत्री को भी गाली देते हैं। ऐसे कुछ भाड़े के टट्टे इस मिसिंग लिंक के बारे में भी पैसा ले लेकर सोशल मीडिया पर लिख रहे थे, उनको भी कह देना चाहता हूं अगर महाराष्ट्र का अपमान करोगे छोड़ूंगा नहीं।
19: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस गुस्से में है। गर्म तवे पर किसी ने छन्न से पानी का छींटा मारा ऐसे दिखते हैं, लेकिन क्यों? बात 3 दिन पुरानी है। मिसिंग लिंक के नाम से मशहूर मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे जो करीब 2 महीने पहले ही चालू हुआ, जिसे बनाने में जनता के 6,695 करोड़ रुपए लगे, जिस मेगा प्रोजेक्ट को इंजीनियरिंग का बेजोड़ नमूना कहा गया, तेज बारिश के बाद भूस्खलन से उसी नायाब इंजीनियरिंग वाले मिसिंग लिंक पर पत्थर टूट पड़े। भूस्खलन के बाद यहाँ कुछ देर तक रास्ता बंद रहा, लोगों ने सवाल सियासत से लेकर सोशल मीडिया तक पर पूछे।
0: तो अगर सवाल पूछा जाए तो क्या वो गलत है? क्या उससे महाराष्ट्र का अपमान? पहले 6 जुलाई की इस हादसे के वक्त की रिपोर्ट देखिए।
12: मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे के मिसिंग लिंक पर है। 2 महीने पहले इसी मिसिंग लिंक को बहुत जोर शोर के साथ इनॉग्रेट किया गया था, लेकिन अभी इस वक्त इसकी हालत आप देख लीजिए, तो तकरीबन 4 बजे सोमवार की समय 4 बजे अचानक से यहाँ पे लैंडस्लाइड हो गया। पुणे से मुंबई की तरफ जो जाने वाला जो रास्ता है उस पर इसका ठप है और लैंडस्लाइड की वजह से ये पूरा का पूरा रास्ता बंद हो गया है। अभी आप देख लीजिए 4 बजे से दोपहर के अभी 12 बज रहे हैं, अभी भी बताया जा रहा है कि 3 से 4 घंटा और लग सकता है पूरे मलबे को निकालने के लिए, और इस ये जो मलबा है उसको ले जाके ये लोग बाहर देख रहे हैं। लेकिन आप देख लीजिए पूरा का पूरा जो ऊपर का जो हिस्सा था वो भूस्खलन के दौरान पूरा का पूरा गिर गया, बड़े बड़े पत्थर यहाँ पे गिरे हुए हैं।
0: असल में सवाल इसीलिए पूछा जाता है क्योंकि जब कोई इस तरह का एक्सप्रेसवे हाईवे बनाता है तो उसको लेकर दावे ऐसे ऐसे करता है जिसके बाद भरोसा जनता को दिया जाता है कि अब कुछ गड़बड़ नहीं होने वाला। लेकिन फिर उन दावों की पोल प्रकृति खोल देती है और सवाल फिर मुख्यमंत्री को चुभ जाता है।
20: कोई पेड़ गिर के मर रहा है, कोई मैनहोल में गिर के मर रहा है, कोई किसी और आपत्ति में मर रहा है, कभी कोई इलेक्ट्रिक्यूट होकर मर रहा है। जवाब आपको देना पड़ेगा, जिस कुर्सी पे आप हो आप राजा नहीं हो, जनता के सेवक हो, और ये मान के चलिए कि जनता हर समय आपको सवाल करेगी, ये घमंड नहीं कोई देखेगा।
21: काल सध्या ह्यांचं मुख्यमंत्र्यांचं फडणवीसांचं भाषण विधानसभेमधलं, त्याचं म्हणे राजकारण करू नका। अरे वा, आणि काय म्हणतायत म्हणे, एक वेळ मला बोला पण महाराष्ट्राचा अपमान मी सहन करणार नाही। वारे वा, लोक त्या मिसिंग लिंक बद्दलच बोलतायत, महाराष्ट्राचा कुठे अपमान करतायत? पण ते काय सगळं घेऊन जायचं, म्हणजे ते वरपासून खालपर्यंत आता काय सवय लागली आहे? केंद्र सरकारच्या कुठच्या गोष्टींबद्दल बोललं की तुम्ही देशविरोधी, आता मिसिंग लिंक बद्दल बोललं तर याच्यात महाराष्ट्राचा अपमान कुठे आला?
0: सवाल सियासत का नहीं, सवाल इस बात का है कि अगर कहीं कमी है और उस पर प्रश्न है तो क्यों इसे साजिश और अपमान तक सत्ताधारी बताने लगते हैं? जबकि महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के संयुक्त प्रबंध निदेशक राजेश पाटिल से आज तक संवाददाता विद्या ने पूछा कि इस बात का अंदाजा नहीं लगाया था कि ऐसा लैंडस्लाइड हो सकता है।
22: स्ट्रक्चरली कोई डैमेज नहीं हुआ है इस लैंडस्लाइड में, लेकिन क्या जिस तरीके से ये बारिश हुई क्या इस बात का अंदाजा नहीं था कि यहाँ पे लैंडस्लाइड हो सकता है? उस समय भी क्या आप लोगों ने असेसमेंट किया था या उस असेसमेंट के बाहर ये हो गया?
23: या असेसमेंट किया था, लेकिन टनल के ऊपर जो ओवरबर्डन है वो 220 मीटर है ओवरबर्डन, और इसका डिजाइन भी हमने IIT बॉम्बे से अप्रूव करके लिया था, वेटिंग करके लिया था, और एज पर देयर अप्रूव्ड डिजाइन वो हमने रॉकफॉल मिटिगेशन मेजर किया था, एंड वो जो रॉकफॉल मिटिगेशन मेजर हमने किया है वो इंटैक्ट है, वो हमने अभी अप टू 15 मीटर्स किया था, वो इंटैक्ट है, और वो अभी बाकी जो हुआ उसके लिए वी हैव टू डू कॉम्प्रिहेंसिव इंस्पेक्शन एंड देन वी हैव टू कम विद सम स्ट्रांग रेमेडियल एक्शन फॉर दैट।
0: महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम के संयुक्त प्रबंध निदेशक इस बात को समझते भी हैं और समझाते भी कि सुरंग के ठीक ऊपर लगभग 120 मीटर पर मिट्टी पत्थर जमा है। IIT बॉम्बे से पहले ही पूरी सलाह ली जा चुकी है। सुरंग के ऊपरी हिस्से से 10 मीटर तक बचाव के उपाय किए गए थे। हालांकि भूस्खलन सुरंग के ऊपरी हिस्से से 150 या 200 मीटर की दूरी से हुआ और इस वजह से चट्टानें गिरी और फिर मिसिंग लिंक सवालों में आए। तो जरूरी ये है कि कहीं कुछ हो तो उसके कारण को समझकर कारण सबको बताया जाए, न कि सवाल पूछने या सवाल उठाने वालों पर सवाल उठाकर सवाल को ही दबा दिया जाए।
4: जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ही सवाल उठाते हैं, जब भारी बारिश को ही हर आपदा हर कठिनाई की वजह बताकर पल्ला झाड़ा जाता है तो जनता नाराज होती है, उसको लगता है कि जो भरोसा सरकार ने दिया वो तोड़ा जा रहा है। ये बात हम वसई विरार के हालात को देखने के बाद कह रहे हैं, जहां 7 दिन से लगातार बरसात हो रही है, घरों में पानी जब तक उतरता है उससे पहले फिर चढ़ जाता है, ऐसे ही घरों तक आज तक पहुंचा तो पता चला कि आम आदमी कितना सरकार को खबरदार करना चाहता है।
24: तुम ड्रेनेज करो ना,
1: बारिश के 3-4 महीने तुम झाड़ तोड़ते तो पहला ये काम करो, कोई नहीं हेल्प करता है।
19: ये विपक्ष के कोई नेता नहीं है,
2: ये हाल है हमारा देखो। और हर साल का एक दिन का नहीं है भैया, एक दिन का नहीं है, ये रोज का है।
19: ये विपक्ष के कोई कार्यकर्ता भी नहीं,
2: कोई पूछने को नहीं आता, खाली पानी देता है। इतने इतना पानी में क्या होएगा,
3: पानी भी भग जाता है,
2: भग जाता है, इधर खड़ा नहीं रखता है।
19: ना ही इनको सोशल मीडिया ट्रोल कह के खारिज किया जा सकता है।
1: हमने एक एक चीज तकलीफ से लिए है, एक एक चीज। और ये टाइम तो टॉयलेट भी अंदर आया 2026 में। ये जो हम लोग ने देखे ना, ये चीज, ये वर्स्ट देखी मैंने।
19: ये वो लोग हैं जो मुंबई से सटे पालघर के वसई विरार में इस वक्त बारिश के बाद घरों में भरे पानी के बीच वापस अपना सामान देखने लौटे और पूछते हैं कि सरकार इनकी सुध कब लेगी।
6: अभी लोगों में जो काम है कि साफ सफाई का काम शुरू है। हम लोगों में जो ग्राउंड फ्लोर में 5 से 6 फीट पानी था, उनकी क्या अवस्था है, क्या हालत है, वो देखने के प्रयास करेंगे कि पूरा ये इस पानी में था। हम उनके घर में जा रहे हैं, क्या हालत है इनकी देखेंगे। फिलहाल मैं ग्राउंड फ्लोर में जो अंसारी फैमिली है उनके घर में आ चुका हूँ। आप देख सकते हैं अभी भी सैयद फैमिली के घर में आया हूँ। आप देख सकते हैं कि क्या हालत है। वो जो घर में इतना पानी था, आज कम हुआ है। पूरा सामान जो इन्होंने है ऊपर करके रखा है। ये जो उनका गद्दी है सोफे का, ये दिखने में अच्छा दिख रहा है, पूरी तरह बारिश में भीग चुका है। जो अपने घर का छोटा मोटा पूरा संसार इन्होंने बांध के रखा था, एक रिलेटिव के पास वो रहने गए क्योंकि बारिश का कहर रुक नहीं रहता, लेकिन आके देखा तो पूरा घर तहस नहस हो चुका था।
1: ट्यूशन टीचर हूँ हम, मैं, मेरा हस्बैंड एक सर्विस करते हैं। हमने एक एक चीज तकलीफ से लिए है, एक एक चीज। और ये टाइम तो टॉयलेट भी अंदर आया है। मुझे ऐसा लगता है कि गटर साफ नहीं हो रही है इतना, मतलब 2018 से हम सहन तो कर ही रहे, पर 2026 में ये जो हम लोग ने देखे ना, ये चीज, ये वर्स्ट देखी मैंने। टॉयलेट तक इधर साफ करी बैठ के, पूरा टॉयलेट ऊपर आ गया।
19: आम आदमी महाराष्ट्र का सोचता है कि चलो इस मानसून में तो चीजें बदलेंगी, शायद शहर ना डूबे, ड्रेनेज सिस्टम सुधरे, लेकिन वो दो बार टूटता है, पहला घरवार डूबने पर, दूसरी बार किसी से मदद ना मिलने पर।
1: हमको तो कोई इधर हेल्प नहीं मिली, अभी आप लोग से ही हम लोग ने पानी की बोतल लिए है बस, बाकी कोई हेल्प नहीं मिली।
6: क्या इस परिस्थिति को कौन जवाबदार है?
1: मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना कि कोई तो जवाबदार, मतलब या तो गटर साफ नहीं होती है, ड्रेनेज प्रॉब्लम है, ये बिल्डिंग्स बन गए हैं बोल के कुछ। अरे आप लोग बिल्डिंग बना रहे, बिल्डर्स लोग बनाओ ना, पर ड्रेनेज का करो ना। हम लोग को मिडिल क्लास, हम कहाँ जाएंगे?
2: हर साल का एक दिन का नहीं है भैया, एक दिन का नहीं है, ये रोज का है। ये क्या अभी पूरे घर का घर बर्बाद है, अभी क्या देगा गवर्नमेंट? 2000-5000 देगा, उससे इनका घर का पूरा सामान आ जाएगा।
6: आप क्या कहेंगे, ये हर साल की ड्रेनेज?
2: हर साल है, हर साल का प्रॉब्लम है, एक साल का प्रॉब्लम नहीं है। और इन लोग नीचे वाले को हम लोग ऊपर रखते, ये बहन कितना टाइम रखेगी? 5 दिन से रख रही है, खाना दे रही, और इन लोग अच्छा नहीं लगता करके इन लोग भाग गए, शर्म आ रही है इसके लिए इन लोग चले गए। हम लोग खाना बना के,
6: आपको पूछने को आया था?
2: कोई पूछने को नहीं आता, खाली पानी देता है। इतने इतना पानी में क्या होएगा,
3: पानी भी भाग जाता है,
2: भाग जाता है, इधर खड़ा नहीं रखता है।
19: वसई विरार का हाल ये कि यहाँ तेज बहाव के बीच दो कारें बहने लगी, लेकिन समय रहते इन्हें बचा लिया गया, 3 लोगों की जान बची। एक मारुति अर्टिगा कार बाढ़ के तेज पानी में बहती दिखी, दमकल के कर्मचारी यहाँ मौजूद थे, उन्होंने पहले ड्राइवर को सुरक्षित बाहर निकाला, इसके बाद रेस्क्यू टीम ने कार बाहर निकाली। इसी दौरान एक दूसरी कार भी पानी के तेज बहाव से गुजरने की कोशिश कर रही थी, वो भी बहने लगी। जवानों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए कार में सवार 2 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला और सड़क पर सुरक्षित पहुंचाया।
4: और अब आपको पुणे के पिंपरी चिंचवाड़ से आई खबर से खबरदार करते हैं, जहां पहाड़ लैंडस्लाइड की तरह टूटा, 3 मंजिला इमारत पर गिरकर लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ा, लेकिन यह पहाड़ कूड़े का था जो प्लांट से जुड़ी इमारत को मलबे में बदल देता है। 23 लोग फंस जाते हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन चलता है और जवाबदेही के सवाल पर जिम्मेदार लोग बारिश पर ठीकरा फोड़ देते हैं।
19: जहां कूड़े का पहाड़ खड़ा करके कूड़े से बिजली बनाने का प्लांट बनाया, क्या वही लापरवाही इस कदर रही कि वो कूड़े का पहाड़ जिंदगियों पर टूट पड़ा? कूड़े का पहाड़ जब लगातार बारिश के बाद टूटा और गिरा तो देखिए लैंडस्लाइड जैसे हालात ऐसे बन गए कि कूड़े से बिजली बनाने वाले प्लांट की 3 मंजिला इमारत ढह जाती है।
2: हाथ पकड़ ले,
0: चीख पुकार के बीच पहले दिल दहला देने वाले इस वीडियो को देखिए, जहां किसी तरह लोगों को बिल्डिंग के ढेर के बीच से निकाला जाता है। सबसे पहले दमकल वाले पहुंचे, फिर एनडीआरएफ की टीमें लग जाती। यहां लगातार लोगों को इस मलबे से बचाने की कोशिश जारी दिखती है। इस बीच मलबे से कोई जख्मी हालत में जिंदगी के लिए जंग लड़ता बाहर आता है, तो वहां खड़े लोग इंतजार करते हैं कि इसकी सांसें चल रही है। पिंपरी चिंचवड़ नगर निगम के अधीन आते इस इलाके में कूड़े से बिजली बनाने वाले प्लांट पर कूड़े का पहाड़ गिरने के बाद लोगों को बाहर निकालना कितना कठिन है, इसे आप एनडीआरएफ के लोगों से समझिए।
5: पूरी बिल्डिंग कोलैप्स हो रखी है, पूरे मलबे से दबी हुई है, एंड बॉडीज हमने ट्रेस करी हैं, तीन के करीब कर ली, जिसमें से एक निकाली है। एक को और थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि जो मलबा है मैनुअली निकालेंगे, अगर हम मशीन लगा के निकालेंगे वाइब्रेशन हो जाएगा, जिससे कि फर्दर कोलैप्स हो सकते हैं।
8: जो एरिया बताया जा रहा है कैंटीन एरिया, वो हम फोकस कर रहे हैं, वहाँ पे 5 to 6 का बताया गया है फिगर, तो राइट नाउ वी आर होपिंग कि 7 to 8 है, इससे ज्यादा तो नहीं है।
9: जवान पार्किंग तक जा चुके हैं?
8: जवान पार्किंग तक अभी नहीं पहुंच पाए हैं, क्योंकि धीरे धीरे मैनुअली काम हो रहा है, हाथ से निकाल के, क्योंकि हम मशीन नहीं अप्लाई कर सकते। मशीन अप्लाई करेंगे पूरा बिल्डिंग पैनकेक कोलैप्स हो जाएगा, तो जो है भी वो पूरा दब जाएगा।
0: अब सवाल है कि ऐसे हालात कैसे बने, क्या इस बात का अंदाजा किसी को नहीं था कि जो कूड़े का पहाड़ यहाँ इतना ऊंचा खड़ा है, इसकी वजह से हादसा भी हो सकता है। आज तक संवाददाता ने इसीलिए सीधे विजय सूर्यवंशी, आयुक्त पिंपरी चिंचवड़ नगर निगम से सवाल किया है।
10: इतना बड़ा हादसा हुआ है, इसका जिम्मेवार कौन है, उस पर कुछ दर्ज होगा पुलिस थाने में?
24: देखो, ये नेचुरल कैलामिटी है, ऐसा नहीं कि बिल्डिंग अपने आप ढह गई। अपने आप ढह जाती तो हम कहते कि इसका स्ट्रक्चर वीक था, इसका स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम था। अभी आप देख रहे हैं कि ये बड़ा लैंडस्लाइड जैसे हुआ है, मतलब 60 मीटर हाइट का ये कचरे का पहाड़ है ऑलमोस्ट, और 600 mm बारिश जो 36 आवर्स में, 36 घंटे में 600 mm, इसकी वजह से उसका जो वेट बढ़ गया होगा, और जैसे लैंडस्लाइड होता है वैसे वो ढह गया, और उसका हॉरिजॉन्टल प्रेशर बिल्डिंग के आने के बाद वो बिल्डिंग कोलैप्स हो गई।
0: 60 मीटर ऊंचा कूड़े का पहाड़ खड़ा था, ये बात खुद आयुक्त मानते हैं। ये भी मानते हैं कि बारिश बहुत ज्यादा लगातार हुई, तो क्यों नहीं संकट को पहले समझा गया, क्यों नहीं काम रोका गया, ये क्यों नहीं सोचा गया कि अगर यहाँ तेज बारिश हुई तो यही कचरे का 60 मीटर ऊंचा पहाड़ पानी में भीग कर जब तेज हवा से गिरेगा तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता है।
25: डंपिंग ग्राउंड है पिंपरी चिंचवड़ का, ये 1982 से, मतलब अभी करीब करीब उसको 47 ईयर हो गए, 47 साल से यहाँ चल रहा है, और बहुत बड़ा पहाड़ी बन गया उसका। तो
0: कूड़े के पहाड़ को कम करने के लिए बताया गया कि वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट शुरू किया गया, ताकि कचरे की मात्रा कम की जा सके, लेकिन ज्यादा जोर प्रशासन का इस हादसे पर बारिश को कटघरे में खड़ा करने में लगा हुआ है।
10: पूछताछ की जाएगी इस मामले में?
24: देखो, अभी तो हम रेस्क्यू ऑपरेशन में व्यस्त है सब, अभी हमारी प्रायोरिटी है कि जो 8 लोग और है उनको जिंदा बाहर निकाला जाए, उनको रेस्क्यू करा जाए, उसके बाद में ये सब सोचा जाएगा।
10: क्योंकि ये बहुत बड़ा मामला है, 23 लोग जो थे अंदर थे, अभी 15 लोगों को निकाला गया, उनमें से एक डेथ हुई है, ऐसा दमकल विभाग का कहना है। तो पूछताछ तो होनी चाहिए, मतलब किस तरह से ये मामला हुआ, क्योंकि वहाँ के लोग बोल रहे हैं कि 2 दिन पहले उनको लगा था कि ये जो कचरे का ढेर है वो नीचे सरक सकता है।
24: नहीं देखो, जरूर बहुत दुर्दैवी घटना है, और भगवान की दया से अभी तक तो हम 14 लोग जो निकाल पाए, मगर इस घटना के बारे में अभी सब बैठेंगे, क्या एग्जैक्टली हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसके बारे में सब सोचेंगे, और उसके बारे में नेक्स्ट एक्शन उसके बाद डिसाइड करेंगे।
0: बस यहाँ गनीमत ये रही कि बहुत तेजी से रेस्क्यू ऑपरेशन करके जो लोग दबे रहे उन्हें निकाला जाता रहा।
4: इस बाढ़ बारिश के बीच जब तमाम सवाल सरकार और सरकारी व्यवस्था पर उठते हैं, तब ऐसा नहीं कि सब कुछ फेल है, इंसानियत अब भी पास हो रही है। खबर पालघर की है, जहां एक गर्भवती महिला बाढ़ के पानी में अपने घर में फंसी थी। डिलीवरी का वक्त नजदीक आ गया, कोई गाड़ी बाहर ले जाने में सक्षम नहीं थी, एम्बुलेंस आ नहीं सकती थी, और तब आशा वर्कर के साथ स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता मिलकर एक दरवाजे को तोड़कर उसे स्ट्रेचर बनाते हैं, उस पर लिटाकर गर्भवती महिला को बाहर लाते हैं, अस्पताल पहुंचाते हैं जहां सुरक्षित डिलीवरी बच्चे की होती है।
7: मेरा हालत बहुत खराब था, तो ऊपर में थी तो दर्द बहुत तेज था, तो आदमी आए बाहर से और मुझको केवाड़ी के पाले पर लेकर आए, और चेतन दादा थे, संजय दादा थे, और बहुत जन माइकोप से आए और हमको लेकर गए। इसमें
9: उन्होंने हिम्मत जुटाई, हम लोग सब अंदर गए, वो आशा सेविका उसको भी हम लोग अंदर लेके गए। बाद में उसको बाहर निकलने के लिए कोई भी सामान नहीं था हमारे पास, कोई स्ट्रेचर नहीं था, तो इन लड़कों ने एक दरवाजा तोड़ा वहाँ का घर का और दरवाजे को स्ट्रेचर बनाया और उसको उस स्ट्रेचर पे लिटाया। और बाद में घर में तो 3 फीट पानी था लेकिन नीचे बहुत तेज बहाव था पानी का, और उस बहाव से इन लोगों ने हिम्मत जुटा कर उसको बाहर निकाला।
4: मॉनसून देर से आया है जिसको लेकर पहले चिंता जताई गई, और जब आया है तो फिर इसने एकदम से तूफान मचा दिया है। आज की खबर यह है कि मॉनसून 9 जुलाई को भारत के हर कोने में पहुंच गया, जिसमें एक दिन की देरी मानी जा रही है। हालत यह है कि महाराष्ट्र में जहां जुलाई के पहले 8 दिन में सामान्य मॉनसून में 289 मिलीमीटर बारिश होती, वहां इस बार 307 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। अगर केवल मुंबई शहर की बात करें तो जुलाई के पहले 8 दिन में जहां सामान्य मॉनसून में 775 मिलीमीटर बारिश होती है, वहां इस बार 1388 मिलीमीटर यानी करीब करीब दोगुनी बारिश हो चुकी है। मुंबई में सिर्फ 7 दिनों में लगभग साल भर की बारिश दर्ज की गई है। मुंबई में 1 जून से जुलाई के बीच लगभग 1240 मिलीमीटर बारिश हुई, जो पिछले 27 सालों में इस अवधि के दौरान सबसे ज्यादा है। जुलाई के पहले 8 दिनों में ही पुणे ने बारिश का 57 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। आज की दिल्ली की बारिश का रिकॉर्ड देखें तो पिछले 16 साल में सबसे ज्यादा बारिश आज दिल्ली में हुई है। देहरादून में 24 घंटे के भीतर 354% अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई, जो मॉनसून की सक्रियता को बताती है। केंद्र सरकार ने मंगलवार को कहा कि बारिश की कमी घटकर 12% रह गई है, क्योंकि जुलाई के पहले हफ्ते में मॉनसून की गतिविधि सामान्य से ज्यादा रही। अब इसे सुनकर लगेगा कि चलो अच्छा हुआ इतनी बारिश हो गई, कहां तो पहले सामान्य से कम बारिश की आशंका जताई गई थी, लेकिन क्या वाकई एक साथ इतनी बारिश हो जाने से हालात सामान्य हो जाते हैं? खेती किसानी से लेकर पर्यावरण तक के लिए क्या ये शुभ संकेत है या चेतावनी? हमने 2 मौसम वैज्ञानिकों से इसका जवाब लिया है।
11: जुलाई के शुरुआत से ही हमने देखा कि बारिश की गतिविधियां बहुत अच्छी हुई हैं, मानसून एक्टिव हो गया है, डिप्रेशन बना जो उड़ीसा में बना और वो वेलमार्क लो प्रेशर एरिया बन करके मध्य प्रदेश की तरफ आया। इसके प्रभाव से आपने देखा कि बारिश की गतिविधियां जो है वो दक्षिणी जो मध्य प्रदेश है और गुजरात, महाराष्ट्र, मुंबई और राजस्थान के कुछ इलाकों के साथ साथ उड़ीसा में काफी भारी बारिश हुई। तो अभी जो डेफिसिट है रेनफॉल का, जून में 40% डेफिसिट था, यानी कि जून जब खत्म हुआ था तो 40% का डेफिसिट था, लेकिन 8 दिनों के अंदर ही ये केवल 12% रह गया है। तो आप कह सकते हो कि जो जुलाई की बारिश थी डेली एवरेज था, उसको कवर करने के बाद भी डेफिसिट को काफी नीचे लेके आए हैं। 11-12 तारीख से क्या होगा कि जो फुटहिल्स में जो एक्सेस ऑफ मानसून ट्रफ वो चली जाएगी और उत्तर पश्चिम भारत, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और पश्चिमी मध्य प्रदेश लगभग सूख जाएंगे, तो किसानों को इस समय थोड़ा सा मुश्किल का सामना करना पड़ेगा।
13: पानी का जो जहां जहां बहुत क्षेत्र में कमी होता है तो ये बारिश के कारण वो जल जो है स्टोरेज जो है सारा भर जाता है, वो हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। वो 4 दिन में हुआ या 5 दिन में हुआ, बहुत जल्द थोड़े दिन में हुआ, लेकिन जहां जहां पानी का कमी है वो जल जो हम स्टोर करते हैं ना, जुलाई महीने में बारिश होता है तो स्टोर करते हैं, इसलिए वो अच्छा है। लेकिन एग्रीकल्चर का रिक्वायरमेंट एक अलग होता है। एग्रीकल्चर का रिक्वायरमेंट ऐसा होता है कि किस टाइम, जैसे हमारा बारिश जून में नहीं हुआ तो हमने जुलाई में सोइंग करेंगे बोला, तो अभी सोइंग करने का टाइम आ गया, जो ये जो खेती सब जो ये वेट हो गया तो इसके लिए अच्छा से यूज हो सकता है। तो जैसा है कि बहुत ज्यादा बारिश होने से हो सकता है कुछ पानी बह जाएगा, रन अप में चला जाएगा, समुद्र में चला जाएगा, वो होता है, लेकिन आपका यूटिलिटी भी उसमें ये है कि जो जहाँ जल भंडार है, ये जहाँ इसमें है, जहाँ स्टोरेज फैसिलिटी है जो उसमें ये पानी को फायदा होता है।
4: सूरत यानी गुजरात की डायमंड सिटी, जहां इतनी बारिश पिछले 3 दिन में हुई कि दावा है कि दशकों का रिकॉर्ड टूट गया, और जब पानी सूरत में उतरा तो लोगों को बहुत नुकसान का पता चला।
12: सूरत के वराछा में स्थित पुदार आर्केड में फिलहाल मेरी मौजूदगी और मेरे पीछे की तरफ की तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा, जहां पे मोबाइल शॉप बेसमेंट में आए हुए हैं। पूरे बेसमेंट में अलग अलग जो शॉप्स फिलहाल दिखाई दे रही है, जिसके बाहर की तरफ सामान्य जल भराव की स्थिति है और साफ सफाई का काम यहाँ पे चल रहा है, क्योंकि 30 घंटे पहले सूरत के अलग अलग इलाकों में 15 से 18 इंच जितनी बारिश हुई, और इस बारिश की वजह से चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई पड़ रहा था। लेकिन बीते 30 घंटों में अलग अलग इलाकों में जो जल भराव की स्थिति थी, अब तो जल भराव की स्थिति देखने को नहीं मिल रही है। पर ये वही पुदार आर्केड है जहां पे पूरा बेसमेंट जलमग्न हो गया था।
14: यहां पे ये गुजरात का सबसे बड़ा मोबाइल हब है, और यहां पे नए शोरूम है, रिपेयरिंग है, सेकंड हैंड वाले भी है, और ये एक 200 दुकान अंदर घर का हो चुकी है। तो समझ लो कि एक दुकान में किसी का 1 करोड़ का माल था, किसी का 50 लाख का था, आप एवरेज भी लगाओगे तो 200 से 250 करोड़ का नुकसान है।
15: 5 दुकान लाइन में अपनी अपना होलसेल का काम था। होलसेल में आपको पता होगा कि बहुत सारा स्टॉक होता है, सब प्रीमियम और ब्रांडेड चीज अभी आई थी माल अपने पास, 20 से 30 कार्टून आए थे, और पुराना भी माल बहुत डिस्प्ले करा हुआ था। टोटल आश्रे 1.5 से 2 करोड़ का हमारा नुकसान है टोटली। अभी कोई भी प्रशासन हमको कोई जवाब नहीं दे रही है।
12: जिस प्रकार की तस्वीरें सामने आ रही है वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये जो टेक्सटाइल मार्केट है, वहां जल भराव की स्थिति अभी भी देखने को मिल रही है। टेक्सटाइल मार्केट का ये बिल्डिंग, और इसी बिल्डिंग के नीचे की तरफ 2 फ्लोर गोडाउन है, और वो दोनों फ्लोर का जो गोडाउन है, बेसमेंट है, वो पूरा जलमग्न है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जो भी बेसमेंट के अंदर मौजूद गोडाउन के अंदर पानी भरा हुआ है, उसे निकालने के लिए मोटर का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। पानी निकालने की कोशिश बीते कई घंटों से जारी है, लेकिन इन कोशिशों के बीच करोड़ों की नुकसानी की बात अब फॉस्टा यानी कि जो टेक्सटाइल एसोसिएशन है, उनकी तरफ से कही जा रही है। हमारे साथ फॉस्टा के जनरल सेक्रेटरी भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे।
16: रोड जाम होने की वजह से, पीछे खाड़ी जाम होने की वजह से पानी गया नहीं, और वो फ्लो बैक मारा, उसने भी मारा, और ऊपर से कुदरत की भी बरसात गिरने से बड़ा बड़ा नुकसान हुआ है व्यापारियों का। और रही बात एवरेजों की, तो हमारा अंदाजा ऐसा है कि कम से कम जिस हिसाब से आपने ये मार्केट देखा, ऐसे कई मार्केट अभी भी पानी के अंदर है, जिसका हम लोग ऐसा समझते हैं कि अंदाजन 1000 दुकानें ऐसी होगी जो नुकसान के साथ में जकड़ी हुई है। और ये लाखों में नुकसान नहीं है, ये नुकसान करोड़ों में है।
4: अब आपको उत्तर प्रदेश ले चलते हैं, जहां एक सड़क जिसका उद्घाटन होना है वो टूट रही थी। मंत्री दिनेश प्रताप सिंह से जवाब मांगा गया, सुनिए क्या जवाब दिया।
17: कई जगह पर पहले ही बारिश में धस गया है, क्या कहेंगे?
18: कौन सी नई बात आप कह रहे हो? आप अपने आप सड़क बना लो। अगर सड़क बनती है, कभी टूटती भी है, कभी खराब भी होती है, कभी मरम्मत भी होती है, सतत चलने वाली प्रक्रिया है, कोई ये नई बात नहीं है।
26: माननीय तो गजब, पहले परिचय सुनिए। दिनेश प्रताप सिंह नाम है, रायबरेली से आते हैं, अभी उत्तर प्रदेश में मंत्री। इनसे पत्रकारों ने बस लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे के उद्घाटन से पहले एक जगह पर टूटने का सवाल किया। मंत्री जी कहे, सड़क तो बनती है तो टूटती भी है, वरना तुम ही बनवा लो।
18: ऐसा कोई कहीं जगह नहीं है कि भ्रष्टाचार हुआ है। और सड़क अगर बारिश में, कितनी भी अच्छी सड़क बने, थोड़ा बहुत बारिश के समय हानि होती है, और बारिश के बाद हम लोग उसकी मरम्मत कराते हैं। जहां कहीं भी टूटी सड़क होगी उसे ठीक करा लिया जाए।
26: भ्रष्टाचार का आरोप लगे बिना उस पर तुनक जाने वाले मंत्री जी को चलिए कुछ सड़क दर्शन कराते हैं। जैसे आगरा की ये सड़क जो बारिश में टूट गई, धंस गई। कहने को मंत्री दिनेश सिंह कह सकते हैं, सड़क है तो टूटेगी ही, टूटी है तो बनेगी, बाकी खर्चा क्या है वो कोई मंत्री जी की जेब से थोड़ी जाएगा, जनता की जेब से जाएगा। उत्तर प्रदेश में आपको जरा ग्रेटर नोएडा का भी हाल मंत्री जी दिखा दे, जहां बारिश के बीच सड़क बनाने का काम करके एक तरह से कहिए विकास की तेज रफ्तार को प्रदर्शित किया गया। ये खबर ग्रेटर नोएडा के साइट 4H ब्लॉक के रामलीला ग्राउंड के पीछे की सड़क का है, जहां पानी भरा है, बावजूद इसके सड़क निर्माण कंपनी की तरफ से कराया जाता रहा। लोगों ने वीडियो बनाया, सड़क पर बारिश का पानी भरा दिखाया, इसके बावजूद रोड रोलर और ट्रक की मदद से सड़क बनाने का काम होता रहा। वीडियो सामने आया तो पता चलता है कि ऐसे बारिश के पानी के बीच सड़क बनेगी तो सड़क कितने दिन चलेगी, सब समझ सकते हैं। लोगों ने यूपी सीडा के अधिकारियों से इसकी शिकायत की, अधिकारियों ने फिर मामले का संज्ञान लिया, सड़क बनने का काम रोका, अब मौसम साफ होगा तब दोबारा सड़क बनेगी, लेकिन क्या शिकायत ना हो तो सड़क यूपी में बारिश में भी बना देंगे और फिर टूटेगी तो सवाल मत करिए वरना मंत्री जी कहेंगे।
17: कई जगह पर पहले ही बारिश में धस गया है, क्या कहेंगे?
18: कौन सी नई बात आप कह रहे हो? आप अपने आप सड़क बना लो, अगर सड़क बनती है कभी टूटती भी है, कभी खराब भी होती है, कभी मरम्मत भी होती है, सतत चलने वाली प्रक्रिया है, कोई ये नई बात नहीं है।
26: अब इस बयान पर विपक्ष घेरने लगा।
1: भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी और बेशर्मी की पराकाष्ठा है। उद्घाटन के पहले ही लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस वे टूट जाता है और दिनेश प्रताप सिंह जैसे मंत्री बेशर्मी भरे बयान दे रहे हैं। कमीशन खोरी इस सरकार में इतनी प्रबल है कि 40% 50% तक की बातें सुनाई देती हैं।
3: आज जिस तरीके से चारों तरफ उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार व्याप्त है, अच्छा इनके मंत्रियों ने कोई काम तो किया नहीं? जब इनसे सवाल जवाब होता है तो इनकी हताशा निराशा की इस तरीके की बयानबाजी ये करते हैं। ये क्या सड़कों की मरम्मत करेंगे? उत्तर प्रदेश की जनता इनकी खुद ही मरम्मत करने जा रही है।
26: पिछले महीने की बात है, मंत्री दिनेश प्रताप सिंह के बगल के जिले अमेठी की सड़क जनता खरोच खरोच कर उसकी गुणवत्ता बताई दे रही थी, जिसे अधिकारी गर्मी की वजह से खारिज करने लगे, मतलब बहाने नए नए, सड़क जस की तस।
4: बाढ़ बारिश के बीच कुदरत के सामने कभी खेल खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। प्रशासन को अगर जवाबदेह होना है तो जनता को भी होना पड़ेगा। उत्तराखंड के विकास नगर से आई तस्वीर खबरदार करने के लिए है, जहां दिल्ली यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पहाड़ से गिरता झरना जान जोखिम में डाल रहा है और जनता के पास फिलहाल कोई चारा नहीं इस खतरे के बीच से गुजरने के सिवाय। जहां प्रशासन ने कर्मचारी लगाए हैं फिर भी इस रास्ते के अलावा कोई चारा भी नहीं।
6: मानसून की दस्तक के साथ ही पहाड़ी रास्तों पर मानसूनी आफतों ने भी दस्तक देना शुरू कर दिया है। इस वक्त हमारी मौजूदगी दिल्ली यमुनोत्री राजमार्ग जुड्डो के पास है। मेरे पीछे अगर आप देखेंगे तो ये यात्रा मार्ग है, यहाँ से अक्सर गंगोत्री यमुनोत्री धाम की दर्शन करने वाले यात्री गुजरते हैं और पूरे रोग रूप में इस वक्त बह रहा ये झरना तो आवाजाही करने वाले हैं, लोग हैं यहाँ पर, उनके लिए दीपक बना हुआ है। आप देखेंगे कि रोग रूप में बह रहे इस झरने से मलबा और पत्थर भारी मात्रा में जो दिल्ली यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग है उस पर आ गया है। लोग मुश्किल आवाजाही कर पा रहे हैं, हालांकि जो प्रशासन है उनके जो प्रशासनिक लोग हैं वो यहाँ पर लोगों को सचेत करने के लिए रुके हुए हैं ताकि कोई हादसा ना हो सके। इस वक्त भी आप देखेंगे तो बड़े बड़े पत्थर और मलबा गिर रहा है, बामुश्किल इस जगह पर खड़े होकर लोग किस तरीके से इंतजार कर रहे हैं। कुछ लोग जल्दी जो है वो आगे की ओर खतरा लेकर बढ़ रहे हैं, जैसे कि अभी बाइक सवार गए हैं, इस तरीके से प्यारे जवान जो है इनको निकाल रहे हैं, वाहन जो चालक है वो भी मनमानी कर रहे हैं और हादसों को न्योता देकर जो यहाँ पर लोग तैनात हैं उनकी बात को अनदेखा करके खतरा मोल ले रहे हैं। हालांकि लोग समझा रहे हैं कहीं कोई हादसा ना हो, लेकिन लोगों की मनमानी एक बड़े हादसे को न्योता दे रही है। चलिए मुझे आशीर्वाद से ऐसा हूँ आज तक।
4: इस मौसम में आपको हम एक और खबर से खबरदार करते हैं। खबर गाजियाबाद की इंदिरापुरम से है, जहां 22 साल के युवक की करंट लगने से मौत की आशंका है। जानकारी के अनुसार ट्रांसफार्मर के पास ये शख्स पानी में मिला था जब उसे अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। शुरुआती जांच में करंट लगने से मौत की आशंका जताई गई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। दावा है कि ट्रांसफार्मर के पास लोहे का गेट छूते ही शायद करंट लगा। इस मौसम में इस बात का ध्यान रखने की बहुत जरूरत होती है क्योंकि कई जगह खुले तार हो सकते हैं, खुद भी सतर्क रहें। जरूरी है कि हर जगह प्रशासन इस पर जवाबदेही तय करे, कम से कम खुले तार खंभों और ट्रांसफार्मर के पास न रहे। और अब राम मंदिर चढ़ावा विवाद में आज की बड़ी खबर हम आपको बता दें, जांच में पुलिस को एक और बड़ी सफलता मिली। रिमांड पर लिए गए आरोपी अनुकल्प मिश्रा की निशानदेही पर एक कार बरामद की गई है। पुलिस का दावा है कि ये कार चढ़ावा चोरी के पैसों से खरीदी गई थी। पुलिस के अनुसार ये कार 16 मई 2025 को गोरखपुर से खरीदी गई और 22 मई को अयोध्या आरटीओ कार्यालय में इसका रजिस्ट्रेशन करवाया गया। इसके अलावा सोने की चेन और पेंडुलम भी बरामद होने की जानकारी सामने आई है। पुलिस ने कुछ ऐसे लोगों को भी चिन्हित किया है जिन्होंने नकद लेकर बैंक खातों में रकम ट्रांसफर की थी। अब इन खातों और बाकी संपत्तियों की भी जांच की जा रही है।
2: अयोध्या प्रकरण में जांच जारी है और पुलिस ने अनुकेश मिश्रा के पैतृक निवास से एक गाड़ी बरामद की है। बताया जा रहा है ये गाड़ी स्विफ्ट डिजायर है, जिसे अनुकल्प ने चंदा चोरी के पैसे से ही खरीदा था। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं उस गाड़ी की। ये वो गाड़ी है, आप डिजायर गाड़ी है, नंबर प्लेट देखेंगे UP42BZ5222। ये गाड़ी है स्विफ्ट डिजायर गाड़ी है, जिसको इस वक्त हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं। और हमने जब इस गाड़ी की डिटेल्स निकाले हैं तो क्या आता है ये भी दिखा दीजिए एक बार। ये आता है रविंद्र कुमार, सन ऑफ राजेंद्र प्रसाद। सारी डिटेल्स है, एड्रेस है जहां से, जहां का ये नोट किया गया है। और कुल मिलाकर ये गाड़ी जो है बताया जा रहा है कि अनुकेश ने अपने पिता के नाम पर ली थी। तो किस तरीके से काली कमाई को सफेद करने की पूरी कवायद अयोध्या में चल रही है उसको दिखाती ये गाड़ी है, ये स्विफ्ट डिजायर गाड़ी है। आइए इसको थोड़ा सा आगे से भी दिखाते हैं, थोड़ा समीप आए, करीब आए और दिखाएं आपको क्या एक नंबर गाड़ी। आप देखिए किस तरीके से ये गाड़ी खरीदी गई थी और इसकी गाड़ी से अनुकल्प मिश्रा जो है वो चलता था। ये गाड़ी का आगे का छोर है, जिसको इस वक्त फिलहाल राम जन्मभूमि थाने पर खड़ा कर दिया गया है। यानी
4: अयोध्या को लेकर होती सियासत के बीच लड़ाई दोनों तरफ से खुद को बड़ा सनातनी साबित करने की चल रही है। समाजवादी पार्टी कह रही है कि वो सनातनी है, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बता रहे हैं कि विकास का जो पैसा आज सनातन की रक्षा के लिए खर्च हो रहा है वो समाजवादी सरकार में कब्रिस्तानों पर खर्च होता था। इन सब के बीच वक्फ को लेकर भी खींचतान यूपी में शुरू हो गई है।
5: बीजेपी के लोग किसी भी सीमा तक झूठा प्रचार कर सकते हैं।
19: समाजवादी पार्टी के लोगों को तो ठेके पट्टे से ही फुर्सत नहीं है।
26: अयोध्या में चढ़ावा चोरी क्या हुई, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की चुनावी राजनीति के पौबारा हो गए। महीने भर में कांग्रेस और समाजवादियों ने जितनी बार राम का नाम नहीं लिया होगा उतनी बार वक्फ बाबर कब्रिस्तान हो चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ धुआंधार रैलियां और कार्यक्रम कर रहे हैं, सैकड़ों करोड़ की योजनाओं की सौगात जिले जिले दी जा रही है। और इसके साथ ही विपक्ष पर मुस्लिम परस्त, मुगल परस्त, मौका परस्त होने की सियासी बौछार चल रही है।
19: आज के समाजवादी राम से दूरी बनाते हैं, बाबर को अपना आदर्श मानते हैं, औरंगजेब को अपना आदर्श मानते हैं, राम और कृष्ण को नहीं मानते।
5: अंतर यही है, बीजेपी की सरकार आई तो अब पैसा मंदिरों के विकास के लिए, धामों के सुंदरीकरण में खर्च हो रहा है, और समाजवादी पार्टी के समय वही पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल के लिए चला जाता था।
19: वक्फ के नाम पे हजारों एकड़ लैंड बेच भी दी गई, वारा नारा किया गया, ये सीधे सीधे डकैती थी। इसके नाम पर एक भी बार समाजवादी पार्टी नहीं बोली, एक भी बार कांग्रेस नहीं बोली, बल्कि जब मोदी जी ने इसके खिलाफ कानून बनाया, उस लूट के खिलाफ कानून बनाया, तो इन लोगों ने आंदोलन किया।
26: एक तरफ समूचा विपक्ष राम मंदिर में चोरी को लेकर हमलावर था, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वक्फ में घोटालों का मुद्दा उठाया और अब उसी लाइन को यूपी के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ने और आगे बढ़ा दिया।
20: उत्तर प्रदेश पे भी वक्फ बोर्ड, सुन्नी वक्फ बोर्ड जो है इस समय वर्तमान में रिक्त है। आने वाले दिनों में जब सुन्नी वक्फ बोर्ड का गठन होगा तो जो वक्फ अधिनियम, संशोधन अधिनियम के अनुसार जो गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन के अनुसार उत्तर प्रदेश में भी उस अधिनियम के माध्यम से वक्फ के बोर्ड का गठन होगा, जिसमें पिछड़े मुसलमानों को रखा जाएगा, मुस्लिम महिलाओं को रखा जाएगा, ऐसे हमारे हिंदू भाई समाज के दो भाइयों को रखा जाएगा। जो भी उस प्रावधान में जो भी गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन के अनुसार ही आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में भी वक्फ बोर्ड के फॉर्मेशन होगा।
26: अगर ऐसा होता है तो एमपी के बाद उत्तर प्रदेश देश का दूसरा राज्य होगा जो वक्फ बोर्ड में गैर मुसलमान सदस्य रखेगा।
21: मुझे लगता है कि ये हमारे जो फंडामेंटल राइट हैं और हमारे जो मजहबी आजादी हमें दी गई है, यकीनी तौर पर उसके साथ कहीं ना कहीं सीधा टकराव है, इसलिए हुकूमत को अपने इस फैसले पर नजरसानी करने की जरूरत है।
26: हालांकि उत्तर प्रदेश में मौजूदा शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन का कहना है कानून संसद से बना हुआ है तो उसका पालन अनिवार्य है, लेकिन सुन्नी समुदाय के मौलानाओं का कहना है वक्फ संशोधन कानून के कुछ प्रावधानों पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है और मामला कोर्ट में लंबित, लिहाजा अभी ऐसा नहीं करना चाहिए।
4: थोड़ी देर के लिए रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, आप रहिए खबरदार।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: पापा
3: सॉरी यार गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
2: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
3: छक्का
2: सब कैशलेस हो गया है।
3: हाँ
4: जब बात हो सोयाबीन और मक्के की फसलों को सूंडियों से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का प्रोक्लेम एक्स्ट्रा। जीते हर बाजी।
5: ये देखो एक इन्वेस्टमेंट गुरु के टिप से पैसे डबल होंगे, बस ऑफर क्लेम करना है।
6: पैसे डबल ऐसे कोई भी ग्रुप से? तो अर्ज किया है, डबल रिटर्न्स के लालच में तुम्हें उलझाएंगे ये शेयर बाजार के अनवेरिफाइड ग्रुप, फेक टिप्स भेजकर तुम्हारी जेबें खाली कर जाएंगे। सेबी और एनएससी का कहना है सिर्फ सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह लें और पेमेंट सिर्फ वेरीफाइड अकाउंट या UPI पे करें।
7: समझ कर, इन्वेस्ट कर। NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी।
8: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
9: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
10: फेना पावर वॉश अब है और शक्तिशाली।
11: गहरी सफाई।
10: हाँ, पावर वॉश का कमाल।
11: गहरी खुशबू
10: और प्यार भरी भी।
11: कैसे?
10: ये है एक्टिव नीडल्स की शक्ति,
12: इसीलिए फेना ही लेना।
13: वी आर ओवर जिमी।
14: हे, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो PP अब संभाल लेगा, आप अपना देख लो।
15: अरे इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
16: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
17: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
18: हमें स्वस्थ रखने वाली सारी चीजें ज्यादातर शुद्ध होनी चाहिए। सूर्य की किरणें और स्वच्छ पानी, वैसा ही है लाइन अरेबियन डेट्स और अब लाइन लाइना डेट्स। इसमें फाइबर्स और विटामिन्स भी कुदरती हैं, जो देता है स्वास्थ्य भी कुदरती।
19: लाइन लाइना प्रीमियम डेट्स।
20: आगे आगे।
21: अरे उधर
20: उधर गया।
21: करेक्ट करेक्ट।
22: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
23: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
24: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
23: Durable pipes, fittings and tanks, a complete range of sanitary solutions.
24: Akajay, the number one Korean skincare brand, now in India.

0: इन एसोसिएशन विद
1: E3HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
2: अगर आपकी उम्र 21 से 40 साल के बीच है, आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, लेकिन पैसे नहीं है, तो ये खबर आपके लिए है। अब न बैंक की भारी गारंटी, न जमीन गिरवी और न ही ब्याज का बोझ। यूपी सरकार ऐसी योजना लेकर आई है जिसमें 5 लाख तक का लोन बिना गारंटी और ब्याज मुक्त मिलेगा। सवाल है, कौन ले सकता है इसका फायदा और कैसे? उत्तर प्रदेश ने अब सिर्फ नौकरी देने वाला नहीं, नौकरी देने वाले युवा तैयार करने की दिशा में बड़ा कदम उठा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत यानी युवाओं को उद्यमी बनाने का मिशन शुरू किया है। सरकार का लक्ष्य है हर साल 1 लाख नए युवा उद्यमी तैयार करना और अगले 10 साल में 10 लाख आत्मनिर्भर उद्यमियों की नई फौज खड़ी करना। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, बिजनेस शुरू करने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? यहीं से शुरू होती है MY युवा योजना की कहानी। अक्सर नए उद्यमियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती होती है बैंक की गारंटी, जमीन गिरवी रखने की शर्त और महंगे ब्याज का बोझ। अब सरकार कह रही है, अगर आपका आइडिया अच्छा है तो पूंजी की चिंता सरकार करेगी। और इस योजना के तहत 21 से 40 साल के उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासियों के लिए 5 लाख तक का ब्याज मुक्त और बिना गारंटी वाला लोन वो देगी, यानी न किसी तीसरे व्यक्ति की गारंटी, न कोई संपत्ति गिरवी। इतना ही नहीं, सरकार पर योजना लागत का 10% मार्जिन मनी अनुदान भी देगी ताकि बिजनेस की शुरुआत आसान हो सके। योजना सिर्फ लोन देकर खत्म नहीं होती, अगर आप समय पर पहली राशि चुका देते हैं तो दूसरे चरण में 10 लाख से 20 लाख तक का लोन भी मिल सकता है, जिस पर सरकार तय सीमा का 50% ब्याज सब्सिडी भी देगी। हालांकि इस योजना का लाभ लेने के लिए कुछ शर्तें भी हैं। आवेदन उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए, उम्र 21 से 40 वर्ष के बीच हो सकती है, कम से कम 8वीं पास हो और किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से तकनीकी डिग्री, डिप्लोमा, ITI और सरकारी कौशल प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र होना चाहिए। आवेदन की प्रक्रिया भी पूरी तरह ऑनलाइन रखी गई है। युवा UPMSME पोर्टल और आधिकारिक MY UVA पोर्टल के जरिए आवेदन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैंकों को भी साफ निर्देश दिए हैं कि ऋण स्वीकृति में देरी ना हो ताकि युवाओं को समय पर पैसा मिल सके। यानी अगर आप उत्तर प्रदेश के युवा हैं, नौकरी ढूंढने के बजाय अपना कारोबार शुरू करना चाहते हैं और सिर्फ पैसों की कमी आपको रोक रही है, तो MY UVA योजना आपके लिए बड़ा मौका बन सकती है। अब देखना होगा कि सरकार का 10 लाख नए उद्यमियों का सपना जमीन पर कितनी तेजी से उतरता है।

0: ब्लैक एंड व्हाइट और हरदम रहिए खबरदार।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। आज सबसे पहले आपको बताएंगे कि क्या अमेरिका और ईरान के बीच विनाशकारी युद्ध का सीजन 2 शुरू हो चुका है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर रद्द करने का ऐलान क्या किया। अमेरिकी सेना ने सिर्फ 48 घंटे के भीतर ईरान के 170 रणनीतिक ठिकानों को बमबारी कर खंडहर बना दिया। आज आपको बताएंगे कि आखिर क्यों सीज फायर समझौते के केवल 3 हफ्ते बाद ही ट्रंप का ईरान से भरोसा उठ गया। क्या है सीज फायर रद्द करने की वो इनसाइड स्टोरी जिसने मिडिल ईस्ट को फिर से बारूद के ढेर पर लाकर बिठा दिया है, और क्यों कहा जा रहा है कि इस बार अमेरिकी मिसाइलों का अगला टारगेट ईरान के रिहायशी इलाके और पानी के प्लांट होने वाले हैं। इसके बाद आपको ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में प्रधानमंत्री मोदी का मेगा शो दिखाएंगे और इसके साथ ही उस मेगा डील के बारे में बताएंगे जिसने भारत के हाथों में ऊर्जा का वो खजाना सौंप दिया है जिसके लिए देश 2 दशकों से इंतजार कर रहा था। आज आपको बताएंगे कि कैसे जिस ऑस्ट्रेलिया ने भारत को यूरेनियम देने से इनकार कर दिया था और आज ऑस्ट्रेलिया का मीडिया प्रधानमंत्री मोदी को रॉकस्टार बताते हुए भारत के साथ यूरेनियम डील की जमकर तारीफ कर रहा है। आखिर में आपको मुंबई के 73 साल पुराने और बेहद चर्चित आइसक्रीम पार्लर में लेकर चलेंगे जिसकी आइटम्स के बड़े बड़े सेलिब्रिटी दीवाने हैं। आज वहां फूड डिपार्टमेंट की छापेमारी में चूहे, मक्खी, गंदगी और कुछ एक्सपायर्ड आइटम्स मिले। सवाल यह है कि इतने फेमस आइसक्रीम पार्लर का यह हाल है तो भरोसा किस पर किया जा सकता है। क्या अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध का सबसे खतरनाक दौर शुरू हो गया है। आज पूरी दुनिया इस सवाल में उलझी हुई है। इसका सीधा कारण है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का वो बयान जिसमें उन्होंने सीज फायर को खत्म करने का ऐलान किया, और जैसे यह ऐलान हुआ धमाके शुरू हो गए। पिछले 2 दिनों से अमेरिकी सेना ने ईरान के अलग अलग रणनीतिक ठिकानों पर बमबारी की है। सीज फायर के ऐलान के बाद यह पहली बार है जब लगातार 2 दिनों से इतने बड़े पैमाने पर हमले हो रहे हैं। अमेरिकी सेना ने कल रात ईरान के 90 ठिकानों पर हमले किए और इससे पहले 7 जुलाई को 80 ठिकानों को तबाह किया। कुल मिलाकर पिछले 2 दिनों के अंदर ईरान के 170 रणनीतिक ठिकानों पर हमले हो चुके हैं, जो सीज फायर के ऐलान के बाद सबसे बड़ी संख्या है। 8 अप्रैल को जब अमेरिका और ईरान के बीच सीजफायर की घोषणा हुई थी तो यह तय हुआ था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की आवाजाही को चालू कर दिया जाएगा और अमेरिकी सेना ईरान पर लगाई गई नाकेबंदी को खत्म कर देगी, पीछे हट जाएगी। लेकिन इस बीच दोनों देशों के बीच छिटपुट हमले होते रहे। 3 मई को सीजफायर के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने जहाजों की आवाजाही पर ईरानी नाकेबंदी को देखते हुए प्रोजेक्ट फ्रीडम लॉन्च किया था। इसके तहत जिन जहाजों के पास ईरान की अनुमति नहीं थी उन्हें अमेरिकी सेना की सुरक्षा में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पार करवाया जाता था। इस प्रोजेक्ट के शुरू होने के बाद 4 मई से ही ईरान ने अमेरिकी सेना पर हमले शुरू कर दिए, क्योंकि वो ईरान की अनुमति लिए बिना जहाजों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पार करवा रहे थे। इस हमले का बदला अमेरिका ने 25 मई को लिया। उस दिन अमेरिकी सेना ने ईरान के मिसाइल ठिकानों पर बमबारी की। फिर अगले दिन यानी 26 मई को ईरान ने दावा किया उन्होंने एक अमेरिकी रीपर ड्रोन मार गिराया है। इसके जवाब में 27 मई को अमेरिकी सेना ने ईरान के कुछ और रणनीतिक ठिकानों पर फिर से हमले किए। सीजफायर के बावजूद होने वाली इन छोटी छोटी झड़पों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर नियंत्रण की नूरा कुश्ती की तरह देखा गया। ईरान का मानना था कि जो भी जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से गुजरे वो ईरान के बताए रास्ते और उनकी अनुमति के साथ ही जाए। भले ही सीजफायर था लेकिन ईरान यही चाहता था। सीजफायर से पहले ईरान केवल उन्हीं देशों के जहाजों को जाने देता था जो देश उसके साथ थे। सीजफायर

0: के बाद उसने सभी जहाजों को जाने तो दिया, लेकिन अनुमति लेने वाला नियम नहीं बदला। वो चाहता था कि सारे जहाज उसकी निगरानी में ही निकलें। ऐसा न करने वाले जहाजों पर वो हमले करता रहा। इन्हीं हमलों से गुस्साई अमेरिकी सेना बार बार पलटवार करती थी, हालांकि ये पलटवार कभी बड़े पैमाने पर नहीं किए गए थे। ये वैसी ही स्थिति थी कि तुम जितना मारोगे हम भी उतना ही मारेंगे। अमेरिका कहता रहा कि अगर ईरान हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर हमले करेगा तो अमेरिका भी उन पर हमले जरूर करेगा। इसके बावजूद ईरान अनुमति वाली शर्त से पीछे नहीं हटा। लेकिन इस बार की स्थिति थोड़ी अलग है, हालांकि वजह पुरानी वाली ही है। 6 जुलाई को ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर रहे मार्शल आइलैंड, सऊदी अरब और लाइबेरिया के झंडे वाले जहाजों पर हमला किया, और इस पर अमेरिका ने पलटवार में पहले की तरह छोटे हमले नहीं किए। उसने इन हमलों को एमओयू का उल्लंघन बताया, क्योंकि 17 जून को जब दोनों देशों के बीच एमओयू साइन हुआ था तब से ये झड़पें बंद हो गई थी और स्थायी शांति के संकेत मिलने लगे थे। अब जब ईरान ने एमओयू का उल्लंघन किया तो अमेरिका भड़क गया। बदला लेने के लिए अमेरिकी सेना ने इस बार छोटे हमले नहीं किए, बल्कि लगातार 2 दिनों तक भीषण बमबारी की। पिछले 2 दिनों में अमेरिकी सेना ने कहां कहां हमले किए वो भी हम आपको दिखाते हैं। इन हमलों को अमेरिका की बड़ी रणनीति का हिस्सा माना गया। मुख्य रूप से अभी तक लड़ाई का केंद्र स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज रहा है, इसीलिए अमेरिका का टारगेट भी इसके आसपास ही है, जैसे खर्ग आइलैंड, लवान आइलैंड, अबू मूसा आइलैंड, केशम आइलैंड, बुशहर, बंदर अब्बास, कोहेतास्क, पोर्ट सिरिक, जास, कुनार, ईरान शहर और चबहार। ये वो इलाके हैं जिनकी मदद से ईरान फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के क्षेत्र पर अपना नियंत्रण बनाता है। इन्हीं के दम पर वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करने की ताकत रखता है। लेकिन इस बार उसने सांकेतिक रूप से अपनी शक्ति दिखाते हुए अक्काला रेलवे ब्रिज और मशहद के रेलवे ब्रिज पर भी अटैक किया है। ये वो इलाके हैं जो ईरान के उत्तर में है। इन हमलों के जरिए अमेरिका ने बताया कि उनकी पहुंच ईरान के हर क्षेत्र पर है और उनके हमले अब केवल सैन्य ठिकानों तक सीमित नहीं रहेंगे। 8 जुलाई को अमेरिका ने जो हमला किया था उसमें उन्होंने मशहद के रेलवे ब्रिज को टारगेट किया था। मशहद वो जगह है जहां आज ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामेनेई को सुपुर्द-ए-खाक किया गया है। यानी अमेरिका का ये हमला ईरान को एक धमकी की तरह भी था। धमकी ये कि अगर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से नियंत्रण नहीं छोड़ा तो खामेनेई का अंतिम संस्कार कार्यक्रम भी खतरे में आ सकता है। IRGC ने इस हमले को लेकर अमेरिका पर आरोप भी लगा दिए कि वो अली खामेनेई के अंतिम संस्कार के कार्यक्रम को प्रभावित करने की साजिश कर रहा है। अमेरिकी सेनाओं ने इस बार IRGC की छोटी हमलावर बोट्स को निशाना बनाया। इन्हीं बोट्स के जरिए IRGC हॉर्मुज क्षेत्र पर नियंत्रण करता है। अमेरिकी सेना का दावा है उन्होंने करीब 60 बोट्स को तबाह किया है।
1: वो

अमेरिकी सेना के इन हमलों के जवाब में ईरान ने कुवैत और बहरीन पर हमले किए, लेकिन इन हमलों से कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। इसकी एक वजह यह है कि ईरान की लीडरशिप का फोकस अपने सुप्रीम लीडर अली खामेनेई के अंतिम संस्कार कार्यक्रम में रहा और इसीलिए बड़े पैमाने पर पलटवार नहीं किए गए। लेकिन आज ये कार्यक्रम खत्म हो गया है और ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाघेर गालिबाफ की माने तो ईरान पलटवार की बड़ी तैयारी कर रहा है। मोहम्मद बाघेर गालिबाफ ने अमेरिकी हमलों के जवाब में एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि अमेरिका अब भी नहीं सीखा कि दादागिरी दिखाना या वादे तोड़ना मुफ्त में नहीं आता। उनका मतलब यह था कि अमेरिका ने अगर ईरान पर हमला किया है तो उसका जवाब उसे हमले से ही मिलेगा। गालिबाफ ने साफ शब्दों में कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ईरानी शर्तों और उसकी बनाई व्यवस्था पर ही खुलेगा, अमेरिकी धमकियों से नहीं। सीज फायर के बाद यह पहली बार है जब ईरान की ओर से अमेरिका को इस तरह की धमकियां दी जा रही हैं। दरअसल हमलों की तीव्रता को

0: देखते हुए ईरान की लीडरशिप को पता चल गया कि अमेरिका कुछ बड़ा करने वाला है। अमेरिकी न्यूज पोर्टल एक्सियोस की एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका लंबे युद्ध के इरादे से एक बार फिर उतर गया है, यानी अमेरिका के लिए ईरान वॉर का सीजन 2 शुरू हो गया है और यह युद्ध अगले कई हफ्तों तक चल सकता है। एक्सियोस ने अपनी रिपोर्ट में अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से बताया है कि व्हाइट हाउस ने ईरान के खिलाफ मल्टी वीक मिलिट्री कैंपेन शुरू किया है, यानी अमेरिकी सेना अगले कुछ हफ्तों तक ईरान के खिलाफ सैन्य ऑपरेशन जारी रखेगी। जिस तरह के हमले पिछले 2 दिनों में हुए हैं उसको देखते हुए ये कुछ हद तक सही लगता है। अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा सीज फायर रद्द करने की घोषणा के बाद आई इस रिपोर्ट ने पूरी दुनिया को टेंशन में डाल दिया है। 28 फरवरी से 8 अप्रैल तक ईरान वॉर का सीजन 1 आया था। 40 दिनों के सीजन 1 में आपने देखा 3,468 मौतें, जिनमें 1,460 मासूम नागरिक थे। इसके अलावा आपने देखा ईरान का 25,79,000 करोड़ रुपए का नुकसान। आपने देखा क्रूड ऑयल की कीमतों को $70 प्रति बैरल से $120 प्रति बैरल तक पहुंचते हुए। आपने 1,00,000 रिहायशी इमारतों, 23,500 व्यावसायिक इमारतों और 339 अस्पतालों को ध्वस्त होते हुए भी देखा। अब 7 जुलाई से ईरान वॉर का सीजन 2 शुरू हो गया है। अब तक ईरान के 170 ठिकानों पर हमले हो चुके हैं। अब आगे क्या क्या होगा, इस सवाल से पूरी दुनिया दहशत में है। एक्सियोस ने अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से जो रिपोर्ट दी है उससे एक बात और पता चली है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप जहाजों पर हुए ईरान के हमलों से बहुत ज्यादा गुस्से में। आपको याद होगा यह गुस्सा नेटो की बैठक में डोनाल्ड ट्रंप के मुंह से किस तरीके से बाहर आया था।
1: टू मी आई थिंक इट्स ओवर, आई डोंट वांट टू डील विद देम एनीमोर, दे स्कम। यू नो व्हाट स्कम इज? दे स्कम, दे सिक पीपल, दे आर लेड बाय सिक पीपल एंड दे आर विशियस वायलेंट पीपल एंड इफ दे हैड अ न्यूक्लियर वेपन दे वुड यूज इट। एज फार एज आई एम कंसर्नड इट्स ओवर।
0: अमेरिकी अधिकारियों ने एक्सियोस को बताया कि ईरान को अमेरिका से जबरदस्त मार लगेगी ताकि उन्हें पता चले कि अमेरिका मजाक नहीं कर रहा। अधिकारियों के अनुसार तेहरान की अगली चाल से पता चलेगा कि उनका क्या हाल होने वाला है। अधिकारियों के अनुसार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सभी जहाजों की सामान्य आवाजाही होना पहली प्राथमिकता है और ईरान की कोशिश है कि वो इस पर नियंत्रण करे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर एक्सियोस के साथ जिन अधिकारियों ने बात की है कुछ वैसी ही बात अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने भी पत्रकारों से कही। जेडी वैंस ने कहा कि डील बहुत आसान है, अगर ईरान जहाजों पर हमला करेगा तो अमेरिका उन्हें तबाह कर देगा। जेडी वैंस ने याद दिलाया कि सीज फायर की शर्त यही थी कि अमेरिकी नाकेबंदी हटेगी और ईरान हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर फायरिंग नहीं करेगा।
2: The basic deal that we cut was, we'll lift our blockade if you stop shooting at ships. But if you shoot at ships, we are going to punch back, and we're going to punch back harder than ever before. That was the deal. They said they would stop shooting at ships. And what happened 24 hours ago? They start shooting at ships again. Now, they were good. They were well behaved for about a week. But then they start shooting at ships. So the deal is very simple. If they shoot at ships, we're going to knock the hell out of them. And it's that simple. And that's the basic way it's going to work.
0: 6 जुलाई को ईरान द्वारा 3 जहाजों पर हुए हमलों को लेकर डोनाल्ड ट्रंप बहुत गुस्से में हैं। अभी तक वो ये मानते रहे कि ईरान के साथ भले ही छोटी मोटी लड़ाइयां चल रही हैं, लेकिन आखिर में दोनों देश सीज फायर चाहते हैं और इसके लिए बातचीत भी चल रही है। लेकिन ईरान द्वारा हालिया हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप की ये सोच बदल गई। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान को धमकी दे दी कि अगर वो एक हमला करेगा तो उस पर 20 हमले किए जाएंगे।
1: And I say we hit them 20-1. Every time they hit us, we're going to hit them 20. And we did it last night. They did a little something today, but it was really retribution for last night. They hit actually 3 boats, not 2. And when they hit, we hit back much harder. Another way of doing it. We have many ways we can win, but we've already won militarily. They have very little left, and they want to make a deal so badly. They called a little while ago. They want to make a deal so badly. I just don't know if they're worthy of making a deal. I don't know that they're going to honor the deal. That's the problem. Because they're sort of crazy, to be honest with you. They're sort of crazy. They're a little bit out of control, but they want to make a deal. They're badly.
0: एक्सपर्ट्स को लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान के 2 मतलब हैं। पहला ये कि वो ईरान पर दबाव बना रहे हैं और जल्द ही पलट जाएंगे, दूसरा ये कि ईरान के सीज फायर पर वो होपलेस हो चुके हैं और उन्हें लगने लगा है कि ईरान सीज फायर या न्यूक्लियर हथियारों की होड़ छोड़ने को लेकर सीरियस नहीं है। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भी ईरान वॉर सीजन 2 की एक इनसाइड स्टोरी बताई है। इसमें बताया है कि एमओयू साइन होने के 2 हफ्ते बाद ही ईरान की ओर से हमले किए जाने की खबर ने डोनाल्ड ट्रंप का भरोसा तोड़ दिया। वॉल स्ट्रीट जर्नल के अनुसार ईरान पर हुए ताजा हमलों की पटकथा 6 जुलाई की शाम को लिखी गई थी। उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप तुर्की निकलने की प्लानिंग कर रहे थे क्योंकि 7 और 8 जुलाई को नेटो की बैठक थी। इसी दौरान अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो और रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ अचानक ओवल ऑफिस पहुंच गए। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से बात की और ईरान के नए हमलों के बारे में बताया। अब 6 जुलाई को ही ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से गुजर रहे 3 जहाजों पर हमला किया था। ईरान ने जहाजों पर हमले के लिए एंटी शिप क्रूज मिसाइल और आत्मघाती ड्रोन्स का इस्तेमाल किया था। मार्को रूबियो और पीट हेगसेथ ने ट्रंप को बताया कि जिन जहाजों पर ये हमले किए गए वो जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के दक्षिणी रूट का इस्तेमाल कर रहे थे। ये समुद्री रूट ओमान के समुद्री क्षेत्र से होकर गुजरता है। पिछले काफी समय से अमेरिकी सेना ओमान के तटीय सीमा वाले इसी रूट से जहाजों को सुरक्षा देते हुए हॉर्मूज पार करवा रही थी। इस रूट से उन्हीं जहाजों को ले जाया जा रहा था जिनके पास ईरान की अनुमति नहीं थी। ये ईरान की आधिकारिक सीमा नहीं है, इसीलिए तकनीकी रूप से ईरान इसमें दखल नहीं देता था। लेकिन तनाव बढ़ने के बाद से ईरान ने इस हिस्से से गुजरने वाले जहाजों पर भी हमले शुरू कर दिए थे। इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप ईरान के हमले से गुस्से में आ गए। उनका मानना था कि सीज फायर के बाद ईरान को दूसरे देश की सीमा से गुजर रहे जहाजों पर हमला नहीं करना चाहिए। यही वजह थी कि उन्होंने सीज फायर को लेकर कहा कि उन्हें लगता है कि अब यह खत्म हो चुका है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के अनुसार ईरान पर हमले से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने मार्को रूबियो और पीट हेगसेथ से एक सवाल पूछा था कि क्या उन्हें लगता है कि ईरान सीज फायर को लेकर सीरियस है। इस सवाल के बाद काफी देर तक तीनों के बीच बातचीत हुई और कुछ अन्य अधिकारियों को भी इसमें शामिल किया गया। आखिर में डोनाल्ड ट्रंप इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि ईरान सीज फायर को लेकर गंभीर नहीं है। ईरान के हमले ने डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका दिया। इस हमले से आहत ट्रंप ने सबसे पहले ईरान की तेल बिक्री वाले लाइसेंस को रद्द कर दिया और फिर उन्होंने अमेरिकी सेनाओं को आदेश दिया कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के पास ईरान के सैन्य ठिकानों पर भीषण हमले करें। और इसके बाद अब उन्होंने धमकी दी है कि अगला हमला ईरान के सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर और डीसैलिनेशन प्लांट्स पर होगा। यानी ट्रंप ने ईरान को रिहायशी इमारतों और पीने के पानी से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने की चेतावनी दी है। इस बार के अमेरिकी हमलों ने ईरान ही नहीं भारत की चिंताएं भी बढ़ा दी। अमेरिकी सेना के निशाने पर ईरान का चाबहार पोर्ट भी था। सीज फायर के बाद से यह पहली बार है जब अमेरिका ने चाबहार को निशाने पर लिया है। चाबहार भारत के लिए व्यापारिक और रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। अमेरिकी सेना ने चाबहार पर बड़े पैमाने पर हमला किया है। ईरान की सरकारी मीडिया के अनुसार हमलों के बाद शहर के बड़े हिस्से में बिजली कटौती हुई और स्थानीय लोगों ने कई धमाकों की आवाजें सुनने का दावा किया। जानकारी के अनुसार अमेरिकी सेना के निशाने पर चाबहार में मौजूद सैन्य ठिकाने और पोर्ट पर मौजूद कमर्शियल ठिकाने थे। अमेरिकी हमले में चाबहार पोर्ट का ट्रैफिक कंट्रोल टावर ध्वस्त हो गया है। चाबहार पर पिछली बार अमेरिका ने 28 फरवरी को हमला किया था और तब भी उसने पोर्ट पर अटैक नहीं किया था। 28 फरवरी के बाद चाबहार पर अटैक भी नहीं किए गए। ये पहली बार है जब अमेरिका ने चाबहार पोर्ट पर हमला किया है। अमेरिकी सेना का मानना है कि ईरान चाबहार पोर्ट का रणनीतिक इस्तेमाल कर रहा है। चाबहार पोर्ट ईरान के पूर्वी हिस्से में है जो ओमान की खाड़ी से लगता है। देखा जाए तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से बिल्कुल बाहर की तरफ है। ये ईरान का इकलौता ऐसा समुद्री बंदरगाह है जो गहरे पानी वाले हिस्से में है। यहां से ईरान की पहुंच अरब सागर और हिंद महासागर तक हो जाती है। चाबहार लंबे समय से ईरान की अर्थव्यवस्था की लाइफलाइन रहा है। इसी वजह से भारत ने भी इसमें बड़ा निवेश किया है। अभी तक अमेरिकी सेना मुख्य तौर पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से लगने वाले बंदरगाहों पर हमले कर रही थी, लेकिन चाबहार पोर्ट पर हुए इस हमले के बाद अमेरिका ने ईरान को कड़ा संदेश दिया है। वो ईरान की समुद्री लाइफलाइन को कट कर सकता है और इससे केवल ईरान ही नहीं बल्कि भारत की चिंताएं भी बढ़ गई। दरअसल चाबहार पोर्ट के जरिए भारत का व्यापार पाकिस्तान को बाईपास कर देता है। चाबहार पोर्ट के जरिए भारत अपनी शिपमेंट समुद्री रास्ते से ईरान के चाबहार पहुंचाता है और फिर यहां से अफगानिस्तान और मध्य एशिया के देशों तक व्यापार करता है। इस व्यापारिक मार्ग के होने से पाकिस्तान इसमें बाधा नहीं बनता है। यही वजह है कि भारत के लिए चाबहार पोर्ट एक अहम समुद्री ठिकाना है और इसी वजह से पिछले कई वर्षों से भारत चाबहार पोर्ट पर निवेश भी कर रहा है। चाबहार को विकसित करने के लिए इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड और द पोर्ट्स एंड मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के बीच एक अनुबंध है। इसके तहत भारत और ईरान मिलकर चाबहार पोर्ट के शाहिद बेहिश्ती टर्मिनल को विकसित और इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके तहत भारत अब तक 1146 करोड़ रुपए खर्च कर चुका है। भारत ने चाबहार पोर्ट के विकास के लिए ईरान को 2387 करोड़ रुपए का कर्ज देने की बात भी कही है। चाबहार पोर्ट के लिए भारत और ईरान का गठबंधन चीन और पाकिस्तान के गठबंधन का जवाब माना जाता है। चीन ने पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट को विकसित करने का जिम्मा उठाया। ग्वादर पोर्ट चाइना के सीपैक का हिस्सा है। ईरान के चाबहार पोर्ट और पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट के बीच की दूरी मात्र 170 किलोमीटर है। ये दोनों ही ओमान की खाड़ी से लगते हुए हैं। चीन साल 2013 से ही पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट को विकसित कर रहा है। 2017 में तो पाकिस्तान ने ग्वादर पोर्ट को 40 साल की लीज पर चीन को दे दिया। इस पोर्ट के जरिए चीन की पहुंच ओमान की खाड़ी तक हो गई। चीन की इसी रणनीतिक चाल को टक्कर देने के लिए भारत ने साल 2018 में ईरान के चाबहार पोर्ट को मिलकर विकसित करने की जिम्मेदारी ली। इससे ईरान को भी फायदा हुआ और भारत को भी। यह इकलौता विदेशी बंदरगाह है जिसे भारत विकसित कर रहा है और इस्तेमाल भी कर रहा है। हालांकि अभी तक यह साफ नहीं है कि अमेरिका का हमला चाबहार पोर्ट के शाहिद बेहिश्ती टर्मिनल पर हुआ है या कहीं और, लेकिन चाबहार पोर्ट अगर अमेरिकी सेना के निशाने पर है तो इसका असर आज नहीं तो कल शाहिद बेहिश्ती टर्मिनल पर भी होगा और यह भारत के व्यापारिक नजरिए से अच्छी खबर नहीं होगी। भारत की चिंता चाबहार पोर्ट पर अमेरिकी हमला है और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चिंता यह है कि कहीं ईरान उनके जहाज पर हमला न कर दे। कुवैत ने पिछले साल मई में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक एयरप्लेन गिफ्ट में दिया था। इस प्लेन को कुछ महीने पहले एयरफोर्स वन में शामिल किया गया और नेटो की समिट के लिए ट्रंप इसी एयरप्लेन से तुर्की गए थे। लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप को तुर्की से इंग्लैंड के लिए रवाना होना था तो उन्हें इस प्लेन से नहीं ले जाया गया, बल्कि सीक्रेट सर्विस की टीम डोनाल्ड ट्रंप को पुराने वाले एयरफोर्स वन जहाज से लेकर यूके गई। इस बदलाव को लेकर कई तरह के सवाल उठने लगे। यह बदलाव एक ऐसे वक्त में किया गया जब अमेरिका ने ईरान पर बड़ा हमला किया था और एक साथ 80 ठिकानों पर हमला किया था। माना जा रहा है कि सुरक्षा कारणों की वजह से ही डोनाल्ड ट्रंप को नए एयरफोर्स वन के बजाय पुराने वाली ही विमान से ले जाया गया, क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से वो ज्यादा सक्षम है। हवाई जहाज बदलने की इस खबर को डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान ने भी हवा दी। एयरफोर्स वन में ही पत्रकारों से बातचीत के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से खुद को खतरा बताया। डोनाल्ड ट्रंप से पत्रकारों ने पूछा कि क्या ईरान की ओर से एयरफोर्स वन को किसी तरह की धमकी मिली है, तो इसके जवाब में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान की हिटलिस्ट में वो पहले नंबर पर है और उनके साथ साथ शायद पत्रकार भी खतरे में हो। हालांकि CNN ने अपनी एक रिपोर्ट में ट्रंप के हवाले से बताया कि जहाज को बदलने की वजह सुरक्षा चिंताएं नहीं थी और किसी तरह की तकनीकी खराबी भी नहीं थी, लेकिन यह भी सच है कि ईरान के साथ तनाव बढ़ने के बीच अचानक से अमेरिकी राष्ट्रपति का जहाज बदलना सामान्य बात तो नहीं थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है, उन पर हमेशा खतरा रहता है। डोनाल्ड ट्रंप का यह कहना कि वो ईरान की हिटलिस्ट में है गलत नहीं है। जुलाई 2024 में आसिफ मर्चेंट नाम के एक पाकिस्तानी व्यक्ति को टेक्सास में अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों ने गिरफ्तार किया था। US डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के अनुसार आसिफ मर्चेंट को ईरान के इशारे पर ट्रंप की हत्या करने के लिए भेजा गया था। वो एक किलर टीम तैयार कर रहा था। मार्च 2026 में आसिफ को हत्या की साजिश का दोषी ठहराया गया। नवंबर 2024 में US डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने ट्रंप की हत्या से जुड़ी एक बड़ी साजिश का खुलासा किया। इस साजिश में फरहाद शाकेरी नाम के एक व्यक्ति का नाम सामने आया जो एक ईरानी अधिकारी के संपर्क में था। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के अनुसार फरहाद को ट्रंप की निगरानी करने और चुनाव से पहले उनकी हत्या करने का निर्देश दिया गया था। हालांकि फरहाद अमेरिकी एजेंसियों की गिरफ्त में नहीं आया। जुलाई 2025 में ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामेनेई के सलाहकार मोहम्मद जवाद लारिजानी ने ट्रंप को धमकी दी थी कि अगर ट्रंप ने ऐसा वैसा कुछ किया तो वो अपने बीच रिजॉर्ट पर सनबाथ नहीं ले पाएंगे, क्योंकि जिस दिन वो ऐसा करेंगे उसी दिन एक ड्रोन सीधे उनकी नाभि पर हमला करेगा। हालांकि लारिजानी ईरान युद्ध के दौरान अमेरिकी हमलों में मारे जा चुके हैं, लेकिन एक बात साफ है कि डोनाल्ड ट्रंप गलत नहीं कह रहे हैं, वो ईरान की हिटलिस्ट में टॉप पर हैं, और शायद इसीलिए सीक्रेट एजेंसियां उनकी सुरक्षा से जुड़ी किसी भी टिप को नजरअंदाज नहीं करती। 28 फरवरी के बाद से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कभी शांति दूत बन जाते हैं, कभी दुनिया के सबसे बड़े सेनापति, लेकिन ईरान के मामले में चित भी मेरी पट भी मेरी का इरादा रखने वाले डोनाल्ड ट्रंप की एक न चली। अमेरिका ने ईरान के साथ युद्ध विराम खत्म करके दोबारा हमले की शुरुआत ऐसे समय में की जब ईरान आयतुल्ला अली खामेनेई को सुपुर्द खाक करने के लिए एक विश्व स्तर का बड़ा आयोजन शुरू कर चुका था। खामेनेई के अंतिम संस्कार आयोजन का आज आखिरी दिन था। ईरान के पवित्र मशहद शहर में आयतुल्ला अली खामेनेई को आज सुपुर्द खाक की रस्म निभाई गई। ईरान की प्रेस टीवी के मुताबिक लाखों ईरानी मशहद में अपने सर्वोच्च नेता, सबसे बड़े धर्मगुरु और राजनीति के शिखर पर बैठे रहे अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल हुए। 3 जुलाई को अली खामेनेई के अंतिम संस्कार के आयोजन शुरू हुए थे। ईरान के तेहरान, कोम और इराक के नजफ और करबला के बाद 9 जुलाई को अली खामेनेई का पार्थिव शरीर पहुंचने का अंतिम ठिकाना ईरान का मशहद शहर था। तेहरान, कोम, नजफ, करबला और अब मशहद में अली खामेनेई के लिए अभूतपूर्व भीड़ उमड़ी थी। अमेरिकी अखबार द गार्डियन के अनुसार 6 दिनों के अंतिम संस्कार के आयोजनों में अली खामेनेई के तकरीबन 3 करोड़ समर्थकों के शामिल होने की बात है। अली खामेनेई का पार्थिव शरीर इराक के नजफ हवाई अड्डे से मशहद तक लाया गया। ईरानी वायुसेना के फाइटर जेट ने अली खामेनेई के पार्थिव शरीर को ले जा रहे विमान को एस्कॉर्ट किया। इस विमान में अली खामेनेई के जनाजे के अलावा उनके परिवार के लोग मौजूद थे। अली खामेनेई का जनाजा जब मशहद पहुंचा तो वहां की सड़कें अली खामेनेई की तस्वीरों, प्लैकार्ड और ईरानी झंडे लिए लोगों से पटी पड़ी थी। अली खामेनेई के समर्थक इस्लामिक शासन के समर्थन में क्रांतिकारी नारे लगाते सुने जा सकते थे। अली खामेनेई को सुपुर्द खाक करने के लिए जिस मशहद की मिट्टी को चुना गया वो न केवल ईरान बल्कि दुनिया भर के शिया मुसलमानों के लिए बहुत पवित्र धरती है। मशहद में इमाम रजा की मजार है। 8वें इमाम अली इब्न मूसा अल रिधा यानी इमाम रजा को शिया मुसलमान बहुत सम्मान देते हैं। शिया मान्यताओं के अनुसार इमाम रजा को 9वीं शताब्दी में तब जहर देकर शहीद कर दिया गया था जब वो खुरासान में थे। मशहद में इमाम रजा की मजार होने से आज इस शहर को ईरान की बड़ी धार्मिक नगरी के तौर पर स्वीकार किया जाता है। ईरान, इराक, लेबनन, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और अरब देशों से लाखों शिया मुसलमान हर साल यहां आते रहे हैं। मशहद में इमाम रजा की मजार होने से मशहद की अहमियत शिया मुसलमानों के लिए इराक के नजफ और करबला जैसी है। इमाम रजा का सुनहरे गुंबद वाला मजार कॉम्प्लेक्स धार्मिक शिक्षा, इस्लामी अध्ययन और शिया विरासत का प्रमुख केंद्र भी है। मशहद में अली खामेनेई को सुपुर्द खाक करना इसीलिए भी बेहद अहम है क्योंकि मशहद अली खामेनेई की अपनी धरती भी है। 1939 में अली खामेनेई मशहद में ही जन्मे थे। यहाँ के जर्रे जर्रे में अली खामेनेई के अली खामेनेई बनने की कहानी है। यूं समझिए कि मशहद की आबो हवा ने अली खामेनेई का धार्मिक और राजनीतिक विचार पैदा किया। मशहद की संस्कृति अली खामेनेई के व्यक्तित्व के निर्माण की गवाह है। ईरानी इस्लामिक क्रांति के सबसे बड़े चेहरों में से एक अली खामनेई का अपने गृह नगर में दफन होना एक ऐसा वाक्या है जिसे ईरान का इतिहास याद रखेगा।

ईरान में इस बात को स्वीकार करने वालों की कमी नहीं कि आने वाले दशकों और शताब्दियों में अली खामनेई को अली रजा के बाद दूसरे इमाम की अहमियत हासिल हो सकती है। ईरान की इस पवित्र धरती मशहद में इस्लामिक क्रांति के जनक पहले सुप्रीम लीडर रूहुल्लाह खुमैनी को भी दफन नहीं किया गया था। 1989 में उनकी मौत के बाद खुमैनी को तेहरान के दक्षिण में दफन किया गया था। खुमैनी के मजार आज ईरान के लिए राष्ट्रीय महत्व की धरोहर बन चुकी है। खुमैनी के मजार पर लाखों ईरानी हर साल आते हैं। अली खामनेई की मौत जिन परिस्थितियों में हुई है और जिस तरह ईरान अमेरिका के सामने अड़ा हुआ है, ये परिस्थिति इस्लामिक सत्ता के समर्थकों के लिए नई भावनाओं को जन्म दे चुकी है। इसीलिए धार्मिक नगरी मशहद में अली खामनेई को दफन किए जाने की अहमियत राजनीतिक और धार्मिक दोनों नजरियों से बहुत बढ़ गई है।

0: अली खामनेई अब इतिहास बन चुके हैं, लेकिन अमेरिका के सामने अपने संघर्ष की आंच जिंदा रखने के लिए ईरान की इस्लामिक सत्ता का समर्थक समाज उनकी मौत को न भूल रहा है और न किसी को भूलने दे रहा है। अली खामनेई को दफन करने से पहले ईरान के मेहर न्यूज एजेंसी ने अली खामनेई की मौत पर ऐसी फुटेज जारी की है जिसे पहले कभी नहीं देखा गया था। 28 फरवरी को जब अमेरिका ने अली खामनेई के कंपाउंड पर हमला किया तो वहां क्या दृश्य बना, ये तस्वीरें उसे दिखा रही हैं। इस वीडियो में मेहर न्यूज ने अपनी प्रोग्रामिंग की है और तस्वीरों पर वॉइस ओवर किया हुआ है। वीडियो के आखिर में अली खामनेई का पुराना वीडियो भी शामिल किया गया है। 28 फरवरी को अली खामनेई के कंपाउंड पर अमेरिका और इजराइल के हमले में अली खामनेई के अलावा उनके परिवार के कई सदस्य, IRGC, ईरानी रक्षा मंत्रालय, साथ ही कई अन्य उच्च पदाधिकारियों की मौत हुई थी। अब आपको प्रधानमंत्री मोदी के ऑस्ट्रेलिया दौरे के बारे में बताएंगे, जहां उनका जबरदस्त स्वागत हुआ। क्रिकेट के मैदान पर भारत और ऑस्ट्रेलिया कट्टर प्रतिद्वंद्वी हैं, लेकिन कूटनीति की पिच पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज एक साथ उतरे तो दोनों के बीच बेहतरीन तालमेल के साथ लंबी साझेदारी की रणनीति नजर आई। इस दौरान भारत और ऑस्ट्रेलिया के समझौतों के ऐलान के चौके छक्के तो लगे ही, दोनों देशों ने कूटनीति के हर क्षेत्र में कीर्तिमान बना दिए। दुनिया के कई देशों में भारतीय समुदाय के साथ संवाद के बड़े आयोजनों को संबोधित कर चुके पीएम मोदी ने एक रिकॉर्ड मेलबर्न में भी बनाया, जहां उन्हें सुनने के लिए मार्वल स्टेडियम 30,000 भारतवंशियों से खचाखच भरा था।
1: इक्कीसवीं सदी का भारत आज विकसित होने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। पिछले 12 वर्षों में भारत के 2 दर्जन से अधिक शहरों में मेट्रो नेटवर्क पहुंच चुका है। घर में दूध ऑस्ट्रेलिया वाला आता है, लेकिन चाय भारत वाली बनती है। हम दोनों देशों की साझेदारी को

एक और सेक्टर मजबूती देता है, ये सेक्टर है स्पोर्ट्स, खेलकूद। मुझे पूरा विश्वास है स्पोर्ट्स के क्षेत्र भी ऑस्ट्रेलिया और भारत की पार्टनरशिप का और विस्तार होके रहेगा।

अब आपको साल 2010 की वो घटना बताते हैं जब अखबारों की हेडलाइंस थी कि ऑस्ट्रेलिया ने भारत को यूरेनियम देने से इनकार कर दिया। और अब आप दूसरी तस्वीर देखिए जो प्रधानमंत्री मोदी के मौजूदा दौरे से जुड़ी है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया का मीडिया भारत के साथ यूरेनियम डील की तारीफ प्रधानमंत्री मोदी को रॉकस्टार बताते हुए कर रहा है। ये वो ऐतिहासिक डील है जो आने वाले दशकों में भारत की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल सकती है। भारत को करीब 2 दशक से यूरेनियम की निर्बाध सप्लाई का इंतजार था, अब उससे अनिश्चितता के बादल छंटते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच यूरेनियम सप्लाई को लेकर एक ऐसी महाडील पर मुहर लग चुकी है जो भारत को ऊर्जा के क्षेत्र की बड़ी चिंताओं को खत्म कर सकती है। वास्तव में आने वाला वक्त उसका होगा जिसके पास क्लीन एनर्जी की चाबी होगी, और इस चाबी का सबसे बड़ा हिस्सा ऑस्ट्रेलिया के पास है। दुनिया के कुल यूरेनियम भंडार का करीब 28% हिस्सा अकेले ऑस्ट्रेलिया की धरती के नीचे दबा है। आंकड़ों में कहें तो लगभग 17 लाख टन यूरेनियम। दूर दूर तक कोई भी देश ऑस्ट्रेलिया के इस आंकड़े के आसपास भी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में साल 1954 से ही यूरेनियम का खनन हो रहा है। मौजूदा वक्त में वहां 3 बड़ी खदानें एक्टिव हैं। भारत के लिए यूरेनियम पाने का यह सफर बिल्कुल भी आसान नहीं रहा है। इस कहानी की शुरुआत साल 2005 में हुई थी जब भारत अमेरिका के बीच सिविल न्यूक्लियर डील की प्रक्रिया शुरू हुई थी। इसके तहत भारत बिजली बनाने के लिए दुनिया से परमाणु ईंधन यानी यूरेनियम खरीद सकता था, लेकिन सवाल यह था कि यह परमाणु ईंधन आएगा कहां से। 2014 में ऑस्ट्रेलिया के साथ यूरेनियम सप्लाई को लेकर सहमति तो बनी, लेकिन दोस्ती के बड़े बड़े वादों और मजबूत इरादों के बाद भी ऑस्ट्रेलिया यूरेनियम की वास्तविक सप्लाई शुरू करने से हिचकता रहा। यानी 12 साल बाद भी ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम सप्लाई शुरू नहीं हो पाई। असल में ऑस्ट्रेलिया परमाणु अप्रसार संधि को लेकर बेहद सख्त है। वो आश्वस्त होना चाहता था कि उसके यूरेनियम का इस्तेमाल सिर्फ शांतिपूर्ण बिजली उत्पादन के लिए हो, न कि हथियारों के लिए। लेकिन कड़े कूटनीतिक प्रयासों और परमाणु सुरक्षा और शांति विधेयक पारित होने के बाद ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम मिलने का रास्ता पूरी तरह खुल गया। अब समझिए कि भारत को यूरेनियम की इतनी प्रचंड जरूरत क्यों है। भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। हमारी ऊर्जा जरूरतें अब सिर्फ घरों में पंखे और लाइट जलाने तक सीमित नहीं है। भारत आज AI, सुपर कंप्यूटर और डेटा सेंटर्स का हब बन रहा है। इन आधुनिक उद्योगों को 24 घंटे बिना 1 सेकंड के कट के भारी मात्रा में बिजली चाहिए होती है। अब तक भारत अपनी 70% से ज्यादा बिजली के लिए कोयले पर निर्भर रहा है, लेकिन पर्यावरण को बचाना है और कार्बन एमिशंस को जीरो करना है तो हमें कोयले से पीछा छुड़ाना होगा। सोलर और विंड एनर्जी क्लीन एनर्जी है, लेकिन वो मौसम पर भी निर्भर करते हैं। ऐसे में न्यूक्लियर एनर्जी एकमात्र ऐसा जरिया है जो बिना प्रदूषण फैलाए लगातार और भारी मात्रा में बिजली दे सकता है। ऑस्ट्रेलिया से आने वाला ये यूरेनियम भारत के मौजूदा और भविष्य में बनने वाले दर्जनों परमाणु संयंत्रों के लिए संजीवनी का काम करेगा। अभी भारत में 7 अलग अलग जगहों पर 24 एटॉमिक पावर स्टेशन काम कर रहे हैं जो देश को परमाणु ऊर्जा से बिजली सप्लाई कर रहे हैं। 2014 में न्यूक्लियर पावर से बिजली उत्पादन की क्षमता 4.7 गीगावाट थी, जो 2025 में 84% बढ़कर 8.4 गीगावाट हो चुकी है। लेकिन इसके बाद भी कुल बिजली उत्पादन में परमाणु बिजली की हिस्सेदारी 3% के आसपास ही रही है। 2031-32 तक परमाणु ऊर्जा से 22.38 गीगावाट बिजली उत्पादन का अनुमान है, और भारत ने 2047 तक परमाणु ऊर्जा 100 गीगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा है, और ये यूरेनियम की निर्बाध आपूर्ति से ही संभव हो पाएगा। जब भारत अपने 70% से ज्यादा बिजली उत्पादन के लिए कोयले पर निर्भर है, तब ये समझना भी बहुत जरूरी है कि सिर्फ 1 ग्राम यूरेनियम से उतनी ही बिजली पैदा की जा सकती है जितनी 2000 किलोग्राम उच्च गुणवत्ता वाले कोयले को जलाने से मिलती है। यानी एक छोटी सी यूरेनियम की गोली एक मिडिल क्लास फैमिली को सालों तक बिजली दे सकती है। यही वजह है कि इसे दुनिया का सबसे कीमती ईंधन माना जाता है। इसीलिए भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ यह समझौता 2 देशों के बीच व्यापार का सौदा नहीं है,
बल्कि यह भारत की एनर्जी सिक्योरिटी की गारंटी है। 2047 के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए जिस असीमित और स्वच्छ शक्ति की जरूरत है, आज उसका रास्ता साफ हो गया है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ समझौता यूरेनियम या व्यापार की औपचारिकता नहीं, बल्कि यह अंतरिक्ष के असीम विस्तार से समुन्दर की अतल गहराई तक और क्रिटिकल मिनरल्स से लेकर डिफेंस सप्लाई चेन तक फैली एक ऐसी रणनीतिक दीवार है जिसे भेद पाना चीन जैसे विस्तारवादी ताकत के लिए मुमकिन नहीं होगा। आज इंडो पैसिफिक यानी हिंद प्रशांत क्षेत्र जियोपॉलिटिक्स का सबसे संवेदनशील अखाड़ा है। एक तरफ है चीन जो समुन्दर में अपनी दादागिरी के दम पर नए नियम लिखना चाहता है, दूसरी तरफ है भारत और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश जो नियमों के आधार पर इंटरनेशनल ऑर्डर के पैरोकार है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के समझौते से जुड़े बयानों में भले ही चीन का नाम सीधे तौर पर न लिया गया हो, लेकिन बैकग्राउंड में अदृश्य किरदार के रूप में ड्रैगन का खतरा साफ महसूस किया जा सकता है। भारत और ऑस्ट्रेलिया की जुगलबंदी इसी खतरे का मुकम्मल जवाब है। हिंद महासागर के मुहाने पर भारत है तो प्रशांत महासागर के द्वार पर ऑस्ट्रेलिया। दोनों देशों के लिए समुद्री सुरक्षा का सवाल है। समुद्र में चीनी नौसेना के आक्रामक रुख के अलावा एक और बड़ा संकट है, वो है चीन के जासूसी और फिशिंग ट्रॉलर्स। चीन के ये फिशिंग ट्रॉलर्स साधारण नावें नहीं है, बल्कि ये चलती फिरती समुद्र की फैक्ट्रियां हैं। हजारों टन वजनी ये जहाज समुद्र से भारी मात्रा में मछलियां अवैध रूप से निकाल लेते हैं। इनमें वहीं पर प्रोसेसिंग, पैकिंग, सप्लाई का पूरा सिस्टम होता है। चीन की इस आर्थिक दादागिरी की वजह से समुद्र में मछलियों के पनपने का चक्र टूट रहा है, स्थानीय मछुआरों के लिए आजीविका का संकट खड़ा हो रहा है और छोटे देश चीन से डिब्बा बंद मछली खरीदने पर मजबूर भी हो रहे हैं। यानी चीन अपने लोगों का पेट भरने के लिए दूसरों की रोजी रोटी छीन रहा है। इसी का मुकाबला करने के लिए भारत और ऑस्ट्रेलिया मैरिटाइम सिक्योरिटी कोलैबोरेशन रोडमैप और मैरिटाइम डोमेन अवेयरनेस पर काम कर रहे हैं। अब दोनों देश रियल टाइम डेटा शेयर करेंगे कि समुद्र में कौन सी सबमरीन घूम रही है, कितने जहाज आ रहे हैं, किस देश के हैं। इसके जरिए समुद्र में होने वाली चीनी चालाकियों पर भी सख्त निगरानी रखी जाएगी। चीन की घेराबंदी के लिए भारत ऑस्ट्रेलिया अकेले नहीं है, बल्कि वो क्वाड को और मजबूत कर रहे हैं। वही क्वाड जिसको लेकर कई लोग कहने लगे थे कि यह खत्म हो रहा है, लेकिन अब भारत उसे मजबूत कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की हालिया मुलाकातों का कैलेंडर इसकी गवाही दे देता है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की, जापान की प्रधानमंत्री से उन्होंने दो बार भेंट की, एक बार फ्रांस में, फिर वो भारत दौरे पर आई और अब ऑस्ट्रेलिया में अल्बनीज के साथ रणनीतिक मंथन हुआ। यानी करीब तीन हफ्तों में क्वाड के सभी शीर्ष नेताओं से मुलाकात। इन मुलाकातों से पहले भारत ने क्वाड विदेश मंत्रियों की सफल मेजबानी भी की थी। भारत सिर्फ क्वाड तक सीमित नहीं है, बल्कि वो हिंद महासागर के पड़ोसियों के बीच तालमेल की धुरी भी बन रहा है। ये देखना दिलचस्प है कि पीएम मोदी इंडोनेशिया के रास्ते ऑस्ट्रेलिया पहुंचे, जो ये भी दिखाता है कि चीन को काउंटर करने के लिए भारत एक मजबूत स्ट्रेटेजिक ट्रायंगल बना रहा है। तभी तो प्रधानमंत्री मोदी के जकार्ता दौरे में इंडोनेशिया ने भारत से ब्रह्मोस और अस्त्र जैसी मिसाइल खरीद का फैसला किया है, तो वहीं ऑस्ट्रेलिया भी भारत के साथ रक्षा साझेदारी बढ़ा रहा है। इतना ही नहीं, भारत इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर रणनीतिक संवाद का त्रिकोण बना रहा है। भारत और ऑस्ट्रेलिया की सेनाएं अब सिर्फ शांतिकाल के अभ्यास नहीं कर रही हैं, बल्कि वास्तविक युद्ध जैसे हालात के लिए खुद को तैयार कर रही हैं। समझौते के तहत दोनों देश एक दूसरे के सैन्य ठिकानों और हवाई पट्टियों का इस्तेमाल कर सकेंगे। भारतीय लड़ाकू विमान और नौसैनिक जहाज ऑस्ट्रेलिया के रणनीतिक ठिकानों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मकसद दोनों देशों के हथियार, टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन सिस्टम को एक दूसरे के अनुकूल बनाना है, ताकि युद्ध

0: इस स्थिति में दोनों सेनाएं बिना किसी रुकावट के मिलकर काम कर सकें। भारत और ऑस्ट्रेलिया का समझौता हथियारों की खरीद और बिक्री तक सीमित नहीं है। युद्ध की स्थिति में हथियारों और कल पुर्जों की कमी न हो, इसके लिए दोनों देशों की रक्षा कंपनियां मिलकर जॉइंट प्रोडक्शन और मजबूत डिफेंस सप्लाई चेन का निर्माण करेंगी। आज के दौर में जंग सिर्फ बारूद से नहीं, टेक्नोलॉजी से जीती जाती है। स्मार्टफोन, सेमीकंडक्टर, रक्षा उपकरण और ईवी, इन सब के लिए लिथियम, कोबाल्ट, रेयर अर्थ मिनरल्स की जरूरत है। फिलहाल क्रिटिकल मिनरल्स के 70% बाजार पर चीन का कब्जा है, इसे तोड़ना बेहद जरूरी है। लिथियम के उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया दुनिया में सबसे आगे है, वो रेयर अर्थ मिनरल्स के मामले में संपन्न देशों में है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ क्रिटिकल मिनरल्स समझौता भारत में भविष्य की इलेक्ट्रॉनिक्स और ईवी इंडस्ट्री के लिए गेम चेंजर है। ये सीधे तौर पर चीन की सप्लाई चेन ब्लैकमेलिंग को खत्म करने की दवाई भी है। समुद्र और जमीन के बीच तीसरा मोर्चा है डिजिटल दुनिया। अब भारत और ऑस्ट्रेलिया ने तय किया है कि अब दोनों देश साइबर क्राइम और हैकर्स से निपटने के लिए हाथ मिलाएंगे। इतना ही नहीं, पहलगाम के आतंकी हमले का घाव झेलने वाला भारत और बोंडाई बीच आतंकी हमले से घायल ऑस्ट्रेलिया मिलकर न केवल आतंकवाद और संगठित अपराध के खिलाफ लड़ेंगे, बल्कि ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन और टेरर फंडिंग को रोकने के लिए भी दोनों देशों की खुफिया एजेंसियां रियल टाइम इनपुट साझा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज की मुलाकात के दौरान एक बेहद महत्वपूर्ण और रणनीतिक ऐलान हुआ। ऑस्ट्रेलियाई पीएम एल्बनीज ने घोषणा की है कि भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन यानी गगनयान को सफल बनाने के लिए ऑस्ट्रेलिया अपने स्ट्रेटेजिक आइलैंड कोकोस कीलिंग आइलैंड पर एक टेम्पररी स्पेस ट्रैकिंग टर्मिनल बनाने जा रहा है। जब भारत का गगनयान अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर पृथ्वी के चक्कर काटेगा, तो हिंद महासागर के ऊपर से गुजरते समय भारत से उसका सीधा संपर्क टूटने का खतरा रहता है। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया का कोकोस कीलिंग आइलैंड ठीक उसी रूट के नीचे आता है। वहां बनने वाला ये ट्रैकिंग स्टेशन इसरो के वैज्ञानिकों को गगनयान के क्रू मॉड्यूल पर हर पल पैनी नजर रखने और पल पल का डेटा सीधे बेंगलुरु कंट्रोल सेंटर भेजने में मदद करेगा। इसकी अहमियत को इस बात से भी समझा जा सकता है कि ये कोकोस कीलिंग आइलैंड्स भारत के स्पेस पोर्ट श्रीहरिकोटा से 2800 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में है, यानी ठीक ऐसी जगह पर जहां से लॉन्च के बाद अंतरिक्ष यान बंगाल की खाड़ी के ऊपर उठने के बाद अपने प्रक्षेपण मार्ग पर होता है और उसकी निगरानी सबसे महत्वपूर्ण होती है। गगनयान मिशन के लिए यह और भी जरूरी है क्योंकि इसके साथ भारत अपने अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने वाला है। यह घोषणा ऐसे वक्त में हुई है जब इसरो ने गगनयान मिशन के लिए एक और मील का पत्थर छू लिया है। मध्य प्रदेश के श्योपुर में वायुसेना के IL-76 मालवाहक विमान की मदद से 2.5 किलोमीटर की ऊंचाई से गगनयान के मुख्य पैराशूट का सफल ड्रॉप टेस्ट किया गया। ये वही पैराशूट सिस्टम है जो अंतरिक्ष से लौटते वक्त हमारे अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षित लैंडिंग सुनिश्चित करेगा। तो आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। आगे देखिए दस्तक सईद अंसारी के साथ। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।
1: TuneIn's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
2: Did you know you can control the speed of what you're listening to? During playback, you can tap on the speed control setting to adjust the speed, whether you'd like to make it faster to get to the end or take it a bit slower to give it time to digest. You can listen to all your favorite podcasts and audiobooks however you want. Plus, if you follow your favorite podcast and books, you'll get recommendations on what to listen to next. Why not try out this feature today?
3: फेना पावर वॉश अब है और शक्तिशाली।
4: गहरी सफाई,
3: हाँ, पावर वॉश का कमाल।
4: गहरी खुशबू
3: और प्यार भरी भी।
4: कैसे?
3: ये है एक्टिव नीडल्स की शक्ति,
5: इसीलिए फेना ही लेना।
4: where the software engineer with a big idea meets the smart market analyst, meets the cool UI UX designer, meets the gifted content writer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
5: जब बात हो सोयाबीन और मक्के की फसलों को सूंडियों से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का प्रोक्लेम एक्स्ट्रा, जीते हर बाजी।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आगे आगे
3: उधर
2: करेक्ट करेक्ट
4: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
5: जब बात हो रस चूसक कीटों से फसल सुरक्षा की, तो हर असली हीरो चुनता है जिवोरा। जिवोरा, सफलता का शंखनाद।
6: वी आर ओवर जिमी।
7: हे, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपी अब संभाल लेगा। आप अपना देख लो।

0: in association with
1: Sharda University. The world comes together at Sharda University. Where are you?
2: Punjab National Bank. Bharose ka prateek.
0: विमल बोलो जुबा केसरी हिंट बड़े आराम से।
3: जब बात हो सोयाबीन के खेतों को खरपतवार से बचाने की तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का अमोरा। अमोरा तेज तरार वार हारे अब खरपतवार, देश के हीरो की पहली पसंद।

गलती किसकी थी, दोषी कौन, जिम्मेदारी किसकी, लापरवाह कौन कि राम के धाम में चोरी का कलंक लग गया। ट्रस्ट कहता है कि 6 जुलाई की बैठक के बाद व्यवस्था में तेजी से सुधार किया जा रहा है। कृष्ण मोहन अंतरिम महासचिव बन गए। अब बैंक खातों का संचालन कृष्ण मोहन, जगदीश और चंदन राय के संयुक्त हस्ताक्षर से होगा। जहां दान की गिनती होगी वहां 43 लोग रहेंगे। 13 एक्स्ट्रा सीसीटीवी कैमरे लग गए। दान पेटी को कक्ष तक पहुंचाने के लिए 27 निजी सुरक्षा कर्मी रखे गए। दान पेटियों के पास अतिरिक्त पुलिस कर्मी तैनात कर दिए गए। बाकी आगे का काम संभालने के लिए ट्रस्ट ने सीईओ की तलाश तेज कर दी है। इसके लिए सर्च कमेटी बन चुकी है। सीईओ आते ही सारा मामला पटरी पर आ जाएगा, वरना सरकार से लेकर अदालत तक तमाम रास्ते खुले हुए हैं।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस
2: एकजे द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: वी आर ओवर जिमी।
2: हे, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपी अब संभाल लेगा। आप अपना देख लो।
3: बीजेपी के लोग किसी भी सीमा तक झूठा प्रचार कर सकते हैं।
4: समाजवादी पार्टी के लोगों को तो ठेके पट्टे से ही फुर्सत नहीं है।
5: अयोध्या में चढ़ावा चोरी क्या हुई? उत्तर प्रदेश में बीजेपी की चुनावी राजनीति के पौबारा हो गए। महीने भर में कांग्रेस और समाजवादियों ने जितनी बार राम का नाम नहीं लिया होगा उतनी बार वक्फ बाबर कब्रिस्तान हो चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ धुआंधार रैलियां और कार्यक्रम कर रहे हैं। सैकड़ों करोड़ की योजनाओं की सौगात जिले जिले दी जा रही है और इसके साथ ही विपक्ष पर मुस्लिम परस्त, मुगल परस्त, मौका परस्त होने की सियासी बौछार चल रही है। एक तरफ समूचा विपक्ष राम मंदिर में चोरी को लेकर हमलावर था तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वक्फ में घोटालों का मुद्दा उठाया और अब उसी लाइन को यूपी के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ने और आगे बढ़ा दिया।
6: उत्तर प्रदेश पे भी वक्फ बोर्ड, सुन्नी वक्फ बोर्ड जो है इस समय वर्तमान में रिक्त है। आने वाले दिनों में जब सुन्नी वक्फ बोर्ड का गठन होगा तो जो वक्फ अधिनियम संशोधन अधिनियम के अनुसार जो गाइडलाइन है उस गाइडलाइन के अनुसार उत्तर प्रदेश में भी उस अधिनियम के माध्यम से वक्फ के बोर्ड का गठन होगा जिसमें पिछड़े मुसलमानों को रखा जाएगा, मुस्लिम महिलाओं को रखा जाएगा, ऐसे हमारे हिंदू भाई समाज के दो भाइयों को रखा जाएगा। जो भी उस प्रावधान में जो भी गाइडलाइन है उस गाइडलाइन के अनुसार ही आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में भी वक्फ बोर्ड के फॉर्मेशन होगा।
5: अगर ऐसा होता है तो एमपी के बाद उत्तर प्रदेश देश का दूसरा राज्य होगा जो वक्फ बोर्ड में गैर मुसलमान सदस्य रखेगा। हालांकि उत्तर प्रदेश में मौजूदा शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन का कहना है कानून संसद से बना हुआ है तो उसका पालन अनिवार्य है, लेकिन सुन्नी समुदाय के मौलानाओं का कहना है वक्फ संशोधन कानून के कुछ प्रावधानों पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है और मामला कोर्ट में लंबित, लिहाजा अभी ऐसा नहीं करना चाहिए। वैसे यूपी में फिलहाल दो वक्फ बोर्ड है, सुन्नी वक्फ बोर्ड और शिया वक्फ बोर्ड। दोनों बोर्ड की संरचनाएं कुछ ऐसी कि दोनों बोर्ड में 11-11 सदस्य होते हैं जिसमें अध्यक्ष के अलावा मुस्लिम सांसद, मुस्लिम विधायक, मुस्लिम विधान परिषद सदस्य, इस्लामिक विद्वान और मतवल्लियों के प्रतिनिधि होते हैं। इसके अलावा सरकारी अधिकारी सीईओ होता है। यानी अभी की व्यवस्था में गैर मुस्लिम सदस्य वक्फ बोर्ड में नहीं होते, लेकिन वक्फ संशोधन बिल के बाद, नई व्यवस्था के बाद वक्फ बोर्ड में कम से कम दो गैर मुस्लिम सदस्य अनिवार्य हैं। इसके अलावा दो मुस्लिम महिला सदस्य, पसमानदा प्रतिनिधि, सांसद, विधायक, बार काउंसिल के सदस्यों में से एक एक का सीधे मनोनयन होगा। यानी पहले चुनाव होता था, उन्हें अब मनोनीत किया जाएगा। यूपी में सुन्नी वक्फ बोर्ड इसी साल 15 मार्च को भंग हुआ है। 6 महीने के अंदर इसका पुनर्गठन जरूरी है, यानी चुनाव से ठीक पहले सितंबर 2026 तक यूपी में सुन्नी वक्फ बोर्ड का गठन होगा जिसमें यूपी सरकार हिंदू समुदाय के दो सदस्यों को रखने की तैयारी कर चुकी है। दरअसल इसी हफ्ते मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी राज्य वक्फ बोर्ड का ऐलान किया है जिसमें 10 सदस्यों में 2 सदस्य हिंदू हैं। इसके बाद उत्तर प्रदेश में से लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई। संतोष शर्मा के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक।

0: है भारत ग्रो मोर अचीव मोर का दिया नारा, बोले रक्षा अंतरिक्ष और यूरेनियम डील पर मोहर। टीएमसी को छोड़ बीजेपी में आए ममता के तीनों पूर्व राज्यसभा सांसदों को मिला इनाम, उपचुनाव के लिए बने कमल के उम्मीदवार आज भी पार्टी में शामिल हुए थे सुखेंदु, सुष्मिता और प्रकाश। यूपी में चुनावी तापमान, योगी का आरोप 2017 से पहले कब्रिस्तानों पर पैसा खर्च करती थी एसपी सरकार, राजभर ने फिर अखिलेश पर किया बड़ा हमला। महाराष्ट्र गुजरात समेत उत्तर भारत में जोरदार बारिश से परेशानी, दिल्ली एनसीआर में पानी ही पानी, बादली में डूबने से 7 वर्ष के बच्चे की मौत, गाजियाबाद में एक बच्ची की गई जान। अमेरिकी हमले के बीच आज खामनेई का अंतिम संस्कार, ट्रंप ने फिर दी धमकी, कहा 20 गुना शक्ति से करेंगे अटैक, बदले में अमेरिकी ठिकानों पर तेहरान ने बरसाए बॉम्ब।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
2: एकजे द नंबर 1 कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया।

नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका। रात के 10 बज रहे हैं आज तक पर, आप देख रहे हैं दस्तक। अमेरिका और ईरान के बीच महायुद्ध का बिगुल बज चुका है। दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने हैं। होर्मुज पर ईरानी हमले के बाद अमेरिकी सेना ने ईरान के 170 ठिकानों पर भीषण हमला किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से ईरान के साथ हुए शांति समझौतों को रद्द करने का ऐलान किया जा चुका है। ईरान के खिलाफ ट्रंप के तेवर बेहद आक्रामक हैं। अब ट्रंप यही कह रहे हैं कि ईरान के साथ विवाद का समाधान वार्ता की टेबल पर नहीं बल्कि युद्ध के मैदान में होगा। तो क्या अब ट्रंप के निशाने पर है ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई?

ट्रंप के बारूद से धुआं धुआं हुआ ईरान। 24 घंटे में 170 अड्डों पर भीषण बमबारी। ईरानी एटमी सेंटर पर अमेरिका का हमला। ट्रंप के वॉर गेम में बुरी तरह फंस गया ईरान। हॉर्मुज पर हमला ईरान के लिए बहुत महंगा। युद्ध शुरू, अब ट्रंप का ऑपरेशन मुस्तबा। सत्ताईस जून को ईरान ने हॉर्मुज पर हमला किया। हमले के बाद अमेरिका ने अगले 48 घंटों में दो बार ईरान पर भीषण बमबारी की। एक बार फिर 6 जुलाई को ईरान ने हॉर्मुज में 3 टैंकरों को निशाना बनाया। ट्रंप ने अपनी धमकी को सच साबित करते हुए 7 जुलाई और 8 जुलाई को ईरान पर ताबड़तोड़ हवाई हमले किए। महज 24 घंटों के अंदर ईरान के 170 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। ईरान पर हमले का वीडियो अमेरिकी सेना ने जारी किया। अगर ईरान पर अमेरिकी हमले की टाइमिंग को देखें तो संकेत यही है कि विनाशकारी युद्ध का बिगुल बज चुका है। संकेत नंबर एक, ईरान पर अमेरिका का विध्वंसक हमला जारी। संकेत नंबर दो, ट्रंप का ऐलान, युद्ध विराम खत्म, अब वार्ता नहीं। संकेत नंबर तीन, ईरान पर अमेरिकी हमलों के समर्थन में नाटो। संकेत नंबर चार, हॉर्मुज पर ईरानी हमले की इंटरनेशनल निंदा। संकेत नंबर पांच, तेहरान के डिप्टी मेयर बोले, एटमी हमले का डर। मतलब यही है कि ईरान और अमेरिका के बीच तनाव चरम पर है। अब ये युद्ध दुनिया को अपनी चपेट में ले सकता है, क्योंकि ट्रंप ने ईरान के ठिकानों को अपनी मिसाइल के टारगेट पर लॉक कर दिया है, तो वहीं ईरान के लिए वार्ता के दरवाजे पर ताला लगा दिया है।

0: just hit him very hard. And I say we hit him 20 to 1. Every time they hit us, we're going to hit him 20. And we did it last night. They did a little something today, but it was really retribution for last night. They hit actually 3 boats, not 2. And when they hit, we hit back much harder. Another way of doing it. We have many ways we can win, but we've already won militarily. They have very little. They have very little left, and they want to make a deal so badly. They called a little while ago. They want to make a deal so badly. I just don't know if they're worthy of making a deal. I don't know that they're going to honor the deal. That's the problem. Because they're sort of crazy, to be honest with you. They're sort of crazy. They're a little bit out of control, but they want to make a deal. Badly.
1: अगर ईरान पर अमेरिका के ताजा हमलों को देखें तो ट्रंप का वॉर गेम समझना मुश्किल नहीं है। ट्रंप की हिट लिस्ट पर हैं ईरान के अहम सैन्य ठिकाने, तेल और गैस के लिहाज से अहम शहर, ईरान के अहम बंदरगाह, ईरान का ट्रांसपोर्ट नेटवर्क और ईरान के परमाणु सेंटर। ईरानी मीडिया का दावा है कि बुशहर में तेज धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं। ये धमाके ईरान के न्यूक्लियर प्लांट के आसपास सुने गए हैं। ठीक ऐसे ही चाबहार पोर्ट को निशाना बनाया गया। IRGC का दावा है कि अमेरिका ने मशहद जाने वाले रास्तों के पुलों को निशाना बनाया। यही नहीं, ईरान के गोलिस्तान प्रांत के अक्टेके खान रेलवे ब्रिज पर मिसाइल अटैक किया है। ट्रंप ने ईरान को सीधी धमकी दी है कि अमेरिका की सैन्य कार्रवाई अब रुकेगी नहीं। अमेरिका के हमले ईरान द्वारा जहाजों पर की गई बमबारी का प्रतिशोध है। अगर ऐसा दोबारा हुआ तो हालात और भी बदतर हो जाएंगे। बड़ी बात यह है कि शांति समझौते के बावजूद हुर्मुज पर हमले करके ईरान चौतरफा घिर गया है। ईरान के खिलाफ मिडल ईस्ट के तमाम मुल्क बड़े और कड़े एक्शन की मांग कर रहे हैं। इसमें वो मुल्क भी शामिल हैं जो चंद दिनों पहले तक अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता कर रहे थे। ऐसे में अमेरिका को पता है कि हुर्मुज पर हमला करके ईरान ने गलत बटन दबा दिया है, लिहाजा ईरान ने अमेरिका को हमले का मौका थाली में सजाकर सौंप दिया है। इसी कड़ी में अमेरिका ने ईरान के कई शहरों पर चुन चुन कर बम बरसाए। ट्रंप का टारगेट बंदर अब्बास, ये ईरान का सबसे बड़ा व्यावसायिक और नौसैनिक बंदरगाह है। यहाँ पर अमेरिका ने बमबारी करके ईरानी सेना और ईरानी कारोबार को चोट पहुँचाई। ट्रंप का टारगेट वो शहर, ये वही शहर है जहाँ पर ईरान का एकमात्र चालू परमाणु बिजली प्लांट है। यहाँ हमला करके ट्रंप ने संदेश दिया है कि ईरान का कोई भी एटमी सेंटर नहीं बचेगा। ट्रंप का टारगेट सिरिक, ये शहर हुर्मुज से सटा हुआ है। यहीं से ईरानी सेना गुजरने वाले जहाजों की निगरानी करती है। अमेरिका ने सिरिक में मौजूद ईरानी सैन्य ठिकानों के साथ साथ नौसेना की बोट को निशाना बनाया। ट्रंप का टारगेट चाबहार पोर्ट, ईरान का इकलौता बंदरगाह जो सीधे हिंद महासागर से समुद्री यातायात तय करता है। ये कारोबार और सैन्य लिहाज से अहम है। यहाँ पर भी अमेरिकी हमला हुआ। ट्रंप का टारगेट केशम द्वीप, फारस की खाड़ी का सबसे बड़ा द्वीप जहाँ ईरानी नौसेना के ठिकानों के साथ साथ तेल गैस फैसिलिटी है। अमेरिका ने इस आइलैंड पर भी भीषण बमबारी की है। मतलब ईरान से ट्रंप का बदला बहुत घातक है। ईरान की सरकारी मीडिया ने माना है कि पिछले 48 घंटों में 5 प्रांतों पर हुए अमेरिकी हमलों में कम से कम 14 लोग मारे गए, जबकि 78 से ज्यादा जख्मी हैं। अगले कुछ घंटों में ये आंकड़े बढ़ सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ व्हाइट हाउस के हवाले से एक्सियोस में छपी रिपोर्ट में ईरान को लेकर कई बड़े दावे किए गए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति का पूरा जोर हुर्मुज को ईरानी नियंत्रण से मुक्त कराने पर है, लिहाजा हुर्मुज को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति की तैयारी ईरान के खिलाफ लंबे युद्ध की है। अगर ईरान ने अमेरिकी हमले के बाद फिर हमला किया तो अमेरिका कई हफ्तों तक हवाई हमले करेगा। ईरान के अहम सैन्य ठिकानों के साथ साथ एटमी सेंटर और तेल गैस के प्लांट को निशाना बनाया जाएगा। अमेरिका की उम्मीद है कि हुर्मुज की वजह से अब की बार दुनिया के तमाम मुल्क और नाटो उनका साथ देंगे। मतलब यही है कि ईरान अलग थलग पड़ सकता है, क्योंकि हुर्मुज पर ईरानी हमले की निंदा दुनिया के सभी मुल्कों ने की है। यहाँ तक कि फ्रांस ने भी माना है कि हुर्मुज पर हमला करके ईरान ने अमेरिका के साथ हुए शांति समझौते के MOU का उल्लंघन किया है। दूसरी तरफ हुर्मुज पर ताजा हमलों के बाद नाटो ने भी ईरान पर अमेरिकी हमलों का खुला समर्थन किया है। जब युद्ध विराम लागू हो और ईरान मूल रूप से युद्ध विराम का उल्लंघन कर रहा हो तो मुझे लगता है कि अमेरिका का बलपूर्वक जवाब देना बेहद जरूरी है। ये पहली बार है जब नाटो ने ईरान पर अमेरिकी हमलों का समर्थन किया है, तो क्या यह समर्थन आने वाले दिनों में ईरान के खिलाफ अमेरिकी हमलों में भी दिखेगा? अगर ऐसा हुआ तो ईरान के खिलाफ अब ये युद्ध सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं रहेगा, मतलब ईरान के खिलाफ हमलों में नाटो भी शामिल हो सकता है। नाटो भी अमेरिका के साथ युद्ध में शामिल हुआ तो ईरान की हार तय है।
0: To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is? They're scum. They're sick people. They're led by sick people. And they're vicious, violent people. And if they had a nuclear weapon, they'd use it. As far as I'm concerned, it's over.
1: ईरानी विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी हमलों का समर्थन करने पर नाटो की निंदा की है। ईरान ने आरोप लगाया कि ईरान अमेरिका युद्ध का जिम्मेदार नाटो है। आरोप यही है कि अमेरिका और इजराइल को लेकर नाटो ने निष्पक्ष भूमिका नहीं निभाई। तो क्या ये जंग अमेरिका बनाम ईरान नहीं बल्कि ईरान बनाम दुनिया में बदल सकती है? आज तक ब्यूरो।
2: आपको वॉशिंगटन लिए चलते हैं, रोहित शर्मा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। रोहित, दो सवाल। क्या अब सिर्फ युद्ध विकल्प है, कोई बातचीत नहीं, कोई वार्ता नहीं, सब कुछ अमेरिका की तरफ से बंद? और क्या अमेरिका और ट्रंप के निशाने पर अब मुश्तबा भी हैं? रोहित
3: देखिए सईद, सबसे इम्पोर्टेंट चीज इसमें यह है कि जैसे कि हमने अपनी रिपोर्ट में भी दिखाया कि प्रेसिडेंट ट्रंप का पेशेंस जो है वो खत्म हो गया। उन्होंने बहुत ज्यादा समय दिया है, ऐसा प्रेसिडेंट ट्रंप का मानना है। बातचीत के जरिए कुछ सोल्यूशन नहीं निकल पा रहा था, और जब ईरान ने जो तीन कमर्शियल व्हीकल्स के ऊपर अटैक किया तो प्रेसिडेंट ट्रंप का मानना है कि कोई विकल्प नहीं था। उन्हें ये बताना जरूरी था कि हम दुगना तिगना, अकॉर्डिंग टू प्रेसिडेंट ट्रंप 20 टाइम्स हार्डर हम इसका जवाब देंगे। तो पहला ये। दूसरी चीज, प्रेसिडेंट ट्रंप हमेशा से सारे विकल्प अपने पास रखते हैं। मुझे लगता है कि वो बातचीत को मौका देंगे या उनके जो भी एडवाइजर्स है वो जरूर बातचीत करने की इसमें कोशिश करेंगे और कहीं ना कहीं चाहेंगे कि बातचीत से इसका रिजल्ट निकल जाए। जहां तक एग्जिस्टिंग लीडरशिप का सवाल है, प्रेसिडेंट ट्रंप पहले कह चुके हैं, थोड़ा सा प्रेज भी किया था उन्होंने, लेकिन उनका ऐसा मानना है कि अभी भी काफी हार्डलाइनर्स हैं जो शायद डिसीजन ले रहे हैं ईरान में, और अगर उन्हें लगता है कि युद्ध नहीं रुक पाएगा या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुल पाएगा तो शायद वो कंटिन्यू करें इस असॉल्ट को। सही,
2: बहुत धन्यवाद रोहित। रोहित शर्मा हमारे संवाददाता वॉशिंगटन से। उधर अमेरिका ने ईरान के 180 ठिकानों पर हमले किए और इन हमलों में एक पैटर्न। आखिर अमेरिकी सेना की स्ट्रेटेजी क्या है, ये समझा रहे हैं हमारे संवाददाता सुमित चौधरी।
4: सही, सबसे पहले अगर आप देखें पिछले 48 घंटे में दो बार अमेरिका लगातार ईरान के अलग अलग इलाकों में अटैक कर चुका है, लेकिन जो अटैक्स हैं वो स्पेसिफिकली कोस्टल एरियाज के आसपास यानी सदर्न ईरान के आसपास किए जा रहे हैं। इसके सबसे पीछे का कारण यह है कि ईरान ने पिछले कुछ दिनों के अंदर अपने कोस्टल एरियाज के ऊपर अपने एयर डिफेंस सिस्टम्स को और ज्यादा मजबूत किया है, और ये सारे के सारे एयर डिफेंस सिस्टम्स हो, उनके मिसाइल लॉन्चर्स हो, वो सीधे तौर पर उनके बंदर अब्बास के इलाके को सपोर्ट करते हैं, IRGC को सपोर्ट करते हैं। अमेरिका का यह मानना है कि अगर ईरान कहीं से भी कमजोर हो सकता है, झुक सकता है, तो फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ही एक ऐसा पॉइंट होगा जहां से उसको पीछे खदेड़ने के बाद ईरान के पास कुछ भी नहीं बचेगा जो नेगोशिएशंस के लिए वो ईरान के सामने रख सके। तो अगर आप इन टारगेट्स को देखें तो स्ट्रेटजी बहुत क्लियर है। और अब अगर आप देखें पिछले कई दिनों में या फिर कई हमलों के अंदर अमेरिका ने सीधे तौर पर तेहरान, राजधानी तेहरान और उसके आसपास के इलाकों पर कहीं पर भी हवाई हमले नहीं किए हैं, यानी आप मानिए स्ट्रेटजी बदल चुकी है और सीधा फोकस है सिर्फ और सिर्फ कोस्टल एरियाज में, जिसमें ना सिर्फ आप कह सकते हैं बंदर अब्बास का इलाका, बुशर का इलाका, यहां तक ही जो आप कह सकते हैं कि जो चाबहार का इलाका जिसको पहली बार टारगेट किया गया, ये सारे के सारे घटनाक्रमों का, बदलती हुई नई मिलिट्री स्ट्रेटजी का एक नया रूप है जो अमेरिका फोकस कर सिर्फ और सिर्फ इन्हीं इलाकों पर टारगेट कर रहा है।
2: बिल्कुल बिल्कुल ठीक है सुमित, बहुत धन्यवाद सुमित चौधरी हमारे संवाददाता। और आइए अब हम आपको दिखाते हैं ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई की विदाई के साथ अब अमेरिका और इजराइल अपना अगला टारगेट फिक्स कर चुके हैं। बीती रात जिस तरह से अमेरिका ने लगातार दूसरे दिन ईरान पर हमले किए और ईरान में करीब 90 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया, अब तो यह तय है कि ये युद्ध रुकने वाला बिल्कुल नहीं।

0: अमेरिका और ईरान के बीच अब ये जंग रुकेगी नहीं। आयतुल्लाह खामेनेई के बाद ट्रंप के टारगेट पर मुश्तबा, मुश्तबा पर 92 करोड़ का इनाम, IRGC ने किया अंडरग्राउंड। CIA और मोसाद का ऑपरेशन मुश्तबा, 10 जुलाई को क्या होगा? मुश्तबा घायल हैं, फिर भी अमेरिका और इजराइल के लिए घातक हैं। 28 फरवरी को जंग के पहले दिन अमेरिका और इजराइल ने सबसे पहले ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई को मार दिया, क्योंकि अमेरिका और इजराइल दोनों ही जानते थे कि जब तक आयतुल्ला खामेनेई जिंदा रहते ईरान की ताकत बनकर खड़े होते। लेकिन खामेनेई की मौत के बाद भी अमेरिका का ऑपरेशन एपिक फ्यूरी और इजराइल का ऑपरेशन रोरिंग लायन पूरा नहीं हो पाया, क्योंकि ईरान की सैन्य ताकत की पूरी कमांड मुश्तबा खामेनेई ने सुप्रीम लीडर बनकर संभाल ली। यही ट्रंप और नेतन्याहू के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। सत्रह जून को भले ही अमेरिका और ईरान के बीच डील हो गई, लेकिन ये डील ऐसी है ना तो बनते बन रही है ना संभलते बन रही है, और इसकी तीन बड़ी वजह हैं। पहली तो ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अपना कब्जा चाहता है। दूसरी वजह, ईरान किसी भी कीमत पर अपना परमाणु प्रोग्राम रोकना नहीं चाहता और अपना एनरिच्ड यूरेनियम किसी को नहीं देना चाहता। और तीसरी वजह, ईरान चाहता है कि लेबनन में इजराइल कोई भी हमला ना करे, और इन्हीं तीन शर्तों के बीच बार बार डील डामाडोल होती नजर आती है। इजराइल के इंस्टीट्यूट फॉर नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज में ईरान मामलों के एक्सपर्ट डेनी सिट्रीनोविज ने एक्स पर लिखा है, अगर जंग से पहले बातचीत मुश्किल थी तो अब ये और भी ज्यादा हो गई है, क्योंकि ईरान अब ऐसे सिस्टम का सामना कर रहा है जो पहले से कहीं ज्यादा बटा हुआ है और कट्टरपंथी है। ये एक ऐसा सिस्टम है जो इस लड़ाई में अपनी मजबूती को जीत के रूप में देखता है, और ये सब इसलिए हुआ है क्योंकि डील की पहल अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से हुई है। सच ये है कि कभी डोनाल्ड ट्रंप ईरानी सभ्यता को ही मिटाने की धमकी देते हैं और अगले ही पल डील की बात कह देते हैं।
1: They can have no bridges, they can have no power plants, stone ages, yeah. I mean complete demolition. It will take them 100 years to rebuild. It would take them 20 years to rebuild their country, and it would never be as good as it was.
0: अब ईरान समझता है कि जंग में वो जीत रहा है और उसके जवाबी हमलों से अमेरिका बैकफुट पर है, और ये साबित करने के लिए ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ये मैसेज देती है कि ईरान की कमांड सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनेई के हाथों में है। उनकी तरफ से जो संदेश आता है उसी को अंजाम दिया जाता है, और इसीलिए अमेरिका और इजराइल के टारगेट पर सिर्फ और सिर्फ मुश्तबा खामेनेई है। अब ईरान ने आधिकारिक तौर पर वॉशिंगटन को चेतावनी दी है कि मुश्तबा खामेनेई को नुकसान पहुंचाने की कोशिश रेड लाइन को पार करना होगी, जिसका अंजाम बेहद गंभीर होगा। इस जंग में मुश्तबा की रणनीति कैसे काम कर रही है, इससे भी समझा जा सकता है कि मुश्तबा खामेनेई ने अपने पहले संदेश में ही स्पष्ट किया था कि जब तक क्षेत्र से अमेरिकी सैन्य ठिकाने नहीं हटाए जाते तब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद रखा जाएगा और वाणिज्यिक जहाजों पर हमले जारी रहेंगे। और अब इसी रास्ते पर 3 तेल टैंकरों पर हाल ही में हमले किए गए, क्योंकि हॉर्मुज को लेकर ईरान का प्लान क्लियर है।
2: There is a very simple line in Strait of Hormuz. Either you coordinate with the Iranian officials to pass through the Strait of Hormuz, or there would be some attacks or some, let's say, measures taken against allowing ships to pass. Or you would be considered a threat, and a threat is simply dealt with missiles or drones or whatsoever in order to prevent any threat to happen and occur in a Strait of Hormuz.
0: ऐसे में अमेरिका को लगता है कि अगर आयतुल्ला खामेनेई की तरह मुश्तबा खामेनेई का भी खात्मा हो गया तो ईरान बिखर जाएगा। इसीलिए अमेरिका ने मुश्तबा खामेनेई को अपने प्रमुख रणनीतिक लक्ष्यों में शामिल किया है, और ये ऐलानिया कह रखा है, कि मुश्तबा खामिनई और आईआरजीसी से जुड़े दूसरे सीनियर अधिकारियों की जानकारी देने वालों के लिए अमेरिका ने $1 करोड़ यानी लगभग 92 करोड़ रुपए का इनाम रखा है। अब मुश्तबा खामिनई एक तरफ तो ईरान और अमेरिका के खिलाफ जंग को लीड कर रहे हैं, दूसरी तरफ खतरे को देखते हुए सामने नहीं आ रहे हैं। तभी तो 37 साल तक ईरान के सुप्रीम लीडर रहे अली खामिनई के जनाजे में जब 2 करोड़ लोगों के जुटने का दावा किया गया, तब भी मुश्तबा खामिनई कहीं नजर नहीं आए। 5 जुलाई को जब अली खामिनई और उनके परिवार के बाकी सदस्यों के ताबूत ग्रैंड मुसल्ला में लाए गए तो उनके 3 बेटे मुस्तफा, मीसम और मसूद रोते हुए दिखाई दिए, फिर भी मुश्तबा खामिनई नहीं दिखे। ईरान का कहना है कि सुरक्षा कारणों के चलते मुश्तबा इसमें शामिल नहीं है क्योंकि इसराइल उन्हें निशाना बना सकता है। अब सवाल यह है कि आखिर कहां है मुश्तबा खामिनई। तो आपको बता दें कि आयतुल्ला खामिनई की मौत के लगभग 10 दिन बाद 8 मार्च को मुश्तबा खामिनई को नया सुप्रीम लीडर चुना गया। 12 मार्च को मुश्तबा ने अपना पहला लिखित संदेश जारी किया। उनके संदेश को एक टीवी एंकर ने पढ़ा था जिसमें मुश्तबा ने बदला लेने की बात कही थी। इसके बाद से मुश्तबा खामिनई दर्जनों संदेश जारी कर चुके हैं, हालांकि उनके सभी संदेश लिखे हुए रहते हैं जिन्हें सरकारी टीवी पर पढ़ा जाता है। हाल ही में 18 जून को उनका एक अहम बयान सामने आया था जिसमें मुश्तबा ने कहा था कि युद्ध खत्म करने के लिए अमेरिका के साथ बातचीत को उन्होंने अपनी मंजूरी दे दी है, भले ही उनकी राय अलग थी। हालांकि कई चर्चाएं ऐसी थीं कि 28 फरवरी के हमले के बाद मुश्तबा खामिनई जिंदा नहीं है क्योंकि उस हमले में मुश्तबा की पत्नी जहरा हद्दाद आदेल और उनके परिवार के दूसरे सदस्य मारे गए थे। लेकिन कई ईरानी अधिकारियों ने इस बात को माना है कि 28 फरवरी के हमले में खामिनई घायल हो गए थे। इससे ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि हो सकता है कि वो पूरी तरह ठीक होने और अपनी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए ही सबके सामने आना चाहते हों। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने 3 करीबी सूत्रों के हवाले से बताया था कि 28 फरवरी के हमले में मुश्तबा खामिनई बुरी तरह जख्मी हो गए थे, उनका चेहरा पूरी तरह बिगड़ गया था और शायद उनका एक पैर भी कट गया था। हालांकि रॉयटर्स ने ये भी बताया था कि मुश्तबा मानसिक रूप से सचेत हैं और ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीनियर अफसरों के साथ होने वाली बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। इससे पहले 13 मार्च को अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेक्सेथ ने दावा किया था कि उस हमले में मुश्तबा घायल हो गए थे और शायद उनका चेहरा या शरीर बुरी तरह जख्मी हो गया था। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भी हाल ही में कहा है कि मुश्तबा खामिनई जीवित हैं और सार्वजनिक रूप से नजर नहीं आने के बावजूद देश के प्रशासनिक और रणनीतिक फैसलों में पहले से ज्यादा सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। अमेरिकी और इजरायली खुफिया एजेंसियां 56 साल के मुश्तबा खामिनई को लगातार टारगेट कर रही हैं। ऐसे में सुप्रीम लीडर का गायब रहना ही फायदेमंद है। सच ये भी है कि अगर मुश्तबा खामिनई की मौत हो गई तो ईरान की सत्ता बिखरने में देर नहीं लगेगी और अंत आईआरजीसी का भी होगा, क्योंकि मुश्तबा ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी आईआरजीसी और उससे जुड़े संगठनों को सीधे बढ़ावा दे रहे हैं और संभावित हमलों के खतरे को देखते हुए वो लगातार सार्वजनिक जीवन से दूर और छिपे हुए हैं। विश्लेषकों का मानना है कि वो किसी सुरक्षित गुप्त स्थान या बंकर से ही ईरान की सरकार चला रहे हैं और खुद को हमलों से बचा रहे हैं, क्योंकि ये भी निश्चित है कि अगर मुश्तबा की सुरक्षा में रत्ती भर भी लापरवाही बरती गई तो वो सीधे अमेरिका और इसराइल के टारगेट पर होंगे। आज तक ब्यूरो।
3: दस्तक मेरे ग्राम एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए लौट कर आएंगे तो दस्तक के अगले हिस्से में आपको दिखाएंगे खामिनई की विदाई, अब ईरान करेगा चढ़ाई। अब देखते रहिए दस्तक।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से,
5: इन एसोसिएशन विद
6: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
7: ट्यून इन इज योर ऑल इन वन ऑडियो ऐप, रेडियो, म्यूजिक, स्पोर्ट्स, न्यूज एंड पॉडकास्ट्स ऑल इन वन प्लेस। But here's something you might not know. You can explore the world through sound. With TuneIn Explore, you can browse an interactive map and listen to local radio stations from across the globe. Just head to the radio tab and start discovering what's playing anywhere. Tap location, hit play, and you're instantly connected. It's a whole new way to listen.
8: Sokudo.
5: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
8: आगे आगे, अरे उधर उधर, करेक्ट करेक्ट।
9: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
10: अरे वाह, तू भी ये ट्रेडिंग ऐप यूज करती है?
11: हाँ, क्योंकि इसमें गारंटीड रिटर्न्स है ना।
10: गारंटीड रिटर्न्स? तेरी ट्रेडिंग ऐप ऑथेंटिक तो है ना?
11: अर्ज किया है
10: पहले, गारंटीड और हाई रिटर्न्स का भरोसा ये दिलाते हैं, फिर फेक ऐप डाउनलोड करा के अपने झांसे में फंसाते हैं।
12: वाँ वाँ वाँ वाँ।
10: सेबी और NSE का कहना है सेबी इन्वेस्टर साइट पर वेरिफाइड ऐप्स की लिस्ट से ही ऐप डाउनलोड करें।
13: सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर।
14: NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी।
15: Where the software engineer meets the cool UI/UX designer meets the gifted content writer to create the big dream, the world comes together at Sharda University. So where are you?

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार।
1: विमल बोलो जुबान केसरी।
2: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। AU
3: सोच बदलो और बैंक भी।
4: जब बात हो रस चूसक कीटों से फसल सुरक्षा की तो हर असली हीरो चुनता है जिवोरा। जिवोरा सफलता का शंखनाद।
5: पापा
6: सॉरी यार गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
7: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
6: छक्का
7: सब कैशलेस हो गया है।
6: हाँ ला भाई मेरा बैट, वो अभी तो ठीक हुआ। तू
8: चार्ज हुआ यार।
9: बैट किसका है?
10: टाटा AIG है तो भरोसा है।
11: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
12: वी आर ओवर जिमी।
13: हे लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपी अब संभाल लेगा। आप अपना देख लो।
14: हनी इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
15: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
16: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।

0: इन एसोसिएशन विद E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
1: 25 सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये है खबरें सात तक, देखते रहिए आज तक।
2: So we hit him very hard last night. Very, very hard. Probably hit him hard again tonight. I'll give him a little warning. We're going to hit him hard tonight.
3: ट्रंप की धमकी आई और फिर अमेरिकी फौज ने ताबड़तोड़ हमले कर दिए। दो दिनों में दूसरी बार अमेरिकी हथियारों का जखीरा ईरान में तबाही मचा रहा था। पहले दिन अमेरिकी फौज ने ईरान में करीब 80 ठिकानों को तबाह किया और ट्रंप का फरमान आते ही उनकी सेना ने 90 ठिकानों को टारगेट किया। अमेरिकी हमले की तबाही के निशान साफ साफ दिख रहे हैं। ईरान के अलग अलग हिस्सों में भारी तबाही मची है। हमले के बाद अमेरिका ने सैन्य अभियान फिलहाल रोक दिया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ईरान में तबाही मचाने की तस्वीरें भी जारी की। इसके मुताबिक अमेरिकी मिलिट्री ने एयरपोर्ट के रनवे और मिसाइल लॉन्चर को तबाह कर दिया। अमेरिकी सेना ने कहा है कि अमेरिकी सेना सतर्क है और कमांडर इन चीफ के आदेश पर ऑपरेशन दोबारा शुरू करने को तैयार है। ईरान के शहरों पर रात के अंधेरे में अमेरिकी फौज ने धावा बोला। अमेरिकी सेना ने ईरान पर इतने बारूद बरसाए कि पूरा ईरान दहल गया। ये हमला उस वक्त हुआ जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नाटो देशों की बैठक के लिए तुर्की के अंकारा में थे। वहीं से ट्रंप ने ऐलान किया कि उनकी सेना ईरान पर हमला करेगी। उसके बाद अमेरिकी फौज का ईरान के कई शहरों पर अटैक तेज हो गया। सिरिक, चाबहार, कोनारक, अबू मूसा द्वीप, जास्क द्वीप और बुशहर पर अमेरिका ने हमला किया। ईरानी मीडिया प्रेस टीवी के मुताबिक बंदर अब्बास में 8 धमाके सुने गए। सिरिक में 3 धमाके हुए। वहीं कोनारक और चाबहार के पास 10 धमाकों की आवाज सुनाई दी। अबू मूसा द्वीप, जास्क द्वीप में भी 10 धमाके सुने गए। दक्षिण पूर्वी ईरान में एक एयरपोर्ट पर भी हमला हुआ। उत्तरी ईरान के अकाला रेलवे ब्रिज पर भी अमेरिकी मिसाइल गिरी। ताजा अमेरिकी हमले के दौरान ईरान के खुजिस्तान प्रांत के अहवाज इलाके में 3 लोगों की जान भी चली गई। इरना न्यूज एजेंसी ने जानकारी दी है कि हमले में कई लोग जख्मी हैं। सीज फायर के बाद ये पहली बार है जब अमेरिकी फौज ने ईरान पर इतने बड़े स्तर पर हमला किया। आयतुल्लाह अली खामेनेई की अंतिम संस्कार की तैयारियों में जुटे ईरान ने अमेरिकी हमले के बाद पलटवार तेज कर दिया। तनिक भी देर नहीं की, मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों पर ईरान ने मिसाइल और ड्रोन दागे। ईरान का पहला टारगेट बहरीन और जॉर्डन के अमेरिकी बेस बने। कुवैत के आसमान पर भी ईरानी मिसाइल गरजे। ईरान ने अमेरिका को धमकी भी दी कि इन हमलों का अंजाम बुरा होगा। ईरान अमेरिका पर और अमेरिका ईरान पर सीज फायर तोड़ने का आरोप लगाता है। एक तरफ ट्रंप दावा करते हैं कि ईरान डील करना चाहता है, वो डील करने के लिए बेताब है। दूसरी तरफ ईरान पर हमला करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि जब ईरान डील चाहता है तो फिर ट्रंप ने उस पर हमला क्यों किया? ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान के लोग सनकी हैं, वो कमर्शियल जहाजों पर हमला करते हैं और फिर डील की भी बात करते हैं। जारी तनाव के बीच ट्रंप ने यहां तक दावा किया है कि ईरान की हिट लिस्ट में पहला नाम उन्हीं का है। ऐसे दावों के बीच खबर है कि व्हाइट हाउस हॉर्मुज पर कई दिनों तक चलने वाले सैन्य ऑपरेशन की तैयारी में जुटा है। समाचार एजेंसी एक्सियोस के हवाले से ये खबर है। आज तक के रिपोर्ट।

0: मानसून की पहली बड़ी बारिश ने दिल्ली NCR में सिस्टम की पोल खोल दी। बारिश ने दिल्ली से सटे गुरुग्राम में हर साल की तरह शासन प्रशासन के सिस्टम को एक्सपोज कर दिया। गुरुग्राम में सड़कें समंदर बन गईं, गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया, जगह जगह लंबा जाम भी लग गया। गुरुग्राम के बसई रोड समेत कई इलाकों में कई फीट पानी भर जाने की वजह से ट्रैफिक बुरी तरह से प्रभावित हुआ। सड़कों पर 2 से 3 किलोमीटर लंबी गाड़ियों की कतारें दिखी, भयंकर जाम लग गया था।
1: मैं इस वक्त गुरुग्राम के बसई रोड इलाके में मौजूद हूं और यहां के जो हालात हैं आप देख सकते हैं साफ तौर से तस्वीरों के माध्यम से। ये जो गाड़ियों की कतार है तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर लंबी है और ये गाड़ियों की कतार इसलिए भी है क्योंकि इस इलाके में 2.5 से 3 फीट पानी जमा है और यही 2.5 से 3 फीट पानी लोगों की परेशानी का सबब बनता जा रहा है।
0: गुरुग्राम ही नहीं दिल्ली में भी बारिश ने काफी नुकसान पहुंचाया। दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश इलाके में गाड़ियों पर पेड़ गिरा है। मौके पर फायर और पुलिस टीम पहुंची है। हालांकि इसमें कोई हताहत नहीं हुआ है लेकिन गाड़ियों का नुकसान हुआ है। मानसून की पहली बड़ी बारिश ने नोएडा के सिस्टम की भी पोल खोल दी। बारिश के चलते लेबर चौक पर पानी भर गया जिसके चलते गाड़ियों की रफ्तार रुक गई। गुरुग्राम से नीरज वशिष्ठ के साथ आज तक ब्यूरो।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
3: आप देख रहे हैं दस्तक, आपके साथ मैं हूँ सईद अंसारी, स्वागत एक बार फिर से आपका। और आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि कैसे आज ईरान के मशहद शहर में ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई को सुपुर्द खाक किया गया। खामनेई को ईरान के 12 पवित्र इमामों की एक जगह इमाम रजा की दरगाह में दफनाया गया। लेकिन दुनिया में चर्चा इस बात की हो रही है कि ईरान में 6 दिनों तक आयतुल्ला अली खामनेई की अंतिम यात्रा क्यों निकाली गई। इससे ईरान दुनिया में क्या मैसेज देना चाहता है और क्यों आयतुल्लाह अली खामनेई को ईरान के मशहद शहर में ही दफनाया गया। आपको दिखाएं क्यों खामनेई को उनकी मौत के 125 दिनों के बाद अब आज दफनाया गया।

0: आयतुल्ला खामिनई सुपुर्दे खान ईरान में मातम। मशहद में खामिनई के समर्थकों का नारा, हम ट्रंप को मार देंगे। मौत के 126 दिन बाद खामिनई को मशहद में क्यों दफनाया? खामिनई की अंतिम यात्रा पर ट्रंप और नेतन्याहू क्यों बौखलाए? कैसे खामिनई की अंतिम यात्रा में ईरानियों ने बदला लेने की धमकी दी? तेहरान, कोम, इराक के नजफ और कर्बला से होते हुए ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर की अंतिम यात्रा सुपुर्दे खाक के लिए ईरान के मशहद शहर पहुंची, तो आयतुल्ला खामिनई के समर्थकों का सैलाब उमड़ पड़ता है। मातम में डूबे लोग लाल झंडों के साथ और किल ट्रंप के बैनर्स लिए हुए दिखते हैं। गुस्सा साफ है, ट्रंप के खिलाफ ईरान में आक्रोश बेहिसाब है। आयतुल्ला अली खामिनई के जनाजे में जिस तरह से लाखों लोगों ने लाल कपड़ा दिखाया, ये इस्लामिक परंपरा में बदले या खून का प्रतीक माना जाता है। 4 जुलाई से शुरू हुई खामिनई की अंतिम यात्रा में ईरान के लोगों का धधकता आक्रोश मशहद में चरम पर पहुंच गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक भीड़ बदला बदला के नारे भी लगा रही थी। लोग बड़े बैनर लेकर चलते दिखाई दिए जिन पर अंग्रेजी में लिखा था, हम ट्रंप को खत्म कर देंगे। ईरान की तरफ से मैसेज क्लियर है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के खिलाफ असली जंग अब छिड़ने वाली है। ईरानी सेना प्रमुख मेजर जनरल अमीर हाफी ने भी कहा है कि खामिनई की हत्या करने वालों को न्याय के कटघरे तक पहुंचाकर ही दम लेंगे। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने यह अपराध किया है उन्हें पता होना चाहिए कि ईरान और उनकी जनता न्याय की बांध से कभी पीछे नहीं हटेगी। तो मशहद ही वो पड़ाव था जहां ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर को सुपुर्दे खाक किया गया। आपको बता दें कि आयतुल्ला अली खामिनई को मशहद में इमाम रजा की दरगाह के अंदर दफनाया गया है, क्योंकि शिया संप्रदाय के कुल 12 पवित्र इमामों में से इमाम रजा एकमात्र ऐसे इमाम हैं जिन्हें ईरान की धरती पर दफनाया गया है। बाकी के सभी इमाम या तो सऊदी अरब में हैं या इराक के नजफ, कर्बला और समर्रा में। इमाम रजा शिया इस्लाम के 8वें इमाम माने जाते हैं। उनकी बढ़ती लोकप्रियता से डरकर तत्कालीन शासक अब्बासी खलीफा ने जहर देकर उनकी हत्या करा दी थी। जहां इमाम रजा को दफनाया गया उस जगह का नाम बाद में मशहद पड़ गया, जो आज ईरान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। मशहद शिया मुसलमानों के लिए मक्का, मदीना और कर्बला के बाद सबसे पवित्र स्थलों में से एक है। यहां हर साल दुनिया के कई देशों से लाखों शिया श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुँचते हैं। 6 दिन तक खामिनई की अंतिम यात्रा से ईरान ने कई संदेश दिए हैं। पहला तो अमेरिका और इसराइल को ये दिखाना है कि पूरा ईरान एकजुट है। जिस तरह से ईरान पर जंग थोपी गई, पूरा देश उसके खिलाफ खड़ा है। दूसरा, शिया परंपरा के प्रति लाल झंडों और अमेरिका विरोधी नारों के जरिए ईरान ने अमेरिका और इसराइल को ये संदेश दिया है कि खामिनई की शहादत का बदला लिया जाएगा, और इसीलिए खामिनई के समर्थकों ने उनकी शहादत को एक क्रांति बताया।
1: उन्होंने शहादत के लिए खुद को तैयार किया ताकि जीत उनकी हो। जैसा कि आप आज देख सकते हैं, लाखों लोगों का ये मार्च उसी बात का सबूत है। 85 साल या उससे ज्यादा की उम्र में हम खामिनई से क्या उम्मीद कर सकते हैं? शहादत के अलावा उनकी मौत किस तरह हो सकती थी? उनका खून एक क्रांति बन गया है।
0: और तीसरा संदेश, इस अंतिम यात्रा में 100 से अधिक देशों के राजनयिकों और इराक में कर्बला तक निकाले गए जुलूस के जरिए ईरान ने अपनी अंतर्राष्ट्रीय पैठ और शिया समुदाय की एकजुटता का प्रदर्शन किया। साथ ही अमेरिका और इसराइल को यह संदेश भी दिया गया कि नेतृत्व के जाने के बाद भी ईरान की वैचारिक नींव और राजनीतिक व्यवस्था पूरी तरह से मजबूत है। ईरान ने खामनेई की अंतिम यात्रा में करीब 2 करोड़ लोगों के जुड़ने का दावा किया तो इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दावा किया कि आयतुल्लाह अली खामनेई की अंतिम यात्रा में शामिल लाखों लोग पूरे ईरान की आवाज नहीं है, ये सिर्फ एक छोटा समूह है जिसने ईरान पर कब्जा कर रखा है। आयतुल्लाह अली खामनेई की अंतिम यात्रा को शिया समुदाय में बड़ा धार्मिक महत्व रखने वाले शहरों से गुजारा गया। इनमें इराक के नजफ और करबला का भी खास महत्व है। आपको बता दें कि 1957 में नजफ की अपनी पहली यात्रा के 69 साल बाद अली खामनेई के शव को नजफ ले जाया गया, जहां एक युवा मदरसा छात्र के तौर पर उन्होंने महान आलिमों से शिक्षा ली थी। नजफ वो शहर है जहां पहले शिया इमाम और पैगंबर मोहम्मद के दामाद हजरत अली की दरगाह मौजूद है। नजफ के बाद खामनेई की अंतिम यात्रा करबला गई, क्योंकि करबला वो जमीन है जहां 680 ईस्वी में इमाम हुसैन और उनके साथियों ने यजीद की सत्ता के सामने झुकने से इनकार करते हुए शहादत दी थी। 1989 में रूहुल्लाह खुमैनी के निधन के बाद से आयतुल्लाह खामनेई ईरान के सर्वोच्च नेता के पद पर काबिज थे। ईरान में 1989 की इस्लामी क्रांति के दौरान जब शाह मोहम्मद रजा पहलवी को हटाया गया तो खामनेई ने क्रांति में बड़ी भूमिका निभाई थी। इस्लामिक क्रांति के बाद खामनेई को 1981 में राष्ट्रपति बनाया गया। वो 8 साल तक इस पद पर बने रहे। 1989 में ईरान के सुप्रीम लीडर खुमैनी की मौत के बाद उन्हें उत्तराधिकारी बनाया गया था। खामनेई के शव को उनकी मृत्यु के 125 दिन बाद सुपुर्द खाक किया गया है। 28 फरवरी को हुए हवाई हमलों के बाद ईरान में लगातार बमबारी और गंभीर युद्ध के हालात बने हुए थे। ऐसे माहौल में लाखों लोगों की भीड़ जुटाकर अंतिम संस्कार करना सुरक्षा की दृष्टि से बेहद खतरनाक था। शांति बहाल होने के बाद और मुहर्रम के बाद खामनेई की अंतिम यात्रा निकाली गई, लेकिन सुपुर्द-ए-खाक से ठीक पहले अमेरिका ने एक के बाद एक 24 घंटे के भीतर ईरान पर 170 स्ट्राइक्स की। इन अमेरिकी हमलों से ईरान भी भड़क उठा है। ऐसे में अब 10 जुलाई को क्या होगा, दुनिया में फिर से जंग को लेकर बेचैनी बढ़ गई है। आज तक ब्यूरो।
2: आइए हम हमारी संवाददाता सुमित चौधरी के पास आपको लिए चलते हैं। सुमित, ये बताइए कि आयतुल्लाह अली खामनेई को तो सुपुर्द-ए-खाक कर दिया गया, ऐसे में अब ईरान का अगला प्लान क्या होगा?
3: सही, अगर आप देखें कि ईरान ने पिछले कुछ दिनों में कभी भी अपने बयानों में ऐसी तलखी नहीं दिखाई थी, लेकिन जैसे जैसे 9 जुलाई पास आ रही है वो तलखी, वो चीज़ें हम देख भी रहे हैं। मैं इस समय जब खुद कल तक मैं ईरान में मौजूद था, मैंने कई उनके लीडर से, IRGC के कई कमांडर से बातचीत की, और खास तौर पर जब मैंने उनके स्पोक्स पर्सन से, यानी उनके विदेश मंत्रालय के स्पोक्स पर्सन से बात की, तो उन्हें सीधा कहा था कि हम ये जानते हैं कि एक आखिरी ऑप्शन अगर अमेरिका के पास पहुंचेगा तो अमेरिका कोशिश करेगा कि बड़े अटैक्स कर सके, और कोशिश ईरान की तरफ से ये थी कि 9 जुलाई तक सुप्रीम लीडर को सुपुर्द-ए-खाक कर दिया जाए, क्योंकि लंबे समय से करीबन 125-130 दिनों से वहां के लोग इस बात का इंतजार कर रहे थे। इस पूरे कार्यक्रम में लोगों को जुटाना या फिर दुनिया भर के उनके प्रतिनिधियों को विदेश मंत्रालय ने उनको बुलाना, उनको इन्विटेशन देना, लोगों को सड़कों पर लाना, ये ईरान के लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि ये एक संकेत था या फिर एक लार्जर पिक्चर थी तो दुनिया भर के सामने ईरान ये पेश करना चाहता था कि देखिए लोग रिजिम के साथ हैं, लोग लगातार उनके सपोर्ट में खड़े हैं, और अमेरिका और उनके इजराइल के दावे खोखले हैं। तो शायद इसी वजह से ज्यादा फोकस इन चीजों पर किया गया, और 9 जुलाई के बाद आप मानिएगा कि ईरान भी बड़े अटैक्स करेगा, और ये अटैक स्पेसिफिक होंगे कुवैत हो, बहरीन हो, या उन इलाकों में जहां पर अमेरिका की प्रेजेंस, उनकी मिलिट्री की प्रेजेंस बहुत ज्यादा है।
2: आज ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई को दफन कर दिया गया। 6 दिन तक चले अंतिम विदाई समारोह का अंत हो गया। ईरानी नागरिकों ने नम आंखों से अपने पूर्व सर्वोच्च नेता को विदाई दी, लेकिन अंतिम संस्कार के दौरान नहीं अमेरिका ने ईरान पर बड़ा हमला किया, और ऐसा माना जा रहा है कि अंतिम संस्कार कार्यक्रम के कारण से ही ईरान ने धैर्य रखा। लेकिन अंतिम विदाई के बाद अब ईरान बड़ा हमला करेगा। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर बड़े हमलों का खतरा बढ़ गया। आखिर ईरान अगले 24 घंटों में क्या करने वाला है, आइए हम आपको बताते हैं।

0: अगले 24 घंटे में ईरान करेगा बड़ा हमला। क्या ईरान की हिट लिस्ट पर है राष्ट्रपति ट्रंप? क्या हमले के डर से ट्रंप ने बदला विमान?
1: I'm number one on the kill list for Iran.
0: मिडिल ईस्ट में बारूदी तबाही मचाएगा ईरान। अंतिम संस्कार खत्म, अब ईरान लेगा बदला। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब ट्रंप नाटो समिट में हिस्सा लेने अंकारा पहुंचे थे। इसी समिट में पत्रकारों से बातचीत के दौरान ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध विराम खत्म होने का ऐलान करते हुए नए हमले की सीधी धमकी दी थी। धमकी के बाद ईरानी हमले की आशंका के चलते अमेरिकी राष्ट्रपति को अपना विमान तक बदलना पड़ा। ट्रंप जब अंकारा में नाटो समिट से वापस लौटे तो पुराने एयरफोर्स विमान में सवार थे। ट्रंप ने कतर से गिफ्ट में मिले नए बोइंग में सफर नहीं किया। इसे ईरानी हमले के खतरे से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि ट्रंप ने सुरक्षा कारणों को खारिज करते हुए यही दावा किया कि सिर्फ पुराने वक्त की यादों के लिए पुराने विमान में लौटे हैं, लेकिन ये कबूल किया कि ईरान की हिट लिस्ट में सबसे ऊपर उनका नाम है। भले ही अमेरिका ने बीते 48 घंटों में 170 ईरानी ठिकानों पर बमबारी की हो, लेकिन ईरान ने भी अमेरिकी हमलों का जवाब देते हुए बहरीन और कुवैत में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए हैं। ईरान ने ऐलान किया कि अमेरिका की तरफ से की गई सैन्य कार्रवाई का मुंहतोड़ जवाब देगा। ईरान क्या करेगा आपको बताएं, उससे पहले समझिए ट्रंप बार बार क्यों कह रहे हैं कि ईरान उनकी हत्या की साजिश रच रहा है। तस्वीर नंबर एक, ट्रंप का पुतला लटकाया गया। ये तस्वीरें खामेनेई के अंतिम संस्कार की हैं। आप देख सकते हैं कि फांसी के फंदे से झूलता ट्रंप का पुतला लटक रहा है। ईरान में ट्रंप को लेकर यही गुस्सा है। ईरानी बदला चाहते हैं, बदला ये कि ट्रंप को भी मौत के घाट उतारा जाए।
2: کننگ ماست اگر قاتل تو را نکشیم، از این به بعد کفن جای جامه بر تن ماست، قسم به خون تو قتل ترامپ گردن ماست.
0: تصویر نمبر دو، ترامپ اور نتنیاهو کا تابوت. اب پوسٹر کو دیکھیے، पोस्टर में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू की तस्वीरें हैं। पोस्टर के ऊपर लिखा है वांटेड, नीचे दो ताबूत हैं जिन पर लिखा हुआ है कमिंग सून, जबकि ट्रंप और नेतन्याहू के माथे पर टारगेट का निशान है। ट्रंप और नेतन्याहू को लेकर ईरानी नागरिकों का यही आक्रोश अंतिम संस्कार में नजर आ रहा है। इस गुस्से की वजह है ट्रंप का ईरान विरोधी एजेंडा। तस्वीर नंबर तीन, ट्रंप को मारने की धमकी। ईरान के मशहद में एक होटल की इमारत पर यह बड़ा बैनर लटका हुआ है। बैनर में अंग्रेजी में लिखा हुआ है वी विल किल ट्रंप, मतलब हम ट्रंप को मार डालेंगे, और नीचे फारसी भाषा में यही संदेश लिखा हुआ है। यही नहीं, ईरान के कट्टरपंथी अखबारों ने अली खामेनेई की हत्या का बदला लेने का आह्वान किया, जिनमें से कुछ ने ट्रंप और नेतन्याहू को खामेनेई की मौत के लिए जिम्मेदार बताते हुए ईरानी सेना से बदला लेने को कहा है। हमें अपने नेता की हत्या करने वाले को क्यों नहीं मार देना चाहिए? ईरानी मीडिया हो या फिर ईरान में लगे पोस्टर, सभी में पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की मौत का बदला लेने की बात कही जा रही है। मांग यही है कि अली खामेनेई का बदला तभी पूरा होगा जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की हत्या हो, मतलब हत्या के बदले हत्या। अमेरिकी हमलों के बाद ईरानी सेना ने भी यही संकेत दिए हैं कि अब लड़ाई आर पार की होगी, और उनकी हिट लिस्ट पर सीधे अमेरिकी राष्ट्रपति हैं। ईरान की सशस्त्र सेनाएं एक क्रांतिकारी कार्रवाई के माध्यम से दुश्मन की नींद उड़ा देंगी और जल्द ही अली खामेनेई के हत्यारों को दंडित करेंगी। ईरान अब सिर्फ हॉर्मुज और अपने परमाणु प्रोग्राम को लेकर अडिग नहीं है, बल्कि उसके दिमाग में अपने सर्वोच्च नेता अली खामिनई का बदला घूम रहा है। ईरानी मीडिया में छपी रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने अमेरिका और उसके सहयोगियों के खिलाफ विदेशों में गुप्त ऑपरेशनों को अंजाम देने के लिए अपनी घातक मुख्तार यूनिट को सक्रिय कर दिया है, जिससे डोनाल्ड ट्रंप की सुरक्षा को भी बड़ा खतरा पैदा हो गया है। साफ है, ईरान और अमेरिका ने भले ही शांति समझौते के MOU पर दस्तखत किए हैं, बावजूद इसके दोनों पक्षों में दो राउंड हमले हो चुके हैं। यानी शांति समझौता दोनों मुल्कों के बीच शांति की गारंटी नहीं है। ऐसे में अमेरिकी हमलों के बाद ईरान की तैयारी मिडल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर विध्वंसक हमलों की है। ईरान ने खुल्लम खुल्ला ऐलान कर दिया है कि अब ये लड़ाई परमाणु युद्ध तक पहुंच सकती है।
3: They did everything and they could not make any achievements. So they used fighter jets, they used missiles, they used actually ground operation and they tried to steal the enriched uranium from Iran. In all of them they failed.
4: Yes.
3: So if they wanted to make any achievements, they would have done it during those 40 days. And they don't have any other options. There remains only one option, which is the nuclear bomb, that even if it is used, it would not stop Iranian people.
0: तेहरान के डिप्टी मेयर का दावा है कि ईरान के खिलाफ अमेरिकी सेना की हर रणनीति फेल रही है। अब ट्रंप के पास सिर्फ और सिर्फ एटमी हमले का विकल्प बचा हुआ है, लेकिन अमेरिका एटमी हमला करता है तो भी ईरान न तो झुकेगा और न ही रुकेगा।
3: So these people are totally committed to defend their country, and even if a nuclear bomb, even to the extent of the Japan incident, the attacks, Hiroshima and Nagasaki, even if that those levels, Iranians would not fear that and would not stop defending their country. And even if that happens, it would not be considered a defeat for the Iranians. It actually emboldens them more and encourages them more to protect their country and fight for their country. And that is the difference between Iran and many other countries.
0: Ali Khamenei ke antim sanskar ke baad, ab Iran ke nishane par Ameriki rashtrapati Trump hain. Middle East mein Ameriki sainya adde hain. Agle kuch ghanton mein Iran poore ilake mein maujood Ameriki sainya addon par apni vidhvansak misailon se hamla karega. Matlab Iran ka badla bhi bahut tagda hoga. आज तक ब्यूरो।
5: दर्शक में आज के लिए बस इतना है। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुभ रात्रि।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
7: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
8: Jack FM is now streaming commercial-free on TuneIn Premium.
9: Jack, come home. It's supper time.
8: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial-free.
10: Hey, Jack, could you play that one song with the words?
8: Jack FM, playing what we want.
11: Where the software engineer meets the cool UI UX designer, meets the gifted content writer. To create the big dream, the world comes together at Sharda University. So where are you?
12: AU current account ke saath milta hai free UPI QR overdraft facility aur ek hi app se bank ke sare kaam. AU!
13: Soch badlo aur bank bhi.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: वी आर ओवर जिमी।
2: हे, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपीएफ संभाल लेगा, आप अपना देख लो।
1: अगर आपकी उम्र 21 से 40 साल के बीच है, आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और बिजनेस शुरू करना चाहते हैं लेकिन पैसे नहीं है, तो ये खबर आपके लिए है। अब न बैंक की भारी गारंटी, न जमीन गिरवी और न ही ब्याज का बोझ। यूपी सरकार ऐसी योजना लेकर आई है जिसमें 5 लाख तक का लोन बिना गारंटी और ब्याज मुक्त मिलेगा। सवाल है, कौन ले सकता है इसका फायदा और कैसे? उत्तर प्रदेश ने अब सिर्फ नौकरी देने वाला नहीं, नौकरी देने वाले युवा तैयार करने की दिशा में बड़ा कदम उठा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत यानी युवाओं को उद्यमी बनाने का मिशन शुरू किया है। सरकार का लक्ष्य है हर साल 1 लाख नए युवा उद्यमी तैयार करना और अगले 10 साल में 10 लाख आत्मनिर्भर उद्यमियों की नई फौज खड़ी करना। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, बिजनेस शुरू करने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? यहीं से शुरू होती है MY युवा योजना की कहानी। अक्सर नए उद्यमियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती होती है बैंक की गारंटी, जमीन गिरवी रखने की शर्त और महंगे ब्याज का बोझ। अब सरकार कह रही है अगर आपका आइडिया अच्छा है तो पूंजी की चिंता सरकार करेगी और इस योजना के तहत 21 से 40 साल के उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासियों के लिए 5 लाख तक का ब्याज मुक्त और बिना गारंटी वाला लोन वो देगी। यानी न किसी तीसरे व्यक्ति की गारंटी, न कोई संपत्ति गिरवी। इतना ही नहीं, सरकार पर योजना लागत का 10% मार्जिन मनी अनुदान भी देगी ताकि बिजनेस की शुरुआत आसान हो सके। योजना सिर्फ लोन देकर खत्म नहीं होती, अगर आप समय पर पहली राशि चुका देते हैं तो दूसरे चरण में 10 लाख से 20 लाख तक का लोन भी मिल सकता है जिस पर सरकार तय सीमा का 50% ब्याज सब्सिडी भी देगी। हालांकि इस योजना का लाभ लेने के लिए कुछ शर्तें भी हैं। आवेदन उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए, उम्र 21 से 40 वर्ष के बीच हो सकती है, कम से कम 8वीं पास हो और किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से तकनीकी डिग्री, डिप्लोमा, ITI और सरकारी कौशल प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र होना चाहिए। आवेदन की प्रक्रिया भी पूरी तरह ऑनलाइन रखी गई है। युवा UPMSME पोर्टल और आधिकारिक MY UVA पोर्टल के जरिए आवेदन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैंकों को भी साफ निर्देश दिए हैं कि ऋण स्वीकृति में देरी ना हो ताकि युवाओं को समय पर पैसा मिल सके। यानी अगर आप उत्तर प्रदेश के युवा हैं, नौकरी ढूंढने के बजाय अपना कारोबार शुरू करना चाहते हैं और सिर्फ पैसों की कमी आपको रोक रही है, तो MY UVA योजना आपके लिए बड़ा मौका बन सकती है। अब देखना होगा कि सरकार का 10 लाख नए उद्यमियों का सपना जमीन पर कितनी तेजी से उतरता है।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। Acoj, द नंबर 1 कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया।

0: Need better internet? Cox Internet has the fast, reliable speeds you're looking for. Perfect for seamless streaming, gaming, and working from home. And now get Cox 300 meg internet with a 2-year plan price lock guarantee, plus equipment included. So get your household up to speed. Switch to Cox Internet today. Taxes and fees excluded from price guarantee.
1: No ticket, no line, just showtime. Qwello Concerts is the destination for music lovers with thousands of electrifying concerts and music documentaries. Try Qwello Concerts, that's Q-E-L-L-O, for free on Amazon Prime Video today.
2: We are over, Jimmy.
3: Hey, life mein scratches to aayenge. गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपी अब संभाल लेगा, आप अपना देख लो।
4: ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद से मुलाकात के बाद अखिलेश यादव का ऐलान है, जो सनातन है वही समाजवाद है।
5: जो सनातन है वही समाजवादी है।
4: ये एक और संकेत है कि अखिलेश यादव अब अपनी समाजवादी पहचान के साथ साथ खुलकर उस पिच पर खेल रहे हैं जिस पर बीजेपी दम भरती थी। राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर बीजेपी को घेरने में सफल दिख रहे अखिलेश की दलील है कि आज सनातनी दुखी है, क्योंकि बीजेपी धर्म की नहीं धन की राजनीति करती है।
6: जो भारतीय जनता पार्टी के विचार हैं, वो वोट के लिए बदलते हैं, उनके लिए धर्म नहीं धन प्राथमिकता है।
7: हमारे धर्म में, सनातन धर्म में, चढ़ावे की चोरी से बड़ा कोई पाप नहीं है, इन्होंने महापाप किया है।
4: बात सिर्फ राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर आक्रामक होने की नहीं है। अखिलेश यादव और उनकी पार्टी ने हाल में कई ऐसे संदेश दिए हैं जिसे बीजेपी के हिंदुत्व वोट बैंक में सेंध मारने की कोशिश माना जा सकता है। 8 जुलाई को समाजवादी पार्टी की नेता पूजा शुक्ला ने लखनऊ में अविमुक्तेश्वरानंद की मौजूदगी में धार्मिक अनुष्ठान, आध्यात्मिक प्रवचन और सांस्कृतिक कार्यक्रम कराया है। इसके पहले अखिलेश यादव 8 बड़े मंगल पर हनुमान जी को याद करते देखे गए, यहाँ तक कि उन्होंने बड़ा मंगल पर भंडारे का प्रसाद बांटा था। समाजवादी पार्टी ने इसी हफ्ते ब्राह्मण सम्मेलन किया था जिसमें बैनर लगा था ब्राह्मण चला अखिलेश के संग, लेकिन जब अखिलेश अपनी नई राजनीति का नैरेटिव खड़ा करने में लगे हैं तब उनके सामने असल सवाल आने वाले यूपी चुनाव में इंडिया गठबंधन को मजबूत करने का हो सकता है। हाल में कांग्रेस के नए यूपी प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने कहा है कि हम राष्ट्रीय पार्टी हैं और गठबंधन में हमारी बराबर की हिस्सेदारी होगी, यानी सीट बंटवारे पर कांग्रेस ने दबाव बनाने के तेवर दिखा दिए हैं। कांग्रेस की दलील है कि बीजेपी से राष्ट्रीय पार्टी ही लड़ सकती है। राजेंद्र पाल गौतम के इस बयान से पहले कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने मुसलमानों पर अखिलेश की चुप्पी पर सवाल उठाया था।
8: मंदिर की चंदा चोरी के ऊपर आप मुखरता के साथ बोलते हो, लेकिन मुसलमान की सीना चोरी के ऊपर आप खामोश हो जाते हो, ये समझ में नहीं आ रहा है।
4: इस बयान को भी समाजवादी पार्टी पर कांग्रेस के दबाव की रणनीति माना जा रहा है। हालांकि यूपी में सीट बंटवारे पर अखिलेश की लकीर साफ है, सीट नहीं जरूरी है। उधर अखिलेश जब इस जीत के लिए पीडीए और सनातन का जोड़ लेकर आए हैं तब योगी आदित्यनाथ उन बातों को कुरेद रहे हैं जिस पर समाजवादी पार्टी पहले से घिरती रही है।
9: बीजेपी की सरकार आई तो अब पैसा मंदिरों के विकास के लिए धामों के सुंदरीकरण में खर्च हो रहा है, और समाजवादी पार्टी के समय वही पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल के लिए चला जाता था। उनको कब्रिस्तान प्यारा है, इसलिए वे राम मंदिर और काशी विश्वनाथ धाम और मां विंध्यवासिनी धाम और नैमिषारण्य और चित्रकूट धाम के विकास का विरोध करते हैं।
4: यूपी चुनाव नजदीक आते ही योगी की ओर से अखिलेश यादव पर ऐसे हमले और बढ़ेंगे। अगर अखिलेश इंडिया गठबंधन का मजबूत जोड़ बनाए रख पाते हैं तो मुकाबले में उन्हें आसानी होगी। आज तक ब्यूरो,

0: आज तक बड़ी खबरों का सिलसिला लगातार जारी। अब से कुछ ही क्षणों में वारदात लेकर हमारे साथी शम्स होंगे आपके साथ। आप देखते रहिए आज।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

हजार भारतीयों के बीच मेलबर्न में बोले प्रधानमंत्री मोदी, शिप से चिप तक बना रहा है भारत, ग्रो मोर अचीव मोर का दिया नारा, कहा रक्षा अंतरिक्ष और यूरेनियम डील पर मोहर। टीएमसी को छोड़ बीजेपी में आए ममता के तीनों पूर्व राज्यसभा के सांसदों को मिला इनाम, उपचुनाव के लिए बने कमल के उम्मीदवार आज भी पार्टी में शामिल हुए थे सुखेंदु, सुष्मिता और प्रकाश। यूपी में चढ़ा चुनावी तापमान, योगी का आरोप, 2017 से पहले कब्रिस्तानों पर पैसा खर्च करती थी एसपी सरकार, ओपी राजभर ने फिर अखिलेश पर किया बड़ा हमला। महाराष्ट्र और गुजरात समेत उत्तर भारत में जोरदार बारिश से परेशानी, दिल्ली एनसीआर भी हुआ पानी पानी, बादली में डूबने से 7 साल के बच्चे की मौत, गाजियाबाद में भी एक बच्चे की गई जान। और अमेरिकी हमले के बीच आज खामनेई का अंतिम संस्कार, ट्रंप ने फिर से दी धमकी, कहा 20 गुना ताकत से करेंगे अटैक, बदले में अमेरिकी ठिकानों पर तेहरान ने बरसाए बॉम्ब।

0: नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। 24 साल की MBA स्टूडेंट बबीता पांडे का 41 दिन बाद भी कोई सुराग नहीं मिला है। बबीता को तलाश करने की तमाम कोशिशें नाकाम होने के बाद पुलिस ने भी सर्च ऑपरेशन रोक दिया है, खासकर उस जगह पर जहां से बबीता 29 मई को गायब हुई थी। अब पुलिस ने बबीता की तलाश का दायरा बदलकर उसे ऋषिकेश, हरिद्वार और नैनीताल में ढूंढने की कोशिश शुरू की है। क्या क्या कोशिशें नहीं की, क्या क्या तरीका नहीं अपनाया, कैसे कैसे और कहां कहां नहीं ढूंढा, किन किन चीजों से नहीं ढूंढा। पूरे महीने भर झील, नदी, पहाड़, जंगल, बस्ती सब छान मारा, पर कोई फायदा नहीं। इकतालीस दिन हो चुके हैं, पर 24 साल की MBA स्टूडेंट बबीता पांडे का कोई सुराग नहीं मिला। अब तो आलम यह है कि पुलिस प्रशासन ने भी एक तरह से हाथ खड़े कर लिए। जिस जगह से 29 मई को बबीता गायब हुई थी, उस पूरे इलाके की तलाशी या सर्च ऑपरेशन पूरी तरह से लगभग अब रोक दिया गया है। अलबत्ता स्थानीय लोगों को अब भी पुलिस ने हिदायत दे रखी है कि कहीं से भी बबीता का कोई सुराग मिले तो पुलिस को बताएं। बबीता को ढूंढने की एक आखिरी कोशिश के तहत पुलिस प्रशासन ने दयारा बुग्याल की उस झील को भी पूरी तरह सुखा दिया, जिस झील में बबीता के डूबने का अंदेशा था। लेकिन उस खाली झील से भी बबीता के बारे में कोई सुराग नहीं मिला। अब दयारा बुग्याल से बाहर निकलकर उत्तराखंड पुलिस बबीता को ऋषिकेश, नैनीताल और दूसरी जगहों पर भी तलाश रही है, इस उम्मीद में कि अगर बबीता दयारा बुग्याल में नहीं है तो शायद कहीं और मिल जाए। बबीता की तलाश में उत्तराखंड पुलिस ने आसपास के सारे अपराधियों तक की कुंडली खंगाल डाली, कईयों को उठाकर पूछताछ भी की, पर यहाँ भी कोई सुराग नहीं मिला।
1: उत्तराखंड के सभी संभावित आपराधिक पहलुओं की भी गंभीरता एवं संवेदनशीलता के साथ जांच की जा रही है। घटना से संबंधित CCTV फुटेज, कॉल डिटेल्स, CDRs, लोकेशन विश्लेषण तथा संबंधित व्यक्तियों एवं स्थानीय लोगों से गहन पूछताछ सहित सभी उपलब्ध तकनीकी एवं वैज्ञानिक संसाधनों का उपयोग कर निष्पक्षता एवं पारदर्शी जाँच की जा रही है।
0: इस बीच कुछ मीडिया और सोशल मीडिया पर बबीता को लेकर कुछ गलत खबरें भी फैलाई जा रही हैं। उत्तराखंड पुलिस ने ऐसे लोगों को आगाह किया है कि वो अफवाह न फैलाएं।
1: बबीता पांडे गुमशुदगी प्रकरण में सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर कुछ व्यक्तियों द्वारा भ्रामक, अपुष्ट एवं तथ्यहीन जानकारी प्रसारित कर आमजन में भ्रम की स्थिति उत्पन्न की जा रही है। उत्तरकाशी पुलिस सभी नागरिकों से अपील करती है कि ऐसी अफवाहों एवं अप्रमाणित सूचनाओं पर विश्वास न करें तथा उन्हें साझा करने से बचें।
0: उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से 144 किलोमीटर दूर यह है दयारा बुग्याल, ट्रैकिंग के दीवानों की पसंदीदा जगहों में से एक। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरे इस दयारा बुग्याल तक पहुंचने के तीन सबसे अहम रास्ते हैं। ये तीनों रास्ते तीन गांवों से होकर गुजरते हैं, बरसू, रैथा और नटरीन। ये रैथल गांव है। 29 मई को 24 साल की MBA स्टूडेंट बबीता पांडे अपने दो दोस्तों हरमनपाल सिंह और हरमनप्रीत सिंह के साथ इसी रैथल गांव के रास्ते दयारा बुग्याल पहुंची थी। ट्रैकिंग का पहला दिन था, रात होने से पहले तीनों एक टेंट में रुके, लेकिन 12:30 बजे के बाद बबीता अचानक गायब हो गई। ऐसा गायब हुई, उसका कोई सुराग नहीं मिला। अगर बबीता गायब हो गई है तो गुम होने के सुराग क्यों नहीं मिल रहे। अगर बबीता को किडनैप किया गया है तो किडनैपिंग के सबूत क्यों नहीं मिल रहे। अगर बबीता को जानवर उठा ले गए तो जानवरों के उठाने के कोई निशान क्यों नहीं मिले। अगर बबीता का कत्ल कर दिया गया तो उसकी मौत के भी कोई सुराग और सबूत क्यों नहीं मिले? यानी न बबीता के जिंदा होने के सबूत मिले, न मुर्दा होने के। तो फिर सवाल है कि बबीता को पहाड़ खा गया या जंगल निगल गई? और बस यही वो चीज है जिसके बाद अब दबी जुबान में लोग बबीता की गुमशुदगी को परियों से जोड़ने लगे। कहने वाले कह रहे हैं कि बबीता अब कभी नहीं लौटेगी क्योंकि उसे परियां ले गई हैं। उत्तराखंड में रहने वाले लोग परियों का मतलब अच्छी तरह जानते हैं। ये बबीता के भाई हर्षित पांडे हैं। इतने दिन बीत जाने के बाद भी जब बहन का कोई सुराग नहीं मिला तो रिश्तेदारों और दोस्तों के कहने पर ये भी गांव के लोग देवता के पास पहुंचे। हर्षित ने आज तक को फोन पर बताया कि लोग देवता ने उन्हें यही बताया कि बबीता को परियां ले गई। बकौल हर्षित लोक देवता का कहना था कि जो लोग हल्ला गुल्ला मचाते हैं या अकेले होते हैं उन्हें परियां अपने साथ ले जाती हैं। पर क्या वाकई ये सच है? हमने इस सिलसिले में जब उत्तराखंड पुलिस से बात तो उनका कहना था कि कानून इन सब बातों को नहीं मानता, लेकिन यहाँ लोकल लोग परियों की कहानी को सच मानते हैं।
2: बड़े बड़े बुजुर्ग जब हम ज्ञान में रहते थे तो कहते थे कि सब अंदर छुप जाओ क्योंकि ऊपर से परियों के रथ चल रहे हैं, और हम प्रत्येक दर्शी हैं, हमारे कानों में आवाज आती थी रथ चलने की और बिल्कुल घंटियों की आवाज आती थी जो कि 10 साल बाद भोजवासा में भी सुनाई देती थी, और वो केवल गंगा स्नान के लिए आती थी।
3: जो लोग जो अफवाहें फैला रहे हैं कि वहाँ पे परियां उन्हें ले गई है, आज तक कोई वहाँ पे कुछ इस प्रकार का कोई केस नहीं हुआ, क्योंकि जो वहाँ पे तो हमारे देवी देवता रहते हैं और हमारे स्वयं रक्षा करते हैं देवी देवता।
0: अब सवाल यह है कि इन परियों का सच है क्या? दयारा बुग्याल में 29 मई को जिस कैंप में बबीता रुकी थी, क्या वहाँ भी परियों का बसेरा था? वैसे आपको मजाक लगे लेकिन ये सच है कि खुद उत्तराखंड सरकार ने टिहरी के खैंड पर्वत और आसपास के इलाकों को परियों का देश घोषित कर रखा है, वो भी लिखित। ये बोर्ड उसी उत्तराखंड प्रशासन का है, देखिए इस पर क्या लिखा है। ये बोर्ड बाकायदा जिला पंचायत टिहरी गढ़वाल की तरफ से यहाँ लगाया गया है। हालांकि जिस दयारा बुग्याल में बबीता आखिरी बार देखी गई थी वहां से उत्तराखंड सरकार की तरफ से घोषित परियों के इस देश यानी खैंड पर्वत की दूरी 167 किलोमीटर है। लोक कथाओं को सच मानने वालों का कहना है कि परियां सिर्फ उन लोगों को उठाकर ले जाती हैं जो इन पर्वतों पर शोर मचाते हैं, हंगामा करते हैं, चटकीले कपड़े पहनते हैं या यहां आकर गंदगी फैलाते हैं। पहाड़ी जुबान में परियों को आचरी और आचरी भी कहा जाता है।
4: इतिहास की जो धार्मिक और धार्मिक मान्यताएं हैं कि आज भी यहाँ पर परियां वास करती है, ये परियों का देश इसीलिए कहा जाता है इसको। साथियों मैं आपको बता दूं, मेरी ग्राम पंचायत चौनाड़ा में जब भी देवी देवताओं की पूजा की जाती है, देवी देवताओं का मंडाण लगाया जाता है, तो इसमें आज भी हम और हमारे गांववासी हमारे गांव से खैट पर्वत में परियां विचरण करते हुए दिखाई देती हैं, नाचते हुए दिखाई देती हैं सफ़ेद वस्त्र में। साथियों वहां पर वास्तव में आज भी परियां वास करती है।
5: ऐसी कई लोगों के साथ ये घटनाएं घटी है, हमने किताबों में भी पढ़ा है, हमारी दादी हमारी नानियों ने हमें भिन्न भिन्न प्रकार की कहानियां सुनाई है, और बिल्कुल ये चीजें हमने भाई जी जब हम वहां पे खैट पर्वत पे गए हैं तो हमने भगवती ने हमें जो वहां पर जो आचरी है उन्होंने कुछ हमें संकेत दिए, क्योंकि हमने वहां पर बिना देखे तो हम विश्वास नहीं कर पाते कि सचमुच है कि नहीं है। वो भगवती ने हमें कुछ चीजें ऐसी बताई है या फिर हमने वहां पे देखा है छोटी छोटी चीजें, वो हमने सचमुच महसूस की है भाई जी वहां पे।
0: यूं तो पूरे उत्तराखंड में परियों की कहानी आम है, लेकिन लोगों का मानना है कि परियों का असली निवास यानी परियों का देश टिहरी गढ़वाल के इस खैंड पर्वत पर है। खैंड पर्वत की लोक कथाओं के मुताबिक प्राचीन काल में स्थानीय राजा आशा रावत की 9 बेटियां थी जिनके पास दिव्य शक्ति थी। बाद में यही 9 बेटियां यानी 9 बहनें परियां बन गई। आज भी इसी खैंड पर्वत की 9 चोटियों पर रहकर गांव वालों की हिफाजत करती है। स्थानीय लोगों का मानना है कि परियों को शोर शराबा तेज संगीत और चटकीले कपड़े पसंद हैं, और जो भी इन पर्वतों पर इन नियमों को तोड़ता है वो उसे उठा कर ले जाती है या आने वाले को बाकायदा ये बातें पहले से बताई जाती हैं।
6: प्रताप नगर विधानसभा के खैट पर्वत की, जो कि परियों के देश के नाम से भी जाना जाता है, बहुत अच्छा प्रसिद्ध वह तीर्थ स्थल है। और जो जो साथी यहाँ पर गए हैं, जो जो जिन्होंने यहाँ पर जाने का प्रयास किया है, तो जब मंदिर ऊपर जा पहुँचे हैं तो उन्हें एहसास है, उन्हें अनुभव है, वह एक एहसास होता है कि एक वाइब्स, आध्यात्म की एक ऐसी वाइब्स वहाँ से निकलती है कि लगता है कि वाकई हम माँ भगवती की गोद में हैं। आचरी मांत्री जिनका वो स्थान है उसकी गोद में बैठे हुए हैं। तो ये आचरी और मांत्री जिनको आज परियों के नाम से भी जाना जाता है, उनका भी एक अलग इतिहास है। बाल्य अवस्था में ही इनको हर लिया गया था, बहने थी आपस में सभी।
0: जिस जगह से बबीता गायब हुई और जो चश्मदीद है जिन्होंने आखिरी बार बबीता को देखा, उनका कहना था कि रात 12 से 12:30 बजे के दरमियान बबीता अकेली कैंप के बाहर बैठकर मोबाइल पर गाने सुन रही थी। गाने की आवाज काफी तेज थी, जिस पर कैंप में मौजूद स्कूली बच्चों के टीचर ने बबीता को टोका भी और उसे कहा कि रात ज्यादा हो रही है, वो जाकर सो जाए। अब गांव वालों ने इसी बात को पकड़कर ये कहना शुरू कर दिया कि बबीता ने परियों के नियम तोड़े और इसीलिए उसे परियां उठा ले गए। लेकिन जहां तक कानून और पुलिस की बात है, तो वो अब भी बबीता की तलाश में लगातार अपनी मुहिम चला रहे। जिस मलेरी थाने में बबीता की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज है, उस थाने के इंचार्ज दीपक नौटियाल ने आज तक को बताया कि बबीता की तलाश के लिए अब नई टीमों को उन इलाकों में भेजा जा रहा है जहां बबीता के होने की उम्मीद हो सकती है। दीपक नौटियाल के मुताबिक खास तौर पर तयारा बुग्याल के करीब के तीन बड़े गांव रैथल, नटिया और बरसू और उसके इर्द गिर्द के पहाड़ और जंगलों के चप्पे चप्पे को छाना गया। अब तक 40 से 50 किलोमीटर दायरे के अंदर पहाड़ जंगल सभी का कोना कोना छान मारा, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। तमाम गांव के लोग भी बबीता की तलाश में तमाम एजेंसियों की मदद कर रहे हैं। यहां तक कि बकराल यानी वो लोग जो गाय भैंस बकरी चराने जंगलों और पहाड़ों की तरफ जाते हैं, उनकी मदद भी ली जा रही है। इस पहलू से भी मामले की जाँच की जा रही है कि कोई जानवर तो बबीता को उठा कर नहीं ले गया, लेकिन अब तक उसके भी सबूत नहीं मिले। अगर ऐसा होता तो कम से कम जंगल या पहाड़ में ऐसी कोई भी निशानी जिनमें बबीता के कपड़े, चप्पल, मोबाइल या फोन की बूंदे नजर आती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। पहाड़ और जंगलों के अलावा पुलिस दायरा बुग्याल को जाने वाले तमाम रास्ते जहाँ जहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, यानी बस्तियों, बाजारों, हाईवे, लॉज, गेस्ट हाउस, होटल की भी पड़ताल कर रही है, ताकि पता लगाया जा सके कि बबीता खुद ही उस कैंप से निकलकर कहीं और तो नहीं चली गई। इन इलाकों के अलावा नैनीताल और उन दूसरी जगहों पर भी पुलिस की टीम बबीता को तलाश कर रही है जहां उसके परिवार या दोस्त रहते हैं। लेकिन सैकड़ों सीसीटीवी खंगाल डालने के बाद भी बबीता किसी कैमरे में कैद नहीं हुई।
7: जैसा कि सभी को पता है कि बबीता पांडे 29 तारीख को रात 11:30 बजे से जैसे रिपोर्टिंग हुई मिसिंग है, तो उसमें जितने भी हमारे एफर्ट्स थे, चाहे पुलिस हो, एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो, फॉरेस्ट की टीम, एनआईएम की टीम और जितनी भी यहाँ पे लोकल यहाँ पे आपदा प्रबंधन की टीम, तो जितने भी एफर्ट्स हो सकते थे सर्च के, तो हमने लगातार वो चलाया, और अभी भी जो है थाना स्तर पर और जनपद पुलिस स्तर पर लगातार जो है दयारा ट्रैक की और ऊपर गोई क्षेत्र जहाँ से मिसिंग हुई थी उसकी निगरानी हम लगातार कर रहे हैं। इधर से जो है जो हमारा इन्वेस्टिगेशन का जो दूसरा पार्ट है, चाहे वो मोबाइल सर्विलांस हो या सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन हो, तो जितने भी दयारा रैथल से लेकर और तेखला पुल और ये उत्तरकाशी तक के सारे भी हमारे जो सीसीटीवी अपने भी सरकारी भी और जो प्राइवेट भी लगे हुए, तो एक अलग से टीम जो है उनके वो अवलोकन के लिए लगी थी।
0: अब तक बबीता का मोबाइल फोन भी बरामद नहीं किया जा सका है। बबीता के पास आईफोन था। आईफोन से फोन की लोकेशन ट्रेस की जा सकती है। उत्तराखंड पुलिस ने इस सिलसिले में एप्पल से भी मदद मांगी है, ताकि ये पता किया जा सके कि बबीता के मोबाइल की आखिरी लोकेशन कहाँ थी। बबीता के दोस्तों के मुताबिक 29 मई की रात जब वो लोग कैंप में पहुंचे थे, तो बबीता ने फोटो खींचने के लिए पहले से ही अपना मोबाइल 100% चार्ज कर रखा था। जब वो कैंप के बाहर रात को निकली, तब भी 55% बैटरी बची हुई थी। पुलिस के मुताबिक बबीता के साथ ट्रैकिंग पर गए उसके दोनों दोस्तों से लगातार पूछताछ की गई और अभी भी की जा रही है, लेकिन उनसे भी ऐसा कोई सुराग या सबूत नहीं मिला जिससे शक हो कि बबीता की गुमशुदगी में इन दोनों के हाथ हैं। दोनों की बातों को कई बार क्रॉस चेक भी किया गया पर उनकी हर बात सही साबित हुई, इसीलिए दोनों को अब तक गिरफ्तार भी नहीं किया गया है। उधर बबीता के भाई हर्षित के मुताबिक उन्हें बबीता के गायब होने की खबर 30 मई की शाम 5 बजे मिली थी। बबीता के दो दोस्तों में से एक हरमनपाल ने फोन कर पहली बार उन्हें बबीता के गायब होने की जानकारी दी। हर्षित के मुताबिक वो हरमनपाल और हरमनप्रीत से कई बार बात कर चुके हैं। उन दोनों ने जो बताया उसके मुताबिक 29 मई की रात 11 बजे वो कैंप में थे। बबीता कैंप के बाहर टहलने चली गई, फिर दोनों सो गए। सुबह देखा तो बबीता गायब। तीनों कार से रैथल गांव तक आए थे और कार गांव में ही छोड़ दी थी। तीनों के बाकी बैग और सामान कार में ही थे। बबीता का बैग भी अगले दिन उसी कार में ही मिला। हर्षित ने बताया कि पुलिस उसके परिवार को लगातार बबीता के सर्च ऑपरेशन की जानकारी दे रही है। पुलिस की एक टीम रामनगर और नैनीताल में भी बबीता को तलाशने जाने वाली है। दरअसल बबीता ने नैनीताल की ही डीएवी स्कूल से पढ़ाई की थी, इसके बाद वो ऑनलाइन एमबीए का कोर्स कर रही थी, साथ ही कुछ वक्त पहले तक दिल्ली में जॉब भी कर रही थी। घनसाली से पंकज भट्ट और नैनीताल से लीला सिंह बिस्ट के साथ ओंकार बहुगुणा, उत्तरकाशी आज तक। बबीता पांडे 29 मई को अपने दो दोस्तों के साथ ट्रैकिंग पर गई थी लेकिन उसी रात गायब हो गई। खुद उत्तराखंड पुलिस हैरान है कि इतने बड़े सर्च ऑपरेशन के बावजूद बबीता का एक भी सुराग क्यों नहीं मिला। हालांकि इस दौरान लोकल पुलिस, अनगिनत टीमें और कई एजेंसियों को बबीता की तलाश में लगाया गया।
8: उत्तराखंड की वादियों में बसा ये है ट्रैक दयारा बुग्या। तकरीबन 21 किलोमीटर लंबे इस ट्रैक को नापने के लिए दुनिया भर के बीसियों पर्यटक हर साल उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में पहुंचते हैं और इसे पूरा करने में तकरीबन 4 से 5 दिनों का वक्त लगता है। रामनगर की रहने वाली 24 साल की एमबीए स्टूडेंट बबीता पांडे ने भी अपने दो दोस्तों के साथ इसी एडवेंचर की तलाश में उत्तरकाशी के इस दयारा बुग्याल ट्रैक तक पहुंची थी। तारीख थी 29 मई लेकिन अभी उनकी ट्रैकिंग शुरू ही हुई थी कि बीच रास्ते से बबीता ऐसे गायब हो गई कि उसकी गुमशुदगी अब एक पहेली बन चुकी है। बबीता के गायब होने के बाद अगर पीछे कुछ बचा है तो वो है बबीता का एक बैग जिसे लेकर वो ट्रैकिंग के लिए गई थी और ये आखिरी सीसीटीवी फुटेज जो 28 मई को दिन में उत्तरकाशी के एक होटल के बाहर रिकॉर्ड हुई। इस सीसीटीवी फुटेज में बबीता अपने दो दोस्तों के साथ दिखाई दे रही है। बबीता का दूर दूर तक कोई सुराग नहीं है। सवाल है आखिर उसके साथ क्या हुआ, वो कहां चली गई, आखिरी बार उसे कब और किसने देखा, क्या वो अपनी मर्जी से कहीं गई या फिर उसकी गुमशुदगी के पीछे कोई और वजह है। फिलहाल आइए उसके ट्रैकिंग के लिए घर से निकलने से लेकर गायब होने तक की इस पूरी कहानी को एक बार सिलसिलेवार तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। बबीता 25 मई को उधम सिंह नगर से अपने दो दोस्तों के साथ निकली थी। इसके बाद वो अलग अलग जगहों से घूमती हुई 28 मई को रैथल गांव पहुंची। ट्रैकिंग पर जाने से पहले बबीता ने घर वालों को बताया था कि वो अपनी कुछ फीमेल फ्रेंड्स के साथ ट्रैकिंग पर जा रही है। चूंकि बबीता पहले भी कई बार ट्रैकिंग पर जा चुकी थी, घर वालों ने उसकी इस ट्रिप पर कोई भी एतराज नहीं किया। मगर सच्चाई कुछ और थी। बबीता लड़कियों के साथ नहीं बल्कि दो लड़कों के साथ ट्रैकिंग पर गई थी और उसका सबूत उसकी गुमशुदगी के पहले के ये आखिरी सीसीटीवी फुटेज हैं। इनमें वो एक होटल के बाहर गाड़ी से उतरती हुई और कहीं जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ बबीता के साथ दो लड़के भी देखे जा सकते हैं। असल में उधम सिंह नगर से निकलकर बबीता अपने इन्हीं दोस्तों के साथ गांव रैथल पहुंची थी और यहां से तीनों ने ट्रैकिंग की शुरुआत करते हुए गोई तक अपना सफर पूरा किया। गोई के बाद ही असली ट्रैकिंग शुरू होती है। जानकारी के मुताबिक बबीता और उसके दोस्तों ने गोई के पास ही एक टेंट लगाया था और रात को वहीं रुके थे। ये पूरा इलाका जंगलों से घिरा है लेकिन सुबह होने पर जब बबीता के दोस्तों की आंखें खुली तो उन्होंने देखा कि बबीता गायब है, वो टेंट में नहीं थी। हालांकि बबीता का बैग टेंट में ही रखा था। बबीता को गायब देखकर पहले तो उसके दोस्त घबरा गए और फिर उन्होंने पुलिस को इसकी खबर दी। बबीता को आखिरी बार देखने वाले उसके दोस्तों ने पुलिस की पूछताछ में ये स्वीकार किया है कि उस रात वो दोनों टेंट लगाने के बाद शराब पीने लगे थे, जिसके बाद बबीता कुछ देर के लिए टेंट से बाहर निकल गई थी। चूंकि वो शराब के नशे में थे इसलिए उनकी आंख लग गई और उन्हें बबीता का ख्याल ही नहीं रहा। लेकिन जब अगले दिन उनकी आंख खुली तो बबीता गायब मिली। बबीता सिर्फ एक चप्पल पहने हुए अपने मोबाइल फोन के साथ टेंट से बाहर निकली थी और गुम हो गई। पुलिस को बबीता की गुमशुदगी की जानकारी 30 मई की रात को मिली। चूंकि यह इलाका जंगली है और यहाँ जंगली जानवरों की भी मौजूदगी है, पुलिस ने लड़की को अपने तौर पर ढूंढने के साथ साथ उसकी गुमशुदगी के बारे में वन विभाग को भी सूचित किया और तलाशी अभियान में कई और महकमों की मदद ली। यहाँ तक कि पुलिस ने बबीता के पोस्टर वगैरह बनाकर भी आसपास के इलाकों में सर्कुलेट किया ताकि अगर किसी को उसके बारे में पता हो तो वो पुलिस को बताएं। लेकिन पुलिस की इस कोशिश का भी कोई असरदार नतीजा अब तक सामने नहीं आया है। अब सवाल यह है कि आखिर बबीता की गुमशुदगी के पीछे क्या क्या संभावित वजहें हो सकती हैं? तो तफ्तीश में पुलिस उन सारी वजहों को एक्सप्लोर कर रही है। अव्वल तो यही है कि बबीता किसी को बताए बगैर खुद ही अपनी मर्जी से कहीं चली गई हो। दूसरा ये कि बबीता के साथ ट्रैकिंग पर गए दोस्त झूठ बोल रहे हैं और उन्होंने ही बबीता को कहीं गायब कर दिया हो। तीसरा ये कि वो टेंट के बाहर निकली हो और कोई जंगली जानवर उसे उठा ले गया हो। और चौथा ये कि वो या तो जंगलों में रास्ता भटक गई हो या फिर उसके साथ कोई और अनहोनी हुई हो। जिला प्रशासन ने गोई के पास मौजूद एक झील की गहराई को नापने का फैसला किया और इसके लिए खास तौर पर गोताखोरों की टीम बुलाई गई। वैसे भी अगर खुदा न खास्ते बबीता किसी जंगली जानवर का शिकार बनी होती तो फिर उसके कुछ न कुछ निशान अब तक की तलाशी में जरूर नजर आते। ऐसे में अब ये शक होने लगा है कि कहीं बबीता गलती से पानी में तो नहीं गिर गई। इसी के बाद लगभग 9 फीट गहरे इस झील को भी खंगाला गया लेकिन बबीता का कोई सुराग नहीं मिला। अब जब बबीता की तलाश शुरू हुई तो पहले ही कदम पर शासन प्रशासन और खासकर उत्तरकाशी के पर्यटन विभाग की घोर लापरवाही और पर्यटन के नाम पर चल रही धंधेबाजी का खुलासा हो गया। असल में ट्रैकिंग के लिए जाने वाले हर पर्यटक के बारे में एक्सप्लोर उत्तरकाशी नाम की एक वेबसाइट में पहले से ही जानकारी दर्ज करवानी होती है ताकि पर्यटन विभाग के पास हर सैलानी की खबर मौजूद रहे। लेकिन जब बबीता की गुमशुदगी के बाद पर्यटन विभाग ने अपने तौर पर उसका ब्यौरा खंगालना शुरू किया तो देखा कि बबीता और उसके नाम से तो उनके डॉक्यूमेंट्स में कोई एंट्री ही नहीं है और जो एंट्री हुई भी है वो फर्जी है। फिलहाल डॉक्यूमेंटेशन के नाम पर फर्जीवाड़ा करने वाले ट्रैवल एजेंसी का लाइसेंस पर्यटन विभाग ने सस्पेंड कर दिया है। लेकिन यह भी सच है कि इस फर्जीवाड़े के बाद एक लड़की गायब है और उसका कोई पता ठिकाना किसी के पास नहीं। फिलहाल बबीता के घर वाले इस उम्मीद में हैं कि आने वाले दिनों में बबीता का कोई पता चले और ये इंतजार खत्म हो। बबीता दो भाइयों की इकलौती बहन है और घर वाले उसकी गुमशुदगी से सदमे में हैं। नैनीताल से लीला सिंह बिष्ट के साथ ओंकार बहुगुणा उत्तरकाशी आज तक।
9: तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
10: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।

0: और भारतीयों के बीच मेलबर्न में बोले प्रधानमंत्री मोदी, शिप से चिप तक बना रहा है भारत, ग्रो मोर अचीव मोर का दिया नारा, कहा रक्षा अंतरिक्ष और यूरेनियम डील पर मोहर। टीएमसी को छोड़ बीजेपी में आए ममता के तीनों पूर्व राज्यसभा के सांसदों को मिला इनाम, उपचुनाव के लिए बने कमल के उम्मीदवार आज भी पार्टी में शामिल हुए थे सुखेंदु, सुष्मिता और प्रकाश। यूपी में चढ़ा चुनावी तापमान, योगी का आरोप 2017 से पहले कब्रिस्तानों पर पैसा खर्च करती थी एसपी सरकार, ओपी राजभर ने फिर अखिलेश पर किया बड़ा हमला। महाराष्ट्र और गुजरात समेत उत्तर भारत में जोरदार बारिश से परेशानी, दिल्ली एनसीआर भी हुआ पानी पानी, बादली में डूबने से 7 साल के बच्चे की मौत, गाजियाबाद में भी एक बच्चे की गई जान। और अमेरिकी हमले के बीच आज खामने का अंतिम संस्कार, ट्रंप ने फिर से दी धमकी, कहा 20 गुना ताकत से करेंगे अटैक, बदले में अमेरिकी ठिकानों पर तेहरान ने बरसाए बॉम्ब।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से।
0: एकनाथ शिंदे से शरद पवार की मुलाकात से भड़के संजय राउत, पूछा गद्दारों को क्यों इज्जत दे रहे हैं पवार, जिसने सरकार गिराई उससे कैसी दोस्ती। महाराष्ट्र में यूसीसी को लेकर 7 सदस्यीय समिति का गठन, मंत्री योगेश कदम ने कहा यूसीसी पर बनी समिति की रिपोर्ट के आधार पर लिया जाएगा फैसला। महाराष्ट्र परिवहन विभाग गैर मराठी भाषी ऑटो चालकों को सिखा रहे हैं मराठी भाषा, 16 अगस्त से यात्रियों से संवाद न कर पाने और टेस्ट में विफल होने वाले चालकों के लाइसेंस रद्द किए जाएंगे। पुणे के पिंपरी चिंचवाड़ हादसे में मलबे में अभी भी तलाश जारी है, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू करने में जुटी हुई हैं। गुजरात में मॉनसून की जबरदस्त बारिश के बीच मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक की, भारी बारिश और बाढ़ से हुए नुकसान पर किया गया मंथन। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में राम मंदिर दान चोरी मामले को लेकर कांग्रेस का अनोखा विरोध प्रदर्शन, कार्यकर्ताओं ने भजन कीर्तन गाकर रोष व्यक्त किया। अकोला में साकार हुआ भक्ति और आधुनिक तकनीक का अद्भुत संगम, 5 टनी वजनी और 31 फीट ऊंचा श्री जगन्नाथ रथ लगभग तैयार। महाराष्ट्र के नांदेड़ लातूर हाईवे पर अचानक से भर भराकर गिरा फ्लाईओवर का हिस्सा, सीसीटीवी फुटेज में कैद हुआ खौफनाक हादसा। महाराष्ट्र के पालघर में शॉर्ट सर्किट से घर में आग लगी थी, आग की चपेट में आया गैस सिलेंडर फटा, धमाके में 2 घर जलकर खाक हुए। गुजरात के वडोदरा में चलती बस में अचानक से लगी आग, दमकल की तीन गाड़ियों ने काबू पाया। महाराष्ट्र के जालना में होटल में चल रहे देव व्यापार का भंडाफोड़ किया गया, पुलिस ने छापेमारी करके 3 महिलाओं को मुक्त कराया। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में हाथी के साथ सेल्फी लेने के चक्कर में युवक की मौत हुई, बेहद करीब जाने पर गुस्साए हाथी ने कुचल डाला। गुजरात के राजकोट में बेटे ने मां के लिव इन पार्टनर को सड़क पर दौड़ाकर चाकू से गोद कर मार डाला, खौफनाक वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद। गुजरात के पाटन में हाईवे पर भीषण सड़क हादसा, 2 ट्रकों की भीषण टक्कर, ड्राइवर की मौत हुई। प्याज टमाटर के बाद दाम बढ़ने के बाद जून में वेज थाली 5% महंगी, एलपीजी और वनस्पति तेलों ने नॉनवेज थाली के प्राइस भी बढ़ाए। सिबिल के मुताबिक भारत में क्रेडिट कार्ड की जगह यूपीआई और पर्सनल लोन ले रहे हैं लोग, देश की कुल क्रेडिट एक्टिव आबादी में से महज 1/4 के पास है क्रेडिट कार्ड्स। जनवरी से जून के दौरान देश के 8 बड़े शहरों में घरों की बिक्री महज 1% बढ़ी है, देश भर में अनसोल्ड हाउसेस की संख्या भी 4% बढ़ी। भारत में क्रिप्टो करेंसी को लेकर रेगुलेटरी सख्ती में आरबीआई ने इस पर कड़े प्रतिबंधों की वकालत की है, जबकि आयकर विभाग ने निवेशकों को क्रिप्टो कमाई की जानकारी नहीं मिलने का दावा किया है। 10 जुलाई से महिंद्रा एंड महिंद्रा की थार और स्कॉर्पियो के प्राइस में 2.5% से ज्यादा की बढ़ोतरी होगी, कंपनी अपने कमर्शियल व्हीकल के दाम भी 2% तक बढ़ा देगी। आज रिलीज हो रही है अजय देवगन की फिल्म धमाल 4, रिलीज से पहले ही एडवांस बुकिंग ने कमाए हैं 1.5 करोड़ रुपए। अक्षय खन्ना, सनी देओल, अदिया मिर्जा और साथ ही तिलोत्तमा शोम स्टारर कोर्टरूम ड्रामा 1 आज से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी। चर्चित हत्या केस के इर्द गिर्द घूमती है फिल्म की कहानी। बतौर लीड रोल अपनी पहली फिल्म भाई तेरा स्टार है लेकर आ रहे हैं राघव जुयाल, फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया गया, 30 जुलाई को थिएटर्स में रिलीज। 7 महीने के बाद जननायकन की रिलीज डेट पर लगी है मोहर, 24 जुलाई को थिएटर्स में दस्तक देगी थलापति विजय की आखिरी फिल्म। के मैनन की नई वेब सीरीज आदर्श बाल विद्यालय की पहली झलक सामने आई, एक बदहाल स्कूल में ज्ञानेश्वर त्रिपाठी नाम के एक बेफिक्र स्वभाव वाले हेडमास्टर के इर्द गिर्द घूमती है कहानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि शर्मा। मुंबई मेट्रो में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में हादसों वाली बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है। आज मुंबई के ज्यादातर इलाकों में बारिश नहीं हुई है, लेकिन ठाणे, पालघर, नासिक और पुणे जैसे जिलों में मूसलाधार बारिश की वजह से परेशानियां जरूर खड़ी हुई। नांदेड़ में एक फ्लाईओवर का हिस्सा गिरने का फुटेज सामने आया है, तो पुणे में वेस्ट टू एनर्जी प्लांट की बिल्डिंग पर कचरे का पहाड़ गिर गया था और इस मामले में रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी दिन रात जारी है। अभी भी मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका, लेकिन आधिकारिक तौर पर अभी एक मौत की पुष्टि कर दी गई है। वहीं जिनके अपने मलबे में दबे हुए हैं उन्हें अभी भी जिंदगी की आस है।
2: ग्राउंड फ्लोर पे पूरा पानी हम अंदर जाएंगे।
3: ये हादसा देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। देखिए महाराष्ट्र के नांदेड़ में कैसे इस फ्लाईओवर का हिस्सा कुछ ही पलों में जमींदोज हो गया। नांदेड़ लातूर रोड पर पुल का हिस्सा गिरने की घटना सामने लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। दावा है कि भूकंप की वजह से इसका हिस्सा भरभराकर गिर पड़ा। हादसे में दो लोग घायल बताए जा रहे हैं। नांदेड़ शहर के पास SGGS कॉलेज के सामने फ्लाईओवर का यह हिस्सा सुबह करीब 11 बजे गिरा। ये इलाका काफी व्यस्त बताया जाता है। यहाँ एक सरकारी अस्पताल और कॉलेज भी है। गनीमत रही कि हादसे में किसी की जान का नुकसान नहीं हुआ।
4: या ठिकाणी आतापर्यंत कोणतीही जीवित हानी किंवा कोणालाही मार वगैरे नाही किंवा मालमत्तेचं नुकसान नाही आहे।
3: वहीं पुणे के मोशी इलाके में बुधवार को कूड़े का पहाड़ वेस्ट टू एनर्जी प्लांट की इमारत पर मौत बनकर गिरा। वहां अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हमले में 23 कर्मचारी मलबे में दब गए थे। अब तक 14 लोगों को बाहर निकालने की खबर है, जबकि एक कर्मचारी की मौत की पुष्टि की गई है। अभी भी कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है, यानी मौत का आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है।
5: मेरे पीछे जो कचरे का ढेर दिखाई दे रहा है वो पहाड़ की तरह ऊंचे है। एक आला अधिकारी ने कहा है जो कॉरपोरेशन में यही काम करते, उनका कहना है कि इनकी ऊंचाई को लेकर कोई भी नॉर्म्स नहीं है और उसी वजह से आप देख सकते कि यहाँ पर कचरा जो है पहाड़ की तरह दिख रहा है, उनका ढेर जो है आपको दिखाई दे रहा है। ये पूरा मोशी कचरा डिपो 81 एकड़ में है और इसमें अलग अलग प्रोजेक्ट है, जैसे कि वेस्ट टू एनर्जी प्रकल्प है, प्रोजेक्ट है।
3: इस दर्दनाक हादसे के बीच अब सियासत भी शुरू हो गई है। एक तरफ नगर निगम आयुक्त इसे प्राकृतिक आपदा बताकर पल्ला झाड़ रहे हैं, तो सत्ता पक्ष के शिवसेना सांसद पूरे मामले की जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।
6: कल शाम तक हमने 14 लोगों को रेस्क्यू किया था। उनकी सेहत अच्छी है, उनको हॉस्पिटल में पहुंचाया गया था। आज सुबह जो 9 लोग बचे हैं उसमें से एक व्यक्ति की रेस्क्यू की गई है। वो गंभीर अवस्था में पाए गए, इसलिए उनको YCM हॉस्पिटल में भेजा गया है। और 8 लोग हैं, उसमें से 2 लोगों का लोकेशन ट्रेस हुआ है और 6 लोगों का लोकेशन अभी NDRF ढूंढ रहे हैं।
5: दमकल के विभाग से कहा जा रहा है कि उनकी डेथ हुई है और भी लोग जो है ट्रेस हुए हैं।
6: देखो, जब तक रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा नहीं होता तब तक हम उम्मीद ही रखेंगे।
7: काफी सालों से ये पीछे दिख रहा है, ये पूरा पहाड़ कचरे का पहाड़ है। जब परमिशन ली वेस्ट टू एनर्जी की और जहाँ इमारत बनाई, ऑफिस की इमारत बनाई, ये देखना आवश्यक था कि कभी ना कभी ये पहाड़ ढल जाएगा, नैसर्गिक आपत्ति हो जाएगी। 23 लोग फंसे थे, उसमें से अभी भी 8 लोग अंदर है। मुझे लगता है कि इसकी पूरी तरह से जांच होनी आवश्यक है।
3: यह कूड़े का पहाड़ साल 1982 से है। 81 एकड़ में फैले इस पहाड़ जैसे मलबे पर पिंपरी चिंचवड़ शहर का कचरा डंप किया जाता है। हर दिन 1500 मीट्रिक टन कचरा यहाँ पहुँचता है। दशकों तक कचरा डालने पर यह पहाड़ बन गया। इसी बोझ को कम करने के लिए वेस्ट टू एनर्जी प्लांट शुरू किया गया था, लेकिन वही प्लांट अब इस भीषण हादसे का केंद्र बन गया। चश्मदीद बताते हैं कि 8 जुलाई को दोपहर में कर्मचारी लंच कर रहे थे, तभी कचरे का पहाड़ इस इमारत पर गिर पड़ा था।
8: 15-20 कर्मचारी थे और लंच टाइमिंग चल रहा था, तो हम लोग कैंटीन में लंच कर रहे थे। उस टाइम पे ये स्लाइड हुआ और बिल्डिंग उससे कॉलेप्स हो गया।
5: कितना दर्दनाक हादसा था, क्या तस्वीरें आपके सामने आती है?
8: बहुत दर्दनाक हादसा था और अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन थी, किसी ने ऐसा सोचा नहीं था कभी ऐसा कुछ हो सकता है।
3: रेस्क्यू ऑपरेशन में एनडीआरएफ, फायर ब्रिगेड, पुलिस और सेना की टीमें मलबा हटाने में जुटी हैं, लेकिन जिनके परिजन मलबे में दबे हैं उन्हें अभी भी मलबे के नीचे जिंदगी की आस है।
9: जॉब के लिए आगंदी में यहाँ रहता और मैं पंडरपुर में रहता बहुत से।
5: जब मतलब ये घटना के बाद गांव से यहाँ पे आए हो आप?
9: हाँ, मैं उसको सुखरूप घर लेने के लिए आया हूँ।
5: बचपन से साथ गुजरा है, लेकिन आज आपके भाई इस इंसिडेंट में है, तो भगवान से क्या मांगना चाहोगे आप?
9: भगवान को मैं मेरा सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। वो मेरा भाई सुखरूप भेज दिया, बस इतना ही बताना चाहता हूँ।
10: नैसर्गिक आपत्ति ऐसी रहती क्या? भूकंप आया, नैसर्गिक आपत्ति है। ये नैसर्गिक आपत्ति थोड़ी है, 50 मीटर दूर इतना बड़ा ढिगार लगा के रखा है, बारिश की वजह से वो नीचे आया, उसकी वजह से बिल्डिंग गिरी है। वो
5: पूछताछ होनी चाहिए कि इस मामले में
10: पूछताछ होनी चाहिए, चौकसी झाली पाहिजे इस बद्दल।
3: इधर पुणे में मूसलाधार मुसीबत थमने का नाम नहीं ले रही। लगातार बारिश के बाद डैम ओवरफ्लो होने लगे हैं, नदियों का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। खड़कवासला बांध से मुठा नदी में और ज्यादा पानी छोड़ा जा रहा है, अब निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। वहीं डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे बारिश से हुई बर्बादी का जायजा लेने के लिए ग्राउंड जीरो पर नजर आ रहे हैं। ठाणे में शिंदे ने डिजास्टर मैनेजमेंट के कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया और वहां मौजूद कर्मचारियों को जरूरी निर्देश दिए। हालांकि मुंबई में बारिश से राहत मिली है, लेकिन पालघर, ठाणे और नासिक में आसमानी आफत का कहर जारी है। इधर वसई विरार में बारिश थमने के बावजूद जलभराव लोगों के जी का जंजाल बना हुआ है। निचले इलाकों में पानी भरा है, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आज तक की टीम वसई वेस्ट के अम्बाडी सी कॉलोनी में पहुंची, जहां बारिश थमने के बावजूद लोगों के घरों में पानी भरा दिखा। पानी भरने से घर में रखा सामान भी अब खराब हो रहा है।
11: वसई विरार में बारिश का कहर रुक गया है। बारिश रुक कर कुल 30 घंटे हो चुके हैं। मैं खड़ा हूँ, तब तब की धूप जो है, धूप में खड़ा हूँ, पर मैं आप पीछे देख सकते हैं कोई तालाब ने, अब भी बारिश रुकने के बाद 30 घंटे हो चुके हैं, लेकिन पानी जो है, पानी का जलभराव जो कम नहीं हो रहा है। इस वक्त मैं खड़ा हूँ वसई के अम्बाड़ी रोड स्थित सी कॉलोनी के थोड़े से आगे एरिया में। 30 घंटे हो चुके हैं यहाँ को, यहाँ बिजली नहीं है 4 दिन से। बहुत सारे घर है जो ग्राउंड फ्लोर के, उनके घर में पानी जा चुका है। मैं इस वक्त देख सकते हैं कि एक सोनी, राजेश सोनी जी है, इनके घर में हम लोग जा रहे हैं। देखते राहुल सोनी जी इनका नाम है, इनके घर में हम देख सकते हैं कि पिछले 4 दिन से ये पानी की हालत है, और बारिश रुक के भी बहुत सारा दिन हो चुका है, टाइम हो चुका है। इनके घर में मैं आया, देखो घर के अंदर भी इतना पानी है। इनके घर में अपन एंट्री कर रहे हैं, अब देखते हैं कितना पानी है। ये उनका मेन डोर है, मेन डोर के अंदर भी पानी है, देख सकते हैं। लाइट भी इनकी गुल है, पूरा जो घर में है। ये देखो छोटी छोटी मछलियां भी घर में घूम रही है। ये सोनी जी ने जो अपना नीचे मंडप का टेबल लगा के अपना सोफा जो है ऊपर किया है, टीवी यूनिट भी ऊपर किया है, मतलब पूरा ये जो ग्राउंड फ्लोर है, वो ग्राउंड फ्लोर पे भी पूरा पानी। हम अंदर जाएंगे, अंदर
0: देखा आपने कि किस तरह के हालात हैं, और खास तौर से निचले इलाकों में पानी अभी भी भरा हुआ है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे राजनीति के बारे में, क्योंकि शरद पवार के सियासी रुख को लेकर महाराष्ट्र में सस्पेंस अभी भी बना हुआ है। विधानसभा में शरद पवार और एकनाथ शिंदे की 15 मिनट की मुलाकात ने महाविकास अघाड़ी इंडिया गठबंधन की नींदें उड़ा दी हैं। जहां एनसीपी शरद गोटे इस मुलाकात को सियासी शिष्टाचार बता रहे हैं, तो शिवसेना के कई नेता कह रहे हैं कि अगर शरद पवार एनडीए में शामिल होंगे तो उनके अनुभव का लाभ मिलेगा। वहीं उद्धव सेना ने एक बार फिर से गद्दार वाला वार किया, तो शिंदे ने पलटवार करते हुए संजय राउत को दिमाग का इलाज कराने की नसीहत दे डाली।
12: महाराष्ट्र की सियासत में पिछले कुछ दिनों से शरद पवार के सियासी रुख को लेकर कई अटकलें लगाई जा रही हैं। ऐसी खबरें हैं कि शरद पवार इंडिया गठबंधन और महाविकास अघाड़ी का साथ छोड़कर एनडीए और महायुति में शामिल हो सकते हैं। ये चर्चा तब और तेज हो गई जब शरद पवार अचानक महाराष्ट्र विधानसभा पहुंचे और उन्होंने शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे से मुलाकात की। पवार और शिंदे की मुलाकात महाविकास अघाड़ी को रास नहीं आई, लेकिन एनसीपी शरद गुट कह रहा है कि दूसरे दल के नेताओं से मिलना जुलना तो महाराष्ट्र की संस्कृति रही है, इसमें इतना हाई तौबा क्यों हो रहा है।
13: महाराष्ट्र के राजनीति में एक मुलाकात कल ऐसी हुई जिसके बाद खलबली मच गई है। एकनाथ शिंदे की केबिन में खुद एनसीपी के सुप्रीमो शरद पवार पहुंचे और उनके मुलाकात के बाद कई सारे मायने महाराष्ट्र के राजनीति में निकाले जा रहे हैं। हमारे साथ एनसीपी शरद पवार पार्टी से विधायक और नेता जितेंद्र आवाड है, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि हमेशा कहा जाता है कि शरद पवार कोई भी राजनीतिक चाल चलते हैं तो उसके कई सारे मायने निकालते, कल की इस मुलाकात के मायने क्या निकाले।
14: मैं पगला गया। यार आदमी की सोच अगर इतनी छोटी होने लगे महाराष्ट्र में तो यानी ये सब महाराष्ट्र की राजनीति की जो संस्कार और संस्कृति है वो अरबी समंदर में फेंक दो उसको।
12: जहां पवार के खेमे ने इसे महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद पर एक उच्च स्तरीय बैठक के बाद हुई महज एक इत्तेफाक वाली मुलाकात बताया है, वहीं इस हाई प्रोफाइल मुलाकात ने विपक्षी गठबंधन के भीतर खासकर उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना यूबीटी के साथ अंदरूनी मतभेदों को उजागर कर दिया है। संजय राउत कह रहे हैं कि गद्दारों को सम्मान देकर शरद पवार जैसे वरिष्ठ नेता ने गठबंधन धर्म के लिहाज से ठीक नहीं किया।
15: माननीय शरद पवार मोठे नेते आहेत, आदरणीय आहेत, पण ज्या एकनाथ शिंदेंनी या महाराष्ट्राला भ्रष्टाचाराची आणि गद्दारीची वाळवी लावली, कीड लावली, का अख्खं विधानभवन का ओस पडलं होतं का? समोर राष्ट्रवादी भवन आहे, समोर वायवी चव्हाण प्रतिष्ठान आहे, हे आमचं एका निष्ठावंत कार्यकर्त्याचं हे मत आहे।
12: राउत के बयान पर शिंदे ने तंज कसते हुए कह दिया कि हम बालासाहेब के नाम से कई मेडिकल योजनाएं चला रहे हैं, इसलिए राउत को अपना इलाज करा लेना चाहिए। अब शिंदे और शरद पवार की मुलाकात की इनसाइड स्टोरी सुन लीजिए, फिर आप तय कीजिए कि ये सियासी संयोग था या प्रयोग।
14: ये वो लिफ्ट से नीचे आए, दो केबिन है, एक राइट में जाइए और एक लेफ्ट में जाइए। तो लोगों ने कहा कि हमको जिस जीने से नीचे उतरना, जिस स्टेयर केस से नीचे उतरना है, उसके नजदीक एकनाथ शिंदे की केबिन है। उनको क्या मालूम कौन सी केबिन है, किसकी केबिन है, कहाँ है? तो एकनाथ शिंदे का स्टाफ बाहर खड़ा था, उन्होंने कहा ये बैठिए, दरवाजे खोले गए, अंदर जाके बैठे, चाय पानी हुआ और हमारी मीटिंग के 15 मिनट बाद ऊपर बैठे कैबिनेट मीटिंग में बैठे थे एकनाथ शिंदे जी, उनकी स्टाइल है, वो नीचे आए, उन्होंने हार शॉल निकाली पहनाई और उन्होंने कहा शरद पवार जी से कि मेरी कैबिनेट मीटिंग चालू है, मैं जाऊं। शरद पवार जी तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के पुजारी है, उन्होंने बोला मीटिंग मत छोड़िए, आप पहले जाइए, खत्म हुई मुलाकात।
12: कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी और उसके सहयोगी दल अंग्रेजों से भी ज्यादा विस्तारवादी नीति अपना रहे हैं।
16: केंद्र की मोदी की सरकार अपने अपोजिशन को हमेशा टारगेट करती आई, कोई नई बात नहीं है और मुझे लगता है कि और बहुत लोगों को परेशान करेंगी, क्योंकि उनका जो अचीवमेंट है देश की संविधानिक व्यवस्था को खत्म करना, उसके लिए उनको टूटर मेजोरिटी जो लगती है वो पाने के लिए जो जो उनको करना है वो करेंगे, और इसलिए ये अब अंग्रेज से भी बदतर व्यवस्था जो केंद्र की सरकार में बैठी है उसी का परिणाम कहीं अपोजिशन के लोगों को भुगतना पड़ रहा है।
12: एनसीपी शरद गुट कह रहा है कि शिंदे और पवार की मुलाकात के पीछे कोई छिपा हुआ राजनीतिक मकसद नहीं था। इधर शिवसेना कोटे से गृह राज्य मंत्री योगेश कदम ने कह दिया कि अगर शरद पवार जैसे वरिष्ठ नेता एनडीए में आते हैं तो उनका स्वागत है।
17: नहीं, हमने तो पहले दिन से ही कहा है, संजय राउत जी ये ऑनरेबल बाला साहब जी के कभी कार्यकर्ता नहीं थे, वो कभी उद्धव जी के कार्यकर्ता नहीं थे, वो हमेशा से ही शरद पवार जी के ही चले रहे हैं। अभी गुरु ने शायद उनको बताए बिना एक निर्णय लिया है या फिर लेने वाले हैं, तो शायद उनको उसकी वो मिर्ची लगी रहेगी, उनको बुरा लगा रहेगा।
18: भविष्य में एनडीए में आते हैं तो स्वागत करेंगे आप
17: जी?
18: अगर भविष्य में पवार साहब एनडीए में आते हैं तो स्वागत करेंगे?
17: बिल्कुल स्वागत करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। शरद पवार जी जैसा एक नोबल मैन जिन्होंने महाराष्ट्र के लिए बहुत कुछ किया है, द मोस्ट सीनियर पॉलिटिशियन आज की तारीख में वो महाराष्ट्र में है, मेरे ख्याल से अगर जब भी ऐसे नेता अगर एनडीए में आएंगे तो बिल्कुल उनसे भी हमें कुछ सीखने मिलेगा।
12: फिलहाल शरद पवार की पार्टी कांग्रेस में विलय और एनडीए में जाने जैसी दोनों चर्चाओं को अफवाह बताकर खारिज कर रही है, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में समीकरण कब बदल जाए ये कहना मुश्किल है।
13: शरद पवार और एकनाथ शिंदे की मुलाकात पर अब खुद डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने भी संजय राउत पर बड़ा तंज कसा है। शिंदे ने कहा कि अगर शरद पवार विधिमंडल आते हैं तो उनका स्वागत करना ये महाराष्ट्र के राजनीति की संस्कृति है, लेकिन अगर इससे किसी के पेट में दर्द हो रहा हो तो हमने मुंबई ठाणे में बालासाहेब ठाकरे के नाम से मेडिकल ट्रीटमेंट की सुविधाएं उपलब्ध कराई है, वो जाकर अपना इलाज करवा ले। इस तीखे बयानबाजी के बाद एक बात तो साफ हो रही है कि 15 मिनट के इस मुलाकात ने महाराष्ट्र की सियासत में एक नया पॉलिटिकल वॉर छेड़ दिया है। कैमरा पर्सन राजू नामदार के साथ मैं ऋत्विक भालेकर, मुंबई आज तक।
0: 6 जुलाई को मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे के मिसिंग लिंक का एक हिस्सा डैमेज होने पर सियासत जारी है। आज भी विपक्ष के सवालों पर सीएम फडणवीस ने विधानसभा में कहा कि जो लोग महाराष्ट्र को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें वो छोड़ेंगे नहीं। अब जूनियर ठाकरे भ्रष्टाचार वाला बार करते हैं और कहते हैं कि मुख्यमंत्री जनता के मालिक नहीं सेवक हैं, इसीलिए सवाल तो पूछे ही जाएंगे।

0: महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए मिसिंग लिंक बनवाया था। करीब 13 किलोमीटर लंबे इस लिंक को बनाने में करीब 6,700 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, लेकिन ये लिंक इस मानसून की पहली बारिश भी नहीं झेल पाया और उद्घाटन के 6 हफ्तों के भीतर ही 6 जुलाई को लैंडस्लाइड से इसका कुछ हिस्सा डैमेज हो गया था। किरकिरी के बाद महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम ने इसे एक्ट ऑफ गॉड यानी दैवीय घटना बताकर अपना पल्ला झाड़ लिया। विपक्ष सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहा है। ये बात सीएम फडणवीस को नागवार गुजरी। उन्होंने विधानसभा में सवाल उठाने वालों पर ऐसा हमला किया कि वो भाषा की मर्यादा भी भूल गए और सवालों को महाराष्ट्र के अपमान से जोड़ दिया।
1: उनको कुत्ता नहीं पहुंचता, वो आजकल सोशल मीडिया पर आकर सबको गाली देते हैं, मुख्यमंत्री को भी गाली देते हैं। ऐसे कुछ भाड़े के इस मिसिंग लिंक के बारे में भी पैसा ले लेकर सोशल मीडिया पर लिख रहे थे, उनको भी कह देना चाहता हूं, अगर महाराष्ट्र का अपमान करोगे छोड़ूंगा नहीं।
0: हैरानी की बात है कि मिसिंग लिंक को महाराष्ट्र सरकार इंजीनियरिंग का करिश्मा बता रही थी। खुद सीएम ने दावा किया था कि इस पर मौसम का कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन अब सीएम की भाषा पर विपक्ष हमलावर है।
2: मुख्यमंत्री फडणवीस भाषण विधानसभा मधलं ते काय ते कुठला मिसिंग लिंक, मिसिंग लिंक वरती म्हणे ते काय ते काय कोसळला, खांब कोसळला आणि पाणी सगळीकडनं येतंय, त्याचं म्हणे राजकारण करू नका। अरे वा, दुसऱ्यांच्या सरकार जेव्हा होती दुसऱ्यांची त्यावेळेला तुम्ही काय करत होतात? त्यावेळेला जी आंदोलनं झाली ते राजकारण नव्हतं। एक वेळ मला बोला पण महाराष्ट्राचा अपमान मी सहन करणार नाही। वारे वा, लोक त्या मिसिंग लिंक बद्दलच बोलतायत, महाराष्ट्राचा कुठे अपमान करतायत? केंद्र सरकारच्या कुठच्या गोष्टींबद्दल बोललं की तुम्ही देशविरोधी?
0: शिवसेना युवीटी विधायक आदित्य ठाकरे ने मुख्यमंत्री पर हमला करते हुए कहा कि आप राजा नहीं जनता के सेवक हैं, इसलिए भ्रष्टाचार हुआ तो सवाल तो पूछे ही जाएंगे।
3: कल का जो भाषण था फडणवीस साहब का, एक तो बहुत सारी फिक्शनल बातें उन्होंने कही, मुंबई के बारे में हो, विकास के बारे में हो, कौन से राज्य में ये उन्होंने करके दिखाया हमें एक बार दिखाया, पिक्चर देखने के लिए बुलाए, लेकिन उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी और उनका जो एरोगेंस था ये फ्रस्ट्रेशन का बहुत बड़ा चिन्ह है। और ये मैं आज दावे के साथ कह सकता हूं कि ये फडणवीस साहब का मुख्यमंत्री होने के नाते आखिरी सत्र है, इसके बाद वो केंद्र में मंत्री करके बुलाया जाएगा उनको। लेकिन जो उन्होंने कल महाराष्ट्र की जनता को धमकाया कि अगर आप सवाल पूछोगे, सोशल मीडिया पे व्यक्त होगे, तो हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे छोड़ेंगे नहीं, मैं इतना ही कहूंगा उन्हें कि साहब भ्रष्टाचार किया है, पैसा खाया है तो गाली भी खानी पड़ेगी जो बात।
4: और इसी के साथ मुंबई मेट्रो में हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
4: डोंबिवली में महिला डॉक्टर्स पर हमला करने वाले शिवसेना के पार्षद रमेश महात्रे का हॉस्पिटल में इलाज जारी है। गिरफ्तारी के बाद महात्रे ने सीने में दर्द और सांस फूलने की शिकायत, साथ ही हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत की थी। उसके बाद 73 साल के महात्रे को ठाणे सिविल अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। आज सुबह ठाणे सिविल अस्पताल में डॉक्टर्स नर्सों ने महात्रे के खिलाफ प्रदर्शन किया था। महात्रे ने मेडिकल ग्राउंड पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी की अनुमति मांगी थी, जिसे कोर्ट ने खारिज करते हुए कहा कि उन्हें शारीरिक रूप से ही पेश होना होगा।
6: जो भी कुछ उनको जो बताया गया होगा वो बच्चे के लिए, जैसे भी चीज जो भी बताया गया होगा होता वो उसके अच्छे के लिए किया था, लेकिन फिर भी उन्होंने वो समझ में बात नहीं ली और कुछ भी बात बोल के गाली देके गंदा गंदा बात करके मार मार करके ये जो सब किया है बहुत बुरे बात है, ऐसा होना नहीं चाहिए। और हमारे आरोग्य
7: हमारा कर्तव्य एज अ डॉक्टर और प्रोफेशन कि हर पेशेंट को एज अ मरीज देख के उनको ट्रीटमेंट करना जरूरी है, इसलिए उनको एडमिट करके ट्रीटमेंट चल रही है। लेकिन जब भी उसकी तबीयत ठीक हो जाएगी, सब मेडिकल पैरामीटर्स ओके हो जाएंगे, तुरंत हम उसको डिस्चार्ज करेंगे। और हम कड़ी मांग करते हैं कि यूनी हॉस्पिटल में डॉक्टर्स और नर्सेस को प्रोटेक्शन मिलना चाहिए और ये नगर सेवक के ऊपर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए।
8: आज से हमारा हॉस्पिटल ओपीडी सर्विसेज के लिए हमने रिज्यूम कर लिया है, हमारे डॉक्टर्स आ गए।
9: जो डॉक्टर थे उन्होंने इस्तीफा दिया, इसी खबर आ रही है तो
8: नहीं, वो हमारे तक नहीं पहुंचा है न्यूज।
9: और आपकी क्या मांगे थी और क्या मांगे पूरी हुई है?
8: नहीं, मैंने तो इतना मेरे हॉस्पिटल के लिए सिक्योरिटी मांगी थी, वो हमको मिल गई। मेरा सारा ओपीडी चालू कर दिया गया है और ओपीडी के पेशेंट्स का पेपर तो हम सुबह 9 बजे से जो स्टार्ट करते हैं वो हमने चालू कर दिया।

0: 30,000 भारतीयों के बीच मेलबर्न में बोले प्रधानमंत्री मोदी, शिप से चिप तक बना रहा है भारत, ग्रो मोर अचीव मोर का दिया नारा, कहा रक्षा अंतरिक्ष और यूरेनियम डील पर मुहर। टीएमसी को छोड़ बीजेपी माया ममता के तीनों ही पूर्व राज्यसभा के सांसदों को मिला इनाम, उपचुनाव के लिए बने कमल के उम्मीदवार, कल ही पार्टी में शामिल हुए थे सुखेंदु, सुष्मिता और प्रकाश। यूपी में चढ़ा चुनावी तापमान, योगी का आरोप, 2017 से पहले कब्रिस्तानों पर पैसे खर्च करती थी एसपी सरकार, ओपी राजभर ने भी अखिलेश पर किया बड़ा हमला। महाराष्ट्र और गुजरात समेत उत्तर भारत में जोरदार बारिश से परेशानी, दिल्ली एनसीआर भी हुआ पानी पानी, बादली में डूबने से 7 साल के बच्चे की मौत, गाजियाबाद में भी एक बच्चे की गई जान। अमेरिकी हमले के बीच खामनेई का अंतिम संस्कार, ट्रंप ने फिर दी धमकी, कहा 20 गुना ताकत से करेंगे अटैक, बदले में अमेरिकी ठिकानों पर तेहरान ने बरसाए बम। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि शर्मा। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आ रही है गुरुग्राम से, जहां जानकारी मिल रही है कि पुलिस के एनकाउंटर में बदमाशों के घायल, 4 बदमाशों के ढेर होने की जानकारी है और एक बदमाश यहां घायल हुआ है, और इस एनकाउंटर में 3 पुलिस वाले भी गोली लगने से घायल हुए हैं जिन्हें तुरंत ही अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। गुरुग्राम के सुशांत लोक एरिया में इस एनकाउंटर को अंजाम दिया गया है। पुलिस ने जब इन बदमाशों को रोकने की कोशिश की तो ताबड़तोड़ फायरिंग इनकी तरफ से शुरू कर दी गई थी, जिसमें जानकारी मिल रही है कि इस एनकाउंटर में 4 बदमाशों को ढेर कर दिया गया है और एक बदमाश इस एनकाउंटर में घायल हुआ है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ हमारे सहयोगी अरविंद ओझा जुड़ गए। अरविंद, और क्या जानकारी मिल रही है, कितनी देर पहले की यह घटना है?
1: देखिए, कुछ देर पहले की घटना है, ये भीषण एनकाउंटर हुआ है गुरुग्राम पुलिस क्राइम ब्रांच और बदमाशों के बीच ये एनकाउंटर हुआ है, जिसमें 4 जो बदमाश हैं वो मारे गए हैं। दरअसल सुशांत लोक इलाके में एक नामी बिजनेसमैन है जिनको काफी दिनों से विदेश में बैठे गैंगस्टर दीपक नांदल के नाम से धमकी आ रही थी और एक्सटॉर्शन मांगा जा रहा था उसी

0: दौरान आज ये कुल मिलाकर 5 बदमाश एक गाड़ी से शोशांत लोग पहुंचते हैं और बिजनेसमैन के घर पर डराने के लिए ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं। लेकिन गुरुग्राम पुलिस को पहले से ही इस बारे में इनपुट मिला था कि एक संदिग्ध कार जिसमें हथियारबंद बदमाश है वो शोशांत लोग की तरफ घूम रहे हैं, और जैसे ही फायरिंग करके बदमाश भागने लगते हैं गुरुग्राम पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम वहां पर पहुंचती और रोकने की जैसे ही कोशिश करती है दोनों तरफ से अंधाधुन गोलियां चलने लगती हैं। गुरुग्राम पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम ने भी गोलियां चलाई जिसमें 5 बदमाशों को गोली लगी, 4 की मौत हो गई जबकि 1 बदमाश की अस्पताल में इलाज चल रहा है जबकि 3 पुलिस वाले भी इसमें घायल हुए हैं।
1: बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका अरविंद। और आगे बढ़ेंगे, अब आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरें नॉन स्टॉप 100 में।

मेलबर्न में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मेगा शो। प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया में भारतीय समुदाय के सबसे बड़े आयोजन को किया संबोधित। स्टेडियम के अंदर करीब 30,000 भारतीय मूल के लोग मौजूद थे, ऑस्ट्रेलिया के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड। स्टेडियम के भीतर ढोल नगाड़ों के बीच प्रधानमंत्री मोदी की गूंज, कई भारतीय सांस्कृतिक प्रस्तुतियों की दिखी झलक। मेलबर्न के प्रतिष्ठित मार्वल स्टेडियम में हुआ था शानदार आयोजन। मेलबर्न मीट्स मोदी नाम से इस मेगा शो को प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बनीज ने किया संबोधित। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने जताया आभार, कहा आज मेक इन इंडिया बना ग्लोबल ब्रांड। प्रधानमंत्री मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए कहा डेमो तो देख ही लिया होगा, धमाके आतंकी अड्डों पर हो रहे थे और गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही थी। संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा भारत के 99% जिले 5G से लैस आज चिप से लेकर शिप तक बना रहा है भारत। प्रधानमंत्री मोदी बोले भारत जल्दी दुनिया के टॉप 3 इकोनॉमी बनना चाहता है, ये वो भारत है जो कहता है ग्रो मोर अचीव मोर। गवर्नमेंट हाउस विक्टोरिया में प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया भव्य गार्ड ऑफ ऑनर, मौके पर ऑस्ट्रेलिया की सेना ने किया सेरेमोनियल सम्मान। दोनों देशों के बीच हुए कई बड़े समझौते, रक्षा और सुरक्षा सहयोग को नई मजबूती देने, समुद्री सुरक्षा, साइबर तकनीक और परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष व्यापार के क्षेत्र में साझेदारी पर बात। दिल्ली में बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट SP कॉन्फ्रेंस 2026 आयोजित, गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुआ कार्यक्रम। बॉर्डर जिलों के पुलिस अधीक्षकों के साथ अमित शाह की बैठक, घुसपैठ पर सीमा सुरक्षा के साथ ही सीमावर्ती जिलों के विकास को लेकर मंथन। MP के दाऊद में नितिन गडकरी, दिल्ली मुंबई हाईवे के काम का जायजा लिया, नेशनल हाईवे अथॉरिटीज और कॉन्ट्रैक्टर्स को प्रोजेक्ट में तेजी लाने के सख्त निर्देश। आज अयोध्या और बस्ती के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी, 936 करोड़ रुपए के 294 विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। यूपी के बांदा दौरे पर सीएम योगी का कार्यक्रमों में हिस्सा लिया, 710 करोड़ और 229 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाया, कहा 2017 से पहले कब्रिस्तानों पर पैसे खर्च करती थी SP की सरकार। मंत्री ओपी राजभर ने अखिलेश पर निशाना साधा, बोले जन्म से सीएम नहीं बन पाएंगे, अब जन्म में सीएम नहीं बन पाएंगे अखिलेश यादव, विशेष जातिगत वोट बैंक के सारे, सत्ता में नहीं आ सकती उनकी पार्टी। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में रिमांड के दौरान मिले नए सुराग, आरोपियों के घरों से नकदी, सोने के गहने और अनुकल्प मिश्रा की कार बरामद। राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर बीजेपी का कड़ा रुख, यूपी के अध्यक्ष पंकज चौधरी बोले दोषियों को मिलेगी सबसे कड़ी सजा, कोई नहीं बचेगा। चढ़ावा चोरी मामले में कांग्रेस का केंद्र सरकार पर हमला, जयराम रमेश बोले जमीन खरीद निर्माण से जुड़े बड़े घोटाले सामने आए हैं फिर भी पीएम चुप। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में राम मंदिर दान चोरी के मामले को लेकर कांग्रेस कानून का विरोध, प्रदर्शन कार्यकर्ताओं ने भजन कीर्तन करके व्यक्त किया रोष। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार, राज्य के सभी मुजराई मंदिरों में दान पेटियों में 24/7 CCTV निगरानी का आदेश दे चुके हैं। अयोध्या राम मंदिर मामले को लेकर लिया गया है फैसला। हार के बाद TMC में जारी है लगातार बिखरा, बीजेपी में शामिल हुए पूर्व राज्यसभा के सांसद सुखेंदु शेखा, सुष्मिता देव और प्रकाश बराइक। TMC को छोड़ बीजेपी में आए ममता के तीनों ही पूर्व राज्यसभा के सांसदों को मिला इनाम, उपचुनाव के लिए बनाए गए हैं बीजेपी के उम्मीदवार। आज NDA की बैठक में शामिल होंगे सीएम सम्राट, पेंशन भुगतान कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। एकनाथ शिंदे से शरद पवार की मुलाकात से भड़क गए हैं संजय राउत, पूछा गद्दारों को क्यों इज्जत दे रहे हैं पवार, जिसने सरकार गिराई उससे कैसी दोस्ती। महाराष्ट्र में UCC को लेकर 7 सदस्यीय समिति का गठन हुआ, मंत्री योगेश कदम ने कहा UCC पर बनी समिति की रिपोर्ट के आधार पर लिया जाएगा फैसला। महाराष्ट्र परिवहन विभाग गैर मराठी भाषी ऑटो चालकों को सिखा रही है मराठी भाषा, 16 अगस्त से यात्रियों से संवाद न कर पाने और टेस्ट में विफल होने वाले चालकों के लिए लाइसेंस रद्द किए जाएंगे। पुणे के पिंपरी चिंचवाड़ हादसे में मलबे में अभी भी जारी है तलाश, NDRF और SDRF की टीमें दिन रात एक करके रेस्क्यू में जुटी। गुजरात में मानसून की जबरदस्त बारिश के बीच मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक की, भारी बारिश में हुए बाढ़ से नुकसान पर मंथन किया गया। MP कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी का भाई नाना पटवारी हिरासत में लिया गया, ड्रग्स केस में पुलिस कर रही है पूछताछ। रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर, रेलवे ने 22 ट्रेनों के परिचालन का अवधि में किया है विस्तार, यूपी बिहार से दिल्ली मुंबई आने जाने वालों को मिलेगी सुविधा। देशभर में 30 जुलाई से शुरू होगी श्रावणी मेला, देवघर में मेले की तैयारियां जोरों पर है, इस साल मेले में 50 लाख से ज्यादा भक्तों के पहुंचने की उम्मीद। नए आर्मी चीफ धीरज सेठ ने पुंछ का दौरा किया, सेना के शीर्ष अधिकारियों के साथ सुरक्षा तैयारियों का जायजा लिया। श्रीनगर में पंथा चौक स्थित अमरनाथ यात्रा ट्रांजिट कैंप में LG मनोज सिन्हा, अमरनाथ यात्रा के दौरान इंतजामों की समीक्षा की गई।
पुरी में जोरों पर भगवान जगन्नाथ रथ की यात्रा उत्सव की तैयारियां। रथों की सजावट का काम लगभग पूरा हो चुका है। 16 जुलाई को निकलेगी भव्य रथ यात्रा। लगातार बारिश के चलते रोकी गई केदारनाथ रथ यात्रा, यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। चमोली में मानसून की दस्तक, बारिश के बीच भी बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड साहिब में श्रद्धालुओं का पहुंचना लगातार जारी। बारिश और भूस्खलन के खतरे के बीच यात्रियों की सुरक्षा के संवेदनशील इलाकों में लगातार की जा रही निगरानी। चारधाम यात्रा पर प्रशासन की पैनी नजर। यूपी के कई जिलों में दो दिनों से लगातार हो रही जोरदार बारिश के चलते डीएम का फैसला, गाजियाबाद समेत मेरठ, हापुड़, बिजनौर और मुजफ्फरनगर में आज स्कूल बंद रहेंगे। मानसून में मूसलाधार बारिश में भारतीय सेना का कमाल, दूधिया स्थिति। बालासन नदी पर मात्र 20 दिन में बनाया गया 34 मीटर लंबा बेली ब्रिज। सेना के पूर्वी कमान के तहत आने वाली त्रिशक्ति कोर ने बहाल किया सिलीगुड़ी मिरिक सड़क मार्ग, वीडियो भी शेयर किया गया। 8 सदस्यीय उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने बाढ़ प्रभावित राज्य अरुणाचल प्रदेश का दौरा किया, नुकसान और राहत कार्यों का जायजा लिया गया। दिल्ली एनसीआर में लगातार दो दिनों से हो रही बारिश, सड़कें डूबी, ट्रैफिक व्यवस्था पर मार, लोगों को हो रही है भारी परेशानी। भारी मानसून के बीच दिल्ली के अलीपुर इलाके में सड़कें जलमग्न हैं, जलभराव के बीच फंसे कई वाहन। दो दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश के बीच ग्रेटर नोएडा वेस्ट में लंदन मॉल की बाउंड्री वॉल गिर गई थी, पास की सड़क भी कई फीट धसी। गाजियाबाद में भी भारी बारिश से जलभराव, वैशाली सेक्टर 3 में सड़कें बन गई हैं, तालाब, रिहायशी इलाकों में घरों में घुसा पानी। उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट, टेहरी, रुद्रप्रयाग, नैनीताल, बागेश्वर और चमोली के स्कूलों में स्कूलों की छुट्टी। ऋषिकेश हरिद्वार चीला रोड पर लगातार बारिश के कारण बनी नदी उफान पर, तेज बहाव के बीच फंसा स्कूटी सवार स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू किया। उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश के बीच मसूरी लेन के पास भारी मलबा आने से NH 707 बंद हुआ, यातायात प्रभावित हुआ, रास्ता खोलने में जुटा हुआ है प्रशासन। विकासनगर में मूसलाधार बारिश के बीच दिल्ली यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर भूस्खलन का खौफनाक वीडियो सामने आया, सड़क पर आया मलबा, बाल बाल बचे लोग। प्रयागराज में पहली बारिश के बाद नगर निगम की खुली पोल, सिविल लाइन समेत कई इलाकों में जलभराव, सड़कें बनी तालाब। मेरठ में पिछले 48 घंटों में रुक रुक कर हो रही है बारिश, सड़कों पर गलियों में 2 से 3 फीट तक पानी भरा, आम जनजीवन अस्त व्यस्त। मुजफ्फरनगर में लगातार दो दिनों से हो रही बारिश से जनजीवन ठप हुआ, रिहायशी इलाकों समेत मंदिर और आसपास के इलाकों में भरा है पानी। आगरा में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ, कई इलाकों में पानी और जलभराव से सी व ओवरफ्लो के कारण घरों में भी गंदा पानी घुसा, लगभग 200 परिवार घरों में कैद होने के लिए मजबूर। धौलपुर में भी भारी बारिश से सड़कें बन गई हैं तालाब, आफत वाली बारिश में भर भराकर गिरा 2 मंजिला मकान, परिवार के 6 लोग घायल। सहारनपुर में भी झमाझम बारिश के बाद शहर के कई इलाकों में पानी, सड़कों पर भरे हुए पानी में स्विमिंग करते हुए नजर आए बच्चे। सहारनपुर में उफनती हुई नदी में बहे बाइक सवार ग्रामीणों ने महिला समेत 3 लोगों की जान बचाई। केरलम के कोझिकोड रेलवे स्टेशन पर बड़ा हादसा टला, स्टेशन पुनर्विकास कार्य के दौरान 100 से ज्यादा पुराना घंटाघर ढहा, कोई हताहत नहीं। गाजियाबाद में लगातार बारिश के बीच वसुंधरा के अटल चौक पर धसी सड़क, गड्ढे में समाई कार और स्कूटी। गाजियाबाद में बारिश के कई जगहों पर जलभरा, विजयनगर में गली में खेल रही 3 साल की मासूम पानी में डूबी, मौत हुई। महाराष्ट्र के नांदेड़ लातूर हाईवे पर अचानक से भरभराकर गिर पड़ा था फ्लाईओवर का हिस्सा, सीसीटीवी फुटेज में कैद हुआ खौफनाक हादसा। महाराष्ट्र के पालघर में शॉर्ट सर्किट से घर में भीषण आग लगी, आग की चपेट में आया गैस सिलेंडर फटा, धमाके में 2 घर जलकर खाक। गुजरात के वडोदरा में चलती बस में अचानक से आग लगी, दमकल की टीम ने काबू पाया। इंदौर आ रही बस में टायर फटने के बाद भीषण आग लगी, 26 यात्रियों की जान बची, सूझबूझ से टला बड़ा हादसा। पश्चिम बंगाल के आवड़ा में चोरी के आरोपों में युवक को भीड़ ने बेरहमी से पीटा, घटना का वीडियो सामने आया। जोधपुर में पुरानी रंजिश में युवक पर तलवार लाठी से हमला, वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद। अलीगढ़ में चलती बस में लाइसेंसी पिस्टल से अचानक गलती से चल गई थी गोली, सिक्योरिटी गार्ड की मौत हुई, 2 लोग घायल हुए। ओडिशा के अंगुल में माल्यगिरी पहाड़ी पर फंस गए थे 3 ट्रैकर्स, 22 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद दमकल की टीम ने रेस्क्यू किया। नागपुर में अंधविश्वास का फायदा उठाते हुए 2 ठगों ने 81 साल की बुजुर्ग महिला से ठगे, लाखों झांसा देकर करीब 3 लाख रुपए के जेवर भी उड़ाए। महाराष्ट्र के जाला में होटल में चल रहे देह व्यापार का भंडाफोड़, पुलिस ने छापेमारी में 3 महिलाओं को मुक्त कराया। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में हाथी के साथ सेल्फी लेने के चक्कर में युवक की मौत हुई, बेहद करीब जाने पर गुस्साए हाथी ने कुचल डाला। गुजरात के राजकोट में बेटे ने मां के लिव इन पार्टनर को सड़क पर दौड़ाकर चाकू से गोदकर मार डाला, खौफनाक घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। गुजरात के पाटन में हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ, 2 ट्रकों की भीषण टक्कर हुई, ड्राइवर की मौत हुई। युवक के झांसी में चलती ट्रेन के उतरने के चक्कर में एक शख्स गिरा, ट्रेन के नीचे गिर जाने से आरपीएफ जवान ने बचाई जान। लखनऊ में मंदिर का सेवादारी निकला घंटा चोर, प्रसिद्ध बुद्धेश्वर मंदिर से चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया गया।
अलवर के कॉलेज में मोबाइल से नकल करने का वीडियो वायरल हुआ, परीक्षा व्यवस्था पर उठाए गए सवाल। सुल्तानपुर में महिला बीजेपी नेता ने पुलिस चौकी में युवक को जड़ा थप्पड़, वीडियो वायरल हुआ, मुकदमा दर्ज। धनबाद के वासेपुर में फर्जी आधार पर सेंटर सील किया गया, पैसे लेकर भरवाया जा रहा था SIR फॉर्म। आज रिलीज हो रही है अजय देवगन की फिल्म धमाल 4, रिलीज से पहले एडवांस बुकिंग में कमाए 1.5 करोड़ रुपए। अक्षय खन्ना, सनी देओल, दिया मिर्जा और तिलोत्तमा स्टारर कोर्टरूम का ड्रामा 1 का आज से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम की जाएगी। चर्चित हत्या केस के आसपास घूमती है फिल्म की कहानी। बतौर लीड हीरो अपनी पहली फिल्म भाई तेरा स्टार है लेकर आ रहे हैं राघव जुयाल। फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया गया, 30 जुलाई को थिएटर्स में रिलीज होगी। 7 महीने बाद जननायकन की रिलीज डेट पर लग गई है मोहर, 24 जुलाई को थिएटर्स में दस्तक देगी थलापति विजय की आखिरी फिल्म। केके मैनन की नई वेब सीरीज आदर्श बाल विद्यालय की पहली झलक सामने आई है। एक बदहाल स्कूल में ज्ञानेश्वर त्रिपाठी नाम के एक बेफिक्र स्वभाव वाले हेडमास्टर के इर्द गिर्द घूमती है कहानी। प्याज टमाटर के दाम बढ़ने से जून में वेज थाली 5% महंगी हुई, LPG और वनस्पति तेल से बढ़ने से नॉनवेज थाली भी बढ़ी। सिविल के भारतीय मुताबिक भारत में क्रेडिट कार्ड्स की जगह UPI और पर्सनल लोन ने जगह ली है। देश की कुल क्रेडिट एक्टिव आबादी में से महज 1/4 के पास क्रेडिट कार्ड्स। जनवरी से जून के दौरान देश के 8 बड़े शहरों में घरों की बिक्री महज 1% हुई है। देश भर में अनसोल्ड हाउसेस की संख्या भी 4% बढ़ी। भारत में क्रिप्टो करेंसी को लेकर रेगुलेटरी रुख में सख्ती, RBI ने इस पर कड़े प्रतिबंधों की वकालत की है। 10 जुलाई से महिंद्रा एंड महिंद्रा की थार और स्कॉर्पियो के प्राइस में 2.5% का बढ़ोतरी होगी। कंपनी अपने कमर्शियल व्हीकल्स के दाम भी बढ़ा देगी। अमेरिकी हमलों के बीच आज सुपुर्द खाक होंगे ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अली खामनेई। क्रीमिया में हमले पर यूक्रेनी सेना का बड़ा दावा, 4 दिन में रूस के 36 जहाजों पर भीषण हमला। अजोब सागर में रूस के 12 और तेल टैंकर्स तबाह। ट्रंप रूबियो के बयान पर रूस का पलटवार, कहा रूस तेल ठिकानों पर हमले से नहीं खत्म होगा युद्ध, अमेरिकी सरकार गलतफहमी में है। ईरान के बुशहर में परमाणु ठिकानों के पास अमेरिका ने बरसाए बम, चीन ईरान तेल कॉरिडोर को उड़ाया गया। चाबहार में समुद्री कंट्रोल टावर पर किया भीषण हमला। अंकारा में नेटो समिट के बाद बोले मार्क रूटे, गठबंधन में दिखी पहले से ज्यादा एकजुटता। ब्रिटिश कार्यवाहक PM स्टामर ने नेटो की तारीफ की। अंकारा नेटो समिट में तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान का अनोखा गिफ्ट, नेटो नेताओं को विदाई में दी गई असली गोलियों के साथ रिवॉल्वर, गिफ्ट देखकर हैरान रह गए बेल्जियम के प्रधानमंत्री। नेटो समिट से अलग जर्मनी अमेरिका में बड़ी रक्षा डील, अमेरिका से टोमाहॉक क्रूज मिसाइलें खरीदेगा जर्मनी। ट्रंप के साथ तलखी पर बोली इटली की PM जॉर्जिया मेलोनी, कहा मुझे ट्रंप के रिश्ते सुधारने की कोशिश का कोई पछतावा नहीं। अरब सागर में मिला पाकिस्तान के लापता कार्गो विमान का मलबा, विमान में 5 क्रू मेंबर सवार थे। मशहूर सिंगर बोनी टायलर का 75 साल की उम्र में निधन हुआ, पुर्तगाल के अस्पताल में आखिरी सांस ली।

0: नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। आज सबसे पहले आपको बताएंगे कि क्या अमेरिका और ईरान के बीच विनाशकारी युद्ध का सीजन 2 शुरू हो चुका है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर रद्द करने का ऐलान क्या किया। अमेरिकी सेना ने सिर्फ 48 घंटे के भीतर ईरान के 170 रणनीतिक ठिकानों को बमबारी कर खंडहर बना दिया। आज आपको बताएंगे कि आखिर क्यों सीज फायर समझौते के केवल 3 हफ्ते बाद ही ट्रंप का ईरान से भरोसा उठ गया। क्या है सीज फायर रद्द करने की वो इनसाइड स्टोरी जिसने मिडिल ईस्ट को फिर से बारूद के ढेर पर लाकर बिठा दिया है, और क्यों कहा जा रहा है कि इस बार अमेरिकी मिसाइलों का अगला टारगेट ईरान के रिहायशी इलाके और पानी के प्लांट होने वाले हैं। इसके बाद आपको ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में प्रधानमंत्री मोदी का मेगा शो दिखाएंगे, और इसके साथ ही उस मेगा डील के बारे में बताएंगे जिसने भारत के हाथों में ऊर्जा का वो खजाना सौंप दिया है जिसके लिए देश 2 दशकों से इंतजार कर रहा था। आज आपको बताएंगे कि कैसे जिस ऑस्ट्रेलिया ने भारत को यूरेनियम देने से इनकार कर दिया था, और आज ऑस्ट्रेलिया का मीडिया प्रधानमंत्री मोदी को रॉकस्टार बताते हुए भारत के साथ यूरेनियम डील की जमकर तारीफ कर रहा है। आखिर में आपको मुंबई के 73 साल पुराने और बेहद चर्चित आइसक्रीम पार्लर में लेकर चलेंगे जिसकी आइटम्स के बड़े बड़े सेलिब्रिटी दीवाने हैं। आज वहां फूड डिपार्टमेंट की छापेमारी में चूहे, मक्खी, गंदगी और कुछ एक्सपायर्ड आइटम्स मिले। सवाल यह है कि इतने फेमस आइसक्रीम पार्लर का यह हाल है तो भरोसा किस पर किया जा सकता है? क्या अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध का सबसे खतरनाक दौर शुरू हो गया है? आज पूरी दुनिया इस सवाल में उलझी हुई है। इसका सीधा कारण है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का वो बयान जिसमें उन्होंने सीज फायर को खत्म करने का ऐलान किया, और जैसे यह ऐलान हुआ धमाके शुरू हो गए। पिछले 2 दिनों से अमेरिकी सेना ने ईरान के अलग अलग रणनीतिक ठिकानों पर बमबारी की है। सीज फायर के ऐलान के बाद यह पहली बार है जब लगातार 2 दिनों से इतने बड़े पैमाने पर हमले हो रहे हैं। अमेरिकी सेना ने कल रात ईरान के 90 ठिकानों पर हमले किए और इससे पहले 7 जुलाई को 80 ठिकानों को तबाह किया। कुल मिलाकर पिछले 2 दिनों के अंदर ईरान के 170 रणनीतिक ठिकानों पर हमले हो चुके हैं, जो सीज फायर के ऐलान के बाद सबसे बड़ी संख्या है। 8 अप्रैल को जब अमेरिका और ईरान के बीच सीजफायर की घोषणा हुई थी तो यह तय हुआ था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की आवाजाही को चालू कर दिया जाएगा और अमेरिकी सेना ईरान पर लगाई गई नाकेबंदी को खत्म कर देगी, पीछे हट जाएगी। लेकिन इस बीच दोनों देशों के बीच छिटपुट हमले होते रहे। 3 मई को सीजफायर के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने जहाजों की आवाजाही पर ईरानी नाकेबंदी को देखते हुए प्रोजेक्ट फ्रीडम लॉन्च किया था। इसके तहत जिन जहाजों के पास ईरान की अनुमति नहीं थी उन्हें अमेरिकी सेना की सुरक्षा में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पार करवाया जाता था। इस प्रोजेक्ट के शुरू होने के बाद 4 मई से ही ईरान ने अमेरिकी सेना पर हमले शुरू कर दिए, क्योंकि वो ईरान की अनुमति लिए बिना जहाजों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पार करवा रहे थे। इस हमले का बदला अमेरिका ने 25 मई को लिया। उस दिन अमेरिकी सेना ने ईरान के मिसाइल ठिकानों पर बमबारी की। फिर अगले दिन यानी 26 मई को ईरान ने दावा किया उन्होंने एक अमेरिकी रीपर ड्रोन मार गिराया है। इसके जवाब में 27 मई को अमेरिकी सेना ने ईरान के कुछ और रणनीतिक ठिकानों पर फिर से हमले किए। सीजफायर के बावजूद होने वाली इन छोटी छोटी झड़पों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर नियंत्रण की नूरा कुश्ती की तरह देखा गया। ईरान का मानना था कि जो भी जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से गुजरे वो ईरान के बताए रास्ते और उनकी अनुमति के साथ ही जाए। भले ही सीज फायर था लेकिन ईरान यही चाहता था। सीज फायर से पहले ईरान केवल उन्हीं देशों के जहाजों को जाने देता था जो देश उसके साथ थे। सीज फायर के बाद उसने सभी जहाजों को जाने तो दिया लेकिन अनुमति लेने वाला नियम नहीं बदला। वो चाहता था कि सारे जहाज उसकी निगरानी में ही निकलें। ऐसा न करने वाले जहाजों पर वो हमले करता रहा। इन्हीं हमलों से गुस्साई अमेरिकी सेना बार बार पलटवार करती थी, हालांकि ये पलटवार कभी बड़े पैमाने पर नहीं किए गए थे। ये वैसी ही स्थिति थी कि तुम जितना मारोगे हम भी उतना ही मारेंगे। अमेरिका कहता रहा कि अगर ईरान हॉर्मूज से गुजरने वाले जहाजों पर हमले करेगा तो अमेरिका भी उन पर हमले जरूर करेगा। इसके बावजूद ईरान अनुमति वाली शर्त से पीछे नहीं हटा। लेकिन इस बार की स्थिति थोड़ी अलग है। हालांकि वजह पुरानी वाली ही है। 6 जुलाई को ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर रहे मार्शल आइलैंड, सऊदी अरब और लाइबेरिया के झंडे वाले जहाजों पर हमला किया और इस पर अमेरिका ने पलटवार में पहले की तरह छोटे हमले नहीं किए। उसने इन हमलों को एमओयू का उल्लंघन बताया, क्योंकि 17 जून को जब दोनों देशों के बीच एमओयू साइन हुआ था तब से ये झड़पें बंद हो गई थी और स्थायी शांति के संकेत मिलने लगे थे। अब जब ईरान ने एमओयू का उल्लंघन किया तो अमेरिका भड़क गया। बदला लेने के लिए अमेरिकी सेना ने इस बार छोटे हमले नहीं किए बल्कि लगातार 2 दिनों तक भीषण बमबारी की। पिछले 2 दिनों में अमेरिकी सेना ने कहां कहां हमले किए वो भी हम आपको दिखाते हैं। इन हमलों को अमेरिका की बड़ी रणनीति का हिस्सा माना गया। मुख्य रूप से अभी तक लड़ाई का केंद्र स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज रहा है, इसीलिए अमेरिका का टारगेट भी इसके आसपास ही है, जैसे खर्ग आइलैंड, लवान आइलैंड, अबू मूसा आइलैंड, केशम आइलैंड, बुशहर, बंदर अब्बास, कोहेतास्क, पोर्ट सिरिक, जास्क, कुनार्क, ईरान शहर और चबहार। ये वो इलाके हैं जिनकी मदद से ईरान फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के क्षेत्र पर अपना नियंत्रण बनाता है। इन्हीं के दम पर वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करने की ताकत रखता है। लेकिन इस बार उसने सांकेतिक रूप से अपनी शक्ति दिखाते हुए अक्काला रेलवे ब्रिज और मशहद के रेलवे ब्रिज पर भी अटैक किया है। ये वो इलाके हैं जो ईरान के उत्तर में है। इन हमलों के जरिए अमेरिका ने बताया कि उनकी पहुंच ईरान के हर क्षेत्र पर है और उनके हमले अब केवल सैन्य ठिकानों तक सीमित नहीं रहेंगे। 8 जुलाई को अमेरिका ने जो हमला किया था उसमें उन्होंने मशहद के रेलवे ब्रिज को टारगेट किया था। मशहद वो जगह है जहां आज ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामेनेई को सुपुर्द खाक किया गया है। यानी अमेरिका का ये हमला ईरान को एक धमकी की तरह भी था। धमकी ये कि अगर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से नियंत्रण नहीं छोड़ा तो खामेनेई का अंतिम संस्कार कार्यक्रम भी खतरे में आ सकता है। IRGC ने इस हमले को लेकर अमेरिका पर आरोप भी लगा दिए कि वो अली खामेनेई के अंतिम संस्कार के कार्यक्रम को प्रभावित करने की साजिश कर रहा है। अमेरिकी सेनाओं ने इस बार IRGC की छोटी हमलावर बोट्स को निशाना बनाया। इन्हीं बोट्स के जरिए IRGC हॉर्मुज क्षेत्र पर नियंत्रण करता है। अमेरिकी सेना का दावा है उन्होंने करीब 60 बोट्स को तबाह किया है।
1: वो

0: अमेरिकी सेना के इन हमलों के जवाब में ईरान ने कुवैत और बहरीन पर हमले किए, लेकिन इन हमलों से कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। इसकी एक वजह यह है कि ईरान की लीडरशिप का फोकस अपने सुप्रीम लीडर अली खामेनेई के अंतिम संस्कार कार्यक्रम में रहा और इसीलिए बड़े पैमाने पर पलटवार नहीं किए गए। लेकिन आज ये कार्यक्रम खत्म हो गया है और ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाघेर गालिबाफ की माने तो ईरान पलटवार की बड़ी तैयारी कर रहा है। मोहम्मद बाघेर गालिबाफ ने अमेरिकी हमलों के जवाब में एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि अमेरिका अब भी नहीं सीखा कि दादागिरी दिखाना या वादे तोड़ना मुफ्त में नहीं आता। उनका मतलब यह था कि अमेरिका ने अगर ईरान पर हमला किया है तो उसका जवाब उसे हमले से ही मिलेगा। गालिबाफ ने साफ शब्दों में कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ईरानी शर्तों और उसकी बनाई व्यवस्था पर ही खुलेगा, अमेरिकी धमकियों से नहीं। सीज फायर के बाद यह पहली बार है जब ईरान की ओर से अमेरिका को इस तरह की धमकियां दी जा रही हैं। दरअसल हमलों की तीव्रता को देखते हुए ईरान की लीडरशिप को पता चल गया कि अमेरिका कुछ बड़ा करने वाला है। अमेरिकी न्यूज पोर्टल एक्सियोस की एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका लंबे युद्ध के इरादे से एक बार फिर उतर गया है, यानी अमेरिका के लिए ईरान वॉर का सीजन 2 शुरू हो गया है और यह युद्ध अगले कई हफ्तों तक चल सकता है। एक्सियोस ने अपनी रिपोर्ट में अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से बताया है कि व्हाइट हाउस ने ईरान के खिलाफ मल्टी वीक मिलिट्री कैंपेन शुरू किया है, यानी अमेरिकी सेना अगले कुछ हफ्तों तक ईरान के खिलाफ सैन्य ऑपरेशन जारी रखेगी। जिस तरह के हमले पिछले 2 दिनों में हुए हैं उसको देखते हुए ये कुछ हद तक सही लगता है। अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा सीज फायर रद्द करने की घोषणा के बाद आई इस रिपोर्ट ने पूरी दुनिया को टेंशन में डाल दिया है। 28 फरवरी से 8 अप्रैल तक ईरान वॉर का सीजन 1 आया था। 40 दिनों के सीजन 1 में आपने देखा 3,468 मौतें, जिनमें 1,460 मासूम नागरिक थे। इसके अलावा आपने देखा ईरान का 25,79,000 करोड़ रुपए का नुकसान। आपने देखा क्रूड ऑयल की कीमतों को $70 प्रति बैरल से $120 प्रति बैरल तक पहुंचते हुए। आपने 1,00,000 रिहायशी इमारतों, 23,500 व्यावसायिक इमारतों और 339 अस्पतालों को ध्वस्त होते हुए भी देखा। अब 7 जुलाई से ईरान वॉर का सीजन 2 शुरू हो गया है। अब तक ईरान के 170 ठिकानों पर हमले हो चुके हैं। अब आगे क्या क्या होगा इस सवाल से पूरी दुनिया दहशत में है। एक्सियोस ने अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से जो रिपोर्ट दी है उससे एक बात और पता चली है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप जहाजों पर हुए ईरान के हमलों से बहुत ज्यादा गुस्से में। आपको याद होगा यह गुस्सा नेटो की बैठक में डोनाल्ड ट्रंप के मुंह से किस तरीके से बाहर आया था।
1: To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is? They're scum. They're sick people. They're led by sick people. And they're vicious, violent people. And if they had a nuclear weapon, they'd use it. As far as I'm concerned, it's over.
0: अमेरिकी अधिकारियों ने एक्सियोस को बताया कि ईरान को अमेरिका से जबरदस्त मार लगेगी ताकि उन्हें पता चले कि अमेरिका मजाक नहीं कर रहा। अधिकारियों के अनुसार तेहरान की अगली चाल से पता चलेगा कि उनका क्या हाल होने वाला है। अधिकारियों के अनुसार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सभी जहाजों की सामान्य आवाजाही होना पहली प्राथमिकता है और ईरान की कोशिश है कि वो इस पर नियंत्रण करे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर एक्सियोस के साथ जिन अधिकारियों ने बात की है कुछ वैसी ही बात अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने भी पत्रकारों से कही। जेडी वैंस ने कहा कि डील बहुत आसान है, अगर ईरान जहाजों पर हमला करेगा तो अमेरिका उन्हें तबाह कर देगा। जेडी वैंस ने याद दिलाया कि सीज फायर की शर्त यही थी कि अमेरिकी नाकेबंदी हटेगी और ईरान हॉर्मूज से गुजरने वाले जहाजों पर फायरिंग नहीं करेगा।
2: The basic deal that we cut was, we'll lift our blockade if you stop shooting at ships. But if you shoot at ships, we are going to punch back, and we're going to punch back harder than ever before. That was the deal. They said they would stop shooting at ships. And what happened 24 hours ago? They started shooting at ships again. Now, they were good. They were well-behaved for about a week, but then they started shooting at ships. So the deal is very simple. If they shoot at ships, we're going to knock the hell out of them, and it's that simple, and that's the basic way it's going to work.
0: 6 जुलाई को ईरान द्वारा 3 जहाजों पर हुए हमलों को लेकर डोनाल्ड ट्रंप बहुत गुस्से में हैं। अभी तक वो ये मानते रहे कि ईरान के साथ भले ही छोटी मोटी लड़ाइयां चल रही हैं, लेकिन आखिर में दोनों देश सीज फायर चाहते हैं और इसके लिए बातचीत भी चल रही है। लेकिन ईरान द्वारा हालिया हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप की यह सोच बदल गई। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान को धमकी दे दी कि अगर वो एक हमला करेगा तो उस पर 20 हमले किए जाएंगे।
3: Retribution for last night. They hit actually 3 boats, not 2. And when they hit, we hit back much harder. Another way of doing it. We have many ways we can win, but we've already won militarily. They have very little left, and they want to make a deal so badly. They called a little while ago. They want to make a deal so badly. I just don't know if they're worthy of making a deal. I don't know that they're going to honor the deal. That's the problem. Because it's sort of crazy. To be honest, it's sort of crazy. They're a little bit out of control, but they want to make a deal. Badly.
0: एक्सपर्ट्स को लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान के दो मतलब हैं। पहला ये कि वो ईरान पर दबाव बना रहे हैं और जल्द ही पलट जाएंगे। दूसरा ये कि ईरान के सीज फायर पर वो होपलेस हो चुके हैं और उन्हें लगने लगा है कि ईरान सीज फायर या न्यूक्लियर हथियारों की होड़ छोड़ने को लेकर सीरियस नहीं है। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भी ईरान वॉर सीजन 2 की एक इनसाइड स्टोरी बताई है। इसमें बताया है कि MOU साइन होने के 2 हफ्ते बाद ही ईरान की ओर से हमले किए जाने की खबर ने डोनाल्ड ट्रंप का भरोसा तोड़ दिया। वॉल स्ट्रीट जर्नल के अनुसार ईरान पर हुए ताजा हमलों की पटकथा 6 जुलाई की शाम को लिखी गई थी। उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप तुर्की निकलने की प्लानिंग कर रहे थे क्योंकि 7 और 8 जुलाई को नेटो की बैठक थी। इसी दौरान अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो और रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ अचानक ओवल ऑफिस पहुंच गए। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से बात की और ईरान के नए हमलों के बारे में बताया। अब 6 जुलाई को ही ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से गुजर रहे 3 जहाजों पर हमला किया था। ईरान ने जहाजों पर हमले के लिए एंटी शिप क्रूज मिसाइल और आत्मघाती ड्रोन्स का इस्तेमाल किया था। मार्को रूबियो और पीट हेगसेथ ने ट्रंप को बताया कि जिन जहाजों पर ये हमले किए गए वो जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के दक्षिणी रूट का इस्तेमाल कर रहे थे। ये समुद्री रूट ओमान के समुद्री क्षेत्र से होकर गुजरता है। पिछले काफी समय से अमेरिकी सेना ओमान के तटीय सीमा वाले इसी रूट से जहाजों को सुरक्षा देते हुए हॉर्मूज पार करवा रही थी। इस रूट से उन्हीं जहाजों को ले जाया जा रहा था जिनके पास ईरान की अनुमति नहीं थी। ये ईरान की आधिकारिक सीमा नहीं है, इसीलिए तकनीकी रूप से ईरान इसमें दखल नहीं देता था। लेकिन तनाव बढ़ने के बाद से ईरान ने इस हिस्से से गुजरने वाले जहाजों पर भी हमले शुरू कर दिए थे। इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप ईरान के हमले से गुस्से में आ गए। उनका मानना था कि सीज फायर के बाद ईरान को दूसरे देश की सीमा से गुजर रहे जहाजों पर हमला नहीं करना चाहिए। यही वजह थी कि उन्होंने सीज फायर को लेकर कहा कि उन्हें लगता है कि अब यह खत्म हो चुका है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के अनुसार ईरान पर हमले से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने मार्को रूबियो और पीट हेगसेथ से एक सवाल पूछा था कि क्या उन्हें लगता है कि ईरान सीज फायर को लेकर सीरियस है। इस सवाल के बाद काफी देर तक तीनों के बीच बातचीत हुई और कुछ अन्य अधिकारियों को भी इसमें शामिल किया गया। आखिर में डोनाल्ड ट्रंप इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि ईरान सीज फायर को लेकर गंभीर नहीं है। ईरान के हमले ने डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका दिया। इस हमले से आहत ट्रंप ने सबसे पहले ईरान की तेल बिक्री वाले लाइसेंस को रद्द कर दिया और फिर उन्होंने अमेरिकी सेनाओं को आदेश दिया कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के पास ईरान के सैन्य ठिकानों पर भीषण हमले करें। और इसके बाद अब उन्होंने धमकी दी है कि अगला हमला ईरान के सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर और डीसैलिनेशन प्लांट्स पर होगा। यानी ट्रंप ने ईरान को रिहायशी इमारतों और पीने के पानी से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने की चेतावनी दी है। इस बार के अमेरिकी हमलों ने ईरान ही नहीं भारत की चिंताएं भी बढ़ा दी। अमेरिकी सेना के निशाने पर ईरान का चबाहर पोर्ट भी था। सीज फायर के बाद से यह पहली बार है जब अमेरिका ने चबाहर को निशाने पर लिया है। चबाहर भारत के लिए व्यापारिक और रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। अमेरिकी सेना ने चबाहर पर बड़े पैमाने पर हमला किया है। ईरान की सरकारी मीडिया के अनुसार हमलों के बाद शहर के बड़े हिस्से में बिजली कटौती हुई और स्थानीय लोगों ने कई धमाकों की आवाजें सुनने का दावा किया। जानकारी के अनुसार अमेरिकी सेना के निशाने पर चबाहर में मौजूद सैन्य ठिकाने और पोर्ट पर मौजूद कमर्शियल ठिकाने थे। अमेरिकी हमले में चबाहर पोर्ट का ट्रैफिक कंट्रोल टावर ध्वस्त हो गया है। चाबहार पर पिछली बार अमेरिका ने 28 फरवरी को हमला किया था और तब भी उसने पोर्ट पर अटैक नहीं किया था। 28 फरवरी के बाद चाबहार पर अटैक भी नहीं किए गए। ये पहली बार है जब अमेरिका ने चाबहार पोर्ट पर हमला किया है। अमेरिकी सेना का मानना है कि ईरान चाबहार पोर्ट का रणनीतिक इस्तेमाल कर रहा है। चाबहार पोर्ट ईरान के पूर्वी हिस्से में है जो ओमान की खाड़ी से लगता है। देखा जाए तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से बिल्कुल बाहर की तरफ है। ये ईरान का इकलौता ऐसा समुद्री बंदरगाह है जो गहरे पानी वाले हिस्से में है। यहां से ईरान की पहुंच अरब सागर और हिंद महासागर तक हो जाती है। चाबहार लंबे समय से ईरान की अर्थव्यवस्था की लाइफलाइन रहा है। इसी वजह से भारत ने भी इसमें बड़ा निवेश किया है। अभी तक अमेरिकी सेना मुख्य तौर पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से लगने वाले बंदरगाहों पर हमले कर रही थी, लेकिन चाबहार पोर्ट पर हुए इस हमले के बाद अमेरिका ने ईरान को कड़ा संदेश दिया है। वो ईरान की समुद्री लाइफलाइन को कट कर सकता है और इससे केवल ईरान ही नहीं बल्कि भारत की चिंताएं भी बढ़ गई। दरअसल चाबहार पोर्ट के जरिए भारत का व्यापार पाकिस्तान को बाईपास कर देता है। चाबहार पोर्ट के जरिए भारत अपनी शिपमेंट समुद्री रास्ते से ईरान के चाबहार पहुंचाता है और फिर यहां से अफगानिस्तान और मध्य एशिया के देशों तक व्यापार करता है। इस व्यापारिक मार्ग के होने से पाकिस्तान इसमें बाधा नहीं बनता है। यही वजह है कि भारत के लिए चाबहार पोर्ट एक अहम समुद्री ठिकाना है और इसी वजह से पिछले कई वर्षों से भारत चाबहार पोर्ट पर निवेश भी कर रहा है। चाबहार को विकसित करने के लिए इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड और द पोर्ट्स एंड मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के बीच एक अनुबंध है। इसके तहत भारत और ईरान मिलकर चाबहार पोर्ट के शाहिद बेहिश्ती टर्मिनल को विकसित और इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके तहत भारत अब तक 1146 करोड़ रुपए खर्च कर चुका है। भारत ने चाबहार पोर्ट के विकास के लिए ईरान को 2387 करोड़ रुपए का कर्ज देने की बात भी कही है। चाबहार पोर्ट के लिए भारत और ईरान का गठबंधन चीन और पाकिस्तान के गठबंधन का जवाब माना जाता है। चीन ने पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट को विकसित करने का जिम्मा उठाया। ग्वादर पोर्ट चाइना के सीपैक का हिस्सा है। ईरान के चाबहार पोर्ट और पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट के बीच की दूरी मात्र 170 किलोमीटर है। ये दोनों ही ओमान की खाड़ी से लगते हुए हैं। चीन साल 2013 से ही पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट को विकसित कर रहा है। 2017 में तो पाकिस्तान ने ग्वादर पोर्ट को 40 साल की लीज पर चीन को दे दिया। इस पोर्ट के जरिए चीन की पहुंच ओमान की खाड़ी तक हो गई। चीन की इसी रणनीतिक चाल को टक्कर देने के लिए भारत ने साल 2018 में ईरान के चाबहार पोर्ट को मिलकर विकसित करने की जिम्मेदारी ली। इससे ईरान को भी फायदा हुआ और भारत को भी। ये इकलौता विदेशी बंदरगाह है जिसे भारत विकसित कर रहा है और इस्तेमाल भी कर रहा है। हालांकि अभी तक यह साफ नहीं है कि अमेरिका का हमला चाबहार पोर्ट के शाहिद बेहिश्ती टर्मिनल पर हुआ है या कहीं और, लेकिन चाबहार पोर्ट अगर अमेरिकी सेना के निशाने पर है तो इसका असर आज नहीं तो कल शाहिद बेहिश्ती टर्मिनल पर भी होगा और यह भारत के व्यापारिक नजरिए से अच्छी खबर नहीं होगी। भारत की चिंता चाबहार पोर्ट पर अमेरिकी हमला है और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चिंता यह है कि कहीं ईरान उनके जहाज पर हमला न कर दे। कुवैत ने पिछले साल मई में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक एयरप्लेन गिफ्ट में दिया था। इस प्लेन को कुछ महीने पहले एयरफोर्स वन में शामिल किया गया और नेटो की समिट के लिए ट्रंप इसी एयरप्लेन से तुर्की गए थे। लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप को तुर्की से इंग्लैंड के लिए रवाना होना था तो उन्हें इस प्लेन से नहीं ले जाया गया बल्कि सीक्रेट सर्विस की टीम डोनाल्ड ट्रंप को पुराने वाले एयरफोर्स वन जहाज से लेकर यूके गई। इस बदलाव को लेकर कई तरह के सवाल उठने लगे। यह बदलाव एक ऐसे वक्त में किया गया जब अमेरिका ने ईरान पर बड़ा हमला किया था और एक साथ 80 ठिकानों पर हमला किया था। माना जा रहा है कि सुरक्षा कारणों की वजह से ही डोनाल्ड ट्रंप को नए एयरफोर्स वन के बजाय पुराने वाली ही विमान से ले जाया गया क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से वो ज्यादा सक्षम है। हवाई जहाज बदलने की इस खबर को डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान ने भी हवा दी। एयरफोर्स वन में ही पत्रकारों से बातचीत के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से खुद को खतरा बताया। डोनाल्ड ट्रंप से पत्रकारों ने पूछा कि क्या ईरान की ओर से एयरफोर्स वन को किसी तरह की धमकी मिली है, तो इसके जवाब में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान की हिटलिस्ट में वो पहले नंबर पर है और उनके साथ साथ शायद पत्रकार भी खतरे में हो।
4: Where of any credible threat by Iran against your
5: well, I have a threat all the time. I'm number one on their list before you. But if I go, you go.
3: right?
4: But was there a specific
3: So perhaps,
4: today?
3: Perhaps someday you want to change professions.
0: हालांकि सीएनएन ने अपनी एक रिपोर्ट में ट्रंप के हवाले से बताया कि जहाज को बदलने की वजह सुरक्षा चिंताएं नहीं थी और किसी तरह की तकनीकी खराबी भी नहीं थी, लेकिन यह भी सच है कि ईरान के साथ तनाव बढ़ने के बीच अचानक से अमेरिकी राष्ट्रपति का जहाज बदलना सामान्य बात तो नहीं थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है, उन पर हमेशा खतरा रहता है। डोनाल्ड ट्रंप का यह कहना कि वो ईरान की हिटलिस्ट में है गलत नहीं है। जुलाई 2024 में आसिफ मर्चेंट नाम के एक पाकिस्तानी व्यक्ति को टेक्सास में अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों ने गिरफ्तार किया था। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के अनुसार आसिफ मर्चेंट को ईरान के इशारे पर ट्रंप की हत्या करने के लिए भेजा गया था। वो एक किलर टीम तैयार कर रहा था। मार्च 2026 में आसिफ को हत्या की साजिश का दोषी ठहराया गया। नवंबर 2024 में यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने ट्रंप की हत्या से जुड़ी एक बड़ी साजिश का खुलासा किया। इस साजिश में फरहाद शाकेरी नाम के एक व्यक्ति का नाम सामने आया जो एक ईरानी अधिकारी के संपर्क में था। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के अनुसार फरहाद को ट्रंप की निगरानी करने और चुनाव से पहले उनकी हत्या करने का निर्देश दिया गया था। हालांकि फरहाद अमेरिकी एजेंसियों की गिरफ्त में नहीं आया। जुलाई 2025 में ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामेनेई के सलाहकार मोहम्मद जवाद लारिजानी ने ट्रंप को धमकी दी थी कि अगर ट्रंप ने ऐसा वैसा कुछ किया तो वो अपने बीच रिजॉर्ट पर सनबाथ नहीं ले पाएंगे, क्योंकि जिस दिन वो ऐसा करेंगे उसी दिन एक ड्रोन सीधे उनकी नाभि पर हमला करेगा। हालांकि लारिजानी ईरान युद्ध के दौरान अमेरिकी हमलों में मारे जा चुके हैं, लेकिन एक बात साफ है कि डोनाल्ड ट्रंप गलत नहीं कह रहे हैं। वो ईरान की हिटलिस्ट में टॉप पर है और शायद इसीलिए सीक्रेट एजेंसियां उनकी सुरक्षा से जुड़ी किसी भी टिप को नजरअंदाज नहीं करती। 28 फरवरी के बाद से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कभी शांति दूत बन जाते हैं, कभी दुनिया के सबसे बड़े सेनापति। लेकिन ईरान के मामले में चित भी मेरी पट भी मेरी का इरादा रखने वाले डोनाल्ड ट्रंप की एक न चली। अमेरिका ने ईरान के साथ युद्ध विराम खत्म करके दोबारा हमले की शुरुआत ऐसे समय में की जब ईरान आयतुल्ला अली खामेनेई को सुपुर्द खाक करने के लिए एक विश्व स्तर का बड़ा आयोजन शुरू कर चुका था। खामेनेई के अंतिम संस्कार आयोजन का आज आखिरी दिन था। ईरान के पवित्र मशहद शहर में आयतुल्ला अली खामेनेई को आज सुपुर्द खाक की रस्म निभाई गई। ईरान की प्रेस टीवी के मुताबिक लाखों ईरानी मशहद में अपने सर्वोच्च नेता, सबसे बड़े धर्मगुरु और राजनीति के शिखर पर बैठे रहे अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल हुए। 3 जुलाई को अली खामेनेई के अंतिम संस्कार के आयोजन शुरू हुए थे। ईरान के तेहरान, कोम और इराक के नजफ और करबला के बाद 9 जुलाई को अली खामेनेई का पार्थिव शरीर पहुंचने का अंतिम ठिकाना ईरान का मशहद शहर था। तेहरान, कोम, नजफ, करबला और अब मशहद में अली खामेनेई के लिए अभूतपूर्व भीड़ उमड़ी थी। अमेरिकी अखबार द गार्डियन के अनुसार 6 दिनों के अंतिम संस्कार के आयोजनों में अली खामेनेई के तकरीबन 3 करोड़ समर्थकों के शामिल होने की बात है। अली खामेनेई का पार्थिव शरीर इराक के नजफ हवाई अड्डे से मशहद तक लाया गया। ईरानी वायुसेना के फाइटर जेट ने अली खामेनेई के पार्थिव शरीर को ले जा रहे विमान को एस्कॉर्ट किया। इस विमान में अली खामेनेई के जनाजे के अलावा उनके परिवार के लोग मौजूद थे। अली खामेनेई का जनाजा जब मशहद पहुंचा तो वहां की सड़कें अली खामेनेई की तस्वीरों, प्लैकार्ड और ईरानी झंडे लिए लोगों से पटी पड़ी थी। अली खामेनेई के समर्थक इस्लामिक शासन के समर्थन में क्रांतिकारी नारे लगाते सुने जा सकते थे। अली खामेनेई को सुपुर्द खाक करने के लिए जिस मशहद की मिट्टी को चुना गया वो न केवल ईरान बल्कि दुनिया भर के शिया मुसलमानों के लिए बहुत पवित्र धरती है। मशहद में इमाम रजा की मजार है। 8वें इमाम अली इब्न मूसा अल रिधा यानी इमाम रजा को शिया मुसलमान बहुत सम्मान देते हैं। शिया मान्यताओं के अनुसार इमाम रजा को नवी शताब्दी में तब जहर देकर शहीद कर दिया गया था जब वो खुरासान में थे। मशहद में इमाम रजा की मजार होने से आज इस शहर को ईरान की बड़ी धार्मिक नगरी के तौर पर स्वीकार किया जाता है। ईरान, इराक, लेबनन, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और अरब देशों से लाखों शिया मुसलमान हर साल यहां आते रहे हैं। मशहद में इमाम रजा की मजार होने से मशहद की अहमियत शिया मुसलमानों के लिए इराक के नजफ और करबला जैसी है। इमाम रजा का सुनहरे गुंबद वाला मजार कॉम्प्लेक्स धार्मिक शिक्षा, इस्लामी अध्ययन और शिया विरासत का प्रमुख केंद्र भी है। मशहद में अली खामेनेई को सुपुर्द-ए-खाक करना इसीलिए भी बेहद अहम है क्योंकि मशहद अली खामेनेई की अपनी धरती भी है। 1939 में अली खामेनेई मशहद में ही जन्मे थे। यहाँ के जर्रे जर्रे में अली खामेनेई के अली खामेनेई बनने की कहानी है। यूं समझिए कि मशहद की आबो हवा ने अली खामेनेई का धार्मिक और राजनीतिक विचार पैदा किया। मशहद की संस्कृति अली खामेनेई के व्यक्तित्व के निर्माण की गवाह है। ईरानी इस्लामिक क्रांति के सबसे बड़े चेहरों में से एक अली खामेनेई का अपने गृह नगर में दफन होना एक ऐसा वाक्या है जिसे ईरान का इतिहास याद रखेगा। ईरान में इस बात को स्वीकार करने वालों की कमी नहीं कि आने वाले दशकों और शताब्दियों में अली खामेनेई को अली रजा के बाद दूसरे इमाम की अहमियत हासिल हो सकती है। ईरान की इस पवित्र धरती मशहद में इस्लामिक क्रांति के जनक पहले सुप्रीम लीडर रूहुल्ला खुमैनी को भी दफन नहीं किया गया था। 1989 में उनकी मौत के बाद खुमैनी को तेहरान के दक्षिण में दफन किया गया था। खुमैनी की मजार आज ईरान के लिए राष्ट्रीय महत्व की धरोहर बन चुकी है। खुमैनी की मजार पर लाखों ईरानी हर साल आते हैं। अली खामेनेई की मौत जिन परिस्थितियों में हुई है और जिस तरह ईरान अमेरिका के सामने अड़ा हुआ है, ये परिस्थिति इस्लामिक सत्ता के समर्थकों के लिए नई भावनाओं को जन्म दे चुकी है। इसीलिए धार्मिक नगरी मशहद में अली खामेनेई को दफन किए जाने की अहमियत राजनीतिक और धार्मिक दोनों नजरियों से बहुत बढ़ गई है।

0: अली खामनेई अब इतिहास बन चुके हैं, लेकिन अमेरिका के सामने अपने संघर्ष की आंच जिंदा रखने के लिए ईरान की इस्लामिक सत्ता का समर्थक समाज उनकी मौत को न भूल रहा है और न किसी को भूलने दे रहा है। अली खामनेई को दफन करने से पहले ईरान के मेहर न्यूज एजेंसी ने अली खामनेई की मौत पर ऐसी फुटेज जारी की है जिसे पहले कभी नहीं देखा गया था। 28 फरवरी को जब अमेरिका ने अली खामनेई के कंपाउंड पर हमला किया तो वहां क्या दृश्य बना, ये तस्वीरें उसे दिखा रही हैं। इस वीडियो में मेहर न्यूज ने अपनी प्रोग्रामिंग की है और तस्वीरों पर वॉइस ओवर किया हुआ है। वीडियो के आखिर में अली खामनेई का पुराना वीडियो भी शामिल किया गया है। 28 फरवरी को अली खामनेई के कंपाउंड पर अमेरिका और इजराइल के हमले में अली खामनेई के अलावा उनके परिवार के कई सदस्य, IRGC, ईरानी रक्षा मंत्रालय, साथ ही कई अन्य उच्च पदाधिकारियों की मौत हुई थी। अब आपको प्रधानमंत्री मोदी के ऑस्ट्रेलिया दौरे के बारे में बताएंगे, जहां उनका जबरदस्त स्वागत हुआ। क्रिकेट के मैदान पर भारत और ऑस्ट्रेलिया कट्टर प्रतिद्वंद्वी हैं, लेकिन कूटनीति की पिच पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज एक साथ उतरे तो दोनों के बीच बेहतरीन तालमेल के साथ लंबी साझेदारी की रणनीति नजर आई। इस दौरान भारत और ऑस्ट्रेलिया के समझौतों के ऐलान के चौके छक्के तो लगे ही, दोनों देशों ने कूटनीति के हर क्षेत्र में कीर्तिमान बना दिए। दुनिया के कई देशों में भारतीय समुदाय के साथ संवाद के बड़े आयोजनों को संबोधित कर चुके पीएम मोदी ने एक रिकॉर्ड मेलबर्न में भी बनाया, जहां उन्हें सुनने के लिए मार्वल स्टेडियम 30,000 भारतवंशियों से खचाखच भरा था।
1: इक्कीसवीं सदी का भारत आज विकसित होने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। पिछले 12 वर्षों में भारत के 2 दर्जन से अधिक शहरों में मेट्रो नेटवर्क पहुंच चुका है। घर में दूध ऑस्ट्रेलिया वाला आता है, लेकिन चाय भारत वाली बनती है। हम दोनों देशों की साझेदारी को एक और सेक्टर मजबूती देता है, ये सेक्टर है स्पोर्ट्स, खेलकूद। मुझे पूरा विश्वास है स्पोर्ट्स के क्षेत्र भी ऑस्ट्रेलिया और भारत की पार्टनरशिप का और विस्तार होके रहेगा।

अब आपको साल 2010 की वो घटना बताते हैं जब अखबारों की हेडलाइंस थी कि ऑस्ट्रेलिया ने भारत को यूरेनियम देने से इनकार कर दिया। और अब आप दूसरी तस्वीर देखिए जो प्रधानमंत्री मोदी के मौजूदा दौरे से जुड़ी है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया का मीडिया भारत के साथ यूरेनियम डील की तारीफ प्रधानमंत्री मोदी को रॉकस्टार बताते हुए कर रहा है। ये वो ऐतिहासिक डील है जो आने वाले दशकों में भारत की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल सकती है। भारत को करीब 2 दशक से यूरेनियम की निर्बाध सप्लाई का इंतजार था, अब उससे अनिश्चितता के बादल छंटते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच यूरेनियम सप्लाई को लेकर एक ऐसी महाडील पर मुहर लग चुकी है जो भारत को ऊर्जा के क्षेत्र की बड़ी चिंताओं को खत्म कर सकती है। वास्तव में आने वाला वक्त उसका होगा जिसके पास क्लीन एनर्जी की चाबी होगी, और इस चाबी का सबसे बड़ा हिस्सा ऑस्ट्रेलिया के पास है। दुनिया के कुल यूरेनियम भंडार का करीब 28% हिस्सा अकेले ऑस्ट्रेलिया की धरती के नीचे दबा है। आंकड़ों में कहें तो लगभग 17 लाख टन यूरेनियम। दूर दूर तक कोई भी देश ऑस्ट्रेलिया के इस आंकड़े के आसपास भी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में साल 1954 से ही यूरेनियम का खनन हो रहा है। मौजूदा वक्त में वहां 3 बड़ी खदानें एक्टिव हैं। भारत के लिए यूरेनियम पाने का यह सफर बिल्कुल भी आसान नहीं रहा है। इस कहानी की शुरुआत साल 2005 में हुई थी जब भारत अमेरिका के बीच सिविल न्यूक्लियर डील की प्रक्रिया शुरू हुई थी। इसके तहत भारत बिजली बनाने के लिए दुनिया से परमाणु ईंधन यानी यूरेनियम खरीद सकता था, लेकिन सवाल यह था कि यह परमाणु ईंधन आएगा कहां से। 2014 में ऑस्ट्रेलिया के साथ यूरेनियम सप्लाई को लेकर सहमति तो बनी, लेकिन दोस्ती के बड़े बड़े वादों और मजबूत इरादों के बाद भी ऑस्ट्रेलिया यूरेनियम की वास्तविक सप्लाई शुरू करने से हिचकता रहा। यानी 12 साल बाद भी ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम सप्लाई शुरू नहीं हो पाई। असल में ऑस्ट्रेलिया परमाणु अप्रसार संधि को लेकर बेहद सख्त है। वो आश्वस्त होना चाहता था कि उसके यूरेनियम का इस्तेमाल सिर्फ शांतिपूर्ण बिजली उत्पादन के लिए हो, न कि हथियारों के लिए। लेकिन कड़े कूटनीतिक प्रयासों और परमाणु सुरक्षा और शांति विधेयक पारित होने के बाद ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम मिलने का रास्ता पूरी तरह खुल गया। अब समझिए कि भारत को यूरेनियम की इतनी प्रचंड जरूरत क्यों है। भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। हमारी ऊर्जा जरूरतें अब सिर्फ घरों में पंखे और लाइट जलाने तक सीमित नहीं है। भारत आज AI, सुपर कंप्यूटर और डेटा सेंटर्स का हब बन रहा है। इन आधुनिक उद्योगों को 24 घंटे बिना 1 सेकंड के कट के भारी मात्रा में बिजली चाहिए होती है। अब तक भारत अपनी 70% से ज्यादा बिजली के लिए कोयले पर निर्भर रहा है, लेकिन पर्यावरण को बचाना है और कार्बन एमिशंस को जीरो करना है तो हमें कोयले से पीछा छुड़ाना होगा। सोलर और विंड एनर्जी क्लीन एनर्जी है, लेकिन वो मौसम पर भी निर्भर करते हैं। ऐसे में न्यूक्लियर एनर्जी एकमात्र ऐसा जरिया है जो बिना प्रदूषण फैलाए लगातार और भारी मात्रा में बिजली दे सकता है। ऑस्ट्रेलिया से आने वाला ये यूरेनियम भारत के मौजूदा और भविष्य में बनने वाले दर्जनों परमाणु संयंत्रों के लिए संजीवनी का काम करेगा। अभी भारत में 7 अलग अलग जगहों पर 24 एटॉमिक पावर स्टेशन काम कर रहे हैं जो देश को परमाणु ऊर्जा से बिजली सप्लाई कर रहे हैं। 2014 में न्यूक्लियर पावर से बिजली उत्पादन की क्षमता 4.7 गीगावाट थी, जो 2025 में 84% बढ़कर 8.4 गीगावाट हो चुकी है। लेकिन इसके बाद भी कुल बिजली उत्पादन में परमाणु बिजली की हिस्सेदारी 3% के आसपास ही रही है। 2031-32 तक परमाणु ऊर्जा से 22.38 गीगावाट बिजली उत्पादन का अनुमान है, और भारत ने 2047 तक परमाणु ऊर्जा 100 गीगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा है, और ये यूरेनियम की निर्बाध आपूर्ति से ही संभव हो पाएगा। जब भारत अपने 70% से ज्यादा बिजली उत्पादन के लिए कोयले पर निर्भर है, तब ये समझना भी बहुत जरूरी है कि सिर्फ 1 ग्राम यूरेनियम से उतनी ही बिजली पैदा की जा सकती है जितनी 2000 किलोग्राम उच्च गुणवत्ता वाले कोयले को जलाने से मिलती है। यानी एक छोटी सी यूरेनियम की गोली एक मिडिल क्लास फैमिली को सालों तक बिजली दे सकती है। यही वजह है कि इसे दुनिया का सबसे कीमती ईंधन माना जाता है। इसीलिए भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ यह समझौता 2 देशों के बीच व्यापार का सौदा नहीं है,
बल्कि ये भारत की एनर्जी सिक्योरिटी की गारंटी है। 2047 के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए जिस असीमित और स्वच्छ शक्ति की जरूरत है, आज उसका रास्ता साफ हो गया है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ समझौता यूरेनियम या व्यापार की औपचारिकता नहीं है, बल्कि ये अंतरिक्ष के असीम विस्तार से समुन्दर की अतल गहराई तक और क्रिटिकल मिनरल्स से लेकर डिफेंस सप्लाई चेन तक

भेद पाना चीन जैसे विस्तारवादी ताकत के लिए मुमकिन नहीं होगा। आज इंडो पैसिफिक यानी हिंद प्रशांत क्षेत्र जियोपॉलिटिक्स का सबसे संवेदनशील अखाड़ा है। एक तरफ है चीन जो समुद्र में अपनी दादागिरी के दम पर नए नियम लिखना चाहता है, दूसरी तरफ है भारत और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश जो नियमों के आधार पर इंटरनेशनल ऑर्डर के पैरोकार है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के समझौते से जुड़े बयानों में भले ही चीन का नाम सीधे तौर पर न लिया गया हो, लेकिन बैकग्राउंड में अदृश्य किरदार के रूप में ड्रैगन का खतरा साफ महसूस किया जा सकता है। भारत और ऑस्ट्रेलिया की जुगलबंदी इसी खतरे का मुकम्मल जवाब है। हिंद महासागर के मुहाने पर भारत है तो प्रशांत महासागर के द्वार पर ऑस्ट्रेलिया। दोनों देशों के लिए समुद्री सुरक्षा का सवाल है। समुद्र में चीनी नौसेना के आक्रामक रुख के अलावा एक और बड़ा संकट है, वो है चीन के जासूसी और फिशिंग ट्रॉलर्स। चीन के ये फिशिंग ट्रॉलर्स साधारण नावें नहीं है, बल्कि ये चलती फिरती समुद्र की फैक्ट्रियां हैं। हजारों टन वजनी ये जहाज समुद्र से भारी मात्रा में मछलियां अवैध रूप से निकाल लेते हैं। इनमें वहीं पर प्रोसेसिंग, पैकिंग, सप्लाई का पूरा सिस्टम होता है। चीन की इस आर्थिक दादागिरी की वजह से समुद्र में मछलियों के पनपने का चक्र टूट रहा है। स्थानीय मछुआरों के लिए आजीविका का संकट खड़ा हो रहा है और छोटे देश चीन से डिब्बा बंद मछली खरीदने पर मजबूर भी हो रहे हैं। यानी चीन अपने लोगों का पेट भरने के लिए दूसरों की रोजी रोटी छीन रहा है। इसी का मुकाबला करने के लिए भारत और ऑस्ट्रेलिया मैरिटाइम सिक्योरिटी कोलैबोरेशन रोडमैप और मैरिटाइम डोमेन अवेयरनेस पर काम कर रहे हैं। अब दोनों देश रियल टाइम डेटा शेयर करेंगे कि समुद्र में कौन सी सबमरीन घूम रही है, कितने जहाज आ रहे हैं, किस देश के हैं। इसके जरिए समुद्र में होने वाली चीनी चालाकियों पर भी सख्त निगरानी रखी जाएगी। चीन की घेराबंदी के लिए भारत ऑस्ट्रेलिया अकेले नहीं है, बल्कि वो क्वाड को और मजबूत कर रहे हैं। वही क्वाड जिसको लेकर कई लोग कहने लगे थे कि यह खत्म हो रहा है, लेकिन अब भारत उसे मजबूत कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की हालिया मुलाकातों का कैलेंडर इसकी गवाही दे देता है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। जापान की प्रधानमंत्री से उन्होंने दो बार भेंट की, एक बार फ्रांस में, फिर वो भारत दौरे पर आई। और अब ऑस्ट्रेलिया में अल्बनीज के साथ रणनीतिक मंथन हुआ, यानी करीब तीन हफ्तों में क्वाड के सभी शीर्ष नेताओं से मुलाकात। इन मुलाकातों से पहले भारत ने क्वाड विदेश मंत्रियों की सफल मेजबानी भी की थी। भारत सिर्फ क्वाड तक सीमित नहीं है, बल्कि वो हिंद महासागर के पड़ोसियों के बीच तालमेल की धुरी भी बन रहा है। ये देखना दिलचस्प है कि पीएम मोदी इंडोनेशिया के रास्ते ऑस्ट्रेलिया पहुंचे, जो ये भी दिखाता है कि चीन को काउंटर करने के लिए भारत एक मजबूत स्ट्रेटेजिक ट्रायंगल बना रहा है। तभी तो प्रधानमंत्री मोदी के जकार्ता दौरे में इंडोनेशिया ने भारत से ब्रह्मोस और अस्त्र जैसी मिसाइल खरीद का फैसला किया है, तो वहीं ऑस्ट्रेलिया भी भारत के साथ रक्षा साझेदारी बढ़ा रहा है। इतना ही नहीं, भारत इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर रणनीतिक संवाद का त्रिकोण बना रहा है। भारत और ऑस्ट्रेलिया की सेनाएं अब सिर्फ शांतिकाल के अभ्यास नहीं कर रही हैं, बल्कि वास्तविक युद्ध जैसे हालात के लिए खुद को तैयार कर रही हैं। समझौते के तहत दोनों देश एक दूसरे के सैन्य ठिकानों और हवाई पट्टियों का इस्तेमाल कर सकेंगे। भारतीय लड़ाकू विमान और नौसैनिक जहाज ऑस्ट्रेलिया के रणनीतिक ठिकानों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मकसद दोनों देशों के हथियार, टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन सिस्टम को एक दूसरे के अनुकूल बनाना है, ताकि युद्ध की स्थिति में दोनों सेनाएं बिना किसी रुकावट के मिलकर काम कर सकें। भारत और ऑस्ट्रेलिया का समझौता हथियारों की खरीद और बिक्री तक सीमित नहीं है। युद्ध की स्थिति में हथियारों और कल पुर्जों की कमी न हो, इसके लिए दोनों देशों की रक्षा कंपनियां मिलकर जॉइंट प्रोडक्शन और मजबूत डिफेंस सप्लाई चेन का निर्माण करेंगी। आज के दौर में जंग सिर्फ बारूद से नहीं, टेक्नोलॉजी से जीती जाती है। स्मार्टफोन, सेमीकंडक्टर, रक्षा उपकरण और ईवी, इन सब के लिए लिथियम, कोबाल्ट, रेयर अर्थ मिनरल्स की जरूरत है। फिलहाल क्रिटिकल मिनरल्स के 70% बाजार पर चीन का कब्जा है, इसे तोड़ना बेहद जरूरी है। लिथियम के उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया दुनिया में सबसे आगे है, वो रेयर अर्थ मिनरल्स के मामले में संपन्न देशों में है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ क्रिटिकल मिनरल्स समझौता भारत में भविष्य की इलेक्ट्रॉनिक्स और ईवी इंडस्ट्री के लिए गेम चेंजर है। यह सीधे तौर पर चीन की सप्लाई चेन ब्लैकमेलिंग को खत्म करने की दवाई भी है।
समुंदर और जमीन के बीच तीसरा मोर्चा है।

0: डिजिटल दुनिया। अब भारत और ऑस्ट्रेलिया ने तय किया है कि अब दोनों देश साइबर क्राइम और हैकर्स से निपटने के लिए हाथ मिलाएंगे। इतना ही नहीं, पहलगाम के आतंकी हमले का घाव झेलने वाला भारत और बोंडाई बीच आतंकी हमले से घायल ऑस्ट्रेलिया मिलकर न केवल आतंकवाद और संगठित अपराध के खिलाफ लड़ेंगे, बल्कि ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन और टेरर फंडिंग को रोकने के लिए भी दोनों देशों की खुफिया एजेंसियां रियल टाइम इनपुट साझा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज की मुलाकात के दौरान एक बेहद महत्वपूर्ण और रणनीतिक ऐलान हुआ। ऑस्ट्रेलियाई पीएम अल्बनीज ने घोषणा की है कि भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन यानी गगनयान को सफल बनाने के लिए ऑस्ट्रेलिया अपने स्ट्रेटेजिक आइलैंड कोकोस कीलिंग आइलैंड पर एक टेम्पररी स्पेस ट्रैकिंग टर्मिनल बनाने जा रहा है। जब भारत का गगनयान अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर पृथ्वी के चक्कर काटेगा तो हिंद महासागर के ऊपर से गुजरते समय भारत से उसका सीधा संपर्क टूटने का खतरा रहता है। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया का कोकोस कीलिंग आइलैंड ठीक उसी रूट के नीचे आता है। वहां बनने वाला ये ट्रैकिंग स्टेशन इसरो के वैज्ञानिकों को गगनयान के क्रू मॉड्यूल पर हर पल पैनी नजर रखने और पल पल का डेटा सीधे बेंगलुरु कंट्रोल सेंटर भेजने में मदद करेगा। इसकी अहमियत को इस बात से भी समझा जा सकता है कि ये कोकोस कीलिंग आइलैंड्स भारत के स्पेस पोर्ट श्रीहरिकोटा से 2800 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में है, यानी ठीक ऐसी जगह पर जहां से लॉन्च के बाद अंतरिक्ष यान बंगाल की खाड़ी के ऊपर उठने के बाद अपने प्रक्षेपण मार्ग पर होता है और उसकी निगरानी सबसे महत्वपूर्ण होती है। गगनयान मिशन के लिए यह और भी जरूरी है क्योंकि इसके साथ भारत अपने अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने वाला है। यह घोषणा ऐसे वक्त में हुई है जब इसरो ने गगनयान मिशन के लिए एक और मील का पत्थर छू लिया है। मध्य प्रदेश के श्योपुर में वायुसेना के IL-76 मालवाहक विमान की मदद से 2.5 किलोमीटर की ऊंचाई से गगनयान के मुख्य पैराशूट का सफल ड्रॉप टेस्ट किया गया। ये वही पैराशूट सिस्टम है जो अंतरिक्ष से लौटते वक्त हमारे अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षित लैंडिंग सुनिश्चित करेगा। तो आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे।
1: बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच बड़ा सनातनी साबित करने की लड़ाई चल रही है। समाजवादी पार्टी कह रही है कि वो सनातनी है, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बता रहे हैं कि विकास का जो पैसा आज सनातन की रक्षा के लिए खर्च किया जा रहा है वो समाजवादी सरकार में कब्रिस्तानों पर खर्च किया जाता था। इन सबके बीच वक्फ को लेकर भी खींचतान यूपी में शुरू हो चुकी है।
2: बीजेपी के लोग किसी भी सीमा तक झूठा प्रचार कर सकते हैं।
3: समाजवादी पार्टी के लोगों को तो ठेके पट्टे से ही फुर्सत नहीं है।
4: अयोध्या में चढ़ावा चोरी क्या हुई? उत्तर प्रदेश में बीजेपी की चुनावी राजनीति के पौबारा हो गए। महीने भर में कांग्रेस और समाजवादियों ने जितनी बार राम का नाम नहीं लिया होगा उतनी बार वक्फ बाबर कब्रिस्तान हो चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ धुआंधार रैलियां और कार्यक्रम कर रहे हैं। सैकड़ों करोड़ की योजनाओं की सौगात जिले जिले दी जा रही है और इसके साथ ही विपक्ष पर मुस्लिम परस्त, मुगल परस्त, मौका परस्त होने की सियासी बौछार चल रही है।
3: आज के समाजवादी राम से दूरी बनाते हैं, बाबर को अपना आदर्श मानते हैं, औरंगजेब को अपना आदर्श मानते हैं, राम और कृष्ण को नहीं मानते।
5: अंतर यही है, बीजेपी की सरकार आई तो अब पैसा मंदिरों के विकास के लिए धामों के सुंदरीकरण में खर्च हो रहा है और समाजवादी पार्टी के समय वही पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल के लिए चला जाता था।
3: वक्फ के नाम पे हजारों एकड़ लैंड बेच भी दी गई, वारा नारा किया गया। ये सीधे सीधे डकैती थी, इसके नाम पर एक भी बार समाजवादी पार्टी नहीं बोली, एक भी बार कांग्रेस नहीं बोली, बल्कि जब मोदी जी ने इसके खिलाफ कानून बनाया, उस लूट के खिलाफ कानून बनाया, तो इन लोगों ने आंदोलन किया।
4: एक तरफ समूचा विपक्ष राम मंदिर में चोरी को लेकर हमलावर था, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वक्फ में घोटालों का मुद्दा उठाया और अब उसी लाइन को यूपी के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ने और आगे बढ़ा दिया।
6: उत्तर प्रदेश पे भी वक्फ बोर्ड, सुन्नी वक्फ बोर्ड जो है इस समय वर्तमान में रिक्त है। आने वाले दिनों में जब सुन्नी वक्फ बोर्ड का गठन होगा तो जो वक्फ अधिनियम संशोधन अधिनियम के अनुसार जो गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन के अनुसार उत्तर प्रदेश में भी उस अधिनियम के माध्यम से वक्फ के बोर्ड का गठन होगा, जिसमें पिछड़े मुसलमानों को रखा जाएगा, मुस्लिम महिलाओं को रखा जाएगा, ऐसे हमारे हिंदू भाई समाज के दो भाइयों को रखा जाएगा। जो भी उस प्रावधान में जो भी गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन के अनुसार ही आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में भी वक्फ बोर्ड के फॉर्मेशन होगा।
4: अगर ऐसा होता है तो एमपी के बाद उत्तर प्रदेश देश का दूसरा राज्य होगा जो वक्फ बोर्ड में गैर मुसलमान सदस्य रखेगा।
7: मुझे लगता है कि ये हमारे जो फंडामेंटल राइट हैं और हमारे जो मजहबी आजादी हमें दी गई है, यकीनी तौर पर उसके साथ कहीं ना कहीं सीधा टकराव है, इसलिए हुकूमत को अपने इस फैसले पर नजरसानी करने की जरूरत है।
4: हालांकि उत्तर प्रदेश में मौजूदा शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन का कहना है कानून संसद से बना हुआ है तो उसका पालन अनिवार्य है, लेकिन सुन्नी समुदाय के मौलानाओं का कहना है वक्फ संशोधन कानून के कुछ प्रावधानों पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है और मामला कोर्ट में लंबित, लिहाजा अभी ऐसा नहीं करना चाहिए। वैसे यूपी में फिलहाल दो वक्फ बोर्ड, सुन्नी वक्फ बोर्ड और शिया वक्फ बोर्ड। दोनों बोर्ड की संरचनाएं कुछ ऐसी कि दोनों बोर्ड में 11-11 सदस्य होते हैं, जिसमें अध्यक्ष के अलावा मुस्लिम सांसद, मुस्लिम विधायक, मुस्लिम विधान परिषद सदस्य, इस्लामिक विद्वान और मतवल्लियों के प्रतिनिधि होते हैं। इसके अलावा सरकारी अधिकारी सीईओ होता है, यानी अभी की व्यवस्था में गैर मुस्लिम सदस्य वक्फ बोर्ड में नहीं होते, लेकिन वक्फ संशोधन बिल के बाद, नई व्यवस्था के बाद वक्फ बोर्ड में कम से कम दो गैर मुस्लिम सदस्य अनिवार्य हैं। इसके अलावा दो मुस्लिम महिला सदस्य, पसमानदा प्रतिनिधि, सांसद, विधायक, बार काउंसिल के सदस्यों में से एक एक का सीधे मनोनयन होगा, यानी पहले चुनाव होता था, उन्हें अब मनोनीत किया जाएगा।
8: जो चंदा और चढ़ावा में लूट का मुद्दा है, उस मुद्दे से जनता का ध्यान हट जाए, हर समस्या का समाधान मुसलमान है भारतीय जनता पार्टी की, तो अब फिर से मुसलमान को सामने लाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया जा रहा है। मुसलमान मुसलमान मुसलमान मुसलमान, हर समस्या का समाधान मुसलमान है भारतीय जनता पार्टी का, ये प्रयास को सफल होने वाला नहीं।
4: यूपी में सुन्नी वक्फ बोर्ड इसी साल 15 मार्च को भंग हुआ है, 6 महीने के अंदर इसका पुनर्गठन जरूरी है, यानी चुनाव से ठीक पहले सितंबर 2026 तक यूपी में सुन्नी वक्फ बोर्ड का गठन होगा, जिसमें यूपी सरकार हिंदू समुदाय के दो सदस्यों को रखने की तैयारी कर चुकी है। दरअसल इसी हफ्ते मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी राज्य वक्फ बोर्ड का ऐलान किया है, जिसमें 10 सदस्यों में दो सदस्य हिंदू हैं। इसके बाद उत्तर प्रदेश में से लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई। संतोष शर्मा के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक।
1: बारिश इस वक्त के मौसम में वो अपराधी है जिस पर हर राज्य के हर दल की सरकार ठीकरा फोड़कर अपनी जवाबदेही से बच जाना चाहती है। जैसे महाराष्ट्र में ही करीब 7000 करोड़ रुपए की लागत वाले और हाल ही में शुरू किए गए मुंबई पुणे मिसिंग लिंक प्रोजेक्ट पर भारी बारिश के कारण जब भूस्खलन हुआ तो सवाल उठा कि इसे इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना बताया जा रहा था, वहां इतनी खामियां हैं। सवाल उठा तो मुख्यमंत्री विधानसभा में बोलते बोलते मर्यादा तोड़ने लगे।
9: हमारे जयंत राव जी ने सही बात कही, जिनको कुत्ता नहीं पोछता वो आजकल सोशल मीडिया पर आकर सबको गाली देते हैं, मुख्यमंत्री को भी गाली देते हैं। ऐसे कुछ भाड़े के टट्टे इस मिसिंग लिंक के बारे में भी पैसा ले लेकर सोशल मीडिया पर लिख रहे थे, उनको भी कह देना चाहता हूं, अगर महाराष्ट्र का अपमान करोगे छोड़ूंगा नहीं। तो गाली देते हैं।
4: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस गुस्से में हैं। गर्म तवे पर किसी ने छन्न से पानी का छींटा मारा ऐसे दिखते हैं, लेकिन क्यों? बात 3 दिन पुरानी है। मिसिंग लिंक के नाम से मशहूर मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे जो करीब 2 महीने पहले ही चालू हुआ, जिसे बनाने में जनता के 6,695 करोड़ रुपए लगे, जिस मेगा प्रोजेक्ट को इंजीनियरिंग का बेजोड़ नमूना कहा गया, तेज बारिश के बाद भूस्खलन से उसी नायाब इंजीनियरिंग वाले मिसिंग लिंक पर पत्थर टूट पड़े। भूस्खलन के बाद यहाँ कुछ देर तक रास्ता बंद रहा, लोगों ने सवाल सियासत से लेकर सोशल मीडिया तक पर पूछे। तो अगर सवाल पूछा जाए तो क्या वो गलत है? क्या उससे महाराष्ट्र का अपमान? पहले 6 जुलाई की इस हादसे के वक्त की रिपोर्ट देखिए।
10: मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे के तरफ जो जाने वाला जो रास्ता है उस पर इस पर ठप है और लैंडस्लाइड की वजह से ये पूरा का पूरा रास्ता बंद हो गया है। अभी आप देख लीजिए 4 बजे से दोपहर के अभी 12 बज रहे हैं, अभी भी बताया जा रहा है कि 3 से 4 घंटा और लग सकता है पूरे मलबे को निकालने के लिए और इस ये जो मलबा है उसको ले जाके ये लोग बाहर फेंक रहे हैं। लेकिन आप देख लीजिए पूरा का पूरा जो ऊपर का जो हिस्सा था वो भूस्खलन के दौरान पूरा का पूरा गिर गया, बड़े बड़े पत्थर यहाँ पे गिरे हुए हैं।
4: असल में सवाल इसीलिए पूछा जाता है क्योंकि जब कोई इस तरह का एक्सप्रेसवे हाईवे बनाता है तो उसको लेकर दावे ऐसे ऐसे करता है जिसके बाद भरोसा जनता को दिया जाता है कि अब कुछ गड़बड़ नहीं होने वाला। लेकिन फिर उन दावों की पोल प्रकृति खोल देती है और सवाल फिर मुख्यमंत्री को चुभ जाता है।
11: कोई पेड़ गिर के मर रहा है, कोई मैनहोल में गिर के मर रहा है, कोई किसी और आपत्ति में मर रहा है, कभी कोई इलेक्ट्रिक्यूट होकर मर रहा है।
12: जवाब आपको देना पड़ेगा, जिस कुर्सी पे आप हो आप राजा नहीं हो, जनता के सेवक हो और ये मान के चलिए कि जनता हर समय आपको सवाल करेगी, ये घमंड नहीं कोई देखेगा।
13: काल सध्या यांचं मुख्यमंत्र्यांचं फडणवीसांचं भाषण विधानसभेमधलं, त्याचं म्हणे राजकारण करू नका। अरे वा, आणि काय म्हणतायत म्हणे, एक वेळ मला बोला पण महाराष्ट्राचा अपमान मी सहन करणार नाही। अरे वा, लोक त्या मिसिंग लिंक बद्दलच बोलतायत, महाराष्ट्राचा कुठे अपमान करतायत? पण ते काय सगळं घेऊन जायचं, म्हणजे ते वरपासून खालपर्यंत आता काय सवय लागली आहे? केंद्र सरकारच्या कुठच्या गोष्टींबद्दल बोललं की तुम्ही देशविरोधी? आता मिसिंग लिंक बद्दल बोललं तर याच्यात महाराष्ट्राचा अपमान कुठे आला?
4: सवाल सियासत का नहीं, सवाल इस बात का है कि अगर कहीं कमी है और उस पर प्रश्न है तो क्यों इसे साजिश और अपमान तक सत्ताधारी बताने लगते हैं? जबकि महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के संयुक्त प्रबंध निदेशक राजेश पाटिल से आज तक संवाददाता विद्या ने पूछा कि इस बात का अंदाजा नहीं लगाया था कि ऐसा लैंडस्लाइड हो सकता है।
14: स्ट्रक्चरली कोई डैमेज नहीं हुआ है इस लैंडस्लाइड में, लेकिन क्या जिस तरीके से ये बारिश हुई क्या इस बात का अंदाजा नहीं था कि यहाँ पे लैंडस्लाइड हो सकता है? उस समय भी क्या आप लोगों ने असेसमेंट किया था या उस असेसमेंट के बाहर ये हो गया?
15: या असेसमेंट किया था, लेकिन टनल के ऊपर जो ओवरबर्डन है वो 220 मीटर्स है ओवरबर्डन, और इसका डिजाइन भी हमने IIT बॉम्बे से अप्रूव करके लिया था, वेटिंग करके लिया था, और एज पर देयर अप्रूव डिजाइन वो हमने रॉकफॉल मिटिगेशन मेजर किया था, एंड वो जो रॉकफॉल मिटिगेशन मेजर हमने किया है वो इंटैक्ट है, वो हमने अभी अप टू 15 मीटर्स किया था, वो इंटैक्ट है, और वो अभी बाकी जो हुआ उसके लिए वी हैव टू डू कॉम्प्रिहेंसिव इंस्पेक्शन एंड देन वी हैव टू कम विद सम स्ट्रांग रेमेडियल एक्शन फॉर दैट।
4: महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम के संयुक्त प्रबंध निदेशक इस बात को समझते भी हैं और समझाते भी कि सुरंग के ठीक ऊपर लगभग 120 मीटर पर मिट्टी पत्थर जमा है। IIT बॉम्बे से पहले ही पूरी सलाह ली जा चुकी है, सुरंग के ऊपरी हिस्से से 10 मीटर तक बचाव के उपाय किए गए थे। हालांकि भूस्खलन सुरंग के ऊपरी हिस्से से 150 या 200 मीटर की दूरी से हुआ और इस वजह से चट्टाने गिरी और फिर मिसिंग लिंक सवालों में आए, तो जरूरी ये है कि कहीं कुछ हो तो उसके कारण को समझकर कारण सबको बताया जाए, न कि सवाल पूछने या सवाल उठाने वालों पर सवाल उठाकर सवाल को ही दबा दिया जाए।
1: अब आपको पुणे के पिंपरी चिंचवाड़ से आई खबर से खबरदार करते हैं, जहां पहाड़ लैंडस्लाइड की तरह टूटा था, 3 मंजिला इमारत पर गिरकर लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ गया, लेकिन यह पहाड़ कूड़े का था। यह प्लान से जुड़ी इमारत को मलबे में बदल देता है, 23 लोग इसमें फंस जाते हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन चलता है और जवाबदेही के सवाल पर जिम्मेदार लोग बारिश पर ठीकरा आसानी से फोड़कर निकल जाते हैं।
4: जहां कूड़े का पहाड़ खड़ा करके कूड़े से बिजली बनाने का प्लांट बनाया, क्या वही लापरवाही इस कदर रही कि वो कूड़े का पहाड़ जिंदगियों पर टूट पड़ा? कूड़े का पहाड़ जब लगातार बारिश के बाद टूटा और गिरा तो देखिए लैंडस्लाइड जैसे हालात ऐसे बन गए कि कूड़े से बिजली बनाने वाले प्लांट की 3 मंजिला इमारत ढह जाती है। चीख पुकार के बीच पहले दिल दहला देने वाले इस वीडियो को देखिए, जहां किसी तरह लोगों को बिल्डिंग के ढेर के बीच से निकाला जाता है।
16: सबसे पहले दमकल वाले पहुंचे, फिर एनडीआरएफ की टीमें लग जाती। यहां लगातार लोगों को इस मलबे से बचाने की कोशिश जारी दिखती। इस बीच मलबे से कोई जख्मी हालत में जिंदगी के लिए जंग लड़ता बाहर आता है तो वहां खड़े लोग इंतजार करते हैं कि इसकी सांसें चल रही है। पिंपरी चिंचवड़ नगर निगम के अधीन आते इस इलाके में कूड़े से बिजली बनाने वाले प्लांट पर कूड़े का पहाड़ गिरने के बाद लोगों को बाहर निकालना कितना कठिन है, इसे आप एनडीआरएफ के लोगों से समझिए।
17: पूरी बिल्डिंग कोलैप्स हो रखी है, पूरे मलबे से दबी हुई है एंड बॉडीज हमने ट्रेस करी हैं, तीन के करीब कर ली जिसमें से एक निकाली है। एक को और थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि जो मलबा है मैनुअली निकालेंगे, अगर हम मशीन लगा के निकालेंगे वाइब्रेशन हो जाएगा जिससे कि फर्दर कोलैप्स हो सकते हैं।
18: जो एरिया बताया जा रहा है कैंटीन एरिया, वो हम फोकस कर रहे हैं, वहाँ पे 5 to 6 का बताया गया है फिगर। तो राइट नाउ वी आर होपिंग कि 7 to 8 है, इससे ज्यादा तो नहीं है।
19: जवान पार्किंग तक जा चुके हैं?
18: जवान पार्किंग तक अभी नहीं पहुंच पाए हैं क्योंकि धीरे धीरे मैनुअली काम हो रहा है हाथ से निकाल के, क्योंकि हम मशीन नहीं अप्लाई कर सकते। मशीन अप्लाई करेंगे पूरा बिल्डिंग पैनकेक कोलैप्स हो जाएगा, तो जो है भी वो पूरा दब जाएगा।
16: अब सवाल है कि ऐसे हालात कैसे बने, क्या इस बात का अंदाजा किसी को नहीं था कि जो कूड़े का पहाड़ यहाँ इतना ऊंचा खड़ा है इसकी वजह से हादसा भी हो सकता है। आज तक संवाददाता ने इसीलिए सीधे विजय सूर्यवंशी आयुक्त पिंपरी चिंचवड़ नगर निगम से सवाल किया है।
20: इतना बड़ा हादसा हुआ है, इसका जिम्मेवार कौन है, उस पर कुछ दर्ज होगा पुलिस थाने में?
21: देखो ये नेचुरल कैलामिटी है, ऐसा नहीं कि बिल्डिंग अपने आप ढह गई। अपने आप ढह जाती तो हम कहते कि इसका स्ट्रक्चर वीक था, इसका स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम था। अभी आप देख रहे हैं कि ये बड़ा लैंडस्लाइड जैसे हुआ है, मतलब 60 मीटर हाइट का ये कचरे का पहाड़ है ऑलमोस्ट, और 600 mm बारिश जो 36 आवर्स में, 36 घंटे में 600 mm, इसकी वजह से उसका जो वेट बढ़ गया होगा और जैसे लैंडस्लाइड होता है वैसे वो ढह गया और उसका हॉरिजॉन्टल प्रेशर बिल्डिंग के आने के बाद वो बिल्डिंग कोलैप्स हो गई।
16: 60 मीटर ऊंचा कूड़े का पहाड़ खड़ा था, ये बात खुद आयुक्त मानते हैं। ये भी मानते हैं कि बारिश बहुत ज्यादा लगातार हुई, तो क्यों नहीं संकट को पहले समझा गया, क्यों नहीं काम रोका गया, ये क्यों नहीं सोचा गया कि अगर यहाँ तेज बारिश हुई तो यही कचरे का 60 मीटर ऊंचा पहाड़ पानी में भीग कर जब तेज हवा से गिरेगा तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता है।
22: डंपिंग ग्राउंड है पिंपरी चिंचवड़ का, ये 1982 से, मतलब अभी करीब करीब उसको 47 ईयर हो गए, 47 साल से यहाँ चल रहा है और बहुत बड़ा पहाड़ी बन गया उसका। तो
16: कूड़े के पहाड़ को कम करने के लिए बताया गया कि वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट शुरू किया गया ताकि कचरे की मात्रा कम की जा सके, लेकिन ज्यादा जोर प्रशासन का इस हादसे पर बारिश को कटघरे में खड़ा करने में लगा हुआ है।
20: पूछताछ की जाएगी इस मामले में?
21: देखो अभी तो हम रेस्क्यू ऑपरेशन में व्यस्त है सब, अभी हमारी प्रायोरिटी है कि जो 8 लोग और है उनको जिंदा बाहर निकाला जाए, उनको रेस्क्यू करा जाए, उसके बाद में ये सब सोचा जाएगा।
20: क्योंकि ये बहुत बड़ा मामला है, 23 लोग जो थे अंदर थे, अभी 15 लोगों को निकाला गया, उनमें से एक की डेथ हुई है ऐसा दमकल विभाग का कहना है। तो पूछताछ तो होनी चाहिए, मतलब किस तरह से ये मामला हुआ, क्योंकि वहाँ के लोग बोल रहे हैं कि 2 दिन पहले उनको लगा था कि ये जो कचरे का ढेर है वो नीचे सरक सकता है।
21: नहीं देखो जरूर बहुत दुर्दैवी घटना है और भगवान की दया से अभी तक तो हम 14 लोग जो निकाल पाए, मगर इस घटना के बारे में अभी सब बैठेंगे, क्या एग्जैक्टली हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसके बारे में सब सोचेंगे और उसके बारे में नेक्स्ट एक्शन उसके बाद डिसाइड करेंगे।
16: बस यहाँ गनीमत ये रही कि बहुत तेजी से रेस्क्यू ऑपरेशन करके जो लोग दबे रहे उन्हें निकाला जाता रहा।
1: अमेरिका और ईरान के बीच महायुद्ध का बिगुल फिर से बज चुका है, दोनों मुल्कों की सेनाएं आमने सामने हैं। हॉर्मुज पर ईरानी हमले के बाद अमेरिकी सेना ने ईरान के 170 ठिकानों पर भीषण बमबारी की है।

0: ट्रंप के बारूद से धुआं धुआं हुआ ईरान। 24 घंटे में 170 अड्डों पर भीषण बमबारी। ईरानी एटमी सेंटर पर अमेरिका का हमला। ट्रंप के वॉर गेम में बुरी तरह फंस गया ईरान। हुर्मुज पर हमला ईरान के लिए बहुत महंगा। युद्ध शुरू, अब ट्रंप का ऑपरेशन मुश्तबा। सत्ताईस जून को ईरान ने हुर्मुज पर हमला किया। हमले के बाद अमेरिका ने अगले 48 घंटों में दो बार ईरान पर भीषण बमबारी की। एक बार फिर 6 जुलाई को ईरान ने हुर्मुज में 3 टैंकरों को निशाना बनाया। ट्रंप ने अपनी धमकी को सच साबित करते हुए 7 जुलाई और 8 जुलाई को ईरान पर ताबड़तोड़ हवाई हमले किए। महज 24 घंटों के अंदर ईरान के 170 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। ईरान पर हमले का वीडियो अमेरिकी सेना ने जारी किया। अगर ईरान पर अमेरिकी हमले की टाइमिंग को देखें तो संकेत यही है कि विनाशकारी युद्ध का बिगुल बज चुका है। संकेत नंबर 1, ईरान पर अमेरिका का विध्वंसक हमला जारी। संकेत नंबर 2, ट्रंप का ऐलान युद्ध विराम खत्म, अब वार्ता नहीं। संकेत नंबर 3, ईरान पर अमेरिकी हमलों के समर्थन में नाटो। संकेत नंबर 4, हुर्मुज पर ईरानी हमले की इंटरनेशनल निंदा। संकेत नंबर 5, तेहरान के डिप्टी मेयर बोले एटमी हमले का डर। मतलब यही है कि ईरान और अमेरिका के बीच तनाव चरम पर है। अब ये युद्ध दुनिया को अपनी चपेट में ले सकता है क्योंकि ट्रंप ने ईरान के ठिकानों को अपनी मिसाइल के टारगेट पर लॉक कर दिया है, तो वहीं ईरान के लिए वार्ता के दरवाजे पर ताला लगा दिया है।
1: Retribution for last night. They hit actually 3 boats, not 2. And when they hit, we hit back much harder. Another way of doing it. We have many ways we can win, but we've already won militarily. They have very little left, and they want to make a deal so badly. They called a little while ago. They want to make a deal so badly. I just don't know if they're worthy of making a deal. I don't know that they're going to honor the deal. That's the problem. Because it's sort of crazy, to be honest with you. They're sort of crazy. They're a little bit out of control, but they want to make a deal. They're badly.
0: अगर ईरान पर अमेरिका के ताजा हमलों को देखें तो ट्रंप का वॉर गेम समझना मुश्किल नहीं है। ट्रंप की हिट लिस्ट पर हैं ईरान के अहम सैन्य ठिकाने, तेल और गैस के लिहाज से अहम शहर, ईरान के अहम बंदरगाह, ईरान का ट्रांसपोर्ट नेटवर्क और ईरान के परमाणु सेंटर। ईरानी मीडिया का दावा है कि बुशहर में तेज धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं। ये धमाके ईरान के न्यूक्लियर प्लांट के आसपास सुने गए हैं। ठीक ऐसे ही चाबहार पोर्ट को निशाना बनाया गया। IRGC का दावा है कि अमेरिका ने मशहद जाने वाले रास्तों के पुलों को निशाना बनाया। यही नहीं, ईरान के गोलिस्तान प्रांत के अफ्तेके खान रेलवे ब्रिज पर मिसाइल अटैक किया है। ट्रंप ने ईरान को सीधी धमकी दी है कि अमेरिका की सैन्य कार्रवाई अब रुकेगी नहीं। अमेरिका के हमले ईरान द्वारा जहाजों पर की गई बमबारी का प्रतिशोध है। अगर ऐसा दोबारा हुआ तो हालात और भी बदतर हो जाएंगे। बड़ी बात यह है कि शांति समझौते के बावजूद हुर्मुज पर हमले करके ईरान चौतरफा घिर गया है। ईरान के खिलाफ मिडल ईस्ट के तमाम मुल्क बड़े और कड़े एक्शन की मांग कर रहे हैं। इसमें वो मुल्क भी शामिल हैं जो चंद दिनों पहले तक अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता कर रहे थे। ऐसे में अमेरिका को पता है कि हुर्मुज पर हमला करके ईरान ने गलत बटन दबा दिया है, लिहाजा ईरान ने अमेरिका को हमले का मौका थाली में सजाकर सौंप दिया है। इसी कड़ी में अमेरिका ने ईरान के कई शहरों पर चुन चुन कर बम बरसाए। ट्रंप का टारगेट बंदर अब्बास। ये ईरान का सबसे बड़ा व्यावसायिक और नौसैनिक बंदरगाह है। यहां पर अमेरिका ने बमबारी करके ईरानी सेना और ईरानी कारोबार को चोट पहुंचाई। ट्रंप का टारगेट वो शहर, ये वही शहर है जहां पर ईरान का एकमात्र चालू परमाणु बिजली प्लांट है। यहां हमला करके ट्रंप ने संदेश दिया है कि ईरान का कोई भी एटमी सेंटर नहीं बचेगा। ट्रंप का टारगेट सिरिक, ये शहर होर्मुज से सटा हुआ है, यहीं से ईरानी सेना गुजरने वाले जहाजों की निगरानी करती है। अमेरिका ने सिरिक में मौजूद ईरानी सैन्य ठिकानों के साथ साथ नौसेना की बोट को निशाना बनाया। ट्रंप का टारगेट चाबहार पोर्ट, ईरान का इकलौता बंदरगाह जो सीधे हिंद महासागर से समुद्री यातायात तय करता है। ये कारोबार और सैन्य लिहाज से अहम है, यहाँ पर भी अमेरिकी हमला हुआ। ट्रंप का टारगेट केश्म द्वीप, फारस की खाड़ी का सबसे बड़ा द्वीप जहाँ ईरानी नौसेना के ठिकानों के साथ साथ तेल गैस फैसिलिटी है। अमेरिका ने इस आइलैंड पर भी भीषण बमबारी की है, मतलब ईरान से ट्रंप का बदला बहुत घातक है। ईरान की सरकारी मीडिया ने माना है कि पिछले 48 घंटों में 5 प्रांतों पर हुए अमेरिकी हमलों में कम से कम 14 लोग मारे गए जबकि 78 से ज्यादा जख्मी हैं। अगले कुछ घंटों में ये आंकड़े बढ़ सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ व्हाइट हाउस के हवाले से एक्सियोस में छपी रिपोर्ट में ईरान को लेकर कई बड़े दावे किए गए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति का पूरा जोर होर्मुज को ईरानी नियंत्रण से मुक्त कराने पर है, लिहाजा होर्मुज को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति की तैयारी ईरान के खिलाफ लंबे युद्ध की है। अगर ईरान ने अमेरिकी हमले के बाद फिर हमला किया तो अमेरिका कई हफ्तों तक हवाई हमले करेगा। ईरान के अहम सैन्य ठिकानों के साथ साथ एटमी सेंटर और तेल गैस के प्लांट को निशाना बनाया जाएगा। अमेरिका की उम्मीद है कि होर्मुज की वजह से अब की बार दुनिया के तमाम मुल्क और नाटो उनका साथ देंगे। मतलब यही है कि ईरान अलग थलग पड़ सकता है क्योंकि होर्मुज पर ईरानी हमले की निंदा दुनिया के सभी मुल्कों ने की है। यहां तक कि फ्रांस ने भी माना है कि होर्मुज पर हमला करके ईरान ने अमेरिका के साथ हुए शांति समझौते के MOU का उल्लंघन किया है। दूसरी तरफ होर्मुज पर ताजा हमलों के बाद नाटो ने भी ईरान पर अमेरिकी हमलों का खुला समर्थन किया है। जब युद्ध विराम लागू हो और ईरान मूल रूप से युद्ध विराम का उल्लंघन कर रहा हो तो मुझे लगता है कि अमेरिका का बलपूर्वक जवाब देना बेहद जरूरी है। ये पहली बार है जब नाटो ने ईरान पर अमेरिकी हमलों का समर्थन किया है, तो क्या यह समर्थन आने वाले दिनों में ईरान के खिलाफ अमेरिकी हमलों में भी दिखेगा? अगर ऐसा हुआ तो ईरान के खिलाफ अब ये युद्ध सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं रहेगा, मतलब ईरान के खिलाफ हमलों में नाटो भी शामिल हो सकता है। नाटो भी अमेरिका के साथ युद्ध में शामिल हुआ तो ईरान की हार तय है।
1: To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is? They're scum. They're sick people. They're led by sick people. And they're vicious, violent people. And if they had a nuclear weapon, they'd use it. As far as I'm concerned, it's over.
0: ईरानी विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी हमलों का समर्थन करने पर नाटो की निंदा की है। ईरान ने आरोप लगाया कि ईरान अमेरिका युद्ध का जिम्मेदार नाटो है। आरोप यही है कि अमेरिका और इजराइल को लेकर नाटो ने निष्पक्ष भूमिका नहीं निभाई। तो क्या ये जंग अमेरिका बनाम ईरान नहीं बल्कि ईरान बनाम दुनिया में बदल सकती है? आज तक ब्यूरो
2: के साथ हम यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: 30,000 भारतीयों के बीच मेलबर्न में बोले प्रधानमंत्री मोदी, शिप से चिप तक बना रहा है भारत, ग्रो मोर अचीव मोर का दिया नारा, कहा रक्षा अंतरिक्ष और यूरेनियम डील पर मुहर। टीएमसी को छोड़ बीजेपी, माया ममता के तीनों ही पूर्व राज्यसभा के सांसदों को मिला इनाम, उपचुनाव के लिए बने कमल के उम्मीदवार, कल ही पार्टी में शामिल हुए थे सुखेंदु, सुष्मिता और प्रकाश। यूपी में चढ़ा चुनावी तापमान, योगी का आरोप, 2017 से पहले कब्रिस्तानों पर पैसे खर्च करती थी एसपी सरकार, ओपी राजभर ने भी अखिलेश पर किया बड़ा हमला। महाराष्ट्र और गुजरात समेत उत्तर भारत में जोरदार बारिश से परेशानी, दिल्ली एनसीआर भी हुआ पानी पानी, बादली में डूबने से 7 साल के बच्चे की मौत, गाजियाबाद में भी एक बच्चे की गई जान। अमेरिकी हमले के बीच खामनेई का अंतिम संस्कार, ट्रंप ने फिर दी धमकी, कहा 20 गुना ताकत से करेंगे अटैक, बदले में अमेरिकी ठिकानों पर तेहरान ने बरसाए बॉम्ब। बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच बड़ा सनातनी साबित करने की लड़ाई चल रही है। समाजवादी पार्टी कह रही है कि वो सनातनी है, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बता रहे हैं कि विकास का जो पैसा आज सनातन की रक्षा के लिए खर्च किया जा रहा है वो समाजवादी सरकार में कब्रिस्तानों पर खर्च किया जाता था। इन सबके बीच वक्फ को लेकर भी खींचतान यूपी में शुरू हो चुकी है।
1: बीजेपी के लोग किसी भी सीमा तक झूठा प्रचार कर सकते हैं।
2: समाजवादी पार्टी के लोगों को तो ठेके पट्टे से ही फुर्सत नहीं है।
3: अयोध्या में चढ़ावा चोरी क्या हुई, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की चुनावी राजनीति के पौबारा हो गए। महीने भर में कांग्रेस और समाजवादियों ने जितनी बार राम का नाम नहीं लिया होगा उतनी बार वक्फ, बाबर, कब्रिस्तान हो चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ धुआंधार रैलियां और कार्यक्रम कर रहे हैं, सैकड़ों करोड़ की योजनाओं की सौगात जिले जिले दी जा रही है, और इसके साथ ही विपक्ष पर मुस्लिम परस्त, मुगल परस्त, मौका परस्त होने की सियासी बौछार चल रही है।
2: आज के समाजवादी राम से दूरी बनाते हैं, बाबर को अपना आदर्श मानते हैं, औरंगजेब को अपना आदर्श मानते हैं, राम और कृष्ण को नहीं मानते।
4: अंतर यही है, बीजेपी की सरकार आई तो अब पैसा मंदिरों के विकास के लिए, धामों के सुंदरीकरण में खर्च हो रहा है, और समाजवादी पार्टी के समय वही पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल के लिए चला जाता था।
2: वक्फ के नाम पे हजारों एकड़ लैंड बेच भी दी गई, वारा नारा किया गया, ये सीधे सीधे डकैती थी, इसके नाम पर एक भी बार समाजवादी पार्टी नहीं बोली, एक भी बार कांग्रेस नहीं बोली, बल्कि जब मोदी जी ने इसके खिलाफ कानून बनाया, उस लूट के खिलाफ कानून बनाया, तो इन लोगों ने आंदोलन किया।
3: एक तरफ समूचा विपक्ष राम मंदिर में चोरी को लेकर हमलावर था, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वक्फ में घोटालों का मुद्दा उठाया, और अब उसी लाइन को यूपी के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ने और आगे बढ़ा दिया।
5: उत्तर प्रदेश पे भी वक्फ बोर्ड, सुन्नी वक्फ बोर्ड जो है इस समय वर्तमान में रिक्त है, आने वाले दिनों में जब सुन्नी वक्फ बोर्ड का गठन होगा तो जो वक्फ अधिनियम संशोधन अधिनियम के अनुसार जो गाइडलाइन है उस गाइडलाइन के अनुसार उत्तर प्रदेश में भी उस अधिनियम के माध्यम से वक्फ के बोर्ड का गठन होगा, जिसमें पिछड़े मुसलमानों को रखा जाएगा, मुस्लिम महिलाओं को रखा जाएगा, ऐसे हमारे हिंदू भाई समाज के दो भाइयों को रखा जाएगा, जो भी उस प्रावधान में जो भी गाइडलाइन है उस गाइडलाइन के अनुसार ही आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में भी वक्फ बोर्ड के फॉर्मेशन होगा।
3: अगर ऐसा होता है तो एमपी के बाद उत्तर प्रदेश देश का दूसरा राज्य होगा जो वक्फ बोर्ड में गैर मुसलमान सदस्य रखेगा।
6: मुझे लगता है कि ये हमारे जो फंडामेंटल राइट हैं और हमारे जो मजहबी आजादी हमें दी गई है यकीनी तौर पर उसके साथ कहीं ना कहीं सीधा टकराव है, इसलिए हुकूमत को अपने इस फैसले पर नजरसानी करने की जरूरत है।
3: हालांकि उत्तर प्रदेश में मौजूदा शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन का कहना है कानून संसद से बना हुआ है तो उसका पालन अनिवार्य है, लेकिन सुन्नी समुदाय के मौलानाओं का कहना है वक्फ संशोधन कानून के कुछ प्रावधानों पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है और मामला कोर्ट में लंबित, लिहाजा अभी ऐसा नहीं करना चाहिए। वैसे यूपी में फिलहाल दो वक्फ बोर्ड, सुन्नी वक्फ बोर्ड और शिया वक्फ बोर्ड, दोनों बोर्ड की संरचनाएं कुछ ऐसी कि दोनों बोर्ड में 11-11 सदस्य होते हैं जिसमें अध्यक्ष के अलावा मुस्लिम सांसद, मुस्लिम विधायक, मुस्लिम विधान परिषद सदस्य, इस्लामिक विद्वान और मतवल्लियों के प्रतिनिधि होते हैं। इसके अलावा सरकारी अधिकारी सीईओ होता है, यानी अभी की व्यवस्था में गैर मुस्लिम सदस्य वक्फ बोर्ड में नहीं होते, लेकिन वक्फ संशोधन बिल के बाद, नई व्यवस्था के बाद वक्फ बोर्ड में कम से कम दो गैर मुस्लिम सदस्य अनिवार्य हैं। इसके अलावा दो मुस्लिम महिला सदस्य, पसमानदा प्रतिनिधि, सांसद, विधायक, बार काउंसिल के सदस्यों में से एक एक का सीधे मनोनयन होगा, यानी पहले चुनाव होता था, उन्हें अब मनोनीत किया जाएगा।
7: जो चंदा और चढ़ावा में लूट का मुद्दा है, उस मुद्दे से जनता का ध्यान हट जाए। हर समस्या का समाधान मुसलमान है भारतीय जनता पार्टी की, तो अब फिर से मुसलमान को सामने लाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया जा रहा है। मुसलमान मुसलमान मुसलमान मुसलमान, हर समस्या का समाधान मुसलमान है। भारतीय जनता पार्टी का ये प्रयास वो सफल होने वाला नहीं।
3: यूपी में सुन्नी वक्फ बोर्ड इसी साल 15 मार्च को भंग हुआ है। 6 महीने के अंदर इसका पुनर्गठन जरूरी है, यानी चुनाव से ठीक पहले सितंबर 2026 तक यूपी में सुन्नी वक्फ बोर्ड का गठन होगा, जिसमें यूपी सरकार हिंदू समुदाय के 2 सदस्यों को रखने की तैयारी कर चुकी है। दरअसल इसी हफ्ते मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी राज्य वक्फ बोर्ड का ऐलान किया है, जिसमें 10 सदस्यों में 2 सदस्य हिंदू हैं। इसके बाद उत्तर प्रदेश में से लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई। संतोष शर्मा के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक।
0: बारिश इस वक्त के मौसम में वो अपराधी है जिस पर हर राज्य के हर दल की सरकार ठीकरा फोड़कर अपनी जवाबदेही से बच जाना चाहती है। जैसे महाराष्ट्र में ही करीब 7,000 करोड़ रुपए की लागत वाले और हाल ही में शुरू किए गए मुंबई पुणे मिसिंग लिंक प्रोजेक्ट पर भारी बारिश के कारण जब भूस्खलन हुआ तो सवाल उठा कि इसे इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना बताया जा रहा था, वहां इतनी खामियां हैं। सवाल उठा तो मुख्यमंत्री विधानसभा में बोलते बोलते मर्यादा तोड़ने लगे।
8: हमारे जयंत राव जी ने सही बात कही, जिनको कुत्ता नहीं पोछता वह आजकल सोशल मीडिया पर आकर सबको गाली देते हैं, मुख्यमंत्री को भी गाली देते हैं। ऐसे कुछ भाड़े के टट्टे इस मिसिंग लिंक के बारे में भी पैसा ले लेकर सोशल मीडिया पर लिख रहे थे, उनको भी कह देना चाहता हूं, अगर महाराष्ट्र का अपमान करोगे छोड़ूंगा नहीं। तो गाली देते हैं।
3: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस गुस्से में हैं। गर्म तवे पर किसी ने छन्न से पानी का छींटा मारा ऐसे दिखते हैं, लेकिन क्यों? बात 3 दिन पुरानी है। मिसिंग लिंक के नाम से मशहूर मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे जो करीब 2 महीने पहले ही चालू हुआ, जिसे बनाने में जनता के 6,695 करोड़ रुपए लगे, जिस मेगा प्रोजेक्ट को इंजीनियरिंग का बेजोड़ नमूना कहा गया, तेज बारिश के बाद भूस्खलन से उसी नायाब इंजीनियरिंग वाले मिसिंग लिंक पर पत्थर टूट पड़े। भूस्खलन के बाद यहाँ कुछ देर तक रास्ता बंद रहा, लोगों ने सवाल सियासत से लेकर सोशल मीडिया तक पर पूछे। तो अगर सवाल पूछा जाए तो क्या वो गलत है? क्या उससे महाराष्ट्र का अपमान? पहले 6 जुलाई की इस हादसे के वक्त की रिपोर्ट देखिए।
9: मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे के मिसिंग लिंक पर है, 2 महीने पहले इसी मिसिंग लिंक को बहुत जोर शोर के साथ इनॉग्रेट किया गया था, लेकिन अभी इस वक्त इसकी हालत आप देख लीजिए, तो तकरीबन 4 बजे दोपहर के समय 4 बजे अचानक से यहाँ पे लैंडस्लाइड हो गया। पुणे से मुंबई की तरफ जो जाने वाला जो रास्ता है उस पर इस वक्त हम है, और लैंडस्लाइड की वजह से ये पूरा का पूरा रास्ता बंद हो गया है। अभी आप देख लीजिए 4 बजे से दोपहर के अभी 12 बज रहे हैं, अभी भी बताया जा रहा है कि 3 से 4 घंटा और लग सकता है पूरे मलबे को निकालने के लिए, और इस ये जो मलबा है उसको ले जाके ये लोग बाहर देख रहे हैं। लेकिन आप देख लीजिए पूरा का पूरा जो ऊपर का जो हिस्सा था वो भूस्खलन के दौरान पूरा का पूरा गिर गया, बड़े बड़े पत्थर यहाँ पे गिरे हुए हैं।
3: असल में सवाल इसीलिए पूछा जाता है क्योंकि जब कोई इस तरह का एक्सप्रेसवे हाईवे बनाता है तो उसको लेकर दावे ऐसे ऐसे करता है जिसके बाद भरोसा जनता को दिया जाता है कि अब कुछ गड़बड़ नहीं होने वाला, लेकिन फिर उन दावों की पोल प्रकृति खोल देती है और सवाल फिर मुख्यमंत्री को चुभ जाता है।
10: कोई पेड़ गिर के मर रहा है, कोई मैनहोल में गिर के मर रहा है, कोई किसी और आपत्ति में मर रहा है, कभी कोई इलेक्ट्रिक्यूट होकर मर रहा है।
11: जवाब आपको देना पड़ेगा, जिस कुर्सी पे आप हो आप राजा नहीं हो, जनता के सेवक हो, और ये मान के चलिए कि जनता हर समय आपको सवाल करेगी, ये घमंड नहीं कोई देखेगा।
12: काल सध्या ह्यांचं मुख्यमंत्र्यांचं फडणवीसांचं भाषण विधानसभेमधलं, त्याचं म्हणे राजकारण करू नका. अरे वा, आणि काय म्हणतायत म्हणे, एक वेळ मला बोला पण महाराष्ट्राचा अपमान मी सहन करणार नाही. वा रे वा, लोक त्या मिसिंग लिंक बद्दलच बोलतायत, महाराष्ट्राचा कुठे अपमान करतायत? पण ते काय सगळं घेऊन जायचं, म्हणजे ते वरपासून खालपर्यंत आता काय सवय लागली आहे? केंद्र सरकारच्या कुठच्या गोष्टींबद्दल बोललं की तुम्ही देशविरोधी? आता मिसिंग लिंक बद्दल बोललं तर याच्यात महाराष्ट्राचा अपमान कुठे आला?
13: सवाल सियासत का नहीं, सवाल इस बात का है कि अगर कहीं कमी है और उस पर प्रश्न है तो क्यों इसे साजिश और अपमान तक सत्ताधारी बताने लगते हैं? जबकि महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के संयुक्त प्रबंध निदेशक राजेश पाटिल से आज तक संवाददाता विद्या ने पूछा कि इस बात का अंदाजा नहीं लगाया था कि ऐसा लैंडस्लाइड हो सकता है.
14: स्ट्रक्चरली कोई डैमेज नहीं हुआ है इस लैंडस्लाइड में, लेकिन क्या जिस तरीके से ये बारिश हुई, क्या इस बात का अंदाजा नहीं था कि यहाँ पे लैंडस्लाइड हो सकता है? उस समय भी क्या आप लोगों ने असेसमेंट किया था या उस असेसमेंट के बाहर ये हो गया?
15: या असेसमेंट किया था, लेकिन टनल के ऊपर जो ओवरबर्डन है वो 220 मीटर है ओवरबर्डन, और इसका डिजाइन भी हमने IIT बॉम्बे से अप्रूव करके लिया था, वेटिंग करके लिया था, और एज पर देयर अप्रूव डिजाइन वो हमने रॉकफॉल मिटिगेशन मेजर किया था, एंड वो जो रॉकफॉल मिटिगेशन मेजर हमने किया है वो इंटैक्ट है. वो हमने अभी अप टू 15 मीटर्स किया था, वो इंटैक्ट है, और वो अभी बाकी जो हुआ उसके लिए वी हैव टू डू कॉम्प्रिहेंसिव इंस्पेक्शन एंड देन वी हैव टू कम विद सम स्ट्रांग रेमेडियल एक्शन फॉर दैट.
13: महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम के संयुक्त प्रबंध निदेशक इस बात को समझते भी हैं और समझाते भी कि सुरंग के ठीक ऊपर लगभग 120 मीटर पर मिट्टी पत्थर जमा है. IIT बॉम्बे से पहले ही पूरी सलाह ली जा चुकी है. सुरंग के ऊपरी हिस्से से 10 मीटर तक बचाव के उपाय किए गए थे. हालांकि भूस्खलन सुरंग के ऊपरी हिस्से से 150 या 200 मीटर की दूरी से हुआ और इस वजह से चट्टाने गिरी और फिर मिसिंग लिंक सवालों में आए. तो जरूरी ये है कि कहीं कुछ हो तो उसके कारण को समझ कर कारण सबको बताया जाए, न कि सवाल पूछने या सवाल उठाने वालों पर सवाल उठाकर सवाल को ही दबा दिया जाए.
0: अब आपको पुणे के पिंपरी चिंचवाड़ से आई खबर से खबरदार करते हैं, जहां पहाड़ लैंडस्लाइड की तरह टूटा था. 3 मंजिला इमारत पर गिरकर लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ गया, लेकिन यह पहाड़ कूड़े का था. यह प्लान से जुड़ी इमारत को मलबे में बदल देता है. 23 लोग इसमें फंस जाते हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन चलता है और जवाबदेही के सवाल पर जिम्मेदार लोग बारिश पर ठीकरा आसानी से फोड़ कर निकल जाते हैं.
13: जहां कूड़े का पहाड़ खड़ा करके कूड़े से बिजली बनाने का प्लांट बनाया, क्या वही लापरवाही इस कदर रही कि वो कूड़े का पहाड़ जिंदगियों पर टूट पड़ा? कूड़े का पहाड़ जब लगातार बारिश के बाद टूटा और गिरा तो देखिए लैंडस्लाइड जैसे हालात ऐसे बन गए कि कूड़े से बिजली बनाने वाले प्लांट की 3 मंजिला इमारत ढह जाती है. चीख पुकार के बीच पहले दिल दहला देने वाले इस वीडियो को देखिए, जहां किसी तरह लोगों को बिल्डिंग के ढेर के बीच से निकाला जाता है. सबसे पहले दमकल वाले पहुंचे, फिर NDRF की टीमें लग जाती. यहां लगातार लोगों को इस मलबे से बचाने की कोशिश जारी दिखती है. इस बीच मलबे से कोई जख्मी हालत में जिंदगी के लिए जंग लड़ता बाहर आता है, तो वहां खड़े लोग इंतजार करते हैं कि इसकी सांसें चल रही है. पिंपरी चिंचवड़ नगर निगम के अधीन आते इस इलाके में कूड़े से बिजली बनाने वाले प्लांट पर कूड़े का पहाड़ गिरने के बाद लोगों को बाहर निकालना कितना कठिन है, इसे आप NDRF के लोगों से समझिए.
16: पूरी बिल्डिंग कोलैप्स हो रखी है, पूरे मलबे से दबी हुई है, एंड बॉडीज हमने ट्रेस करी हैं, 3 के करीब कर ली, जिसमें से एक निकाली है. एक को और थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि जो मलबा है मैनुअली निकालेंगे. अगर हम मशीन लगा के निकालेंगे वाइब्रेशन हो जाएगा, जिससे कि फर्दर कोलैप्स हो सकते हैं.
17: एक जो एरिया बताया जा रहा है कैंटीन एरिया, वो हम फोकस कर रहे हैं. वहाँ पे 5 to 6 का बताया गया है फिगर, तो राइट नाउ वी आर होपिंग कि 7 to 8 है, इससे ज्यादा तो नहीं है.
18: जवान पार्किंग तक जा चुके हैं? जवान
17: नहीं, जवान पार्किंग तक अभी नहीं पहुंच पाए हैं, क्योंकि धीरे धीरे मैनुअली काम हो रहा है हाथ से निकाल के, क्योंकि हम मशीन नहीं अप्लाई कर सकते। मशीन अप्लाई करेंगे पूरा बिल्डिंग पैनकेक कोलैप्स हो जाएगा, तो जो है भी वो पूरा दब जाएगा।
3: अब सवाल है कि ऐसे हालात कैसे बने, क्या इस बात का अंदाजा किसी को नहीं था कि जो कूड़े का पहाड़ यहाँ इतना ऊंचा खड़ा है इसकी वजह से हादसा भी हो सकता है। आज तक संवाददाता ने इसीलिए सीधे विजय सूर्यवंशी आयुक्त पिंपरी चिचवड़ नगर निगम से सवाल किया है।
18: इतना बड़ा हादसा हुआ है, इसका जिम्मेवार कौन है, उस पर कुछ दर्ज होगा पुलिस थाने में?
19: देखो ये नेचुरल कैलामिटी है, ऐसा नहीं कि बिल्डिंग अपने आप ढह गई। अपने आप ढह जाती तो हम कहते कि इसका स्ट्रक्चर वीक था, इसका स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम था। अभी आप देख रहे हैं कि ये बड़ा लैंडस्लाइड जैसे हुआ है, मतलब 60 मीटर हाइट का ये कचरे का पहाड़ है ऑलमोस्ट, और 600 mm बारिश जो 36 आवर्स में, 36 घंटे में 600 mm, इसकी वजह से उसका जो वेट बढ़ गया होगा और जैसे लैंडस्लाइड होता है वैसे वो ढह गया और उसका हॉरिजॉन्टल प्रेशर बिल्डिंग के आने के बाद वो बिल्डिंग कोलैप्स हो गई।
3: 60 मीटर ऊंचा कूड़े का पहाड़ खड़ा था, ये बात खुद आयुक्त मानते हैं। ये भी मानते हैं कि बारिश बहुत ज्यादा लगातार हुई, तो क्यों नहीं संकट को पहले समझा गया, क्यों नहीं काम रोका गया, ये क्यों नहीं सोचा गया कि अगर यहाँ तेज बारिश हुई तो यही कचरे का 60 मीटर ऊंचा पहाड़ पानी में भीग कर जब तेज हवा से गिरेगा तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता है।
20: डंपिंग ग्राउंड है पिंपरी चिंचवड़ का, ये 1982 से, मतलब अभी करीब करीब उसको 47 ईयर हो गए, 47 साल से यहाँ चल रहा है और बहुत बड़ा पहाड़ी बन गया उसका। तो
3: कूड़े के पहाड़ को कम करने के लिए बताया गया कि वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट शुरू किया गया ताकि कचरे की मात्रा कम की जा सके, लेकिन ज्यादा जोर प्रशासन का इस हादसे पर बारिश को कटघरे में खड़ा करने में लगा हुआ है।
18: पूछताछ की जाएगी इस मामले में?
19: देखो अभी तो हम रेस्क्यू ऑपरेशन में व्यस्त है सब, अभी हमारी प्रायोरिटी है कि जो 8 लोग और है उनको जिंदा बाहर निकाला जाए, उनको रेस्क्यू करा जाए, उसके बाद में ये सब सोचा जाएगा।
18: क्योंकि ये बहुत बड़ा मामला है, 23 लोग जो थे अंदर थे, अभी 15 लोगों को निकाला गया, उनमें से एक की डेथ हुई है ऐसा दमकल विभाग का कहना है, तो पूछताछ तो होनी चाहिए, मतलब किस तरह से ये मामला हुआ, क्योंकि वहाँ के लोग बोल रहे हैं कि 2 दिन पहले उनको लगा था कि ये जो कचरे का ढेर है वो नीचे सरक सकता है।
19: नहीं देखो जरूर बहुत दुर्दैवी घटना है और भगवान की दया से अभी तक तो हम 14 लोग जो निकाल पाए, मगर इस घटना के बारे में अभी सब बैठेंगे, क्या एग्जैक्टली हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसके बारे में सब सोचेंगे और उसके बारे में नेक्स्ट एक्शन उसके बाद डिसाइड करेंगे।
3: बस यहाँ गनीमत ये रही कि बहुत तेजी से रेस्क्यू ऑपरेशन करके जो लोग दबे रहे उन्हें निकाला जाता रहा।
0: अमेरिका और ईरान के बीच महायुद्ध का बिगुल फिर से बज चुका है, दोनों मुल्कों की सेनाएं आमने सामने हैं। हॉर्मुज पर ईरानी हमले के बाद अमेरिकी सेना ने ईरान के 170 ठिकानों पर भीषण बमबारी की है।

0: ट्रंप के बारूद से धुआं धुआं, 70 अड्डों पर भीषण बमबारी। ईरानी एटमी सेंटर पर अमेरिका का हमला। ट्रंप के वॉर गेम में बुरी तरह फंस गया ईरान। हॉर्मुज पर हमला ईरान के लिए बहुत महंगा। युद्ध शुरू, अब ट्रंप का ऑपरेशन मुश्तबा। सत्ताईस जून को ईरान ने हॉर्मुज पर हमला किया। हमले के बाद अमेरिका ने अगले 48 घंटों में दो बार ईरान पर भीषण बमबारी की। एक बार फिर 6 जुलाई को ईरान ने हॉर्मुज में 3 टैंकरों को निशाना बनाया। ट्रंप ने अपनी धमकी को सच साबित करते हुए 7 जुलाई और 8 जुलाई को ईरान पर ताबड़तोड़ हवाई हमले किए। महज 24 घंटों के अंदर ईरान के 170 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। ईरान पर हमले का वीडियो अमेरिकी सेना ने जारी किया। अगर ईरान पर अमेरिकी हमले की टाइमिंग को देखें तो संकेत यही है कि विनाशकारी युद्ध का बिगुल बज चुका है। संकेत नंबर 1, ईरान पर अमेरिका का विध्वंसक हमला जारी। संकेत नंबर 2, ट्रंप का ऐलान, युद्ध विराम खत्म, अब वार्ता नहीं। संकेत नंबर 3, ईरान पर अमेरिकी हमलों के समर्थन में नाटो। संकेत नंबर 4, हॉर्मुज पर ईरानी हमले की इंटरनेशनल निंदा। संकेत नंबर 5, तेहरान के डिप्टी मेयर बोले, एटमी हमले का डर। मतलब यही है कि ईरान और अमेरिका के बीच तनाव चरम पर है। अब ये युद्ध दुनिया को अपनी चपेट में ले सकता है, क्योंकि ट्रंप ने ईरान के ठिकानों को अपनी मिसाइल के टारगेट पर लॉक कर दिया है, तो वहीं ईरान के लिए वार्ता के दरवाजे पर ताला लगा दिया है।
1: Retribution for last night. They hit actually 3 boats, not 2. And when they hit, we hit back much harder. Another way of doing it. We have many ways we can win, but we've already won militarily. They have very little. They have very little left, and they want to make a deal so badly. They called a little while ago. They want to make a deal so badly. I just don't know if they're worthy of making a deal. I don't know that they're going to honor the deal. That's the problem. Because it's sort of crazy. To be honest with you, they're sort of crazy. They're a little bit out of control, but they want to make a deal. Badly.
0: अगर ईरान पर अमेरिका के ताजा हमलों को देखें, तो ट्रंप का वॉर गेम समझना मुश्किल नहीं है। ट्रंप की हिट लिस्ट पर हैं ईरान के अहम सैन्य ठिकाने, तेल और गैस के लिहाज से अहम शहर, ईरान के अहम बंदरगाह, ईरान का ट्रांसपोर्ट नेटवर्क और ईरान के परमाणु सेंटर। ईरानी मीडिया का दावा है कि बुशहर में तेज धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं। ये धमाके ईरान के न्यूक्लियर प्लांट के आसपास सुने गए हैं। ठीक ऐसे ही चाबहार पोर्ट को निशाना बनाया गया। IRGC का दावा है कि अमेरिका ने मशहद जाने वाले रास्तों के पुलों को निशाना बनाया। यही नहीं, ईरान के गोलिस्तान प्रांत के अफ्तेके खान रेलवे ब्रिज पर मिसाइल अटैक किया है। ट्रंप ने ईरान को सीधी धमकी दी है कि अमेरिका की सैन्य कार्रवाई अब रुकेगी नहीं। अमेरिका के हमले ईरान द्वारा जहाजों पर की गई बमबारी का प्रतिशोध हैं। अगर ऐसा दोबारा हुआ तो हालात और भी बदतर हो जाएंगे। बड़ी बात यह है कि शांति समझौते के बावजूद हॉर्मुज पर हमले करके ईरान चौतरफा घिर गया है। ईरान के खिलाफ मिडल ईस्ट के तमाम मुल्क बड़े और कड़े एक्शन की मांग कर रहे हैं। इसमें वो मुल्क भी शामिल हैं जो चंद दिनों पहले तक अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता कर रहे थे। ऐसे में अमेरिका को पता है कि हॉर्मुज पर हमला करके ईरान ने गलत बटन दबा दिया है, लिहाजा ईरान ने अमेरिका को हमले का मौका थाली में सजाकर सौंप दिया है। इसी कड़ी में अमेरिका ने ईरान के कई शहरों पर चुन चुन कर बम बरसाए। ट्रंप का टारगेट बंदर अब्बास, ये ईरान का सबसे बड़ा व्यावसायिक और नौसैनिक बंदरगाह है। यहाँ पर अमेरिका ने बमबारी करके ईरानी सेना और ईरानी कारोबार को चोट पहुँचाई। ट्रंप का टारगेट वो शहर, ये वही शहर है जहां पर ईरान का एकमात्र चालू परमाणु बिजली प्लांट है। यहां हमला करके ट्रंप ने संदेश दिया है कि ईरान का कोई भी एटमी सेंटर नहीं बचेगा। ट्रंप का टारगेट सिरिक, ये शहर होर्मुज से सटा हुआ है। यहीं से ईरानी सेना गुजरने वाले जहाजों की निगरानी करती है। अमेरिका ने सिरिक में मौजूद ईरानी सैन्य ठिकानों के साथ साथ नौसेना की बोट को निशाना बनाया। ट्रंप का टारगेट चाबहार पोर्ट, ईरान का इकलौता बंदरगाह जो सीधे हिंद महासागर से समुद्री यातायात तय करता है। ये कारोबार और सैन्य लिहाज से अहम है। यहाँ पर भी अमेरिकी हमला हुआ। ट्रंप का टारगेट केश्म द्वीप, फारस की खाड़ी का सबसे बड़ा द्वीप जहाँ ईरानी नौसेना के ठिकानों के साथ साथ तेल गैस फैसिलिटी है। अमेरिका ने इस आइलैंड पर भी भीषण बमबारी की है। मतलब ईरान से ट्रंप का बदला बहुत घातक है। ईरान की सरकारी मीडिया ने माना है कि पिछले 48 घंटों में 5 प्रांतों पर हुए अमेरिकी हमलों में कम से कम 14 लोग मारे गए जबकि 78 से ज्यादा जख्मी हैं। अगले कुछ घंटों में ये आंकड़े बढ़ सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ व्हाइट हाउस के हवाले से एक्सियोस में छपी रिपोर्ट में ईरान को लेकर कई बड़े दावे किए गए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति का पूरा जोर होर्मुज को ईरानी नियंत्रण से मुक्त कराने पर है, लिहाजा होर्मुज को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति की तैयारी ईरान के खिलाफ लंबे युद्ध की है। अगर ईरान ने अमेरिकी हमले के बाद फिर हमला किया तो अमेरिका कई हफ्तों तक हवाई हमले करेगा। ईरान के अहम सैन्य ठिकानों के साथ साथ एटमी सेंटर और तेल गैस के प्लांट को निशाना बनाया जाएगा। अमेरिका की उम्मीद है कि होर्मुज की वजह से अब की बार दुनिया के तमाम मुल्क और नाटो उनका साथ देंगे। मतलब यही है कि ईरान अलग थलग पड़ सकता है क्योंकि होर्मुज पर ईरानी हमले की निंदा दुनिया के सभी मुल्कों ने की है। यहां तक कि फ्रांस ने भी माना है कि होर्मुज पर हमला करके ईरान ने अमेरिका के साथ हुए शांति समझौते के MOU का उल्लंघन किया है। दूसरी तरफ होर्मुज पर ताजा हमलों के बाद नेटो ने भी ईरान पर अमेरिकी हमलों का खुला समर्थन किया है। जब युद्ध विराम लागू हो और ईरान मूल रूप से युद्ध विराम का उल्लंघन कर रहा हो तो मुझे लगता है कि अमेरिका का बलपूर्वक जवाब देना बेहद जरूरी है। ये पहली बार है जब नेटो ने ईरान पर अमेरिकी हमलों का समर्थन किया है। तो क्या यह समर्थन आने वाले दिनों में ईरान के खिलाफ अमेरिकी हमलों में भी दिखेगा? अगर ऐसा हुआ तो ईरान के खिलाफ अब ये युद्ध सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं रहेगा। मतलब ईरान के खिलाफ हमलों में नेटो भी शामिल हो सकता है। नेटो भी अमेरिका के साथ युद्ध में शामिल हुआ तो ईरान की हार तय है।
1: To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is? They're scum. They're sick people. They're led by sick people. And they're vicious.

0: a nuclear weapon, they'd use it. As far as I'm concerned, it's over.
1: ईरानी विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी हमलों का समर्थन करने पर नाटो की निंदा की है। ईरान ने आरोप लगाया कि ईरान अमेरिका युद्ध का जिम्मेदार नाटो है। आरोप यही है कि अमेरिका और इसराइल को लेकर नाटो ने निष्पक्ष भूमिका नहीं निभाई। तो क्या ये जंग अमेरिका बनाम ईरान नहीं बल्कि ईरान बनाम दुनिया में बदल सकती है? आज तक ब्यूरो
2: के साथ हम यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: 30,000 भारतीयों के बीच मेलबर्न में बोले प्रधानमंत्री मोदी, शिप से चिप तक बना रहा है भारत, ग्रो मोर अचीव मोर का दिया नारा, कहा रक्षा अंतरिक्ष और यूरेनियम डील पर मुहर। टीएमसी को छोड़ बीजेपी, माया ममता के तीनों ही पूर्व राज्यसभा के सांसदों को मिला इनाम, उपचुनाव के लिए बने कमल के उम्मीदवार, कल ही पार्टी में शामिल हुए थे सुखेंदु, सुष्मिता और प्रकाश। यूपी में चढ़ा चुनावी तापमान, योगी का आरोप, 2017 से पहले कब्रिस्तानों पर पैसे खर्च करती थी एसपी सरकार, ओपी राजभर ने भी अखिलेश पर किया बड़ा हमला। महाराष्ट्र और गुजरात समेत उत्तर भारत में जोरदार बारिश से परेशानी, दिल्ली एनसीआर भी हुआ पानी पानी, बादली में डूबने से 7 साल के बच्चे की मौत, गाजियाबाद में भी एक बच्चे की गई जान। अमेरिकी हमले के बीच खामनेई का अंतिम संस्कार, ट्रंप ने फिर दी धमकी, कहा 20 गुना ताकत से करेंगे अटैक, बदले में अमेरिकी ठिकानों पर तेहरान ने बरसाए बम। बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच बड़ा सनातनी साबित करने की लड़ाई चल रही है। समाजवादी पार्टी कह रही है कि वो सनातनी है, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बता रहे हैं कि विकास का जो पैसा आज सनातन की रक्षा के लिए खर्च किया जा रहा है वो समाजवादी सरकार में कब्रिस्तानों पर खर्च किया जाता था। इन सबके बीच वक्फ को लेकर भी खींचतान यूपी में शुरू हो चुकी है।
1: बीजेपी के लोग किसी भी सीमा तक झूठा प्रचार कर सकते हैं।
2: समाजवादी पार्टी के लोगों को तो ठेके पट्टे से ही फुर्सत नहीं है।
3: अयोध्या में चढ़ावा चोरी क्या हुई, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की चुनावी राजनीति के पौबारा हो गए। महीने भर में कांग्रेस और समाजवादियों ने जितनी बार राम का नाम नहीं लिया होगा उतनी बार वक्फ, बाबर, कब्रिस्तान हो चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ धुआंधार रैलियां और कार्यक्रम कर रहे हैं, सैकड़ों करोड़ की योजनाओं की सौगात जिले जिले दी जा रही है, और इसके साथ ही विपक्ष पर मुस्लिम परस्त, मुगल परस्त, मौका परस्त होने की सियासी बौछार चल रही है।
2: आज के समाजवादी राम से दूरी बनाते हैं, बाबर को अपना आदर्श मानते हैं, औरंगजेब को अपना आदर्श मानते हैं, राम और कृष्ण को नहीं मानते।
4: अंतर यही है, बीजेपी की सरकार आई तो अब पैसा मंदिरों के विकास के लिए, धामों के सुंदरीकरण में खर्च हो रहा है, और समाजवादी पार्टी के समय वही पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल के लिए चला जाता था।
2: वक्फ के नाम पे हजारों एकड़ लैंड बेच भी दी गई, वारा नारा किया गया, ये सीधे सीधे डकैती थी। इसके नाम पर एक भी बार समाजवादी पार्टी नहीं बोली, एक भी बार कांग्रेस नहीं बोली,

0: बल्कि जब मोदी जी ने इसके खिलाफ कानून बनाया, उस लूट के खिलाफ कानून बनाया, तो इन लोगों ने आंदोलन किया।
1: एक तरफ समूचा विपक्ष राम मंदिर में चोरी को लेकर हमलावर था, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वक्फ में घोटालों का मुद्दा उठाया और अब उसी लाइन को यूपी के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ने और आगे बढ़ा दिया।
2: उत्तर प्रदेश पे भी वक्फ बोर्ड, सुन्नी वक्फ बोर्ड जो है इस समय वर्तमान में रिक्त है। आने वाले दिनों सुन्नी वक्फ बोर्ड का गठन होगा, तो जो वक्फ अधिनियम संशोधन अधिनियम के अनुसार जो गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन के अनुसार उत्तर प्रदेश में भी उस अधिनियम के माध्यम से वक्फ के बोर्ड का गठन होगा, जिसमें पिछड़े मुसलमानों को रखा जाएगा, मुस्लिम महिलाओं को रखा जाएगा, ऐसे हमारे हिंदू भाई समाज के दो भाइयों को रखा जाएगा। जो भी उस प्रावधान में जो भी गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन के अनुसार ही आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में भी वक्फ बोर्ड के फॉर्मेशन होगा।
1: अगर ऐसा होता है तो एमपी के बाद उत्तर प्रदेश देश का दूसरा राज्य होगा जो वक्फ बोर्ड में गैर मुसलमान सदस्य रखेगा।
3: मुझे लगता है कि ये हमारे जो फंडामेंटल राइट हैं और हमारे जो मजहबी आजादी हमें दी गई है, यकीनी तौर पर उसके साथ कहीं ना कहीं सीधा टकराव है, इसलिए हुकूमत को अपने इस फैसले पर नजरसानी करने की जरूरत है।
1: हालांकि उत्तर प्रदेश में मौजूदा शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन का कहना है कानून संसद से बना हुआ है तो उसका पालन अनिवार्य है, लेकिन सुन्नी समुदाय के मौलानाओं का कहना है वक्फ संशोधन कानून के कुछ प्रावधानों पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है और मामला कोर्ट में लंबित, लिहाजा अभी ऐसा नहीं करना चाहिए। वैसे यूपी में फिलहाल दो वक्फ बोर्ड, सुन्नी वक्फ बोर्ड और शिया वक्फ बोर्ड। दोनों बोर्ड की संरचनाएं कुछ ऐसी कि दोनों बोर्ड में 11-11 सदस्य होते हैं, जिसमें अध्यक्ष के अलावा मुस्लिम सांसद, मुस्लिम विधायक, मुस्लिम विधान परिषद सदस्य, इस्लामिक विद्वान और मतवल्लियों के प्रतिनिधि होते हैं। इसके अलावा सरकारी अधिकारी सीईओ होता है। यानी अभी की व्यवस्था में गैर मुस्लिम सदस्य वक्फ बोर्ड में नहीं होते, लेकिन वक्फ संशोधन बिल के बाद, नई व्यवस्था के बाद वक्फ बोर्ड में कम से कम दो गैर मुस्लिम सदस्य अनिवार्य हैं। इसके अलावा दो मुस्लिम महिला सदस्य, पसमानदा प्रतिनिधि, सांसद, विधायक, बार काउंसिल के सदस्यों में से एक एक का सीधे मनोनयन होगा। यानी पहले चुनाव होता था, उन्हें अब मनोनीत किया जाएगा।
4: चंदा और चढ़ावा में लूट का मुद्दा है, उस मुद्दे से जनता का ध्यान हट जाए, हर समस्या का समाधान मुसलमान है भारतीय जनता पार्टी की, तो अब फिर से मुसलमान को सामने लाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया जा रहा है। मुसलमान मुसलमान मुसलमान मुसलमान, हर समस्या का समाधान मुसलमान है, भारतीय जनता पार्टी का ये प्रयास वो सफल होने वाला नहीं।
1: यूपी में सुन्नी वक्फ बोर्ड इसी साल 15 मार्च को भंग हुआ है। 6 महीने के अंदर इसका पुनर्गठन जरूरी है, यानी चुनाव से ठीक पहले सितंबर 2026 तक यूपी में सुन्नी वक्फ बोर्ड का गठन होगा, जिसमें यूपी सरकार हिंदू समुदाय के 2 सदस्यों को रखने की तैयारी कर चुकी है। दरअसल इसी हफ्ते मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी राज्य वक्फ बोर्ड का ऐलान किया है, जिसमें 10 सदस्यों में 2 सदस्य हिंदू हैं। इसके बाद उत्तर प्रदेश में से लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई। संतोष शर्मा के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक।
5: बारिश इस वक्त के मौसम में वो अपराधी है जिस पर हर राज्य के हर दल की सरकार ठीकरा फोड़कर अपनी जवाबदेही से बच जाना चाहती है। जैसे महाराष्ट्र में ही करीब 7,000 करोड़ रुपए की लागत वाले और हाल ही में शुरू किए गए मुंबई पुणे मिसिंग लिंक प्रोजेक्ट पर भारी बारिश के कारण जब भूस्खलन हुआ तो सवाल उठा कि इसे इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना बताया जा रहा था, वहां इतनी खामियां हैं। सवाल उठा तो मुख्यमंत्री विधानसभा में बोलते बोलते मर्यादा तोड़ने लगे।
6: हमारे जयंत राव जी ने सही बात कही, जिनको कुत्ता नहीं पोछता वो आजकल सोशल मीडिया पर आकर सबको गाली देते हैं, मुख्यमंत्री को भी गाली देते हैं। ऐसे कुछ भाड़े के टट्टे इस मिसिंग लिंक के बारे में भी पैसा ले लेकर सोशल मीडिया पर लिख रहे थे, उनको भी कह देना चाहता हूं अगर महाराष्ट्र का अपमान करोगे छोड़ूंगा नहीं। तो गाली देते हैं।
1: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस गुस्से में हैं। गर्म तवे पर किसी ने छन्न से पानी का छींटा मारा ऐसे दिखते हैं, लेकिन क्यों? बात 3 दिन पुरानी है। मिसिंग लिंक के नाम से मशहूर मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे जो करीब 2 महीने पहले ही चालू हुआ, जिसे बनाने में जनता के 6,695 करोड़ रुपए लगे, जिस मेगा प्रोजेक्ट को इंजीनियरिंग का बेजोड़ नमूना कहा गया, तेज बारिश के बाद भूस्खलन से उसी नायाब इंजीनियरिंग वाले मिसिंग लिंक पर पत्थर टूट पड़े। भूस्खलन के बाद यहाँ कुछ देर तक रास्ता बंद रहा, लोगों ने सवाल सियासत से लेकर सोशल मीडिया तक पर पूछे, तो अगर सवाल पूछा जाए तो क्या वो गलत है? क्या उससे महाराष्ट्र का अपमान? पहले 6 जुलाई की इस हादसे के वक्त की रिपोर्ट देखिए।
7: मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे के मिसिंग लिंक पर है। 2 महीने पहले इसी मिसिंग लिंक को बहुत जोर शोर के साथ इनॉग्रेट किया गया था, लेकिन अभी इस वक्त इसकी हालत आप देख लीजिए, तो तकरीबन 4 बजे सोमवार के समय 4 बजे अचानक से यहाँ पे लैंडस्लाइड हो गया। पुणे से मुंबई की तरफ जो जाने वाला जो रास्ता है उस पर इसको ठप है और लैंडस्लाइड की वजह से ये पूरा का पूरा रास्ता बंद हो गया है। अभी आप देख लीजिए 4 बजे से दोपहर के अभी 12 बज रहे हैं, अभी भी बताया जा रहा है कि 3 से 4 घंटा और लग सकता है पूरे मलबे को निकालने के लिए और इस ये जो मलबा है उसको ले जाके ये लोग बाहर देख रहे हैं। लेकिन आप देख लीजिए पूरा का पूरा जो ऊपर का जो हिस्सा था वो भूस्खलन के दौरान पूरा का पूरा गिर गया, बड़े बड़े पत्थर यहाँ पे गिरे हुए हैं।
1: असल में सवाल इसीलिए पूछा जाता है क्योंकि जब कोई इस तरह का एक्सप्रेसवे हाईवे बनाता है तो उसको लेकर दावे ऐसे ऐसे करता है जिसके बाद भरोसा जनता को दिया जाता है कि अब कुछ गड़बड़ नहीं होने वाला। लेकिन फिर उन दावों की पोल प्रकृति खोल देती है और सवाल फिर मुख्यमंत्री को चुभ जाता है।
8: कोई पेड़ गिर के मर रहा है, कोई मैनहोल में गिर के मर रहा है, कोई किसी और आपत्ति में मर रहा है, कभी कोई इलेक्ट्रिक्यूट होकर मर रहा है। जवाब आपको देना पड़ेगा, जिस कुर्सी पे आप हो आप राजा नहीं हो, जनता के सेवक हो, और ये मान के चलिए कि जनता हर समय आपको सवाल करेगी, ये घमंड नहीं कोई देखेगा।
9: काल सध्या मुख्यमंत्र्यांचं फडणवीसांचं भाषण विधानसभेमधलं, त्याचं म्हणे राजकारण करू नका। अरे वा, आणि काय म्हणतायत म्हणे, एक वेळ मला बोला पण महाराष्ट्राचा अपमान मी सहन करणार नाही। वारे वा, लोक त्या मिसिंग लिंक बद्दलच बोलतायत, महाराष्ट्राचा कुठे अपमान करतायत? पण ते काय सगळं घेऊन जायचं, म्हणजे ते वरपासून खालपर्यंत आता काय सवय लागली आहे? केंद्र सरकारच्या कुठच्या गोष्टींबद्दल बोललं की तुम्ही देशविरोधी, आता मिसिंग लिंक बद्दल बोललं तर याच्यात महाराष्ट्राचा अपमान कुठे आला?
1: सवाल सियासत का नहीं, सवाल इस बात का है कि अगर कहीं कमी है और उस पर प्रश्न है तो क्यों इसे साजिश और अपमान तक सत्ताधारी बताने लगते हैं? जबकि महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के संयुक्त प्रबंध निदेशक राजेश पाटिल से आज तक संवाददाता विद्या ने पूछा कि इस बात का अंदाजा नहीं लगाया था कि ऐसा लैंडस्लाइड हो सकता है।
10: स्ट्रक्चरली कोई डैमेज नहीं हुआ है इस लैंडस्लाइड में, लेकिन क्या जिस तरीके से ये बारिश हुई क्या इस बात का अंदाजा नहीं था कि यहाँ पे लैंडस्लाइड हो सकता है? उस समय भी क्या आप लोगों ने असेसमेंट किया था या उस असेसमेंट के बाहर ये हो गया?
11: या असेसमेंट किया था, लेकिन टनल के ऊपर जो ओवरबर्डन है वो 220 meters है ओवरबर्डन, और इसका डिजाइन भी हमने IIT बॉम्बे से अप्रूव करके लिया था, वेटिंग करके लिया था, और एज पर देयर अप्रूव डिजाइन वो हमने रॉकफॉल मिटिगेशन मेजर किया था, एंड वो जो रॉकफॉल मिटिगेशन मेजर हमने किया है वो इंटैक्ट है, वो हमने अभी अप टू 15 meters किया था, वो इंटैक्ट है, और वो अभी बाकी जो हुआ उसके लिए वी हैव टू डू कॉम्प्रिहेंसिव इंस्पेक्शन एंड देन वी हैव टू कम विद सम स्ट्रॉन्ग रेमेडियल एक्शन फॉर दैट।
1: महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम के संयुक्त प्रबंध निदेशक इस बात को समझते भी हैं और समझाते भी कि सुरंग के ठीक ऊपर लगभग 120 मीटर पर मिट्टी पत्थर जमा है। IIT बॉम्बे से पहले ही पूरी सलाह ली जा चुकी है। सुरंग के ऊपरी हिस्से से 10 मीटर तक बचाव के उपाय किए गए थे। हालांकि भूस्खलन सुरंग के ऊपरी हिस्से से 150 या 200 मीटर की दूरी से हुआ और इस वजह से चट्टाने गिरी और फिर मिसिंग लिंक सवालों में आए। तो जरूरी ये है कि कहीं कुछ हो तो उसके कारण को समझकर कारण सबको बताया जाए, न कि सवाल पूछने या सवाल उठाने वालों पर सवाल उठाकर सवाल को ही दबा दिया जाए।
5: अब आपको पुणे के पिंपरी चिंचवाड़ से आई खबर से खबरदार करते हैं, जहां पहाड़ लैंडस्लाइड की तरह टूटा था, 3 मंजिला इमारत पर गिरकर लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ गया, लेकिन यह पहाड़ कूड़े का था। यह प्लान से जुड़ी इमारत को मलबे में बदल देता है, 23 लोग इसमें फंस जाते हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन चलता है और जवाबदेही के सवाल पर जिम्मेदार लोग बारिश पर ठीकरा आसानी से फोड़ कर निकल जाते हैं।
1: जहां कूड़े का पहाड़ खड़ा करके कूड़े से बिजली बनाने का प्लांट बनाया, क्या वही लापरवाही इस कदर रही कि वो कूड़े का पहाड़ जिंदगियों पर टूट पड़ा? कूड़े का पहाड़ जब लगातार बारिश के बाद टूटा और गिरा तो देखिए लैंडस्लाइड जैसे हालात ऐसे बन गए कि कूड़े से बिजली बनाने वाले प्लांट की 3 मंजिला इमारत ढह जाती है। चीख पुकार के बीच पहले दिल दहला देने वाले इस वीडियो को देखिए, जहां किसी तरह लोगों को बिल्डिंग के ढेर के बीच से निकाला जाता है। सबसे पहले दमकल वाले पहुंचे, फिर NDRF की टीमें लग जाती। यहां लगातार लोगों को इस मलबे से बचाने की कोशिश जारी दिखती है। इस बीच मलबे से कोई जख्मी हालत में जिंदगी के लिए जंग लड़ता बाहर आता है तो वहां खड़े लोग इंतजार करते हैं कि इसकी सांसें चल रही है। पिंपरी चिंचवड़ नगर निगम के अधीन आते इस इलाके में कूड़े से बिजली बनाने वाले प्लांट पर कूड़े का पहाड़ गिरने के बाद लोगों को बाहर निकालना कितना कठिन है, इसे आप NDRF के लोगों से समझिए।
12: पूरी बिल्डिंग कोलैप्स हो रखी है, पूरे मलबे से दबी हुई है एंड बॉडीज हमने ट्रेस करी हैं, 3 के करीब कर ली जिसमें से 1 निकाली है। एक को और थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि जो मलबा है मैनुअली निकालेंगे, अगर हम मशीन लगा के निकालेंगे वाइब्रेशन हो जाएगा जिससे कि फर्दर कोलैप्स हो सकते हैं।
13: जो एरिया बताया जा रहा है कैंटीन एरिया, वो हम फोकस कर रहे हैं, वहाँ पे 5 to 6 का बताया गया है फिगर, तो राइट नाउ वी आर होपिंग कि 7 to 8 है, इससे ज्यादा तो नहीं है।
14: जवान पार्किंग तक जा चुके हैं?
13: जवान पार्किंग तक अभी नहीं पहुंच पाए हैं क्योंकि धीरे धीरे मैनुअली काम हो रहा है हाथ से निकाल के, क्योंकि हम मशीन नहीं अप्लाई कर सकते। मशीन अप्लाई करेंगे पूरा बिल्डिंग पैनकेक कोलैप्स हो जाएगा, तो जो है भी वो पूरा दब जाएगा।
1: अब सवाल है कि ऐसे हालात कैसे बने, क्या इस बात का अंदाजा किसी को नहीं था कि जो कूड़े का पहाड़ यहाँ इतना ऊंचा खड़ा है इसकी वजह से हादसा भी हो सकता है। आज तक संवाददाता ने इसीलिए सीधे विजय सूर्यवंशी आयुक्त पिंपरी चिंचवड़ नगर निगम से सवाल किया है।
15: इतना बड़ा हादसा हुआ है, इसका जिम्मेवार कौन है, उस पर कुछ दर्ज होगा पुलिस थाने में?
16: देखो ये नेचुरल कैलामिटी है, ऐसा नहीं कि बिल्डिंग अपने आप ढह गई। अपने आप ढह जाती तो हम कहते कि इसका स्ट्रक्चर वीक था, इसका स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम था। अभी आप देख रहे हैं कि ये बड़ा लैंडस्लाइड जैसे हुआ है, मतलब 60 मीटर हाइट का ये कचरे का पहाड़ है ऑलमोस्ट, और 600 mm बारिश जो 36 आवर्स में, 36 घंटे में 600 mm, इसकी वजह से उसका जो वेट बढ़ गया होगा और जैसे लैंडस्लाइड होता है वैसे वो ढह गया और उसका हॉरिजॉन्टल प्रेशर बिल्डिंग के आने के बाद वो बिल्डिंग कोलैप्स हो गई।
1: 60 मीटर ऊंचा कूड़े का पहाड़ खड़ा था, ये बात खुद आयुक्त मानते हैं। ये भी मानते हैं कि बारिश बहुत ज्यादा लगातार हुई तो क्यों नहीं संकट को पहले समझा गया, क्यों नहीं काम रोका गया, ये क्यों नहीं सोचा गया कि अगर यहाँ तेज बारिश हुई तो यही कचरे का 60 मीटर ऊंचा पहाड़ पानी में भीग कर जब तेज हवा से गिरेगा तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता है।
17: डंपिंग ग्राउंड है पिंपरी चिंचवड़ का, ये 1982 से, मतलब अभी करीब करीब उसको 47 ईयर हो गए, 47 साल से यहाँ चल रहा है और बहुत बड़ा पहाड़ी बन गया उसका। तो
1: कूड़े के पहाड़ को कम करने के लिए बताया गया कि वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट शुरू किया गया ताकि कचरे की मात्रा कम की जा सके, लेकिन ज्यादा जोर प्रशासन का इस हादसे पर बारिश को कटघरे में खड़ा करने में लगा हुआ है।
15: पूछताछ की जाएगी इस मामले में?
16: देखो अभी तो हम रेस्क्यू ऑपरेशन में व्यस्त है सब, अभी हमारी प्रायोरिटी है कि जो 8 लोग और है उनको जिंदा बाहर निकाला जाए, उनको रेस्क्यू करा जाए, उसके बाद में ये सब सोचा जाएगा।
15: क्योंकि ये बहुत बड़ा मामला है, 23 लोग जो थे अंदर थे, अभी 15 लोगों को निकाला गया, उनमें से एक डेथ हुई है ऐसा दमकल विभाग का कहना है। तो पूछताछ तो होनी चाहिए, मतलब किस तरह से ये मामला हुआ, क्योंकि वहाँ के लोग बोल रहे हैं कि 2 दिन पहले उनको लगा था कि ये जो कचरे का ढेर है वो नीचे सरक सकता है।
16: नहीं देखो जरूर बहुत दुर्दैवी घटना है और भगवान की दया से अभी तक तो हम 14 लोग जो निकाल पाए, मगर इस घटना के बारे में अभी सब बैठेंगे, क्या एग्जैक्टली हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसके बारे में सब सोचेंगे और उसके बारे में नेक्स्ट एक्शन उसके बाद डिसाइड करेंगे।
1: बस यहाँ गनीमत ये रही कि बहुत तेजी से रेस्क्यू ऑपरेशन करके जो लोग दबे रहे उन्हें निकाला जाता रहा।
5: सूरत यानी कि गुजरात की डायमंड सिटी, जहां इतनी बारिश पिछले 3 दिन में हुई है कि दावा यह किया गया कि दशकों का रिकॉर्ड टूट चुका है, और जब पानी सूरत में उतरा तो लोगों को बहुत नुकसान का पता चला।
14: सूरत के वराछा में स्थित पुदार आर्केड में फिलहाल मेरी मौजूदगी और मेरे पीछे की तरफ की तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा, जहां पे मोबाइल शॉप बेसमेंट में आए हुए हैं। पूरे बेसमेंट में अलग अलग जो शॉप्स फिलहाल दिखाई दे रही है, जिसके बाहर की तरफ सामान्य जल भराव की स्थिति है और साफ सफाई का काम यहाँ पे चल रहा है, क्योंकि 30 घंटे पहले सूरत के अलग अलग इलाकों में 15 से 18 इंच जितनी बारिश हुई और इस बारिश की वजह से चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई पड़ रहा था। लेकिन बीते 30 घंटों में अलग अलग इलाकों में जो जल भराव की स्थिति थी, अब तो जल भराव की स्थिति देखने को नहीं मिल रही है। पर ये वही पुदार आर्केड है जहां पे पूरा बेसमेंट जलमग्न हो गया था।
18: यहां पे ये गुजरात का सबसे बड़ा मोबाइल हब है और यहां पे नए शोरूम है, रिपेयरिंग है, सेकंड हैंड वाले भी है और ये एक 200 दुकान अंदर घर का हो चुकी है। तो समझ लो कि एक दुकान में किसी का 1 करोड़ का माल था, किसी का 50 लाख का था। आप एवरेज भी लगाओगे तो 200 से 250 करोड़ का नुकसान है।
19: 5 दुकान लाइन में अपनी अपना होलसेल का काम था। होलसेल में आपको पता होगा कि बहुत सारा स्टॉक होता है, सब प्रीमियम और ब्रांडेड चीज अभी आई थी माल अपने पास, 20 से 30 कार्टून आए थे और पुराना भी माल बहुत डिस्प्ले करा हुआ था। टोटल आश्रे 1.5 से 2 करोड़ का हमारा नुकसान है टोटली। अभी कोई भी प्रशासन हमको कोई जवाब नहीं दे रही है।
14: जिस प्रकार की तस्वीरें सामने आ रही है वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये जो टेक्सटाइल मार्केट है वहां जल भराव की स्थिति अभी भी देखने को मिल रही है। टेक्सटाइल मार्केट का ये बिल्डिंग और इसी बिल्डिंग के नीचे की तरफ 2 फ्लोर गोडाउन है और वो दोनों फ्लोर का जो गोडाउन है, बेसमेंट है, वो पूरा जलमग्न है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जो भी बेसमेंट के अंदर मौजूद गोडाउन के अंदर पानी भरा हुआ है उसे निकालने के लिए मोटर का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। पानी निकालने की कोशिश बीते कई घंटों से जारी है, लेकिन इन कोशिशों के बीच करोड़ों की नुकसानी की बात अब फॉस्टा यानी कि जो टेक्सटाइल एसोसिएशन है उनकी तरफ से कही जा रही है। हमारे साथ फॉस्टा के जनरल सेक्रेटरी भी मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे।
20: रोड जाम होने की वजह से, पीछे खाड़ी जाम होने की वजह से पानी गया नहीं और वो फ्लो बैक मारा, उसने भी मारा और ऊपर से कुदरत की भी बरसात गिरने से बड़ा बड़ा नुकसान हुआ है व्यापारियों का। और रही बात एवरेजों की, तो हमारा अंदाजा ऐसा है कि कम से कम जिस हिसाब से आपने ये मार्केट देखा है, ऐसे कई मार्केट अभी भी पानी के अंदर है, जिसका हम लोग ऐसा समझते हैं कि अंदाजन 1000 दुकानें ऐसी होगी जो नुकसान के साथ में जकड़ी हुई है। और ये लाखों में नुकसान नहीं है, ये नुकसान करोड़ों में है।
5: अमेरिका और ईरान के बीच महायुद्ध का बिगुल फिर से बज चुका है। दोनों मुल्कों की सेनाएं आमने सामने हैं। हॉर्मुज पर ईरानी हमले के बाद अमेरिकी सेना ने ईरान के 170 ठिकानों पर भीषण बमबारी की है।

0: ट्रंप के बारूद से धुआं धुआं हुआ ईरान। 24 घंटे में 170 अड्डों पर भीषण बमबारी। ईरानी एटमी सेंटर पर अमेरिका का हमला। ट्रंप के वॉर गेम में बुरी तरह फंस गया ईरान। हॉर्मुज पर हमला ईरान के लिए बहुत महंगा। युद्ध शुरू, अब ट्रंप का ऑपरेशन मुस्तबा। सत्ताईस जून को ईरान ने हॉर्मुज पर हमला किया। हमले के बाद अमेरिका ने अगले 48 घंटों में दो बार ईरान पर भीषण बमबारी की। एक बार फिर 6 जुलाई को ईरान ने हॉर्मुज में 3 टैंकरों को निशाना बनाया। ट्रंप ने अपनी धमकी को सच साबित करते हुए 7 जुलाई और 8 जुलाई को ईरान पर ताबड़तोड़ हवाई हमले किए। महज 24 घंटों के अंदर ईरान के 170 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। ईरान पर हमले का वीडियो अमेरिकी सेना ने जारी किया। अगर ईरान पर अमेरिकी हमले की टाइमिंग को देखें तो संकेत यही है कि विनाशकारी युद्ध का बिगुल बज चुका है। संकेत नंबर 1, ईरान पर अमेरिका का विध्वंसक हमला जारी। संकेत नंबर 2, ट्रंप का ऐलान युद्ध विराम खत्म, अब वार्ता नहीं। संकेत नंबर 3, ईरान पर अमेरिकी हमलों के समर्थन में नाटो। संकेत नंबर 4, हॉर्मुज पर ईरानी हमले की इंटरनेशनल निंदा। संकेत नंबर 5, तेहरान के डिप्टी मेयर बोले एटमी हमले का डर। मतलब यही है कि ईरान और अमेरिका के बीच तनाव चरम पर है। अब ये युद्ध दुनिया को अपनी चपेट में ले सकता है, क्योंकि ट्रंप ने ईरान के ठिकानों को अपनी मिसाइल के टारगेट पर लॉक कर दिया है, तो वहीं ईरान के लिए वार्ता के दरवाजे पर ताला लगा दिया है।
1: Retribution for last night. They hit actually 3 boats, not 2. And when they hit, we hit back much harder. Another way of doing it. We have many ways we can win, but we've already won militarily. They have very little. They have very little left, and they want to make a deal so badly. They called a little while ago. They want to make a deal so badly. I just don't know if they're worthy of making a deal. I don't know that they're going to honor the deal. That's the problem. Because it's sort of crazy. To be honest with you, they're sort of crazy. They're a little bit out of control, but they want to make a deal. Badly.
0: अगर ईरान पर अमेरिका के ताजा हमलों को देखें तो ट्रंप का वॉर गेम समझना मुश्किल नहीं है। ट्रंप की हिट लिस्ट पर हैं ईरान के अहम सैन्य ठिकाने, तेल और गैस के लिहाज से अहम शहर, ईरान के अहम बंदरगाह, ईरान का ट्रांसपोर्ट नेटवर्क और ईरान के परमाणु सेंटर। ईरानी मीडिया का दावा है कि बुशहर में तेज धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं। ये धमाके ईरान के न्यूक्लियर प्लांट के आसपास सुने गए हैं। ठीक ऐसे ही चाबहार पोर्ट को निशाना बनाया गया। IRGC का दावा है कि अमेरिका ने मशहद जाने वाले रास्तों के पुलों को निशाना बनाया। यही नहीं, ईरान के गोलिस्तान प्रांत के अफ्तेके खान रेलवे ब्रिज पर मिसाइल अटैक किया है। ट्रंप ने ईरान को सीधी धमकी दी है कि अमेरिका की सैन्य कार्रवाई अब रुकेगी नहीं। अमेरिका के हमले ईरान द्वारा जहाजों पर की गई बमबारी का प्रतिशोध है। अगर ऐसा दोबारा हुआ तो हालात और भी बदतर हो जाएंगे। बड़ी बात यह है कि शांति समझौते के बावजूद हॉर्मुज पर हमले करके ईरान चौतरफा घिर गया है। ईरान के खिलाफ मिडल ईस्ट के तमाम मुल्क बड़े और कड़े एक्शन की मांग कर रहे हैं। इसमें वो मुल्क भी शामिल हैं जो चंद दिनों पहले तक अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता कर रहे थे। ऐसे में अमेरिका को पता है कि हॉर्मुज पर हमला करके ईरान ने गलत बटन दबा दिया है, लिहाजा ईरान ने अमेरिका को हमले का मौका थाली में सजाकर सौंप दिया है। इसी कड़ी में अमेरिका ने ईरान के कई शहरों पर चुन चुन कर बम बरसाए। ट्रंप का टारगेट बंदर अब्बास। ये ईरान का सबसे बड़ा व्यावसायिक और नौसैनिक बंदरगाह है। यहां पर अमेरिका ने बमबारी करके ईरानी सेना और ईरानी कारोबार को चोट पहुंचाई। ट्रंप का टारगेट वो शहर, ये वही शहर है जहां पर ईरान का एकमात्र चालू परमाणु बिजली प्लांट है। यहां हमला करके ट्रंप ने संदेश दिया है कि ईरान का कोई भी एटमी सेंटर नहीं बचेगा। ट्रंप का टारगेट सिरिक, ये शहर होर्मुज से सटा हुआ है, यहीं से ईरानी सेना गुजरने वाले जहाजों की निगरानी करती है। अमेरिका ने सिरिक में मौजूद ईरानी सैन्य ठिकानों के साथ साथ नौसेना की बोट को निशाना बनाया। ट्रंप का टारगेट चाबहार पोर्ट, ईरान का इकलौता बंदरगाह जो सीधे हिंद महासागर से समुद्री यातायात तय करता है। ये कारोबार और सैन्य लिहाज से अहम है। यहाँ पर भी अमेरिकी हमला हुआ। ट्रंप का टारगेट केश्म द्वीप, फारस की खाड़ी का सबसे बड़ा द्वीप जहाँ ईरानी नौसेना के ठिकानों के साथ साथ तेल गैस फैसिलिटी है। अमेरिका ने इस आइलैंड पर भी भीषण बमबारी की है। मतलब ईरान से ट्रंप का बदला बहुत घातक है। ईरान की सरकारी मीडिया ने माना है कि पिछले 48 घंटों में 5 प्रांतों पर हुए अमेरिकी हमलों में कम से कम 14 लोग मारे गए जबकि 78 से ज्यादा जख्मी हैं। अगले कुछ घंटों में ये आंकड़े बढ़ सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ व्हाइट हाउस के हवाले से एक्सियोस में छपी रिपोर्ट में ईरान को लेकर कई बड़े दावे किए गए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति का पूरा जोर होर्मुज को ईरानी नियंत्रण से मुक्त कराने पर है, लिहाजा होर्मुज को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति की तैयारी ईरान के खिलाफ लंबे युद्ध की है। अगर ईरान ने अमेरिकी हमले के बाद फिर हमला किया तो अमेरिका कई हफ्तों तक हवाई हमले करेगा। ईरान के अहम सैन्य ठिकानों के साथ साथ एटमी सेंटर और तेल गैस के प्लांट को निशाना बनाया जाएगा। अमेरिका की उम्मीद है कि होर्मुज की वजह से अब की बार दुनिया के तमाम मुल्क और नाटो उनका साथ देंगे। मतलब यही है कि ईरान अलग थलग पड़ सकता है क्योंकि होर्मुज पर ईरानी हमले की निंदा दुनिया के सभी मुल्कों ने की है। यहां तक कि फ्रांस ने भी माना है कि होर्मुज पर हमला करके ईरान ने अमेरिका के साथ हुए शांति समझौते के MOU का उल्लंघन किया है। दूसरी तरफ होर्मुज पर ताजा हमलों के बाद नेटो ने भी ईरान पर अमेरिकी हमलों का खुला समर्थन किया है। जब युद्ध विराम लागू हो और ईरान मूल रूप से युद्ध विराम का उल्लंघन कर रहा हो तो मुझे लगता है कि अमेरिका का बलपूर्वक जवाब देना बेहद जरूरी है। ये पहली बार है जब नेटो ने ईरान पर अमेरिकी हमलों का समर्थन किया है, तो क्या यह समर्थन आने वाले दिनों में ईरान के खिलाफ अमेरिकी हमलों में भी दिखेगा? अगर ऐसा हुआ तो ईरान के खिलाफ अब ये युद्ध सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं रहेगा। मतलब ईरान के खिलाफ हमलों में नेटो भी शामिल हो सकता है। नेटो भी अमेरिका के साथ युद्ध में शामिल हुआ तो ईरान की हार तय है।
1: To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is? They're scum. They're sick people. They're led by sick people. And they're vicious, violent people. And if they had a nuclear weapon, they'd use it. As far as I'm concerned, it's over.
0: ईरानी विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी हमलों का समर्थन करने पर नेटो की निंदा की है। ईरान ने आरोप लगाया कि ईरान अमेरिका युद्ध का जिम्मेदार नेटो है। आरोप यही है कि अमेरिका और इजराइल को लेकर नेटो ने निष्पक्ष भूमिका नहीं निभाई। तो क्या ये जंग अमेरिका बनाम ईरान नहीं बल्कि ईरान बनाम दुनिया में बदल सकती है? आज तक ब्यूरो
2: के साथ हम यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: 30,000 भारतीयों के बीच मेलबर्न में बोले प्रधानमंत्री मोदी, शिप से चिप तक बना रहा है भारत, ग्रो मोर अचीव मोर का दिया नारा, कहा रक्षा अंतरिक्ष और यूरेनियम डील पर मुहर। टीएमसी को छोड़ बीजेपी माया ममता के तीनों ही पूर्व राज्यसभा के सांसदों को मिला इनाम, उपचुनाव के लिए बने कमल के उम्मीदवार, कल ही पार्टी में शामिल हुए थे सुखेंदु, सुष्मिता और प्रकाश। यूपी में चढ़ा चुनावी तापमान, योगी का आरोप, 2017 से पहले कब्रिस्तानों पर पैसे खर्च करती थी एसपी सरकार, ओपी राजभर ने भी अखिलेश पर किया बड़ा हमला। महाराष्ट्र और गुजरात समेत उत्तर भारत में जोरदार बारिश से परेशानी, दिल्ली एनसीआर भी हुआ पानी पानी, बादली में डूबने से 7 साल के बच्चे की मौत, गाजियाबाद में भी एक बच्चे की गई जान। अमेरिकी हमले के बीच खामनेई का अंतिम संस्कार, ट्रंप ने फिर दी धमकी, कहा 20 गुना ताकत से करेंगे अटैक, बदले में अमेरिकी ठिकानों पर तेहरान ने बरसाए बॉम्ब। बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच बड़ा सनातनी साबित करने की लड़ाई चल रही है। समाजवादी पार्टी कह रही है कि वो सनातनी है, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बता रहे हैं कि विकास का जो पैसा आज सनातन की रक्षा के लिए खर्च किया जा रहा है वो समाजवादी सरकार में कब्रिस्तानों पर खर्च किया जाता था। इन सबके बीच वक्फ को लेकर भी खींचतान यूपी में शुरू हो चुकी है।
1: बीजेपी के लोग किसी भी सीमा तक झूठा प्रचार कर सकते हैं।
2: समाजवादी पार्टी के लोगों को तो ठेके पट्टे से ही फुर्सत नहीं है।
3: अयोध्या में चढ़ावा चोरी क्या हुई, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की चुनावी राजनीति के पौबारा हो गए। महीने भर में कांग्रेस और समाजवादियों ने जितनी बार राम का नाम नहीं लिया होगा उतनी बार वक्फ, बाबर, कब्रिस्तान हो चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ धुआंधार रैलियां और कार्यक्रम कर रहे हैं, सैकड़ों करोड़ की योजनाओं की सौगात जिले जिले दी जा रही है, और इसके साथ ही विपक्ष पर मुस्लिम परस्त, मुगल परस्त, मौका परस्त होने की सियासी बौछार चल रही है।
2: आज के समाजवादी राम से दूरी बनाते हैं, बाबर को अपना आदर्श मानते हैं, औरंगजेब को अपना आदर्श मानते हैं, राम और कृष्ण को नहीं मानते।
4: अंतर यही है, बीजेपी की सरकार आई तो अब पैसा मंदिरों के विकास के लिए, धामों के सुंदरीकरण में खर्च हो रहा है, और समाजवादी पार्टी के समय वही पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल के लिए चला जाता था।
2: वक्फ के नाम पे हजारों एकड़ लैंड बेच भी दी गई, वारा नारा किया गया, ये सीधे सीधे डकैती थी। इसके नाम पर एक भी बार समाजवादी पार्टी नहीं बोली, एक भी बार कांग्रेस नहीं बोली, बल्कि जब मोदी जी ने इसके खिलाफ कानून बनाया, उस लूट के खिलाफ कानून बनाया, तो इन लोगों ने आंदोलन किया।
3: एक तरफ समूचा विपक्ष राम मंदिर में चोरी को लेकर हमलावर था, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वक्फ में घोटालों का मुद्दा उठाया, और अब उसी लाइन को यूपी के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ने और आगे बढ़ा दिया।
5: उत्तर प्रदेश पे भी वक्फ बोर्ड, सुन्नी वक्फ बोर्ड जो है इस समय वर्तमान में रिक्त है। आने वाले दिनों में जब सुन्नी वक्फ बोर्ड का गठन होगा तो जो वक्फ अधिनियम संशोधन अधिनियम के अनुसार जो गाइडलाइन है उस गाइडलाइन के अनुसार उत्तर प्रदेश में भी उस अधिनियम के माध्यम से वक्फ के बोर्ड का गठन होगा, जिसमें पिछड़े मुसलमानों को रखा जाएगा, मुस्लिम महिलाओं को रखा जाएगा, ऐसे हमारे हिंदू भाई समाज के दो भाइयों को रखा जाएगा। जो भी उस प्रावधान में जो भी गाइडलाइन है उस गाइडलाइन के अनुसार ही आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में भी वक्फ बोर्ड के फॉर्मेशन होगा।
3: अगर ऐसा होता है तो एमपी के बाद उत्तर प्रदेश देश का दूसरा राज्य होगा जो वक्फ बोर्ड में गैर मुसलमान सदस्य रखेगा।
6: मुझे लगता है कि ये हमारे जो फंडामेंटल राइट हैं और हमारे जो मजहबी आजादी हमें दी गई है यकीनी तौर पर उसके साथ कहीं ना कहीं सीधा टकराव है, इसलिए हुकूमत को अपने इस फैसले पर नजरसानी करने की जरूरत है।
3: हालांकि उत्तर प्रदेश में मौजूदा शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन का कहना है कानून संसद से बना हुआ है तो उसका पालन अनिवार्य है, लेकिन सुन्नी समुदाय के मौलानाओं का कहना है वक्फ संशोधन कानून के कुछ प्रावधानों पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है और मामला कोर्ट में लंबित, लिहाजा अभी ऐसा नहीं करना चाहिए। वैसे यूपी में फिलहाल दो वक्फ बोर्ड, सुन्नी वक्फ बोर्ड और शिया वक्फ बोर्ड, दोनों बोर्ड की संरचनाएं कुछ ऐसी कि दोनों बोर्ड में 11-11 सदस्य होते हैं जिसमें अध्यक्ष के अलावा मुस्लिम सांसद, मुस्लिम विधायक, मुस्लिम विधान परिषद सदस्य, इस्लामिक विद्वान और मतवल्लियों के प्रतिनिधि होते हैं। इसके अलावा सरकारी अधिकारी सीईओ होता है, यानी अभी की व्यवस्था में गैर मुस्लिम सदस्य वक्फ बोर्ड में नहीं होते, लेकिन वक्फ संशोधन बिल के बाद, नई व्यवस्था के बाद वक्फ बोर्ड में कम से कम दो गैर मुस्लिम सदस्य अनिवार्य हैं। इसके अलावा दो मुस्लिम महिला सदस्य, पसमानदा प्रतिनिधि, सांसद, विधायक, बार काउंसिल के सदस्यों में से एक एक का सीधे मनोनयन होगा, यानी पहले चुनाव होता था, उन्हें अब मनोनीत किया जाएगा।
7: जो चंदा और चढ़ावा में लूट का मुद्दा है, उस मुद्दे से जनता का ध्यान हट जाए। हर समस्या का समाधान मुसलमान है भारतीय जनता पार्टी की, तो अब फिर से मुसलमान को सामने लाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया जा रहा है। मुसलमान मुसलमान मुसलमान मुसलमान, हर समस्या का समाधान मुसलमान है। भारतीय जनता पार्टी का ये प्रयास वो सफल होने वाला नहीं।
3: यूपी में सुन्नी वक्फ बोर्ड इसी साल 15 मार्च को भंग हुआ है। 6 महीने के अंदर इसका पुनर्गठन जरूरी है, यानी चुनाव से ठीक पहले सितंबर 2026 तक यूपी में सुन्नी वक्फ बोर्ड का गठन होगा, जिसमें यूपी सरकार हिंदू समुदाय के 2 सदस्यों को रखने की तैयारी कर चुकी है। दरअसल इसी हफ्ते मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी राज्य वक्फ बोर्ड का ऐलान किया है, जिसमें 10 सदस्यों में 2 सदस्य हिंदू हैं। इसके बाद उत्तर प्रदेश में से लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई। संतोष शर्मा के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक।
0: बारिश इस वक्त के मौसम में वो अपराधी है जिस पर हर राज्य के हर दल की सरकार ठीकरा फोड़कर अपनी जवाबदेही से बच जाना चाहती है। जैसे महाराष्ट्र में ही करीब 7,000 करोड़ रुपए की लागत वाले और हाल ही में शुरू किए गए मुंबई पुणे मिसिंग लिंक प्रोजेक्ट पर भारी बारिश के कारण जब भूस्खलन हुआ तो सवाल उठा कि इसे इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना बताया जा रहा था, वहां इतनी खामियां हैं। सवाल उठा तो मुख्यमंत्री विधानसभा में बोलते बोलते मर्यादा तोड़ने लगे।
8: हमारे जयंत राव जी ने सही बात कही, जिनको कुत्ता नहीं पोछता वह आजकल सोशल मीडिया पर आकर सबको गाली देते हैं, मुख्यमंत्री को भी गाली देते हैं। ऐसे कुछ भाड़े के टट्टे इस मिसिंग लिंक के बारे में भी पैसा ले लेकर सोशल मीडिया पर लिख रहे थे, उनको भी कह देना चाहता हूं, अगर महाराष्ट्र का अपमान करोगे छोड़ूंगा नहीं। तो गाली देते हैं।
3: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस गुस्से में हैं। गर्म तवे पर किसी ने छन्न से पानी का छींटा मारा ऐसे दिखते हैं, लेकिन क्यों? बात 3 दिन पुरानी है। मिसिंग लिंक के नाम से मशहूर मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे जो करीब 2 महीने पहले ही चालू हुआ, जिसे बनाने में जनता के 6,695 करोड़ रुपए लगे, जिस मेगा प्रोजेक्ट को इंजीनियरिंग का बेजोड़ नमूना कहा गया, तेज बारिश के बाद भूस्खलन से उसी नायाब इंजीनियरिंग वाले मिसिंग लिंक पर पत्थर टूट पड़े। भूस्खलन के बाद यहाँ कुछ देर तक रास्ता बंद रहा, लोगों ने सवाल सियासत से लेकर सोशल मीडिया तक पर पूछे। तो अगर सवाल पूछा जाए तो क्या वो गलत है? क्या उससे महाराष्ट्र का अपमान? पहले 6 जुलाई की इस हादसे के वक्त की रिपोर्ट देखिए।
9: मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे के मिसिंग लिंक पर है, 2 महीने पहले इसी मिसिंग लिंक को बहुत जोर शोर के साथ इनॉग्रेट किया गया था, लेकिन अभी इस वक्त इसकी हालत आप देख लीजिए, तो तकरीबन 4 बजे सोमवार के समय 4 बजे अचानक से यहाँ पे लैंडस्लाइड हो गया। पुणे से मुंबई की तरफ जो जाने वाला जो रास्ता है उस पर इस वक्त है, और लैंडस्लाइड की वजह से ये पूरा का पूरा रास्ता बंद हो गया है। अभी आप देख लीजिए 4 बजे से दोपहर के अभी 12 बज रहे हैं, अभी भी बताया जा रहा है कि 3 से 4 घंटा और लग सकता है पूरे मलबे को निकालने के लिए, और ये जो मलबा है उसको ले जाके ये लोग बाहर देख रहे हैं। लेकिन आप देख लीजिए पूरा का पूरा जो ऊपर का जो हिस्सा था वो भूस्खलन के दौरान पूरा का पूरा गिर गया, बड़े बड़े पत्थर यहाँ पे गिरे हुए हैं।
3: असल में सवाल इसीलिए पूछा जाता है क्योंकि जब कोई इस तरह का एक्सप्रेसवे हाईवे बनाता है तो उसको लेकर दावे ऐसे ऐसे करता है जिसके बाद भरोसा जनता को दिया जाता है कि अब कुछ गड़बड़ नहीं होने वाला, लेकिन फिर उन दावों की पोल प्रकृति खोल देती है और सवाल फिर मुख्यमंत्री को चुभ जाता है।
10: कोई पेड़ गिर के मर रहा है, कोई मैनहोल में गिर के मर रहा है, कोई किसी और आपत्ति में मर रहा है, कभी कोई इलेक्ट्रिक्यूट होकर मर रहा है।
11: जवाब आपको देना पड़ेगा, जिस कुर्सी पे आप हो आप राजा नहीं हो, जनता के सेवक हो, और ये मान के चलिए कि जनता हर समय आपको सवाल करेगी, ये घमंड नहीं कोई देखेगा।
12: काल सध्या ह्यांचं मुख्यमंत्र्यांचं फडणवीसांचं भाषण विधानसभेमधलं, त्याचं म्हणे राजकारण करू नका. अरे वा, आणि काय म्हणतायत म्हणे, एक वेळ मला बोला पण महाराष्ट्राचा अपमान मी सहन करणार नाही. वा रे वा, लोक त्या मिसिंग लिंक बद्दलच बोलतायत, महाराष्ट्राचा कुठे अपमान करतायत? पण ते काय सगळं घेऊन जायचं, म्हणजे ते वरपासून खालपर्यंत आता काय सवय लागली आहे? केंद्र सरकारच्या कुठच्या गोष्टींबद्दल बोललं की तुम्ही देशविरोधी? आता मिसिंग लिंक बद्दल बोललं तर याच्यात महाराष्ट्राचा अपमान कुठे आला?
13: सवाल सियासत का नहीं, सवाल इस बात का है कि अगर कहीं कमी है और उस पर प्रश्न है तो क्यों इसे साजिश और अपमान तक सत्ताधारी बताने लगते हैं? जबकि महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के संयुक्त प्रबंध निदेशक राजेश पाटिल से आज तक संवाददाता विद्या ने पूछा कि इस बात का अंदाजा नहीं लगाया था कि ऐसा लैंडस्लाइड हो सकता है.
14: स्ट्रक्चरली कोई डैमेज नहीं हुआ है इस लैंडस्लाइड में, लेकिन क्या जिस तरीके से ये बारिश हुई, क्या इस बात का अंदाजा नहीं था कि यहाँ पे लैंडस्लाइड हो सकता है? उस समय भी क्या आप लोगों ने असेसमेंट किया था या उस असेसमेंट के बाहर ये हो गया?
15: या असेसमेंट किया था, लेकिन टनल के ऊपर जो ओवरबर्डन है वो 220 मीटर्स है ओवरबर्डन, और इसका डिजाइन भी हमने IIT बॉम्बे से अप्रूव करके लिया था, वेटिंग करके लिया था, और एज पर देयर अप्रूव डिजाइन वो हमने रॉकफॉल मिटिगेशन मेजर किया था, एंड वो जो रॉकफॉल मिटिगेशन मेजर हमने किया है वो इंटैक्ट है. वो हमने अभी अप टू 15 मीटर्स किया था, वो इंटैक्ट है, और वो अभी बाकी जो हुआ उसके लिए वी हैव टू डू कॉम्प्रिहेंसिव इंस्पेक्शन एंड देन वी हैव टू कम विद सम स्ट्रांग रेमेडियल एक्शन फॉर दैट.
13: महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम के संयुक्त प्रबंध निदेशक इस बात को समझते भी हैं और समझाते भी हैं कि सुरंग के ठीक ऊपर लगभग 120 मीटर पर मिट्टी पत्थर जमा है. IIT बॉम्बे से पहले ही पूरी सलाह ली जा चुकी है. सुरंग के ऊपरी हिस्से से 10 मीटर तक बचाव के उपाय किए गए थे. हालांकि भूस्खलन सुरंग के ऊपरी हिस्से से 150 या 200 मीटर की दूरी से हुआ और इस वजह से चट्टानें गिरी और फिर मिसिंग लिंक सवालों में आए. तो जरूरी ये है कि कहीं कुछ हो तो उसके कारण को समझकर कारण सबको बताया जाए, न कि सवाल पूछने या सवाल उठाने वालों पर सवाल उठाकर सवाल को ही दबा दिया जाए.
0: अब आपको पुणे के पिंपरी चिंचवाड़ से आई खबर से खबरदार करते हैं, जहां पहाड़ लैंडस्लाइड की तरह टूटा था. 3 मंजिला इमारत पर गिरकर लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ गया, लेकिन ये पहाड़ कूड़े का था. ये प्लान से जुड़ी इमारत को मलबे में बदल देता है. 23 लोग इसमें फंस जाते हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन चलता है और जवाबदेही के सवाल पर जिम्मेदार लोग बारिश पर ठीकरा आसानी से फोड़कर निकल जाते हैं.
13: जहां कूड़े का पहाड़ खड़ा करके कूड़े से बिजली बनाने का प्लांट बनाया, क्या वही लापरवाही इस कदर रही कि वो कूड़े का पहाड़ जिंदगियों पर टूट पड़ा? कूड़े का पहाड़ जब लगातार बारिश के बाद टूटा और गिरा तो देखिए लैंडस्लाइड जैसे हालात ऐसे बन गए कि कूड़े से बिजली बनाने वाले प्लांट की 3 मंजिला इमारत ढह जाती है. चीख पुकार के बीच पहले दिल दहला देने वाले इस वीडियो को देखिए, जहां किसी तरह लोगों को बिल्डिंग के ढेर के बीच से निकाला जाता है. सबसे पहले दमकल वाले पहुंचे, फिर NDRF की टीमें लग जाती. यहां लगातार लोगों को इस मलबे से बचाने की कोशिश जारी दिखती है. इस बीच मलबे से कोई जख्मी हालत में जिंदगी के लिए जंग लड़ता बाहर आता है तो वहां खड़े लोग इंतजार करते हैं कि इसकी सांसें चल रही है. पिंपरी चिंचवड़ नगर निगम के अधीन आते इस इलाके में कूड़े से बिजली बनाने वाले प्लांट पर कूड़े का पहाड़ गिरने के बाद लोगों को बाहर निकालना कितना कठिन है, इसे आप NDRF के लोगों से समझिए.
16: पूरी बिल्डिंग कोलैप्स हो रखी है, पूरे मलबे से दबी हुई है, एंड बॉडीज हमने ट्रेस करी हैं, 3 के करीब कर ली, जिसमें से एक निकाली है. एक को और थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि जो मलबा है मैनुअली निकालेंगे. अगर हम मशीन लगा के निकालेंगे वाइब्रेशन हो जाएगा जिससे कि फर्दर कोलैप्स हो सकते हैं.
17: जो एरिया बताया जा रहा है कैंटीन एरिया, वो हम फोकस कर रहे हैं. वहाँ पे 5 to 6 का बताया गया है फिगर, तो राइट नाउ वी आर होपिंग कि 7 to 8 है, इससे ज्यादा तो नहीं है.
18: जवान पार्किंग तक जा चुके हैं?
17: जवान पार्किंग तक अभी नहीं पहुंच पाए हैं, क्योंकि धीरे धीरे मैनुअली काम हो रहा है हाथ से निकाल के, क्योंकि हम मशीन नहीं अप्लाई कर सकते। मशीन अप्लाई करेंगे पूरा बिल्डिंग पैनकेक कोलैप्स हो जाएगा, तो जो है भी वो पूरा दब जाएगा।
3: अब सवाल है कि ऐसे हालात कैसे बने? क्या इस बात का अंदाजा किसी को नहीं था कि जो कूड़े का पहाड़ यहाँ इतना ऊंचा खड़ा है, इसकी वजह से हादसा भी हो सकता है? आज तक संवाददाता ने इसीलिए सीधे विजय सूर्यवंशी, आयुक्त पिंपरी चिंचवड़ नगर निगम से सवाल किया है।
18: इतना बड़ा हादसा हुआ है, इसका जिम्मेवार कौन है? उस पर कुछ दर्ज होगा पुलिस थाने में?
19: देखो, ये नेचुरल कैलामिटी है, ऐसा नहीं कि बिल्डिंग अपने आप ढह गई। अपने आप ढह जाती तो हम कहते कि इसका स्ट्रक्चर वीक था, इसका स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम था। अभी आप देख रहे हैं कि ये बड़ा लैंडस्लाइड जैसे हुआ है, मतलब 60 मीटर हाइट का ये कचरे का पहाड़ है ऑलमोस्ट, और 600 mm बारिश जो 36 आवर्स में, 36 घंटे में 600 mm, इसकी वजह से उसका जो वेट बढ़ गया होगा, और जैसे लैंडस्लाइड होता है वैसे वो ढह गया, और उसका हॉरिजॉन्टल प्रेशर बिल्डिंग के आने के बाद वो बिल्डिंग कोलैप्स हो गई।
3: 60 मीटर ऊंचा कूड़े का पहाड़ खड़ा था, ये बात खुद आयुक्त मानते हैं। ये भी मानते हैं कि बारिश बहुत ज्यादा लगातार हुई, तो क्यों नहीं संकट को पहले समझा गया? क्यों नहीं काम रोका गया? ये क्यों नहीं सोचा गया कि अगर यहाँ तेज बारिश हुई तो यही कचरे का 60 मीटर ऊंचा पहाड़ पानी में भीग कर जब तेज हवा से गिरेगा तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता है?
20: डंपिंग ग्राउंड है पिंपरी चिंचवड़ का, ये 1982 से, मतलब अभी करीब करीब उसको 47 ईयर हो गए, 47 साल से यहाँ चल रहा है, और बहुत बड़ा पहाड़ी बन गया उसका। तो
3: कूड़े के पहाड़ को कम करने के लिए बताया गया कि वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट शुरू किया गया ताकि कचरे की मात्रा कम की जा सके, लेकिन ज्यादा जोर प्रशासन का इस हादसे पर बारिश को कटघरे में खड़ा करने में लगा हुआ है।
18: पूछताछ की जाएगी इस मामले में?
19: देखो, अभी तो हम रेस्क्यू ऑपरेशन में व्यस्त है सब, अभी हमारी प्रायोरिटी है कि जो 8 लोग और है उनको जिंदा बाहर निकाला जाए, उनको रेस्क्यू करा जाए, उसके बाद में ये सब सोचा जाएगा।
18: क्योंकि ये बहुत बड़ा मामला है, 23 लोग जो थे अंदर थे, अभी 15 लोगों को निकाला गया, उनमें से एक की डेथ हुई है, ऐसा दमकल विभाग का कहना है। तो पूछताछ तो होनी चाहिए, मतलब किस तरह से ये मामला हुआ, क्योंकि वहाँ के लोग बोल रहे हैं कि 2 दिन पहले उनको लगा था कि ये जो कचरे का ढेर है वो नीचे सरक सकता है।
19: नहीं देखो, जरूर बहुत दुर्दैवी घटना है, और भगवान की दया से अभी तक तो हम 14 लोग जो निकाल पाए, मगर इस घटना के बारे में अभी सब बैठेंगे, क्या एग्जैक्टली हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसके बारे में सब सोचेंगे, और उसके बारे में नेक्स्ट एक्शन उसके बाद डिसाइड करेंगे।
3: बस यहाँ गनीमत ये रही कि बहुत तेजी से रेस्क्यू ऑपरेशन करके जो लोग दबे रहे उन्हें निकाला जाता रहा।
0: सूरत यानी कि गुजरात की डायमंड सिटी, जहां इतनी बारिश पिछले 3 दिन में हुई है कि दावा यह किया गया कि दशकों का रिकॉर्ड टूट चुका है, और जब पानी सूरत में उतरा तो लोगों को बहुत नुकसान का पता चला।
21: सूरत के वराछा में स्थित पुदार आर्केड में फिलहाल मेरी मौजूदगी और मेरे पीछे की तरफ की तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा, जहां पे मोबाइल शॉप बेसमेंट में आए हुए हैं। पूरे बेसमेंट में अलग अलग जो शॉप्स फिलहाल दिखाई दे रही है, जिसके बाहर की तरफ सामान्य जल भराव की स्थिति है और साफ सफाई का काम यहाँ पे चल रहा है, क्योंकि 30 घंटे पहले सूरत के अलग अलग इलाकों में 15 से 18 इंच जितनी बारिश हुई, और इस बारिश की वजह से चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई पड़ रहा था। लेकिन बीते 30 घंटों में अलग अलग इलाकों में जो जल भराव की स्थिति थी, अब तो जल भराव की स्थिति देखने को नहीं मिल रही है, पर ये वही पुदार आर्केड है जहां पे पूरा बेसमेंट जलमग्न हो गया था।
22: यहां पे ये गुजरात का सबसे बड़ा मोबाइल हब है, और यहां पे नए शोरूम है, रिपेयरिंग है, सेकंड हैंड वाले भी है, और ये एक 200 दुकान अंदर घर का हो चुकी है, तो समझ लो कि एक दुकान में किसी का 1 करोड़ का माल था, किसी का 50 लाख का था, आप एवरेज भी लगाओगे तो 200 से 250 करोड़ का नुकसान है।
23: 5 दुकान लाइन में अपना होलसेल का काम था, होलसेल में आपको पता होगा कि बहुत सारा स्टॉक होता है, सब प्रीमियम और ब्रांडेड चीज अभी आई थी माल अपने पास, 20 से 30 कार्टून आए थे, और पुराना भी माल बहुत डिस्प्ले करा हुआ था। टोटल आश्रे 1.5 से 2 करोड़ का हमारा नुकसान है टोटली, अभी कोई भी प्रशासन हमको कोई जवाब नहीं दे रही है।
21: जिस प्रकार की तस्वीरें सामने आ रही है वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये जो टेक्सटाइल मार्केट है वहां जल भराव की स्थिति अभी भी देखने को मिल रही है। टेक्सटाइल मार्केट का ये बिल्डिंग, और इसी बिल्डिंग के नीचे की तरफ 2 फ्लोर गोडाउन है, और वो दोनों फ्लोर का जो गोडाउन है, बेसमेंट है, वो पूरा जलमग्न है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जो भी बेसमेंट के अंदर मौजूद गोडाउन के अंदर पानी भरा हुआ है उसे निकालने के लिए मोटर का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, पानी निकालने की कोशिश बीते कई घंटों से जारी है, लेकिन इन कोशिशों के बीच करोड़ों की नुकसानी की बात अब फॉस्टा यानी कि जो टेक्सटाइल एसोसिएशन है उनकी तरफ से कही जा रही है। हमारे साथ फॉस्टा के जनरल सेक्रेटरी भी मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे।
1: रोड जाम होने की वजह से, पीछे खाड़ी जाम होने की वजह से पानी गया नहीं और वो फ्लो बैक मारा, उसने भी मारा और ऊपर से कुदरत की भी बरसात गिरने से बड़ा बड़ा नुकसान हुआ है व्यापारियों का। और रही बात एवरेजों की, तो हमारा अंदाजा ऐसा है कि कम से कम जिस हिसाब से आपने ये मार्केट देखा है, ऐसे कई मार्केट अभी भी पानी के अंदर है, जिसका हम लोग ऐसा समझते हैं कि अंदाजन हजार एक दुकानें ऐसी होगी जो नुकसान के साथ में जकड़ी हुई है। और ये लाखों में नुकसान नहीं है, ये नुकसान करोड़ों में है।
0: अमेरिका और ईरान के बीच महायुद्ध का बिगुल फिर से बज चुका है। दोनों मुल्कों की सेनाएं आमने सामने हैं। हॉर्मुज पर ईरानी हमले के बाद अमेरिकी सेना ने ईरान के 170 ठिकानों पर भीषण बमबारी की है।

0: ट्रंप के बारूद से धुआं धुआं हुआ ईरान। 24 घंटे में 170 अड्डों पर भीषण बमबारी। ईरानी एटमी सेंटर पर अमेरिका का हमला। ट्रंप के वॉर गेम में बुरी तरह फंस गया ईरान। हॉर्मुज पर हमला ईरान के लिए बहुत महंगा। युद्ध शुरू, अब ट्रंप का ऑपरेशन मुश्तबा। सत्ताईस जून को ईरान ने हॉर्मुज पर हमला किया। हमले के बाद अमेरिका ने अगले 48 घंटों में दो बार ईरान पर भीषण बमबारी की। एक बार फिर 6 जुलाई को ईरान ने हॉर्मुज में 3 टैंकरों को निशाना बनाया। ट्रंप ने अपनी धमकी को सच साबित करते हुए 7 जुलाई और 8 जुलाई को ईरान पर ताबड़तोड़ हवाई हमले किए। महज 24 घंटों के अंदर ईरान के 170 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। ईरान पर हमले का वीडियो अमेरिकी सेना ने जारी किया। अगर ईरान पर अमेरिकी हमले की टाइमिंग को देखें तो संकेत यही है कि विनाशकारी युद्ध का बिगुल बज चुका है। संकेत नंबर 1, ईरान पर अमेरिका का विध्वंसक हमला जारी। संकेत नंबर 2, ट्रंप का ऐलान युद्ध विराम खत्म, अब वार्ता नहीं। संकेत नंबर 3, ईरान पर अमेरिकी हमलों के समर्थन में नाटो। संकेत नंबर 4, हॉर्मुज पर ईरानी हमले की इंटरनेशनल निंदा। संकेत नंबर 5, तेहरान के डिप्टी मेयर बोले एटमी हमले का डर। मतलब यही है कि ईरान और अमेरिका के बीच तनाव चरम पर है। अब ये युद्ध दुनिया को अपनी चपेट में ले सकता है, क्योंकि ट्रंप ने ईरान के ठिकानों को अपनी मिसाइल के टारगेट पर लॉक कर दिया है। तो वहीं ईरान के लिए वार्ता के दरवाजे पर ताला लगा दिया है।
1: Retribution for last night. They hit actually 3 boats, not 2. And when they hit, we hit back much harder. Another way of doing it. We have many ways we can win, but we've already won militarily. They have very little. They have very little left, and they want to make a deal so badly. They called a little while ago. They want to make a deal so badly. I just don't know if they're worthy of making a deal. I don't know that they're going to honor the deal. That's the problem. Because it's sort of crazy. To be honest with you, they're sort of crazy. They're a little bit out of control, but they want to make a deal. Badly.
0: अगर ईरान पर अमेरिका के ताजा हमलों को देखें, तो ट्रंप का वॉर गेम समझना मुश्किल नहीं है। ट्रंप की हिट लिस्ट पर हैं ईरान के अहम सैन्य ठिकाने, तेल और गैस के लिहाज से अहम शहर, ईरान के अहम बंदरगाह, ईरान का ट्रांसपोर्ट नेटवर्क और ईरान के परमाणु सेंटर। ईरानी मीडिया का दावा है कि बुशहर में तेज धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं। ये धमाके ईरान के न्यूक्लियर प्लांट के आसपास सुने गए हैं। ठीक ऐसे ही चाबहार पोर्ट को निशाना बनाया गया। IRGC का दावा है कि अमेरिका ने मशहद जाने वाले रास्तों के पुलों को निशाना बनाया। यही नहीं, ईरान के गोलिस्तान प्रांत के अफ्तेके खान रेलवे ब्रिज पर मिसाइल अटैक किया है। ट्रंप ने ईरान को सीधी धमकी दी है कि अमेरिका की सैन्य कार्रवाई अब रुकेगी नहीं। अमेरिका के हमले ईरान द्वारा जहाजों पर की गई बमबारी का प्रतिशोध हैं। अगर ऐसा दोबारा हुआ तो हालात और भी बदतर हो जाएंगे। बड़ी बात यह है कि शांति समझौते के बावजूद हॉर्मुज पर हमले करके ईरान चौतरफा घिर गया है। ईरान के खिलाफ मिडल ईस्ट के तमाम मुल्क बड़े और कड़े एक्शन की मांग कर रहे हैं। इसमें वो मुल्क भी शामिल हैं जो चंद दिनों पहले तक अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता कर रहे थे। ऐसे में अमेरिका को पता है कि हॉर्मुज पर हमला करके ईरान ने गलत बटन दबा दिया है, लिहाजा ईरान ने अमेरिका को हमले का मौका थाली में सजाकर सौंप दिया है। इसी कड़ी में अमेरिका ने ईरान के कई शहरों पर चुन चुन कर बम बरसाए। ट्रंप का टारगेट बंदर अब्बास। ये ईरान का सबसे बड़ा व्यावसायिक और नौसैनिक बंदरगाह है। यहां पर अमेरिका ने बमबारी करके ईरानी सेना और ईरानी कारोबार को चोट पहुंचाई। ट्रंप का टारगेट वो शहर, ये वही शहर है जहां पर ईरान का एकमात्र चालू परमाणु बिजली प्लांट है। यहां हमला करके ट्रंप ने संदेश दिया है कि ईरान का कोई भी एटमी सेंटर नहीं बचेगा। ट्रंप का टारगेट सिरिक, ये शहर होर्मुज से सटा हुआ है, यहीं से ईरानी सेना गुजरने वाले जहाजों की निगरानी करती है। अमेरिका ने सिरिक में मौजूद ईरानी सैन्य ठिकानों के साथ साथ नौसेना की बोट को निशाना बनाया। ट्रंप का टारगेट चाबहार पोर्ट, ईरान का इकलौता बंदरगाह जो सीधे हिंद महासागर से समुद्री यातायात तय करता है। ये कारोबार और सैन्य लिहाज से अहम है, यहाँ पर भी अमेरिकी हमला हुआ। ट्रंप का टारगेट केश्म द्वीप, फारस की खाड़ी का सबसे बड़ा द्वीप जहाँ ईरानी नौसेना के ठिकानों के साथ साथ तेल गैस फैसिलिटी है। अमेरिका ने इस आइलैंड पर भी भीषण बमबारी की है, मतलब ईरान से ट्रंप का बदला बहुत घातक है। ईरान की सरकारी मीडिया ने माना है कि पिछले 48 घंटों में 5 प्रांतों पर हुए अमेरिकी हमलों में कम से कम 14 लोग मारे गए जबकि 78 से ज्यादा जख्मी हैं। अगले कुछ घंटों में ये आंकड़े बढ़ सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ व्हाइट हाउस के हवाले से एक्सियोस में छपी रिपोर्ट में ईरान को लेकर कई बड़े दावे किए गए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति का पूरा जोर होर्मुज को ईरानी नियंत्रण से मुक्त कराने पर है, लिहाजा होर्मुज को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति की तैयारी ईरान के खिलाफ लंबे युद्ध की है। अगर ईरान ने अमेरिकी हमले के बाद फिर हमला किया तो अमेरिका कई हफ्तों तक हवाई हमले करेगा। ईरान के अहम सैन्य ठिकानों के साथ साथ एटमी सेंटर और तेल गैस के प्लांट को निशाना बनाया जाएगा। अमेरिका की उम्मीद है कि होर्मुज की वजह से अब की बार दुनिया के तमाम मुल्क और नाटो उनका साथ देंगे। मतलब यही है कि ईरान अलग थलग पड़ सकता है क्योंकि होर्मुज पर ईरानी हमले की निंदा दुनिया के सभी मुल्कों ने की है। यहां तक कि फ्रांस ने भी माना है कि होर्मुज पर हमला करके ईरान ने अमेरिका के साथ हुए शांति समझौते के MOU का उल्लंघन किया है। दूसरी तरफ होर्मुज पर ताजा हमलों के बाद नाटो ने भी ईरान पर अमेरिकी हमलों का खुला समर्थन

0: तो क्या यह समर्थन आने वाले दिनों में ईरान के खिलाफ अमेरिकी हमलों में भी दिखेगा? अगर ऐसा हुआ तो ईरान के खिलाफ अब ये युद्ध सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं रहेगा, मतलब ईरान के खिलाफ हमलों में नाटो भी शामिल हो सकता है। नाटो भी अमेरिका के साथ युद्ध में शामिल हुआ तो ईरान की हार तय है।
1: To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is? They're scum. They're sick people. They're led by sick people. And they're vicious, violent people. And if they had a nuclear weapon, they'd use it. As far as I'm concerned, it's over.
0: ईरानी विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी हमलों का समर्थन करने पर नाटो की निंदा की है। ईरान ने आरोप लगाया कि ईरान अमेरिका युद्ध का जिम्मेदार नाटो है। आरोप यही है कि अमेरिका और इजराइल को लेकर नाटो ने निष्पक्ष भूमिका नहीं निभाई। तो क्या अब ये जंग अमेरिका बनाम ईरान नहीं बल्कि ईरान बनाम दुनिया में बदल सकती है? आज तक ब्यूरो
2: के साथ हम यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: 30,000 भारतीयों के बीच मेलबर्न में बोले प्रधानमंत्री मोदी, शिप से चिप तक बना रहा है भारत, ग्रो मोर अचीव मोर का दिया नारा, कहा रक्षा अंतरिक्ष और यूरेनियम डील पर मुहर। टीएमसी को छोड़ बीजेपी माया ममता के तीनों ही पूर्व राज्यसभा के सांसदों को मिला इनाम, उपचुनाव के लिए बने कमल के उम्मीदवार, कल ही पार्टी में शामिल हुए थे सुखेंदु, सुष्मिता और प्रकाश। यूपी में चढ़ा चुनावी तापमान, योगी का आरोप, 2017 से पहले कब्रिस्तानों पर पैसे खर्च करती थी एसपी सरकार, ओपी राजभर ने भी अखिलेश पर किया बड़ा हमला। महाराष्ट्र और गुजरात समेत उत्तर भारत में जोरदार बारिश से परेशानी, दिल्ली एनसीआर भी हुआ पानी पानी, बादली में डूबने से 7 साल के बच्चे की मौत, गाजियाबाद में भी एक बच्चे की गई जान। अमेरिकी हमले के बीच खामनेई का अंतिम संस्कार, ट्रंप ने फिर दी धमकी, कहा 20 गुना ताकत से करेंगे अटैक, बदले में अमेरिकी ठिकानों पर तेहरान ने बरसाए बॉम्ब। बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच बड़ा सनातनी साबित करने की लड़ाई चल रही है। समाजवादी पार्टी कह रही है कि वो सनातनी है, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बता रहे हैं कि विकास का जो पैसा आज सनातन की रक्षा के लिए खर्च किया जा रहा है वो समाजवादी सरकार में कब्रिस्तानों पर खर्च किया जाता था। इन सबके बीच वक्फ को लेकर भी खींचतान यूपी में शुरू हो चुकी है।
1: बीजेपी के लोग किसी भी सीमा तक झूठा प्रचार कर सकते हैं।
2: समाजवादी पार्टी के लोगों को तो ठेके पट्टे से ही फुर्सत नहीं है।
3: अयोध्या में चढ़ावा चोरी क्या हुई, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की चुनावी राजनीति के पौबारा हो गए। महीने भर में कांग्रेस और समाजवादियों ने जितनी बार राम का नाम नहीं लिया होगा उतनी बार वक्फ, बाबर, कब्रिस्तान हो चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ धुआंधार रैलियां और कार्यक्रम कर रहे हैं, सैकड़ों करोड़ की योजनाओं की सौगात जिले जिले दी जा रही है, और इसके साथ ही विपक्ष पर मुस्लिम परस्त, मुगल परस्त, मौका परस्त होने की सियासी बौछार चल रही है।
2: आज के समाजवादी राम से दूरी बनाते हैं, बाबर को अपना आदर्श मानते हैं, औरंगजेब को अपना आदर्श मानते हैं, राम और कृष्ण को नहीं मानते।
4: अंतर यही है

0: बीजेपी की सरकार आई तो अब पैसा मंदिरों के विकास के लिए धामों के सुंदरीकरण में खर्च हो रहा है, और समाजवादी पार्टी के समय वही पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल के लिए चला जाता था।
1: वक्फ के नाम पे हजारों एकड़ लैंड बेच भी दी गई, वारा नारा किया गया, ये सीधे सीधे डकैती थी। इसके नाम पर एक भी बार समाजवादी पार्टी नहीं बोली, एक भी बार कांग्रेस नहीं बोली, बल्कि जब मोदी जी ने इसके खिलाफ कानून बनाया, उस लूट के खिलाफ कानून बनाया, तो इन लोगों ने आंदोलन किया।
2: एक तरफ समूचा विपक्ष राम मंदिर में चोरी को लेकर हमलावर था, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वक्फ में घोटालों का मुद्दा उठाया और अब उसी लाइन को यूपी के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ने और आगे बढ़ा दिया।
3: उत्तर प्रदेश पे भी वक्फ बोर्ड, सुन्नी वक्फ बोर्ड जो है इस समय वर्तमान में रिक्त है। आने वाले दिनों में जब सुन्नी वक्फ बोर्ड का गठन होगा तो जो वक्फ अधिनियम संशोधन अधिनियम के अनुसार जो गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन के अनुसार उत्तर प्रदेश में भी उस अधिनियम के माध्यम से वक्फ के बोर्ड का गठन होगा, जिसमें पिछड़े मुसलमानों को रखा जाएगा, मुस्लिम महिलाओं को रखा जाएगा, ऐसे हमारे हिंदू भाई समाज के दो भाइयों को रखा जाएगा। जो भी उस प्रावधान में जो भी गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन के अनुसार ही आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में भी वक्फ बोर्ड के फॉर्मेशन होगा।
2: अगर ऐसा होता है तो एमपी के बाद उत्तर प्रदेश देश का दूसरा राज्य होगा जो वक्फ बोर्ड में गैर मुसलमान सदस्य रखेगा।
4: मुझे लगता है कि ये हमारे जो फंडामेंटल राइट हैं और हमारे जो मजहबी आजादी हमें दी गई है, यकीनी तौर पर उसके साथ कहीं ना कहीं सीधा टकराव है, इसलिए हुकूमत को अपने इस फैसले पर नजरसानी करने की जरूरत है।
2: हालांकि उत्तर प्रदेश में मौजूदा शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन का कहना है कानून संसद से बना हुआ है तो उसका पालन अनिवार्य है, लेकिन सुन्नी समुदाय के मौलानाओं का कहना है वक्फ संशोधन कानून के कुछ प्रावधानों पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है और मामला कोर्ट में लंबित, लिहाजा अभी ऐसा नहीं करना चाहिए। वैसे यूपी में फिलहाल दो वक्फ बोर्ड, सुन्नी वक्फ बोर्ड और शिया वक्फ बोर्ड। दोनों बोर्ड की संरचनाएं कुछ ऐसी कि दोनों बोर्ड में 11-11 सदस्य होते हैं, जिसमें अध्यक्ष के अलावा मुस्लिम सांसद, मुस्लिम विधायक, मुस्लिम विधान परिषद सदस्य, इस्लामिक विद्वान और मतवल्लियों के प्रतिनिधि होते हैं। इसके अलावा सरकारी अधिकारी CEO होता है। यानी अभी की व्यवस्था में गैर मुस्लिम सदस्य वक्फ बोर्ड में नहीं होते, लेकिन वक्फ संशोधन बिल के बाद, नई व्यवस्था के बाद वक्फ बोर्ड में कम से कम दो गैर मुस्लिम सदस्य अनिवार्य हैं। इसके अलावा दो मुस्लिम महिला सदस्य, पसमानदा प्रतिनिधि, सांसद, विधायक, बार काउंसिल के सदस्यों में से एक एक का सीधे मनोनयन होगा। यानी पहले चुनाव होता था, उन्हें अब मनोनीत किया जाएगा।
5: जो चंदा और चढ़ावा में लूट का मुद्दा है, उस मुद्दे से जनता का ध्यान हट जाए। हर समस्या का समाधान मुसलमान है भारतीय जनता पार्टी की, तो अब फिर से मुसलमान को सामने लाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया जा रहा है। मुसलमान मुसलमान मुसलमान मुसलमान, हर समस्या का समाधान मुसलमान है। भारतीय जनता पार्टी का ये प्रयास वो सफल होने वाला नहीं।
2: यूपी में सुन्नी वक्फ बोर्ड इसी साल 15 मार्च को भंग हुआ है। 6 महीने के अंदर इसका पुनर्गठन जरूरी है, यानी चुनाव से ठीक पहले सितंबर 2026 तक यूपी में सुन्नी वक्फ बोर्ड का गठन होगा, जिसमें यूपी सरकार हिंदू समुदाय के 2 सदस्यों को रखने की तैयारी कर चुकी है। दरअसल इसी हफ्ते मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी राज्य वक्फ बोर्ड का ऐलान किया है, जिसमें 10 सदस्यों में 2 सदस्य हिंदू हैं। इसके बाद उत्तर प्रदेश में से लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई। संतोष शर्मा के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक।
6: बारिश इस वक्त के मौसम में वो अपराधी है जिस पर हर राज्य के हर दल की सरकार ठीकरा फोड़कर अपनी जवाबदेही से बच जाना चाहती है। जैसे महाराष्ट्र में ही करीब 7,000 करोड़ रुपए की लागत वाले और हाल ही में शुरू किए गए मुंबई पुणे मिसिंग लिंक प्रोजेक्ट पर भारी बारिश के कारण जब भूस्खलन हुआ तो सवाल उठा कि इसे इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना बताया जा रहा था, वहां इतनी खामियां हैं। सवाल उठा तो मुख्यमंत्री विधानसभा में बोलते बोलते मर्यादा तोड़ने लगे।
7: हमारे जयंत राव जी ने सही बात कही, जिनको कुत्ता नहीं पोछता वो आजकल सोशल मीडिया पर आकर सबको गाली देते हैं, मुख्यमंत्री को भी गाली देते हैं। ऐसे कुछ भाड़े के टट्टे इस मिसिंग लिंक के बारे में भी पैसा ले लेकर सोशल मीडिया पर लिख रहे थे, उनको भी कह देना चाहता हूं अगर महाराष्ट्र का अपमान करोगे छोड़ूंगा नहीं। तो गाली देते हैं।
2: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस गुस्से में हैं। गर्म तवे पर किसी ने छन्न से पानी का छींटा मारा ऐसे दिखते हैं। लेकिन क्यों? बात 3 दिन पुरानी है। मिसिंग लिंक के नाम से मशहूर मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे जो करीब 2 महीने पहले ही चालू हुआ, जिसे बनाने में जनता के 6,695 करोड़ रुपए लगे, जिस मेगा प्रोजेक्ट को इंजीनियरिंग का बेजोड़ नमूना कहा गया, तेज बारिश के बाद भूस्खलन से उसी नायाब इंजीनियरिंग वाले मिसिंग लिंक पर पत्थर टूट पड़े। भूस्खलन के बाद यहाँ कुछ देर तक रास्ता बंद रहा। लोगों ने सवाल सियासत से लेकर सोशल मीडिया तक पर पूछे। तो अगर सवाल पूछा जाए तो क्या वो गलत है? क्या उससे महाराष्ट्र का अपमान? पहले 6 जुलाई की इस हादसे के वक्त की रिपोर्ट देखिए।
8: मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे के मिसिंग लिंक पर है। 2 महीने पहले इसी मिसिंग लिंक को बहुत जोर शोर के साथ इनॉग्रेट किया गया था, लेकिन अभी इस वक्त इसकी हालत आप देख लीजिए, तो तकरीबन 4 बजे दोपहर के समय 4 बजे अचानक से यहाँ पे लैंडस्लाइड हो गया। पुणे से मुंबई की तरफ जो जाने वाला जो रास्ता है उस पर इस वक्त है, और लैंडस्लाइड की वजह से ये पूरा का पूरा रास्ता बंद हो गया है। अभी आप देख लीजिए 4 बजे से दोपहर के अभी 12 बज रहे हैं, अभी भी बताया जा रहा है कि 3 से 4 घंटा और लग सकता है पूरे मलबे को निकालने के लिए, और इस ये जो मलबा है उसको ले जाके ये लोग बाहर देख रहे हैं। लेकिन आप देख लीजिए पूरा का पूरा जो ऊपर का जो हिस्सा था वो भूस्खलन के दौरान पूरा का पूरा गिर गया, बड़े बड़े पत्थर यहाँ पे गिरे हुए हैं।
2: असल में सवाल इसीलिए पूछा जाता है क्योंकि जब कोई इस तरह का एक्सप्रेसवे हाईवे बनाता है तो उसको लेकर दावे ऐसे ऐसे करता है जिसके बाद भरोसा जनता को दिया जाता है कि अब कुछ गड़बड़ नहीं होने वाला, लेकिन फिर उन दावों की पोल प्रकृति खोल देती है और सवाल फिर मुख्यमंत्री को चुभ जाता है।
9: कोई पेड़ गिर के मर रहा है, कोई मैनहोल में गिर के मर रहा है, कोई किसी और आपत्ति में मर रहा है, कभी कोई इलेक्ट्रिक्यूट होकर मर रहा है। जवाब आपको देना पड़ेगा, जिस कुर्सी पे आप हो आप राजा नहीं हो, जनता के सेवक हो, और ये मान के चलिए कि जनता हर समय आपको सवाल करेगी, ये घमंड नहीं कोई देखेगा।
10: काल सद्या मुख्यमंत्र्यांचं फडणवीसांचं भाषण विधानसभेमधलं, त्याचं म्हणे राजकारण करू नका। अरे वा, आणि काय म्हणतायत म्हणे, एक वेळ मला बोला पण महाराष्ट्राचा अपमान मी सहन करणार नाही। वारे वा, लोक त्या मिसिंग लिंक बद्दलच बोलतायत, महाराष्ट्राचा कुठे अपमान करतायत? पण ते काय सगळं घेऊन जायचं, म्हणजे ते वरपासून खालपर्यंत आता काय सवय लागली आहे? केंद्र सरकारच्या कुठच्या गोष्टींबद्दल बोललं की तुम्ही देशविरोधी, आता मिसिंग लिंक बद्दल बोललं तर याच्यात महाराष्ट्राचा अपमान कुठे आला?
2: सवाल सियासत का नहीं, सवाल इस बात का है कि अगर कहीं कमी है और उस पर प्रश्न है तो क्यों इसे साजिश और अपमान तक सत्ताधारी बताने लगते हैं? जबकि महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के संयुक्त प्रबंध निदेशक राजेश पाटिल से आज तक संवाददाता विद्या ने पूछा कि इस बात का अंदाजा नहीं लगाया था कि ऐसा लैंडस्लाइड हो सकता है।
11: स्ट्रक्चरली कोई डैमेज नहीं हुआ है इस लैंडस्लाइड में, लेकिन क्या जिस तरीके से ये बारिश हुई क्या इस बात का अंदाजा नहीं था कि यहाँ पे लैंडस्लाइड हो सकता है? उस समय भी क्या आप लोगों ने असेसमेंट किया था या उस असेसमेंट के बाहर ये हो गया?
12: या असेसमेंट किया था, लेकिन टनल के ऊपर जो ओवरबर्डन है वो 220 मीटर्स है ओवरबर्डन, और इसका डिजाइन भी हमने IIT बॉम्बे से अप्रूव करके लिया था, वेटिंग करके लिया था, और एज पर देयर अप्रूव डिजाइन वो हमने रॉकफॉल मिटिगेशन मेजर किया था, एंड वो जो रॉकफॉल मिटिगेशन मेजर हमने किया है वो इंटैक्ट है। वो हमने अभी अप टू 15 मीटर्स किया था, वो इंटैक्ट है, और वो अभी बाकी जो हुआ उसके लिए वी हैव टू डू कॉम्प्रिहेंसिव इंस्पेक्शन एंड देन वी हैव टू कम विद सम स्ट्रांग रेमेडियल एक्शन फॉर दैट।
2: महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम के संयुक्त प्रबंध निदेशक इस बात को समझते भी हैं और समझाते भी कि सुरंग के ठीक ऊपर लगभग 120 मीटर पर मिट्टी पत्थर जमा है। IIT बॉम्बे से पहले ही पूरी सलाह ली जा चुकी है। सुरंग के ऊपरी हिस्से से 10 मीटर तक बचाव के उपाय किए गए थे। हालांकि भूस्खलन सुरंग के ऊपरी हिस्से से 150 या 200 मीटर की दूरी से हुआ और इस वजह से चट्टाने गिरी और फिर मिसिंग लिंक सवालों में आए। तो जरूरी ये है कि कहीं कुछ हो तो उसके कारण को समझ कर कारण सबको बताया जाए, न कि सवाल पूछने या सवाल उठाने वालों पर सवाल उठाकर सवाल को ही दबा दिया जाए।
6: अब आपको पुणे के पिंपरी चिंचवाड़ से आई खबर से खबरदार करते हैं, जहां पहाड़ लैंडस्लाइड की तरह टूटा था। 3 मंजिला इमारत पर गिरकर लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ गया, लेकिन ये पहाड़ कूड़े का था। ये प्लान से जुड़ी इमारत को मलबे में बदल देता है, 23 लोग इसमें फंस जाते हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन चलता है और जवाबदेही के सवाल पर जिम्मेदार लोग बारिश पर ठीकरा आसानी से फोड़ कर निकल जाते हैं।
2: जहां कूड़े का पहाड़ खड़ा करके कूड़े से बिजली बनाने का प्लांट बनाया, क्या वही लापरवाही इस कदर रही कि वो कूड़े का पहाड़ जिंदगियों पर टूट पड़ा? कूड़े का पहाड़ जब लगातार बारिश के बाद टूटा और गिरा तो देखिए लैंडस्लाइड जैसे हालात ऐसे बन गए कि कूड़े से बिजली बनाने वाले प्लांट की 3 मंजिला इमारत ढह जाती है। चीख पुकार के बीच पहले दिल दहला देने वाले इस वीडियो को देखिए, जहां किसी तरह लोगों को बिल्डिंग के ढेर के बीच से निकाला जाता है। सबसे पहले दमकल वाले पहुंचे, फिर NDRF की टीमें लग जाती है। यहां लगातार लोगों को इस मलबे से बचाने की कोशिश जारी दिखती है। इस बीच मलबे से कोई जख्मी हालत में जिंदगी के लिए जंग लड़ता बाहर आता है तो वहां खड़े लोग इंतजार करते हैं कि इसकी सांसें चल रही है। पिंपरी चिंचवड़ नगर निगम के अधीन आते इस इलाके में कूड़े से बिजली बनाने वाले प्लांट पर कूड़े का पहाड़ गिरने के बाद लोगों को बाहर निकालना कितना कठिन है, इसे आप NDRF के लोगों से समझिए।
13: पूरी बिल्डिंग कोलैप्स हो रखी है, पूरे मलबे से दबी हुई है एंड बॉडीज हमने ट्रेस करी हैं, 3 के करीब कर ली जिसमें से 1 निकाली है। एक को और थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि जो मलबा है मैनुअली निकालेंगे, अगर हम मशीन लगा के निकालेंगे वाइब्रेशन हो जाएगा जिससे कि फर्दर कोलैप्स हो सकते हैं।
14: जो एरिया बताया जा रहा है कैंटीन एरिया, वो हम फोकस कर रहे हैं, वहाँ पे 5 to 6 का बताया गया है फिगर, तो राइट नाउ वी आर होपिंग कि 7 to 8 है, इससे ज्यादा तो नहीं है।
15: जवान पार्किंग तक जा चुके हैं? जवान
14: पार्किंग तक अभी नहीं पहुंच पाए हैं क्योंकि धीरे धीरे मैनुअली काम हो रहा है हाथ से निकाल के, क्योंकि हम मशीन नहीं अप्लाई कर सकते। मशीन अप्लाई करेंगे पूरा बिल्डिंग पैनकेक कोलैप्स हो जाएगा, तो जो है भी वो पूरा दब जाएगा।
2: अब सवाल है कि ऐसे हालात कैसे बने? क्या इस बात का अंदाजा किसी को नहीं था कि जो कूड़े का पहाड़ यहाँ इतना ऊंचा खड़ा है इसकी वजह से हादसा भी हो सकता है? आज तक संवाददाता ने इसीलिए सीधे विजय सूर्यवंशी, आयुक्त पिंपरी चिंचवड़ नगर निगम से सवाल किया है।
16: इतना बड़ा हादसा हुआ है, इसका जिम्मेवार कौन है? उस पर कुछ दर्ज होगा पुलिस थाने में?
17: देखो, ये नेचुरल कैलामिटी है, ऐसा नहीं कि बिल्डिंग अपने आप ढह गई। अपने आप ढह जाती तो हम कहते कि इसका स्ट्रक्चर वीक था, इसका स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम था। अभी आप देख रहे हैं कि ये बड़ा लैंडस्लाइड जैसे हुआ है, मतलब 60 मीटर हाइट का ये कचरे का पहाड़ है ऑलमोस्ट, और 600 mm बारिश जो 36 आवर्स में, 36 घंटे में 600 mm, इसकी वजह से उसका जो वेट बढ़ गया होगा और जैसे लैंडस्लाइड होता है वैसे वो ढह गया और उसका हॉरिजॉन्टल प्रेशर बिल्डिंग के आने के बाद वो बिल्डिंग कोलैप्स हो गई।
2: 60 मीटर ऊंचा कूड़े का पहाड़ खड़ा था, ये बात खुद आयुक्त मानते हैं। ये भी मानते हैं कि बारिश बहुत ज्यादा लगातार हुई तो क्यों नहीं संकट को पहले समझा गया, क्यों नहीं काम रोका गया, ये क्यों नहीं सोचा गया कि अगर यहाँ तेज बारिश हुई तो यही कचरे का 60 मीटर ऊंचा पहाड़ पानी में भीग कर जब तेज हवा से गिरेगा तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता है?
18: डंपिंग ग्राउंड है पिंपरी चिंचवड़ का, ये 1982 से, मतलब अभी करीब करीब उसको 47 ईयर हो गए, 47 साल से यहाँ चल रहा है और बहुत बड़ा पहाड़ी बन गया उसका। तो
2: कूड़े के पहाड़ को कम करने के लिए बताया गया कि वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट शुरू किया गया ताकि कचरे की मात्रा कम की जा सके, लेकिन ज्यादा जोर प्रशासन का इस हादसे पर बारिश को कटघरे में खड़ा करने में लगा हुआ है।
16: पूछताछ की जाएगी इस मामले में?
17: देखो, अभी तो हम रेस्क्यू ऑपरेशन में व्यस्त है सब, अभी हमारी प्रायोरिटी है कि जो 8 लोग और है उनको जिंदा बाहर निकाला जाए, उनको रेस्क्यू करा जाए, उसके बाद में ये सब सोचा जाएगा।
16: क्योंकि ये बहुत बड़ा मामला है, 23 लोग जो थे अंदर थे, अभी 15 लोगों को निकाला गया, उनमें से एक डेथ हुई है ऐसा दमकल विभाग का कहना है, तो पूछताछ तो होनी चाहिए, मतलब किस तरह से ये मामला हुआ? क्योंकि वहाँ के लोग बोल रहे हैं कि 2 दिन पहले उनको लगा था कि ये जो कचरे का ढेर है वो नीचे सरक सकता है।
17: नहीं देखो, जरूर बहुत दुर्दैवी घटना है और भगवान की दया से अभी तक तो हम 14 लोग जो निकाल पाए, मगर इस घटना के बारे में अभी सब बैठेंगे, क्या एग्जैक्टली हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसके बारे में सब सोचेंगे और उसके बारे में नेक्स्ट एक्शन उसके बाद डिसाइड करेंगे।
2: बस यहाँ गनीमत ये रही कि बहुत तेजी से रेस्क्यू ऑपरेशन करके जो लोग दबे रहे उन्हें निकाला जाता रहा।
6: अमेरिका और ईरान के बीच महायुद्ध का बिगुल फिर से बज चुका है। दोनों मुल्कों की सेनाएं आमने सामने हैं। हॉर्मुज पर ईरानी हमले के बाद अमेरिकी सेना ने ईरान के 170 ठिकानों पर भीषण बमबारी की है।

0: ट्रंप के बारूद से धुआं धुआं हुआ ईरान। 24 घंटे में 170 अड्डों पर भीषण बमबारी। ईरानी एटमी सेंटर पर अमेरिका का हमला। ट्रंप के वॉर गेम में बुरी तरह फंस गया ईरान। हॉर्मुज पर हमला ईरान के लिए बहुत महंगा। युद्ध शुरू, अब ट्रंप का ऑपरेशन मुस्तबा। सत्ताईस जून को ईरान ने हॉर्मुज पर हमला किया। हमले के बाद अमेरिका ने अगले 48 घंटों में दो बार ईरान पर भीषण बमबारी की। एक बार फिर 6 जुलाई को ईरान ने हॉर्मुज में 3 टैंकरों को निशाना बनाया। ट्रंप ने अपनी धमकी को सच साबित करते हुए 7 जुलाई और 8 जुलाई को ईरान पर ताबड़तोड़ हवाई हमले किए। महज 24 घंटों के अंदर ईरान के 170 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। ईरान पर हमले का वीडियो अमेरिकी सेना ने जारी किया। अगर ईरान पर अमेरिकी हमले की टाइमिंग को देखें तो संकेत यही है कि विनाशकारी युद्ध का बिगुल बज चुका है। संकेत नंबर 1, ईरान पर अमेरिका का विध्वंसक हमला जारी। संकेत नंबर 2, ट्रंप का ऐलान, युद्ध विराम खत्म, अब वार्ता नहीं। संकेत नंबर 3, ईरान पर अमेरिकी हमलों के समर्थन में नाटो। संकेत नंबर 4, हॉर्मुज पर ईरानी हमले की इंटरनेशनल निंदा। संकेत नंबर 5, तेहरान के डिप्टी मेयर बोले, एटमी हमले का डर। मतलब यही है कि ईरान और अमेरिका के बीच तनाव चरम पर है। अब ये युद्ध दुनिया को अपनी चपेट में ले सकता है, क्योंकि ट्रंप ने ईरान के ठिकानों को अपनी मिसाइल के टारगेट पर लॉक कर दिया है, तो वहीं ईरान के लिए वार्ता के दरवाजे पर ताला लगा दिया है।
1: Retribution for last night. They hit actually 3 boats, not 2. And when they hit, we hit back much harder. Another way of doing it. We have many ways we can win, but we've already won militarily. They have very little left, and they want to make a deal so badly. They called a little while ago. They want to make a deal so badly. I just don't know if they're worthy of making a deal. I don't know that they're going to honor the deal. That's the problem. Because it's sort of crazy, to be honest. They're sort of crazy. They're a little bit out of control, but they want to make a deal. Badly.
0: अगर ईरान पर अमेरिका के ताजा हमलों को देखें तो ट्रंप का वॉर गेम समझना मुश्किल नहीं है। ट्रंप की हिट लिस्ट पर हैं ईरान के अहम सैन्य ठिकाने, तेल और गैस के लिहाज से अहम शहर, ईरान के अहम बंदरगाह, ईरान का ट्रांसपोर्ट नेटवर्क और ईरान के परमाणु सेंटर। ईरानी मीडिया का दावा है कि बुशहर में तेज धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं। ये धमाके ईरान के न्यूक्लियर प्लांट के आसपास सुने गए हैं। ठीक ऐसे ही चाबहार पोर्ट को निशाना बनाया गया। IRGC का दावा है कि अमेरिका ने मशहद जाने वाले रास्तों के पुलों को निशाना बनाया। यही नहीं, ईरान के गोलिस्तान प्रांत के अफ्तेके खान रेलवे ब्रिज पर मिसाइल अटैक किया है। ट्रंप ने ईरान को सीधी धमकी दी है कि अमेरिका की सैन्य कार्रवाई अब रुकेगी नहीं। अमेरिका के हमले ईरान द्वारा जहाजों पर की गई बमबारी का प्रतिशोध है। अगर ऐसा दोबारा हुआ तो हालात और भी बदतर हो जाएंगे। बड़ी बात यह है कि शांति समझौते के बावजूद हॉर्मुज पर हमले करके ईरान चौतरफा घिर गया है। ईरान के खिलाफ मिडल ईस्ट के तमाम मुल्क बड़े और कड़े एक्शन की मांग कर रहे हैं। इसमें वो मुल्क भी शामिल हैं जो चंद दिनों पहले तक अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता कर रहे थे। ऐसे में अमेरिका को पता है कि हॉर्मुज पर हमला करके ईरान ने गलत बटन दबा दिया है, लिहाजा ईरान ने अमेरिका को हमले का मौका थाली में सजाकर सौंप दिया है। इसी कड़ी में अमेरिका ने ईरान के कई शहरों पर चुन चुन कर बम बरसाए। ट्रंप का टारगेट बंदर अब्बास। ये ईरान का सबसे बड़ा व्यावसायिक और नौसैनिक बंदरगाह है। यहां पर अमेरिका ने बमबारी करके ईरानी सेना और ईरानी कारोबार को चोट पहुंचाई। ट्रंप का टारगेट वो शहर, ये वही शहर है जहां पर ईरान का एकमात्र चालू परमाणु बिजली प्लांट है। यहां हमला करके ट्रंप ने संदेश दिया है कि ईरान का कोई भी एटमी सेंटर नहीं बचेगा। ट्रंप का टारगेट सिरिक, ये शहर होर्मुज से सटा हुआ है, यहीं से ईरानी सेना गुजरने वाले जहाजों की निगरानी करती है। अमेरिका ने सिरिक में मौजूद ईरानी सैन्य ठिकानों के साथ साथ नौसेना की बोट को निशाना बनाया। ट्रंप का टारगेट चाबहार पोर्ट, ईरान का इकलौता बंदरगाह जो सीधे हिंद महासागर से समुद्री यातायात तय करता है। ये कारोबार और सैन्य लिहाज से अहम है, यहाँ पर भी अमेरिकी हमला हुआ। ट्रंप का टारगेट केशम द्वीप, फारस की खाड़ी का सबसे बड़ा द्वीप जहाँ ईरानी नौसेना के ठिकानों के साथ साथ तेल गैस फैसिलिटी है। अमेरिका ने इस आइलैंड पर भी भीषण बमबारी की है, मतलब ईरान से ट्रंप का बदला बहुत घातक है। ईरान की सरकारी मीडिया ने माना है कि पिछले 48 घंटों में 5 प्रांतों पर हुए अमेरिकी हमलों में कम से कम 14 लोग मारे गए जबकि 78 से ज्यादा जख्मी हैं। अगले कुछ घंटों में ये आंकड़े बढ़ सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ व्हाइट हाउस के हवाले से एक्सियोस में छपी रिपोर्ट में ईरान को लेकर कई बड़े दावे किए गए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति का पूरा जोर होर्मुज को ईरानी नियंत्रण से मुक्त कराने पर है, लिहाजा होर्मुज को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति की तैयारी ईरान के खिलाफ लंबे युद्ध की है। अगर ईरान ने अमेरिकी हमले के बाद फिर हमला किया तो अमेरिका कई हफ्तों तक हवाई हमले करेगा। ईरान के अहम सैन्य ठिकानों के साथ साथ एटमी सेंटर और तेल गैस के प्लांट को निशाना बनाया जाएगा। अमेरिका की उम्मीद है कि होर्मुज की वजह से अब की बार दुनिया के तमाम मुल्क और नाटो उनका साथ देंगे। मतलब यही है कि ईरान अलग थलग पड़ सकता है क्योंकि होर्मुज पर ईरानी हमले की निंदा दुनिया के सभी मुल्कों ने की है। यहां तक कि फ्रांस ने भी माना है कि होर्मुज पर हमला करके ईरान ने अमेरिका के साथ हुए शांति समझौते के MOU का उल्लंघन किया है। दूसरी तरफ होर्मुज पर ताजा हमलों के बाद नाटो ने भी ईरान पर अमेरिकी हमलों का खुला समर्थन किया है। जब युद्ध विराम लागू हो और ईरान मूल रूप से युद्ध विराम का उल्लंघन कर रहा हो तो मुझे लगता है कि अमेरिका का बलपूर्वक जवाब देना बेहद जरूरी है। ये पहली बार है जब नाटो ने ईरान पर अमेरिकी हमलों का समर्थन किया है, तो क्या यह समर्थन आने वाले दिनों में ईरान के खिलाफ अमेरिकी हमलों में भी दिखेगा? अगर ऐसा हुआ तो ईरान के खिलाफ अब ये युद्ध सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं रहेगा, मतलब ईरान के खिलाफ हमलों में नाटो भी शामिल हो सकता है। नाटो भी अमेरिका के साथ युद्ध में शामिल हुआ तो ईरान की हार तय है।
1: To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is? They're scum. They're sick people. They're led by sick people. Scum. You know what scum is? They're scum. They're sick people. They're led by sick people. And they're vicious, violent people. And if they had a nuclear weapon, they'd use it. As far as I'm concerned, it's over.
0: ईरानी विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी हमलों का समर्थन करने और इसराइल को लेकर नाटो ने निष्पक्ष भूमिका नहीं निभाई, तो क्या ये जंग अमेरिका बनाम ईरान नहीं बल्कि ईरान बनाम दुनिया में बदल सकती है? आज तक ब्यूरो।
2: इसी के साथ हम यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: 30,000 भारतीयों के बीच मेलबर्न में बोले प्रधानमंत्री मोदी, शिप से चिप तक बना रहा है भारत, ग्रो मोर अचीव मोर का दिया नारा, कहा रक्षा अंतरिक्ष और यूरेनियम डील पर मुहर। टीएमसी को छोड़ बीजेपी, माया ममता के तीनों ही पूर्व राज्यसभा के सांसदों को मिला इनाम, उपचुनाव के लिए बने कमल के उम्मीदवार, कल ही पार्टी में शामिल हुए थे सुखेंदु, सुष्मिता और प्रकाश। यूपी में चढ़ा चुनावी तापमान, योगी का आरोप, 2017 से पहले कब्रिस्तानों पर पैसे खर्च करती थी एसपी सरकार, ओपी राजभर ने भी अखिलेश पर किया बड़ा हमला। महाराष्ट्र और गुजरात समेत उत्तर भारत में जोरदार बारिश से परेशानी, दिल्ली एनसीआर भी हुआ पानी पानी, बादली में डूबने से 7 साल के बच्चे की मौत, गाजियाबाद में भी एक बच्चे की गई जान। अमेरिकी हमले के बीच खामनेई का अंतिम संस्कार, ट्रंप ने फिर दी धमकी, कहा 20 गुना ताकत से करेंगे अटैक, बदले में अमेरिकी ठिकानों पर तेहरान ने बरसाए बम। बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच बड़ा सनातनी साबित करने की लड़ाई चल रही है। समाजवादी पार्टी कह रही है कि वो सनातनी है, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बता रहे हैं कि विकास का जो पैसा आज सनातन की रक्षा के लिए खर्च किया जा रहा है वो समाजवादी सरकार में कब्रिस्तानों पर खर्च किया जाता था। इन सबके बीच वक्फ को लेकर भी खींचतान यूपी में शुरू हो चुकी है।
1: बीजेपी के लोग किसी भी सीमा तक झूठा प्रचार कर सकते हैं।
2: समाजवादी पार्टी के लोगों को तो ठेके पट्टे से ही फुर्सत नहीं है।
3: अयोध्या में चढ़ावा चोरी क्या हुई, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की चुनावी राजनीति के पौबारा हो गए। महीने भर में कांग्रेस और समाजवादियों ने जितनी बार राम का नाम नहीं लिया होगा उतनी बार वक्फ, बाबर, कब्रिस्तान हो चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ धुआंधार रैलियां और कार्यक्रम कर रहे हैं, सैकड़ों करोड़ की योजनाओं की सौगात जिले जिले दी जा रही है, और इसके साथ ही विपक्ष पर मुस्लिम परस्त, मुगल परस्त, मौका परस्त होने की सियासी बौछार चल रही है।
2: आज के समाजवादी राम से दूरी बनाते हैं, बाबर को अपना आदर्श मानते हैं, औरंगजेब को अपना आदर्श मानते हैं, राम और कृष्ण को नहीं मानते।
4: अंतर यही है, बीजेपी की सरकार आई तो अब पैसा मंदिरों के विकास के लिए, धामों के सुंदरीकरण में खर्च हो रहा है, और समाजवादी पार्टी के समय वही पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल के लिए चला जाता था।
2: वक्फ के नाम पे हजारों एकड़ लैंड बेच भी दी गई, वारा नारा किया गया, ये सीधे सीधे डकैती थी, इसके नाम पर एक भी बार समाजवादी पार्टी नहीं बोली, एक भी बार कांग्रेस नहीं बोली, बल्कि जब मोदी जी ने इसके खिलाफ कानून बनाया, उस लूट के खिलाफ कानून बनाया, तो इन लोगों ने आंदोलन किया।
3: एक तरफ समूचा विपक्ष राम मंदिर में चोरी को लेकर हमलावर था, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वक्फ में घोटालों का मुद्दा उठाया और अब उसी लाइन को यूपी के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ने और आगे बढ़ा दिया।
5: उत्तर प्रदेश पे भी वक्फ बोर्ड, सुन्नी वक्फ बोर्ड जो है इस समय वर्तमान में रिक्त है, आने वाले दिनों में जब सुन्नी वक्फ बोर्ड का गठन होगा तो जो वक्फ अधिनियम संशोधन अधिनियम के अनुसार जो गाइडलाइन है उस गाइडलाइन के अनुसार उत्तर प्रदेश में भी उस अधिनियम के माध्यम से वक्फ के बोर्ड का गठन होगा, जिसमें पिछड़े मुसलमानों को रखा जाएगा, मुस्लिम महिलाओं को रखा जाएगा, ऐसे हमारे हिंदू भाई समाज के दो भाइयों को रखा जाएगा, जो भी उस प्रावधान में जो भी गाइडलाइन है उस गाइडलाइन के अनुसार ही आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में भी वक्फ बोर्ड के फॉर्मेशन होगा।
3: अगर ऐसा होता है तो एमपी के बाद उत्तर प्रदेश देश का दूसरा राज्य होगा जो वक्फ बोर्ड में गैर मुसलमान सदस्य रखेगा।
6: मुझे लगता है कि ये हमारे जो फंडामेंटल राइट हैं और हमारे जो मजहबी आज़ादी हमें दी गई है यकीनी तौर पर उसके साथ कहीं ना कहीं सीधा टकराव है, इसलिए हुकूमत को अपने इस फैसले पर नजरसानी करने की जरूरत है।
3: हालांकि उत्तर प्रदेश में मौजूदा शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन का कहना है कानून संसद से बना हुआ है तो उसका पालन अनिवार्य है, लेकिन सुन्नी समुदाय के मौलानाओं का कहना है वक्फ संशोधन कानून के कुछ प्रावधानों पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है और मामला कोर्ट में लंबित, लिहाजा अभी ऐसा नहीं करना चाहिए। वैसे यूपी में फिलहाल दो वक्फ बोर्ड है, सुन्नी वक्फ बोर्ड और शिया वक्फ बोर्ड। दोनों बोर्ड की संरचनाएं कुछ ऐसी कि दोनों बोर्ड में 11-11 सदस्य होते हैं, जिसमें अध्यक्ष के अलावा मुस्लिम सांसद, मुस्लिम विधायक, मुस्लिम विधान परिषद सदस्य, इस्लामिक विद्वान और मतवलियों के प्रतिनिधि होते हैं। इसके अलावा सरकारी अधिकारी सीईओ होता है, यानी अभी की व्यवस्था में गैर मुस्लिम सदस्य वक्फ बोर्ड में नहीं होते, लेकिन वक्फ संशोधन बिल के बाद, नई व्यवस्था के बाद वक्फ बोर्ड में कम से कम 2 गैर मुस्लिम सदस्य अनिवार्य हैं। इसके अलावा 2 मुस्लिम महिला सदस्य, पसमानदा प्रतिनिधि, सांसद, विधायक, बार काउंसिल के सदस्यों में से एक एक का सीधे मनोनयन होगा, यानी पहले चुनाव होता था, उन्हें अब मनोनीत किया जाएगा।
7: जो चंदा और चढ़ावा में लूट का मुद्दा है, उस मुद्दे से जनता का ध्यान हट जाए। हर समस्या का समाधान मुसलमान है भारतीय जनता पार्टी की, तो अब फिर से मुसलमान को सामने लाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया जा रहा है। मुसलमान मुसलमान मुसलमान मुसलमान, हर समस्या का समाधान मुसलमान है, भारतीय जनता पार्टी का ये प्रयास वो सफल होने वाला नहीं।
3: यूपी में सुन्नी वक्फ बोर्ड इसी साल 15 मार्च को भंग हुआ है। 6 महीने के अंदर इसका पुनर्गठन जरूरी है, यानी चुनाव से ठीक पहले सितंबर 2026 तक यूपी में सुन्नी वक्फ बोर्ड का गठन होगा, जिसमें यूपी सरकार हिंदू समुदाय के 2 सदस्यों को रखने की तैयारी कर चुकी है। दरअसल इसी हफ्ते मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी राज्य वक्फ बोर्ड का ऐलान किया है, जिसमें 10 सदस्यों में 2 सदस्य हिंदू हैं। इसके बाद उत्तर प्रदेश में से लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई। संतोष शर्मा के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक।
0: बारिश इस वक्त के मौसम में वो अपराधी है जिस पर हर राज्य के हर दल की सरकार ठीकरा फोड़कर अपनी जवाबदेही से बच जाना चाहती है। जैसे महाराष्ट्र में ही करीब 7,000 करोड़ रुपए की लागत वाले और हाल ही में शुरू किए गए मुंबई पुणे मिसिंग लिंक प्रोजेक्ट पर भारी बारिश के कारण जब भूस्खलन हुआ तो सवाल उठा कि इसे इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना बताया जा रहा था, वहां इतनी खामियां हैं। सवाल उठा तो मुख्यमंत्री विधानसभा में बोलते बोलते मर्यादा तोड़ने लगे।
8: हमारे जयंत राव जी ने सही बात कही, जिनको कुत्ता नहीं पोछता वो आजकल सोशल मीडिया पर आकर सबको गाली देते हैं, मुख्यमंत्री को भी गाली देते हैं। ऐसे कुछ भाड़े के टट्टे इस मिसिंग लिंक के बारे में भी पैसा ले लेकर सोशल मीडिया पर लिख रहे थे, उनको भी कह देना चाहता हूं, अगर महाराष्ट्र का अपमान करोगे छोड़ूंगा नहीं। तो गाली देते हैं।
3: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस गुस्से में हैं। गर्म तवे पर किसी ने छन्न से पानी का छींटा मारा ऐसे दिखते हैं, लेकिन क्यों? बात 3 दिन पुरानी है। मिसिंग लिंक के नाम से मशहूर मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे जो करीब 2 महीने पहले ही चालू हुआ, जिसे बनाने में जनता के 6,695 करोड़ रुपए लगे, जिस मेगा प्रोजेक्ट को इंजीनियरिंग का बेजोड़ नमूना कहा गया, तेज बारिश के बाद भूस्खलन से उसी नायाब इंजीनियरिंग वाले मिसिंग लिंक पर पत्थर टूट पड़े। भूस्खलन के बाद यहाँ कुछ देर तक रास्ता बंद रहा। लोगों ने सवाल सियासत से लेकर सोशल मीडिया तक पर पूछे, तो अगर सवाल पूछा जाए तो क्या वो गलत है? क्या उससे महाराष्ट्र का अपमान? पहले 6 जुलाई की इस हादसे के वक्त की रिपोर्ट देखिए।
9: मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे के मिसिंग लिंक पर है 2 महीने पहले इसी मिसिंग लिंक को बहुत जोर शोर के साथ इनॉग्रेट किया गया था, लेकिन अभी इस वक्त इसकी हालत आप देख लीजिए, तो तकरीबन 4 बजे सोमवार के समय 4 बजे अचानक से यहाँ पे लैंडस्लाइड हो गया। पुणे से मुंबई की तरफ जो जाने वाला जो रास्ता है उस पर इस वक्त ठप है और लैंडस्लाइड की वजह से ये पूरा का पूरा रास्ता बंद हो गया है। अभी आप देख लीजिए 4 बजे से दोपहर के अभी 12 बज रहे हैं, अभी भी बताया जा रहा है कि 3 से 4 घंटा और लग सकता है पूरे मलबे को निकालने के लिए, और इस ये जो मलबा है उसको ले जाके ये लोग बाहर देख रहे हैं। लेकिन आप देख लीजिए पूरा का पूरा जो ऊपर का जो हिस्सा था वो भूस्खलन के दौरान पूरा का पूरा गिर गया, बड़े बड़े पत्थर यहाँ पे गिरे हुए हैं।
3: असल में सवाल इसीलिए पूछा जाता है क्योंकि जब कोई इस तरह का एक्सप्रेसवे हाईवे बनाता है तो उसको लेकर दावे ऐसे ऐसे करता है जिसके बाद भरोसा जनता को दिया जाता है कि अब कुछ गड़बड़ नहीं होने वाला, लेकिन फिर उन दावों की पोल प्रकृति खोल देती है और सवाल फिर मुख्यमंत्री को चुभ जाता है।
10: कोई पेड़ गिर के मर रहा है, कोई मैनहोल में गिर के मर रहा है, कोई किसी और आपत्ति में मर रहा है, कभी कोई इलेक्ट्रिक्यूट होकर मर रहा है।
11: जवाब आपको देना पड़ेगा, जिस कुर्सी पे आप हो आप राजा नहीं हो, जनता के सेवक हो, और ये मान के चलिए कि जनता हर समय आपको सवाल करेगी, ये घमंड नहीं कोई देखेगा।
12: काल सद्या मुख्यमंत्र्यांचं फडणवीसांचं भाषण विधानसभेमधलं, त्याचं म्हणे राजकारण करू नका. अरे वा, आणि काय म्हणतायत म्हणे, एक वेळ मला बोला पण महाराष्ट्राचा अपमान मी सहन करणार नाही. वारे वा, लोक त्या मिसिंग लिंक बद्दलच बोलतायत, महाराष्ट्राचा कुठे अपमान करतायत? पण ते काय सगळं घेऊन जायचं, म्हणजे ते वरपासून खालपर्यंत आता काय सवय लागली आहे? केंद्र सरकारच्या कुठच्या गोष्टींबद्दल बोललं की तुम्ही देशविरोधी, आता मिसिंग लिंक बद्दल बोललं तर याच्यात महाराष्ट्राचा अपमान कुठे आला?
3: सवाल सियासत का नहीं, सवाल इस बात का है कि अगर कहीं कमी है और उस पर प्रश्न है तो क्यों इसे साजिश और अपमान तक सत्ताधारी बताने लगते हैं? जबकि महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के संयुक्त प्रबंध निदेशक राजेश पाटिल से आज तक संवाददाता विद्या ने पूछा कि इस बात का अंदाजा नहीं लगाया था कि ऐसा लैंडस्लाइड हो सकता है.
13: स्ट्रक्चरली कोई डैमेज नहीं हुआ है इस लैंडस्लाइड में, लेकिन क्या जिस तरीके से ये बारिश हुई क्या इस बात का अंदाजा नहीं था कि यहाँ पे लैंडस्लाइड हो सकता है? उस समय भी क्या आप लोगों ने असेसमेंट किया था या उस असेसमेंट के बाहर ये हो गया ये हादसा?
14: या असेसमेंट किया था, लेकिन टनल के ऊपर जो ओवरबर्डन है वो 220 meters है ओवरबर्डन, और इसका डिजाइन भी हमने IIT बॉम्बे से अप्रूव करके लिया था, वेटिंग करके लिया था, और एज पर देयर अप्रूव डिजाइन वो हमने रॉकफॉल मिटिगेशन मेजर किया था, एंड वो जो रॉकफॉल मिटिगेशन मेजर हमने किया है वो इंटैक्ट है. वो हमने अभी अप टू 15 meters किया था, वो इंटैक्ट है, और वो अभी बाकी जो हुआ उसके लिए वी हैव टू डू कॉम्प्रिहेंसिव इंस्पेक्शन एंड देन वी हैव टू कम विद सम स्ट्रांग रेमेडियल एक्शन फॉर दैट.
3: महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम के संयुक्त प्रबंध निदेशक इस बात को समझते भी हैं और समझाते भी कि सुरंग के ठीक ऊपर लगभग 120 मीटर पर मिट्टी पत्थर जमा है. IIT बॉम्बे से पहले ही पूरी सलाह ली जा चुकी है. सुरंग के ऊपरी हिस्से से 10 मीटर तक बचाव के उपाय किए गए थे. हालांकि भूस्खलन सुरंग के ऊपरी हिस्से से 150 या 200 मीटर की दूरी से हुआ और इस वजह से चट्टाने गिरी और फिर मिसिंग लिंक सवालों में आए. तो जरूरी ये है कि कहीं कुछ हो तो उसके कारण को समझकर कारण सबको बताया जाए, न कि सवाल पूछने या सवाल उठाने वालों पर सवाल उठाकर सवाल को ही दबा दिया जाए.
0: अब आपको पुणे के पिंपरी चिंचवाड़ से आई खबर से खबरदार करते हैं, जहां पहाड़ लैंडस्लाइड की तरह टूटा था. 3 मंजिला इमारत पर गिरकर लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ गया, लेकिन ये पहाड़ कूड़े का था. ये प्लान से जुड़ी इमारत को मलबे में बदल देता है. 23 लोग इसमें फंस जाते हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन चलता है और जवाबदेही के सवाल पर जिम्मेदार लोग बारिश पर ठीकरा आसानी से फोड़कर निकल जाते हैं.
3: जहां कूड़े का पहाड़ खड़ा करके कूड़े से बिजली बनाने का प्लांट बनाया, क्या वही लापरवाही इस कदर रही कि वो कूड़े का पहाड़ जिंदगियों पर टूट पड़ा? कूड़े का पहाड़ जब लगातार बारिश के बाद टूटा और गिरा तो देखिए लैंडस्लाइड जैसे हालात ऐसे बन गए कि कूड़े से बिजली बनाने वाले प्लांट की 3 मंजिला इमारत ढह जाती है. चीख पुकार के बीच पहले दिल दहला देने वाले इस वीडियो को देखिए, जहां किसी तरह लोगों को बिल्डिंग के ढेर के बीच से निकाला जाता है. सबसे पहले दमकल वाले पहुंचे, फिर NDRF की टीमें लग जाती. यहां लगातार लोगों को इस मलबे से बचाने की कोशिश जारी दिखती है. इस बीच मलबे से कोई जख्मी हालत में जिंदगी के लिए जंग लड़ता बाहर आता है तो वहां खड़े लोग इंतजार करते हैं कि इसकी सांसें चल रही है. पिंपरी चिंचवड़ नगर निगम के अधीन आते इस इलाके में कूड़े से बिजली बनाने वाले प्लांट पर कूड़े का पहाड़ गिरने के बाद लोगों को बाहर निकालना कितना कठिन है, इसे आप NDRF के लोगों से समझिए.
15: पूरी बिल्डिंग कोलैप्स हो रखी है, पूरे मलबे से दबी हुई है, एंड बॉडीज हमने ट्रेस करी हैं, 3 के करीब कर ली, जिसमें से 1 निकाली है. एक को और थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि जो मलबा है मैनुअली निकालेंगे. अगर हम मशीन लगा के निकालेंगे वाइब्रेशन हो जाएगा जिससे कि फर्दर कोलैप्स हो सकते हैं.
16: जो एरिया बताया जा रहा है कैंटीन एरिया, वो हम फोकस कर रहे हैं. वहाँ पे 5 to 6 का बताया गया है फिगर, तो राइट नाउ वी आर होपिंग कि 7 to 8 है, इससे ज्यादा तो नहीं है.
17: जवान पार्किंग तक जा चुके हैं? जवान
16: पार्किंग तक अभी नहीं पहुंच पाए हैं, क्योंकि धीरे धीरे मैनुअली काम हो रहा है हाथ से निकाल के, क्योंकि हम मशीन नहीं अप्लाई कर सकते। मशीन अप्लाई करेंगे पूरा बिल्डिंग पैनकेक कोलैप्स हो जाएगा, तो जो है भी वो पूरा दब जाएगा।
3: अब सवाल है कि ऐसे हालात कैसे बने, क्या इस बात का अंदाजा किसी को नहीं था कि जो कूड़े का पहाड़ यहाँ इतना ऊंचा खड़ा, इसकी वजह से हादसा भी हो सकता है। आज तक संवाददाता ने इसीलिए सीधे विजय सूर्यवंशी, आयुक्त पिंपरी चिंचवड़ नगर निगम से सवाल किया है।
17: इतना बड़ा हादसा हुआ है, इसका जिम्मेवार कौन है, उस पर कुछ दर्ज होगा पुलिस थाने में?
18: देखो, ये नेचुरल कैलामिटी है, ऐसा नहीं कि बिल्डिंग अपने आप ढह गई। अपने आप ढह जाती तो हम कहते कि इसका स्ट्रक्चर वीक था, इसका स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम था। अभी आप देख रहे हैं कि ये बड़ा लैंडस्लाइड जैसे हुआ है, मतलब 60 मीटर हाइट का ये कचरे का पहाड़ है ऑलमोस्ट, और 600 mm बारिश जो 36 आवर्स में, 36 घंटे में 600 mm, इसकी वजह से उसका जो वेट बढ़ गया होगा और जैसे लैंडस्लाइड होता है वैसे वो ढह गया और उसका हॉरिजॉन्टल प्रेशर बिल्डिंग के आने के बाद वो बिल्डिंग कोलैप्स हो गई।
3: 60 मीटर ऊंचा कूड़े का पहाड़ खड़ा था, ये बात खुद आयुक्त मानते हैं। ये भी मानते हैं कि बारिश बहुत ज्यादा लगातार हुई, तो क्यों नहीं संकट को पहले समझा गया, क्यों नहीं काम रोका गया, ये क्यों नहीं सोचा गया कि अगर यहाँ तेज बारिश हुई तो यही कचरे का 60 मीटर ऊंचा पहाड़ पानी में भीग कर जब तेज हवा से गिरेगा तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता है।
19: डंपिंग ग्राउंड है पिंपरी चिंचवड़ का, ये 1982 से, मतलब अभी करीब करीब उसको 47 ईयर हो गए, 47 साल से यहाँ चल रहा है और बहुत बड़ा पहाड़ी बन गया उसका। तो
3: कूड़े के पहाड़ को कम करने के लिए बताया गया कि वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट शुरू किया गया ताकि कचरे की मात्रा कम की जा सके, लेकिन ज्यादा जोर प्रशासन का इस हादसे पर बारिश को कटघरे में खड़ा करने में लगा हुआ है।
17: पूछताछ की जाएगी इस मामले में?
18: देखो, अभी तो हम रेस्क्यू ऑपरेशन में व्यस्त है सब, अभी हमारी प्रायोरिटी है कि जो 8 लोग और है उनको जिंदा बाहर निकाला जाए, उनको रेस्क्यू करा जाए, उसके बाद में ये सब सोचा जाएगा।
17: क्योंकि ये बहुत बड़ा मामला है, 23 लोग जो थे अंदर थे, अभी 15 लोगों को निकाला गया, उनमें से एक की डेथ हुई है, ऐसा दमकल विभाग का कहना है। तो पूछताछ तो होनी चाहिए, मतलब किस तरह से ये मामला हुआ, क्योंकि वहाँ के लोग बोल रहे हैं कि 2 दिन पहले उनको लगा था कि ये जो कचरे का ढेर है वो नीचे सरक सकता है।
18: नहीं देखो, जरूर बहुत दुर्दैवी घटना है और भगवान की दया से अभी तक तो हम 14 लोग जो निकाल पाए, मगर इस घटना के बारे में अभी सब बैठेंगे, क्या एग्जैक्टली हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसके बारे में सब सोचेंगे और उसके बारे में नेक्स्ट एक्शन उसके बाद डिसाइड करेंगे।
3: बस यहाँ गनीमत ये रही कि बहुत तेजी से रेस्क्यू ऑपरेशन करके जो लोग दबे रहे उन्हें निकाला जाता रहा।
0: सूरत यानी कि गुजरात की डायमंड सिटी, जहां इतनी बारिश पिछले 3 दिन में हुई है कि दावा यह किया गया कि दशकों का रिकॉर्ड टूट चुका है, और जब पानी सूरत में उतरा तो लोगों को बहुत नुकसान का पता चला।
3: सूरत के वराछा में स्थित पुदार आर्केड में फिलहाल मेरी मौजूदगी और मेरे पीछे की तरफ की तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा, जहां पे मोबाइल शॉप बेसमेंट में आए हुए हैं। पूरे बेसमेंट में अलग अलग जो शॉप्स फिलहाल दिखाई दे रही है, जिसके बाहर की तरफ सामान्य जल भराव की स्थिति है और साफ सफाई का काम यहाँ पे चल रहा है, क्योंकि 30 घंटे पहले सूरत के अलग अलग इलाकों में 15 से 18 इंच जितनी बारिश हुई और इस बारिश की वजह से चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई पड़ रहा था। लेकिन बीते 30 घंटों में अलग अलग इलाकों में जो जल भराव की स्थिति थी, अब तो जल भराव की स्थिति देखने को नहीं मिल रही है, पर ये वही पुदार आर्केड है जहां पे पूरा बेसमेंट जलमग्न हो गया था।
20: यहां पे ये गुजरात का सबसे बड़ा मोबाइल हब है और यहां पे नए शोरूम है, रिपेयरिंग है, सेकंड हैंड वाले भी है, और ये एक 200 दुकान अंदर घर का हो चुकी है, तो समझ लो कि एक दुकान में किसी का 1 करोड़ का माल था, किसी का 50 लाख का था, आप एवरेज भी लगाओगे तो 200 से 250 करोड़ का नुकसान है।
21: 5 दुकान लाइन में अपना होलसेल का काम था, होलसेल में आपको पता होगा कि बहुत सारा स्टॉक होता है, सब प्रीमियम और ब्रांडेड चीज अभी आई थी माल अपने पास, 20 से 30 कार्टून आए थे और पुराना भी माल बहुत डिस्प्ले करा हुआ था, टोटल आश्रे 1.5 से 2 करोड़ का हमारा नुकसान है टोटली, अभी कोई भी प्रशासन हमको कोई जवाब नहीं दे रही है।
3: जिस प्रकार की तस्वीरें सामने आ रही है वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये जो टेक्सटाइल मार्केट है वहां जल भराव की स्थिति अभी भी देखने को मिल रही है। टेक्सटाइल मार्केट का ये बिल्डिंग और इसी बिल्डिंग के नीचे की तरफ 2 फ्लोर गोडाउन है और वो दोनों फ्लोर का जो गोडाउन है, बेसमेंट है, वो पूरा जलमग्न है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जो भी बेसमेंट के अंदर मौजूद गोडाउन के अंदर पानी भरा हुआ है उसे निकालने के लिए मोटर का इस्तेमाल करना पड़ रहा है,
1: पानी निकालने की कोशिश बीते कई घंटों से जारी है, लेकिन इन कोशिशों के बीच करोड़ों की नुकसानी की बात अब फॉस्टा यानी कि जो टेक्सटाइल एसोसिएशन है उनकी तरफ से कही जा रही है। हमारे साथ फॉस्टा के जनरल सेक्रेटरी भी मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे।
4: रोड जाम होने की वजह से, पीछे खाड़ी जाम होने की वजह से पानी गया नहीं और वो फ्लो बैक मारा, उसने भी मारा और ऊपर से कुदरत की भी बरसात गिरने से बड़ा बड़ा नुकसान हुआ है व्यापारियों का। और रही बात एवरेजों की, तो हमारा अंदाजा ऐसा है कि कम से कम जिस हिसाब से आपने ये मार्केट देखा है, ऐसे कई मार्केट अभी भी पानी के अंदर है, जिसका हम लोग ऐसा समझते हैं कि अंदाजन हजार एक दुकानें ऐसी होगी जो नुकसान के साथ में जकड़ी हुई है। और ये लाखों में नुकसान नहीं है, ये नुकसान करोड़ों में है।
0: अमेरिका और ईरान के बीच महायुद्ध का बिगुल फिर से बज चुका है। दोनों मुल्कों की सेनाएं आमने सामने हैं। हॉर्मुज पर ईरानी हमले के बाद अमेरिकी सेना ने ईरान के 170 ठिकानों पर भीषण बमबारी की है।

0: ट्रंप के बारूद से धुआं धुआं हुआ ईरान। 24 घंटे में 170 अड्डों पर भीषण बमबारी। ईरानी एटमी सेंटर पर अमेरिका का हमला। ट्रंप के वॉर गेम में बुरी तरह फंस गया ईरान। हॉर्मुज पर हमला ईरान के लिए बहुत महंगा। युद्ध शुरू, अब ट्रंप का ऑपरेशन मुस्तबा। सत्ताईस जून को ईरान ने हॉर्मुज पर हमला किया। हमले के बाद अमेरिका ने अगले 48 घंटों में दो बार ईरान पर भीषण बमबारी की। एक बार फिर 6 जुलाई को ईरान ने हॉर्मुज में 3 टैंकरों को निशाना बनाया। ट्रंप ने अपनी धमकी को सच साबित करते हुए 7 जुलाई और 8 जुलाई को ईरान पर ताबड़तोड़ हवाई हमले किए। महज 24 घंटों के अंदर ईरान के 170 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। ईरान पर हमले का वीडियो अमेरिकी सेना ने जारी किया। अगर ईरान पर अमेरिकी हमले की टाइमिंग को देखें तो संकेत यही है कि विनाशकारी युद्ध का बिगुल बज चुका है। संकेत नंबर 1, ईरान पर अमेरिका का विध्वंसक हमला जारी। संकेत नंबर 2, ट्रंप का ऐलान, युद्ध विराम खत्म, अब वार्ता नहीं। संकेत नंबर 3, ईरान पर अमेरिकी हमलों के समर्थन में नाटो। संकेत नंबर 4, हॉर्मुज पर ईरानी हमले की इंटरनेशनल निंदा। संकेत नंबर 5, तेहरान के डिप्टी मेयर बोले, एटमी हमले का डर। मतलब यही है कि ईरान और अमेरिका के बीच तनाव चरम पर है। अब ये युद्ध दुनिया को अपनी चपेट में ले सकता है, क्योंकि ट्रंप ने ईरान के ठिकानों को अपनी मिसाइल के टारगेट पर लॉक कर दिया है, तो वहीं ईरान के लिए वार्ता के दरवाजे पर ताला लगा दिया है।
1: Retribution for last night. They hit actually 3 boats, not 2. And when they hit, we hit back much harder. Another way of doing it. We have many ways we can win, but we've already won militarily. They have very little left, and they want to make a deal so badly. They called a little while ago. They want to make a deal so badly. I just don't know if they're worthy of making a deal. I don't know that they're going to honor the deal. That's the problem. Because it's sort of crazy, to be honest with you. They're sort of crazy. They're a little bit out of control, but they want to make a deal. Badly.
0: अगर ईरान पर अमेरिका के ताजा हमलों को देखें तो ट्रंप का वॉर गेम समझना मुश्किल नहीं है। ट्रंप की हिट लिस्ट पर हैं ईरान के अहम सैन्य ठिकाने, तेल और गैस के लिहाज से अहम शहर, ईरान के अहम बंदरगाह, ईरान का ट्रांसपोर्ट नेटवर्क और ईरान के परमाणु सेंटर। ईरानी मीडिया का दावा है कि बुशहर में तेज धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं। ये धमाके ईरान के न्यूक्लियर प्लांट के आसपास सुने गए हैं। ठीक ऐसे ही चाबहार पोर्ट को निशाना बनाया गया। IRGC का दावा है कि अमेरिका ने मशहद जाने वाले रास्तों के पुलों को निशाना बनाया। यही नहीं, ईरान के गोलिस्तान प्रांत के अफ्तेके खान रेलवे ब्रिज पर मिसाइल अटैक किया है। ट्रंप ने ईरान को सीधी धमकी दी है कि अमेरिका की सैन्य कार्रवाई अब रुकेगी नहीं। अमेरिका के हमले ईरान द्वारा जहाजों पर की गई बमबारी का प्रतिशोध है। अगर ऐसा दोबारा हुआ तो हालात और भी बदतर हो जाएंगे। बड़ी बात यह है कि शांति समझौते के बावजूद हॉर्मुज पर हमले करके ईरान चौतरफा घिर गया है। ईरान के खिलाफ मिडल ईस्ट के तमाम मुल्क बड़े और कड़े एक्शन की मांग कर रहे हैं। इसमें वो मुल्क भी शामिल हैं जो चंद दिनों पहले तक अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता कर रहे थे। ऐसे में अमेरिका को पता है कि हॉर्मुज पर हमला करके ईरान ने गलत बटन दबा दिया है, लिहाजा ईरान ने अमेरिका को हमले का मौका थाली में सजाकर सौंप दिया है। इसी कड़ी में अमेरिका ने ईरान के कई शहरों पर चुन चुन कर बम बरसाए। ट्रंप का टारगेट बंदर अब्बास। ये ईरान का सबसे बड़ा व्यावसायिक और नौसैनिक बंदरगाह है, यहाँ पर अमेरिका ने बमबारी करके ईरानी सेना और ईरानी कारोबार को चोट पहुँचाई। ट्रंप का टारगेट वो शहर, ये वही शहर है जहाँ पर ईरान का एकमात्र चालू परमाणु बिजली प्लांट है। यहाँ हमला करके ट्रंप ने संदेश दिया है कि ईरान का कोई भी एटमी सेंटर नहीं बचेगा। ट्रंप का टारगेट सिरिक, ये शहर होर्मुज से सटा हुआ है, यहीं से ईरानी सेना गुजरने वाले जहाजों की निगरानी करती है। अमेरिका ने सिरिक में मौजूद ईरानी सैन्य ठिकानों के साथ साथ नौसेना की बोट को निशाना बनाया। ट्रंप का टारगेट चाबहार पोर्ट, ईरान का इकलौता बंदरगाह जो सीधे हिंद महासागर से समुद्री यातायात तय करता है। ये कारोबार और सैन्य लिहाज से अहम है, यहाँ पर भी अमेरिकी हमला हुआ। ट्रंप का टारगेट केशम द्वीप, फारस की खाड़ी का सबसे बड़ा द्वीप जहाँ ईरानी नौसेना के ठिकानों के साथ साथ तेल गैस फैसिलिटी है। अमेरिका ने इस आइलैंड पर भी भीषण बमबारी की है, मतलब ईरान से ट्रंप का बदला बहुत घातक है। ईरान की सरकारी मीडिया ने माना है कि पिछले 48 घंटों में 5 प्रांतों पर हुए अमेरिकी हमलों में कम से कम 14 लोग मारे गए जबकि 78 से ज्यादा जख्मी हैं। अगले कुछ घंटों में ये आंकड़े बढ़ सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ व्हाइट हाउस के हवाले से एक्सियोस में छपी रिपोर्ट में ईरान को लेकर कई बड़े दावे किए गए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति का पूरा जोर होर्मुज को ईरानी नियंत्रण से मुक्त कराने पर है, लिहाजा होर्मुज को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति की तैयारी ईरान के खिलाफ लंबे युद्ध की है। अगर ईरान ने अमेरिकी हमले के बाद फिर हमला किया तो अमेरिका कई हफ्तों तक हवाई हमले करेगा। ईरान के अहम सैन्य ठिकानों के साथ साथ एटमी सेंटर और तेल गैस के प्लांट को निशाना बनाया जाएगा। अमेरिका की उम्मीद है कि होर्मुज की वजह से अब की बार दुनिया के तमाम मुल्क और नाटो उनका साथ देंगे। मतलब यही है कि ईरान अलग थलग पड़ सकता है क्योंकि होर्मुज पर ईरानी हमले की निंदा दुनिया के सभी मुल्कों ने की है। यहां तक कि फ्रांस ने भी माना है कि होर्मुज पर हमला करके ईरान ने अमेरिका के साथ हुए शांति समझौते के MOU का उल्लंघन किया है। दूसरी तरफ होर्मुज पर ताजा हमलों के बाद नाटो ने भी ईरान पर अमेरिकी हमलों का खुला समर्थन किया है। जब युद्ध विराम लागू हो और ईरान मूल रूप से युद्ध विराम का उल्लंघन कर रहा हो तो मुझे लगता है कि अमेरिका का बलपूर्वक जवाब देना बेहद जरूरी है। ये पहली बार है जब नाटो ने ईरान पर अमेरिकी हमलों का समर्थन किया है, तो क्या ये समर्थन आने वाले दिनों में ईरान के खिलाफ अमेरिकी हमलों में भी दिखेगा? अगर ऐसा हुआ तो ईरान के खिलाफ अब ये युद्ध सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं रहेगा, मतलब ईरान के खिलाफ हमलों में नाटो भी शामिल हो सकता है। नाटो भी अमेरिका के साथ युद्ध में शामिल हुआ तो ईरान की हार तय है।
1: To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is? They're scum. They're sick people. They're led by sick people. And they're vicious, violent people. And if they had a nuclear weapon, they'd use it. As far as I'm concerned, it's over.
0: ईरानी विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी हमलों का समर्थन करने पर नाटो की निंदा की है। ईरान ने आरोप लगाया कि ईरान अमेरिका युद्ध का जिम्मेदार नाटो है। आरोप यही है कि अमेरिका और इजराइल को लेकर नाटो ने निष्पक्ष भूमिका नहीं निभाई। तो क्या ये जंग अमेरिका बनाम ईरान नहीं बल्कि ईरान बनाम दुनिया में बदल सकती है? आज तक ब्यूरो
2: के साथ हम यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: 30,000 भारतीयों के बीच मेलबर्न में बोले प्रधानमंत्री मोदी, शिप से चिप तक बना रहा है भारत, ग्रो मोर अचीव मोर का दिया नारा, कहा रक्षा अंतरिक्ष और यूरेनियम डील पर मुहर। टीएमसी को छोड़ बीजेपी, माया ममता के तीनों ही पूर्व राज्यसभा के सांसदों को मिला इनाम, उपचुनाव के लिए बने कमल के उम्मीदवार, कल ही पार्टी में शामिल हुए थे सुखेंदु, सुष्मिता और प्रकाश। यूपी में चढ़ा चुनावी तापमान, योगी का आरोप, 2017 से पहले कब्रिस्तानों पर पैसे खर्च करती थी एसपी सरकार, ओपी राजभर ने भी अखिलेश पर किया बड़ा हमला। महाराष्ट्र और गुजरात समेत उत्तर भारत में जोरदार बारिश से परेशानी, दिल्ली एनसीआर भी हुआ पानी पानी, बादली में डूबने से 7 साल के बच्चे की मौत, गाजियाबाद में भी एक बच्चे की गई जान। अमेरिकी हमले के बीच खामनेई का अंतिम संस्कार, ट्रंप ने फिर दी धमकी, कहा 20 गुना ताकत से करेंगे अटैक, बदले में अमेरिकी ठिकानों पर तेहरान ने बरसाए बम। बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच बड़ा सनातनी साबित करने की लड़ाई चल रही है। समाजवादी पार्टी कह रही है कि वो सनातनी है, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बता रहे हैं कि विकास का जो पैसा आज सनातन की रक्षा के लिए खर्च किया जा रहा है वो समाजवादी सरकार में कब्रिस्तानों पर खर्च किया जाता था। इन सबके बीच वक्फ को लेकर भी खींचतान यूपी में शुरू हो चुकी है।
1: बीजेपी के लोग किसी भी सीमा तक झूठा प्रचार कर सकते हैं।
2: समाजवादी पार्टी के लोगों को तो ठेके पट्टे से ही फुर्सत नहीं है।
3: अयोध्या में चढ़ावा चोरी क्या हुई, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की चुनावी राजनीति के पौबारा हो गए। महीने भर में कांग्रेस और समाजवादियों ने जितनी बार राम का नाम नहीं लिया होगा उतनी बार वक्फ, बाबर, कब्रिस्तान हो चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ धुआंधार रैलियां और कार्यक्रम कर रहे हैं, सैकड़ों करोड़ की योजनाओं की सौगात जिले जिले दी जा रही है, और इसके साथ ही विपक्ष पर मुस्लिम परस्त, मुगल परस्त, मौका परस्त होने की सियासी बौछार चल रही है।
2: आज के समाजवादी राम से दूरी बनाते हैं, बाबर को अपना आदर्श मानते हैं, औरंगजेब को अपना आदर्श मानते हैं, राम और कृष्ण को नहीं मानते।
4: अंतर यही है, बीजेपी की सरकार आई तो अब पैसा मंदिरों के विकास के लिए, धामों के सुंदरीकरण में खर्च हो रहा है, और समाजवादी पार्टी के समय वही पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल के लिए चला जाता था।
2: वक्फ के नाम पे हजारों एकड़ लैंड बेच भी दी गई, वारा नारा किया गया, ये सीधे सीधे डकैती थी। इसके नाम पर एक भी बार समाजवादी पार्टी नहीं बोली, एक भी बार कांग्रेस नहीं बोली, बल्कि जब मोदी जी ने इसके खिलाफ कानून बनाया, उस लूट के खिलाफ कानून बनाया, तो इन लोगों ने आंदोलन किया।
3: एक तरफ समूचा विपक्ष राम मंदिर में चोरी को लेकर हमलावर था, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वक्फ में घोटालों का मुद्दा उठाया और अब उसी लाइन को यूपी के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ने और आगे बढ़ा दिया।
5: उत्तर प्रदेश पे भी वक्फ बोर्ड, सुन्नी वक्फ बोर्ड जो है इस समय वर्तमान में रिक्त है। आने वाले दिनों में जब सुन्नी वक्फ बोर्ड का गठन होगा तो जो वक्फ अधिनियम संशोधन अधिनियम के अनुसार जो गाइडलाइन है उस गाइडलाइन के अनुसार उत्तर प्रदेश में भी उस अधिनियम के माध्यम से वक्फ के बोर्ड का गठन होगा, जिसमें पिछड़े मुसलमानों को रखा जाएगा, मुस्लिम महिलाओं को रखा जाएगा, ऐसे हमारे हिंदू भाई समाज के दो भाइयों को रखा जाएगा। जो भी उस प्रावधान में जो भी गाइडलाइन है उस गाइडलाइन के अनुसार ही आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में भी वक्फ बोर्ड के फॉर्मेशन होगा।
3: अगर ऐसा होता है तो एमपी के बाद उत्तर प्रदेश देश का दूसरा राज्य होगा जो वक्फ बोर्ड में गैर मुसलमान सदस्य रखेगा।
6: मुझे लगता है कि ये हमारे जो फंडामेंटल राइट हैं और हमारे जो मजहबी आज़ादी हमें दी गई है यकीनी तौर पर उसके साथ कहीं ना कहीं सीधा टकराव है, इसलिए हुकूमत को अपने इस फैसले पर नजरसानी करने की जरूरत है।
3: हालांकि उत्तर प्रदेश में मौजूदा शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन का कहना है कानून संसद से बना हुआ है।

0: तो उसका पालन अनिवार्य है। लेकिन सुन्नी समुदाय के मौलानाओं का कहना है वक्फ संशोधन कानून के कुछ प्रावधानों पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है और मामला कोर्ट में लंबित, लिहाजा अभी ऐसा नहीं करना चाहिए। वैसे यूपी में फिलहाल दो वक्फ बोर्ड है, सुन्नी वक्फ बोर्ड और शिया वक्फ बोर्ड। दोनों बोर्ड की संरचनाएं कुछ ऐसी कि दोनों बोर्ड में 11-11 सदस्य होते हैं, जिसमें अध्यक्ष के अलावा मुस्लिम सांसद, मुस्लिम विधायक, मुस्लिम विधान परिषद सदस्य, इस्लामिक विद्वान और मतवल्लियों के प्रतिनिधि होते हैं। इसके अलावा सरकारी अधिकारी CEO होता है। यानी अभी की व्यवस्था में गैर मुस्लिम सदस्य वक्फ बोर्ड में नहीं होते, लेकिन वक्फ संशोधन बिल के बाद, नई व्यवस्था के बाद वक्फ बोर्ड में कम से कम 2 गैर मुस्लिम सदस्य अनिवार्य हैं। इसके अलावा 2 मुस्लिम महिला सदस्य, पसमानदा प्रतिनिधि, सांसद, विधायक, बार काउंसिल के सदस्यों में से एक एक का सीधे मनोनयन होगा। यानी पहले चुनाव होता था, उन्हें अब मनोनीत किया जाएगा।
1: जो चंदा और चढ़ावा में लूट का मुद्दा है, उस मुद्दे से जनता का ध्यान हट जाए। हर समस्या का समाधान मुसलमान है भारतीय जनता पार्टी की, तो अब फिर से मुसलमान को सामने लाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया जा रहा है। मुसलमान मुसलमान मुसलमान मुसलमान, हर समस्या का समाधान मुसलमान है। भारतीय जनता पार्टी का ये प्रयास वो सफल होने वाला नहीं।
0: यूपी में सुन्नी वक्फ बोर्ड इसी साल 15 मार्च को भंग हुआ है। 6 महीने के अंदर इसका पुनर्गठन जरूरी है, यानी चुनाव से ठीक पहले सितंबर 2026 तक यूपी में सुन्नी वक्फ बोर्ड का गठन होगा, जिसमें यूपी सरकार हिंदू समुदाय के 2 सदस्यों को रखने की तैयारी कर चुकी है। दरअसल इसी हफ्ते मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी राज्य वक्फ बोर्ड का ऐलान किया है, जिसमें 10 सदस्यों में 2 सदस्य हिंदू हैं। इसके बाद उत्तर प्रदेश में से लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई। संतोष शर्मा के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक।
2: बारिश इस वक्त के मौसम में वो अपराधी है जिस पर हर राज्य के हर दल की सरकार ठीकरा फोड़कर अपनी जवाबदेही से बच जाना चाहती है। जैसे महाराष्ट्र में ही करीब 7,000 करोड़ रुपए की लागत वाले और हाल ही में शुरू किए गए मुंबई पुणे मिसिंग लिंक प्रोजेक्ट पर भारी बारिश के कारण जब भूस्खलन हुआ तो सवाल उठा कि इसे इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना बताया जा रहा था, वहां इतनी खामियां हैं। सवाल उठा तो मुख्यमंत्री विधानसभा में बोलते बोलते मर्यादा तोड़ने लगे।
3: हमारे जयंत राव जी ने सही बात कही, जिनको कुत्ता नहीं पोछता वो आजकल सोशल मीडिया पर आकर सबको गाली देते हैं, मुख्यमंत्री को भी गाली देते हैं। ऐसे कुछ भाड़े के टट्टे इस मिसिंग लिंक के बारे में भी पैसा ले लेकर सोशल मीडिया पर लिख रहे थे, उनको भी कह देना चाहता हूं अगर महाराष्ट्र का अपमान करोगे छोड़ूंगा नहीं।
0: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस गुस्से में हैं। गर्म तवे पर किसी ने छन्न से पानी का छींटा मारा ऐसे दिखते हैं, लेकिन क्यों? बात 3 दिन पुरानी है। मिसिंग लिंक के नाम से मशहूर मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे जो करीब 2 महीने पहले ही चालू हुआ, जिसे बनाने में जनता के 6,695 करोड़ रुपए लगे, जिस मेगा प्रोजेक्ट को इंजीनियरिंग का बेजोड़ नमूना कहा गया, तेज बारिश के बाद भूस्खलन से उसी नायाब इंजीनियरिंग वाले मिसिंग लिंक पर पत्थर टूट पड़े। भूस्खलन के बाद यहाँ कुछ देर तक रास्ता बंद रहा, लोगों ने सवाल सियासत से लेकर सोशल मीडिया तक पर पूछे। तो अगर सवाल पूछा जाए तो क्या वो गलत है, क्या उससे महाराष्ट्र का अपमान? पहले 6 जुलाई की इस हादसे के वक्त की रिपोर्ट देखिए।
4: मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे के मिसिंग लिंक पर है 2 महीने पहले इसी मिसिंग लिंक को बहुत जोर शोर के साथ इनॉग्रेट किया गया था, लेकिन अभी इस वक्त इसकी हालत आप देख लीजिए, तो तकरीबन 4 बजे सोमवार के समय 4 बजे अचानक से यहाँ पे लैंडस्लाइड हो गया। पुणे से मुंबई की तरफ जो जाने वाला जो रास्ता है उस पर इस वक्त कम है और लैंडस्लाइड की वजह से ये पूरा का पूरा रास्ता बंद हो गया है। अभी आप देख लीजिए 4 बजे से दोपहर के अभी 12 बज रहे हैं, अभी भी बताया जा रहा है कि 3 से 4 घंटा और लग सकता है पूरे मलबे को निकालने के लिए और इस ये जो मलबा है उसको ले जाके ये लोग बाहर देख रहे हैं। लेकिन आप देख लीजिए पूरा का पूरा जो ऊपर का जो हिस्सा था वो भूस्खलन के दौरान पूरा का पूरा गिर गया, बड़े बड़े पत्थर यहाँ पे गिरे हुए हैं।
0: असल में सवाल इसीलिए पूछा जाता है क्योंकि जब कोई इस तरह का एक्सप्रेसवे हाईवे बनाता है तो उसको लेकर दावे ऐसे ऐसे करता है जिसके बाद भरोसा जनता को दिया जाता है कि अब कुछ गड़बड़ नहीं होने वाला, लेकिन फिर उन दावों की पोल प्रकृति खोल देती है और सवाल फिर मुख्यमंत्री को चुभ जाता है।
5: कोई पेड़ गिर के मर रहा है, कोई मैनहोल में गिर के मर रहा है, कोई किसी और आपत्ति में मर रहा है, कभी कोई इलेक्ट्रिक्यूट होकर मर रहा है।
6: जवाब आपको देना पड़ेगा, जिस कुर्सी पे आप हो आप राजा नहीं हो, जनता के सेवक हो, और ये मान के चलिए कि जनता हर समय आपको सवाल करेगी, ये घमंड नहीं कोई देखेगा।
7: काल सध्या ह्यांचं मुख्यमंत्र्यांचं फडणवीसांचं भाषण विधानसभेमधलं, त्याचं म्हणे राजकारण करू नका। अरे वा, आणि काय म्हणतायत म्हणे, एक वेळ मला बोला पण महाराष्ट्राचा अपमान मी सहन करणार नाही। अरे वा, लोक त्या मिसिंग लिंक बद्दलच बोलतायत, महाराष्ट्राचा कुठे अपमान करतायत? पण ते काय सगळं घेऊन जायचं, म्हणजे ते वरपासून खालपर्यंत आता काय सवय लागली आहे? केंद्र सरकारच्या कुठच्या गोष्टींबद्दल बोललं की तुम्ही देशविरोधी, आता मिसिंग लिंक बद्दल बोललं तर याच्यात महाराष्ट्राचा अपमान कुठे आला?
0: सवाल सियासत का नहीं, सवाल इस बात का है कि अगर कहीं कमी है और उस पर प्रश्न है तो क्यों इसे साजिश और अपमान तक सत्ताधारी बताने लगते हैं? जबकि महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के संयुक्त प्रबंध निदेशक राजेश पाटिल से आज तक संवाददाता विद्या ने पूछा कि इस बात का अंदाजा नहीं लगाया था कि ऐसा लैंडस्लाइड हो सकता है।
8: स्ट्रक्चरली कोई डैमेज नहीं हुआ है इस लैंडस्लाइड में, लेकिन क्या जिस तरीके से ये बारिश हुई, क्या इस बात का अंदाजा नहीं था कि यहाँ पे लैंडस्लाइड हो सकता है? उस समय भी क्या आप लोगों ने असेसमेंट किया था या उस असेसमेंट के बाहर ये हो गया ये हादसा?
9: या असेसमेंट किया था, लेकिन टनल के ऊपर जो ओवरबर्डन है वो 220 मीटर है ओवरबर्डन, और इसका डिजाइन भी हमने IIT बॉम्बे से अप्रूव करके लिया था, वेटिंग करके लिया था, और एज पर देयर अप्रूव्ड डिजाइन वो हमने रॉकफॉल मिटिगेशन मेजर किया था, एंड वो जो रॉकफॉल मिटिगेशन मेजर हमने किया है वो इंटैक्ट है, वो हमने अभी अप टू 15 मीटर्स किया था, वो इंटैक्ट है, और वो अभी ना बाकी जो हुआ उसके लिए वी हैव टू डू कॉम्प्रिहेंसिव इंस्पेक्शन एंड देन वी हैव टू कम विद सम स्ट्रांग रेमेडियल एक्शन फॉर दैट।
0: महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम के संयुक्त प्रबंध निदेशक इस बात को समझते भी हैं और समझाते भी कि सुरंग के ठीक ऊपर लगभग 120 मीटर पर मिट्टी पत्थर जमा है। IIT बॉम्बे से पहले ही पूरी सलाह ली जा चुकी है। सुरंग के ऊपरी हिस्से से 10 मीटर तक बचाव के उपाय किए गए थे। हालांकि भूस्खलन सुरंग के ऊपरी हिस्से से 150 या 200 मीटर की दूरी से हुआ और इस वजह से चट्टाने गिरी और फिर मिसिंग लिंक सवालों में आए। तो जरूरी ये है कि कहीं कुछ हो तो उसके कारण को समझकर कारण सबको बताया जाए, न कि सवाल पूछने या सवाल उठाने वालों पर सवाल उठाकर सवाल को ही दबा दिया जाए।
2: अब आपको पुणे के पिंपरी चिंचवाड़ से आई खबर से खबरदार करते हैं, जहां पहाड़ लैंडस्लाइड की तरह टूटा था, 3 मंजिला इमारत पर गिरकर लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ गया, लेकिन ये पहाड़ कूड़े का था। ये प्लान से जुड़ी इमारत को मलबे में बदल देता है, 23 लोग इसमें फंस जाते हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन चलता है और जवाबदेही के सवाल पर जिम्मेदार लोग बारिश पर ठीकरा आसानी से फोड़कर निकल जाते हैं।
0: जहां कूड़े का पहाड़ खड़ा करके कूड़े से बिजली बनाने का प्लांट बनाया, क्या वही लापरवाही इस कदर रही कि वो कूड़े का पहाड़ जिंदगियों पर टूट पड़ा? कूड़े का पहाड़ जब लगातार बारिश के बाद टूटा और गिरा तो देखिए लैंडस्लाइड जैसे हालात ऐसे बन गए कि कूड़े से बिजली बनाने वाले प्लांट की 3 मंजिला इमारत ढह जाती है। चीख पुकार के बीच पहले दिल दहला देने वाले इस वीडियो को देखिए, जहां किसी तरह लोगों को बिल्डिंग के ढेर के बीच से निकाला जाता है। सबसे पहले दमकल वाले पहुंचे, फिर NDRF की टीमें लग जाती। यहां लगातार लोगों को इस मलबे से बचाने की कोशिश जारी दिखती। इस बीच मलबे से कोई जख्मी हालत में जिंदगी के लिए जंग लड़ता बाहर आता है तो वहां खड़े लोग इंतजार करते हैं कि इसकी सांसें चल रही है। पिंपरी चिंचवड़ नगर निगम के अधीन आते इस इलाके में कूड़े से बिजली बनाने वाले प्लांट पर कूड़े का पहाड़ गिरने के बाद लोगों को बाहर निकालना कितना कठिन है, इसे आप NDRF के लोगों से समझिए।
10: पूरी बिल्डिंग कोलैप्स हो रखी है, पूरे मलबे से दबी हुई है एंड बॉडीज हमने ट्रेस करी हैं, तीन के करीब कर ली जिसमें से एक निकाली है। एक को और थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि जो मलबा है मैनुअली निकालेंगे, अगर हम मशीन लगा के निकालेंगे वाइब्रेशन हो जाएगा जिससे कि फर्दर कोलैप्स हो सकते हैं।
11: जो एरिया बताया जा रहा है कैंटीन एरिया वो हम फोकस कर रहे हैं, वहाँ पे 5 to 6 का बताया गया है फिगर, तो राइट नाउ वी आर होपिंग कि 7 to 8 है, इससे ज्यादा तो नहीं है।
12: जवान पार्किंग तक जा चुके हैं?
11: जवान पार्किंग तक अभी नहीं पहुंच पाए हैं क्योंकि धीरे धीरे मैनुअली काम हो रहा है हाथ से निकाल के, क्योंकि हम मशीन नहीं अप्लाई कर सकते। मशीन अप्लाई करेंगे पूरा बिल्डिंग पैनकेक कोलैप्स हो जाएगा, तो जो है भी वो पूरा दब जाएगा।
0: अब सवाल है कि ऐसे हालात कैसे बने, क्या इस बात का अंदाजा किसी को नहीं था कि जो कूड़े का पहाड़ यहाँ इतना ऊंचा खड़ा है इसकी वजह से हादसा भी हो सकता है। आज तक संवाददाता ने इसीलिए सीधे विजय सूर्यवंशी आयुक्त पिंपरी चिंचवड़ नगर निगम से सवाल किया है।
13: इतना बड़ा हादसा हुआ है, इसका जिम्मेवार कौन है, उस पर कुछ दर्ज होगा पुलिस थाने में?
14: देखो ये नेचुरल कैलेमिटी है, ऐसा नहीं कि बिल्डिंग अपने आप ढह गई। अपने आप ढह जाती तो हम कहते कि इसका स्ट्रक्चर वीक था, इसका स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम था। अभी आप देख रहे हैं कि ये बड़ा लैंडस्लाइड जैसे हुआ है, मतलब 60 मीटर हाइट का ये कचरे का पहाड़ है ऑलमोस्ट, और 600 mm बारिश जो 36 आवर्स में, 36 घंटे में 600 mm, इसकी वजह से उसका जो वेट बढ़ गया होगा और जैसे लैंडस्लाइड होता है वैसे वो ढह गया और उसका हॉरिजॉन्टल प्रेशर बिल्डिंग के आने के बाद वो बिल्डिंग कोलैप्स हो गई।
0: 60 मीटर ऊंचा कूड़े का पहाड़ खड़ा था, ये बात खुद आयुक्त मानते हैं। ये भी मानते हैं कि बारिश बहुत ज्यादा लगातार हुई, तो क्यों नहीं संकट को पहले समझा गया, क्यों नहीं काम रोका गया, ये क्यों नहीं सोचा गया कि अगर यहाँ तेज बारिश हुई तो यही कचरे का 60 मीटर ऊंचा पहाड़ पानी में भीग कर जब तेज हवा से गिरेगा तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता है।
15: डंपिंग ग्राउंड है पिंपरी चिंचवड़ का, ये 1982 से, मतलब अभी करीब करीब उसको 47 ईयर हो गए, 47 साल से यहाँ चल रहा है और बहुत बड़ा पहाड़ी बन गया उसका। तो
0: कूड़े के पहाड़ को कम करने के लिए बताया गया कि वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट शुरू किया गया ताकि कचरे की मात्रा कम की जा सके, लेकिन ज्यादा जोर प्रशासन का इस हादसे पर बारिश को कटघरे में खड़ा करने में लगा हुआ है।
13: पूछताछ की जाएगी इस मामले में?
14: देखो अभी तो हम रेस्क्यू ऑपरेशन में व्यस्त है सब, अभी हमारी प्रायोरिटी है कि जो 8 लोग और है उनको जिंदा बाहर निकाला जाए, उनको रेस्क्यू करा जाए, उसके बाद में ये सब सोचा जाएगा।
13: क्योंकि ये बहुत बड़ा मामला है, 23 लोग जो थे अंदर थे, अभी 15 लोगों को निकाला गया, उनमें से एक की डेथ हुई है ऐसा दमकल विभाग का कहना है, तो पूछताछ तो होनी चाहिए, मतलब किस तरह से ये मामला हुआ, क्योंकि वहाँ के लोग बोल रहे हैं कि 2 दिन पहले उनको लगा था कि ये जो कचरे का ढेर है वो नीचे सरक सकता है।
14: नहीं देखो जरूर बहुत दुर्दैवी घटना है और भगवान की दया से अभी तक तो हम 14 लोग जो निकाल पाए, मगर इस घटना के बारे में अभी सब बैठेंगे, क्या एग्जैक्टली हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसके बारे में सब सोचेंगे और उसके बारे में नेक्स्ट एक्शन उसके बाद डिसाइड करेंगे।
0: बस यहाँ गनीमत ये रही कि बहुत तेजी से रेस्क्यू ऑपरेशन करके जो लोग दबे रहे उन्हें निकाला जाता रहा।
2: अमेरिका और ईरान के बीच महायुद्ध का बिगुल फिर से बज चुका है, दोनों मुल्कों की सेनाएं आमने सामने हैं। हॉर्मुज पर ईरानी हमले के बाद अमेरिकी सेना ने ईरान के 170 ठिकानों पर भीषण बमबारी की है।

0: ट्रंप के बारूद से धुआं धुआं हुआ ईरान। 24 घंटे में 170 अड्डों पर भीषण बमबारी। ईरानी एटमी सेंटर पर अमेरिका का हमला। ट्रंप के वॉर गेम में बुरी तरह फंस गया ईरान। हुर्मुज पर हमला ईरान के लिए बहुत महंगा। युद्ध शुरू, अब ट्रंप का ऑपरेशन मुस्तबा। सत्ताईस जून को ईरान ने हुर्मुज पर हमला किया। हमले के बाद अमेरिका ने अगले 48 घंटों में दो बार ईरान पर भीषण बमबारी की। एक बार फिर 6 जुलाई को ईरान ने हुर्मुज में 3 टैंकरों को निशाना बनाया। ट्रंप ने अपनी धमकी को सच साबित करते हुए 7 जुलाई और 8 जुलाई को ईरान पर ताबड़तोड़ हवाई हमले किए। महज 24 घंटों के अंदर ईरान के 170 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। ईरान पर हमले का वीडियो अमेरिकी सेना ने जारी किया। अगर ईरान पर अमेरिकी हमले की टाइमिंग को देखें तो संकेत यही है कि विनाशकारी युद्ध का बिगुल बज चुका है। संकेत नंबर 1, ईरान पर अमेरिका का विध्वंसक हमला जारी। संकेत नंबर 2, ट्रंप का ऐलान युद्ध विराम खत्म, अब वार्ता नहीं। संकेत नंबर 3, ईरान पर अमेरिकी हमलों के समर्थन में नाटो। संकेत नंबर 4, हुर्मुज पर ईरानी हमले की इंटरनेशनल निंदा। संकेत नंबर 5, तेहरान के डिप्टी मेयर बोले एटमी हमले का डर। मतलब यही है कि ईरान और अमेरिका के बीच तनाव चरम पर है। अब ये युद्ध दुनिया को अपनी चपेट में ले सकता है क्योंकि ट्रंप ने ईरान के ठिकानों को अपनी मिसाइल के टारगेट पर लॉक कर दिया है, तो वहीं ईरान के लिए वार्ता के दरवाजे पर ताला लगा दिया है।
1: Retribution for last night. They hit actually 3 boats, not 2. And when they hit, we hit back much harder. Another way of doing it. We have many ways we can win, but we've already won militarily. They have very little left, and they want to make a deal so badly. They called a little while ago. They want to make a deal so badly. I just don't know if they're worthy of making a deal. I don't know that they're going to honor the deal. That's the problem. Because it's sort of crazy, to be honest. They're sort of crazy. They're a little bit out of control, but they want to make a deal. Badly.
0: अगर ईरान पर अमेरिका के ताजा हमलों को देखें तो ट्रंप का वॉर गेम समझना मुश्किल नहीं है। ट्रंप की हिट लिस्ट पर हैं ईरान के अहम सैन्य ठिकाने, तेल और गैस के लिहाज से अहम शहर, ईरान के अहम बंदरगाह, ईरान का ट्रांसपोर्ट नेटवर्क और ईरान के परमाणु सेंटर। ईरानी मीडिया का दावा है कि बुशहर में तेज धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं। ये धमाके ईरान के न्यूक्लियर प्लांट के आसपास सुने गए हैं। ठीक ऐसे ही चाबहार पोर्ट को निशाना बनाया गया। IRGC का दावा है कि अमेरिका ने मशहद जाने वाले रास्तों के पुलों को निशाना बनाया। यही नहीं, ईरान के गोलिस्तान प्रांत के अब टिके खान रेलवे ब्रिज पर मिसाइल अटैक किया है। ट्रंप ने ईरान को सीधी धमकी दी है कि अमेरिका की सैन्य कार्रवाई अब रुकेगी नहीं। अमेरिका के हमले ईरान द्वारा जहाजों पर की गई बमबारी का प्रतिशोध है। अगर ऐसा दोबारा हुआ तो हालात और भी बदतर हो जाएंगे। बड़ी बात यह है कि शांति समझौते के बावजूद हुर्मुज पर हमले करके ईरान चौतरफा घिर गया है। ईरान के खिलाफ मिडल ईस्ट के तमाम मुल्क बड़े और कड़े एक्शन की मांग कर रहे हैं। इसमें वो मुल्क भी शामिल हैं जो चंद दिनों पहले तक अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता कर रहे थे। ऐसे में अमेरिका को पता है कि हुर्मुज पर हमला करके ईरान ने गलत बटन दबा दिया है, लिहाजा ईरान ने अमेरिका को हमले का मौका थाली में सजाकर सौंप दिया है। इसी कड़ी में अमेरिका ने ईरान के कई शहरों पर चुन चुन कर बम बरसाए। ट्रंप का टारगेट बंदर अब्बास। ये ईरान का सबसे बड़ा व्यावसायिक और नौसैनिक बंदरगाह है। यहां पर अमेरिका ने बमबारी करके ईरानी सेना और ईरानी कारोबार को चोट पहुंचाई। ट्रंप का टारगेट वो शहर, ये वही शहर है जहां पर ईरान का एकमात्र चालू परमाणु बिजली प्लांट है। यहां हमला करके ट्रंप ने संदेश दिया है कि ईरान का कोई भी एटमी सेंटर नहीं बचेगा। ट्रंप का टारगेट सिरिक, ये शहर होर्मुज से सटा हुआ है, यहीं से ईरानी सेना गुजरने वाले जहाजों की निगरानी करती है। अमेरिका ने सिरिक में मौजूद ईरानी सैन्य ठिकानों के साथ साथ नौसेना की बोट को निशाना बनाया। ट्रंप का टारगेट चाबहार पोर्ट, ईरान का इकलौता बंदरगाह जो सीधे हिंद महासागर से समुद्री यातायात तय करता है। ये कारोबार और सैन्य लिहाज से अहम है, यहाँ पर भी अमेरिकी हमला हुआ। ट्रंप का टारगेट केशम द्वीप, फारस की खाड़ी का सबसे बड़ा द्वीप जहाँ ईरानी नौसेना के ठिकानों के साथ साथ तेल गैस फैसिलिटी है। अमेरिका ने इस आइलैंड पर भी भीषण बमबारी की है, मतलब ईरान से ट्रंप का बदला बहुत घातक है। ईरान की सरकारी मीडिया ने माना है कि पिछले 48 घंटों में 5 प्रांतों पर हुए अमेरिकी हमलों में कम से कम 14 लोग मारे गए, जबकि 78 से ज्यादा जख्मी हैं। अगले कुछ घंटों में ये आंकड़े बढ़ सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ व्हाइट हाउस के हवाले से एक्सियोस में छपी रिपोर्ट में ईरान को लेकर कई बड़े दावे किए गए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति का पूरा जोर होर्मुज को ईरानी नियंत्रण से मुक्त कराने पर है, लिहाजा होर्मुज को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति की तैयारी ईरान के खिलाफ लंबे युद्ध की है। अगर ईरान ने अमेरिकी हमले के बाद फिर हमला किया तो अमेरिका कई हफ्तों तक हवाई हमले करेगा। ईरान के अहम सैन्य ठिकानों के साथ साथ एटमी सेंटर और तेल गैस के प्लांट को निशाना बनाया जाएगा। अमेरिका की उम्मीद है कि होर्मुज की वजह से अब की बार दुनिया के तमाम मुल्क और नाटो उनका साथ देंगे। मतलब यही है कि ईरान अलग थलग पड़ सकता है, क्योंकि होर्मुज पर ईरानी हमले की निंदा दुनिया के सभी मुल्कों ने की है। यहां तक कि फ्रांस ने भी माना है कि होर्मुज पर हमला करके ईरान ने अमेरिका के साथ हुए शांति समझौते के MOU का उल्लंघन किया है। दूसरी तरफ होर्मुज पर ताजा हमलों के बाद नाटो ने भी ईरान पर अमेरिकी हमलों का खुला समर्थन किया है। जब युद्ध विराम लागू हो और ईरान मूल रूप से युद्ध विराम का उल्लंघन कर रहा हो तो मुझे लगता है कि अमेरिका का बलपूर्वक जवाब देना बेहद जरूरी है। ये पहली बार है जब नाटो ने ईरान पर अमेरिकी हमलों का समर्थन किया है, तो क्या ये समर्थन आने वाले दिनों में ईरान के खिलाफ अमेरिकी हमलों में भी दिखेगा? अगर ऐसा हुआ तो ईरान के खिलाफ अब ये युद्ध सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं रहेगा, मतलब ईरान के खिलाफ हमलों में नाटो भी शामिल हो सकता है। नाटो भी अमेरिका के साथ युद्ध में शामिल हुआ तो ईरान की हार तय है।
1: To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is? They're scum. They're sick people. They're led by sick people. And they're vicious, violent people. And if they had a nuclear weapon, they'd use it. As far as I'm concerned, it's over.
0: ईरानी विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी हमलों का समर्थन करने पर नाटो की निंदा की है। ईरान ने आरोप लगाया कि ईरान अमेरिका युद्ध का जिम्मेदार नाटो है। आरोप यही है कि अमेरिका और इजराइल को लेकर नाटो ने निष्पक्ष भूमिका नहीं निभाई। तो क्या ये जंग अमेरिका बनाम ईरान नहीं बल्कि ईरान बनाम दुनिया में बदल सकती है? आज तक ब्यूरो
2: के साथ हम यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: 30,000 भारतीयों के बीच मेलबर्न में बोले प्रधानमंत्री मोदी, शिप से चिप तक बना रहा है भारत, ग्रो मोर अचीव मोर का दिया नारा, कहा रक्षा अंतरिक्ष और यूरेनियम डील पर मुहर। टीएमसी को छोड़ बीजेपी माया ममता के तीनों ही पूर्व राज्यसभा के सांसदों को मिला इनाम, उपचुनाव के लिए बने कमल के उम्मीदवार, कल ही पार्टी में शामिल हुए थे सुखेंदु, सुष्मिता और प्रकाश। यूपी में चढ़ा चुनावी तापमान, योगी का आरोप, 2017 से पहले कब्रिस्तानों पर पैसे खर्च करती थी एसपी सरकार, ओपी राजभर ने भी अखिलेश पर किया बड़ा हमला। महाराष्ट्र और गुजरात समेत उत्तर भारत में जोरदार बारिश से परेशानी, दिल्ली एनसीआर भी हुआ पानी पानी, बादली में डूबने से 7 साल के बच्चे की मौत, गाजियाबाद में भी एक बच्चे की गई जान। अमेरिकी हमले के बीच खामनेई का अंतिम संस्कार, ट्रंप ने फिर दी धमकी, कहा 20 गुना ताकत से करेंगे अटैक, बदले में अमेरिकी ठिकानों पर तेहरान ने बरसाए बम। बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच बड़ा सनातनी साबित करने की लड़ाई चल रही है। समाजवादी पार्टी कह रही है कि वो सनातनी है, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बता रहे हैं कि विकास का जो पैसा आज सनातन की रक्षा के लिए खर्च किया जा रहा है वो समाजवादी सरकार में कब्रिस्तानों पर खर्च किया जाता था। इन सबके बीच वक्फ को लेकर भी खींचतान यूपी में शुरू हो चुकी है।
1: बीजेपी के लोग किसी भी सीमा तक झूठा प्रचार कर सकते हैं।
2: समाजवादी पार्टी के लोगों को तो ठेके पट्टे से ही फुर्सत नहीं है।
3: अयोध्या में चढ़ावा चोरी क्या हुई, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की चुनावी राजनीति के पौबारा हो गए। महीने भर में कांग्रेस और समाजवादियों ने जितनी बार राम का नाम नहीं लिया होगा उतनी बार वक्फ, बाबर, कब्रिस्तान हो चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ धुआंधार रैलियां और कार्यक्रम कर रहे हैं, सैकड़ों करोड़ की योजनाओं की सौगात जिले जिले दी जा रही है, और इसके साथ ही विपक्ष पर मुस्लिम परस्त, मुगल परस्त, मौका परस्त होने की सियासी बौछार चल रही है।
2: आज के समाजवादी राम से दूरी बनाते हैं, बाबर को अपना आदर्श मानते हैं, औरंगजेब को अपना आदर्श मानते हैं, राम और कृष्ण को नहीं मानते।
4: अंतर यही है, बीजेपी की सरकार आई तो अब पैसा मंदिरों के विकास के लिए, धामों के सुंदरीकरण में खर्च हो रहा है, और समाजवादी पार्टी के समय वही पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल के लिए चला जाता था।
2: वक्त के नाम पे हजारों एकड़ लैंड बेच भी दी गई, वारा नारा किया गया, ये सीधे सीधे डकैती थी, इसके नाम पर एक भी बार समाजवादी पार्टी नहीं बोली, एक भी बार कांग्रेस नहीं बोली, बल्कि जब मोदी जी ने इसके खिलाफ कानून बनाया, उस लूट के खिलाफ कानून बनाया, तो इन लोगों ने आंदोलन किया।
3: एक तरफ समूचा विपक्ष राम मंदिर में चोरी को लेकर हमलावर था, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वक्फ में घोटालों का मुद्दा उठाया, और अब उसी लाइन को यूपी के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ने और आगे बढ़ा दिया।
5: उत्तर प्रदेश में भी वक्फ बोर्ड, सुन्नी वक्फ बोर्ड जो है इस समय वर्तमान में रिक्त है, आने वाले दिनों में जब सुन्नी वक्फ बोर्ड का गठन होगा तो जो वक्फ अधिनियम संशोधन अधिनियम के अनुसार जो गाइडलाइन है उस गाइडलाइन के अनुसार उत्तर प्रदेश में भी उस अधिनियम के माध्यम से वक्फ के बोर्ड का गठन होगा, जिसमें पिछड़े मुसलमानों को रखा जाएगा, मुस्लिम महिलाओं को रखा जाएगा, ऐसे हमारे हिंदू भाई समाज के दो भाइयों को रखा जाएगा, जो भी उस प्रावधान में जो भी गाइडलाइन है उस गाइडलाइन के अनुसार ही आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में भी वक्फ बोर्ड के फॉर्मेशन होगा।
3: अगर ऐसा होता है तो एमपी के बाद उत्तर प्रदेश देश का दूसरा राज्य होगा जो वक्फ बोर्ड में गैर मुसलमान सदस्य रखेगा।
6: मुझे लगता है कि ये हमारे जो फंडामेंटल राइट हैं और हमारे जो मजहबी आजादी हमें दी गई है यकीनी तौर पर उसके साथ कहीं ना कहीं सीधा टकराव है, इसलिए हुकूमत को अपने इस फैसले पर नजरसानी करने की जरूरत है।
3: हालांकि उत्तर प्रदेश में मौजूदा शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन का कहना है कानून संसद से बना हुआ है तो उसका पालन अनिवार्य है, लेकिन सुन्नी समुदाय के मौलानाओं का कहना है वक्फ संशोधन कानून के कुछ प्रावधानों पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है और मामला कोर्ट में लंबित, लिहाजा अभी ऐसा नहीं करना चाहिए। वैसे यूपी में फिलहाल दो वक्फ बोर्ड है, सुन्नी वक्फ बोर्ड और शिया वक्फ बोर्ड। दोनों बोर्ड की संरचनाएं कुछ ऐसी कि दोनों बोर्ड में 11-11 सदस्य होते हैं जिसमें अध्यक्ष के अलावा मुस्लिम सांसद, मुस्लिम विधायक, मुस्लिम विधान परिषद सदस्य, इस्लामिक विद्वान और मतवल्लियों के प्रतिनिधि होते हैं। इसके अलावा सरकारी अधिकारी सीईओ होता है। यानी अभी की व्यवस्था में गैर मुस्लिम सदस्य वक्फ बोर्ड में नहीं होते, लेकिन वक्फ संशोधन बिल के बाद, नई व्यवस्था के बाद वक्फ बोर्ड में कम से कम 2 गैर मुस्लिम सदस्य अनिवार्य हैं। इसके अलावा 2 मुस्लिम महिला सदस्य, पसमानदा प्रतिनिधि, सांसद, विधायक, बार काउंसिल के सदस्यों में से एक एक का सीधे मनोनयन होगा। यानी पहले चुनाव होता था, उन्हें अब मनोनीत किया जाएगा।
7: जो चंदा और चढ़ावा में लूट का मुद्दा है, उस मुद्दे से जनता का ध्यान हट जाए। हर समस्या का समाधान मुसलमान है भारतीय जनता पार्टी की, तो अब फिर से मुसलमान को सामने लाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया जा रहा है। मुसलमान मुसलमान मुसलमान मुसलमान, हर समस्या का समाधान मुसलमान है, भारतीय जनता पार्टी का ये प्रयास को सफल होने वाला नहीं।
3: यूपी में सुन्नी वक्फ बोर्ड इसी साल 15 मार्च को भंग हुआ है। 6 महीने के अंदर इसका पुनर्गठन जरूरी है, यानी चुनाव से ठीक पहले सितंबर 2026 तक यूपी में सुन्नी वक्फ बोर्ड का गठन होगा, जिसमें यूपी सरकार हिंदू समुदाय के 2 सदस्यों को रखने की तैयारी कर चुकी है। दरअसल इसी हफ्ते मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी राज्य वक्फ बोर्ड का ऐलान किया है, जिसमें 10 सदस्यों में 2 सदस्य हिंदू हैं। इसके बाद उत्तर प्रदेश में से लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई। संतोष शर्मा के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक।
0: बारिश इस वक्त के मौसम में वो अपराधी है जिस पर हर राज्य के हर दल की सरकार ठीकरा फोड़कर अपनी जवाबदेही से बच जाना चाहती है। जैसे महाराष्ट्र में ही करीब 7,000 करोड़ रुपए की लागत वाले और हाल ही में शुरू किए गए मुंबई पुणे मिसिंग लिंक प्रोजेक्ट पर भारी बारिश के कारण जब भूस्खलन हुआ तो सवाल उठा कि इसे इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना बताया जा रहा था, वहां इतनी खामियां हैं। सवाल उठा तो मुख्यमंत्री विधानसभा में बोलते बोलते मर्यादा तोड़ने लगे।
8: हमारे जयंत राव जी ने सही बात कही, जिनको कुत्ता नहीं पोछता वो आजकल सोशल मीडिया पर आकर सबको गाली देते हैं, मुख्यमंत्री को भी गाली देते हैं। ऐसे कुछ भाड़े के टट्टे इस मिसिंग लिंक के बारे में भी पैसा ले लेकर सोशल मीडिया पर लिख रहे थे, उनको भी कह देना चाहता हूं, अगर महाराष्ट्र का अपमान करोगे छोड़ूंगा नहीं। तो गाली देते हैं।
3: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस गुस्से में हैं। गर्म तवे पर किसी ने छन्न से पानी का छींटा मारा ऐसे दिखते हैं, लेकिन क्यों? बात 3 दिन पुरानी है। मिसिंग लिंक के नाम से मशहूर मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे जो करीब 2 महीने पहले ही चालू हुआ, जिसे बनाने में जनता के 6,695 करोड़ रुपए लगे, जिस मेगा प्रोजेक्ट को इंजीनियरिंग का बेजोड़ नमूना कहा गया, तेज बारिश के बाद भूस्खलन से उसी नायाब इंजीनियरिंग वाले मिसिंग लिंक पर पत्थर टूट पड़े। भूस्खलन के बाद यहाँ कुछ देर तक रास्ता बंद रहा। लोगों ने सवाल सियासत से लेकर सोशल मीडिया तक पर पूछे, तो अगर सवाल पूछा जाए तो क्या वो गलत है? क्या उससे महाराष्ट्र का अपमान? पहले 6 जुलाई की इस हादसे के वक्त की रिपोर्ट देखिए।
9: मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे के मिसिंग लिंक पर है, 2 महीने पहले इसी मिसिंग लिंक को बहुत जोर शोर के साथ इनॉग्रेट किया गया था, लेकिन अभी इस वक्त इसकी हालत आप देख लीजिए, तो तकरीबन 4 बजे सोमवार के समय 4 बजे अचानक से यहाँ पे लैंडस्लाइड हो गया। पुणे से मुंबई की तरफ जो जाने वाला जो रास्ता है उस पर इसको ठप है और लैंडस्लाइड की वजह से ये पूरा का पूरा रास्ता बंद हो गया है। अभी आप देख लीजिए 4 बजे से दोपहर के अभी 12 बज रहे हैं, अभी भी बताया जा रहा है कि 3 से 4 घंटा और लग सकता है पूरे मलबे को निकालने के लिए, और इस ये जो मलबा है उसको ले जाके ये लोग बाहर देख रहे हैं। लेकिन आप देख लीजिए पूरा का पूरा जो ऊपर का जो हिस्सा था वो भूस्खलन के दौरान पूरा का पूरा गिर गया, बड़े बड़े पत्थर यहाँ पे गिरे हुए हैं।
3: असल में सवाल इसीलिए पूछा जाता है क्योंकि जब कोई इस तरह का एक्सप्रेसवे हाईवे बनाता है तो उसको लेकर दावे ऐसे ऐसे करता है जिसके बाद भरोसा जनता को दिया जाता है कि अब कुछ गड़बड़ नहीं होने वाला, लेकिन फिर उन दावों की पोल प्रकृति खोल देती है और सवाल फिर मुख्यमंत्री को चुभ जाता है।
10: कोई पेड़ गिर के मर रहा है, कोई मैनहोल में गिर के मर रहा है, कोई किसी और आपत्ति में मर रहा है, कभी कोई इलेक्ट्रिक्यूट होकर मर रहा है।
11: जवाब आपको देना पड़ेगा, जिस कुर्सी पे आप हो आप राजा नहीं हो, जनता के सेवक हो, और ये मान के चलिए कि जनता हर समय आपको सवाल करेगी, ये घमंड नहीं कोई देखेगा।
12: काल सद्या मुख्यमंत्र्यांचं फडणवीसांचं भाषण विधानसभेमधलं, त्याचं म्हणे राजकारण करू नका. अरे वा, आणि काय म्हणतायत म्हणे, एक वेळ मला बोला पण महाराष्ट्राचा अपमान मी सहन करणार नाही. वा रे वा, लोक त्या मिसिंग लिंक बद्दलच बोलतायत, महाराष्ट्राचा कुठे अपमान करतायत? पण ते काय सगळं घेऊन जायचं, म्हणजे ते वरपासून खालपर्यंत आता काय सवय लागली आहे? केंद्र सरकारच्या कुठच्या गोष्टींबद्दल बोललं की तुम्ही देशविरोधी? आता मिसिंग लिंक बद्दल बोललं तर याच्यात महाराष्ट्राचा अपमान कुठे आला?
3: सवाल सियासत का नहीं, सवाल इस बात का है कि अगर कहीं कमी है और उस पर प्रश्न है तो क्यों इसे साजिश और अपमान तक सत्ताधारी बताने लगते हैं? जबकि महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के संयुक्त प्रबंध निदेशक राजेश पाटिल से आज तक संवाददाता विद्या ने पूछा कि इस बात का अंदाजा नहीं लगाया था कि ऐसा लैंडस्लाइड हो सकता है.
13: स्ट्रक्चरली कोई डैमेज नहीं हुआ है इस लैंडस्लाइड में, लेकिन क्या जिस तरीके से ये बारिश हुई क्या इस बात का अंदाजा नहीं था कि यहाँ पे लैंडस्लाइड हो सकता है? उस समय भी क्या आप लोगों ने असेसमेंट किया था या उस असेसमेंट के बाहर ये हो गया?
14: या असेसमेंट किया था, लेकिन टनल के ऊपर जो ओवरबर्डन है वो 220 मीटर है ओवरबर्डन, और इसका डिजाइन भी हमने IIT बॉम्बे से अप्रूव करके लिया था, वेटिंग करके लिया था, और एज पर देयर अप्रूव डिजाइन वो हमने रॉकफॉल मिटिगेशन मेजर किया था, एंड वो जो रॉकफॉल मिटिगेशन मेजर हमने किया है वो इंटैक्ट है. वो हमने अभी अप टू 15 मीटर्स किया था, वो इंटैक्ट है, और वो अभी बाकी जो हुआ उसके लिए वी हैव टू डू कॉम्प्रिहेंसिव इंस्पेक्शन एंड देन वी हैव टू कम विद सम स्ट्रांग रेमेडियल एक्शन फॉर दैट.
3: महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम के संयुक्त प्रबंध निदेशक इस बात को समझते भी हैं और समझाते भी हैं कि सुरंग के ठीक ऊपर लगभग 120 मीटर पर मिट्टी पत्थर जमा है. IIT बॉम्बे से पहले ही पूरी सलाह ली जा चुकी है. सुरंग के ऊपरी हिस्से से 10 मीटर तक बचाव के उपाय किए गए थे. हालांकि भूस्खलन सुरंग के ऊपरी हिस्से से 150 या 200 मीटर की दूरी से हुआ और इस वजह से चट्टाने गिरी और फिर मिसिंग लिंक सवालों में आए. तो जरूरी ये है कि कहीं कुछ हो तो उसके कारण को समझ कर कारण सबको बताया जाए, न कि सवाल पूछने या सवाल उठाने वालों पर सवाल उठाकर सवाल को ही दबा दिया जाए.
0: अब आपको पुणे के पिंपरी चिंचवाड़ से आई खबर से खबरदार करते हैं, जहां पहाड़ लैंडस्लाइड की तरह टूटा था. 3 मंजिला इमारत पर गिरकर लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ गया, लेकिन ये पहाड़ कूड़े का था. ये प्लान से जुड़ी इमारत को मलबे में बदल देता है. 23 लोग इसमें फंस जाते हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन चलता है और जवाबदेही के सवाल पर जिम्मेदार लोग बारिश पर ठीकरा आसानी से फोड़ कर निकल जाते हैं.
3: जहां कूड़े का पहाड़ खड़ा करके कूड़े से बिजली बनाने का प्लांट बनाया, क्या वही लापरवाही इस कदर रही कि वो कूड़े का पहाड़ जिंदगियों पर टूट पड़ा? कूड़े का पहाड़ जब लगातार बारिश के बाद टूटा और गिरा तो देखिए लैंडस्लाइड जैसे हालात ऐसे बन गए कि कूड़े से बिजली बनाने वाले प्लांट की 3 मंजिला इमारत ढह जाती है. चीख पुकार के बीच पहले दिल दहला देने वाले इस वीडियो को देखिए, जहां किसी तरह लोगों को बिल्डिंग के ढेर के बीच से निकाला जाता है. सबसे पहले दमकल वाले पहुंचे, फिर NDRF की टीमें लग जाती. यहां लगातार लोगों को इस मलबे से बचाने की कोशिश जारी दिखती है. इस बीच मलबे से कोई जख्मी हालत में जिंदगी के लिए जंग लड़ता बाहर आता है तो वहां खड़े लोग इंतजार करते हैं कि इसकी सांसें चल रही है. पिंपरी चिंचवड़ नगर निगम के अधीन आते इस इलाके में कूड़े से बिजली बनाने वाले प्लांट पर कूड़े का पहाड़ गिरने के बाद लोगों को बाहर निकालना कितना कठिन है, इसे आप NDRF के लोगों से समझिए.
15: पूरी बिल्डिंग कोलैप्स हो रखी है, पूरे मलबे से दबी हुई है एंड बॉडीज हमने ट्रेस करी हैं, 3 के करीब कर ली जिसमें से एक निकाली है. एक को और थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि जो मलबा है मैनुअली निकालेंगे, अगर हम मशीन लगा के निकालेंगे वाइब्रेशन हो जाएगा जिससे कि फर्दर कोलैप्स हो सकते हैं.
16: जो एरिया बताया जा रहा है कैंटीन एरिया वो हम फोकस कर रहे हैं, वहाँ पे 5 to 6 का बताया गया है फिगर. तो राइट नाउ वी आर होपिंग कि 7 to 8 है, इससे ज्यादा तो नहीं है.
17: जवान पार्किंग तक जा चुके हैं?
16: जवान पार्किंग तक अभी नहीं पहुंच पाए हैं, क्योंकि धीरे धीरे मैनुअली काम हो रहा है हाथ से निकाल के, क्योंकि हम मशीन नहीं अप्लाई कर सकते। मशीन अप्लाई करेंगे पूरा बिल्डिंग पैनकेक कोलैप्स हो जाएगा, तो जो है भी वो पूरा दब जाएगा।
3: अब सवाल है कि ऐसे हालात कैसे बने, क्या इस बात का अंदाजा किसी को नहीं था कि जो कूड़े का पहाड़ यहाँ इतना ऊंचा खड़ा है इसकी वजह से हादसा भी हो सकता है। आज तक संवाददाता ने इसीलिए सीधे विजय सूर्यवंशी आयुक्त पिंपरी चिचवाड़ नगर निगम से सवाल किया है।
17: इतना बड़ा हादसा हुआ है, इसका जिम्मेवार कौन है, उस पर कुछ दर्ज होगा पुलिस थाने में?
18: देखो ये नेचुरल कैलामिटी है, ऐसा नहीं कि बिल्डिंग अपने आप ढह गई। अपने आप ढह जाती तो हम कहते कि इसका स्ट्रक्चर वीक था, इसका स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम था। अभी आप देख रहे हैं कि ये बड़ा लैंडस्लाइड जैसे हुआ है, मतलब 60 मीटर हाइट का ये कचरे का पहाड़ है ऑलमोस्ट, और 600 mm बारिश जो 36 आवर्स में, 36 घंटे में 600 mm, इसकी वजह से उसका जो वेट बढ़ गया होगा और जैसे लैंडस्लाइड होता है वैसे वो ढह गया और उसका हॉरिजॉन्टल प्रेशर बिल्डिंग के आने के बाद वो बिल्डिंग कोलैप्स हो गई।
3: 60 मीटर ऊंचा कूड़े का पहाड़ खड़ा था, ये बात खुद आयुक्त मानते हैं। ये भी मानते हैं कि बारिश बहुत ज्यादा लगातार हुई, तो क्यों नहीं संकट को पहले समझा गया, क्यों नहीं काम रोका गया, ये क्यों नहीं सोचा गया कि अगर यहाँ तेज बारिश हुई तो यही कचरे का 60 मीटर ऊंचा पहाड़ पानी में भीग कर जब तेज हवा से गिरेगा तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता है।
19: डंपिंग ग्राउंड है पिंपरी चिंचवड़ का, ये 1982 से, मतलब अभी करीब करीब उसको 47 ईयर हो गए, 47 साल से यहाँ चल रहा है और बहुत बड़ा पहाड़ी बन गया उसका। तो
3: कूड़े के पहाड़ को कम करने के लिए बताया गया कि वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट शुरू किया गया ताकि कचरे की मात्रा कम की जा सके, लेकिन ज्यादा जोर प्रशासन का इस हादसे पर बारिश को कटघरे में खड़ा करने में लगा हुआ है।
17: पूछताछ की जाएगी इस मामले में?
18: देखो अभी तो हम रेस्क्यू ऑपरेशन में व्यस्त है सब, अभी हमारी प्रायोरिटी है कि जो 8 लोग और है उनको जिंदा बाहर निकाला जाए, उनको रेस्क्यू करा जाए, उसके बाद में ये सब सोचा जाएगा।
17: क्योंकि ये बहुत बड़ा मामला है, 23 लोग जो थे अंदर थे, अभी 15 लोगों को निकाला गया, उनमें से एक डेथ हुई है ऐसा दमकल विभाग का कहना है। तो पूछताछ तो होनी चाहिए, मतलब किस तरह से ये मामला हुआ, क्योंकि वहाँ के लोग बोल रहे हैं कि 2 दिन पहले उनको लगा था कि ये जो कचरे का ढेर है वो नीचे सरक सकता है।
18: नहीं देखो जरूर बहुत दुर्दैवी घटना है और भगवान की दया से अभी तक तो हम 14 लोग जो निकाल पाए, मगर इस घटना के बारे में अभी सब बैठेंगे, क्या एग्जैक्टली हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसके बारे में सब सोचेंगे और उसके बारे में नेक्स्ट एक्शन उसके बाद डिसाइड करेंगे।
3: बस यहाँ गनीमत ये रही कि बहुत तेजी से रेस्क्यू ऑपरेशन करके जो लोग दबे रहे उन्हें निकाला जाता रहा।
0: सूरत यानी कि गुजरात की डायमंड सिटी, जहां इतनी बारिश पिछले 3 दिन में हुई है कि दावा यह किया गया कि दशकों का रिकॉर्ड टूट चुका है, और जब पानी सूरत में उतरा तो लोगों को बहुत नुकसान का पता चला।
20: सूरत के वराछा में स्थित पुदार आर्केड में फिलहाल मेरी मौजूदगी और मेरे पीछे की तरफ की तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा, जहां पे मोबाइल शॉप बेसमेंट में आए हुए हैं। पूरे बेसमेंट में अलग अलग जो शॉप्स फिलहाल दिखाई दे रही है, जिसके बाहर की तरफ सामान्य जल भराव की स्थिति है और साफ सफाई का काम यहाँ पे चल रहा है, क्योंकि 30 घंटे पहले सूरत के अलग अलग इलाकों में 15 से 18 इंच जितनी बारिश हुई और इस बारिश की वजह से चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई पड़ रहा था। लेकिन बीते 30 घंटों में अलग अलग इलाकों में जो जल भराव की स्थिति थी, अब तो जल भराव की स्थिति देखने को नहीं मिल रही है, पर ये वही पुदार आर्केड है जहां पे पूरा बेसमेंट जलमग्न हो गया था।
21: यहां पे ये गुजरात का सबसे बड़ा मोबाइल हब है और यहां पे नए शोरूम है, रिपेयरिंग है, सेकंड हैंड वाले भी है, और ये एक 200 दुकान अंदर घर का हो चुकी है, तो समझ लो कि एक दुकान में किसी का 1 करोड़ का माल था, किसी का 50 लाख का था, आप एवरेज भी लगाओगे तो 200 से 250 करोड़ का नुकसान है।
22: 5 दुकान लाइन में अपनी अपना होलसेल का काम था, होलसेल में आपको पता होगा कि बहुत सारा स्टॉक होता है, सब प्रीमियम और ब्रांडेड चीज अभी आई थी माल अपने पास, 20 से 30 कार्टून आए थे और पुराना भी माल बहुत डिस्प्ले करा हुआ था। टोटल आश्रे 1.5 से 2 करोड़ का हमारा नुकसान है टोटली, अभी कोई भी प्रशासन हमको कोई जवाब नहीं दे रही है।
20: जिस प्रकार की तस्वीरें सामने आ रही है वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये जो टेक्सटाइल मार्केट है वहाँ जल भराव की स्थिति अभी भी देखने को मिल रही है। टेक्सटाइल मार्केट का ये बिल्डिंग और इसी बिल्डिंग के नीचे की तरफ 2 फ्लोर गोडाउन है और वो दोनों फ्लोर का जो गोडाउन है, बेसमेंट है, वो पूरा जलमग्न है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जो भी बेसमेंट के अंदर मौजूद गोडाउन के अंदर पानी भरा हुआ है उसे निकालने के लिए मोटर का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, पानी निकालने की कोशिश बीते कई घंटों से जारी है, लेकिन इन कोशिशों के बीच करोड़ों की नुकसानी की बात अब फॉस्टा यानी कि जो टेक्सटाइल एसोसिएशन है उनकी तरफ से कही जा रही है। हमारे साथ फॉस्टा के जनरल सेक्रेटरी भी मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे।
1: रोड जाम होने की वजह से, पीछे खाड़ी जाम होने की वजह से पानी गया नहीं और वो फ्लो बैक मारा, उसने भी मारा और ऊपर से कुदरत की भी बरसात गिरने से बड़ा बड़ा नुकसान हुआ है व्यापारियों का। और रही बात एवरेजों की, तो हमारा अंदाजा ऐसा है कि कम से कम जिस हिसाब से आपने ये मार्केट देखा है, ऐसे कई मार्केट अभी भी पानी के अंदर है, जिसका हम लोग ऐसा समझते हैं कि अंदाजन हजार एक दुकानें ऐसी होगी जो नुकसान के साथ में जकड़ी हुई है। और ये लाखों में नुकसान नहीं है, ये नुकसान करोड़ों में है।
0: अमेरिका और ईरान के बीच महायुद्ध का बिगुल फिर से बज चुका है। दोनों मुल्कों की सेनाएं आमने सामने हैं। हॉर्मुज पर ईरानी हमले के बाद अमेरिकी सेना ने ईरान के 170 ठिकानों पर भीषण बमबारी की है।

0: ट्रंप के बारूद से धुआं धुआं हुआ ईरान। 24 घंटे में 170 अड्डों पर भीषण बमबारी। ईरानी एटमी सेंटर पर अमेरिका का हमला। ट्रंप के वॉर गेम में बुरी तरह फंस गया ईरान। हुर्मुज पर हमला ईरान के लिए बहुत महंगा। युद्ध शुरू, अब ट्रंप का ऑपरेशन मुस्तबा। सत्ताईस जून को ईरान ने हुर्मुज पर हमला किया। हमले के बाद अमेरिका ने अगले 48 घंटों में दो बार ईरान पर भीषण बमबारी की। एक बार फिर 6 जुलाई को ईरान ने हुर्मुज में 3 टैंकरों को निशाना बनाया। ट्रंप ने अपनी धमकी को सच साबित करते हुए 7 जुलाई और 8 जुलाई को ईरान पर ताबड़तोड़ हवाई हमले किए। महज 24 घंटों के अंदर ईरान के 170 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। ईरान पर हमले का वीडियो अमेरिकी सेना ने जारी किया। अगर ईरान पर अमेरिकी हमले की टाइमिंग को देखें तो संकेत यही है कि विनाशकारी युद्ध का बिगुल बज चुका है। संकेत नंबर 1, ईरान पर अमेरिका का विध्वंसक हमला जारी। संकेत नंबर 2, ट्रंप का ऐलान, युद्ध विराम खत्म, अब वार्ता नहीं। संकेत नंबर 3, ईरान पर अमेरिकी हमलों के समर्थन में नाटो। संकेत नंबर 4, हुर्मुज पर ईरानी हमले की इंटरनेशनल निंदा। संकेत नंबर 5, तेहरान के डिप्टी मेयर बोले, एटमी हमले का डर। मतलब यही है कि ईरान और अमेरिका के बीच तनाव चरम पर है। अब ये युद्ध दुनिया को अपनी चपेट में ले सकता है, क्योंकि ट्रंप ने ईरान के ठिकानों को अपनी मिसाइल के टारगेट पर लॉक कर दिया है, तो वहीं ईरान के लिए वार्ता के दरवाजे पर ताला लगा दिया है।
1: Retribution for last night. They hit actually 3 boats, not 2. And when they hit, we hit back much harder. Another way of doing it. We have many ways we can win, but we've already won militarily. They have very little. They have very little left, and they want to make a deal so badly. They called a little while ago. They want to make a deal so badly. I just don't know if they're worthy of making a deal. I don't know that they're going to honor the deal. That's the problem. Because it's sort of crazy. To be honest with you, they're sort of crazy. They're a little bit out of control, but they want to make a deal. Badly.
0: अगर ईरान पर अमेरिका के ताजा हमलों को देखें, तो ट्रंप का वॉर गेम समझना मुश्किल नहीं है। ट्रंप की हिट लिस्ट पर हैं ईरान के अहम सैन्य ठिकाने, तेल और गैस के लिहाज से अहम शहर, ईरान के अहम बंदरगाह, ईरान का ट्रांसपोर्ट नेटवर्क और ईरान के परमाणु सेंटर। ईरानी मीडिया का दावा है कि बुशहर में तेज धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं। ये धमाके ईरान के न्यूक्लियर प्लांट के आसपास सुने गए हैं। ठीक ऐसे ही चाबहार पोर्ट को निशाना बनाया गया। IRGC का दावा है कि अमेरिका ने मशहद जाने वाले रास्तों के पुलों को निशाना बनाया। यही नहीं, ईरान के गोलिस्तान प्रांत के अब्तिके खान रेलवे ब्रिज पर मिसाइल अटैक किया है। ट्रंप ने ईरान को सीधी धमकी दी है कि अमेरिका की सैन्य कार्रवाई अब रुकेगी नहीं। अमेरिका के हमले ईरान द्वारा जहाजों पर की गई बमबारी का प्रतिशोध है। अगर ऐसा दोबारा हुआ तो हालात और भी बदतर हो जाएंगे। बड़ी बात यह है कि शांति समझौते के बावजूद हुर्मुज पर हमले करके ईरान चौतरफा घिर गया है। ईरान के खिलाफ मिडल ईस्ट के तमाम मुल्क बड़े और कड़े एक्शन की मांग कर रहे हैं। इसमें वो मुल्क भी शामिल हैं जो चंद दिनों पहले तक अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता कर रहे थे। ऐसे में अमेरिका को पता है कि हुर्मुज पर हमला करके ईरान ने गलत बटन दबा दिया है, लिहाजा ईरान ने अमेरिका को हमले का मौका थाली में सजाकर सौंप दिया है। इसी कड़ी में अमेरिका ने ईरान के कई शहरों पर चुन चुन कर बम बरसाए। ट्रंप का टारगेट बंदर अब्बास। ये ईरान का सबसे बड़ा व्यावसायिक और नौसैनिक बंदरगाह है। यहाँ पर अमेरिका ने बमबारी करके ईरानी सेना और ईरानी कारोबार को चोट पहुँचाई। ट्रंप का टारगेट वो शहर, ये वही शहर है जहाँ पर ईरान का एकमात्र चालू परमाणु बिजली प्लांट है। यहाँ हमला करके ट्रंप ने संदेश दिया है कि ईरान का कोई भी एटमी सेंटर नहीं बचेगा। ट्रंप का टारगेट सिरिक, ये शहर होर्मुज़ से सटा हुआ है, यहीं से ईरानी सेना गुजरने वाले जहाजों की निगरानी करती है। अमेरिका ने सिरिक में मौजूद ईरानी सैन्य ठिकानों के साथ साथ नौसेना की बोट को निशाना बनाया। ट्रंप का टारगेट चाबहार पोर्ट, ईरान का एक लौता बंदरगाह जो सीधे हिंद महासागर से समुद्री यातायात तय करता है। ये कारोबार और सैन्य लिहाज से अहम है। यहाँ पर भी अमेरिकी हमला हुआ। ट्रंप का टारगेट केशम द्वीप, फारस की खाड़ी का सबसे बड़ा द्वीप जहाँ ईरानी नौसेना के ठिकानों के साथ साथ तेल गैस फैसिलिटी है। अमेरिका ने इस आइलैंड पर भी भीषण बमबारी की है, मतलब ईरान से ट्रंप का बदला बहुत घातक है। ईरान की सरकारी मीडिया ने माना है कि पिछले 48 घंटों में 5 प्रांतों पर हुए अमेरिकी हमलों में कम से कम 14 लोग मारे गए जबकि 78 से ज्यादा जख्मी हैं। अगले कुछ घंटों में ये आंकड़े बढ़ सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ व्हाइट हाउस के हवाले से एक्सियोस में छपी रिपोर्ट में ईरान को लेकर कई बड़े दावे किए गए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति का पूरा जोर होर्मुज़ को ईरानी नियंत्रण से मुक्त कराने पर है, लिहाजा होर्मुज़ को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति की तैयारी ईरान के खिलाफ लंबे युद्ध की है। अगर ईरान ने अमेरिकी हमले के बाद फिर हमला किया तो अमेरिका कई हफ्तों तक हवाई हमले करेगा। ईरान के अहम सैन्य ठिकानों के साथ साथ एटमी सेंटर और तेल गैस के प्लांट को निशाना बनाया जाएगा। अमेरिका की उम्मीद है कि होर्मुज़ की वजह से अब की बार दुनिया के तमाम मुल्क और नाटो उनका साथ देंगे। मतलब यही है कि ईरान अलग थलग पड़ सकता है क्योंकि होर्मुज़ पर ईरानी हमले की निंदा दुनिया के सभी मुल्कों ने की है। यहाँ तक कि फ्रांस ने भी माना है कि होर्मुज़ पर हमला करके ईरान ने अमेरिका के साथ हुए शांति समझौते के MOU का उल्लंघन किया है। दूसरी तरफ होर्मुज़ पर ताजा हमलों के बाद नाटो ने भी ईरान पर अमेरिकी हमलों का खुला समर्थन किया है। जब युद्ध विराम लागू हो और ईरान मूल रूप से युद्ध विराम का उल्लंघन कर रहा हो तो मुझे लगता है कि अमेरिका का बलपूर्वक जवाब देना बेहद जरूरी है। ये पहली बार है जब नाटो ने ईरान पर अमेरिकी हमलों का समर्थन किया है, तो क्या यह समर्थन आने वाले दिनों में ईरान के खिलाफ अमेरिकी हमलों में भी दिखेगा? अगर ऐसा हुआ तो ईरान के खिलाफ अब ये युद्ध सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं रहेगा, मतलब ईरान के खिलाफ हमलों में नाटो भी शामिल हो सकता है। नाटो भी अमेरिका के साथ युद्ध में शामिल हुआ तो ईरान की हार तय है।
1: To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is? They're scum. They're sick people. They're led by sick people. And they're vicious, violent people. And if they had a nuclear weapon, they'd use it. As far as I'm concerned, it's over.
0: ईरानी विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी हमलों का समर्थन करने पर नाटो की निंदा की है। ईरान ने आरोप लगाया कि ईरान अमेरिका युद्ध का जिम्मेदार नाटो है। आरोप यही है कि अमेरिका और इजराइल को लेकर नाटो ने निष्पक्ष भूमिका नहीं निभाई। तो क्या ये जंग अमेरिका बनाम ईरान नहीं बल्कि ईरान बनाम दुनिया में बदल सकती है? आज तक ब्यूरो
2: के साथ हम यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: 30,000 भारतीयों के बीच मेलबर्न में बोले प्रधानमंत्री मोदी, शिप से चिप तक बना रहा है भारत, ग्रो मोर अचीव मोर का दिया नारा, कहा रक्षा अंतरिक्ष और यूरेनियम डील पर मुहर। टीएमसी को छोड़ बीजेपी माया ममता के तीनों ही पूर्व राज्यसभा के सांसदों को मिला इनाम, उपचुनाव के लिए बने कमल के उम्मीदवार, कल ही पार्टी में शामिल हुए थे सुखेंदु, सुष्मिता और प्रकाश। यूपी में चढ़ा चुनावी तापमान, योगी का आरोप, 2017 से पहले कब्रिस्तानों पर पैसे खर्च करती थी एसपी सरकार, ओपी राजभर ने भी अखिलेश पर किया बड़ा हमला। महाराष्ट्र और गुजरात समेत उत्तर भारत में जोरदार बारिश से परेशानी, दिल्ली एनसीआर भी हुआ पानी पानी, बादली में डूबने से 7 साल के बच्चे की मौत, गाजियाबाद में भी एक बच्चे की गई जान। अमेरिकी हमले के बीच खामनेई का अंतिम संस्कार, ट्रंप ने फिर दी धमकी, कहा 20 गुना ताकत से करेंगे अटैक, बदले में अमेरिकी ठिकानों पर तेहरान ने बरसाए बम। बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच बड़ा सनातनी साबित करने की लड़ाई चल रही है। समाजवादी पार्टी कह रही है कि वो सनातनी है, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बता रहे हैं कि विकास का जो पैसा आज सनातन की रक्षा के लिए खर्च किया जा रहा है वो समाजवादी सरकार में कब्रिस्तानों पर खर्च किया जाता था। इन सबके बीच वक्फ को लेकर भी खींचतान यूपी में शुरू हो चुकी है।
1: बीजेपी के लोग

0: हुई। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की चुनावी राजनीति के पौबारा हो गए। महीने भर में कांग्रेस और समाजवादियों ने जितनी बार राम का नाम नहीं लिया होगा उतनी बार वक्त बाबर कब्रिस्तान हो चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ धुआंधार रैलियां और कार्यक्रम कर रहे हैं। सैकड़ों करोड़ की योजनाओं की सौगात जिले जिले दी जा रही है और इसके साथ ही विपक्ष पर मुस्लिम परस्त, मुगल परस्त, मौका परस्त होने की सियासी बौछार चल रही है।
1: आज के समाजवादी राम से दूरी बनाते हैं, बाबर को अपना आदर्श मानते हैं, औरंगजेब को अपना आदर्श मानते हैं, राम और कृष्ण को नहीं मानते।
2: अंतर यही है, बीजेपी की सरकार आई तो अब पैसा मंदिरों के विकास के लिए, धामों के सुंदरीकरण में खर्च हो रहा है और समाजवादी पार्टी के समय वही पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल के लिए चला जाता था।
1: वक्फ के नाम पे हजारों एकड़ लैंड बेच भी दी गई, वारा नारा किया गया, ये सीधे सीधे डकैती थी। इसके नाम पर एक भी बार समाजवादी पार्टी नहीं बोली, एक भी बार कांग्रेस नहीं बोली, बल्कि जब मोदी जी ने इसके खिलाफ कानून बनाया, उस लूट के खिलाफ कानून बनाया, तो इन लोगों ने आंदोलन किया।
0: एक तरफ समूचा विपक्ष राम मंदिर में चोरी को लेकर हमलावर था तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वक्फ में घोटालों का मुद्दा उठाया और अब उसी लाइन को यूपी के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ने और आगे बढ़ा दिया।
3: उत्तर प्रदेश में भी वक्फ बोर्ड, सुन्नी वक्फ बोर्ड जो है इस समय वर्तमान में रिक्त है। आने वाले दिनों में जब सुन्नी वक्फ बोर्ड का गठन होगा तो जो वक्फ संशोधन अधिनियम के अनुसार जो गाइडलाइन है उस गाइडलाइन के अनुसार उत्तर प्रदेश में भी उस अधिनियम के माध्यम से वक्फ के बोर्ड का गठन होगा, जिसमें पिछड़े मुसलमानों को रखा जाएगा, मुस्लिम महिलाओं को रखा जाएगा, ऐसे हमारे हिंदू भाई समाज के दो भाइयों को रखा जाएगा। जो भी उस प्रावधान में जो भी गाइडलाइन है उस गाइडलाइन के अनुसार ही आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में भी वक्फ बोर्ड के फॉर्मेशन होगा।
0: अगर ऐसा होता है तो एमपी के बाद उत्तर प्रदेश देश का दूसरा राज्य होगा जो वक्फ बोर्ड में गैर मुसलमान सदस्य रखेगा।
4: मुझे लगता है कि ये हमारे जो फंडामेंटल राइट हैं और हमारे जो मजहबी आजादी हमें दी गई है यकीनी तौर पर उसके साथ कहीं ना कहीं सीधा टकराव है, इसलिए हुकूमत को अपने इस फैसले पर नजरसानी करने की जरूरत है।
0: हालांकि उत्तर प्रदेश में मौजूदा शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन का कहना है कानून संसद से बना हुआ है तो उसका पालन अनिवार्य है, लेकिन सुन्नी समुदाय के मौलानाओं का कहना है वक्फ संशोधन कानून के कुछ प्रावधानों पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है और मामला कोर्ट में लंबित, लिहाजा अभी ऐसा नहीं करना चाहिए। वैसे यूपी में फिलहाल दो वक्फ बोर्ड है, सुन्नी वक्फ बोर्ड और शिया वक्फ बोर्ड। दोनों बोर्ड की संरचनाएं कुछ ऐसी कि दोनों बोर्ड में 11-11 सदस्य होते हैं जिसमें अध्यक्ष के अलावा मुस्लिम सांसद, मुस्लिम विधायक, मुस्लिम विधान परिषद सदस्य, इस्लामिक विद्वान और मतवल्लियों के प्रतिनिधि होते हैं। इसके अलावा सरकारी अधिकारी सीईओ होता है, यानी अभी की व्यवस्था में गैर मुस्लिम सदस्य वक्फ बोर्ड में नहीं होते, लेकिन वक्फ संशोधन बिल के बाद, नई व्यवस्था के बाद वक्फ बोर्ड में कम से कम दो गैर मुस्लिम सदस्य अनिवार्य हैं। इसके अलावा दो मुस्लिम महिला सदस्य, पसमानदा प्रतिनिधि, सांसद, विधायक, बार काउंसिल के सदस्यों में से एक एक का सीधे मनोनयन होगा, यानी पहले चुनाव होता था उन्हें अब मनोनीत किया जाएगा।
5: जो चंदा और चढ़ावा में लूट का मुद्दा है उस मुद्दे से जनता का ध्यान हट जाए, हर समस्या का समाधान मुसलमान है भारतीय जनता पार्टी की, तो अब फिर से मुसलमान को सामने लाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया जा रहा है। मुसलमान मुसलमान मुसलमान मुसलमान, हर समस्या का समाधान मुसलमान है, भारतीय जनता पार्टी का ये प्रयास को सफल होने वाला नहीं।
0: यूपी में सुन्नी वक्फ बोर्ड इसी साल 15 मार्च को भंग हुआ है, 6 महीने के अंदर इसका पुनर्गठन जरूरी है, यानी चुनाव से ठीक पहले सितंबर 2026 तक यूपी में सुन्नी वक्फ बोर्ड का गठन होगा, जिसमें यूपी सरकार हिंदू समुदाय के 2 सदस्यों को रखने की तैयारी कर चुकी है। दरअसल इसी हफ्ते मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी राज्य वक्फ बोर्ड का ऐलान किया है, जिसमें 10 सदस्यों में 2 सदस्य हिंदू हैं। इसके बाद उत्तर प्रदेश में से लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई। संतोष शर्मा के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक।
6: बारिश इस वक्त के मौसम में वो अपराधी है जिस पर हर राज्य के हर दल की सरकार ठीकरा फोड़कर अपनी जवाबदेही से बच जाना चाहती है। जैसे महाराष्ट्र में ही करीब 7,000 करोड़ रुपए की लागत वाले और हाल ही में शुरू किए गए मुंबई पुणे मिसिंग लिंक प्रोजेक्ट पर भारी

0: भारी बारिश के कारण जब भूस्खलन हुआ तो सवाल उठा कि इसे इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना बताया जा रहा था, वहां इतनी खामियां हैं। सवाल उठा तो मुख्यमंत्री विधानसभा में बोलते बोलते मर्यादा तोड़ने लगे।
1: हमारे जयंत राव जी ने सही बात कही, जिनको कुत्ता नहीं पोछता वह आजकल सोशल मीडिया पर आकर सबको गाली देते हैं, मुख्यमंत्री को भी गाली देते हैं। ऐसे कुछ भाड़े के टट्टे इस मिसिंग लिंक के बारे में भी पैसा ले लेकर सोशल मीडिया पर लिख रहे थे, उनको भी कह देना चाहता हूं, अगर महाराष्ट्र का अपमान करोगे छोड़ूंगा नहीं। तो गाली देते
2: हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस गुस्से में है। गर्म तवे पर किसी ने छन्न से पानी का छींटा मारा ऐसे दिखते हैं, लेकिन क्यों? बात 3 दिन पुरानी है। मिसिंग लिंक के नाम से मशहूर मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे जो करीब 2 महीने पहले ही चालू हुआ, जिसे बनाने में जनता के 6,695 करोड़ रुपए लगे, जिस मेगा प्रोजेक्ट को इंजीनियरिंग का बेजोड़ नमूना कहा गया, तेज बारिश के बाद भूस्खलन से उसी नायाब इंजीनियरिंग वाले मिसिंग लिंक पर पत्थर टूट पड़े। भूस्खलन के बाद यहाँ कुछ देर तक रास्ता बंद रहा, लोगों ने सवाल सियासत से लेकर सोशल मीडिया तक पर पूछे। तो अगर सवाल पूछा जाए तो क्या वो गलत है, क्या उससे महाराष्ट्र का अपमान? पहले 6 जुलाई की इस हादसे के वक्त की रिपोर्ट देखिए।
3: मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे के मिसिंग लिंक पर है, 2 महीने पहले इसी मिसिंग लिंक को बहुत जोर शोर के साथ इनॉग्रेट किया गया था, लेकिन अभी इस वक्त इसकी हालत आप देख लीजिए, तो तकरीबन 4 बजे सोमवार के समय 4 बजे अचानक से यहाँ पे लैंडस्लाइड हो गया। पुणे से मुंबई की तरफ जो जाने वाला जो रास्ता है उस पर इस वक्त हम हैं और लैंडस्लाइड की वजह से ये पूरा का पूरा रास्ता बंद हो गया है। अभी आप देख लीजिए 4 बजे से दोपहर के अभी 12 बज रहे हैं, अभी भी बताया जा रहा है कि 3 से 4 घंटा और लग सकता है पूरे मलबे को निकालने के लिए और इस ये जो मलबा है उसको ले जाके ये लोग बाहर देख रहे हैं। लेकिन आप देख लीजिए पूरा का पूरा जो ऊपर का जो हिस्सा था वो भूस्खलन के दौरान पूरा का पूरा गिर गया, बड़े बड़े पत्थर यहाँ पे गिरे हुए हैं।
2: असल में सवाल इसीलिए पूछा जाता है क्योंकि जब कोई इस तरह का एक्सप्रेसवे हाईवे बनाता है तो उसको लेकर दावे ऐसे ऐसे करता है जिसके बाद भरोसा जनता को दिया जाता है कि अब कुछ गड़बड़ नहीं होने वाला, लेकिन फिर उन दावों की पोल प्रकृति खोल देती है और सवाल फिर मुख्यमंत्री को चुभ जाता है।
4: कोई पेड़ गिर के मर रहा है, कोई मैनहोल में गिर के मर रहा है, कोई किसी और आपत्ति में मर रहा है, कभी कोई इलेक्ट्रिक्यूट होकर मर रहा है।
5: जवाब आपको देना पड़ेगा, जिस कुर्सी पे आप हो आप राजा नहीं हो, जनता के सेवक हो, और ये मान के चलिए कि जनता हर समय आपको सवाल करेगी, ये घमंड नहीं कोई देखेगा।
6: काल सध्या ह्यांचं मुख्यमंत्र्यांचं फडणवीसांचं भाषण विधानसभेमधलं, त्याचं म्हणे राजकारण करू नका। अरे वा, आणि काय म्हणतायत म्हणे, एक वेळ मला बोला पण महाराष्ट्राचा अपमान मी सहन करणार नाही। अरे वा, लोक त्या मिसिंग लिंक बद्दलच बोलतायत, महाराष्ट्राचा कुठे अपमान करतायत? पण ते काय सगळं घेऊन जायचं, म्हणजे ते वरपासून खालपर्यंत आता काय सवय लागली आहे? केंद्र सरकारच्या कुठच्या गोष्टींबद्दल बोललं की तुम्ही देशविरोधी? आता मिसिंग लिंक बद्दल बोललं तर याच्यात महाराष्ट्राचा अपमान कुठे आला?
2: सवाल सियासत का नहीं, सवाल इस बात का है कि अगर कहीं कमी है और उस पर प्रश्न है तो क्यों इसे साजिश और अपमान तक सत्ताधारी बताने लगते हैं? जबकि महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के संयुक्त प्रबंध निदेशक राजेश पाटिल से आज तक संवाददाता विद्या ने पूछा कि इस बात का अंदाजा नहीं लगाया था कि ऐसा लैंडस्लाइड हो सकता है।
7: स्ट्रक्चरली कोई डैमेज नहीं हुआ है इस लैंडस्लाइड में, लेकिन क्या जिस तरीके से ये बारिश हुई क्या इस बात का अंदाजा नहीं था कि यहाँ पे लैंडस्लाइड हो सकता है? उस समय भी क्या आप लोगों ने असेसमेंट किया था या उस असेसमेंट के बाहर ये हो गया?
8: या असेसमेंट किया था, लेकिन टनल के ऊपर जो ओवरबर्डन है वो 220 मीटर्स है ओवरबर्डन, और इसका डिजाइन भी हमने IIT बॉम्बे से अप्रूव करके लिया था, वेटिंग करके लिया था, और एज पर देयर अप्रूव डिजाइन वो हमने रॉकफॉल मिटिगेशन मेजर किया था, एंड वो जो रॉकफॉल मिटिगेशन मेजर हमने किया है वो इंटैक्ट है, वो हमने अभी अप टू 15 मीटर्स किया था, वो इंटैक्ट है, और वो अभी बाकी जो हुआ उसके लिए वी हैव टू डू कॉम्प्रिहेंसिव इंस्पेक्शन एंड देन वी हैव टू कम विद सम स्ट्रांग रेमेडियल एक्शन फॉर दैट।
2: महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम के संयुक्त प्रबंध निदेशक इस बात को समझते भी हैं और समझाते भी कि सुरंग के ठीक ऊपर लगभग 120 मीटर पर मिट्टी पत्थर जमा है। आईआईटी बॉम्बे से पहले ही पूरी सलाह ली जा चुकी है। सुरंग के ऊपरी हिस्से से 10 मीटर तक बचाव के उपाय किए गए थे। हालांकि भूस्खलन सुरंग के ऊपरी हिस्से से 150 या 200 मीटर की दूरी से हुआ और इस वजह से चट्टाने गिरी और फिर मिसिंग लिंक सवालों में आए। तो जरूरी ये है कि कहीं कुछ हो तो उसके कारण को समझकर कारण सबको बताया जाए, न कि सवाल पूछने या सवाल उठाने वालों पर सवाल उठाकर सवाल को ही दबा दिया जाए।
0: अब आपको पुणे के पिंपरी चिंचवाड़ से आई खबर से खबरदार करते हैं, जहां पहाड़ लैंडस्लाइड की तरह टूटा था। 3 मंजिला इमारत पर गिरकर लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ गया, लेकिन ये पहाड़ कूड़े का था। ये प्लान से जुड़ी इमारत को मलबे में बदल देता है। 23 लोग इसमें फंस जाते हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन चलता है और जवाबदेही के सवाल पर जिम्मेदार लोग बारिश पर ठीकरा आसानी से फोड़ कर निकल जाते हैं।
2: जहां कूड़े का पहाड़ खड़ा करके कूड़े से बिजली बनाने का प्लांट बनाया, क्या वही लापरवाही इस कदर रही कि वो कूड़े का पहाड़ जिंदगियों पर टूट पड़ा। कूड़े का पहाड़ जब लगातार बारिश के बाद टूटा और गिरा तो देखिए लैंडस्लाइड जैसे हालात ऐसे बन गए कि कूड़े से बिजली बनाने वाले प्लांट की 3 मंजिला इमारत ढह जाती है। चीख पुकार के बीच पहले दिल दहला देने वाले इस वीडियो को देखिए, जहां किसी तरह लोगों को बिल्डिंग के ढेर के बीच से निकाला जाता है। सबसे पहले दमकल वाले पहुंचे, फिर एनडीआरएफ की टीमें लग जाती। यहां लगातार लोगों को इस मलबे से बचाने की कोशिश जारी दिखती है। इस बीच मलबे से कोई जख्मी हालत में जिंदगी के लिए जंग लड़ता बाहर आता है तो वहां खड़े लोग इंतजार करते हैं कि इसकी सांसें चल रही है। पिंपरी चिंचवड़ नगर निगम के अधीन आते इस इलाके में कूड़े से बिजली बनाने वाले प्लांट पर कूड़े का पहाड़ गिरने के बाद लोगों को बाहर निकालना कितना कठिन है, इसे आप एनडीआरएफ के लोगों से समझिए।
9: पूरी बिल्डिंग कोलैप्स हो रखी है, पूरे मलबे से दबी हुई है एंड बॉडीज हमने ट्रेस करी हैं, 3 के करीब कर ली, जिसमें से एक निकाल ली है। एक को और थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि जो मलबा है मैनुअली निकालेंगे, अगर हम मशीन लगा के निकालेंगे वाइब्रेशन हो जाएगा जिससे कि फर्दर कोलैप्स हो सकते हैं।
10: जो एरिया बताया जा रहा है कैंटीन एरिया, वो हम फोकस कर रहे हैं, वहाँ पे 5 to 6 का बताया गया है फिगर। तो राइट नाउ वी आर होपिंग कि 7 to 8 है, इससे ज्यादा तो नहीं है।
11: जवान पार्किंग तक जा चुके हैं? जवान
10: पार्किंग तक अभी नहीं पहुंच पाए हैं क्योंकि धीरे धीरे मैनुअली काम हो रहा है हाथ से निकाल के, क्योंकि हम मशीन नहीं अप्लाई कर सकते। मशीन अप्लाई करेंगे पूरा बिल्डिंग पैनकेक कोलैप्स हो जाएगा, तो जो है भी वो पूरा दब जाएगा।
2: अब सवाल है कि ऐसे हालात कैसे बने, क्या इस बात का अंदाजा किसी को नहीं था कि जो कूड़े का पहाड़ यहाँ इतना ऊंचा खड़ा है इसकी वजह से हादसा भी हो सकता है। आज तक संवाददाता ने इसीलिए सीधे विजय सूर्यवंशी आयुक्त पिंपरी चिंचवड़ नगर निगम से सवाल किया है।
12: इतना बड़ा हादसा हुआ है, इसका जिम्मेवार कौन है, उस पर कुछ दर्ज होगा पुलिस थाने में?
13: देखो ये नेचुरल कैलामिटी है, ऐसा नहीं कि बिल्डिंग अपने आप ढह गई। अपने आप ढह जाती तो हम कहते कि इसका स्ट्रक्चर वीक था, इसका स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम था। अभी आप देख रहे हैं कि ये बड़ा लैंडस्लाइड जैसे हुआ है, मतलब 60 मीटर हाइट का ये कचरे का पहाड़ है ऑलमोस्ट, और 600 mm बारिश जो 36 आवर्स में, 36 घंटे में 600 mm, इसकी वजह से उसका जो वेट बढ़ गया होगा और जैसे लैंडस्लाइड होता है वैसे वो ढह गया और उसका हॉरिजॉन्टल प्रेशर बिल्डिंग के आने के बाद वो बिल्डिंग कोलैप्स हो गई।
2: 60 मीटर ऊंचा कूड़े का पहाड़ खड़ा था, ये बात खुद आयुक्त मानते हैं। ये भी मानते हैं कि बारिश बहुत ज्यादा लगातार हुई, तो क्यों नहीं संकट को पहले समझा गया, क्यों नहीं काम रोका गया, ये क्यों नहीं सोचा गया कि अगर यहाँ तेज बारिश हुई तो यही कचरे का 60 मीटर ऊंचा पहाड़ पानी में भीग कर जब तेज हवा से गिरेगा तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता है।
14: डंपिंग ग्राउंड है पिंपरी चिंचवड़ का, ये 1982 से, मतलब अभी करीब करीब उसको 47 ईयर हो गए, 47 साल से यहाँ चल रहा है और बहुत बड़ा पहाड़ी बन गया उसका। तो
2: कूड़े के पहाड़ को कम करने के लिए बताया गया कि वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट शुरू किया गया ताकि कचरे की मात्रा कम की जा सके, लेकिन ज्यादा जोर प्रशासन का इस हादसे पर बारिश को कटघरे में खड़ा करने में लगा हुआ है।
12: पूछताछ की जाएगी इस मामले में।
13: देखो अभी तो हम रेस्क्यू ऑपरेशन में व्यस्त है सब, अभी हमारी प्रायोरिटी है कि जो 8 लोग और है उनको जिंदा बाहर निकाला जाए, उनको रेस्क्यू करा जाए, उसके बाद में ये सब सोचा जाएगा।
12: क्योंकि ये बहुत बड़ा मामला है, 23 लोग जो थे अंदर थे, अभी 15 लोगों को निकाला गया, उनमें से एक की डेथ हुई है ऐसा दमकल विभाग का कहना है। तो पूछताछ तो होनी चाहिए, मतलब किस तरह से ये मामला हुआ, क्योंकि वहाँ के लोग बोल रहे हैं कि 2 दिन पहले उनको लगा था कि ये जो कचरे का ढेर है वो नीचे सरक सकता है।
13: नहीं देखो, जरूर बहुत दुर्दैवी घटना है और भगवान की दया से अभी तक तो हम 14 लोग जो निकाल पाए, मगर इस घटना के बारे में अभी सब बैठेंगे, क्या एग्जैक्टली हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसके बारे में सब सोचेंगे और उसके बारे में नेक्स्ट एक्शन उसके बाद डिसाइड करेंगे।
2: बस यहाँ गनीमत ये रही कि बहुत तेजी से रेस्क्यू ऑपरेशन करके जो लोग दबे रहे उन्हें निकाला जाता रहा।
0: सूरत यानी कि गुजरात की डायमंड सिटी, जहां इतनी बारिश पिछले 3 दिन में हुई है कि दावा यह किया गया कि दशकों का रिकॉर्ड टूट चुका है, और जब पानी सूरत में उतरा तो लोगों को बहुत नुकसान का पता चला।
15: सूरत के वराछा में स्थित पुदार आर्केड में फिलहाल मेरी मौजूदगी और मेरे पीछे की तरफ की तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा, जहां पे मोबाइल शॉप बेसमेंट में आए हुए हैं। पूरे बेसमेंट में अलग अलग जो शॉप्स फिलहाल दिखाई दे रही है, जिसके बाहर की तरफ सामान्य जल भराव की स्थिति है और साफ सफाई का काम यहाँ पे चल रहा है, क्योंकि 30 घंटे पहले सूरत के अलग अलग इलाकों में 15 से 18 इंच जितनी बारिश हुई और इस बारिश की वजह से चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई पड़ रहा था। लेकिन बीते 30 घंटों में अलग अलग इलाकों में जो जल भराव की स्थिति थी, अब तो जल भराव की स्थिति देखने को नहीं मिल रही है, पर ये वही पोदार आर्केड है जहां पे पूरा बेसमेंट जलमग्न हो गया था।
16: यहां पे ये गुजरात का सबसे बड़ा मोबाइल हब है और यहां पे नए शोरूम है, रिपेयरिंग है, सेकंड हैंड वाले भी है, और ये एक 200 दुकान अंदर घर का हो चुकी है, तो समझ लो कि एक दुकान में किसी का 1 करोड़ का माल था, किसी का 50 लाख का था, आप एवरेज भी लगाओगे तो 200 से 250 करोड़ का नुकसान है।
17: 5 दुकान लाइन में अपना होलसेल का काम था, होलसेल में आपको पता होगा कि बहुत सारा स्टॉक होता है, सब प्रीमियम और ब्रांडेड चीज अभी आई थी माल अपने पास, 20 से 30 कार्टून आए थे और पुराना भी माल बहुत डिस्प्ले करा हुआ था। टोटल आश्रे 1.5 से 2 करोड़ का हमारा नुकसान है टोटली, अभी कोई भी प्रशासन हमको कोई जवाब नहीं दे रही है।
15: जिस प्रकार की तस्वीरें सामने आ रही है वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये जो टेक्सटाइल मार्केट है वहां जल भराव की स्थिति अभी भी देखने को मिल रही है। टेक्सटाइल मार्केट का ये बिल्डिंग और इसी बिल्डिंग के नीचे की तरफ 2 फ्लोर गोडाउन है और वो दोनों फ्लोर का जो गोडाउन है, बेसमेंट है, वो पूरा जलमग्न है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जो भी बेसमेंट के अंदर मौजूद गोडाउन के अंदर पानी भरा हुआ है उसे निकालने के लिए मोटर का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। पानी निकालने की कोशिश बीते कई घंटों से जारी है, लेकिन इन कोशिशों के बीच करोड़ों की नुकसानी की बात अब फॉस्टा यानी कि जो टेक्सटाइल एसोसिएशन है उनकी तरफ से कही जा रही है। हमारे साथ फॉस्टा के जनरल सेक्रेटरी भी मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे।
18: रोड जाम होने की वजह से, पीछे खाड़ी जाम होने की वजह से पानी गया नहीं और वो फ्लो बैक मारा, उसने भी मारा और ऊपर से कुदरत के भी बरसात गिरने से बड़ा बड़ा नुकसान हुआ है व्यापारियों का। और रही बात एवरेजों की, तो हमारा अंदाजा ऐसा है कि कम से कम जिस हिसाब से आपने ये मार्केट देखा ऐसे कई मार्केट अभी भी पानी के अंदर है, जिसका हम लोग ऐसा समझते हैं कि अंदाजन 1000 दुकानें ऐसी होगी जो नुकसान के साथ में जकड़ी हुई है, और ये लाखों में नुकसान नहीं है, ये नुकसान करोड़ों में है।
0: अमेरिका और ईरान के बीच महायुद्ध का बिगुल फिर से बज चुका है, दोनों मुल्कों की सेनाएं आमने सामने हैं। हॉर्मुज पर ईरानी हमले के बाद अमेरिकी सेना ने ईरान के 170 ठिकानों पर भीषण बमबारी की है।

0: ट्रंप के बारूद से धुआं धुआं हुआ ईरान। 24 घंटे में 170 अड्डों पर भीषण बमबारी। ईरानी एटमी सेंटर पर अमेरिका का हमला। ट्रंप के वॉर गेम में बुरी तरह फंस गया ईरान। हॉर्मुज पर हमला ईरान के लिए बहुत महंगा। युद्ध शुरू, अब ट्रंप का ऑपरेशन मुस्तबा। सत्ताईस जून को ईरान ने हॉर्मुज पर हमला किया। हमले के बाद अमेरिका ने अगले 48 घंटों में दो बार ईरान पर भीषण बमबारी की। एक बार फिर 6 जुलाई को ईरान ने हॉर्मुज में 3 टैंकरों को निशाना बनाया। ट्रंप ने अपनी धमकी को सच साबित करते हुए 7 जुलाई और 8 जुलाई को ईरान पर ताबड़तोड़ हवाई हमले किए। महज 24 घंटों के अंदर ईरान के 170 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। ईरान पर हमले का वीडियो अमेरिकी सेना ने जारी किया। अगर ईरान पर अमेरिकी हमले की टाइमिंग को देखें तो संकेत यही है कि विनाशकारी युद्ध का बिगुल बज चुका है। संकेत नंबर 1, ईरान पर अमेरिका का विध्वंसक हमला जारी। संकेत नंबर 2, ट्रंप का ऐलान, युद्ध विराम खत्म, अब वार्ता नहीं। संकेत नंबर 3, ईरान पर अमेरिकी हमलों के समर्थन में नाटो। संकेत नंबर 4, हॉर्मुज पर ईरानी हमले की इंटरनेशनल निंदा। संकेत नंबर 5, तेहरान के डिप्टी मेयर बोले, एटमी हमले का डर। मतलब यही है कि ईरान और अमेरिका के बीच तनाव चरम पर है। अब ये युद्ध दुनिया को अपनी चपेट में ले सकता है, क्योंकि ट्रंप ने ईरान के ठिकानों को अपनी मिसाइल के टारगेट पर लॉक कर दिया है, तो वहीं ईरान के लिए वार्ता के दरवाजे पर ताला लगा दिया है।
1: Retribution for last night. They hit actually 3 boats, not 2. And when they hit, we hit back much harder. Another way of doing it. We have many ways we can win, but we've already won militarily. They have very little left, and they want to make a deal so badly. They called a little while ago. They want to make a deal so badly. I just don't know if they're worthy of making a deal. I don't know that they're going to honor the deal. That's the problem. Because it's sort of crazy, to be honest. They're sort of crazy. They're a little bit out of control, but they want to make a deal. Badly.
0: अगर ईरान पर अमेरिका के ताजा हमलों को देखें, तो ट्रंप का वॉर गेम समझना मुश्किल नहीं है। ट्रंप की हिट लिस्ट पर हैं ईरान के अहम सैन्य ठिकाने, तेल और गैस के लिहाज से अहम शहर, ईरान के अहम बंदरगाह, ईरान का ट्रांसपोर्ट नेटवर्क और ईरान के परमाणु सेंटर। ईरानी मीडिया का दावा है कि बुशहर में तेज धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं। ये धमाके ईरान के न्यूक्लियर प्लांट के आसपास सुने गए हैं। ठीक ऐसे ही चाबहार पोर्ट को निशाना बनाया गया। IRGC का दावा है कि अमेरिका ने मशहद जाने वाले रास्तों के पुलों को निशाना बनाया। यही नहीं, ईरान के गोलिस्तान प्रांत के अक्टिके खान रेलवे ब्रिज पर मिसाइल अटैक किया है। ट्रंप ने ईरान को सीधी धमकी दी है कि अमेरिका की सैन्य कार्रवाई अब रुकेगी नहीं। अमेरिका के हमले ईरान द्वारा जहाजों पर की गई बमबारी का प्रतिशोध है। अगर ऐसा दोबारा हुआ तो हालात और भी बदतर हो जाएंगे। बड़ी बात यह है कि शांति समझौते के बावजूद हॉर्मुज पर हमले करके ईरान चौतरफा घिर गया है। ईरान के खिलाफ मिडल ईस्ट के तमाम मुल्क बड़े और कड़े एक्शन की मांग कर रहे हैं। इसमें वो मुल्क भी शामिल हैं जो चंद दिनों पहले तक अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता कर रहे थे। ऐसे में अमेरिका को पता है कि हॉर्मुज पर हमला करके ईरान ने गलत बटन दबा दिया है, लिहाजा ईरान ने अमेरिका को हमले का मौका थाली में सजाकर सौंप दिया है। इसी कड़ी में अमेरिका ने ईरान के कई शहरों पर चुन चुन कर बम बरसाए। ट्रंप का टारगेट बंदर अब्बास। ये ईरान का सबसे बड़ा व्यावसायिक और नौसैनिक बंदरगाह है, यहां पर अमेरिका ने बमबारी करके ईरानी सेना और ईरानी कारोबार को चोट पहुंचाई। ट्रंप का टारगेट वो शहर, ये वही शहर है जहां पर ईरान का एकमात्र चालू परमाणु बिजली प्लांट है। यहां हमला करके ट्रंप ने संदेश दिया है कि ईरान का कोई भी एटमी सेंटर नहीं बचेगा। ट्रंप का टारगेट सिरिक, ये शहर होर्मुज से सटा हुआ है, यहीं से ईरानी सेना गुजरने वाले जहाजों की निगरानी करती है। अमेरिका ने सिरिक में मौजूद ईरानी सैन्य ठिकानों के साथ साथ नौसेना की बोट को निशाना बनाया। ट्रंप का टारगेट चाबहार पोर्ट, ईरान का इकलौता बंदरगाह जो सीधे हिंद महासागर से समुद्री यातायात तय करता है। ये कारोबार और सैन्य लिहाज से अहम है, यहाँ पर भी अमेरिकी हमला हुआ। ट्रंप का टारगेट केशम द्वीप, फारस की खाड़ी का सबसे बड़ा द्वीप जहाँ ईरानी नौसेना के ठिकानों के साथ साथ तेल गैस फैसिलिटी है। अमेरिका ने इस आइलैंड पर भी भीषण बमबारी की है, मतलब ईरान से ट्रंप का बदला बहुत घातक है। ईरान की सरकारी मीडिया ने माना है कि पिछले 48 घंटों में 5 प्रांतों पर हुए अमेरिकी हमलों में कम से कम 14 लोग मारे गए जबकि 78 से ज्यादा जख्मी हैं। अगले कुछ घंटों में ये आंकड़े बढ़ सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ व्हाइट हाउस के हवाले से एक्सियोस में छपी रिपोर्ट में ईरान को लेकर कई बड़े दावे किए गए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति का पूरा जोर होर्मुज को ईरानी नियंत्रण से मुक्त कराने पर है, लिहाजा होर्मुज को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति की तैयारी ईरान के खिलाफ लंबे युद्ध की है। अगर ईरान ने अमेरिकी हमले के बाद फिर हमला किया तो अमेरिका कई हफ्तों तक हवाई हमले करेगा। ईरान के अहम सैन्य ठिकानों के साथ साथ एटमी सेंटर और तेल गैस के प्लांट को निशाना बनाया जाएगा। अमेरिका की उम्मीद है कि होर्मुज की वजह से अब की बार दुनिया के तमाम मुल्क और नाटो उनका साथ देंगे। मतलब यही है कि ईरान अलग थलग पड़ सकता है क्योंकि होर्मुज पर ईरानी हमले की निंदा दुनिया के सभी मुल्कों ने की है। यहां तक कि फ्रांस ने भी माना है कि होर्मुज पर हमला करके ईरान ने अमेरिका के साथ हुए शांति समझौते के MOU का उल्लंघन किया है। दूसरी तरफ होर्मुज पर ताजा हमलों के बाद नाटो ने भी ईरान पर अमेरिकी हमलों का खुला समर्थन किया है। जब युद्ध विराम लागू हो और ईरान मूल रूप से युद्ध विराम का उल्लंघन कर रहा हो तो मुझे लगता है कि अमेरिका का बलपूर्वक जवाब देना बेहद जरूरी है। ये पहली बार है जब नाटो ने ईरान पर अमेरिकी हमलों का समर्थन किया है, तो क्या ये समर्थन आने वाले दिनों में ईरान के खिलाफ अमेरिकी हमलों में भी दिखेगा? अगर ऐसा हुआ तो ईरान के खिलाफ अब ये युद्ध सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं रहेगा, मतलब ईरान के खिलाफ हमलों में नाटो भी शामिल हो सकता है। नाटो भी अमेरिका के साथ युद्ध में शामिल हुआ तो ईरान की हार तय है।
1: To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is? They're scum. They're sick people. They're led by sick people. And they're vicious, violent people. And if they had a nuclear weapon, they'd use it. As far as I'm concerned, it's over.
0: ईरानी विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी हमलों का समर्थन करने पर नाटो की निंदा की है। ईरान ने आरोप लगाया कि ईरान अमेरिका युद्ध का जिम्मेदार नाटो है। आरोप यही है कि अमेरिका और इजराइल को लेकर नाटो ने निष्पक्ष भूमिका नहीं निभाई। तो क्या ये जंग अमेरिका बनाम ईरान नहीं बल्कि ईरान बनाम दुनिया में बदल सकती है? आज तक ब्यूरो
2: के साथ हम यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

30,000 भारतीयों के बीच मेलबर्न में बोले प्रधानमंत्री मोदी, शिप से चिप तक बना रहा है भारत, ग्रो मोर अचीव मोर का दिया नारा, कहा रक्षा अंतरिक्ष और यूरेनियम डील पर मुहर। टीएमसी को छोड़ बीजेपी माया ममता के तीनों ही पूर्व राज्यसभा के सांसदों को मिला इनाम, उपचुनाव के लिए बने कमल के उम्मीदवार, कल ही पार्टी में शामिल हुए थे सुखेंदु, सुष्मिता और प्रकाश। यूपी में चढ़ा चुनावी तापमान, योगी का आरोप, 2017 से पहले कब्रिस्तानों पर पैसे खर्च करती थी एसपी सरकार, ओपी राजभर ने भी अखिलेश पर किया बड़ा हमला। महाराष्ट्र और गुजरात समेत उत्तर भारत में जोरदार बारिश से परेशानी, दिल्ली एनसीआर भी हुआ पानी पानी, बादली में डूबने से 7 साल के बच्चे की मौत, गाजियाबाद में भी एक बच्चे की गई जान। अमेरिकी हमले के बीच खामनेई का अंतिम संस्कार, ट्रंप ने फिर दी धमकी, कहा 20 गुना ताकत से करेंगे अटैक, बदले में अमेरिकी ठिकानों पर तेहरान ने बरसाए बॉम्ब। बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच बड़ा सनातनी साबित करने की लड़ाई चल रही है। समाजवादी पार्टी कह रही है कि वो सनातनी है, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बता रहे हैं कि विकास का जो पैसा आज सनातन की रक्षा के लिए खर्च किया जा रहा है वो समाजवादी सरकार में कब्रिस्तानों पर खर्च किया जाता था। इन सबके बीच वक्फ को